0: उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
1: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
2: मैंने देखा कि वहां से वो पुल से बाढ़ आ गया, तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचा लेना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए, तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्ट ने, पर वे उधर चले गए।
0: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा होता वो दिख रहा था?
2: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो स्नेक के आते ना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई हाई हाई करके।
0: अच्छा अच्छा,
2: तो ऐसा चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
0: सबसे जरूरी था भागना,
2: भागना
0: तेज,
2: वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
0: देखा सामने,
2: हाँ नहीं ऐसे करके वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
0: आपने बचा लिया। हाँ,
1: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल दी।
3: जो हल्का इधर हुआ है, जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
0: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
3: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
0: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
3: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
0: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था?
3: नहीं।
0: ये सब घर यहाँ पे, तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
3: जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, वो भी मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे एक सिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था। बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे। ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं,
0: किसी का काम बचा ना घर बचा,
3: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा। बस आदमी बच गए ना, वही हम लोग के लिए बहुत काफी है। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए वही काफी है।
1: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की ही तलाश कर रहे हैं।
4: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी, एक दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
0: कहाँ रह रहे थे
4: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
0: अच्छा।
4: क्या कहता हूँ मैं,
0: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे। तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
4: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है?
0: हाँ।
4: और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
0: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
4: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
0: कितने साल की है
4: ये बच्ची? दो साल की है।
0: दो साल की बच्ची।
4: ये दीदी हुई।
0: हाँ।
4: ये भांजी है, ये भी भांजी है।
0: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
4: नहीं मिल पा रहे हैं।
0: आप हर जगह जाके ढूंढ
4: रहे हैं?
1: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
0: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी है वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
1: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
5: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का, 20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल के सब खाना खा के ये रास्ता होके वो आ गया।
0: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
5: हाँ।
0: कैसा डरावना था?
5: बहुत एकदम डरावना था, बहुत।
0: नुकसान कितना हो गया आपको?
5: नुकसान था उधर वो 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको जान किसी की नहीं गई। चार पांच मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शटर लगाने की भी मौका न मिला।
0: यही रास्ता था,
5: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ पांच जाना थे, पांच आदमी थे, और मेरा बेटा उधर काम करता थे, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
1: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
0: यहीं पर रहते हैं आप?
6: जी, यहीं पर रहते हैं।
0: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
6: बहुत बड़ा परिवर्तन है। हाँ। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है। हाँ। खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
0: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
6: डेवलपमेंट विकास बैंक,
0: हाँ, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
6: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
0: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
6: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
0: क्या परिवर्तन हुआ है?
6: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
0: हाँ।
6: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
0: ये खेत था,
6: खेत था इसके पछाड़ी।
0: अच्छा।
6: इस साइड में पूरे घर था यहाँ। हाँ। पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
0: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं।
6: हाँ,
0: और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
6: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
1: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
7: ऊपर
0: छत में फंसा हुआ है कुत्ता,
7: ये 40-50 है,
0: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है,
7: दो आया और उधर है।
0: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
7: ऊपर से निकाला अभी,
0: दो था,
7: एक किधर गया मालूम नहीं, एक
0: एकदम ऊपर। बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा?
7: खाना नहीं मिला।
0: यही कुछ जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका क्या नाम है इसका?
7: स्वीटी।
0: स्वीटी नाम है। स्वीटी, आ गई तुम वापस?
8: उसका काम नहीं सुनता है,
7: खराब हुआ।
1: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
9: नेपाल में हुई तबाही से कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जहां एक घर मकान थे वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कुछ गांव तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ अब कागजों पर बचे हैं, नामो निशान जिनका मिट गया है।
10: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
11: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हो शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
10: नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढूंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
11: ढूंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया। लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थे, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है लेकिन नहीं जाया जा सकते। देखिए जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये जो

0: नमी इसमें जा रही है, ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते इन इलाकों में। देखिए यहाँ से निकलना जो है ना, ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
1: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं। एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
0: तो ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है, लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ वो बता रही हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
1: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढोंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है। यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
0: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है, ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया। क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट, और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी, लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है, उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिनका स्तर बढ़ा था वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा, लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है, जिसका बहाव लगभग इतना ही है, वो भी तब जब बरसात हो रही है, वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी, तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
1: ढूंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहाँ से बच निकले थे अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
0: आपका घर कहाँ पर है? अच्छा, ऊपर की तरफ।
2: थैंक यू वाला।
0: आप, अच्छा, आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
2: पूरा डूब जाए।
0: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
2: हाँ देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उपहार के, ऐसा मार के, सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है समझ गया, उसके बाद हम ऊपर गए।
0: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है, और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए महिलाएं बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है, ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रही हैं? देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए, देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने के पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे ना जाएं।
1: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
3: आपदा नेपाल में आई लेकिन उसके पीड़ित दुनिया के कई देशों के लोग हुए हैं। ये त्रासदी कई परिवारों को कभी ना भरने वाला जख्म दे गए हैं। सैकड़ों भारतीय भी नेपाल में लापता हैं। आपदा की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं। अनहोनी की आशंकाएं हैं लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए।

0: होने की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं है। किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहे नहीं मिला, अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे नहीं मिला।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये खींचे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यहाँ तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आके इनकी पहचान कर सकें और यहाँ से डेड बॉडी ले जा सकें। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आँखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है, कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: अब बात करते हैं राहुल गांधी के दलित कार्ड की, जहां उन्होंने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है, और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण को भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान से जोड़ा और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
8: भले ही हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया।
9: कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। राजस्थान के मंदिर जाते हैं,
8: राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग।
9: शुद्धिकरण होता है, जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया।
8: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं, दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
10: खड़गे जी नामांकन केंद्र के कमरे के बाहर रहेंगे, वी नारायण स्वामी पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री ये इस प्रकार से चप्पल उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की ऐसा मानसिकता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा में हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा, उनका क्या मान सम्मान हो रहा है हम सब जानते हैं, बैनर पोस्टर से उनको गायब कर दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का असल चाल चेहरा चरित्र है। ये दलित समाज दलित सम्मान की बात आपको सिर्फ राजनीति के लिए याद आती है?
11: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना, आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिनाए, अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रहीं, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रहीं, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
8: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
12: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
13: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
8: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही।
14: लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है, वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
8: युवा महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
7: अब आज ममता बनर्जी की कैथेड्रल रोड पर टीएमसीपी की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल आरोप है कि हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया, टीएमसीपी की बैठक आयोजित की गई और कोर्ट ने सड़क के सिर्फ एक हिस्से पर ही रैली की इजाजत दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों ही हिस्से को घेर लिया और तय समय के बाद भी कार्यक्रम चलता ही रहा।
15: ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है, तो हम लोग पूरा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का अदालत को भी सम्मान तो करना चाहिए। हम लोग कोशिश किया पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर को मानने के लिए, लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई चला आएगा वो तो पुलिस का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। वो ममता बनर्जी का खिलाफ एफआईआर का कोई वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
16: ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो अभी भी मुख्यमंत्री है, वो न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर है, उनके ऊपर कोर्ट के किसी आदेश का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ममता जी, कानून का शासन चल रहा है बंगाल में, भारत के संविधान का शासन चल रहा है बंगाल में, बंगाल में डबल इंजन की ग्रोथ का शासन चल रहा है, परफॉर्मेंस की गारंटी का शासन चल रहा है। वो आपके भतीजे को बढ़ाने वाला कट मनी रंगदारी वाला शासन खत्म हो चुका है।
7: खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब है मुस्लिमों को बाहर करना नहीं। उज्बेकिस्तान के दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय ने की मुलाकात। दो दिन के बाद बिश्केक में एससीओ समिट में होंगे शामिल। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया है दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतनराम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा। और नेपाल आपदा में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 670 से ज्यादा शव बरामद किए गए, करीब 2500 लोग लापता। भारत ने देर रात काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यूनिवर्सल वन सीन सेलिब्रेशन कार्यक्रम को संबोधित किया है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुटे हुए लोगों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने एकता, भारतीय संस्कृति और विश्व कल्याण के संदेश पर जोर भी दिया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत, विविधता में एकता और मानवता को एक सूत्र में जोड़ने की जरूरत पर अपनी बात रखी। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान आपसी सहयोग, सद्भाव और एकजुटता में है।
1: दे विल सस्टेन द ह्यूमैनिटी, दे विल सस्टेन द एनवायरमेंट, दे विल सस्टेन द सृष्टि, द एग्जिस्टेंस। दैट इज द गोल, दैट इज द मॉडल ह्यूमन लाइफ। Our ancient rishis had foreseen that, created a whole nation for that. Bhadram ichchanta rishayah swarvidaha tapo diksham upase duragre tato rashtram balam ojascha jatam. The well-meaning rishis, with a feeling of welfare of the world, they had the difficult penance. Through that our nation was created. No nation is a geographical piece of land. All nations have a destiny to fulfill. This is the Bharat destiny. Let us awake as Bharatiyas to that destiny and fulfill our duties in our karma bhumi as well as our janma bhumi. If we do that, that will be a boon for the world struggling with all these problems and stumbling at every step. We have to give sustenance, we have to give some sort of support to this world. We have to go this way, and that is why we have come here and we have remembered the Raksha Bandhan, we have tied the Rakhi, and also we are saying united in oneness and what? I cannot hear you. That is the third line. You omitted the second line. Don't omit the second line. United in oneness and decorated by the diversity.
0: और आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और वहां वो वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा है कि भले ही धर्म अलग अलग हैं, लेकिन इंसानियत और मानवता एक ही है, सत्य एक है और इंसानियत उसी सत्य का परिणाम है। भागवत ने यह भी कहा कि हिंदुत्व ये नहीं है कि मुसलमानों को भारत से बाहर करो। अगर कोई हिंदू ये सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो हो सकता है कि वो हिंदू ही न हो।
1: In 2018, in Delhi, I had a lecture, and Muslim brothers were also there, and they asked me the question, you are a Hindu organization, you say Hindu Rashtra, what about us Muslims? Would you drive us out? I said, no, that is not Hindutva. If any Hindu thinks that there should be no Muslim in Bharat, he will not remain Hindu. If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
0: और आपको यह भी बता दें कि थोड़ी देर में संघ प्रमुख मोहन भागवत न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर भारत में सियासी महाभारत शुरू हो चुका है, सियासी दलों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है, आपको वो सुनवा देते हैं।
2: देखिए, मोहन भागवत पूरी तरीके से बीजेपी के माउथ पीस हो गए हैं और आरएसएस मतलब कुछ नहीं रह गया, अब सब बीजेपी और मोदी के साथ हो गया है। तो मुझे लगता है वहां जाकर भी बड़ाई करेंगे मोदी की और तारीफ करेंगे। तो मुझे जहां तक वहाँ पर मेरी जानकारी में है कि बहुत अच्छा निर्णय लोगों ने किया और मोहन भागवत को कहीं पर भी स्थान इनको नहीं मिलना चाहिए।
3: अरे आप वो सवाल पूछ लीजिए, यूनाइटेड स्टेट रिलीजियस फ्रीडम का भी तो एक रिपोर्ट आया है आरएसएस के बारे में, भारत सरकार क्या बोलेगी उसके ऊपर? अब जोरान ममदानी को अपनी बात रखने का अख्तियार है, और हम थोड़ी उसके स्पोक्स पर्सन हैं। मोहन भगवत जा सकते हैं और तेलंगाना का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अमेरिका नहीं जा सकता है, ये क्या बात है बताइए। आरएसएस तो उनकी आइडियोलॉजी तो साफ है।
4: कौन है मोहन भागवत? कोई व्यक्ति है? कोई विचारधारा है? कौन है जिनके ऊपर भारत सरकार इतना ज्यादा खर्चा कर रही है? कहीं ना कहीं भारत के गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि जेड प्लस की सिक्योरिटी, जिसमें कम से कम 30 से 35 या 40 के ऊपर हमारे पुलिस के जवान लगते हैं, कई गाड़ियां लगती हैं, सैकड़ों का काफिला चलता है, वो एक व्यक्ति के पीछे क्यों खर्च किया जा रहा है? हम ऐसे किसी भी व्यक्ति, किसी भी सोच को जो भारत के खिलाफ उपजी है, जो भारत के संविधान को नहीं मानती है, हम उसको कतई नहीं मानते।
5: अभी संघ की शाखा में गए हो? आपने कभी देश के लिए त्यागपूर्ण समर्पित जीवन परिवार को छोड़ के देश को ही अपना परिवार मान करके जीने वाले स्वयंसेवक से मिले हो? एयर कंडीशन कमरे में बैठकर अपने विचार कहना, जमी पर जाकर के तुमको देखना होगा संग क्या है, तब पता चलेगा ममदानी को। इसके लिए ऐसे छुटपुट विरोध करने वाले होते हैं इस दुनिया में, पर संग का काम और आदरणीय सरसंघचालक जी के विचार प्रखरता के साथ समूचे विश्व में जा रहे हैं और आगे भी भविष्य में जाएंगे।
0: नेपाल त्रासदी पर आज तक की कवरेज लगातार जारी है, जहां ग्राउंड जीरो से आज तक आपको हर हालात से रूबरू करा रहा है। आज तक की अलग अलग टीमें अलग अलग हिस्सों से त्रासदी के दंश को दिखाने की कोशिश कर रही हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। नेपाल के नोवाकोट से एक खास रिपोर्ट देखिए।
6: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
7: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है, तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए, त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी, ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स, और आगे आप होटल्स देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहाँ पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
6: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
8: मैंने देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया, तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए, तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्टनर, पर वे उधर चले गए।
7: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा आता वो दिख रहा था?
8: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो इसने क्या आते ना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई हाई हाई करके।
7: अच्छा अच्छा,
8: तो ऐसा चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। अब देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा
7: सबसे जरूरी था भागना,
8: तेज, वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
9: देखा सामने,
8: हाँ नहीं ऐसे करके वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
9: आपने बचा लिया। हाँ,
6: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल दी।
10: जो हल्का इधर हुआ है, जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है,
9: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर,
10: जी जी जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
9: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
10: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
9: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था। ये सब घर यहाँ पे तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
10: हाँ जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, हाँ, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, हाँ, वो भी मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे एक सिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था, हाँ, बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं,
9: किसी का काम बचा ना घर बचा,
10: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा, बस आदमी बच गए ना, वही हम लोग के लिए बहुत काफी। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए ना वही काफी है।
6: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की तलाश कर रहे हैं।
11: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी, एक हाँ, दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
9: कहाँ रह रहे थे
11: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
9: अच्छा,
11: क्या कहता हूँ मैं,
9: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे, तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
11: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है,
9: हाँ,
11: और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
9: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
11: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
9: कितने साल की है
11: ये बच्ची? दो साल की है।
9: दो साल की बच्ची
11: जी। ये दीदी हुई,
9: हाँ,
11: ये भांजी है, ये भी भांजी है।
9: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
11: नहीं मिल पा रहे हैं।
9: आप हर जगह जाके बस ढूंढ रहे हैं?
11: ढूंढ रहे हैं।
6: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
9: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी है वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
6: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
12: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का, 15-20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था, उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल के,
9: हाँ,
12: सब खाना खा के ये रास्ता हो गए।
9: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
12: हाँ।
9: कैसा डरावना था?
12: बहुत एकदम डरावना था, बहुत।
9: नुकसान कितना हो गया आपको?
12: नुकसान था उधर, वो 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन, नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको जान किसी की नहीं गई, चार पांच मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शटर लगाने के भी मौका न मिला।
9: यही रास्ता था,
12: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ पांच जना थे, पांच आदमी थे, और मेरा बेटा उधर काम करता थे, वो भी ये रास्ते ऊपर भागने सफल हो गया।
6: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
9: यहीं पर रहते हैं आप?
13: जी यहीं पर रहते हैं।
9: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
13: बहुत बड़ा परिवर्तन है, हाँ। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है,
9: हाँ।
13: खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
9: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
13: डेवलपमेंट विकास बैंक,
9: हाँ, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं?
13: लग रहा है, नहीं पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है, थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन, हाँ, कम था।
14: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
13: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
14: क्या परिवर्तन हुआ है?
13: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से। हाँ। ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में।
14: ये खेत था?
13: खेत था इसके पछाड़ी।
14: अच्छा।
13: इस साइड में पूरे घर था यहाँ। हाँ। पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले।
14: यहाँ तक रोड था? अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं।
13: हाँ,
14: और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
13: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
15: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
16: ऊपर
14: ऊपर
16: छत में
14: है, छत में फंसा हुआ है कुत्ता मुर्दा।
16: ये 40-50 है,
14: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है।
16: दो आया और उधर है।
14: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
16: ऊपर से निकाला अभी।
14: बेचारा
16: दो था, एक किधर गया मालूम नहीं। एक
14: एकदम ऊपर बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा।
16: खाना नहीं मिला।
14: यही जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका क्या नाम है इसका?
16: स्वीटी।
14: स्वीटी नाम है। स्वीटी आ गई तुम वापस?
10: उसका काम नहीं सुनता है,
16: खराब हुआ।
15: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: नेपाल में हुई तबाही से कई इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। जहां घर मकान थे वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा है। कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जो अब सिर्फ कागजों पर बचे हैं, नामों निशान मिट चुका है।
15: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी, इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
17: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हो शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है। और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
15: नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढुंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
17: ढुंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए कि कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया। लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थे, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाया जा सकते। देखिए, जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ, ये देखिए पूरा दलदल है, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है, ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते। इन इलाकों में देखिए, यहाँ से निकलना जो है ना, ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
15: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं। एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
17: तो ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है, लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ वो बता रहे हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग निर्दोष लोग जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
15: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढोंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है, यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
17: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है। ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये देखो पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में नारायणी में भटकोशी में जिनका स्तर बढ़ा था वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा, लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है जिसका बहाव लगभग इतना ही है वो भी तब जब बरसात हो रही है वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को पुलों को हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
15: ढूंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहाँ से बच निकले थे अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
17: आपका घर कहाँ पर है? अच्छा ऊपर की तरफ।
18: थैंक यू
17: वाला। आप अच्छा आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
18: पूरा डूब जाए।
17: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
18: हाँ देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उफर के ऐसा मार के सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है समझ गया। उसके बाद हम ऊपर गए।
17: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए महिलाएं बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रही हैं? देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने की पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे न जाएं।
15: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
0: और अब बात करेंगे ममता बनर्जी की, क्योंकि कैथेड्रल रोड पर टीएमसी की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। और आरोप यह है कि हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए टीएमसी की बैठक आयोजित की गई थी। कोर्ट ने सड़क से सिर्फ एक हिस्से पर रैली करने की परमिशन दी थी लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों ही हिस्सों को घेर लिया था और तय समय के बाद भी यह कार्यक्रम चलता रहा।
19: देखिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है तो हम लोग पूरा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का अदालत को भी सम्मान तो करना चाहिए। हम लोग कोशिश किया पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर को मानने के लिए, लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई चला आएगा वो तो पुलिस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। वो ममता बनर्जी का खिलाफ एफआईआर का कोई वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
20: देखिए ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो अभी भी मुख्यमंत्री है, वो न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर है, उनके ऊपर कोर्ट के किसी आदेश का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ममता जी कानून का शासन चल रहा है बंगाल में, भारत के संविधान का शासन चल रहा है बंगाल में, बंगाल में डबल इंजन की ग्रोथ का शासन चल रहा है, परफॉर्मेंस की गारंटी का शासन चल रहा है। वो आपके भतीजे को बढ़ाने वाला कट मनी रंगदारी वाला शासन खत्म हो चुका है।
0: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।
1: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: कौन से कर्म आपके घर में अशुभता ला रहे हैं, आपकी कौन सी आदतों से आपका घर अशुभ हो रहा है, क्या करें उपाय कि घर में शुभता और पवित्रता आ जाए, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
1: सैतालीस में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
2: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके की एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक। बोले हिंदुत्व का मतलब मुस्लिमों को बाहर करना नहीं। उज्बेकिस्तान के दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। भारतीय समुदाय से की मुलाकात, दो दिन बाद बिश्केक के एससीओ समिट में होंगे शामिल। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, होगा हमेशा कांग्रेस ने किया है दलितों का अपमान। नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग तो चिराग पासवान ने किया इसे खारिज। दोनों ने एक दूसरे की इस्तीफे की मांग की।

0: राहत की चौथी खेप। न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम को संबोधित किया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुटे हुए लोगों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने एकता भारतीय संस्कृति विश्व कल्याण का संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत विविधता में एकता और मानवता को एक सूत्र में जोड़ने की जरूरत पर भी अपनी बात रखी। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान आपसी सहयोग सद्भाव और एकजुटता में है।
1: सस्टेन द ह्यूमैनिटी दे विल सस्टेन द एनवायरमेंट दे विल सस्टेन द सृष्टि द एग्जिस्टेंस दैट इज द गोल दैट इज द मॉडल ह्यूमन लाइफ आवर एंशंट ऋषिज हैड फोरसीन दैट क्रिएटेड अ होल नेशन फॉर दैट भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षाम् उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम् ओजश्च जातम् दि वेल मीनिंग ऋषिज विथ ए फीलिंग ऑफ वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड दे हैड द डिफिकल्ट पेनिस थ्रू दैट अवर नेशन वॉज क्रिएटेड नो नेशन इज ए जियोग्राफिकल पीस ऑफ लैंड ऑल नेशंस हैव अ डेस्टिनी टू फुलफिल This is the Bharat destiny. Let us awake as Bharatiyas to that destiny and fulfill our duties in our karma bhumi as well as our janma bhumi. If we do that, that will be a boon for the world struggling with all these problems and stumbling at every step. We have to give sustenance. We have to give some sort of support to this world. We have to go this way. And that is why we have come here and we have remembered the Raksha Bandhan, we have tied the Rakhi and also we are saying united in oneness and what? I cannot hear you. That is the third line. You omitted the second line. Don't omit the second line. United in oneness and decorated by the diversity.
0: संघ प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं और वहां वो वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि भले ही धर्म अलग अलग हों लेकिन इंसानियत तो मानवता एक ही है, सत्य एक है, इंसानियत उसी सत्य का परिणाम है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुत्व ये नहीं है कि मुसलमानों को भारत से बाहर कर दो। अगर कोई हिंदू इस तरह की सोच रखता है, ये सोचता है तो भारत में मुसलमान नहीं होनी चाहिए, तो हो सकता है कि वो हिंदू ही न हो।
1: In 2018 in Delhi, I had a lecture and Muslim brothers were also there and they asked me the question, you are a Hindu organization, you say Hindu Rashtra, what about us Muslims? Would you drive us out? I said, no, that is not Hindutva. If any Hindu thinks that there should be no Muslim in Bharat, he will not remain Hindu. If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
0: संघ प्रमुख मोहन भागवत न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर कार्यक्रम को लेकर भारत में सियासी महाभारत छिड़ चुकी है। सियासी दलों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या किसने कहा है इस बारे में, सुनिए।
2: देखिए, मोहन भागवत पूरी तरीके से बीजेपी के माउथपीस हो गए हैं और आरएसएस मतलब कुछ नहीं रह गया, अब सब बीजेपी और मोदी के साथ हो गया है। तो मुझे लगता है वहां जाकर भी बड़ाई करेंगे मोदी की और तारीफ करेंगे। तो मुझे जहां तक वहाँ पर मेरी जानकारी में है कि बहुत अच्छा निर्णय लोगों ने किया और मोहन भागवत को कहीं पर भी स्थान इनको नहीं मिलना चाहिए।
3: अरे आप वो सवाल पूछ लीजिए, यूनाइटेड स्टेट रिलीजियस फ्रीडम का भी तो एक रिपोर्ट आया है आरएसएस के बारे में, भारत सरकार क्या बोलेगी उसके ऊपर? अब जोरान ममदानी को अपनी बात रखने का अख्तियार है और हम थोड़ी उसके स्पोक्स पर्सन है। मोहन भगवत जा सकते हैं और तेलंगाना का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अमेरिका नहीं जा सकता है, ये क्या बात है बताइए। आरएसएस तो उनकी आइडियोलॉजी तो साफ है।
4: कौन है मोहन भागवत? कोई व्यक्ति है? कोई विचारधारा है? कौन है जिनके ऊपर भारत सरकार इतना ज्यादा खर्चा कर रही है? कहीं ना कहीं भारत के गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि जेड प्लस की सिक्योरिटी, जिसमें कम से कम 30 से 35 या 40 के ऊपर हमारे पुलिस के जवान लगते हैं, कई गाड़ियां लगती हैं, सैकड़ों का काफिला चलता है, वो एक व्यक्ति के पीछे क्यों खर्च किया जा रहा है? हम ऐसे किसी भी व्यक्ति, किसी भी सोच को जो भारत के खिलाफ उपजी है, जो भारत के संविधान को नहीं मानती है, हम उसको कतई नहीं मानते।
5: अभी संघ की शाखा में गए हो? आपने कभी देश के लिए त्यागपूर्ण समर्पित जीवन परिवार को छोड़ के देश को ही अपना परिवार मान करके जीने वाले स्वयंसेवक से मिले हो? एयर कंडीशन कमरे में बैठकर अपने विचार कहना, जमी पर जाकर के तुमको देखना होगा संघ क्या है, तब पता चलेगा ममदानी को। इसके लिए ऐसे छुटपुट विरोध करने वाले होते हैं इस दुनिया में, पर संघ का काम और आदरणीय सरसंघचालक जी के विचार प्रखरता के साथ समूचे विश्व में जा रहे हैं और आगे भी भविष्य में जाएंगे।
0: नेपाल त्रासदी पर आज तक की कवरेज लगातार जारी है, जहां ग्राउंड जीरो से आज तक आपको हर हालात से रूबरू करा रहा है। आज तक की अलग अलग टीमें अलग अलग हिस्सों से त्रासदी के दंश को दिखाने की कोशिश कर रही हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। नेपाल के नोवाकोट से एक खास रिपोर्ट देखिए।
6: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
7: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए, त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी, ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहाँ पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
6: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
8: मैंने देखा कि वहां से वो पुल से बाढ़ आ गया, तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए, तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्टनर, पर वे उधर चले गए।
7: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा आता वो दिख रहा था?
8: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो इसने क्या आते ना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई हाई हाई करके।
7: अच्छा अच्छा,
8: तो ऐसा चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
7: सबसे जरूरी था भागना,
8: तेज, वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
9: देखा सामने,
8: हाँ नहीं ऐसे करके वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
9: आपने बचा लिया। हाँ,
6: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल दी।
10: जो हल्का इधर हुआ है जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
9: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
10: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का उस और साइड में है ना वही मेरा घर है।
9: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
10: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
9: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था। ये सब घर यहाँ पे तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
10: हाँ जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है वो भी मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे एक सिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था। बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं।
9: किसी का काम बचा ना घर बचा,
10: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा। बस आदमी बच गए ना वही हम लोग के लिए बहुत काफी। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए ना वही काफी है।
6: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की तलाश कर रहे हैं।
11: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी एक दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
9: कहाँ रह रहे थे
11: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
9: अच्छा।
11: क्या कहता हूँ मैं,
9: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे। तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
11: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है। हाँ। और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
9: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
11: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
9: कितने साल की है
11: ये बच्ची? दो साल की है।
9: दो साल की बच्ची।
11: जी, ये दीदी हुई। हाँ। ये भांजी है, ये भी भांजी है।
9: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
11: नहीं मिल पा रहे हैं।
9: आप हर जगह जाके बस
11: ढूंढ रहे हैं?
6: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
9: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी है वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
6: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
12: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का 15-20 25 जना गेस्ट का।

0: ये रास्ता हो गया,
1: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
0: हाँ,
1: कैसा डरावना था?
0: बहुत एकदम डरावना था, बहुत।
1: नुकसान कितना हो गया आपको?
0: नुकसान था उधर, वो 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना, अब सरकार ने उसको
1: जान किसी की नहीं गई।
0: चार पांच मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शटर लगाने के भी मौका न मिला।
1: यही रास्ता था,
0: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ पांच जना थे, पांच आदमी थे, और मेरा बेटा उधर काम करता थे, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
2: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
1: यहीं पर रहते हैं आप?
3: जी, यहीं पर रहते हैं।
1: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
3: बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है, खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
1: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
3: डेवलपमेंट विकास बैंक,
1: हाँ, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
3: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था, लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
1: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
3: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
1: क्या परिवर्तन हुआ है?
3: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
1: हाँ।
3: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
1: ये खेत था,
3: खेत था इसके पछाड़ी।
1: अच्छा।
3: इस साइड में पूरे घर था, यहाँ पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
1: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
3: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
2: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
4: ऊपर छत में है,
1: छत में फंसा हुआ है कुत्ता, मुर्गा,
4: ये 40-50 है,
1: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है,
4: दो आया और उधर है।
1: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
4: ऊपर से निकाला, अभी
1: दो था,
4: एक किधर गया मालूम नहीं,
1: एक एकदम ऊपर। बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा?
4: खाना नहीं मिला।
1: यही जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका क्या नाम है इसका?
4: स्वीटी।
1: स्वीटी नाम है। स्वीटी, आ गई तुम वापस?
4: खराब हुआ।
2: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
5: नेपाल में हुई तबाही से कई इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। जहां घर मकान थे वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा है। कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जो अब सिर्फ कागजों पर बचे हैं, नामो निशान मिट चुका है।
6: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी, इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
7: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हो शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है, और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
6: नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है।
8: ढोंगे के

0: बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
1: ढूंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए कि कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया। लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थे, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं नहीं जाया जा सकते। देखिए जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ ये देखिए पूरा दलदल है, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते। इन इलाकों में देखिए यहाँ से निकलना जो है ना ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
0: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं। एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
1: तो ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है, और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ वो बता रही हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
0: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढूंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है। यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
1: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है। ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया, क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट, और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी, लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है, उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिसका स्तर बढ़ा था वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा। लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है, जिसका बहाव लगभग इतना ही है, वो भी तब जब बरसात हो रही है, वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
0: ढूंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहाँ से बच निकले थे अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
1: आपका घर कहाँ पर है? अच्छा ऊपर की तरफ।
2: थैंक यू
1: वाला। आप अच्छा आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
2: पूरा डूब जाए।
1: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
2: हाँ देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उपहार के, ऐसा मार के, सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है समझ गया, उसके बाद हम ऊपर गए।
1: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है, और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए महिलाएं बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रही हैं? देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने की पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे ना जाए।
0: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
3: और अब बात करेंगे ममता बनर्जी की, क्योंकि कैथेड्रल रोड पर टीएमसी की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। और आरोप यह है कि हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए टीएमसी की बैठक आयोजित की गई थी। कोर्ट ने सड़क से सिर्फ एक हिस्से पर रैली करने की परमिशन दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों ही हिस्सों को घेर लिया था और तय समय के बाद भी यह कार्यक्रम चलता रहा।
4: देखिए, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है, तो हम लोग पूरा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का अदालत को भी सम्मान तो करना चाहिए। हम लोग कोशिश किया पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर को मानने के लिए, लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई चला आएगा वो तो पुलिस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। वो ममता बनर्जी का खिलाफ एफआईआर का कोई वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
5: देखिए, ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो अभी भी मुख्यमंत्री है, वो न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर है, उनके ऊपर कोर्ट के किसी आदेश का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ममता जी, कानून का शासन चल रहा है बंगाल में, भारत के संविधान का शासन चल रहा है बंगाल में, बंगाल में डबल इंजन की ग्रोथ का शासन चल रहा है, परफॉर्मेंस की गारंटी का शासन चल रहा है। वो आपके भतीजे को बढ़ाने वाला कट मनी रंगदारी वाला शासन खत्म हो चुका है।
3: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

कौन से कर्म आपके घर में अशुभता ला रहे हैं? आपकी कौन सी आदतों से आपका घर अशुभ हो रहा है? क्या करें उपाय कि घर में शुभता और पवित्रता आ जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुस्लिमों को बाहर करना नहीं। उज्बेकिस्तान के दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से की मुलाकात, दो दिन बाद बिश्केक के एससीओ समिट में होंगे शामिल। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, होगा हमेशा कांग्रेस ने किया है दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग तो चिराग पासवान ने किया इसे खारिज, दोनों ने एक दूसरे की इस्तीफे की मांग की। और नेपाल आपदा में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 670 से ज्यादा शव बरामद, करीब 2500 लोग लापता, भारत ने देर रात काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप।

का आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जीवन में अशुभता आए, घर में अशुभता आए, परेशानियां आए, इसके लिए हर बार आपके ग्रह जिम्मेदार नहीं होते। बहुत बार आपके कर्म ऐसे होते हैं, आपकी आदतें ऐसी होती हैं जो आपके घर में और जीवन में अशुभता ले आती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके किन कर्मों से आपके जीवन में अशुभता आ रही है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, सुबह 9:36 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, सामान्यतः हम ये समझते हैं कि हमारे ग्रह, हमारे नक्षत्र हमारे जीवन में शुभता और अशुभता पैदा करते हैं। क्या हमारे कर्मों से, हमारे एक्शंस से जीवन में शुभता अशुभता पैदा होती है? देखिए, हमारे आज के कर्म ही भविष्य में हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इन कर्मों से शुभ और अशुभ तरंगे पैदा होती हैं और ये तरंगे इकट्ठा होकर आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारी जो छोटी छोटी आदतें हैं ये हमारे घर को शुभ या अशुभ बना देती हैं, घर में शुभता या अशुभता लाती हैं। यानी आपके कर्मों से आपके जीवन में शुभता और अशुभता दोनों पैदा हो सकती है, और चूंकि आपके जीवन में पैदा हो सकती है इसलिए जहां आप रहते हैं आपके घर में भी शुभता अशुभता पैदा हो जाती है। देखिए, आपके छोटे छोटे कार्यों से, आपकी छोटी छोटी गलतियों से घर में अशुभता पैदा होती है। कौन से काम हैं? गंदे जूते चप्पल जो बाहर से पहन कर आए हैं उसी को पहनकर घर में घूम रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, तो ये नकारात्मक तरंगे अपने साथ लाएगा और इसका प्रभाव घर पर पड़ेगा। घर में गंदे कपड़े अगर आप इकट्ठा करके रखते हैं, उनकी साफ सफाई नहीं करते, घर में गंदे कपड़े जमा करते जाते हैं, तो इससे भी घर में अशुभता आती है। घर के बाथरूम को साफ सुथरा नहीं रखते, घर के बाथरूम में बदबू आती है, गंदगी रहती है, तो इससे भी घर में अशुभता पैदा होती है।
घर की महत्वपूर्ण चीजों को, किताबों को, तो इससे भी आपके घर में अशुभता पैदा होती है। अगर आप अपने घर में किसी भी समय पूजा नहीं करते, पूजा स्थान को गंदा रखते हैं, पूजा स्थान की पवित्रता मेंटेन नहीं करते, तो घर में सबसे ज्यादा अशुभता इससे पैदा होती है। घर में मांस मदिरा का सेवन करते हैं, घर में झगड़े लड़ाई करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, घर का माहौल पवित्र नहीं रखते। अगर आप घर का माहौल पवित्र नहीं रखेंगे तो आपके घर में अशुभता पैदा होगी। आपके कर्मों और अशुभता पर बात हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, वाद विवाद से सावधान रहें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

करेंगे, शुभ समाचार मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो आपके बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो आपके घर में अशुभता लाते हैं। आपके खान पान की किन आदतों से घर में अशुभता आती है? अगर आप घर में घूम घूम कर खाना खाते हैं, कभी ड्राइंग रूम में, कभी डाइनिंग टेबल पर, कभी बेड पर, यानी एक जगह शांति से बैठकर खाना नहीं खाते, तो हर जगह की तरंगे डिस्टर्ब होंगी और घर में अशुभता पैदा होगी। मांसाहार के लिए और शाकाहार के लिए एक ही बर्तन का प्रयोग करते हैं, एक ही बर्तन में पकाते हैं और उसी से खाते हैं, तो इससे पवित्रता नष्ट होगी और अशुभता पैदा होगी। घर में जूठे बर्तन इधर उधर छोड़ने से, जूठा गिलास कहीं छोड़ दिया, पढ़ने की मेज पर जूठा प्लेट छोड़ दिया, खाना खा के थाली मेज पर ही छोड़ दी, घर में जूठे बर्तन इधर उधर छोड़ना भी अच्छा नहीं है, अशुभता पैदा होती है। अगर आपके घर में भोजन की बर्बादी होती है, खाना फिकता है या खाना कूड़े में फेंका जाता है, तो ये बहुत ज्यादा अशुभता पैदा करता है और इस चक्कर में जीवन में अशुभता आती है। और खाना बर्बाद करने से, खाना कूड़े में डालने से बीमारियां आती हैं, घर में बीमारियां फैलती हैं, अशुभता बढ़ती है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति बेहतर रहेगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा
गुलाबी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रंजीता जी ने हमें लिखा है और रंजीता जी भोपाल से मेल लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म तारीख है 27 मार्च 2000, जन्म का समय सुबह के 7:25, जन्म स्थान है भोपाल। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्या मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिल सकेगी? रंजीता जी, आपके पुत्र की कुंडली में अगर ये शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, बैंक या फाइनेंस में, ऐसे क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करें तो निश्चित रूप से इनको गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकेगी। और अभी इनकी उम्र 26 साल हुई है, साल 2027 और 28 बहुत अच्छा है। शिक्षा, बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ऐसे क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे। एक इनको पन्ना बनवा के पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करवाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आपके खान पान की आदतों से आपके घर में अशुभता आती है, आपके व्यवहार में कुछ ऐसी गड़बड़ियां होती हैं जिसकी वजह से घर में अशुभता आ जाती है। क्या है? घर में चीखना चिल्लाना। अगर आप घर में बिना वजह के चीखते हैं, बिना वजह के चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, घर की तरंगे खराब होंगी और घर में अशुभता आएगी। अगर आप अपने घर में बड़ों का सम्मान नहीं करते, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, नकारात्मक तरंगे आपके जीवन में आएंगी, आप खुद भी परेशान होंगे और घर में अशुभता बढ़ेगी। अगर आप घर की महिलाओं के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते, उनको परेशान करते हैं, अपमानित और प्रताड़ित करते हैं, तो आपके जीवन में दरिद्रता आएगी, आप स्वयं दरिद्र होंगे और आपके घर में अशुभता इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि धीरे धीरे करके दरिद्रता आपके जीवन में आ जाएगी। बहुत सारे माता पिता या लोग होते हैं जो अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालते हैं, बच्चों को बेवजह मारते पीटते हैं। अगर आप परेशान हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को मारेंगे पीटेंगे या बच्चा गलती करेगा तो उसे पीट डालेंगे, ऐसा मत करिए। छोटा अबोध बच्चा है, बच्चों को मारना पीटना बहुत पाप देता है, मत करिए। और बच्चों को अगर मारेंगे पीटेंगे तो ऐसा करने से बच्चों की मानसिक स्थिति भी खराब होगी, आपकी मानसिक स्थिति भी खराब होगी और घर में अशुभता पैदा होगी। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, नौकरी में कुछ बदलाव होगा,
धन प्राप्त करने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, पड़ोसियों से समस्या हो सकती है। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। अब आप ऐसे कौन से काम अपने घर में करें जिन कामों से आपके घर में शुभता आए, शुभ तरंगे फैलें और घर में पहुंचते ही आप एकदम प्रसन्न हो जाएं, आपकी चिंताएं दूर हो जाएं, आपका घर इतना शुभ हो जाए। घर में दोनों समय चाहे 5 मिनट, थोड़े ही समय पूजा उपासना जरूर करिए। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को पूजा स्थान पर धूप बत्ती जलाइए, भगवान को प्रणाम करिए और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हिंदू परंपरा में हनुमान चालीसा, ये आप सुबह शाम एक एक बार पढ़िए, ये सब हम बचपन से जानते हैं। तो सुबह शाम दोनों समय घर में पूजा उपासना जरूर करिए। जितना संभव हो सके घर में यथाशक्ति साफ सफाई रखिए, घर में सफाई मेंटेन रखिए, घर में गंदगी मत फैलाइए। घर में पानी की बर्बादी बिल्कुल मत करिए, कपड़ा धोने में, खाना बनाने में, नहाने में पानी की बर्बादी ना करें। घर में शांत तरीके से बात करें, आराम से बात कहें, चीख चिल्लाकर अपनी बात कहना या चीखना चिल्लाना उचित नहीं होगा। सप्ताह में एक बार अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन करें, सुंदर कांड का पाठ कर लें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें या घर के सब लोग मिलकर संध्या में एक बार आरती नियमित रूप से करें। शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से लोगों की आयु बेहतर होगी, लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा होगी। अपने घर में एक सफेद गाय और बछड़े की मूर्ति या एक सफेद हाथी की मूर्ति या उसका चित्र अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वैसे नियम ये कहता है कि सफेद रंग की गाय और बछड़ा इसकी मूर्ति रखें या 2 सफेद हाथी आमने सामने करके अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया में या अपने पूजा स्थान पर रखिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।

ये धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन आज दौड़ भाग काफी बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आस।

समाप्त होंगी। धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि महाभारत की पुस्तक घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप महाभारत की पुस्तक घर में रखेंगे तो इससे घर में महाभारत होगी, झगड़े लड़ाई होंगे। क्या ऐसा है? देखिए, भारत में महाभारत से ज्यादा अनूठा कोई ग्रंथ ही नहीं है। आध्यात्म से लेकर मानव जीवन तक, राजनीति से लेके सरलता तक, सारा ज्ञान महाभारत में बिखरा हुआ है। महाभारत की पुस्तक कोई भी अपने घर में रख सकता है और कोई भी पढ़ सकता है। महाभारत की पुस्तक रखने से घर में झगड़ा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो रामचरितमानस रखने से तो सबका जीवन सुखी हो जाना चाहिए था, क्योंकि रामचरितमानस तो आदर्श की पुस्तक है। तो रामचरितमानस अगर आप अपने घर में रख के पूरी तरह से सुखी नहीं होते तो महाभारत रखने से आपके घर में युद्ध होगा, झगड़े होंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में बदलाव होगा। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, बेवजह के विवादों से बचाव करें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, किसी मांगलिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नंबर 9, करियर में सफलता मिलेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इसमें 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक@aajtak.com पर। अगला प्रश्न कविता शर्मा जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 नवंबर 1982। जन्म का समय शाम के 7:55। जन्म स्थान है भदोही, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके। कविता जी, सबसे पहले आप अपने खुद के क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। केवल आप ये सोचिए कि पति को ही बैलेंस किया जाए
तो ये सही नहीं है। आपको स्वयं भी अपने क्रोध और स्वभाव का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-13 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल चढ़ाकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि

राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए, चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज द्वितीया तिथि है, भाद्रपद में द्वितीया शून्य मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 675 के पार पहुंची, जबकि 2400 लोग अभी भी लापता। लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। भारत की ओर से नेपाल को लगातार राहत सामग्री मुहैया करवाई जा रही है और विदेश मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने बोटेकाशी और त्रिशूली इलाके में लोगों को बचाव दलों को सतर्क रहने के और सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी है, क्योंकि आगे और बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्राधिकरण ने नेपाल और तिब्बत में मिलकर 2426 लोगों के लापता होने की जानकारी दी। इसमें से 1924 लोग नेपाल से हैं, जबकि 554 लोग तिब्बत से। नेपाल की आपदा एजेंसी के मुताबिक 517 विदेशी नागरिक हैं, जिनमें पर्यटक और मजदूर भी शामिल हैं, लापता हैं। वहीं चीन ने अपनी तरफ से 260 विदेशियों के लापता होने की जानकारी दी है। सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले ग्योरोंग सीमा क्षेत्र में चीनी बचाव दल शुक्रवार को ही पहुंच गया था। 21 सदस्यों की टीम का खोजी अभियान जारी। सीमा क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज और पानी और मलबे का सैलाब इमारतों को बहाते हुए लोगों की जान बचाकर भागते हुए देखा गया। नेपाल के ऊपरी इलाकों में बनी दो बांध जैसी झीलों पर नजर है और अब कहा जा रहा है कि जब तक ये पूरी तरह खाली नहीं हो जाती है, खतरा ऐसे ही बना रहेगा। भारत ने नेपाल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए 11 टन राहत सामग्री की चौथी हित काठमांडू भेज दी है। भारतीय नागरिकों पर एमईए का नया अपडेट। भारत सरकार के मुताबिक अब तक नेपाल में 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया। पहले संपर्क से बाहर रहे करीब 50 भारतीय नागरिकों से दोबारा से संपर्क स्थापित किया गया। चीन के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। करीब 900 भारतीय नागरिक अभी चीन की तरफ मौजूद हैं और सुरक्षित संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों के बचाव और राहत अभियानों के लिए विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों से हेल्पलाइन जारी की गई। नेपाल की जरूरत के अनुसार भारत अतिरिक्त सहायता देने में जुटा हुआ है। इसमें बेली ब्रिज और उन्हें स्थापित करने वाली तकनीकी टीमें भी शामिल। ग्लेशियर टूटने के बाद बनी झील का पानी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। चीन के मुताबिक झील का क्षेत्रफल घटकर रह गया 99,000 वर्ग मीटर, करीब 21,000 वर्ग मीटर की कमी आई है। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 106 पर्यटकों की हुई है सुरक्षित वापसी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे पर्यटक। मुश्किल हालात के बीच भारतीय रेलवे ने संभाला है मोर्चा। 106 पर्यटकों के लिए रेलवे ने लगाया अतिरिक्त कोच। रेलवे ने स्पेशल इंतजाम की भी बात कही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पर्यटकों को नाश्ता पानी भी दिया गया। सरकारी मदद से पर्यटकों को घर वापसी आसान हुई। सकुशल लौटने पर पर्यटकों के परिजनों के चेहरों पर खुशी देखी गई। सरकार और रेलवे का किया गया शुक्रिया अदा। नेपाल से लौटे पर्यटकों ने बयां किया अपना अनुभव। नेपाल की त्रासदी के बीच दिखाई दी मदद की मिसाल भी। रेलवे ने बढ़ाया पर्यटकों का हौसला। चित्रकूट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही मंदाकिनी। बाढ़ प्रभावित एक दर्जन से ज्यादा गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चित्रकूट के गोबरिया गांव में जलभराव से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जरूरी सामान के साथ ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। एसडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे के बाढ़ में फंसे हुए 16 ग्रामीणों का सफल रेस्क्यू किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन मौजूद है। चित्रकूट के बहादुरपुर और तिरोहा गांव में भर गया बाढ़ का पानी। एसडीआरएफ ने 3 गांव में 161 लोगों को बचाया। लोगों को बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। बोट और नाव के साथ साथ दिन रात राहत और बचाव का काम जारी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की जय के नारों के साथ गर्मजोशी से स्वागत। भारतीय

की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की कलाई पर राखी बांधी। प्रधानमंत्री के सम्मान में पारंपरिक गीत संगीत और नृत्य का आयोजन। उज्बेकिस्तान के सबसे मशहूर यांगी उज्बेकिस्तान पार्क पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। स्मारक स्तंभ के बाहर प्रधानमंत्री ने तस्वीरें भी खिंचवाई। ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में तिरंगे से रोशन हुआ होटल। भगवा सफेद और हरे रंग से जगमग नजर आई इमारत। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक। उज्बेकिस्तान योग फेडरेशन में योग कार्यक्रम में शिरकत करें। अमेरिका के न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा भारत के डीएनए में विविधता में एकता है। कई भाषाएं धर्म और जीवन शैली है फिर भी एकता है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि हर देश का मकसद एक और नियति है। भारत की नियति दुनिया को ये एहसास कराना है कि हम सब एक हैं। मोहन भागवत ने प्रवासी भारतीयों से कहा है कि अपनी कर्मभूमि के लिए काम करें, भारत के मूल्यों को नहीं भूलें, उन्हें अपनाएं। उन्होंने कहा कि हर चीज के लिए किसी का ऋण जरूर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मोहन भागवत ने धर्मगुरुओं के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखने और उन्होंने कहा कि कोई क्या सोचता है, भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो हिंदू नहीं है। दुनिया भर के धर्मगुरुओं के बीच अपनी बात रखते हुए आरएसएस प्रमुख ने साफ किया कि हिंदू होने की पहली शर्त है ये मानना कि सभी धर्मों का रास्ता एक ही ईश्वर तक जाता है। योगी ने राजस्व न्यायालय में लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने और तारीख पर तारीख की प्रवृत्ति को खत्म करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने जन शिकायतों के वास्तविक समाधान, कानून व्यवस्था की समीक्षा और राहत कार्यों में सतर्कता बरतने पर भी जोर दिया। वृंदावन में नया पुलिस सर्किल गठित किया गया और आवश्यक पुलिस बल की तैनाती करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ कहा गया कि मथुरा और वृंदावन के लिए अलग अलग संयुक्त मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कर्नाटक में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने पर मुद्दा उठाया। मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा गया। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपने लखनऊ दौरे के अंतिम दिन मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के दो कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आरक्षण के मुद्दे पर आपस में भिड़े, एक दूसरे का इस्तीफा मांगा। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए कहा कि चिराग को गरीबों के हितों की परवाह नहीं है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नए विवाद में फंसे स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना शो में बिहारी और कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाने का आरोप। बिहार के मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले अपमानजनक टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी विधायक राम कदम ने समय रैना पर विवादित बयान देकर मुफ्त में पब्लिसिटी हासिल करने के आरोप भी लगाए। कहा धर्म और समुदाय मजाक का विषय नहीं है। इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर पीस फोरम का भी तीखा रिएक्शन सामने आया। कहा बिहार कोई अपमानजनक शब्द नहीं है, कश्मीर कोई मजाक का विषय नहीं है। ग्रेटर नोएडा में 6 साल की मासूम की हत्या के मामले में आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ। बहरा फुसलाकर कमरे में ले जाने और शव लेकर बाहर आने वाला वीडियो वायरल हुआ था। लखनऊ के जेपी इंटरनेशनल सेंटर पर आरपार। सीएम योगी बोले सैफई सिंडिकेट ने 200 करोड़ का काम 800 करोड़ में भी नहीं किया पूरा। अखिलेश यादव ने लगाया था बेचने का आरोप। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन के आरोप में टीएमसी छात्र परिषद के स्थापना दिवस रैली में रास्ता रोकने के आरोप। महिला टी20 एशिया कप में आज थाईलैंड से होगा भारतीय टीम का मुकाबला। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में जीत के साथ टूर्नामेंट में आगाज करने उतरेगी टीम इंडिया। भारत ने अब तक 9 में से 7 बार जीता है एशिया कप। ग्रेटर नोएडा में मिशन शक्ति सेट कार्यक्रम का समापन। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने की शिरकत। दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित फिल्म इंडिया एक्सपो में पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। कहा सिनेमा में समाज को नई दिशा देने की ताकत। कानपुर में दिल के मरीजों के लिए कार्डियोलॉजी समेत डॉक्टर अशोक सेठ समेत विशेषज्ञों ने कम नींद को बताया है हार्ट डिजीज का सबसे बड़ा कारण। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 से पहले योगेश शर्मा होंगे नए राष्ट्रीय सलाहकार। ब्रिक्स सीसीसीआई चेयरमैन ने शुभकामनाएं दी। केरलम के त्रिशूर में भव्य समारोह में ओणम उत्सव का समापन हुआ। त्रिशूर राउंड में कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य पुलिकली के जरिए बिखेरे रहे। अमरावती अस्पताल में अग्निकांड पर चित्रावाग का बड़ा आरोप। अपराधियों पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाए। जलगांव में रक्षाबंधन के दिन युवक की मौत

बहन ने राखी बंधवाने के बाद बड़ा कदम उठाया। नागपुर में वाइन शॉप में चोरी हुई, 60,000 रुपए लेकर फरार हुए 3 चोर। जाला में बटन गोलियों के अंतर

0: सिंह अंकित बालियान हत्याकांड, 5 दिन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं। पत्नी की सीएम योगी से भावुक अपील। नागपुर में देव व्यापार में कथित अड्डे पर छापा, 3 युवतियों का रेस्क्यू, 1 आरोपी गिरफ्तार। संभल में पीएसी की जमीन पर बनी मजार पर चला बुलडोजर, 407 बीघा जमीन को मुक्त करवाया गया। नागौर में रक्षाबंधन पर खूनी वारदात, बहन की को प्रेमी संग देखकर भड़क गया था भाई, युवक की पीट पीट कर हत्या। नागौर में 23 करोड़ का फर्जी गोल्ड लोन घोटाला, मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया, 152 खातों में गड़बड़। इंदौर में चौकीदार की कार से कुचल कर हत्या, प्रेमी प्रेमिका गिरफ्तार, सड़क हादसे के पीछे निकली हत्या की साजिश। नोएडा के चिजारसी में 13 अवैध बिजली कनेक्शन पाए गए, विभाग का एक्शन शुरू। सोनभद्र में पति की हत्या का खुलासा, पति ने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची, 4 की गिरफ्तारी। रेवाड़ी में पत्नी को छूने पर दोस्त की हत्या, शराब पार्टी में चाकू से कई बार वार किया, आरोपी गिरफ्तार। 1 तारीख पर रिलीज होगी किंग नाम की 2 फिल्में, बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान से भिड़ेंगे मेगा स्टार नागार्जुन। मेकर्स ने नागार्जुन के 67वें बर्थडे पर टाइटल और पहली झलक को रिवील किया, फिल्म का टाइटल किंग 100 रखा गया है, 24 दिसंबर को फिल्म रिलीज। दिल्ली हॉरर कॉमेडी एंड एडवेंचर वेब सीरीज अली बाबा और 40 भूत ओटीटी पर जल्द देगी दस्तक, 11 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जाएगी। दृश्यम 3 पर फिर से विजय सलगांवकर बनेंगे अजय देवगन, नए पोस्टर में बढ़ाया गया सस्पेंस, चेहरे पर दिखाई दिया तनाव, फिल्म 2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। डॉक्टर शिवा राजकुमार का नया अवतार नजर आए, ओरिजिनल मॉन्स्टर्स का मोशन पोस्टर आउट हुआ, दमदार लुक ने बढ़ाई है एक्साइटमेंट। शिव राजकुमार की बेल टीजर ने मचाया धमाल, पुलिस ऑफिसर की दमदार भूमिका में शिव राजकुमार, टीजर रिलीज के बाद बढ़ा फिल्म का क्रेज। अपकमिंग फिल्म द पैराडाइज का दूसरा गाना यश नागुला रिलीज हुआ, नानी और कीर्ति सुरेश की जोड़ी ने एक बार फिर से मचाया है धमाल। एलएस में हुआ है यश नागुला सॉन्ग की शानदार लॉन्चिंग, अनिरुद्ध रविचंद्र के साथ स्टेज पर नानी की धमाकेदार एंट्री। बांग्ला फिल्म डॉक्टर काकू का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया गया, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर खासा संदेश। एक्टर अनुपम खेर ने शेयर किया भावुक वीडियो, आज में जीना चाहिए सिर्फ मुहावरा नहीं है, हाल के हादसों ने जिंदगी की सच्चाई को एहसास करवा दिया है। लगातार 3rd दिन रूस ने कीव समेत कई शहरों पर ड्रोन से हमले किए हैं, रूसी हमलों की वजह से कीव के पास बुचा जिले में 37 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि हथियार डिपो पर हमला हुआ है, यूक्रेन के ओडिसा इलाके में भी हमला किया गया, 1 शख्स की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए। रूसी सरकार ने यूरोपीय यूनियन को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा रूस और यूरोपीय यूनियन के रिश्तों में सुधार की नहीं दिखाई दे रही है कोई भी संभावना। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने दिया राष्ट्र के नाम संदेश, का राष्ट्र एकता को कमजोर करने वाली किसी भी कार्रवाई पर लगनी चाहिए रोक। उज्बेकिस्तान के दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री, उज्बेकिस्तान के बाद किर्गिस्तान जाएंगे प्रधानमंत्री, राजधानी बिश्केक में होने वाली 26वें एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। निजेर की राजधानी नियामे में राष्ट्रपति निवास के पास भीषण गोलीबारी, ड्योरी हिमानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में सैनिकों के एक गुट ने जमकर चलाई गोलियां। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को स्थित अपने आधिकारिक आवास पर बेलारूस से राष्ट्रपति से मुलाकात की, रणनीतिक साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर चर्चा। वेस्ट बैंक के कुसरा गांव में फिलिस्तीनियों पर फिर से इजरायली सेटलर्स का हमला, इजरायली सेना ने मौके पर पहुंचकर किया बचाव। सिडनी में सैकड़ों लोगों ने नेपाल त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, नेपाल तिब्बत और ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न समुदायों से आए लोगों ने मार्टिन प्लेस पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुख जताया, इसे बड़ी क्षति बताते हुए कहा वो देश से बहुत प्यार करते थे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बहुत टायर्ड हो गई।
1: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
2: लायन डेट नट बाइट्स।
3: एक को एक
4: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा. अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया.
2: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी.
1: असली शहद, असली स्वाद.
3: आगे आगे,
4: अरे उधर
3: उधर, करेक्ट करेक्ट.
5: मिल गया. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
3: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
4: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। तरीकी एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: ओह सॉरी।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: भले ही हल्द्वानी में खरगे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में FIR दर्ज करने की मांग की।
2: जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, RSS के लोगों ने शुद्धिकरण किया है, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ FIR SC एक्ट में FIR दर्ज किया।
1: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं। दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
3: अगर कोई कई जगह, वेदर इट इज दिस स्टेट और दैट स्टेट, अगर हो रहा है तो उसको ठीक करना हमारा सबका जिम्मेदारी है, लेकिन इसको बहाना बना के ड्रामा करने के लिए उधर जाते हैं तो लोग सबक सिखा है, आगे भी सिखा देंगे।
4: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना, आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिनाए, अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रही, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रही, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
1: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही है।
5: कांग्रेस जिस तरह से अफवाह फैलाने का काम कर रही है और दलित समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है कि वहां पर हल्द्वानी में रामला ग्राउंड में शुद्धिकरण किया गया है और जब खड़गे जी दलित समाज से आते हैं उनका अपमान हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी मनसा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपने आप से अलग करती है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी संस्था के माध्यम से वहां हवन किया गया, शुद्धिकरण किया गया तो उनका काम है, किंतु इस तरह का भ्रम फैलाना ठीक नहीं है।
1: युवा, महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक। बोले हिंदुत्व का मतलब मुस्लिमों को बाहर करना नहीं। उज्बेकिस्तान के दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से की मुलाकात, दो दिन बाद बिश्केक के एससीओ समिट में होंगे शामिल। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया है दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मामला उठाया था। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन माझी के वर्गी

0: नेपाल एक भीषण त्रासदी से जूझ रहा है और मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और यह विशेष बुलेटिन सीधे त्रासदी ग्रस्त नेपाल के ग्राउंड जीरो से बटार में, जहां मैं हूं। मेरे ठीक पीछे बटकोशी ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा और बटार से मैं आप सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं। और बड़ी खबर ये कि एक तरफ जहां राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, वहीं ठीक प्रलय लाने वाली इस बटकोशी का स्तर एक बार फिर बढ़ चुका है। तो प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि जो नुआकोट से लेकर के रसुआ तक का पूरा इलाका है, वहां पर जो है इस नदी ने तबाही मचाई है। और इसके पहले मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूं कि कैसे ये नदी जो लाइफ लाइन थी इस इलाके की, उसका जलस्तर इस कदर बढ़ा है कि उसके बाद अब यहाँ मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है, जिससे राहत बचाव कार्य में न सिर्फ मुश्किलें आती हैं बल्कि दिक्कत इस बात की। ये देखिए, इसी के साथ साथ आप बटार की वो तस्वीरें भी देख रहे हैं जहाँ पर सोलर प्लांट था वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और इसी के साथ ये पहाड़ी वो इलाका जहाँ से तिब्बत की सीमा से रुसवा से होते हुए जो पानी है वो अपने साथ आता है। लेकिन चिंता की बात ये कि इस समय इस नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जो खतरे के निशान से तो नीचे है, लेकिन लगभग सुबह के 3 बजे के बाद से नदी की ये भीषण आवाज, पानी के प्रवाह की आवाज डराने वाली है। और इसी को लेकर के प्रशासन की ओर से ये चिंता भी जताई गई है कि लोग इन किनारों से किनारे हट जाएं, खासकर राहत बचाव कार्य एजेंसी जो है नुआकोट से आगे, ढूंगे ढूंगे से आगे, त्रिशूली, इन तमाम इलाकों में जो लोग नदी के किनारे हैं वहां से किनारे हो जाएं, क्योंकि खतरा टला नहीं है। सबसे पहले ताजा अपडेट के लिए काठमांडू लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी पंकज दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, खतरा टल नहीं रहा है, कल भी चेतावनी, आज भी चेतावनी, इस चेतावनी में बताया क्या गया पानी के बढ़ने की वजह को?
1: इसमें अचानक कल रात 3 बजे जो है इसमें ये बताया गया कि इसमें भोटेकोसी नदी का जलस्तर बहुत ही बढ़ गया है, इसलिए सभी को सतर्कता अपनानी चाहिए। लेकिन सुबह 7 बजे फिर से ये एक अपील जारी की गई कि जलस्तर उस तरह नहीं बढ़ा है, इसलिए जो राजमार्ग है उसको खोल दिया गया। कल रात से राजमार्ग को बंद कर दिया गया था, लेकिन सुबह राजमार्ग खोल दिया गया। 1 घंटे बाद यानी कि नेपाली समय 8 बजे फिर से ये बताया गया कि त्रिशूली नदी और भोटे कोसी में जो है जलस्तर बढ़ रहा है, 3 मीटर ऊपर पानी का जलस्तर बढ़ गया, इसलिए सावधानी अपनानी चाहिए। खासकर जो रेस्क्यू में लगे हुए हैं, जो राहत उद्धार के काम में लगे हुए हैं, उन सभी से कहा गया है कि वो सतर्कता अपनाए और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। तो लगातार जो है नेपाल सरकार की तरफ से पल पल जिस तरह से बदल रहा है, इस तरह से लोगों को सचेत किया जा रहा है, सूचना दी जा रही है ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके।
0: जी पंकज, इसी के साथ साथ दरअसल जो चेतावनी जारी हुई, आप बने रहे हमारे साथ, हम सबसे पहले दर्शकों को वो ताजा अपडेट देते हैं। इसके पहले एक रिपोर्ट दिखा, आपको सीधे लाइव तस्वीरें भी दिखाते हैं कि कैसे भोटेकोसी का जो स्तर है वो इस कदर बढ़ी है। देखिए, ये वो नदी है, इसी को आगे त्रिशूली भी कहा जाता है और इसी नदी ने दरअसल आपदा फैलाई है। देखिए, इसका स्तर पूरी तरह से बढ़ चुका है और इसके आगे दरअसल एक सोलर प्लांट था, बटार की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और बटार के उस प्लांट में जिसको उसके पूरी तरह बर्बाद कर दिया, कई स्कूल, दुकान, मकान सब इसकी चपेट में आए। और ये पानी इतना डरावना, इसी के साथ आपको अंदाजा लगेगा कि ये मंजर कितना खौफनाक है। अब आपको बटार की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो इस आपदा की चपेट में आई थी, सोलर प्ले। देखिए, ये पूरा इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। सबसे पहले आपको बटार की एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
2: चुनौती दरअसल इस बात की है कि नदी के किनारे अगर प्रवाह इसी तरह से बढ़ता रहा, जैसे कि हम ये डरावना मंजर अब सुबह देख रहे हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पर राहत बचाव कार्य जो है अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तबाही जो है उसके निशान अभी भी ताज़ा है, राहत बचाव कार्य का 5वां दिन है। हालांकि मौसम इतना साफ जरूर है कि जो हेली ऑपरेशन है वो शुरू किया जा सकता है। इस बीच प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश ये की जा रही है कि आगे यानी बेतरावती से उसके आगे का जो रास्ता है सड़क मार्ग से उसे खोला जाए, ढूंगे से बेतरावती के रास्ते को खोला जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉजिस्टिक हैं वो सड़क मार्ग के जरिए पहुँचाया जा सके, क्योंकि लोग इन पॉकेट्स में जहाँ सुरक्षित हैं वहाँ रसद, खाना पीना और आवश्यक मदद पहुँचाई जा सके। बटार में नेपाल पे ग्राउंड जीरो से मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
0: इस त्रासदी के चलते मरने वालों का आंकड़ा 675 पार कर रहा है, वहीं 2500 से ज्यादा लोग लापता हैं। लापता लोगों के लिए तलाश चल रही है, हर मिनट यहाँ से हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, क्योंकि इकलौता माध्यम है इन पहाड़ी रास्तों से, इस घाटी के बीच, इस वैली के बीच पतले रास्तों से सिर्फ हेलीकॉप्टर जा सकते हैं, क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरह से कट चुके हैं। 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, अब ड्रोन की मदद ली जा रही है, विशेषज्ञों की टीम यहाँ पर पहुंची है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए। मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 675 पार कर चुका है और ताजा अपडेट यानी हर दिन मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और जो लापता लोग हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। राहत बचाव कार्य एजेंसियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सबसे पहले बचा लिया जाए। जहां से भी सिग्नल मिल रहे हैं, जहां से भी डिस्ट्रेस कॉल आ रही है और जहां से भी जानकारी मिल रही है, सबसे पहले उनको बचा लिया जाए। पंकज दास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। पंकज, मरने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, हमने देखा कि प्रवाह के चलते जो निचले इलाके हैं वहां से ज्यादा लोगों के शव बरामद हुए हैं, अभी जो ताजा अपडेट है उसमें क्या संख्या में और बढ़ोतरी की आशंका सरकार जता रही है?
1: बिल्कुल, जो लेटेस्ट अपडेट सरकार की तरफ से कल देर रात को दिया गया, 726 शव बरामद किए गए हैं ऐसा बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है ये इन शवों की पहचान नहीं हो पा रही है। अब तक सिर्फ 24 लाशों की पहचान हो पाई है, जिनके जो परिवार रिश्तेदार है वो पहचान पाए हैं, बाकी 700 जो शव है उनकी पहचान नहीं हो पाई है। तो कल से ही सरकार ने इन शवों का जो व्यवस्थापन करना शुरू कर दिया, उनको जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया है। नेपाल के पास इस तरह का अभी फैसिलिटी नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में इतने बड़े पैमाने पर यदि शव बरामद हो रहा है तो रखने की कोई जगह नहीं है, इतना बड़ा नर्सरी नहीं होता है जहाँ पर कैसे शवों को रखा जा सके। तो आज दिन भर अब नहीं किया जाएगा, सरकार ने QR कोड जारी किया है, सभी को एक टैग नंबर दिया गया है और सभी का DNA लिया गया है। इंडिया से स्पेशली DNA फॉरेंसिक के टीम बुलाई गई है कल रात से ही, जो सभी शवों का DNA करके वो सुरक्षित रखेगी और शवों को गाड़ना शुरू कर दिया गया है। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी इन शवों के व्यवस्थापन को लेकर है।
0: बिल्कुल पंकज, और सोचिए कि जो नेपाल अपने आतिथ्य के लिए जाना जाता था, आप वहां लोगों के शव गिने जा रहे हैं, उनके लिए बारकोड जारी किया जा रहा है, विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है कि किसी तरह जो शव की वो पहचान हो, उनके DNA रखे जा रहे हैं इसलिए ताकि अपनों की तलाश में जो लोग आए कम से कम उनको पता तो चले कि उनके अपने कहां गए। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जो मुश्किलें हैं वो चिंता है जिंदगी बचाने के लिए, इसलिए नेपाल में बड़े पैमाने पर चल रही है ऑपरेशन जिंदगी।

0: पानी, मिट्टी और मलबे का सैलाब अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गया। कई घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए। कई गांवों का संपर्क टूट गया। नेपाल में फ्लैश फ्लड से तबाही जारी है। अब तक 675 से ज्यादा मौतें और 2400 से ज्यादा लोग लापता हैं। 15,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी रेस्क्यू में जुटे हैं। कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण राहत और बचाव का काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। नेपाल के मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों में फिर बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। कोशी, बागमती और गंडकी के पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। बाढ़ के बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में फंसे लोगों को निकालना बड़ी चुनौती है। त्रिशूली 3A, 3B और अपर त्रिशूली 1 में लोगों के फंसे होने की आशंका है। बाढ़ में 19 पुल बहने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। राहत सामग्री और जरूरी सामान पहुंचाना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। इसी बीच चीन नेपाल सीमा पर ग्लेशियर टूटने से बनी झील का क्षेत्रफल घटकर 99,000 वर्ग मीटर हो गया है। इसके बावजूद खतरा बरकरार है और 24 घंटे निगरानी जारी है। वहीं ग्लेशियर के नीचे 1,20,000 वर्ग मीटर से बड़ी दूसरी झील भी चिंता बढ़ा रही है। इसकी निगरानी ड्रोन और रडार से की जा रही है। नेपाल में इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। एक तरफ मलबे में अपनों की तलाश है, दूसरी तरफ सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने की चुनौती और अब मौसम भी नई मुश्किल पैदा कर सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: जब नेपाल को मदद की जरूरत है तो पूरी दुनिया ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं और ऐसे में भारत सबसे करीबी, सबसे विश्वसनीय दोस्त हर बार की तरह एक बार फिर नेपाल की मदद के लिए खड़ा है। लगातार एक के बाद एक एयरफोर्स के विमान भारी मदद लेकर के, उपकरण लेकर के, तकनीक सामान लेकर के और विशेषज्ञों को लेकर के पहुंच रहे हैं। ये मदद का सिलसिला जारी है। भारत ने कहा है कि वो इस मुसीबत के समय में नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है। लगातार बीती रात एयरपोर्ट से एक विमान पहुंचा है, उससे भी विशेषज्ञों की टीम पहुंची है और लगातार कई सारे उपकरणों की जरूरत, आपको याद हो इस टनल में जहां पर राहत बचाव कार्य किए जाने हैं वहां लोगों की जरूरत है और ऐसे में जो रेस्क्यू एफर्ट है उस रेस्क्यूअर्स को विशेष रेस्क्यू टीम एक्सपर्ट्स को भी भेजा गया है, उपकरणों को भेजा गया है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से लेकर के थर्मल स्कैनर, जिन तमाम लोगों चीजों की जरूरत पड़ सकती है वो सब कुछ भारत भेज रहा है और ऐसे में दुनिया के तमाम विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट हैं जिनको नेपाल ने न्योता दिया है वो सब पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे करीबी, सबसे पुराना दोस्त भारत इस मुश्किल के समय में नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है।
2: काठमांडू के रनवे पर लैंड करता भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा मालवाहक विमान इस बात का प्रमाण है कि जब विपदा आती है तो भारत फर्स्ट रिस्पोंडेंट बनकर आगे आता है। पड़ोसी देश नेपाल सदी की सबसे बड़ी त्रासदी की चपेट में है, ऐसे में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारतीय वायुसेना के विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ते हैं और नेपाल के काठमांडू में जरूरी सामग्री पहुंचाकर वापस आ जाते हैं और फिर अगली खेप की तैयारी में जुट जाते हैं। नेपाल सरकार ने साफ किया है कि तलाशी में मदद नहीं चाहिए, लेकिन बेली पुल बनाने और सुरंग में रेस्क्यू के लिए भारत से मदद मांगी गई है।
3: लोग चोरी रखता है वो हम कर रहे हैं, मेरे काम भी एक नागरिक को सुरक्षित करने की और वहाँ पर जो भी हो सकता है नेपाल पूरी अब जो सहायता प्रदान कर सकते हैं वो भी कर रहे
2: हैं। नेपाल ने सहायता मांगी तो भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर हिंडन से फिर उड़ा और एक्सपर्ट टीम को काठमांडू पहुंचा दिया। इसमें वो टीम शामिल है जो सुरंग में रेस्क्यू करने में माहिर है। ये टीम अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इसके अलावा 11 सदस्यीय मेडिकल टीम भी भारत ने नेपाल भेजी है।
1: आखिरकार नेपाल सरकार ने फैसला लिया है कि वो राहत बचाव कार्य में दुनिया भर की दक्ष जो देश है, टीम है रेस्क्यू ऑपरेशंस में, उनकी मदद लेगी। हालांकि इसके पहले नेपाल सेना ने कहा कि 2015 में हमने सबक लिया था कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी, बहुत सारी एजेंसियां थी, लेकिन अब जब आंतरिक मंत्रियों की बैठक हुई इसमें फैसला लिया गया कि उन देशों को जरूर एजेंसियों को यहां आने देना चाहिए जिनकी विशेषज्ञता है। ऐसे में भारत साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे वो देश हैं जिनके पास एनडीआरएफ, जैसे जैसे भारत के पास एनडीआरएफ है उसकी अपनी दक्षता है। इस समय नेपाल को इन विशेषज्ञों की जरूरत इसलिए है कि जिन टनल्स के अंदर जहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जहां नेपाल की सेना ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, इसके अलावा डीएनए हो, फॉरेंसिक हो, बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो, इन सब प्रक्रियाओं के लिए उसे विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी।
2: नेपाल के रसुआ नुआकोटी में हर तरफ तबाही का मंजर है। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत लगातार राहत और बचाव के लिए मदद भेज रहा है।
4: भारत से किस तरह की और किस किस लेवल पे असिस्टेंस की उम्मीद नेपाली कम्युनिटी इस वक्त लगातार बैठी है?
5: हम भारत सरकार के प्रति, विशेष करके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति भी आभारी है कि उन्होंने बहुत ही फास्ट जो है रिएक्ट किया है। ये हमारे साथ जो है संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए ही नहीं, हम लोगों के साथ जो है सहयोग के लिए भी, हाथ बढ़ाने के लिए भी भारत सरकार ने बहुत ही त्वरित किस्म से, बहुत ही फास्ट किस्म से एक्शन लिया है।
2: नेपाल की इस त्रासदी के बीच विदेशों में बसे नेपाली और भारतीय मूल के लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं ने नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि जुटाई। दक्षिण पूर्वी लंदन के प्लम स्टेट स्थित एक मंदिर में रक्षाबंधन कार्यक्रम को नेपाल के बाद पीड़ितों और बचाव अभियान के लिए फंड जुटाने से जोड़ा गया। यानी नेपाल की त्रासदी को लेकर मदद की मुहिम देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंच चुकी है। आज तक ब्यूरो।
1: यहाँ जो हेलीपैड है, हर दिन मैं सुबह परिवारों को आते हुए देखता हूँ, उनके अपने आते हैं, वो लिस्ट में नाम खोजते हैं कि कौन कौन बचकर वापस आया है। लेकिन ऐसे कई भारतीय परिवार हैं जो यहाँ तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उस खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने जो इन पहाड़ी इलाकों में निकले थे, अब उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिनका संपर्क हुआ वहां खुशी के आंसू हैं, जहां संपर्क नहीं हुआ वहां गम के आंसू हैं। लेकिन इंतजार करते हैं वो हर दिन एक खुशखबरी का कि आज एक फोन कॉल आएगा, उनके अपनों को बचा लिया गया है, जल्द वो भी घर लौटेंगे।
0: नेपाल आपदा ने सैकड़ों परिवारों को जीवन भर का दर्द दे दिया। इस आपदा में अभी भी लापता लोगों की खोजबीन जारी है। त्रासदी की चपेट में कई भारतीय परिवार भी आए हैं। इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो नेपाल में रोजी रोटी के लिए गए थे, कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका से आकर नेपाल घूमने गए थे। मध्य प्रदेश के विदिशा की रहने वाली और कनाडा के टोरंटो में रह रही इंजीनियर स्वाति बागरेचा कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान चीन तिब्बत सीमा के पास से लापता हो गई है। 26 अगस्त की सुबह 9 बजे परिवार से संपर्क टूट गया। स्वाति के मोबाइल पर अभी भी रिंग जा रही है, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर रही है। परिवार का कहना है कि नेपाल तिब्बत सीमा पर आई बाढ़ के दिन से ही स्वाति लापता है। मोबाइल की लोकेशन चीन बॉर्डर के आसपास आ रही है। परिजन ने संबंधित एजेंसियों से मोबाइल लोकेशन तकनीकी रूप से ट्रैक कर स्वाति की सही स्थिति का पता लगाने की मांग की है।
6: ये एक्चुअली वहां से निकली थी कैलाश से और वापस आ रही थी नेपाल के लिए, तो बीच में इमिग्रेशन सेंटर पड़ता है चाइना बॉर्डर पे, तो इमिग्रेशन सेंटर में थी ये, शायद ये सब लोग उस वक्त उसी में थे और उसी वक्त ये इंसिडेंस हुआ। तो पूरा पानी का इतना तेज बहाव था कि उसमें इतने तेज बहाव में हम किसी को नहीं मालूम पड़ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
7: आखिरी बार आपकी उनसे कब बात हुई?
6: नहीं, एक्चुअली बात तो टेलीफोन से हो नहीं पाती है, वो चाइना में है वो
7: जी।
6: तो मैसेज वगैरह नेट हंसी मैसेज आता है उसका बराबर रेगुलर, तो वो उसी दिन सीनियर सो उस दिन रात में मैसेज था 4:30 बजे, मतलब वहाँ का टाइम रहा होगा 7 बजे करीब का, कि हम निकल रहे हैं वहाँ पर इमिग्रेशन सेंटर जाके। और वो आज सुबह उसका यहाँ आने का था, विदिशा आने का
7: जी,
6: परंतु त्रासदी के कारण वो नहीं आ पाई।
0: इसी जल प्रलय के बीच हरियाणा के भिवानी जिले के बड़सी गांव की रहने वाली और वर्तमान में फिनलैंड में डॉक्टर के तौर पर सेवाएं दे रही डॉक्टर प्रियंका चौधरी भी लापता हो गई है। प्रियंका करीब 70 साथी डॉक्टरों के दल के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा और नेपाल भ्रमण के लिए गई थी। परिवार के मुताबिक 25 अगस्त की रात वीडियो कॉल पर प्रियंका से आखिरी बार बात हुई थी। इसके करीब एक घंटे बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया और तब से परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है।
8: ये डॉक्टर थी, फिनलैंड में रहती थी, वहां पे कुछ दिन पहले ही 14 तारीख को
9: अपने ईशा फाउंडेशन की तरफ से टूर में आए थे घूमने के लिए, उनको अपना सब वहां पे अपने यात्रा के ऊपर में थे, वहां पे वो गए हुए थे वो देखने के लिए मानसरोवर वगैरह। कम लगभग लगभग ये लोग 77 यात्री इकट्ठे थे। इन्होंने अपनी इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके काठमांडू लौट रहे थे। रास्ते में उनको सुबह संपर्क हुआ था 8-9 बजे के करीब, उसके बाद से कोई संपर्क में नहीं है।
0: उधर कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में लापता हुए कल्याण डोंबिवली के 3 तीर्थयात्रियों के परिवारों में भी चिंता फैल गई है। तीर्थयात्री पिछले 3 दिनों से अपने परिवारों से संपर्क में नहीं है, जिससे उनके ठिकाने और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। परिवारों के अनुसार वे पिछले 3 दिनों से तीनों तीर्थयात्रियों से संपर्क स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनकी कॉल का कोई जवाब नहीं मिला है और अब तक कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। उनका सटीक स्थान और संपर्क टूटने के कारण अज्ञात है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए गुजरात के लोगों के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। सूरत के एक परिवार के 3 सदस्य परेश पटेल, उनकी पत्नी ज्योति और बेटी मीनाक्षी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं गांधीनगर से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए अमिता अमीन, तेजल और जितेंद्र पटेल के परिजन भी उनकी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। परिवारों ने सरकार से जल्द अपने परिजनों की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने और सुरक्षित वापस लाने में मदद की अपील की है। इस आपदा में कई परिवार लापता हो गए जिनकी तलाश जारी है।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसे, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: एक तो एक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है.
2: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी. मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
4: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां.
5: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआर.
6: अब मैं क्या ही बोलूं?
7: परिवार अटूट भरोसा.
8: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता.
9: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स.
10: लायन डेट नट बाइट्स.

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
3: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
2: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
4: 19 साल के छात्र साहिल लजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
2: हर बात देश के सामने।
3: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
2: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।
5: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती।
6: ये जो तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: हमारे सीएलपी राजस्थान के मंदिर जाते हैं, बीजेपी के नेता शुद्धिकरण करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने, और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं। सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं, और ये क्राइम है।

भारतीय परिवारों की बचत को लेकर एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। बैंक में खाते तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन इन खातों में जमा पैसे तेजी से बढ़े हैं, यानी नए खाते खुलवाने से ज्यादा मौजूदा खातों में जमा रकम बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या भारतीय परिवारों की बचत का तरीका बदल रहा है? नौकरी, कारोबार और कमाई से आने वाला पैसा लोग आखिर कहाँ रख रहे हैं? इसकी एक तस्वीर बैंक डिपॉजिट के आंकड़ों से मिलती है, जिसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में व्यक्तिगत बैंक जमा 9.7% से बढ़कर 134.8 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि बैंक खातों की संख्या महज 1.8% बढ़कर करीब 260 करोड़ हो गई, यानी जमा रकम की रफ्तार खातों की संख्या में बढ़ने से करीब 5 गुना ज्यादा रही। औसतन हर बैंक खाते में जमा रकम 7.7% बढ़कर 51,494 रुपए पहुंच गई। यानी कहानी इस बात की नहीं है कि कितने नए बैंक खाते खुले, मुद्दा ये भी है कि लोगों के मौजूदा खातों में पैसा कितना बढ़ा। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक यही अंतर भारत में वित्तीय बचत के गहराने का संकेत दे रहा है। लेकिन तस्वीर सिर्फ बैंक डिपॉजिट तक सीमित नहीं है, भारतीयों की बचत और निवेश का एक हिस्सा अब शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की तरफ भी जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में डीमैट अकाउंट 17.6% बढ़कर 22.5 करोड़ हो गए, वहीं म्यूचुअल फंड फोलियो 16.8% बढ़कर 27.4 करोड़ पर पहुंच गए। SIP के जरिए सालाना निवेश 2.9 लाख करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ हो गया। घरेलू बचत में वित्तीय संपत्तियों की हिस्सेदारी 2004 और 2005 के 39.5% से बढ़कर 2023-24 में 44.7% हो गई। खास बात यह है कि बैंकिंग में यह बदलाव महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ भी दिखाई दे रही है। 2018-19 से 2025-26 के बीच महिलाओं के बैंक डिपॉजिट में औसतन 13.4% सालाना की दर से बढ़ोतरी हुई, जबकि पुरुषों के मामले में ये रफ्तार 7.5% रही। यानी भारतीय परिवारों की बचत में सिर्फ रकम नहीं बढ़ी, बचत और निवेश का तरीका भी धीरे धीरे बदल रहा है। बैंक खातों में ज्यादा बैलेंस के साथ शेयर और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय साधनों में भागीदारी भी बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय पहले से ज्यादा बचत कर रहा है। रिपोर्ट का संकेत ज्यादा बड़ा है, भारतीय परिवारों की बचत धीरे धीरे फिजिकल एसेट्स से वित्तीय संपत्तियों की तरह बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुस्लिमों को बाहर करना नहीं। उज्बेकिस्तान के दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से की मुलाकात, दो दिन बाद बिश्केक के एससीओ समिट में होंगे शामिल। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया है दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मामला उठाया था। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन अमाझी के वर्गी

नेपाल की तमाम कोशिशों के बाद कई सारे लापता भारतीयों का पता चल चुका है। 108 भारतीय नागरिक बचाए जा चुके हैं, 50 से संपर्क हो चुका है, जबकि 500 से ज्यादा चीन के नेपाल के रास्ते होते हुए काठमांडू भी पहुंच रहे हैं। इन तमाम राहत बचाव कार्य एजेंसियों की कोशिश है कि दुनिया का हर वो नागरिक जो नेपाल में अतिथि था वो सुरक्षित अपने घर को लौट जाए।

0: नेपाल में बाढ़ और खराब हालात के बीच राहत और बचाव अभियान जारी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 108 भारतीय नागरिकों को नेपाल में सुरक्षित बचाया जा चुका है। इसके अलावा 50 ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिनसे दोबारा संपर्क स्थापित हो गया है। इस बीच चीन के रास्ते नेपाल पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की भी जानकारी सामने आई है। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में सुरक्षित प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि करीब 900 भारतीय नागरिक अभी चीन से निकलने बाकी हैं। इन 900 भारतीय नागरिकों को लेकर सरकार का कहना है कि वे सुरक्षित हैं। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है। लेकिन चिंता की सबसे बड़ी वजह अब भी लापता भारतीय नागरिक है। 29 अगस्त की रात 10:30 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 128 भारतीय मूल के लोगों के भी लापता होने की जानकारी है। यानी एक तरफ राहत और बचाव अभियान के बीच कई भारतीय सुरक्षित निकाले जा चुके हैं और संपर्क भी बहाल हुआ है, तो दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों का अब भी पता नहीं चल पाया है। नेपाल में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोशिश जारी है।
1: जब भी इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती है वो अपने साथ एक मानवीय त्रासदी लेकर के आती है, और यहाँ वो मानवीय त्रासदी है अपनों का अपनों से बिछड़ जाना। न जाने यहाँ कितने अपनों से बिछड़ गए और न जाने कितने परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में अपनों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कई सारे परिवार भारत के उन राज्यों से हैं जिनके अपने यहाँ घूमने आए, यात्रा पर निकले और आखिरी बार जब फोन नहीं बजा तब से बस वो इंतजार कर रहे हैं, या तो एक फोन लग जाए या तो एक खबर आ जाए कि वो जीवित हैं, जल्दी ही बचा लिए जाएंगे, और अब उनकी सिर्फ उम्मीदें हैं। शाम होते होते उम्मीद टूटती है, हर सुबह एक उम्मीद लेकर के आती है कि आज वो खबर आएगी कि उनके अपने जो इस त्रासदी में लापता हो गए हैं वो घर जल्दी लौटेंगे, जरूर लौटेंगे।

0: है जितना जल्दी हो सके कि जो हमारा 3 आदमी बचा हुआ है उनको यहाँ पहुँचा दे।
1: जैसे पानी जैसे धुआं जैसा आया था जिसमें से एक आदमी भाग के आ गया वापस, अब तीन आदमी उसमें फंस गए।
2: जानकारी हमें कोई नहीं मिली अभी तक, बस यही बता रहे हैं कि रेस्क्यू चल रहा है।
3: नेपाल में बाढ़ और बिगड़े हालात के बीच बिहार के रक्सौल से जुड़े एक परिवार के 5 सदस्यों से संपर्क टूट गया है। जानकारी के मुताबिक त्रिशूली नदी के आसपास संपर्क टूटने के बाद परिजनों को उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बिहार के रक्सौल से जुड़े एक परिवार के 5 सदस्य नेपाल में लापता बताए जा रहे हैं। परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और वे अपने रिश्तेदारों की जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
0: मैं चाहते हैं नेपाल सरकार से, बलेंद्र झा से, कि वहाँ का प्रधानमंत्री है जितने जल्दी हो सके कि जो हमारा 3 आदमी बचा हुआ है उनको यहाँ पहुँचा दे, जितना जल्दी हो उतना सहयोग करे कि ताकि ये गरीब आदमी निकल सके। इसका बहुत बुरा हाल है, कुछ नहीं बचा हुआ है।
3: दूसरी घटना बिहार के बगहा से सामने आई है। बेतिया के 3 मजदूर नेपाल में बाढ़ के पानी और मलबे की चपेट में आने के बाद लापता बताए जा रहे हैं। परिजन उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद में प्रशासन से लगातार संपर्क कर रहे हैं।
1: जैसे पानी जैसे धुआं जैसा आया था जिसमें से एक आदमी भाग के आ गया वापस, और 3 आदमी उसमें फंस गया। उसके बाद हम लोग फिर रूम से ऊपर भाग के गया, तब हम लोग बचा थे।
3: इस बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई से जुड़े 2 मजदूर भी नेपाल में बाढ़ के बीच लापता है। परिवार के मुताबिक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। अब परिजनों की नजर नेपाल में चल रहे राहत और बचाव अभियान पर है।
2: जानकारी हमें कोई नहीं मिली अभी तक, बस यही बता रहे हैं कि रेस्क्यू चल रहा है, इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं मिली। सर आखिरी बात 25 तारीख हुई थी सुबह, उसके बाद में कोई संपर्क नहीं हुआ।
3: 3 अलग अलग मामलों में लापता लोगों की जानकारी सामने आने के बाद परिजनों की उम्मीद अब राहत और बचाव एजेंसियों पर टिकी है। हर परिवार को अपनों के सुरक्षित मिलने का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।
4: आज तक की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। नुआकोट वो जिला जो सबसे ज्यादा इलाका प्रभावित हुआ, हमारे सहयोगी श्वेता सिंह उस इलाकों में पहुंची, वहां लोगों से मुलाकात की, तबाही का वो मंजर देखा। देखिए उनकी खास रिपोर्ट।
5: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
6: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए, त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा पर। ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी, ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स, और आगे आप होटल्स देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहाँ पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
5: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
7: मैंने देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया, तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए। तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्ट ने, पर वे उधर चले गए।
8: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा आता हुआ दिख रहा था?
7: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो इसने क्या आते ना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई करके।
8: अच्छा अच्छा,
7: तो ऐसा चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
8: सबसे जरूरी था भागना तेज,
7: वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
8: देखा सामने,
7: हाँ नहीं ऐसे करके, वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
8: आपने बचा लिया।
5: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल दी।
9: जो हल्का इधर हुआ है, जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
8: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
9: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
8: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
9: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
8: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम
9: नहीं था।
8: ये सब घर यहाँ पे, तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
9: जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, वो भी मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे एक सिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था। बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं।
8: किसी का काम बचा ना घर बचा?
9: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा। बस आदमी बच गए ना, वही हम लोग के लिए बहुत काफी। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए हैं, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए ना वही काफी है।
5: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई

0: नतनी मिसिंग है।
1: कहाँ रह रहे थे
0: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
1: अच्छा।
0: क्या कहता हूँ मैं,
1: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे, तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
0: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है।
1: हाँ।
0: और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
1: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
0: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
1: कितने साल की है
0: ये बच्ची? 2 साल की है।
1: 2 साल की
0: जी। ये दीदी हुई।
1: हाँ।
0: ये भांजी है, ये भी भांजी है।
1: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
0: नहीं मिल पा रहे हैं।
1: आप हर जगह जाके ढूंढ
0: रहे हैं?
2: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
1: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है। जैसे जैसे जो राहत कर्मी है वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
2: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
3: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का, 15-20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल के।
1: हाँ।
3: सब खाना खा के ये रास्ता हो गया।
1: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
3: हाँ।
1: कैसा डरावना था?
3: बहुत एकदम डरावना था। बहुत
1: नुकसान कितना हो गया आपको?
3: नुकसान था उधर, वो 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का।
1: हाँ।
3: अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम।
1: हाँ।
3: हॉल था, डाइनिंग किचन।
1: हाँ।
3: नुकसान था कितना आप? सरकार ने उसको
1: जान किसी के नहीं गई,
3: सरकार ने
1: जान किसी की नहीं गई।
3: नहीं गई जान किसी की नहीं गई।
1: हाँ।
3: 4-5 मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया।
1: हाँ।
3: मोटरसाइकिल था उसमें।
1: हाँ।
3: मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला, और शटर लगाने की भी मौका नहीं मिला।
1: यही रास्ता था?
3: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ 5 जना थे, 5 आदमी थे, और मेरा बेटा उधर काम करता थे, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
2: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
1: यहीं पर रहते हैं आप?
4: जी यहीं पर रहते हैं।
1: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
4: बहुत बड़ा परिवर्तन है।
1: हाँ।
4: अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है।
1: हाँ।
4: खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
1: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
4: डेवलपमेंट विकास बैंक
1: है। हाँ, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
4: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था, लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
1: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
4: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
1: क्या परिवर्तन हुआ है?
4: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
1: हाँ।
4: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
1: ये खेत था?
4: खेत था इसके पछाड़ी।
1: अच्छा।
4: इस साइड में पूरे घर था यहाँ पे।
1: हाँ।
4: हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
1: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं।
4: हाँ, इसी
1: और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
4: यहाँ बाउंड्री था, इसलिए यहाँ तक रोड था पहले।
2: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
5: ऊपर
1: छत में फंसा हुआ है कुत्ता मुर्गा?
5: ये 40-50 है।
1: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है?
5: दो आया और उधर है।
1: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
5: ऊपर से निकाला अभी।
1: दो
5: था, एक किधर गया मालूम नहीं। एक
1: एकदम ऊपर बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा।
5: खाना नहीं मिला।
1: यही जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका क्या नाम है इसका?
5: स्वीटी।
1: स्वीटी नाम है। स्वीटी आ गई तुम वापस?
6: उसका काम नहीं सुन पाए,
5: खराब हुआ।
2: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
7: काठमांडू से लेकर कुटवा ये पूरा जो इलाका है, मैंने यहाँ पर लोगों को देखा है, ऑस्ट्रेलिया से लोग हैं, चीन के लोग हैं, दक्षिण कोरिया तक के लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं, वो हर कोई पहुंच रहे हैं अपनों की तलाश में, अपनों की खोज में। कई तो अपनी जान को दांव पर लगा करके पहाड़ी इलाकों की ओर भी जा रहे हैं कि अगर राहत बचाव कार्य में देरी होती है तो वो अपनों को खोज लाएं। ज्यादातर को विश्वास है

0: दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं, किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहा है, नहीं मिला। अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे, नहीं मिला।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यह तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आके इनकी पहचान कर सके और यहाँ से डेड बॉडी ले जा सके। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है। कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: कहते हैं ना कि चमत्कार हमेशा होते हैं, और वो चमत्कार हमें रसुआ में देखने को मिले हैं। जब इन पहाड़ों से आपदा आई है, उसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। आप सोचिए, मलबे में दबी 3 दिन से एक बच्ची, उसे बचाया गया। उस सुरंग में फंसे कई सारे मजदूरों को एक एक करके निकाला गया। राहत बचाव एजेंसियां अब तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल कर रही है, तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, ड्रोन के जरिए बचाव कार्य हो रहे हैं। कोशिश ये है कि हर वो जिंदगी जो इस समय वहां सांस ले रही है, उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। ये सिर्फ चमत्कार ही नहीं है, बल्कि नेपाल की सेना, उसके तमाम राहत बचाव कार्य एजेंसियों के लोगों की बहादुरी की एक मिसाल भी है।
8: मलबे का ढेर, चारों तरफ तबाही, और इसी मलबे के नीचे दबकर जिंदगी की जंग लड़ रही थी एक मासूम। नेपाल का रसुआ जिला टिमुरे में भोटेकोशी नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, लेकिन इसी तबाही के बीच मिट्टी के नीचे से 6 साल की बच्ची के रोने की आवाज आई। घंटों की मशक्कत के बाद 3 दिन से मलबे में दबी बच्ची को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। बचाव के बाद बच्ची को टिमुरे बॉर्डर आउटपोस्ट लाया गया। हालत कमजोर थी, लिहाजा उसे बेहतर इलाज के लिए काठमांडू ले जाने की तैयारी की गई। रात और खराब मौसम के चलते उस वक्त एयरलिफ्ट नहीं हो सका, जिसके बाद शनिवार दोपहर बच्ची को काठमांडू लाया गया जहां उसका इलाज जारी है। एक तरफ मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश तो दूसरी तरफ सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने की चुनौती। नेपाल में बाढ़ के बाद सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के लिए भी 4 दिन बेहद मुश्किल रहे। बाहर रेस्क्यू टीम रास्ता बनाने में जुटी रही तो अंदर मजदूर जिंदगी की उम्मीद थामे बैठे रहे। बाढ़, मलबे और मुश्किल हालात के बीच रेस्क्यू टीम ने लगातार ऑपरेशन जारी रखा और आखिरकार 4th दिन सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने में कामयाबी मिली। एक एक कर मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और 4 दिन से चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। हालांकि सुरंगों में अभी भी संभावित सर्वाइवर्स की तलाश जारी है। मुश्किल हिस्सों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम ने ड्रोन का सहारा लिया है। ड्रोन के जरिए सुरंग के उन हिस्सों की निगरानी की जा रही है जहां रेस्क्यू टीम के लिए सीधे पहुंचना मुश्किल है। उम्मीद है कि ड्रोन से अंदर फंसे लोगों या उनकी मौजूदगी के किसी संकेत का पता चल सकेगा। नेपाल की इस भीषण आपदा के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन उम्मीद की तस्वीरें दिखा रहा है। मलबे से 3 दिन बाद जिंदा निकली मासूम हो या 4 दिन बाद सुरंग से बाहर आए मजदूर, हर रेस्क्यू जिंदगी की जंग जीतने की कहानी कह रहा है और तलाश अब भी जारी है। आज तक ब्यूरो।
7: नेपाल में ग्राउंड जीरो से आज तक की कवरेज लगातार जारी है। हर अपडेट, ताजा खबर हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जीवन में अशुभता आए, घर में अशुभता आए, परेशानियां आए, इसके लिए हर बार आपके ग्रह जिम्मेदार नहीं होते। बहुत बार आपके कर्म ऐसे होते हैं, आपकी आदतें ऐसी होती हैं जो आपके घर में और जीवन में अशुभता ले आती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके किन कर्मों से आपके जीवन में अशुभता आ रही है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, सुबह 9:36 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, सामान्यतः हम ये समझते हैं कि हमारे ग्रह, हमारे नक्षत्र हमारे जीवन में शुभता और अशुभता पैदा करते हैं। क्या हमारे कर्मों से, हमारे एक्शंस से जीवन में शुभता अशुभता पैदा होती है? देखिए, हमारे आज के कर्म ही भविष्य में हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इन कर्मों से शुभ और अशुभ तरंगे पैदा होती हैं और ये तरंगे इकट्ठा होकर आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारी जो छोटी छोटी आदतें हैं ये हमारे घर को शुभ या अशुभ बना देती हैं, घर में शुभता या अशुभता लाती हैं। यानी आपके कर्मों से आपके जीवन में शुभता और अशुभता दोनों पैदा हो सकती है, और चूंकि आपके जीवन में पैदा हो सकती है इसलिए जहां आप रहते हैं आपके घर में भी शुभता अशुभता पैदा हो जाती है। देखिए, आपके छोटे छोटे कार्यों से, आपकी छोटी छोटी गलतियों से घर में अशुभता पैदा होती है। कौन से काम हैं? गंदे जूते चप्पल जो बाहर से पहन कर आए हैं उसी को पहनकर घर में घूम रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, तो ये नकारात्मक तरंगे अपने साथ लाएगा और इसका प्रभाव घर पर पड़ेगा। घर में गंदे कपड़े अगर आप इकट्ठा करके रखते हैं, उनकी साफ सफाई नहीं करते, घर में गंदे कपड़े जमा करते जाते हैं, तो इससे भी घर में अशुभता आती है। घर के बाथरूम को साफ सुथरा नहीं रखते, घर के बाथरूम में बदबू आती है, गंदगी रहती है, तो इससे भी घर में अशुभता पैदा होती है।
घर की महत्वपूर्ण चीजों को, किताबों को, पेन को आप बिखेर करके रखते हैं, सावधानी से नहीं रखते तो इससे भी आपके घर में अशुभता पैदा होती है। अगर आप अपने घर में किसी भी समय पूजा नहीं करते, पूजा स्थान को गंदा रखते हैं, पूजा स्थान की पवित्रता मेंटेन नहीं करते तो घर में सबसे ज्यादा अशुभता इससे पैदा होती है। घर में मांस मदिरा का सेवन करते हैं, घर में झगड़े लड़ाई करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, घर का माहौल पवित्र नहीं रखते। अगर आप घर का माहौल पवित्र नहीं रखेंगे तो आपके घर में अशुभता पैदा होगी। आपके कर्मों और अशुभता पर बात हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, वाद विवाद से सावधान रहें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, शुभ समाचार मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो आपके बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो आपके घर में अशुभता लाते हैं। आपके खान पान की किन आदतों से घर में अशुभता आती है? अगर आप घर में घूम घूम कर खाना खाते हैं, कभी ड्राइंग रूम में, कभी डाइनिंग टेबल पर, कभी बेड पर, यानी एक जगह शांति से बैठकर खाना नहीं खाते तो हर जगह की तरंगे डिस्टर्ब होंगी और घर में अशुभता पैदा होगी। मांसाहार के लिए और शाकाहार के लिए एक ही बर्तन का प्रयोग करते हैं, एक ही बर्तन में पकाते हैं और उसी से खाते हैं तो इससे पवित्रता नष्ट होगी और अशुभता पैदा होगी। घर में जूठे बर्तन इधर उधर छोड़ने से, जूठा गिलास कहीं छोड़ दिया,
पढ़ने की मेज पर जूठा प्लेट छोड़ दिया, खाना खा के थाली मेज पर ही छोड़ दी, घर में जूठे बर्तन इधर उधर छोड़ना भी अच्छा नहीं है, अशुभता पैदा होती है। अगर आपके घर में भोजन की बर्बादी होती है, खाना फीकता है या खाना कूड़े में फेंका जाता है तो ये बहुत ज्यादा अशुभता पैदा करता है और इस चक्कर में जीवन में अशुभता आती है। और खाना बर्बाद करने से, खाना कूड़े में डालने से बीमारियां आती हैं, घर में बीमारियां फैलती हैं, अशुभता बढ़ती है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति बेहतर रहेगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रंजीता जी ने हमें लिखा है और रंजीता जी भोपाल से मेल लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म तारीख है 27 मार्च 2000, जन्म का समय सुबह के 7:25, जन्म स्थान है भोपाल। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्या मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिल सकेगी। रंजीता जी, आपके पुत्र की कुंडली में अगर ये शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, बैंक या फाइनेंस में, ऐसे क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करें तो निश्चित रूप से इनको गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकेगी। और अभी इनकी उम्र 26 साल हुई है, साल 2027 और 28 बहुत अच्छा है, शिक्षा, बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ऐसे क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे। एक इनको पन्ना बनवा के पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करवाइए
और इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आपके खान पान की आदतों से आपके घर में अशुभता आती है, आपके व्यवहार में कुछ ऐसी गड़बड़ियां होती हैं जिसकी वजह से घर में अशुभता आ जाती है। क्या है? घर में चीखना चिल्लाना। अगर आप घर में बिना वजह के चीखते हैं, बिना वजह के चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, घर की तरंगे खराब होंगी और घर में अशुभता आएगी। अगर आप अपने घर में बड़ों का सम्मान नहीं करते, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, नकारात्मक तरंगे आपके जीवन में आएंगी, आप खुद भी परेशान होंगे और घर में अशुभता बढ़ेगी। अगर आप घर की महिलाओं के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते, उनको परेशान करते हैं, अपमानित और प्रताड़ित करते हैं, तो आपके जीवन में दरिद्रता आएगी, आप स्वयं दरिद्र होंगे और आपके घर में अशुभता इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि धीरे धीरे करके दरिद्रता आपके जीवन में आ जाएगी। बहुत सारे माता पिता या लोग होते हैं जो अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालते हैं, बच्चों को बेवजह मारते पीटते हैं। अगर आप परेशान हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को मारेंगे पीटेंगे या बच्चा गलती करेगा तो उसे पीट डालेंगे। ऐसा मत करिए। छोटा अबोध बच्चा है, बच्चों को मारना पीटना बहुत पाप देता है, मत करिए। और बच्चों को अगर मारेंगे पीटेंगे तो ऐसा करने से बच्चों की मानसिक स्थिति भी खराब होगी, आपकी मानसिक स्थिति भी खराब होगी और घर में अशुभता पैदा होगी। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, धन प्राप्त करने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

करियर में लापरवाही ना करें, पड़ोसियों से समस्या हो सकती है। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। अब आप ऐसे कौन से काम अपने घर में करें जिन कामों से आपके घर में शुभता आए, शुभ तरंगे फैलें और घर में पहुंचते ही आप एकदम प्रसन्न हो जाएं, आपकी चिंताएं दूर हो जाएं, आपका घर इतना शुभ हो जाए। घर में दोनों समय चाहे 5 मिनट, थोड़े ही समय पूजा उपासना जरूर करिए। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को पूजा स्थान पर धूप बत्ती जलाइए, भगवान को प्रणाम करिए और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हिंदू परंपरा में हनुमान चालीसा, ये आप सुबह शाम एक एक बार पढ़िए, ये सब हम बचपन से जानते हैं। तो सुबह शाम दोनों समय घर में पूजा उपासना जरूर करिए। जितना संभव हो सके घर में यथाशक्ति साफ सफाई रखिए, घर में सफाई मेंटेन रखिए, घर में गंदगी मत फैलाइए। घर में पानी की बर्बादी बिल्कुल मत करिए, कपड़ा धोने में, खाना बनाने में, नहाने में पानी की बर्बादी ना करें। घर में शांत तरीके से बात करें, आराम से बात कहें, चीख चिल्लाकर अपनी बात कहना या चीखना चिल्लाना उचित नहीं होगा। सप्ताह में एक बार अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन करें, सुंदर कांड का पाठ कर लें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें या घर के सब लोग मिलकर संध्या में एक बार आरती नियमित रूप से करें। शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से लोगों की आयु बेहतर होगी, लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा होगी। अपने घर में एक सफेद गाय और बछड़े की मूर्ति या एक सफेद हाथी की मूर्ति या उसका चित्र अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वैसे नियम ये कहता है कि सफेद रंग की गाय और बछड़ा इसकी मूर्ति रखें या 2 सफेद हाथी आमने सामने करके अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया में या अपने पूजा स्थान पर रखिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।

करेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन आज दौड़ भाग काफी बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमान।

आए समाप्त होंगी, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि महाभारत की पुस्तक घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप महाभारत की पुस्तक घर में रखेंगे तो इससे घर में महाभारत होगी, झगड़े लड़ाई होंगे। क्या ऐसा है? देखिए, भारत में महाभारत से ज्यादा अनूठा कोई ग्रंथ ही नहीं है। आध्यात्म से लेकर मानव जीवन तक, राजनीति से लेके सरलता तक, सारा ज्ञान महाभारत में बिखरा हुआ है। महाभारत की पुस्तक कोई भी अपने घर में रख सकता है और कोई भी पढ़ सकता है। महाभारत की पुस्तक रखने से घर में झगड़ा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो रामचरितमानस रखने से तो सबका जीवन सुखी हो जाना चाहिए था, क्योंकि रामचरितमानस तो आदर्श की पुस्तक है। तो रामचरितमानस अगर आप अपने घर में रख के पूरी तरह से सुखी नहीं होते तो महाभारत रखने से आपके घर में युद्ध होगा, झगड़े होंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में बदलाव होगा। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, बेवजह के विवादों से बचाव करें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, किसी मांगलिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नंबर 9, करियर में सफलता मिलेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इसमें 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न कविता शर्मा जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 नवंबर 1982। जन्म का समय शाम के 7:55। जन्म स्थान है भदोही, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके। कविता जी, सबसे पहले आप अपने खुद के क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। केवल आप ये सोचिए कि पति को ही बैलेंस किया जाए
तो ये सही नहीं है। आपको स्वयं भी अपने क्रोध और स्वभाव का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-13 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल चढ़ाकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

मीन राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए, चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज द्वितीया तिथि है, भाद्रपद में द्वितीया शून्य मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 675 की मौत, मलबे में राहत और बचाव का काम जारी। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, 23 साल का रिकॉर्ड टूटा, शहर बना है झील, सड़कों पर दौड़ी नाव, मठ मंदिर और सैकड़ों दुकानें पानी पानी, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। न्यूयॉर्क में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक ही है, बोले हिंदुत्व का मतलब मुस्लिमों को बाहर करना नहीं है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय समुदाय से मुलाकात की, आज द्विपक्षीय वार्ता, दो दिन का बिश्केक के एससीओ समिट में होंगे शामिल। और आरक्षण विवाद पर आमने सामने है मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतनराम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया है खारिज, दोनों ने एक दूसरे का इस्तीफा मांगा।

नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण हालात गंभीर हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 675 के पार पहुंच गई है, जबकि 2400 लोग अभी भी लापता। लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। भारत की ओर से नेपाल को लगातार मुहैया कराई जा रही है राहत सामग्री। अधिकारियों ने भोटेकोशी और त्रिशूली इलाकों में लोगों और बचाव दलों को सतर्क रहने को और सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी है, क्योंकि आगे और भी बाढ़ का खतरा। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्राधिकरण के अनुसार नेपाल और तिब्बत में मिलकर 2426 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें से 1924 लोग नेपाल से हैं, जबकि 554 तिब्बत से। नेपाल की आपदा एजेंसी के मुताबिक 517 विदेशी नागरिक हैं, जिनमें पर्यटक और मजदूर लापता हैं। वहीं चीन ने अपनी तरफ से 260 विदेशियों के लापता होने की जानकारी दी। सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले ग्योरोंग सीमा क्षेत्र में चीनी बचाव दल शुक्रवार को ही पहुंच गया। 21 सदस्यों की टीम खोजी अभियान पर। सीमा क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज से पानी और मलबे के सैलाब को इमारतों को बहाते और लोगों की जान को बचाकर भागते हुए दिखाया गया है। नेपाल ऊपरी इलाकों में बनी दो बांध जैसी झीलों पर नजर रख रहा है और कह रहा है कि जब तक ये पूरी तरह खाली नहीं हो जाती, खतरा इसी तरह बना रहेगा। भारत ने नेपाल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के कार्यों के लिए 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप काठमांडू भेजी। भारतीय नागरिकों पर एमईए का नया अपडेट। भारत सरकार के मुताबिक अब तक नेपाल में 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। पहले संपर्क से बाहर रहे करीब 50 भारतीय नागरिकों से दोबारा संपर्क स्थापित किया गया। चीन के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। करीब 900 भारतीय नागरिक अभी भी चीन की तरफ मौजूद हैं और सुरक्षित हैं और संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों के बचाव और राहत अभियान के लिए विदेश मंत्रालय में 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम बनाया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों में हेल्पलाइन। नेपाल की जरूरत के अनुसार भारत अतिरिक्त सहायता भी जुटा रहा है। इसमें बेली ब्रिज और उन्हें स्थापित करने वाली तकनीकी टीमें भी शामिल हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद बनी झील का पानी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। चीन के मुताबिक झील का क्षेत्रफल घटकर 99,000 वर्ग मीटर रह गया है। करीब 21,000 वर्ग मीटर की कमी आई है। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 106 पर्यटकों की हुई है सुरक्षित वापसी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे पर्यटक। मुश्किल हालात के बीच भारतीय रेलवे ने संभाला है मोर्चा। 106 पर्यटकों के लिए रेलवे ने लगाए थे अतिरिक्त कोच। रेलवे ने स्पेशल इंतजाम करके घर भेजा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पर्यटकों को नाश्ता पानी भी कराया गया। सरकारी मदद से पर्यटकों की घर वापसी आसान हुई। सकुशल लौटने पर पर्यटकों के परिजनों को चेहरों पर खुशी नजर आई। सरकार और रेलवे का शुक्रिया अदा किया। नेपाल से लौटे पर्यटकों ने बयां किया अपना अनुभव। नेपाल की त्रासदी के बीच दिखाई दी मदद की मिसाल। रेलवे की मदद से बढ़ाया गया है पर्यटकों का हौसला। चित्रकूट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही मंदाकिनी नदी। बाढ़ प्रभावित एक दर्जन से ज्यादा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चित्रकूट के कई गांव में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जरूरी सामान के साथ सुरक्षित जगह पहुंचाए जा रहे हैं लोग। एसडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ में फंसे हुए 16 ग्रामीणों का किया सफल रेस्क्यू। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन मुस्तैद। चित्रकूट के बहादुरपुर और तरोहा गांव में भर गया बाढ़ का पानी। एसडीआरएफ ने 3 गांवों से 161 लोगों को रेस्क्यू किया। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। बोट और नाव के साथ रात दिन राहत और बचाव का काम जारी। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश से बिगड़े हैं हालात। अपन के उमरी गांव में पुल के ऊपर से 2 फीट तक बह रहा है पानी। बेगूसराय में भारी बारिश के साथ ही गंगा के लगातार कटाव से गांव पर खतरा है बाढ़ का। कई मकानों के गिरने का भी खतरा खाली कराए गए हैं। देहरादून के तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के तट तक पानी का उफान। प्रयागराज के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दिखाई दिया शानदार नजारा। सीढ़ियों से उतरते हुए गंगा के पवित्र जल ने बजरंग बली को कराया स्नान। ढोल नगाड़े बजाते हुए गंगा जल का मंदिर परिसर हुआ है स्वागत। भव्य आरती के बीच जयकारों से गूंज उठा गर्भगृह। मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए आज प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों से संवाद करेंगे। 137वें एपिसोड के जरिए देश विदेश के मुद्दों पर रखेंगे बात। आज लखनऊ से मथुरा कूच करेगा विश्व हिंदू रक्षा परिषद। श्री कृष्ण जन्मभूमि में मांस मंदिर बिक्री पर रोक की मांग को लेकर हो रहा है विरोध। इंदौर में 12 सितंबर को छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 50,000 छात्रों को जुड़ाने की तैयारियां। राहुल गांधी के वोटर लिस्ट नाम को लेकर याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने टाला है फैसला। 21 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारतीय समुदाय से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की जय के नारों के साथ गर्मजोशी से स्वागत। भारतीय मूल की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की कलाई पर बांधी राखी। प्रधानमंत्री के सम्मान में पारंपरिक गीत संगीत और नृत्य का आयोजन। उज्बेकिस्तान के सबसे मशहूर ग्यांगी उज्बेकिस्तान पार्क पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। स्मारक स्तंभ के बाहर प्रधानमंत्री ने तस्वीरें भी खिंचवाईं।
ताशकंद में पीएम मोदी के सम्मान में तिरंगे से रोशन हुआ होटल, भगवा सफेद और हरे रंग से जगमग नजर आई इमारत। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक, उज्बेकिस्तान योग फेडरेशन के योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत के डीएनए में एकता और विविधता है, कई भाषाएं धर्म और जीवन शैली अलग अलग लेकिन सभी के बीच एक जुड़ाव। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि हर देश का एक मकसद और एक ही नियति होती है, भारत की नियति दुनिया को यह एहसास कराना है कि हम सब एक हैं। मोहन भागवत ने प्रवासी भारतीयों से कहा है कि कर्मभूमि के प्रति वफादार रहना चाहिए, अपनी कर्मभूमि के लिए काम करें, भारत के मूल्यों को भी न भूलें। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मोहन भागवत ने धर्मगुरुओं के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि हिंदू सोचता है अगर कोई कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए तो वो हिंदू नहीं है। दुनिया भर के धर्मगुरुओं के बीच अपनी बात रखते हुए आरएसएस प्रमुख ने साफ किया है कि हिंदू होने की पहली शर्त ये मानना है कि सभी धर्मों के रास्ते एक ही ईश्वर तक जाते हैं। सीएम योगी ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने और तारीखों पर तारीख की प्रवृत्ति को खत्म करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने जन शिकायतों के वास्तविक समाधान, कानून व्यवस्था की समीक्षा और राहत कार्यों में सतर्कता बरतने पर भी जोर दिया। वृंदावन में नया पुलिस सर्किल गठित कर आवश्यक पुलिस बल की तैनाती करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही कहा गया कि मथुरा और वृंदावन के लिए अलग अलग संयुक्त मजिस्ट्रेट की तैनाती होनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कर्नाटक में एसआईएफ प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया, मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भी लिखा। नरेंद्र मोदी की सरकार के दो कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान और जीतनराम मांझी आरक्षण के मुद्दे पर आपस में भिड़ गए, एक दूसरे का इस्तीफा मांगा। जीतनराम मांझी ने चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए कहा कि चिराग को गरीबों के हितों की कोई परवाह नहीं है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नए विवाद में फंसे स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना शो में बिहारी और कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाने का आरोप है। बिहार के मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले, अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी विधायक राम कदम ने समय रैना पर विवादित बयान देकर मुफ्त में पब्लिसिटी हासिल करने के आरोप लगाए, कहा धर्म और समुदाय का मजाक का विषय नहीं है। इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर पीस फोरम का भी तीखा रिएक्शन, कहा बिहार कोई अपमानजनक शब्द नहीं है, कश्मीर कोई मजाक का विषय नहीं है। ग्रेटर नोएडा में 6 साल की मासूम की हत्या के मामले में आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ, बहला फुसलाकर कमरे में जाने और शव ले जाने का सामने आया था वीडियो। लखनऊ के जेपी इंटरनेशनल सेंटर पर आरपार, सीएम योगी बोले सैफे सिंडिकेट ने 200 करोड़ का काम 800 करोड़ में भी नहीं किया पूरा, अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप है। टीएमसी छात्र परिषद के स्थापना दिवस रैली में रास्ता रोकने का आरोप। महिला टी20 एशिया कप में आज थाईलैंड से होगा भारतीय टीम का मुकाबला, दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में जीत के साथ टूर्नामेंट में आगाज करने उतरेगी टीम इंडिया, भारत ने अब तक 9 में से 7 बार जीता है एशिया कप। गाजियाबाद में शॉर्ट सर्किट के कारण खिलौना फैक्ट्री में लग गई थी भीषण आग, मौके पर दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इंदौर में चौकीदार की कार से कुचलकर हत्या, प्रेमी प्रेमिका गिरफ्तार, सड़क हादसे के पीछे निकली हत्या की साजिश। नोएडा के छिजारसी में 13,000 अवैध बिजली के कनेक्शंस, विभाग का एक्शन शुरू। सोनभद्र में पति की हत्या का खुलासा, पति ने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची, 4 की गिरफ्तारी। रेवाड़ी में पत्नी को छूने पर दोस्त की हत्या, शराब पार्टी में चाकुओं से हमला बोला गया, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मुंडका इलाके में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया। फिरोजपुर में दिनदहाड़े कार सवार हमलावरों ने बाइक सवार शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली, मौके पर युवक की मौत हुई। नागपुर में वाइन शॉप में चोरी हुई, 60,000 रुपए लेकर फरार हुए 3 चोर। जालना में बटन गोलियों के अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश हुआ, 6,600 नशीली गोलियों के साथ 4 की गिरफ्तारी। नागपुर में पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की, पड़ोसियों ने जान बचाई। शामली में सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड, 5 दिन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं, पत्नी ने सीएम योगी से भावुक अपील की है। नागपुर में देह व्यापार में कथित अड्डे पर छापा, 3 युवतियों का रेस्क्यू किया गया, 1 आरोपी की गिरफ्तारी। संभल में पीएसी की जमीन पर बनी मजार पर चला बुलडोजर, 407 बीघा जमीन कब्जा मुक्त। नागौर में रक्षाबंधन पर खुनी वारदात, बहन को प्रेमी के साथ देकर भड़क गया था भाई, युवक की पीट पीट कर हत्या। नागपुर में 23 करोड़ का फर्जी गोल्ड लोन घोटाला सामने आया, मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया, 152 खातों में गड़बड़ी पाई गई। एक ही तारीख पर रिलीज होगी किंग नाम से 2 फिल्में, बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान से भिड़ेंगे मेगा स्टार नागार्जुन। मेकर्स ने नागार्जुन के 67वें बर्थडे पर टाइटल और पहली झलक रिवील कर दी है, फिल्म का टाइटल किंग 100 रखा गया है, 24 दिसंबर को रिलीज होगी।
हिंदी हॉरर कॉमेडी और एडवेंचर वेब सीरीज अलीबाबा और 40 भूत ओटीटी पर जल्द दस्तक देगी। 11 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जाएगी। दृश्यम 3 में फिर से विजय सलगांवकर बनेंगे अजय देवगन। नए पोस्टर ने बढ़ा दिया सस्पेंस। 2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर आएगी ये फिल्म। एक्टर डॉक्टर शिवा राजकुमार का नया दिखेगा अवतार। ओरिजिनल मॉन्स्टर का मोशन पोस्टर आउट हुआ। जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। शिव राजकुमार की बेल टीजर ने मचाया धमाल। पुलिस ऑफिसर की दमदार भूमिका में शिव राजकुमार। टीजर रिलीज होने के बाद बढ़ा है फिल्म का क्रेज। अपकमिंग फिल्म द पैराडाइज का दूसरा गाना येशना गुला रिलीज हुआ। नानी और कीर्ति सुरेश की जोड़ी ने फिर से धमाल मचाया। डेलस में हुई येशना गुला गाने की शानदार लॉन्चिंग। अनिरुद्ध रविचंद्र के साथ स्टेज पर नानी की धमाकेदार एंट्री। 24 सितंबर को थिएटर्स में दस्तक देगी। बांग्ला फिल्म डॉक्टर काकू का ऑफिशियल टीजर रिलीज हुआ। शिक्षा और चिकित्सा को लेकर खासा संदेश। एक्टर अनुपम खेर ने शेयर किया भावुक वीडियो। बोले आज मैं जीना चाहिए सिर्फ मुहावरा नहीं है बल्कि हाल ही के दिनों में जिंदगी की सच्चाई का एहसास भी कराया गया है। रूस ने कीव समेत कई शहरों पर जबरदस्त भीषण ड्रोन अटैक किए हैं और रूसी हमले की वजह से कीव के पास बुचा जिले में 37 लोगों की जान चली गई है और 50 रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं।

दें कि जब वो यहां पहुंचे तो जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया गया है। योग फेडरेशन के साथ उनकी ये महत्वपूर्ण मुलाकात है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो योग फेडरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। इन सबसे मुलाकात उनको आज करनी थी, द्विपक्षीय वार्ता उनकी है और उसके बाद दो दिन के बाद बिश्केक में बहुत ही महत्वपूर्ण समिट में वो हिस्सा लेंगे। तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ। आज प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत है। कई महत्वपूर्ण समझौतों पर आज दोनों ही प्रधानमंत्रियों की मुलाकात होनी है। तो ताशकंद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योग फेडरेशन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेते हुए कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन बहुत खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है। कई और कार्यक्रम में भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का इस दौरान यहां पर हुआ है। और आपको बता दें कि जिस जगह पर वो रुके थे तिरंगे की रंग में उस बिल्डिंग को पूरी तरह से सजाया गया था। भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका वेलकम किया। योग फेडरेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दो दिन के बाद बिश्केक में प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण समिट में हिस्सा लेना है। एससीओ समिट में वो हिस्सा लेंगे किर्गिस्तान में।

0: एससीओ समिट हर लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो दिन के बाद बिश्केक में वो होने जा रहा है और आपको बता दें कि फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्बेकिस्तान की तस्वीरें हैं। अब हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से कल जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया था। तमाम भारतीय समुदाय के लोग हर देश की तरह यहां पर भी पहुंचे थे किर्गिस्तान में उनका वेलकम करने के लिए। एकदम भारतीय सांस्कृतिक अंदाज में उनका स्वागत हुआ, बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं योग फेडरेशन में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी गीता मोहन जुड़ गई। गीता, कुल मिलाकर आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दोनों ही प्रधानमंत्रियों की द्विपक्षीय बातचीत होनी है, कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी मल्टीलैटरल विजिट पे जाते हैं तो एक ऐसे देश को साथ में जोड़ लेते हैं जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार वो किर्गिस्तान बिश्केक जा रहे हैं एससीओ समिट के लिए और उससे पहले वो उज्बेकिस्तान पहुंचे हैं। डेलीगेशन लेवल टॉक्स दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत होगी। दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। जो मुद्दे हैं वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिफेंस, एनर्जी और एजुकेशन, जो उज्बेकिस्तान के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है भारत का, इन सब मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे शास्त्री मेमोरियल और महात्मा गांधी सेंटर, जो ताशकंद यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज का हिस्सा है, वहां पर भी जाने वाले हैं। और आप उनके स्वागत से आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितने भारतीय समुदाय के लोग वहां पे हैं जो इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो हिल्टन होटल पहुंचे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गीता आपका। इसके बाद एससीओ समिट में प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना है जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर वो बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आगे आगे
5: करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: Oh no, बहुत बोर लग रहा है।
4: Take a date, not bites.
5: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion dates, not bites.
4: Lion date, not bites.
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
2: What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है, ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है। दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।
4: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती।
5: ये तो तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: भले ही हल्द्वानी में खरगे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में FIR दर्ज करने की मांग की।
4: जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, RSS के लोगों ने शुद्धिकरण किया है, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ FIR SC एक्ट में FIR दर्ज किया।
3: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं। दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
5: अगर कोई कई जगह, वेदर इट इज दिस स्टेट और दैट स्टेट, अगर हो रहा है तो उसको ठीक करना हमारा सबका जिम्मेदारी है, लेकिन इसको बहाना बना के ड्रामा करने के लिए उधर जाते हैं तो लोग सबक सिखा है, आगे भी सिखा देंगे।
6: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना, आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिना, अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रहीं, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रहीं, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
3: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही है।
7: कांग्रेस जिस तरह से अफवाह फैलाने का काम कर रही है, दलित समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है कि वहां पर हल्द्वानी में रामला ग्राउंड में शुद्धिकरण किया गया है और जब खड़गे जी दलित समाज से आते हैं उनका अपमान हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी मनसा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपने आप से अलग करती है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी संस्था के माध्यम से वहां हवन किया गया, शुद्धिकरण किया गया तो उनका काम है, किंतु इस तरह का भ्रम फैलाना ठीक नहीं है।
3: युवा, महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नेपाल आपदा में बड़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 675 से ज्यादा शव बरामद, करीब 2500 लोग लापता। भारत ने देर रात काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, 23 साल का रिकॉर्ड टूटा, शहर बना है झील, सड़कों पर दौड़ी नाव, मठ मंदिर और सड़कें सैकड़ों दुकानें पानी पानी, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में योग सत्र में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, आज द्विपक्षीय वार्ता, कल भारतीय समुदाय से मिले। न्यूयॉर्क में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक है, बोले हिंदुत्व का मतलब मुस्लिमों को बाहर करना नहीं। और आरक्षण विवाद पर आमने सामने नरेंद्र मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन माझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा।

0: 30 जनवरी 2024 को 201 कोपरा और पुलिस बलों को और सीआरपीएफ की 150 बटालियन को वहां पर एक कैंप स्थापित करने का आदेश दिया गया।
1: नक्सल का बहुत ही कोर एरिया था और हम लोग रात को 1 बजे निकला था तेतालगुड़ियम के लिए।
2: कोबरा को पहले टास्क ये दिया था कि पहले जाकर आप डेप्थ प्रोटेक्शन लगा देंगे, उसके बाद बाकी फोर्स आएंगे।
1: कॉर्डन लगा ही रहा था तभी भारी मात्रा में नक्सली मूवमेंट देखा गया था।
3: फायरिंग स्टार्ट हो गई है, आप फायरिंग का जवाब फायरिंग से देंगे।
2: तो जैसे हम लगाए तो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया।
0: ये लगभग 4-5 घंटे फायरिंग चली है, तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का या किस स्तर का वो अटैक था।
1: चार घंटा फायरिंग चलने के बाद जाकर के वो लोग पीछे हटा।
0: उनका नुकसान हुआ और उनको ये समझ में आ गया कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस आई हैं उनसे वो सफल नहीं हो सकते हैं।
2: चाहे हमारा जान चला जाएगा, हम कुर्बान दे देंगे अपने देश के लिए, मगर हम पीछे नहीं हटे।
4: नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, मैं हूं श्वेता सिंह। बंदूकों के शोर से जिन जंगलों का सन्नाटा टूट जाया करता था, आज वहां पर एक नए भोर की रोशनी नजर आ रही है। जिस नक्सल मुक्त भारत की तरफ बढ़ने की बात हम कर रहे हैं, वो नक्सल मुक्त भारत संभव हो पाया है हमारे सैनिकों के रक्त से, उनके बलिदान से। किस तरीके से यह हासिल हुआ है, किस तरीके से ये कार्रवाई चली है, कैसे रहे हैं वो ऑपरेशंस जिन्होंने तय किया है कि नक्सलवाद की जड़ें हमारे देश से उखड़ जाएंगी, आज कोबरा कमांडोज के साथ हम वही तस्वीर, वही हकीकत आपको दिखाने वाले हैं।
5: मिट्टी के लिए अपनी सांसें, जिनको फूंक बराबर लगती है, देश के लिए अपना लहू, जिनको पानी के समान लगता है, एक वचन के लिए जिनको अपने प्राण की भी परवाह नहीं होती, ये देश से किए उस वादे को पूरा करने की कहानी है। कहानी घने जंगलों के बीच जड़े जमाए नक्सलवाद को उखाड़ने की, कहानी देश की मिट्टी के कण कण पर अधिकार स्थापित करने की।
6: क्या आप सभी इस चुनौती के लिए तैयार हैं?
5: कहानी वचन की, वीरता की, वीरगति की, कहानी वंदे मातरम की। मिशन सामान्य था, स्पष्ट था, पर बिल्कुल भी आसान नहीं था। गहरे नक्सल प्रभाव वाले एक इलाके में ऑपरेटिंग बेस स्थापित करना।
4: जिस इलाके को नक्सली अपना गढ़ कहते हैं, उस इलाके में जाकर अपनी जगह को स्थापित करना, FOB यानी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उन इलाकों के बीच में अगर आप जाकर एक FOB एस्टैब्लिश करते हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपने नक्सली के गढ़ में सेंध लगा दी। पर यह कितना कठिन ऑपरेशन होता है, ये किसी कमांडो से पूछिए।

0: घना जंगल, दुर्गम रास्ता, नहर नाले, जंगली जानवर, विषैले जीव और उनके बीच बस मिशन की ओर बढ़ते जाने का जुनून,
1: छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ का मौसम होता है। अभी आप देखेंगे ये अभी जो बरसात का मौसम है इसमें जितने वो नाले हैं वो बरसाती नाले हैं। कुछ नाले ऐसे भी होते हैं कि अगर आप अभियान में बारिश हो रही है आप उसको क्रॉस कर जाएं और कुछ घंटे लग जाएं तो वापस आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। वाइल्ड बोर की इंजरी जो मैंने खुद देखा है, वाइल्ड बोर की इंजरीज हैं। तेंदुए जब गाँव वालों से हमने बात की तो उन्होंने केजी ऑपरेशन में बताया गया था कि सर वहाँ आपको तेंदुए भी मिल सकते हैं। वो एक अपना चैलेंज है बिकॉज जब आप ऐसे टेरेन में जा रहे हैं जहाँ पर आपका आप स्लिप हुए तो आप कई सौ फीट नीचे गिर सकते हैं और सामने से कोई जंगली जानवर दौड़ के आ जाए। सांप मेजर इशू रहता है, हालांकि मुझे लगता है कि कोबरा और सांपों का कुछ आपस में दोस्ती है।
2: हालात बद से बदतर हों तो कोबरा उतनी ही निखर के सामने आती है, तो ये जो भावना है ये अपने आप में कॉन्फिडेंस भी देती है और मुझे लगता है कि ये भावना, ये कॉन्फिडेंस ही कोबरा को कोबरा बनाती है।
0: किसी भी क्षेत्र से नक्सलवाद के खतरे को मिटाने की प्रक्रिया का निष्कर्ष होता है वहां सैन्य कैंप स्थापित करना और दुश्मन ऐसा होने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है।
1: वो जो एरिया है जिसमें अगर दुश्मन को ये छूट है कि वो खुलेआम घूम सकता है, खुलेआम गांव वालों से बात कर सकता है, खुलेआम सिविलियंस को ये बता सकता है कि वह लोकतांत्रिक तौर पर तो नहीं सरकार से बेहतर है, ये ज़रूरी होता है कि उस एरिया पर हमारा वर्चस्व हो और हम वहाँ प्रेजेंट हों। इसलिए प्रेजेंट हों, एक तो मिलिट्री टर्म्स में कि हमारे लिए जो भी हमारे अभियान हैं उनकी जो दूरी है वो बहुत कम हो जाए। बहुत सोच समझ से कैंप लगाए गए थे, जैसे जैसे कैंप लगते गए हम दुश्मन का जो प्रभाव का इलाका था उसको छोटा करते गए।
2: उस सस्टेन्ड प्रेजेंस से हुआ ये कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम था नक्सलियों के विरुद्ध एक्ट करने में वो रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हुआ और जो एक सस्टेन्ड लॉजिस्टिकल सपोर्ट था, जो एक इशू आता था पहले दूरी की वजह से, वो इशू भी सॉर्ट आउट हुआ और उससे हमारी जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में जो कैपेबिलिटी थी वो बहुत बढ़ी।
0: जिस जगह पर कोबरा कमांडोज को FOB स्थापित करने का जिम्मा दिया गया था वो जगह बेहद अहम थी। ये दुर्दांत नक्सली हिडमा के गांव के ठीक पड़ोस का गांव था और नक्सली क्रूरता का गढ़, लेकिन उससे भी बढ़कर ये कमांडोज के लिए बलिदान की मिट्टी थी। एक ऐसी जगह जो उनके 22 साथियों के रक्त से रंजित थी।
1: अप्रैल 2021 में हमारे साथियों 22 साथियों ने वहां शहादत दी थी और टेकलकुडियम पुवर्ती ये ऐसा इलाका है जहां पर डेकेड से इनका वर्चस्व रहा है क्योंकि वो उनका वो कंट्रोल वाला इलाका माना जाता था।
3: हमारा प्रस्तावित कैंप है वो हमारी ओन पोजीशन से लगभग 7.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पड़ेगा। अब हमारा CGRL एवं 51 mm मोटार की पोजीशन हम 254 हाइट पर रखेंगे। क्या आप सभी इस चुनौती के लिए तैयार हैं?
0: गहरे नक्सल प्रभाव वाले एक इलाके में ऑपरेटिंग बेस स्थापित करना, FOB यानी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस को सेटअप करने का मतलब है उस इलाके में सुरक्षा बलों की स्थायी मौजूदगी कायम करना जिसे नक्सली आजाद क्षेत्र घोषित करते थे।
4: उस दिन हम लोग इकट्ठा हुआ था अपना 201 बटालियन का तीनों कंपनी बेडरे कैंप में। बेडरे कैंप से हम लोग रात को 1 बजे निकला था टेकलगुड़ियम के लिए।
0: जनवरी की रात करीब 1 बजे कमांडोज कैंप से निकले। कोई पक्की सड़क नहीं, कोई तैयार रास्ता नहीं, घने जंगल के बीच कोबरा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे।
5: जंगल में ऑपरेट करना सर मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, काफी नाले, सड़क भी नहीं है, मतलब काफी मुश्किल है सर। जो टेरन है यहाँ का उबड़ खाबड़ है, जानते भी नहीं है। किसी भी नई जगह पर कोई भी डिप्लॉय होगा तो वहाँ का जो टेरन है वो भी नहीं जानते हैं सर। तो जंगल में चलना एक नक्सलियों के बीच में, मतलब दुश्मनों के बीच से जाना, ये काफ़ी मुश्किल है सर।
4: तो दूर भी काफ़ी दूर भी था जाते समय हमको बीच रास्ते में वेट भी करना पड़ता था क्योंकि मतलब दूसरा स्टेट फोर्स भी सपोर्ट में रहता है हमारा, तो उनके लिए हमको थोड़ा बहुत वेट करना भी पड़ा था।
0: कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन कोबरा, एक एलीट स्पेशल फोर्स, लेकिन अगर हम केवल कोबरा भी देखें ना तो बहुत सारी समानताएं आ जाती हैं, यानी इनका काटा पानी भी नहीं मांगता है। ये जिन जंगलों में ऑपरेट करते हैं वहां के राजा होते हैं, इनके सामने किसी की कोई बिसात नहीं होती है। यही होते हैं कोबरा कमांडोज, यहां तक कि इससे भी कहीं ज्यादा। ये वो कमांडो है जो जंगल में रास्ता नहीं ढूंढते बल्कि बनाते हैं। जहां नक्सलवाद की बंदूक गरजती है वहां कोबरा का जवाब पहुंचता है। जहां दुश्मन जंगल को अपनी ढाल समझता है लेकिन भूल जाता है ये जंगल ही कोबरा का घर है। कोबरा कमांडो सीआरपीएफ की वो ताकत है जो जंगल से उठने वाले खतरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये केवल जंगल में ऑपरेशन नहीं करते, ये जंगल को किताब की तरह पढ़ते हैं, कहानी की तरह समझते हैं और फिर जंगल में आवाजों की तरह घुल जाते हैं। ये वो हैं जिनके सामने शिकारी भी शिकार नजर आता है। कदमों की आहट से खतरे को भांपना, घने जंगल में दुश्मन की मौजूदगी पहचानना और सही वक्त पर सटीक कार्रवाई करना, यही है इनकी खासियत।
6: कोबरा सीआरपीएफ की एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जिसका आप अगर ये पूछे तो कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन है। ये सीआरपीएफ की एक पार्ट है जिसको स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के इसमें रखा गया है तर्ज में, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो अलग से इसलिए करवाई जाती है। जो भी कोर नक्सल एरियाज है, हमारा काम है उस एरिया में जाना, उस एरिया में एफओबी एस्टैब्लिश करना और जो भी ऑपरेशन हमें हमारे सीनियर्स के द्वारा बताए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट करना।
7: हम हटेंगे नहीं पीछे, क्योंकि हमारा खून में नहीं है हम पीछे हटना, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग भी ऐसे ही है और हमारा टीम कमांडर्स भी, हमारा अफसर भी है और हमारा सिखलाई वैसे है। जो सीआरपीएफ से हम यहाँ कमांडो में आए तो हमारा 3 महीने का सिखलाई यही है कि हम लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारा जान चला जाएगा हम कुर्बान दे देंगे अपने देश के लिए, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे।
0: दुनिया जिसे जंगल लाल आतंक का गढ़ समझती है वो कोबरा की बैटलफील्ड है और इसी रण क्षेत्र में एक खास मिशन लिए ये कोबरा कमांडोज पहुंचे थे तेकुल गुडेर। रात भर चलने के बाद उस इलाके में जहां नक्सलियों के कथित गढ़ के बीच सुरक्षा का कैंप स्थापित करना था, कमांडोज ने वहां पहुंचते ही इलाके को सुरक्षित करने के लिए कॉर्डन लगाना शुरू किया ताकि निर्माण का काम शुरू हो सके। गांव के कुछ लोग आकर पूछताछ करने लगे।
7: उसमें पहले हमने कुछ नक्सली पकड़ा भी था, हमारा कंपनी ने पकड़ा था। पकड़ने के बाद उन्होंने बताया कि कुछ नहीं है, हम जाएंगे, हम गांव वाले हैं। तो उसमें 2-3 आदमी चला गया था जब अटैक शुरू हुआ, उस टाइम उन्होंने धीरे से निकल भी गया था, भाग गया था।
0: अच्छा, ये अटैक से पहले आप बता रहे हैं कि उनको पकड़ा गया था?
7: जी, पकड़ा गया तो उन्होंने बोला गांव वाले हैं, तब हमने छोड़ा है। अब बाद में पता चला कि वो भी नक्सल थे।
0: सालों का परिश्रम और ट्रेनिंग कोबरा कमांडोज को इतना पारखी बना देता है कि वो आम ग्रामीण और नक्सलियों के बीच का फर्क समझ लेते हैं। पर उनके पास सतर्क होने के लिए बस कुछ ही पल थे, या शायद उतना भी नहीं।
8: अफवान रुद्रा, अफवान, फायरिंग स्टार्ट हो गई है, आप फायरिंग का जवाब फायरिंग से देंगे और आगे की तरफ मूव करते रहेंगे।
4: तो अर्ली मॉर्निंग होने के बाद हम लोग कॉर्डन लगाए, कॉर्डन लगा ही रहा था तभी पूर्वती साइड से बहुत भारी मात्रा में नक्सली का मतलब मूवमेंट देखा गया था। तो हम लोग को अलर्ट कर दिया गया था हम लोग का ऑफिसर द्वारा, उसके बाद हम लोग अलर्ट रहे, उसके बाद ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया था।
8: अल्फा वन कॉलिंग रुद्रा, अल्फा वन।
9: रोजर सर,
8: आप अपने सेक्शन को लेकर डोमिनेंट हाइट पे आइए, मैं इस एरिया को कवर कर रहा हूं।
0: टीम में सबसे आगे चल रहे थे पवन। पवन स्काउट की भूमिका में थे, जिसकी जिम्मेदारी एक ऑपरेशन में सबसे अहम होती है। रास्ते में सबसे पहले खतरा उसी को दिखाई देता है और सबसे पहले खतरे का सामना भी वही करता है।
1: स्काउट जो होते हैं वो सबसे आगे चलते हैं, वो सबसे अलर्ट लोग माने जाते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन सबसे अच्छा होता है। तो अगर मैं 30 लोगों की टीम में अगर किसी एक आदमी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानूंगा तो वो स्काउट होता है। तो पवन स्काउट था और कोई भी काम बताया जाए बहुत ही रोबस्ट, बहुत वेरी फिजिकली फिट मैम। दुश्मन ने आके सिविलियन के तौर पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया क्योंकि गांव आसपास ही है मैम वहाँ पर। तो और उसके बाद ये कुछ अंदेशा हमारी टीमों को भी हुआ कि ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है मैम, बट सिविलियन होते हैं तो सिविलियन के साथ में आपको बहुत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना होता है। कुछ शायद हमारे जवानों ने सिविलियन से पूछा भी कि आप इधर मत आइए और दूर चले जाइए। तो उसके बाद जब फायर फाइट होना स्टार्ट हुआ तो फिर वो मैं भारी मात्रा में फायर आया क्योंकि बहुत नज़दीक शायद उनकी बड़ी टुकड़ी जो भी उनकी जो आप मिलिट्री जो फॉर्मेशन थे वो PLGA CRC सभी थे जैसा रिपोर्ट किया गया। और फिर वो भीषण फायर फाइट स्टार्ट हुआ और लगभग 1.25 घंटा के बाद में पवन को पहली गोली लगी ना और उसकी शहादत हुई।
0: एक स्काउट ये समझकर जानकर चलता है कि टीम पर आने वाले हर खतरे का सामना सबसे पहले वही करेगा।
8: अल्पवन कॉलिंग रुद्र, अल्पवन अपने स्कॉट पवन को गोली लगी है, आप दो कमांडो लेके फटाफट यहाँ पे आगे आए, बाकी लोग फायरिंग कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू।
0: पवन भी ये जानते थे जब पहली गोली उन्हें लगी तो उनके साथी से रुका नहीं गया। घायल पवन खुले क्षेत्र में थे और सामने से भारी फायरिंग आ रही थी।
1: पवन को इंजरी हुई थी और पवन की इंजरी फेटल थी मैम, ये अधिकारी ने जज कर लिया था इनकी फेटल है। तो उनके जो बड़ी थे मलकीत ने बोला कि सर मैं जाता हूँ पवन को लेने के लिए, और अधिकारी ने बोला गया कि वो ओपन में है, तू जाएगा और हैवी फायर आ रहा है तो गोली लग जाएगी। और मुझे अच्छी तरह याद है मलकीत ने कंपनी कमांडर को बोला कि सर वो बड़ी है, जाना तो पड़ेगा, और वो गया और मलकीत को भी गोलियाँ लगी।
0: यही तो है भारतीय सैन्य परंपरा के संस्कार कि कोई भी साथी पीछे ना छूटे। नक्सलियों की ओर से भीषण गोलीबारी का जवाब कोबरा कमांडोज की ओर से बखूबी दिया जा रहा था, लेकिन नक्सलियों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, एड ले रखी थी और कमांडोज के पास छुपाव की गुंजाइश नहीं थी।
4: कवर कुछ नहीं होता है उसमें, हम तो पेड़ के सहारा से ही सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा। पेड़ को आड़ बना के खुद को बसप करनी है।
0: इन जंगलों को नक्सली अपने हथेलियों की तरह पहचानते हैं क्योंकि इन्हीं इलाकों में वो ऑपरेट करते हैं। जहां तक हमारे कमांडोज का सवाल है, वो किसी भी जगह पर अचानक एक ऑपरेशन लॉन्च करने में सक्षम होते हैं, लेकिन एक सीधा सा एडवांटेज अगर आप ऐसी परिस्थितियों में देखें तो एक नक्सली के पास हो जाता है जिसे मालूम है कि किस इलाके में क्या है, किस इलाके में क्या खतरा है, किस इलाके में क्या बचाव है, क्या एडवांटेज है, और वहां पर उन परिस्थितियों को अपने हक में मोड़ लेना इन कमांडोज की खासियत है। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी के बीच कंपनी कमांडर लखबीर सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के छर्रे सीधे उनके सर पर लगे, सर से खून बहने लगा।
8: लखबीर सिंह, स्टे विद मी।
1: उसके लगभग 4-5 मिनट बाद जो हमारे कंपनी कमांडर थे लखबीर, उनको सर में बीजेल की इंजरी हुई। हालांकि बीजेल की इंजरी हुई और उनको बोला गया कि आप ज्यादा चोट लगी है, आप पीछे आ जाइए।
8: डोंट यू क्लोज योर आईज मैन,
10: We're getting you out of here.
0: साथ ही बार बार कहते रहे कि वो इवैक्यूएट हो जाएं, लेकिन उन्होंने मोर्चा छोड़ने से साफ इनकार कर दिया.
11: There are

0: खुले में होने के कारण कंपनी को एक के बाद एक नुकसान पहुंच रहा था। शुरुआती मुठभेड़ में पवन के बाद एक और कमांडो देव सिंह को भी गोली लग गई।
1: नीड एम्बुलेंस सर, कमांडो गोली लगी है।

0: देवेंसी तमिलनाडु के रहने वाले हैं मैम. वो बटालियन में शायद उनका दूसरा टेन्योर था ऑफ सीनियर, तो बटालियन में लगभग 6-7 महीने पहले ही आए थे. पवन के लगभग 15-20 मिनट बाद देवेंसी को इंजरी हुई मैम, और फिर उनकी शादी हुई मैम.
1: इस तरह के ऑपरेशन में कोबरा कमांडोज के लिए स्थिति और भी कठिन इसलिए होती है क्योंकि उन्हें नक्सलियों का नाश भी करना है और गांव वालों को बचाना भी है.
2: पहले प्रथम में उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन शील्ड बना के लेके आए. अच्छा. ताकि हम गांव वालों के ऊपर फायर करेंगे तो वो कुछ उनका नुकसान हो जाएगा, वो हम फायर नहीं कर पाएंगे, वो फायर करें हम फायर ना कर पाए वैसे करके. फिर जब उन्होंने फायर स्टार्ट किया तो गांव वाला भाग गया. अच्छा. तो गांव वाला भाग गया तो हमने भी फिर फायर किया तो हमने बचाव कर लिए. तो बचाव किया तो फिर हमने अच्छा सा लड़ा है, उसमें हमने पीछे नहीं हटा.
1: हर एक ऑपरेशन अपने साथ चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन चुनौतियों से पार पाना ही हमारे जवानों की सबसे बड़ी खासियत होती है. लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए वंदे मातरम.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस. इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
3: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
4: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
5: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरए।
3: अब मैं क्या ही बोलूं?
6: परिवार अटूट भरोसा।
7: एक तो एक
8: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
1: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
0: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
2: 19 साल के छात्र साहिल रजाब ने दावा किया उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
0: हर बात देश के सामने।
3: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
0: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।
4: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
5: ये तो तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।
6: हमारे CLP राजस्थान के मंदिर जाते हैं, BJP के नेता शुद्धिकरण करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये BJP और RSS के लोग करते हैं। सिर्फ BJP और RSS के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नेपाल आपदा में बड़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 675 से ज्यादा शव बरामद, करीब 2500 लोग लापता। भारत ने देर रात काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, 23 साल का रिकॉर्ड टूटा, शहर बना है झील, सड़कों पर दौड़ी नाव, मठ मंदिर और सड़कें सैकड़ों दुकानें पानी पानी, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में योग सत्र में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, आज द्विपक्षीय वार्ता, कल भारतीय समुदाय से मिले। न्यूयॉर्क में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक है, बोले हिंदुत्व का मतलब मुस्लिमों को बाहर करना नहीं। और आरक्षण विवाद पर आमने सामने नरेंद्र मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन अम्बाजी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा।

0: फायरिंग स्टार्ट हो गई है, आप फायरिंग का जवाब फायरिंग से देंगे।
1: तो जैसे हम लगाए तो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया।
0: आप अपने सेक्शन को लेकर डोमिनेंट हाइट पे आइए, मैं इस एरिया को कवर कर रहा हूँ।
2: लगातार चलती गोलियों के बीच अब तक 20 जवान घायल हो चुके हैं, लेकिन कोबरा की टीमें अपनी पोजीशन पर डटी रहीं।
3: 3 से 4 घंटा लगातार फायरिंग चला था। उसके बीच अपना भी मतलब एक दो इंजोर भी हो रहा था, उसके बीच तो उनको भी हम लोग सेफ जगह के लिए निकल रहा था और लगातार फायरिंग तो चल ही रहा था।
2: लगभग 5 घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां चलती रही। नक्सली सिर्फ संख्या में ज्यादा नहीं थे, उन्होंने हमला पूरी तैयारी के साथ किया था। जंगल खेत, छोटे छोटे मेड़ और बीच में नाले, पीछे पहाड़ था, सामने गांव और जंगल, और इसी नाले का फायदा उठाते हुए नक्सलियों ने नाले की दिशा से आगे बढ़कर BGL फायर यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया था।
3: बाद में तो पता चला कि 800 से ज्यादा ही था।
4: 800 से ज्यादा,
3: उस टाइम हमारे नजर में तो हम लोग लग रहा था कि 300 से 400 नक्सली होगा।
4: हाँ।
3: बाद में हम लोग को पता चल रहा था कि ड्रोन कैमरा वगैरह से इसे शूट देके 800 से 900 के नक्सली था।
2: पहला प्लान था सुरक्षा बलों की छोटी छोटी टीमों को हमला करके आइसोलेट करना। नीति साफ थी, एक छोटी टीम को घेरो, उसे अलग थलग करो और फिर भारी संख्या में हमला करो।
1: हमारा कमांडो सेल लमसम 300 अप्रोक्सीमेटली 300 है, 3 कंपनी मिला के। तो 3 कंपनी डिप्लॉयड हुआ था दूर दूर, और उन्होंने जो अटैक किया हमारा जो 2 टीम है, 2 टीम के ऊपर किया था। 2 टीम का नफरी था 50-60 आदमी।
4: अच्छा,
1: 60 आदमी के ऊपर उन्होंने 300 आदमी 300-400 नक्सली जो है हम लोग घेर के मारने की कोशिश किया था।
2: लेकिन नक्सली बड़ी गलती कर बैठे थे। इस बार उनके सामने 201 कोबरा बटालियन थे।
1: खून में नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हटेंगे नहीं पीछे, क्योंकि हमारा खून में नहीं है हम पीछे हटना, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग भी ऐसे ही है और हमारा टीम कमांडर्स भी, हमारा ऑफिसर भी है और हमारा सिखलाई वैसे है।
2: आखिरकार नक्सलियों को पीछे हटना पड़ा। 3 जवानों की शहादत के बावजूद कोबरा कमांडोज का मिशन नहीं रुका। तेकुल गुडे में FOB स्थापित हुआ और करीब 15 दिनों के भीतर पूवर्ती में भी अगला कैंप खड़ा कर दिया गया।
5: इस अभियान के बारे में एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इस अभियान से उनका मनोबल गिरना और फोर्सेस का मनोबल बढ़ने का एक बहुत क्लियर एक बेंचमार्क ये है कि 4-5 घंटे की फायरिंग के बाद अपने जवानों की शहादत हुई हमारी 3 जवानों की, 201 कोबरा और 150 बटालियन CRPF के, उसके बावजूद वो कैंप लगा और उससे कुछ दिन बाद 15 दिन के अंदर हमने अगला कैंप जो पूर्ति कैंप है हमने वो कैंप भी लगा दिया।
2: तेकुल गुडेम में सिर्फ गोलियां नहीं चली बल्कि नक्सलियों के गढ़ और सुरक्षा बलों के संकल्प का मुकाबला हुआ। कोबरा ने सिर्फ हमला नाकाम नहीं किया बल्कि उस इलाके में अपनी मजबूत मौजूदगी कायम की और बस्तर की जमीन के नीचे गाड़ दिया बस्तर के लाल आतंक को हमेशा हमेशा के लिए। जंगल जहां छोटे से छोटा खतरा भी बेहद जहरीला हो सकता है, बेहद खतरनाक, और ऐसे ही खतरों का सामना इन जंगलों में करते हुए ये कमांडोज आगे बढ़ते हैं। चाहे इन घने जंगलों की आड़ से कोई खूंखार जंगली जानवर इन्हें देख रहा हो या फिर किसी और पेड़ की आड़ से वो नक्सली जिनके खात्मे के लिए प्रणबद्ध ये कमांडोज आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन जंगलों में भालू, तेंदुआ, बाघ, ये चीजें सामान्य होती हैं, और सोचिए कि जब आप एक दिन के लिए नहीं कई कई दिन के लिए जाते हैं तो छोटे से छोटा कीड़ा आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होता है जिन जगहों पर आप कुछ देर के लिए सुस्ताने के लिए भी रुके।

0: ये वो इलाका है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता।
1: तू एक अल्फा, तू एक, हमारे कमांडो को गोली लगी है।
0: हर पहाड़ी, हर पगडंडी, हर रास्ता अपने अंदर एक खतरा छिपाए रहता था।
2: अल्फा वन, कॉलिंग रुद्र, अल्फा वन।
0: और ऐसे इलाकों में सबसे बड़ा एडवांटेज उसी के पास होता है जो इस जंगल के अंदर रहते हो, और खतरा उसके लिए जो बाहर से जंगल के अंदर दाखिल हो रहा हो।
3: कोबरा इज ऑल अबाउट मोटिवेशन। कोबरा एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है, और ये बात कोबरा के हर जवान, हर कमांडो, हर अधिकारी के मन में ऐसी घर कर गई है, और शायद यही प्रेरणा देती है कि हालात कैसे भी हों, कुछ भी हों।
4: नहीं, हमारा एक लोकेशन नहीं है, हमारा कंस्टेंट विजिलेंस। जैसे ही हमको बारिश में भी जाना पड़ेगा, किचन में भी जाना पड़ेगा, नाला में भी जाना पड़ेगा। अभी जैसे KGH ऑपरेशन हुआ था, उसमें घर भी जलना पड़ा, तो हम किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी वातावरण में और किसी भी जंगल में हम चले जाएंगे, जितना भी दूर हो, उसमें हम ये पानी या खाना अपना आराम का परवाह नहीं करेंगे।
0: जंगल शहर के लिए जंगल हो सकता है, लेकिन एक नक्सली के लिए उसका घर और दफ्तर दोनों। उसके पास अपने इलाके की पूरी जानकारी रहती है, किस रास्ते पर कम खतरा, किस पर ज्यादा, किस जगह एम्बुश लगाना है और कहां से बच भागना। यही लोकल नॉलेज उसे सुरक्षा बलों के मुकाबले बढ़त देती थी। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां, गहरे नाले और अब्बू झमाड़ जैसे दुर्गम इलाके, जहां पहुंचना ही अपने आप में चुनौती होती है। नक्सली इन्हीं इलाकों को अपनी ढाल बनाते थे। जंगल का भूगोल इनके लिए नक्शा कम और हथियार ज्यादा होते थे।
5: सबसे पहले जो हमारी चुनौती होती है वो वहाँ टेरेन का चुनौती होती है। जो इस टेरेन में हम जानते नहीं है, उसको वहाँ हम गए नहीं हैं, उस टेरेन में हमें ऑपरेशन करना होता है, तो वो एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। दूसरा चुनौती होती है जो दुश्मनों के द्वारा लगाया गया आईडी हमारे ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे मूवमेंट को, तो वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। दूसरा, तीसरा होता है जो हमारे बेसिक एमिनिटीज़। अगर हम 3 दिन के लिए ऑप्स पे निकल रहे हैं, अगर वहाँ 4 दिन या 5 दिन होता है, तो उस कंडीशन में हमारे बेसिक एमिनिटीज़ की पानी की समस्या होती है। तो जब पानी की समस्या हमें आती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमें पानी को पीना नहीं, हमें पानी को बचाना है।
6: तो एक एवरेज ऑपरेशन के लिए निकलते हुए एक कोबरा कमांडो क्या क्या लेकर जाते हैं?
7: हम सबसे पहले हम जरूरी चीज पानी बॉटल,
6: पर पानी के बॉटल तो इतने सारे देख रही हूँ मैं यहाँ पे।
7: मैम, हमें अंदर जब भी हम ऑपरेशंस में जाते हैं, तो हमें वाटर सोर्स का कंफर्मेशन नहीं होता कि हमें अंदर वाटर सोर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे।
6: अच्छा,
7: तो इसलिए हम ऑलरेडी अपने साथ वाटर सफिशिएंट मात्रा में वाटर कैरी करते हैं।
6: ओके,
7: एटलीस्ट 10 लीटर 8 लीटर वाटर हम कैरी करते हैं।
6: अच्छा, इसीलिए 3 बॉटल्स दिख रहे हैं।
7: जी मैम, इसको हम कमांडो बॉटल करते हैं स्पेशली। हाँ, हाँ। और ये इनबिल्ट फिल्टर के साथ आती है। अच्छा, इसको DRDO द्वारा डेवलप किया गया है।
6: अच्छा, ये मतलब गंदा पानी फिल्टर कर सकता है।
7: जैसे हम किसी रिवर से पानी लेते हैं,
6: हाँ।
7: तो वो एटलीस्ट क्लीन नहीं होता है।
6: हाँ।
7: तो इसके थ्रू हम उसको भर के फिल्टर कर सकते हैं।
6: अच्छा,
7: ड्राई राशन रखते हैं।
6: हाँ।
7: जिसको हम कभी भी
6: जल्दी बिना करने वाले नूडल्स भी हैं,
7: बिना कुक करे खा सके।
6: अच्छा
7: जी,
6: ये चूड़ा गया,
7: ये चूड़ा, चना,
6: चना रोस्टेड चना है,
7: रोस्टेड चना है,
6: इससे ताकत भी आता है।
7: अच्छा,
6: ये मूढ़ी हो गया,
7: मुड़ी।
6: राइस पफ्स
7: और मैगी पैकेट्स,
6: ठीक है, नूडल्स हो गए जो गर्म पानी में डाल के आप खा सकते हैं। ये क्या?
7: ये मैम हम चूल्हा बोलते हैं इसको।
6: हाँ।
7: ये ब्यूटेन है,
6: ये छोटा सा, ये जल जाएगा उधर,
7: ये जल जाता है, बिकॉज ऐसे मौसम में बारिश में हम लकड़ी का यूज नहीं कर सकते। इसको मशीन बोलते हैं। ये बर्तन की तरह काम आता है, इसमें हम कुक भी कर लेते हैं।
6: पर ये
7: हमारा राशन पानी हो गया
6: हफ्ते भर का।
7: जी मैम। देन मैम, ये हमारे कमांडो रोप होती है। इसके मल्टीपर्पज बेनिफिट्स हैं, लाइक जब भी हम किसी ऑब्स्टिकल नाले वगैरह क्रॉस करते हैं, इसकी हेल्प होती है।
6: ओके,
7: लाइक स्ट्रेचर वगैरह फॉर्मेट करना है।
6: हाँ।
7: तो इसका हम यूज कर सकते हैं।
6: अच्छा,
7: ये मैम रेन पोंचो,
6: ऐसे जंगलों में तो कभी भी बारिश
7: होती है। पॉलीथीन कैरी करते हैं अपने साथ, लाइक हमें पता नहीं होता जंगल में रहना है 7 डेज 5 डेज जब भी होता है, तो लाइक रात को हम इस पे सोते हैं। ये होता है मैम जंगल फॉर्मूला।
6: ओके,
7: मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करता है ये।
6: अच्छा
7: जी मैम,
6: ये आपका लाइटर
7: मैम, छूट गया चूल्हा जलाने के। ये है मैम GPS।
6: अच्छा,
7: ये मैम हमारा BP जैकेट है, बुलेट प्रिवेंटिव के लिए।
6: अब तो हल्का हो चुका है ना, पहले के मुकाबले जो आप लोग पहना करते थे। अब उसके मुकाबले
7: पहले के मुकाबले
6: भारी अभी भी है पर उसके मुकाबले हल्का हो चुका है।
7: उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा मैं एमुनेशन वगैरह कैरी करते हैं।
6: तो ये टोटल वजन मिला के आपका वेपन ये खाने पीने पानी
7: अराउंड 25 हो जाता है।
0: जंगल के बाद नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था लोकल कनेक्ट। आम लोगों के बीच घुल मिल जाना ये सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता था।
8: टेकलगुडेम वाले एरिया को देखेंगे तो वहाँ गांव है बहुत ना। वो गांव अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बिकॉज दुश्मन की तरह हम लोग अंधाधुंध और बिना सोचे समझे फायर नहीं कर सकते हैं। हमारे पास फायर पावर होता है मैम, सरकार के द्वारा दिया गया इतना फायर पावर है कि किसी भी दुश्मन को पीछे करने या उनको नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है। लेकिन जहां गांव वालों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो गांव वाले नागरिक हैं देश के और उनकी सुरक्षा का हमें ध्यान रखना होता है।
0: लोकल सपोर्ट के बाद आती थी इनकी सबसे खतरनाक रणनीति असिमेट्रिक वॉरफेयर। नक्सली हमेशा आमने सामने की लड़ाई से बचते रहे। इनका तरीका ही था घात लगाओ हमला करो और भाग जाओ। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो 1990 से 2010 के बीच ही इस संघर्ष में 6000 से ज्यादा लोगों की जान गई और अगर साल 2000 से 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल यानी SATP के मुताबिक इस दौरान नक्सल हिंसा में कम से कम 12,102 लोगों की मौत हुई। लेकिन वक्त के साथ भारत सरकार ने भी इस एडवांटेज को तोड़ने की रणनीति बदली, सुरक्षा एजेंसियों को फुल सपोर्ट दिया। ऑपरेशन सिर्फ नक्सलियों को खोजने तक सीमित नहीं रहे बल्कि इंटेलिजेंस के आधार पर ट्रेस, टारगेट और न्यूट्रलाइज की रणनीति अपनाई गई और देश के लिए मिशन बन गया नक्सल मुक्त भारत।
6: एक ऑपरेशन का खत्म होना खतरे का खत्म हो जाना नहीं है, इसीलिए एक ऑपरेशन जब खत्म होता

0: से हम तभी हो सकते हैं जब नक्सल दोबारा न पनपने पाए।
1: जंगल के खतरों और उसके आगे मिशन जीत का। सुरक्षा एजेंसियों ने रियल टाइम डेटा शेयरिंग और अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया। कोबरा को नए हथियार और गैजेट्स से लैस किया गया।
0: समय के साथ बहुत कुछ बदला है और बदला है एक कोबरा कमांडो का गियर। सर, इसकी फंक्शनैलिटी और एक ऑपरेशन में इसका जो इस्तेमाल होता है वो बताएं।
2: वैसे तो कोबरा बेसिकली गोरिल्ला वारफेयर के लिए एक रेज की हुई फोर्स है और उसमें कन्वेंशनल वॉर काफ़ी कम होता है, लेकिन जब भी आमने सामने की लड़ाई होती है तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव हमारी चीज़ है ये बीआर हेलमेट और ये मेरी बीपी जैकेट। स्टार्टिंग में बहुत हैवी होती थी क्योंकि मेटेलिक प्लेट्स होती थी, आजकल इसमें लाइट वेट प्लेट्स आने लगी हैं। और उसके बाद में मेरा VHF सेट मुझे अपने साथियों से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। इसकी रेंज ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर है और अगर उससे ज़्यादा कम्युनिकेट करना है उससे ज़्यादा डिस्टेंस के लिए तो उसके लिए हमारे पास मैन पैक्स होते हैं।
0: अच्छा,
2: उसके बाद हम टैक्टिकल ग्लव्स होते हैं हमारे हाथों को झाड़ियों से कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए।
0: रात में आप लोग जो नाइट विजन अब है उससे कितनी क्लैरिटी और एक ऑपरेशन में कितना फ़ायदा?
2: काफ़ी फ़ायदा होता है मैम, अगर थोड़ी सी भी मूनलाइट या स्टारलाइट है ना तो ये हमारे लिए दिन जैसा काम करता है। अच्छा। जैसे हम दिन में अपनी आंखों से देख पाते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही काम करता है, बस थोड़ी सी लाइट चाहिए इसको।
1: CRPF, कोबरा, BSF, राज्य पुलिस, ग्रेहाउंड, DRG जैसी फोर्सेस ने नक्सलियों के गढ़ में अपनी मौजूदगी बढ़ाई। पुराने पुलिस स्टेशनों को मजबूत किया गया, नए सुरक्षा कैंप बनाए गए, 2 FOB पोस्ट के बीच की दूरी कम की गई और उन इलाकों में फोर्स की पहुंच बनाई गई जहां कभी नक्सलियों का एक तरफा दबदबा था।
3: ऑपरेशन बेस है, FOB बोलते हैं, तो ये टकलगुडियम शुरू किया था, उसके बाद नक्सली का बैकफुट हो गया, खास करके जो PLGA जो उनका जो बड़ा है संगठन है नक्सली का, तो उनका लास्ट अटैक यही है जो अमर ऊपर किया था, उसके बाद वो उन्होंने कहीं अटैक नहीं कर पाया।
0: अच्छा।
3: तो उसमें जो उन्होंने बैकफुट हो गया उसके बाद उन्होंने कहीं अटैक नहीं कर पाए, उसके बाद हमारा कैंप लगातार लगना शुरू हो गया।
1: सिर्फ बंदूक से नहीं सड़क और नेटवर्क से भी नक्सलियों के एडवांटेज को खत्म किया गया। दूर दराज के इलाकों में सड़कें बनी, मोबाइल टावर पहुंचे, बैंक और ATM खुले, यानी जिस भौगोलिक अलगाव को नक्सली अपनी ताकत बनाते थे वही अलगाव धीरे धीरे खत्म किया गया।
4: बहुत बड़ा फर्क आ गया है और जैसा कि मैंने कहा कि जब से ये रणनीति अपनाई गई उससे अगर मैं बात करूँ रोड कनेक्टिविटी की, मैं बात करूँ मोबाइल कनेक्टिविटी की, पहले शायद जो गवर्नेंस और डेवलपमेंट जो था उसको उसके मेजर्स को पहुँचने में इन ग्रामीणों तक, स्थानीय नागरिकों तक, उन कोर एरियाज़ में जैसे दिक्कतें होती थी उस वजह से जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थी वो भी शायद सुरक्षित वातावरण में काम नहीं कर पा रही थी, एक चुनौती थी। लेकिन जैसे जैसे फोर्सेस का सस्टेन्ड प्रेजेंस वहाँ पे इंश्योर हुआ वैसे वैसे ये गतिविधियाँ भी बढ़ी। रोड कनेक्टिविटी में तो सी चेंज आया है और आज उसकी वजह से हालात ऐसे हैं कि जो कोर एरियाज़ के जो ग्रामीण हैं उनका जो एक्सेस है मार्केट्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जहां पहले वो कल्पना नहीं कर पाते थे, आज वो एक्सेस बहुत ही सीमलेस हो गया है।
1: हालांकि इस इलाके की एक एक सड़क और एक एक इमारत के पीछे हमारे जवानों के बलिदान की अनगिनत कहानियां हैं और उसी की वजह से आज जंगल से होकर सड़क जा रही, मोबाइल नेटवर्क के लिए शहर नहीं जाना पड़ता है, जहां कभी टेकलगुड़म में नक्सल बंदूक के जरिए जनताना सरकार चलाते थे आज वही CRPF बच्चों के लिए स्कूल चला रही, इलाके की तस्वीर बदल रही है। ये भी विडंबना है कि आजादी की बात करने वाले नक्सली क्षेत्र रहे बस्तर में 93 गांवों में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एनकाउंटर की लड़ाई नहीं रही, ये उस पूरे सिस्टम को बदलने की लड़ाई बनी जिसमें जंगल, भूगोल, स्थानीय नेटवर्क और डर नक्सलियों की ताकत हुआ करते थे। इस डर को ही कोबरा कमांडो ने इस पूरे क्षेत्र से खत्म कर दिया। लोग अब असल मायने में आजाद। हमारे कोबरा कमांडो के लिए ये टास्क भले खत्म हो गया हो लेकिन नई जिम्मेदारी के साथ,

0: तैयारी में है। कभी जिस जमीन को नक्सली अपना सबसे बड़ा बैटल फील्ड और आजाद क्षेत्र मानते थे, आज उसी जमीन पर सुरक्षा बल अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जंगल को जानना ताकत हो सकती है, लेकिन जंगल में लगातार मौजूद रहना, उसे बदल देना और उसी जमीन पर अपना ऑपरेशनल एडवांटेज बना लेना, यही असली गेम चेंजर है और कोबरा इस खेल के राजा है।
1: गहरी रातों के राही हम, सूने जंगल के रहबर, दुश्मन छिपके बच न सकेगा, मारेंगे बिल में घुसकर। कीट पतंगे छिप जाते हैं सुनकर के फुफकार हमारी, जीवन हंता गरल दंत में, आंखें हैं प्रलयंकारी। रग रग में है तड़ित तीव्रता, सांसों में तूफान भरा, सिर पर कफन बांध कर निकला, नाम है जिसका कोबरा।
0: देश के केवल एक पुकार पर ये अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समूचे देश का सपना नक्सल मुक्त भारत, और उसके लिए हमारे ये कमांडोज तत्पर, तैयार और आज भी हर चुनौती को करते हैं स्वीकार। अभी के लिए इतना ही। अभिमन्यु शर्मा, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

ऑफिस की दुनिया में बड़ा पद मिलना अक्सर बड़ी कामयाबी मानी जाती है। विजिटिंग कार्ड पर नया डिजिग्नेशन जुड़ जाए या सोशल मीडिया प्रोफाइल पर सीनियर का टैग लग जाए तो करियर में आगे बढ़ने का एहसास होता है, लेकिन क्या हर प्रमोशन के साथ जेब भी उतनी ही भरती है? इस सवाल का जवाब है कि हर बार ऐसा नहीं होता। इंडीड के सर्वे के मुताबिक भारत में बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स को ऐसा नहीं लगता। सर्वे में कहा गया है कि भारत में 10 में से करीब 6 प्रोफेशनल्स का मानना है कि उनका पद उनकी सैलरी से मेल नहीं खाता। वहीं करीब 80% कर्मचारियों का कहना है कि कंपनियों में टाइटल इन्फ्लेशन यानी बिना समान वित्तीय बढ़ोतरी के बड़े पद देने का चलन बढ़ रहा है, और पिछले 2 साल में प्रमोशन पाने वाले करीब हर तीसरे कर्मचारी को 5% से कम या बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं मिला। कई कंपनियां सीमित वेतन बजट के बीच कर्मचारियों को रोकने और खुश रखने के लिए बड़े डिजिग्नेशन देने का रास्ता अपना रही हैं, लेकिन कर्मचारियों की प्राथमिकताएं बदलती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक 52% प्रोफेशनल्स नई नौकरी चुनते समय बड़े पद की जगह ज्यादा सैलरी को प्राथमिकता देते हैं। वहीं 57% कंपनियों ने माना है कि वो कर्मचारियों को आकर्षित करने या रोकने के लिए बड़े डिजिग्नेशन का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मचारियों के लिए पोस्ट की अहमियत खत्म हो गई है। करियर ग्रोथ और प्रोफेशनल पहचान में डिजिग्नेशन की भूमिका अभी भी काफी मजबूत बनी हुई है। जॉब टाइटल कई बार भविष्य के मौके तय करने में अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि कर्मचारी इसे केवल नाम का बदलाव नहीं मानते। सर्वे के मुताबिक करीब 70% प्रोफेशनल्स मानते हैं कि उनका जॉब टाइटल भविष्य के करियर अवसरों को प्रभावित करता है। वहीं 73% लोगों का मानना है कि बेहतर डिजिग्नेशन से नए एम्प्लॉयर्स के सामने उनकी प्रोफाइल ज्यादा मजबूत दिखती है, और 57% कर्मचारियों ने कहा है कि उनके पद का असर उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन पर भी पड़ता है। इंडीड के मुताबिक जॉब टाइटल प्रोफेशनल पहचान, मौके और क्षमता का संकेत देते हैं, लेकिन असली अहमियत तब होती है जब उसके साथ जिम्मेदारी और कमाई में भी वास्तविक बढ़ोतरी हो जाए। मई और जून 2026 में हुए इस सर्वे में देश भर के 2500 से ज्यादा कर्मचारियों और 1200 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स की राय शामिल की गई है। सर्वे का संदेश साफ है कि कर्मचारी बड़े डिजिग्नेशन का स्वागत करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उसके साथ जिम्मेदारी, वेतन और करियर ग्रोथ भी उसी रफ्तार से बढ़ते रहें। आदित्य के राणा आज तक।

734 से ज्यादा शव बरामद, करीब 2500 लोग लापता। भारत ने देर रात काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, 23 साल का रिकॉर्ड टूटा। शहर बना झील, सड़कों पर दौड़ी नाव, मठ मंदिर और सैकड़ों दुकानें पानी पानी, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में योग सत्र में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, आज द्विपक्षीय वार्ता, कल भारतीय समुदाय से मिले। न्यूयॉर्क में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुस्लिमों को बाहर करना नहीं। और आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतनराम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का

0: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर। नमस्ते
0: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
1: सर धन्यवाद। सर आपसे बात करके मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए।
1: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
0: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, तो हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
0: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
1: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे हम, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
0: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
1: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
0: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता, इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी, बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालू जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालू पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है। इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: सुबह 11:30 बजे के बुलेटिन में अब हम बात करेंगे 6 बड़ी खबरों के बारे में। और आपको बता दें कि बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे नेपाल में भीषण बाढ़ से तबाही के बारे में। सबसे पहले आपको जानकारी देंगे जहां 700 के करीब पहुंच चुका है मृतकों का आंकड़ा। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं यूपी के चित्रकूट में आए सैलाबी संकट के बारे में भी, जहां उफनाई हुई मंदाकिनी नदी ने शहर के कई हिस्सों को अपनी जद में ले लिया है। इसके अलावा इस बुलेटिन में हम बात करेंगे न्यूयॉर्क में संघ प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन की, जिसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। साथ ही हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के उज्बेकिस्तान दौरे की। बाद दो सियासी खबरों की भी होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण का मुद्दा राहुल गांधी के हमले के बाद और ज्यादा गर्म आ गया है। वहीं दलित आरक्षण को लेकर भी नया सियासी रण शुरू हो चुका है। आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार के दो मंत्री चिराग पासवान और जीतनराम मांझी आमने सामने हैं। दोनों ने एक दूसरे के रेजिग्नेशन मांग लिए हैं। शुरुआत हम करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। नेपाल में आई भीषण बाढ़ से बड़ी तबाही मची है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लगातार। इसी बीच मृतकों का आंकड़ा हो गया है 700 के पार। नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही के मामले में जानकारी यह है कि 734 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 2500 लोग हैं जो अभी भी लापता हैं। इसी बीच लगातार लोगों की तलाश में नेपाल की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। दुर्गम इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो नेपाल में अब तक 734 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 25 से ज्यादा लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन में और बड़ी बाधाएं पैदा कर रहा है, लेकिन लगातार अलग अलग जगहों पर जिंदगी की तलाश जारी है। और अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से नेपाल में जबरदस्त तबाही हुई है। रेस्क्यू टीमें लगातार मोर्चे पर हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से इन तमाम टीमों को पहाड़ी इलाकों में भेजा गया है। और आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जगहों पर हेलीकॉप्टर्स की मदद से अब जिंदगी की तलाश जारी है। हालांकि कई जगहों पर बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलें आ रही हैं। कई इलाकों का पूरी तरह से कटाव हो चुका है और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। बावजूद इसके लगातार प्रशासन राहत पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हमारे सहयोगी आशुतोष की खास रिपोर्ट देखिए।
3: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है, जहां से लोगों को बचाया जा रहा है। मुश्किल दरअसल मौसम बन जाती है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ये जिंदगी की जंग दरअसल रेस अगेंस्ट टाइम है और ऐसे में ये जो हेलीकॉप्टर है वो सबसे बड़ी लाइफलाइन बनकर सामने आ रहे हैं। इसी ऑपरेशन के जरिए लोगों को बचाया जा रहा है। मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
2: तो जिंदगी की तलाश नेपाल में अलग अलग जगहों पर लगातार जारी है। आशुतोष वहां मौजूद हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उनकी एक और खास रिपोर्ट देखिए। अब
3: लगातार जो रेस्क्यूअर्स की टीम है उनको भी अब हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जा रहा है, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां पर जो टनल की आपदा है वहां से लोगों को निकालने के लिए। ये विशेषज्ञ हैं, रेस्क्यूअर हैं, जो अलग अलग जगहों से आए हैं और अब इनकी जो पूरी टोली है पलटन को हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर ले जाई जा रही है, जहां पर इनको ड्रॉप किया जाएगा ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके।
2: और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, नेपाल में त्रासदी के बीच भारत लगातार पड़ोसी मुल्क में मदद पहुंचा रहा है। भारत ने 11 टन राहत सामग्री के साथ मदद की चौथी खेप नेपाल भेज दी है। भारत की ओर से खोज और बचाव अभियानों के लिए उपकरण के साथ ही डीएनए जांच के लिए फॉरेंसिक उपकरण और विशेषज्ञों की टीम भी नेपाल भेजी गई है। तो 11 टन राहत सामग्री भारत की तरफ से भेजी गई है। चौथी खेप है जो काठमांडू में लैंड कर चुकी है। भारत की तरफ से लगातार राहत और बचाव कार्यों के लिए भी तमाम जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो भेजी जा रही है। टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसमें भी भारत की तरफ से पूरी की पूरी टीम भेजी गई थी। और अभी इस वाले खेप में भी आपको बता दें कि तमाम जो उपकरण है वो तो भेजे ही गए हैं। डीएनए जांच के लिए फॉरेंसिक उपकरण और साथ ही विशेषज्ञों की भी टीम भारत की तरफ से नेपाल भेज दी गई है।
4: इस राहत बचाव कार्य में दरअसल भारत की ओर से ही रेस्क्यूअर्स पहुंचे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग की टीम, मेडिकल की टीम भी है और खासकर वैली ब्रिज बनाने के लिए जो आप उनको देख रहे हैं, इसमें दो भारतीय सेना के जवान ये भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस आपदा में वो भी कैसे वैली ब्रिज बनाने से लेकर के जो तकनीकी दक्षता है उसमें अपना योगदान, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिशन है और अब पूरी दुनिया की नज़र नेपाल पर है, क्योंकि इसको जहाँ रिस्टोर करने में समय लगेगा अभी उससे भी बड़ी और पहली चुनौती है उन तमाम रास्तों को जोड़ना, लोगों तक पहुँचना, सड़क मार्ग।
2: नेपाल में भीषण बाढ़ से मची तबाही के बाद मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच नेपाल से भारत आने वाली नदियों में शव बहकर भी आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह।
5: इस वक्त मौजूद हैं नवलपरासी जिले के नारायणी नदी पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नारायणी नदी है और इसके पीछे से जब ये नदी और आता है तो ये त्रिशूली नदी भी है। और सबसे ज़्यादा जो लाशें बह बहकर आई हैं उस घटना के बाद, वो दरअसल त्रिशूली और नारायणी नदी में ही जो है सबसे ज़्यादा लाशें बहकर आई हैं। और इसी नदी में जो है काफ़ी सारे शवों को स्थानीय लोगों ने और फिर नेपाल पुलिस के लोगों ने जो है वो निकाला है। और आप समझ लीजिए कि कितना ये खतरनाक ये पूरा इलाका है। आप देखिए चारों तरफ जो है आपको केवल बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे होंगे और फिर ये पानी और पानी की धार अपने आप में सब कुछ बयान कर रहा है कि किस तरीके की त्रासदी नेपाल ने झेली है। और दरअसल 26 अगस्त के बाद जब काफ़ी सारे शव जो बहकर आ रहे थे तो शवों के साथ बहुत सारे पेड़ लकड़ियाँ भी जो हैं वो भी बह बहकर आ रही थी। और फिर स्थानीय लोगों ने, आप देखिए यहाँ पर इन लकड़ियों को जो है ये इकट्ठा किया है पानी से निकाल निकाल कर अपने शायद अपनी ज़रूरत के लिए। अभी भी आप देख सकते हैं नदी में कितनी सारी लकड़ियां बड़ी बड़ी जो हैं वो बह रही हैं।
2: तो नेपाल में त्रासदी की मार झेल रहे लोगों तक राहत मदद पहुंचाने का प्रयास लगातार तेज है। लगातार कोशिश यही हो रही है कि मुख्य मार्गों से मलबा हटा दिया जाए ताकि मदद जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाई जा सके।
4: इन सड़कों को खोलना अभी सबसे बड़ी चुनौती है और फिर ये बड़ी बड़ी जो जेसीबी मशीनें, इनका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है, उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है कि अगर ये प्रमुख मार्ग खुल जाता है, बेतरावती तक की कनेक्टिविटी आ जाती है तो संभवतः रसद पहुंचाना, बेतरावती से आगे रुसवा तक के लिए बड़ी लॉजिस्टिक पहुंचाना और जो रास्ता वहां पर भी बंद हो चुका है ताकि अगले 72 घंटों में रसुआ को नुआकोट से सड़कों से जोड़ा जा सके। और अगर ऐसा होता है तो जहां वैली पुल बह गए, मसलन हम जहां पर हैं डूंगे गांव में, इसका दूसरा इलाका जो है वो पूरी तरह कट चुका है, वहां पर मदद पहुंचाने के लिए हेली ड्रॉप करना पड़ रहा है, तो कम से कम वैली ब्रिज के लिए, अगर ये सड़क जुड़ जाती है तो उसे फिर से वैली ब्रिज से जोड़ा जा सकेगा। और इसीलिए सबकी प्राथमिकता ये है कि सड़कों को जल्दी से जल्दी खोला जाए ताकि त्रासदी में जो गांव एक दूसरे से कट चुके हैं, जहां हजारों लोग हैं, उन तक मदद पहुंचाई जा सके।
2: नेपाल में कुदरत की मार ने भारी तबाही मचाई है। फ्लैश फ्लड के बाद अब तक 734 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 2500 लोग हैं जो अभी भी लापता हैं। हजारों सुरक्षाकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार बारिश और खराब मौसम राहत और बचाव की राह में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।

0: पानी, मिट्टी और मलबे का सैलाब अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गया। कई घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए। कई गांवों का संपर्क टूट गया। नेपाल में फ्लैश फ्लड से तबाही जारी है। अब तक 675 से ज्यादा मौतें और 2400 से ज्यादा लोग लापता हैं। 15,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी रेस्क्यू में जुटे हैं। कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण राहत और बचाव का काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। नेपाल के मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों में फिर बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। कोशी, बागमती और गंडकी के पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। बाढ़ के बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में फंसे लोगों को निकालना बड़ी चुनौती है। त्रिशूली 3A, 3B और अपर त्रिशूली 1 में लोगों के फंसे होने की आशंका है। बाढ़ में 19 पुल बहने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। राहत सामग्री और जरूरी सामान पहुंचाना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। इसी बीच चीन नेपाल सीमा पर ग्लेशियर टूटने से बनी झील का क्षेत्रफल घटकर 99,000 वर्ग मीटर हो गया है। इसके बावजूद खतरा बरकरार है और 24 घंटे निगरानी जारी है। वहीं ग्लेशियर के नीचे 1,20,000 वर्ग मीटर से बड़ी दूसरी झील भी चिंता बढ़ा रही है। इसकी निगरानी ड्रोन और रडार से की जा रही है। नेपाल में इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। एक तरफ मलबे में अपनों की तलाश है, दूसरी तरफ सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने की चुनौती और अब मौसम भी नई मुश्किल पैदा कर सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात करेंगे चित्रकूट में आए सैलाबी संकट के बारे में, जहां मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर भारी आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट डूबे हुए हैं, शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, लोग संकट में घिरे हुए हैं। लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बीच पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है, रेस्क्यू लगातार जारी है। और आप देखिए तस्वीरें, नदी नाले चारों तरफ उफान पर हैं। और अगर आप गलियों की बातें करेंगे तो वहां पर भी बुरा हाल है, सैकड़ों दुकानें जो डूबी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। खासतौर से जो निचले इलाके हैं पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए, सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार लगी हुई है। हेलीकॉप्टर्स भी हालात को देखते हुए तैनात कर दिए गए हैं।
2: भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई,
3: पलट गई भाई, गई, डूब गई। ये
2: तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं। बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब हैं कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है।
4: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अतिशीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। और इन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
5: मंदाकिनी नदी ने एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है और इस बार खतरे के निशान से ऊपर ही नहीं बल्कि पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस हम खड़े हैं रामघाट पे, जहाँ

0: का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है, वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें, यहां पर सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं। लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं। जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं।
1: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
2: पानी का जो जल स्तर है वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें पूरी प्रकार से। जहां पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहां पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट्स, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1,000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
1: संकट बड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है। कई लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रेन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।
2: हमारे यहाँ पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है, वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है या कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है, तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं। सभी व्यवस्थाएं की गई है।
1: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसे ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। चित्रकूट से अखिलेश कुमार सोनकर, आज तक।
3: और मंदाकिनी नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चित्रकूट के कई गांवों में स्थिति बड़ी ज्यादा खराब है।
4: मंदाकिनी नदी ने फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है और इस बार खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में मंदाकिनी नदी ने रामघाट के साथ साथ कई गांवों में तबाही मचाई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर है उसका कितना तेज बहाव है, जो पूरी तरीके से इस गांव को अपनी आगोश में ले लिया है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी की जो जलधारा है वह कितनी तेज बहाव से बह रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये सीधे गांव को जाने वाला रास्ता है, जो अब लोग गांव को खाली कर सीधे सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो 2003 में बाढ़ आई थी वैसा ही इस बाढ़ का नजारा है। तो जो लगभग मंदाकिनी नदी का जो डेंजर पॉइंट था वह 126 सेंटीमीटर था और दोपहर तक 131 सेंटीमीटर के ऊपर मंदाकिनी नदी का बाढ़ का जो पानी है वो बह रहा था और लगातार ऐसे में जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जो अब यह मंदाकिनी नदी लोगों के लिए आफत साबित होने वाली है। अखिलेश सुनकर, आज तक।
3: और इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही है राजस्थान से। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां नीट पीजी की परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जयपुर सीताराम सेंटर पर अभी तक नीट पीजी की परीक्षा शुरू नहीं हो पाई है। बिजली फॉल की वजह से परीक्षा शुरू नहीं हो पाई है और नीट पीजी की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी मोड में होनी है। सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में ये परीक्षा होनी थी, लेकिन 12 देखिए बजने वाले हैं, अभी तक एग्जाम शुरू ही नहीं हो पाया। तमाम जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ एग्जाम दिलाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। जबरदस्त तरह की गहमा गहमी है, लोगों की नाराजगी है। कहा यह जा रहा है कि बिजली फॉल्ट एक बड़ा कारण बना है इस एग्जाम के शुरू न हो पाने का। तो 9 बजे से 12 बजे तक एग्जाम होना था और आप अंदाजा लगाइए कि बड़ी संख्या में छात्रियां, तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं वो पहुंच गए हैं, लेकिन एग्जाम नहीं हो पाया, शुरू ही नहीं हो पाया जबकि 12 बजने वाले। जयपुर के सीतापुरा सेंटर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं। शरद, अभी क्या जानकारी है, प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है क्या, कितनी बार और किरकिरी करवाएंगे?

0: देखिए, ये एनटीए की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है और सीतापुरा सेंटर पर भी 1,000 से ज्यादा डॉक्टर जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आज बैठे हुए थे, गए हुए थे वहां पर बैठे हुए, इनका कहना है कि हर 10-15 मिनट पर सर्वर डाउन हो जा रहा था, उनसे कहा जा रहा था कि बिजली वहां पर चली गई है, और इस तरह से हर 10 मिनट बाद वो सेंटर में से सारे बच्चे बाहर आ जा रहे थे, फिर उनसे कहा जा रहा था कि आइए आइए वापस आ गई, सर्वर शुरू हो गया, फिर 10-15 मिनट बाद सर्वर डाउन हो जा रहा था, ये करते करते 12 बज गया। अब कोई माकूल जवाब उन्हें एनटीए की तरफ से नहीं दी जा रही है, ना सेंटर की तरफ से दी जा रही है। एक तरह से ये मास चीटिंग का भी मामला हो गया, जब आप हर 15-20 मिनट पर सर्वर डाउन हो जा रहा है कंप्यूटर का, बिजली चली जा रही है चाहे जो भी वजह हो, और इस तरह से सब बच्चे बाहर आ रहे हैं, फिर उन्हें बुलाकर बैठा रहे हो, फिर बाहर आ रहे हैं, अभी गेट पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, 1,000 के आसपास डॉक्टर हैं, ये यूजी करने के बाद ये पीजी का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो काफी महत्वपूर्ण होता है, 75,000 डॉक्टर एग्जाम में बैठे थे, और एनटीए इस एग्जाम को कंप्यूटर बेस्ड कराता है, मगर सीतापुरा सेंटर पर इस तरह से जो गफलत हुई है उसे लेकर वहां पर बड़ा हंगामा बचा हुआ है, डॉक्टरों में भारी आक्रोश है और इंतजार कर रहे हैं कि एनटीए इस मसले पर क्या जवाब देता है, क्योंकि जो सेंटर था उस सेंटर ने कहा है कि हमने अपना सारा जो जवाब है एनटीए को भिजवा दिया है, वहां से इंतजार है कि वो क्या फैसला लेंगे, उसके बाद हम आपको कन्वे करेंगे, ये कह रहे हैं कि जब तक हमें स्पष्ट कहा नहीं जाएगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा घपला हुआ है
1: जी
0: बिजली बार बार जाने से, जिसकी वजह से वहां पर भी हंगामा चल रहा है।
1: शरद, वैसे भी कितनी बार फजीहत और एनटीए, क्योंकि अब सवाल यह है कि बार बार बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए और वो एग्जाम नहीं हो पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या बिजली जैसी बेसिक चीज भी वहां पर नहीं हो सकती, जहां इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट पहुंचे हैं नीट पीजी की परीक्षा के लिए। 9 बजे से 12 बजे तक एग्जाम होना था, 12 बजने वाले हैं, अभी तक एग्जाम शुरू ही नहीं हो पाया। इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शरत इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आगे आगे
1: उधर
0: उधर करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: इन एसोसिएशन विद
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सो सॉरी।

0: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
1: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
2: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
3: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 734 से ज्यादा शव बरामद, करीब 2500 लोग लापता। भारत ने देर रात काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, 23 साल का रिकॉर्ड टूटा, शहर बना झील, सड़कों पर दौड़ी नावें, मठ मंदिर, सैकड़ों दुकानें पानी पानी, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू।

जयपुर में नीट पीजी परीक्षा को लेकर बवाल, बिजली नहीं होने के कारण सीतापुर सेंटर पर नहीं हो पाया टेस्ट, अभ्यर्थी डॉक्टर्स का भड़का गुस्सा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में योग सत्र में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, आज द्विपक्षीय वार्ता, कल भारतीय समुदाय से मिले। और न्यूयॉर्क में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक है, बोले हिंदुत्व का मतलब मुस्लिमों को बाहर करना नहीं।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय। हमेशा अद्भुत में हम आपके लिए कोई ऐसी कहानी लेकर आते हैं जो आपके दिल को छू जाती है। आज भी हम आपके दिल को छूना चाहते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। इंसान खुद को इस पृथ्वी पर सर्वशक्तिशाली मानता है, सोचता है उसके आगे किसी की कोई बिसात नहीं है। ऊंची ऊंची इमारतें हैं जिसके सामने किसी का कोई वजूद नहीं है, बड़ी बड़ी ऐसी गाड़ियां, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके सामने कोई टिक कर खड़ा ना रह सके। लेकिन आज वो सब कुछ कई टन मलबे के नीचे दबा पड़ा है। हमारी पृथ्वी अद्भुत है, लेकिन प्रकृति का रोष अविश्वसनीय और बर्बादी अकल्पनीय हो जाते हैं।
1: ग्लेशियर के टूट कर गिरने और पूरी घाटी के बर्बाद होने में सिर्फ चंद मिनट ही लगे और इसी के साथ नेपाल के इतिहास का भूगोल बदल गया। जिस तरह तबाही मची, जिस तरह लोगों की मौतें हुई, जिस तरह लोगों की जानें बची और जिस तरह से अब भी सैकड़ों लोग लापता हैं, वो एक ऐसी त्रासदी है जिसके निशान सदियों तक सालते रहेंगे। जो हुआ और जैसे हुआ वो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है।
2: ये NH4 है जो सीधा उसी एरिया को जाता है जहां पर ये हादसा हुआ है। हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा और अभी कैसा दिख रहा है। यहाँ पर घर में कोई रह नहीं सकता है, वो सब निकलकर वहां से बाहर आए हैं। 35 मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। ये हब है, ये जहां पर पीड़ित है, जहां पर लोग विस्थापित हुए हैं, जहां से और जहां पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है।
1: इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहां पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको पता नहीं कि पैर आपके कितने नीचे जाएंगे। मेरा पैर अभी भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। हजार फीट का ग्लेशियर टूटकर ऐसे गिरा जैसे धरती से टकराया हो कोई उल्का पिंड। ग्लेशियर के गिरते ही धरती इतनी जोर से कांपी जैसे आ गया हो भयानक भूकंप। ग्लेशियर के नदी में गिरते ही ऐसी खतरनाक हलचल मची कि खड़ी हो गई पानी, मलबे और गाद की कई मीटर ऊंची विनाशकारी दीवार।
2: ये जिस रोड पर हम खड़े हैं इस समय, ये एक पक्की सड़क है और एक अच्छी सड़क है, एक चौड़ी सड़क है, हाईवे का हिस्सा है इनके। लेकिन अभी इस पर देखिए रेत मलबा, ये घर के अंदर का हिस्सा अगर आप देखें तो वहां तक पानी पहुंच गया है। वहां तक पहुंचने के बीच में जो है वो दलदल है। ये बिजली के तारों में उलझे हुए जो पेड़ों के हिस्से हैं उससे आप समझिए कि कहां तक ऊपर तक ये पहुंचा होगा मलबा। ट्रक देखिए, ट्रक का जब पानी उतरा भी है, मलबा नीचे गया भी है, तो उसका आधा चक्का अभी भी उसके नीचे है। लेकिन ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो ये ट्रक धस गया था इस मलबे में। रेत ही रेत, ये इलाका रेतीला नहीं है, लेकिन यहाँ जमीन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको रेत ही रेत हर तरफ नजर आएगी। रेत में जैसे ये पूरा इलाका ढक गया है।
1: न बादल फटा, न मानसूनी बारिश थी, न कोई सतर्क रहने की चेतावनी जारी थी। बस एक झटके में सब तबाह हो गया।
3: हम लोग वहाँ थे, वो एक बैग पानी आया, हम लोग ऊपर भागे थे। हम लोग की जिंदगी खत्म हो गया।
1: जो ग्लेशियर टूटकर गिरा
4: उसका आकार इतना विराट था कि इसके गिरने की तुलना एक साथ करीब 1000 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स के ढहने से की जा सकती। ग्लेशियर का ढहा हुआ हिस्सा अविश्वसनीय रूप से कम 0.8 मील यानी करीब 2000 फीट चौड़ा था। इसने 10 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल को ढक लिया जो लगभग 1400 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इसके मलबे ने नीचे घाटी में करीब 4000 फीट यानी 1200 मीटर तक की गहराई तक असर डाला।
5: पहला गोल्फ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड और दूसरा क्या है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर फ्रैक्चर होता है और फिर वो रिवर के फ्लो को ब्लॉक कर देता है, जो हमने सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन नेपाल में देखी। तो उसमें जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट हैं वो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में मोर सीवियर है, चाहे वो सी लेवल राइज हो या इंक्रीज इन टेम्परेचर हो या उसका इम्पैक्ट ऑन अवर फर्जाइल इकोसिस्टम जैसे हिमालय है।
4: ग्लेशियर के गिरने का असर इतना अकल्पनीय था कि अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने शुरुआत में इसे 4.4 तीव्रता के भूकंप के रूप में दर्ज किया।
1: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए, त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा पर। ऐसा नहीं है, यहां पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी, ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं क्योंकि यहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहां पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। मौत का सैलाब सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ा और मकान, दुकान, इंसान, पुल, बिल्डिंग्स, सब कुछ तिनके की तरह बहा ले गया।
3: 4-500 दूर घर है,
1: 4-500
3: घर दूर है। इसमें यहाँ डेट हुआ 10 लोग पे, 10 लोग आदमी वृद्धाश्रम के, यहाँ से 5 लोग घायल डेट होगा।
1: तय जा रहा है कि लापता है, नहीं मिल रहा
3: है। यहाँ तो घर तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा।
6: कोई रास्ता नहीं है, हेली से जैसे हेली से जाएगा और पैदल जाने के लिए वो रास्ता नहीं है।
7: गाड़ी भी
6: अब उतर ऊपर से जाएगा तो है, गाड़ी के लिए रास्ता नहीं है।
7: कनल जो था रसवा का वो भी
6: सब कुछ गए, कुछ भी बाकी नहीं है इधर का।
4: मलबे की विशालकाय दीवार जब नीचे गिरी तो उसने घाटी की हवा को इतनी तेजी से धकेला कि पानी पहुंचने से पहले ही बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार वाली आंधी चली जिसने पल भर में सैकड़ों पेड़ों को बीच से फाड़ दिया। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात। बस ये तस्वीरें देखिए और सोचिए क्या मंजर रहा होगा और क्या से क्या हो गया, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में। कुदरत की मार ने जो बदला वो अविश्वसनीय भी है और अकल्पनीय भी। जब न्यूक्लियर बम फटता है तो एक चेन रिएक्शन सा होता है, यानी एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती जाती है जब तक संपूर्ण तबाही नहीं सामने रहती। अब नेपाल में जो हुआ वो कुदरत का चेन रिएक्शन था, जहां पर ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर का मलबा झील में इकट्ठा हुआ, पानी बढ़ता चला गया और फिर एक ऐसी अनियंत्रित अकल्पनीय तबाही जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता था। ये सिर्फ एक अविश्वसनीय तबाही नहीं थी, ये था तबाही का चेन रिएक्शन। ये सिर्फ एक अकल्पनीय महाविनाश नहीं था, ये था महाविनाश का चेन रिएक्शन। ये एक ऐसा प्राकृतिक डोमिनो इफेक्ट था जिसमें पहली घटना ने अगली कई घटनाओं को जन्म दे दिया, एक घटना ने दूसरे को जन्म दिया, फिर तीसरे, फिर चौथे, और इस तरह करके ये एक पूरा चेन रिएक्शन बन गया जिसने नेपाल को ऐसे जख्म दिए जो वो जिंदगी भर याद रखेगा।
6: ये रास्ता नहीं है, हेलीसे जैसे हेलीसे आएगा और पैदल जाने के लिए वो रास्ता नहीं है, अब कुछ सब कुछ गए, कुछ भी बाकी नहीं है इधर का।
7: मेरे फैमिली रसवा में था, किसी का भी फोन नहीं रह लग रहा है, क्या करनी वाला क्या जानी, फोटो भी डाला है कोई पता नहीं चल रहा है, वहाँ पर कुछ नहीं पता चल रहा है, हम लोग का कोई था पता नहीं था। बुधवार के दिन पुनः ना वहाँ पर देखे 50 फीट इतना दूर पानी आ रहा है, तब देखो हम लोग भागे।
4: हम इसको चेन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं ये समझाते हैं। पहली घटना ग्लेशियर का टूटना, दूसरी घटना बर्फ और चट्टानों का एवलांच, तीसरी घटना नदी का ब्लॉक होना, चौथी घटना नदी के पीछे एक अस्थाई झील का बनना, पांचवी घटना जमा हुए पानी और मलबे का बांध टूटना, छठी घटना फ्लैश फ्लड। इस चेन रिएक्शन का हर पहलू अविश्वसनीय है, इसका हर मूवमेंट अकल्पनीय है। तबाही की स्क्रिप्ट का रॉ मटेरियल कैसे इकट्ठा हुआ, कैसे बना यह सबसे बड़ा चेन रिएक्शन, ऊंचे हिमालय में ग्लेशियर सिर्फ बर्फ का ठोस पहाड़ नहीं है, उसके आसपास और नीचे कमजोर चट्टाने, दरारें, बर्फ और परमाफ्रॉस्ट मौजूद होते हैं जो कभी भी टूट सकते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियर पीछे हटता है, बर्फ में दरारें बढ़ सकती हैं। परमाफ्रॉस्ट पिघलने से चट्टानों की पकड़ कमजोर हो सकती है, इसलिए कभी कभी बर्फ का एक हिस्सा टूटता है और अपने साथ चट्टान और मलबे का विशाल बोझ नीचे ले आता है। नेपाल की मौजूदा घटना में सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर का ग्लेशियर करीब 1200 मीटर नीचे गिरा, यानी शुरुआत में ये बांध नहीं थी, ये ऊंचाई पर ग्लेशियर और पहाड़ का टोटल कोलैप्स या लैंडस्लाइड। वैज्ञानिकों के अनुसार इस आइस लैंडस्लाइड में 960 टीएनटी के बम जितनी ताकत रही हो। यहाँ ये कहानी और खतरनाक होती है क्योंकि ऊंचाई से बर्फ गिरती है तो वो अकेली नहीं रहती, उसमें बर्फ, बड़ी चट्टाने, छोटे पत्थर, मिट्टी जुड़ते जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पूरा वजन बहुत तेजी से नीचे आता है, ये बन जाता है आइस रॉक एवलांच। 5200 मीटर या 17000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर का एक विशाल हिस्सा टूटकर लगभग 1200 मीटर यानी 3900 फीट नीचे घाटी में जा गिरा। इस घटना ने पहाड़ की ढलान पर करीब 3000 फीट चौड़ा विशाल कटाव छोड़ दिया।
8: गर्मी की वजह से, वार्म ह्यूमिड वेदर की वजह से जो पानी मतलब बर्फ थोड़ा पिघलता है तो वो जो बर्फ के अंदर जो क्रैक्स रहते हैं उसके अंदर गया है और वो एक पहाड़ का जो पत्थर रहता है उसके ऊपर बर्फ है, उस बीच में लुब्रिकेंट जैसा एक्ट किया है, तो वहां पे एक जेंटल स्लोप है, एक स्टीप स्लोप है, जहां पे स्टीप स्लोप शुरू होता है वहां का जो बर्फ है, जो मतलब बहुत थिक बर्फ है, वो टूट गया है, फिर वो वर्टिकली अराउंड 1.2 किलोमीटर नीचे वर्टिकल ड्रॉप हुआ है, तो वो ड्रॉप होने के बाद जो इम्पैक्ट हुआ है उसके कारण मतलब वो भूकंप जैसा मेजरमेंट हुआ है उसका, अप्रोक्सीमेटली 5.2 मैग्नीट्यूड।
4: इसने नीचे जाते हुए रास्ते में मौजूद जितना भी मलबा मिला उसे अपने साथ जोड़ लिया, यानी 1 करोड़ क्यूबिक मीटर का मास नीचे आते आते कहीं बड़ा विनाशकारी बहाव बन गया। 2021 में चमोली में यही हुआ था। अमेरिकी आधिकारिक वेबसाइट USGS के मुताबिक रोंती पीक से लगभग 2.7 करोड़ क्यूबिक मीटर पत्थर और बर्फ टूटकर नीचे आई थी। अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब हजारों लाखों टन बर्फ चट्टान और मलबा नदी की संकरी घाटी में गिरा तो उसने नदी को आंशिक या पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। यानी एक तरफ पहाड़ से आया मलबा, दूसरी तरफ बहती नदी। मलबे ने नदी के रास्ते में दीवार बना दी और नदी के पीछे पानी जमा होने लगा, यानी प्राकृतिक रूप से एक अस्थायी बांध बन गया।
8: उसके बाद में ये मड डेब्रीज एज वेल एज दिस रॉक आइस ये वो रिवर में जाके फ्लो हुए हैं एंड दे क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल डैम। तो वो आर्टिफिशियल डैम के वजह से रिवर का जो फ्लो रहता है उसमें धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ गया है एंड देन वो आर्टिफिशियल डैम जो बना था वो टूट गया और देन वो फ्लैश फ्लड जैसा आगे बढ़ा है। उसके कारण जितना जो हानि हुई है प्रॉपर्टी की और जन हानि हुई है वो सब उसके कारण हुआ है।
4: अब जो पानी सामान्य तौर पर नीचे बह रहा था वह अचानक रुक गया। पीछे पानी जमा होता जाता है, कुछ मिनटों में एक अस्थायी जलाशय बन जाता है और यही अगला खतरा है क्योंकि यह कोई मानव इंजीनियरिंग का नमूना नहीं है। यह बना है मिट्टी, चट्टान, बर्फ और मलबे से और इसकी मजबूती पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
8: जो वर्टिकल ड्रॉप होता है तो उसका जो काइनेटिक वेलोसिटी होता है उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी होता है वो डिसिपेट हुआ है। उसके बाद में जो डैमिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी राइज होता है वो भी डैम मतलब आर्टिफिशियल डैम जो आइस से बना है, रॉक आइस से बना है, वो भी टूटने के बाद जो एनर्जी रहता है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो अभी हम लोगों ने किया नहीं है मगर इट इज विथ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी।
4: वजन बढ़ने के कारण पानी ने मलबे पर दबाव बढ़ाया और अचानक मलबे का बांध टूट गया। जो पानी जमा था वो एक साथ नीचे चला आया। इसे कहते हैं आउटबर्स्ट फ्लड और अगर इसमें ग्लेशियर लेक शामिल हो तो इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। अब तक कहानी में पानी मुख्य विलन की भूमिका में नहीं था लेकिन यहाँ पर कहानी में विनाशकारी ताकत बन जाता है पानी और ये सामान्य मानसून फ्लड जैसा नहीं होता। सामान्य बाढ़ में पानी के स्तर को बढ़ने में कई घंटे लगते हैं लेकिन नेपाल जैसी फ्लैश फ्लड में कम समय में अचानक पानी का डिस्चार्ज हुआ और वो भी बहुत तेज रफ्तार के साथ। नेपाल की मौजूदा घटना में रिपोर्टों के मुताबिक नदी का स्तर लगभग 9 मीटर तक तेजी से बढ़ गया। पानी जब 7 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहता है तो उसकी तुलना एक चक्रवात से की जा सकती है। पानी के बहाव की रफ्तार अगर 25 मील हो जाए तो उसकी तुलना 800 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान से की जा सकती है। अब सोचिए कि नेपाल में जो त्रासदी हुई उसमें पानी की रफ्तार थी 120 मील प्रति घंटा। कितने ताकत के साथ उस पानी का बहाव रहा होगा आप कल्पना करिए। पानी की ताकत का अंदाजा न हो तो इस तस्वीर को देख लीजिए। हजारों किलोग्राम भारी ये पत्थर किसी गेंद की तरह लुढ़क रहा है। ये सिर्फ पानी की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय शक्ति ही है जो इतने वजनी पत्थर को खिलौने की तरह बहा ले जा रही है। फ्लैश फ्लड यानी पानी, पत्थर, चट्टान और मलबे का वो मिश्रण जो रास्ते में पड़ने वाली हर चीज के पैर उखाड़ सकता है। एक रिसर्च कहती है कि सिर्फ 6 इंच का तेज बहता पानी किसी भी व्यक्ति को बहा सकता है, 12 इंच का तेज बहता पानी किसी भी कार को बहा सकता है। नेपाल की बाढ़ में तो ये पानी की ऊंचाई 9 मीटर थी। बहते पानी ने इतनी ऊंचाई कैसे हासिल कर ली कि 3 मंजिला इमारतें भी उसके आगे बौनी लगने लगी। सबसे बड़ा प्रयास ये है कि नेपाल की जो ये लाइफलाइन इस सड़क को माना जाता है यहाँ पर ये मलबा आ गया है और इस मलबे को जेसीबीज के साथ किसी तरीके से हटाने की कोशिश हो रही है कि कम से कम एक तरफ का रास्ता तो खुला रहे, एक तरफ का रास्ता तो चलता रहे, वरना ये इतने फिसलन वाली पूरी जमीन है और इतनी धंसने वाली जमीन है, एक तरीके से दलदल उतर आया है यहाँ की सड़क पर कि गाड़ियां तो गाड़ियां, कोई पैदल भी यहाँ पर नहीं चल सकता है। ये पानी की अविश्वसनीय ताकत ही है जो बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद हिला गई। ये पानी की अकल्पनीय शक्ति ही है जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां बच्चों के खिलौनों की तरह बह गई। कुदरत ने इंसान के साथ जरा सी जोर आजमाइश क्या की, इंसान और उसके गुरूर को उसकी हैसियत समझ में आ गई। ये तस्वीर देखिए, पानी की सांसें रोक देने वाली रफ्तार में कैसे एक परिवार सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। ऐसी होती है पानी की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय शक्ति, जो पुलों को तोड़ दे, इमारतों को गिरा दे, पेड़ों को उखाड़ दे, गाड़ियों को बहा दे। पानी में कितनी शक्ति होती है, इसको समझने के लिए हम इसका असर गाड़ियों और घरों पर क्या होता है ये जानेंगे। सिर्फ 6 इंच पानी काफी होता है एक कार का कंट्रोल छीनने के लिए और एक आम गाड़ी का इंजन तक उसमें बंद हो सकता है। जब ये पानी 1 फीट तक पहुंच जाता है तो फिर गाड़ियां इस बहाव के साथ बह भी चलती हैं और पानी का जो बहाव होता है वो करीब 225 किलो का साइड फोर्स गाड़ी पर डाल सकता है, यानी कि वो गाड़ी पलट भी सकती है। ऐसे बहाव के सामने जो पिकअप ट्रक्स वगैरह होते हैं वो भी बेबस हो जाते हैं। पानी का स्तर बढ़ता है, वो एक गाड़ी को अपनी जगह से उठाता है और तेज बहाव में गाड़ियां बहती चली जाती हैं। लेकिन ये ताकत सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं, यही पानी जमीन पर जड़े जमाए घरों को भी चुनौती देता है। सिर्फ 4 मील प्रति घंटे यानी करीब 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और पानी का दबाव EF2 टोर्नेडो की हवाओं जितना ताकतवर हो जाता है, इतना कि करीब 5 फीट व्यास के पत्थर भी हिल जाए। अब इसे हॉर्स पावर में समझिए, फ्लैश फ्लड का पानी हर वर्ग मीटर पर करीब 1.34 हॉर्स पावर तक की ताकत पैदा कर सकता है। 30 फीट चौड़े घर के हिस्से पर करीब 18.7 हॉर्स पावर का दबाव, यानी पानी घर की दीवारों से ऐसे भिड़ रहा होता है जैसे कोई ताकतवर मशीन उसे धक्का दे रही हो, और अगर हालात और बिगड़ जाएं तो यही ताकत 100 गुना तक बढ़ सकती है, यानी उसी 30 फीट हिस्से पर अब लग रहा है 1870 हॉर्स पावर। इतनी ताकत जैसे कई भारी भरकम स्पोर्ट्स कार्स पूरी स्पीड से घर को टक्कर मार रही। और अब सुनिए बाढ़ के पानी की सबसे डरावनी रफ्तार। कुछ फ्लैश फ्लड में पानी की रफ्तार 67 मील प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है, यानी करीब 108 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए 108 की रफ्तार से दौड़ता हुआ पानी क्या कुछ नहीं कर सकता है?
2: बाजार से पहले का जो ये हिस्सा है ये रेसिडेंशियल एरिया है और घरों के यहाँ का हाल देखकर आप समझ लीजिए। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि इस गांव में उस समय लोग सभी थे मौजूद इवैक्यूएशन के लिए। कुछ बातें कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इवैक्यूएशन के लिए कहा गया था, लेकिन यहां पर गांव वाले थे, अपना सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे जल्दी से जल्दी, लेकिन देखकर ही पता चल रहा है कि शायद ये संभव नहीं हो सका होगा। सामने एंट्रेंस पे हमने मंदिर देखा जो पूरी तरीके से मलबे में है। शिवजी का ये मंदिर है, इसके साथ ही ये पूरा हिस्सा देखिए, वहां तक जो घर है मलबा उतरा है, लेकिन उसके बावजूद लगभग एक एक मंजिल इन घरों की, ये थोड़ी सी ऊंचाई पर था, इसके नीचे की ये मंजिल अभी दफन है।
4: अब बात कि कैसे नेपाल में 9 मीटर ऊंची पानी की दीवार बन गई जो इमिग्रेशन सेंटर को खा गई। सबसे पहले पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटा, इसके साथ भारी मात्रा में बर्फ, चट्टान और मलबा नीचे आया, फिर ये मलबा नदी में जा गिरा। इससे नदी में अचानक बहुत बड़ा मलबे का फ्लो और पानी का बहाव पैदा हुआ। पानी अकेला नहीं था, उसमें बर्फ, चट्टान, मिट्टी और बड़े बड़े बोल्डर भी थे। ऊंचे पहाड़ों के बीच नदी का रास्ता संकरा है, जब अचानक बहुत ज्यादा पानी और मलबा एक साथ आया तो वह फैल नहीं पाया। नतीजा, बहाव की ऊंचाई और दबाव दोनों बहुत तेजी से बढ़े, आखिर में नदी में अस्थायी बांध बन गया होगा। नदी का स्तर 30 मिनट में करीब 9 मीटर ऊपर चला गया। ये 9 मीटर का आंकड़ा पानी की गहराई नहीं बल्कि नदी के स्तर में हुई अचानक बढ़ोतरी है, और यही इस घटना को इतना खतरनाक बनाता है। सिर्फ 30 मिनट में 9 मीटर की वृद्धि का मतलब है कि नीचे रहने वाले लोगों के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बेहद कम समय था।
0: नेपाल की तबाही के जरिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो किसी बड़े किसी विनाशकारी खतरे की आहट के रूप में देखे जाने चाहिए। ये सवाल उठाने की वजह है, वजह ये कि पिछले 15 सालों में ऐसी प्रलयंकारी ये छठी त्रासदी है।

0: çıktılar, çıktı.
1: नेपाल की त्रासदी ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया है कि क्या हिमालय के ग्लेशियर बड़े और महाविनाशकारी खतरे का अलार्म बजा रहे हैं। ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 15 वर्षों में नेपाल की तबाही ऐसी छठी घटना है। दो हजार 2013 में ग्लेशियर टूटने के कारण केदारनाथ में भारी तबाही हुई, हजारों लोग मारे गए। 2016 में भोटेकोशी तिब्बत नेपाल सीमा पर झील का प्राकृतिक बांध टूटने पर आए सैलाब में सैकड़ों लोग बह गए। 2021 में नेपाल के सिंधु पालचोक में बारिश और ग्लेशियर पिघलने के कारण मेलमची नदी में आई बाढ़ में सैकड़ों घर और कई इंसान बह गए। 2021 में ही उत्तराखंड के चमोली में बर्फ का बड़ा ग्लेशियर टूटकर झील में गिरा, जिससे नदियों में सैलाब आया और 200 से ज्यादा लोग मारे गए। 2023 में सिक्किम की दक्षिण लोनक ग्लेशियल झील का प्राकृतिक बांध टूट गया, तब सुनामी जैसी ऊंची लहरें देखी गईं और सैलाब ने जमकर तबाही मचाई। और 2026 में अब नेपाल की ये वर्तमान तबाही है। सवाल उठ रहा है कि क्या हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर टाइम बम बनते जा रहे हैं?
2: इट इज अ वार्निंग कॉल फॉर इंडिया बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस द सिमिलर थिंग्स इन उत्तराखंड एंड इन सिक्किम आल्सो इन रिसेंट पास्ट।
1: देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय रीजन में 221 ग्लेशियल झीलों की पहचान की गई है, जिनके फटने पर अचानक बाढ़ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा बन सकता है। रिसर्च में कोसी, यारलुंग जांगबो, मानस और ऊपरी सिंधु नदी घाटियों को सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में रखा गया है। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और सिक्किम की कई नदी घाटियां संवेदनशील जोन में हैं। बाढ़ आई तो इसकी चपेट में 6 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 39 जिलों पर असर पड़ सकता है।
3: हिमालय की बात करें तो हिमालय में ऑलमोस्ट जो है सभी रीजन जो है वल्नरेबल है और खतरनाक है। ग्लेशियर रिट्रीट होने की वजह से जो है आगे जो वैकेट एरिया है उस वैकेट एरिया में लूज एंड कंसोलिडेटेड मटेरियल है जो हाईली या तो हाईली सैचुरेटेड है या फिर ड्राई है, उसके जो है हल्के से भी रेनफॉल होने से उस रीजन में एक बड़ा डिजास्टर का खतरा हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने जो है 2013 में केदारनाथ, थराली और तमोक में भी देखे।
1: उत्तराखंड भी संकट के इस दायरे से बाहर नहीं, वहां खतरा सिर्फ ग्लेशियर झीलों से नहीं बल्कि खड़ी ढलानों पर मौजूद हैंगिंग ग्लेशियर्स से भी है। अलकनंदा बेसिन में 221 हैंगिंग ग्लेशियर्स की पहचान हुई है, जो आने वाले समय में बद्रीनाथ माणा सहित चमोली के निचले क्षेत्रों में तबाही ला सकते हैं।
4: अर्ली वार्निंग सिस्टम करके सीबीआरए ने एक अवलांच अर्ली वार्निंग मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है, जो उत्तराखंड में 2 जगह पे इंस्टॉल किए हैं, ढूंढी और एक वसुंधरा ताल में। तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक वो आज टेस्ट कर रहे हैं, अगले 6 से 1 साल के बाद में वी आर प्लानिंग टू हैंड इट ओवर टू स्टेट गवर्नमेंट, जो एसडीएम उसको ऑपरेट कर सकता है। ये जो जो रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल से जो ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, जो बर्फ का स्ट्रक्चर है, ये सब देर आर सो मेनी पैरामीटर्स, वो सब देखने के बाद उसका जो कॉम्बिनेशन होता है कौन से टाइम पे ट्रिगर हो रहा है उससे पता चलेगा।
1: रिसर्च के अनुसार हिमालय में अभी 8,357 से 9,280 ग्लेशियल झीलें हैं। इनमें 1990 के बाद 1,052 नई झीलें बनी हैं। ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं, ऊंचाई वाले इलाकों में पानी जमा होने की नई जगहें बन रही हैं। पुरानी झीलों का आकार भी बढ़ रहा है। इनके क्षेत्रफल में 17%, 20% और 76% तक बढ़ोतरी हुई है। सबसे तेज बढ़ोतरी 2010 से 2020 के बीच देखी गई। 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में झीलों के क्षेत्रफल में वृद्धि सबसे ज्यादा रही। जम्मू कश्मीर में चिनाब और झेलम, हिमाचल प्रदेश में चिनाब और व्यास तथा सिक्किम में तीस्ता नदी घाटी को विशेष चिंता वाले क्षेत्र माना गया है। यहाँ खतरा सिर्फ झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ तक सीमित नहीं है, संभावित बाढ़ के रास्ते में सड़कें, पुल, आबादी और जल विद्युत परियोजनाओं पर भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि अचानक आने वाला पानी सिर्फ नदी के बहाव को नहीं बढ़ाएगा बल्कि रास्ते में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
0: कि जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इतने मेजर प्रोजेक्ट बॉर्डर एरिया पे हैं, इनके अपस्ट्रीम और इवन सोर्स एरिया की लगातार मॉनिटरिंग के उपरांत अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट अगर हमारे पास आधे घंटे का भी समय होता है तो कम से कम जानमाल तो बचाया जा सकता है।
1: नेपाल की त्रासदी लगातार इस खतरे से अवगत करा रही है। जरूरत संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों की निगरानी की है। इसके आधार पर बचाव की तैयारियों को मजबूत करने की जरूरत है। सैटेलाइट तस्वीरों के साथ जमीन पर लगे रेडार कैमरास, बर्फ के अंदर होने वाली हलचल की निगरानी और डॉपलर रडार जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। खतरे के संकेत समय रहते मिले तो सड़क बंद करने और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे जान माल का नुकसान कम तो किया ही जा सकता है। एक ग्लेशियर टूटा तो केवल पहाड़ नहीं हिला, उस तबाही का सिग्नल धरती के अंदर तक दर्ज किया गया, रिकॉर्ड किया गया, यानी सीस्मोमीटर ने उस कंपन को रिकॉर्ड किया। अकल्पनीय है कि ये किस तरीके से संभव हुआ।
5: जो लोग ना अपना सामान बचाने के लिए लेने गए ना, तो वो लोग चले गए।
6: अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
7: तीन भांजी, एक दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
8: पुल है ही नहीं है, दोनों तो
1: कुछ नहीं बचा उसका,
8: स्ट्रक्चर भी नहीं।
1: कंक्रीट का पुल था ना,
8: का एक तो कंक्रीट का था और एक
1: सस्पेंशन
8: पे।
1: अच्छा, कह रहे हैं कि दो पुल था पर पुल का नामो निशान नहीं है। सोचिए इतनी शक्ति से, उतने आवेग से पूरा मलबा आया होगा। नेपाल की महातबाही ने दुनिया को चौंकाया है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के लिए ये बर्बादी चिंता का कारण है, क्योंकि जैसा कि पहले कहा गया था कि 4.4 की तीव्रता के भूकंप के कारण ग्लेशियर टूटा था, जिससे तबाही आई। बाद में पता चला कि विशालकाय ग्लेशियर के टूट कर गिरने के कारण भूकंप जैसी स्थिति बनी थी और इसमें 5.2 की तीव्रता थी। यानी भूकंप के कारण ग्लेशियर नहीं टूटा था, बल्कि ग्लेशियर के टूट कर गिरने की वजह से भूकंप जैसा झटका लगा था। ये देवीघाट की प्रहरी चौकी हम आपको दिखा रहे हैं और आगे देवीघाट बाजार है। पूरा त्रिशूली बाजार का हाल आपने देखा। ये देवीघाट की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये भी पूरी तरीके से इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। चाहे आप छोटी सी एक चाय की दुकान को देख लें, यहां पर खड़े हुए ट्रैक्टर्स को देखकर शायद आपको वो पैमाना ज्यादा समझ में आएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर उत्तर में लांगडांग लिरुंग पर्वत पर जो हुआ, उसने कुछ ही घंटों में नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोहराम मचा दिया। लगभग 2000 फीट लंबा ग्लेशियर टूटकर करीब 4000 फीट नीचे घाटी में जा गिरा। ये गिरावट इतनी जबरदस्त थी कि इससे जो तरंगे निकली और कंपन हुआ, उसे अमेरिकी भूगर्भ शास्त्रियों ने भूकंप मान लिया। ये सोचना भी अकल्पनीय हो जाता है कि करीब आधा किलोमीटर लंबा ग्लेशियर हजारों फीट गिरा तो कैसा मंजर बना होगा। अविश्वसनीय है कि ग्लेशियर के घाटी में गिरने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, वो एक्सपर्ट्स के दावों के अनुसार हिरोशिमा परमाणु विस्फोट की 6.3% रही होगी। जब बर्फ और चट्टानों का विशाल ढेर घाटी में गिरा तो उसने लेंडेखोला नदी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ये नदी भोटेकोशी नदी की सहायक नदी है। इससे एक प्राकृतिक बांध बन गया जिसके पीछे पानी तेजी से इकट्ठा होने लगा। ये बांध ज्यादा देर टिक नहीं सका। ग्लेशियर के गिरने से पैदा हुई गर्मी ने बर्फ के एक बड़े हिस्से को तुरंत पिघला दिया। नदी का पानी मिट्टी और चट्टान के टुकड़ों से मिलकर एक भयानक मंजर बन गया।
9: पाइप जो दिख रहा है
1: वो,
9: हाँ, वो वाला, हाँ। उसी से पानी नीचे गिरता था। यहाँ पे हाइड्रो पावर यहाँ था,
8: और फिर यहाँ से नहर निकाल कर आपको देवीघाट हाइड्रो पावर
1: देगा। नहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है, उसका ढांचा सब बह गया,
8: पूरा नीचे है।
1: अच्छा नीचे है,
8: नीचे दह गया उसमें।
1: अच्छा
8: उसके उसके स्ट्रक्चर जितना था उसके ऊपर सब पूरा उभर दिया है। और यहाँ जो हाइड्रो,
1: मतलब आप कह रहे हैं कि जो तीन पाइप है उसके नीचे उसका पावर हाउस था।
8: हाँ वहाँ पे पावर हाउस था, और वहाँ से भी फिर नहर के जरिए पानी निकाल कर इस रास्ते से आपको देवीघाट प्रोजेक्ट में पानी गया हुआ था, जबकि नहर भी पूरा खत्म हो गया।
1: हाँ, हाँ, हाँ। तो ये खाली टावर बचा है जो जिससे हाँ, समझ आ सकता है।
8: ये जो है वहाँ धुनचे जो रसुआ गढ़ी का जो पावर हाउस है वो हाँ, जो दिख रहे हैं हाई टेंशन तार
1: हाँ,
8: वहाँ से लाकर इसी में ज्वाइंट हुआ था।
1: तो कैसे जाते थे इस साइड से उस साइड?
8: वहाँ पुल था ना, उसके बाद में दो उस साइड में पुल है,
1: दो
8: पुल नहीं है, पुल है ही नहीं है, दोनों तो
1: कुछ नहीं बचा उसका।
9: जब नदी का प्राकृतिक बांध टूटा तो पानी नहीं बल्कि कीचड़, बर्फ और मलबे का तूफान बह निकला। विशेषज्ञों ने इसे लिक्विड कंक्रीट कहा, जो इतनी तेजी से बहा कि उसे रोक पाना संभव नहीं था। 100 फीट ऊंची सुनामी जैसी लहरें आगे बढ़ी और रास्ते में जो आया उसे तबाह कर दिया।
10: ग्लेशियर जो हैं वो वीक पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से, और तीसरा हमारे जो नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं तो वो उनको वीकन करते हैं। तो उस वजह से क्या हो गया है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हम इनको कैसे मॉनिटर करें। अब उस मॉनिटरिंग में फ्रैक्चर जो ग्लेशियर हैं बेसिकली वो टूटे हुए हिस्से होते हैं, जैसे कि आप एक पूरा फिक्स है अपने मोरिन पे, लेकिन वो अगर हिल जाता है तो एक पर्टिकुलर जो पार्ट है वो फ्रैक्चर हो जाता है। ये जो मूव कर रहे होते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं, और फ्रैक्चर होने की वजह से उनके टूट के गिरने की या लेक पे या रिवराइन सिस्टम को ब्लॉक करने की संभावना बढ़ जाती है।
9: ग्लेशियर सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि ऐसी भौतिक शक्ति है जो कभी भी बर्फ और पत्थरों के एवलांच में बदल सकती है। ये रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों को घिस सकते हैं, घाटियां बना सकते हैं, भूकंप ला सकते हैं और एक झटके में पहाड़ों के हजारों वर्ष पुराने भूगोल को हजारों वर्षों के लिए बदल सकते हैं।
1: समय समतल जमीन पे खड़ी हूँ लेकिन उस मकान के छत से ऊंची लग रही हूँ। यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ है। पूरे नेपाल में दो दो तीन तीन मंजिल के घर आज मलबे के नीचे हैं। पर अगर ये तबाही अविश्वसनीय है तो कई रेस्क्यू ऑपरेशंस भी ऐसे रहे जिन्हें हम अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कह सकते हैं।
9: तबाही की अकल्पनीय तस्वीरें आपने देखी, लेकिन जितनी अविश्वसनीय बर्बादी थी उतनी ही अद्भुत जिंदगी बचाने की कोशिशें। चारों तरफ सिर्फ पानी और मलबा था, जमीन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी जिंदगी बचाने वाले देवदूत बनकर लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे।
1: जिस जगह पर हम हैं ये एक्चुअली यहाँ पर जो नेपाल आर्मी है उसका बेस है। आप यहाँ पर देखिए जो नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, और उसके साथ ही जो सिविलियन चॉपर्स हैं वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। तो उन सबको यहाँ पर दरअसल कहीं से भी अगर कोई रेस्क्यू हो पाता है, जो एक दो की संख्या में ही है, और बहुत घंटे बीत गए हैं एक भी नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही एक भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर आता है सभी लोग टकटकी लगाए यहाँ पर देखने लगते हैं कि क्या कोई आया तो नहीं, कोई पहुंचा तो नहीं, कोई नया नाम तो इस लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है। बहुत मुश्किल स्थिति है क्योंकि यहाँ पर भी जो नेपाल के सेना के जवान है उन सबको जवाब देना है, उन सबको संख्या वो लिखनी है, जोड़ती जानी है। एक भी संख्या में इजाफा बहुत बड़ा होता है इनके लिए, और यहाँ पर जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं उनके लिए भी बहुत सामग्री भी लाई जा रही है, क्योंकि ये सबसे ये हब है, ये जहाँ पर पीड़ित हैं, जहाँ पर लोग विस्थापित हुए हैं जहाँ से, और जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है।
11: लिस्ट लगा है किसका?
12: पता चलने वाला का लिस्ट, उधर करे वाला
11: पता चल गया। जिसका भी नया पता चलता है वो नया लिस्ट
12: नहीं आया है
11: अभी, नहीं आया। तो यहाँ के ही जो लोग हैं जो इधर नवाकोटा,
12: भारत का भी है, जो बहुत है भारत का भी,
11: हाँ
12: भारत का है, ये सब भारत का है। देखो ये लोग सब भारत का है।
11: अच्छा,
12: वो भारत भारत बोल रहे थे, वो भारत का है,
11: वो लोग मिल गए हैं।
12: हाँ, मिल गए हैं।
11: अच्छा,
12: और इधर इधर का है, नेपाल का है। हाँ।
13: हम लोग तो अभी यहाँ से नहीं, हमें काठमांडू से आए है, काठमांडू से आए अभी तो इधर। हम इस जगह में क्या क्या है, क्या क्या आवश्यकता है इधर का है, वो पूछने के लिए, देखने के लिए आया है। अभी तो हम फील्ड में फील्ड विजिट के लिए भी आया है।
9: जहां सड़क के रास्ते नहीं पहुंच सकते थे, वहां हेलीकॉप्टर पहुंच रहे थे और एक एक जिंदगी को मौत के घेरे से बाहर निकाला जा रहा था।
11: सीधा ये रेस्क्यू होकर जो लोग आए हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरे हैं और सब आगे हम बढ़ रहे हैं। आप पहनावों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग ये हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो बूट्स और वो औजार और वो यूनिफॉर्म नजर आ रहा है। उन्हें सीधा यहाँ पर लाकर यहाँ से आगे ले जाया जा रहा है। तो जो लोग यहाँ से आगे जाना चाहते हैं, जो लोग अपनों को तलाश रहे हैं, साथ ही जो लोग रेस्क्यू होकर लाए जा रहे हैं, उन सबको यहाँ पर, और भी लोगों को आप देखिए आगे वहां पर, वो जितना सामान हाथ में, कुछ उसमें टूरिस्ट भी लग रहे हैं जो अपने बैग्स के साथ आ रहे हैं। मोहसिन आपको दिखाएंगे वो क्लोजअप्स लेके उस एरिया के। अभी जो दो हेलीकॉप्टर्स आए हैं उसमें ही सवार कुछ जो मजदूर हैं और कुछ ये जो टूरिस्ट आपको दिख रहे हैं आगे बैग्स के साथ, वो आगे जाते हुए। और जो बच गया है, जो मिल गया है, वो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत इस समय समझ रहा है।
9: कुछ लोग जमीन के नीचे फंस गए थे। अपर त्रिशूली एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में बाढ़ और कीचड़ घुस गया था। अंधेरे से भरी इस सुरंग के भीतर रेस्क्यू टीम पहुंची और फिर शुरू हुआ एक एक जिंदगी को बाहर निकालने का मिशन। नेपाल में पहाड़ ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाया, पानी ने रास्ते मिटा दिए, मलबे ने बस्तियां ढक दी, लेकिन इंसान ने भी हार नहीं मानी। पानी के खिलाफ, मलबे के खिलाफ, पहाड़ के खिलाफ और वक्त के खिलाफ एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। पृथ्वी की अद्भुत सुंदरता को बचाने के लिए हमें अविश्वसनीय कदम उठाने होंगे, अकल्पनीय रफ्तार से काम करना होगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
3: ये जो तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके की एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: इनो पीने से आराम मिल गया है या एंटासिड लेने से आपके छाती का दर्द कम हो गया है, तो ये मत सोचिए कि हार्ट अटैक नहीं है। देखिए वर्ल्ड ओवर एवरेज एज ऑफ हार्ट अटैक अराउंड 60 ईयर्स, बट इंडिया में ये 10 साल कम है, यानी कि 50 ईयर्स है। सो बाईपास सर्जरी बेसिकली जब आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, आपको हार्ट अटैक हो चुका है या फिर एंजाइना यानी कि दर्द रहता है, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम है, तब स्टेंट की जगह यू नो वी प्रेफर बाईपास सर्जरी। दूसरे, अगर कोई ऊपर से हेल्दी दिख रहा है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी मेटाबॉलिक प्रोफाइल भी हेल्दी है।
1: हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इसमें डिफरेंस क्या है?
0: कार्डियक अरेस्ट इज फाइनली द कॉज ऑफ डेथ, यहाँ के ऊपर होने वाला कोई भी पेन, कोई भी एबनॉर्मल सेंसेशन हार्ट अटैक हो सकता है।
2: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
3: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
2: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
4: 19 साल के छात्र साहिल लजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
2: हर बात देश के सामने।
3: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
2: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: सो सॉरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नेपाल की तबाही में मौत का आंकड़ा 734 पहुंचा, 2500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। मलबे में नीचे दबे हुए, पांचवें दिन भी जिंदगी की तलाश जारी। सुरंग में फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी है भारतीय टीम। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, 23 साल का रिकॉर्ड टूटा, शहर बन गया है झील, सड़कों पर दौड़ी नावें, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू जारी। जयपुर में नीट पीजी परीक्षा को लेकर बवाल, बिजली नहीं होने के कारण सीतापुर सेंटर पर नहीं हो पाया टेस्ट, अभ्यर्थी

उज्बेकिस्तान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ताशकंद में समझौता यूरेनियम पर डील संभव आज योग सत्र में भी शामिल हुए कल भारतीय समुदाय से मिले।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। आज की कहानी किसी नेता, पार्टी या चुनाव की नहीं है, आरक्षण की है। आरक्षण जिसे कोई सामाजिक न्याय का जरिया मानता है तो कोई मेरिट से जोड़कर देखता है, लेकिन आखिर भारत में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, किन लोगों को आरक्षण मिला और इसके पीछे संविधान की सोच क्या थी, और आज जब आरक्षण को लेकर नई मांगे उठ रही हैं, तो क्या इसके मौजूदा स्वरूप पर फिर विचार की जरूरत है। आज की कहानी में हम आरक्षण को भावनाओं से नहीं, तथ्यों और संविधान के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। आज कहानी आरक्षण की।
1: हम लोग जो साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे।
2: गोली मार दो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे।
3: जब तक हमारे समाज, हमारे देश में इनइक्वालिटी रहेगी, रिजर्वेशन भी एक जरिया रहता है कि जितना इक्वलाइज हो सकता है करने का।
0: आरक्षण को समझना आसान नहीं है, इसके पीछे संविधान है, सामाजिक असमानता की एक लंबी बहस है और कई ऐसे फैसले हैं जिन्होंने समय समय पर देश के आरक्षण व्यवस्था को बदला है। इसलिए इस पूरी कहानी को हम एक एक पड़ाव के साथ समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस वक्त देश में आरक्षण पर हो रही राजनीति क्या है, जिसने फिर से आरक्षण पर नई बहस छेड़ दी।

0: जो आगे बढ़ चुके हैं, जिनके पास पैसा है, उन्हें निकाल दीजिएगा। जहां पिछड़ापन है उनके लिए आरक्षण दिया जा सकता है।
1: आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा।
2: आरक्षण ना भाजपा हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी।
3: आरक्षण को खत्म कर दिया है, उस आरक्षण पर डाका डाला है।
4: नौकरियां दी जाती हैं, उसमें न्यूनतम मार्क्स डिसाइड किए जाएं, ताकि योग्य लोग वहां बैठ सके। शिक्षा में आरक्षण नहीं, संरक्षण दिया जाए।
5: तक सुधार नहीं होगा, कोई यहां से नहीं हटेगा।
6: मैं नहीं मानता हूं कि 75 साल में बाय सिंपली गिविंग सम रिजर्वेशन आप उस इनइक्वालिटीज को दूर कर सके।
7: तक अधिकार नहीं मिलेगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा आरक्षण हटाओ,
8: गोली मार दो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे।
6: अगर आप जब तक इक्वालिटी नहीं ला सकेंगे, तब तक कैसे सोशल जस्टिस कर सकते हैं?
9: जिसे संविधान ने सामाजिक बराबरी और प्रतिनिधित्व का रास्ता बनाया, वही आरक्षण आज एक बार फिर देश की सियासत के केंद्र में है। आरक्षण के नाम पर कहीं अधिकारों की हुंकार है, तो कहीं व्यवस्था को बदलने की मांग, कहीं आरक्षण बचाने की आवाज बुलंद हो रही है। तो कहीं आरक्षण हटाने की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। कहीं सरकार पर आरक्षण के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के आरोप है, तो कहीं विपक्ष पर आरक्षण के नाम पर सियासी रोटियां सेकने के आरोप। यानी आरक्षण के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, बयानबाजी तेज है, आरोपों की बौछार है और सत्ता से सड़क तक घमासान मचा है।
1: ये सब बीजेपी की मिलीभगत है। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। समाजवादी पार्टी इसको किसी भी कीमत पे खत्म नहीं होने देगी।
9: लेकिन इस सियासी घमासान के बीच बीजेपी की ओर से बार बार ये साफ किया गया है कि पार्टी आरक्षण खत्म करने के पक्ष में नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई सार्वजनिक मंचों से आरक्षण को लेकर बीजेपी का रुख साफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि देश में आरक्षण और संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता।
10: एससी एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया कांग्रेस ने। इतने प्रयास ये जानते बूझते किए। जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया।
2: मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूँ, एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी। ये मोदी का गारंटी।
9: यानी एक तरफ आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से आरक्षण को जारी रखने का स्पष्ट राजनीतिक संदेश। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर सीधे सामने नहीं आ रही, बल्कि अपने कथित प्रॉक्सी संगठनों के जरिए आरक्षण खत्म करने की जमीन तैयार कर रही है। बीजेपी का पलटवार भी उतना ही तीखा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आरक्षण पर सवाल उठाने से पहले समाजवादी पार्टी को अपने सियासी अतीत के पन्ने पलट कर देखने चाहिए।
3: आरक्षण ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे आरक्षण, चाहे बीसी का आरक्षण हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, या जो भी आरक्षण है, उस आरक्षण को खत्म कर दिया है।
11: आदरणीय मोदी जी के रहते हुए आरक्षण पर कोई भी संशोधन और आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता।
12: आरक्षण का फायदा होना जो चाहिए, और आरक्षण हटाने का किसको अधिकार नहीं है। आरक्षण हटाने की मांग संविधान विरोधी है और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आरक्षण को सपोर्ट करने वाली सरकार है।
9: आरक्षण की इसी सियासत में अब सरकारी नौकरियों के खाली पद भी बड़ा मुद्दा बन गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। खड़गे का आरोप है कि एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है। लेकिन आरक्षण की यह लड़ाई सिर्फ सियासी बयानों और संसद की बहस तक सीमित नहीं है, सड़क पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। लखनऊ में आरक्षण हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। सवर्ण मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और बदलाव की मांग उठाई।
13: हम लोग रिफॉर्म सत्याग्रह कर रहे हैं, रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह कर रहे हैं।
14: आरक्षण में संशोधन हो और पुलिस हमें जबरदस्ती उठा के ले जा रही है, हमें गोली मार दिया जाए लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
9: यानी एक तरफ आरक्षण के खिलाफ आक्रोश और असंतोष है तो दूसरी तरफ आरक्षण के समर्थन में भी सियासी और सामाजिक लामबंदी तेज हो रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण को खैरात नहीं संवैधानिक अधिकार बताया है।
15: ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है, आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है।
9: तो तस्वीर के दोनों पहलू साफ है। एक तरफ आरक्षण को सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकार बताकर इसे बचाने की आवाज बुलंद हो रही है तो दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि करीब 8 दशक पुरानी आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा का वक्त आ गया है या नहीं।
16: हमारी लड़ाई योग्यता के लिए है, योग्यता ही चयन का आधार हो और संविधान के समक्ष जब हमने स्वीकार किया धर्म मूल बंजात के आधार पर विभिन्नता नहीं करेंगे तो उनके समक्ष ब्राह्मण क्या क्षत्रिय क्या वैश्य क्या शूद्र का सभी समान है। हम समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं।
9: लेकिन ये बहस आज की नहीं है। मंडल आयोग से लेकर प्रमोशन में आरक्षण, क्रीमी लेयर से लेकर एससी एसटी सब कैटेगरी और आरक्षण की समीक्षा मांग तक आरक्षण हर दौर में सियासत की धुरी बना रहा है। कभी आरक्षण ने सरकारों की नींव हिलाई, कभी चुनावी समीकरण बदले और कभी समाज के अलग अलग वर्गों को आमने सामने ला खड़ा किया।
6: संविधान का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इक्वालिटी। अगर आप जब तक इक्वालिटी नहीं ला सकेंगे तब तक कैसे सोशल जस्टिस कर सकते हैं? तो ये इक्वालिटी लाने में आपको बहुत ही लंबा समय लगेगा और मैं नहीं मानता हूं कि 75 साल में बाय सिंपली गिविंग सम रिजर्वेशन आप उस इनइक्वालिटीज को दूर कर सके।
9: और अब एक बार फिर वही सवाल सियासत के कटघरे में खड़ा है। क्या आरक्षण सामाजिक बराबरी हासिल करने का जरूरी हथियार है या फिर करीब 80 साल के अनुभव के बाद आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा का वक्त आ गया है।
0: समता और समानता, राइट टू इक्वालिटी, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? बहुत सारे लोगों को वही अपॉर्चुनिटी नहीं है जो दूसरे लोगों को है, तो एक थोड़ा सा एक इक्वलाइजेशन के तरफ से रिजर्वेशन भी आया है।
9: आरक्षण अब सिर्फ नौकरी या दाखिले का सवाल नहीं रह गया है, ये सवाल है प्रतिनिधित्व का, सामाजिक न्याय का, संवैधानिक अधिकार का और सत्ता में हिस्सेदारी का। और शायद यही वजह है कि आरक्षण की लड़ाई सिर्फ सियासत की लड़ाई नहीं है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को तय करने वाली ऐसी बहस है जिसका असर आने वाले वक्त की राजनीति पर भी दिखाई देगा।
17: तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि भारत में किन लोगों को और किस वजह से आरक्षण दिया गया है। सबसे पहले बात अनुसूचित जाति यानी एससी की। ये वो समुदाय है जिसके बारे में कहा जाता है कि सदियों तक छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज में उन्हें सबसे नीचे रखा गया, कई जगहों पर मंदिर में जाने की इजाजत तक नहीं थी, पानी के कुएं अलग थे, बस्तियां अलग थीं और शिक्षा और रोजगार के मौके भी सीमित थे। ये कहा जाता है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद भी इन समुदायों को लंबे समय तक सामाजिक और शैक्षणिक भेदभाव झेलना पड़ा। इसीलिए संविधान ने इन्हें अनुसूचित जाति यानी SC के तौर पर मान्यता दी और शिक्षा, सरकारी नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण दिया ताकि इन्हें भी आगे बढ़ने का बराबर मौका मिल सके। दूसरी कैटेगरी है अनुसूचित जनजाति यानी ST की। इसमें आदिवासी जनजातीय समुदाय आते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से पहाड़ी, जंगल या देश के दूर दराज इलाकों में रहते आए हैं। अब सवाल यह है कि इन्हें आरक्षण क्यों दिया गया? इसकी एक बड़ी वजह रही सामाजिक और भौगोलिक दूरी। इन इलाकों तक लंबे समय तक अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क, रोजगार और दूसरी जरूरी सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंच पाई। इसीलिए इन समुदायों को भी मुख्य धारा के बराबर अवसर देने और विकास की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तीसरी बड़ी कैटेगरी है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC। अब इसे समझना थोड़ा दिलचस्प है। OBC में ऐसे समुदाय आते हैं जो SC या ST में शामिल नहीं है लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं। यानी यहाँ सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन भी महत्वपूर्ण आधार है। और अब बात EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की। ये आरक्षण SC, ST और OBC से अलग है। इनमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो इन आरक्षित वर्गों में नहीं आते लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यानी पहली बार आरक्षण का आधार सामाजिक या शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति बनी। सीधी भाषा में कहें तो EWS आरक्षण का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग के लोगों को भी शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर देना है। रक्षा आरक्षण की आज की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले उस फैसले तक जाना होगा जब संविधान निर्माताओं ने SC ST को आरक्षण देने का रास्ता तैयार किया। आखिर आजादी के बाद दलितों और आदिवासियों को आरक्षण की जरूरत क्यों महसूस हुई? संविधान में इसे कैसे जगह मिली और कब से ये लागू हुआ? सिर्फ नौकरी और शिक्षा ही नहीं बल्कि लोकसभा विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में इसकी व्यवस्था की गई। तो समझिए SC ST आरक्षण की ये पूरी कहानी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
5: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
6: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
7: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
8: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
5: अब मैं क्या ही बोलूं।
9: परिवार अटूट भरोसा।

0: आगे आगे उधर
1: किधर?
0: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
4: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती।
5: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते,
3: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
4: देखिए मोहन भागवत जी का बयान अच्छा बयान है, और जो हिंदू मुसलमानों के खिलाफ है वो हिंदू नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए कि हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं, और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ, अजीज रिश्तेदार भाई नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है। लिहाजा इसको मिल के सबको सोचना चाहिए कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इमामबाड़ा चर्च सिनेगॉग और दूसरी धार्मिक जगहों को लेके एक दूसरे के दस्ते गरीबा होना, एक दूसरे से इख्तलाफ करना यह अच्छी चीज नहीं है, बल्कि दोनों को चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो दोनों को अपनी बाहें फैला के पूरी तरीके से एक दूसरे का वेलकम और स्वागत करना चाहिए।
5: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहना दिया।
6: इस सपा का मतलब ही है लूट खसोट, इस समाजवादी पार्टी का मतलब ही है कि डकैतों का एक गिरोह। ये लोग नहीं है, 17 के पहले मां क्या क्या कहावत थी, देख सपाई बिटिया घबराई, यानी हर बेटी चिंतित रहती थी, हर अभिभावक चिंतित रहता था क्या होगा। किसी भी मां बाप के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है बेटी की सुरक्षा, हर मां बाप के लिए चिंता होती है, हर भाई की चिंता होती है। लेकिन इन सपाइयों ने बेटी के साथ जो व्यवहार किया था, कल मैं देख रहा था जब हम फ्री में बस यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे थे 26 को, तो समाजवादी पार्टी के बबुआ की नींद भी टूटी और वो भी एक प्रेस वार्ता जल्दी जल्दी में बुलाने लग गए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ब्रेक से पहले आपने एससी एसटी आरक्षण की पूरी कहानी को समझा, कब मिला, क्यों मिला और संविधान में इसकी व्यवस्था कैसे हुई। अब बारी है ओबीसी आरक्षण की कहानी की। आखिर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की जरूरत क्यों महसूस हुई, मंडल कमीशन का गठन क्यों हुआ, उसकी सिफारिश क्या थी और 27% आरक्षण का फैसला कब और कैसे लागू हुआ। 1990 में वीपी सिंह सरकार के ऐलान के बाद देश की सियासत और सड़क दोनों पर भूचाल आ गया। तो आप देखिए ओबीसी आरक्षण की पूरी कहानी।
1: ना ही सरकार हमारे साथ है, ना ही एमपी हमारे साथ है, ना ही एमएलए हमारे साथ है, तो हमारे पास मात्र महात्मा गांधी का एक चीज बचा है, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस।
2: हम लोग जो साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया है, बंदूक चलाना सीखेंगे।
3: साल 1990 दिल्ली की हवा में बरसात की उमस थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गर्मी थी सड़कों पर उतर चुके नौजवानों के गुस्से की। केंद्र की तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया। इसके तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का रास्ता खोला गया था। 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संसद में इसका ऐलान किया और इसके साथ ही देश की सियासत और समाज में ऐसा उबाल आया जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी।
4: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश के चलाने और संवारने में उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं, मजबूती से देना चाहते हैं।
3: लेकिन सवाल ये है कि आखिर ओबीसी आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, और इससे भी बड़ा सवाल, मंडल आयोग आया कहाँ से, उसने ओबीसी की पहचान कैसे की, 27% आरक्षण का आंकड़ा कैसे तय हुआ और वीपी सिंह के एक फैसले ने देश की राजनीति को कैसे बदल दिया।
5: संविधान में एक बड़ी समस्या है, जब संविधान लिख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स तो अंबेडकर और उनके सहयोगियों ने एक शब्द ही इस्तेमाल किया, बैकवर्ड्स। उन्होंने डिफाइन नहीं किया था, बाद में उन्होंने शेड्यूल कास्ट डिफाइन किया, शेड्यूल ट्राइब डिफाइन किया, बट वो बैकवर्ड जो शब्द था उसको डिफाइन करने में हमें बहुत तरह की सोच लगानी पड़ी। मंडल कमीशन एक अप्रोच था टू आइडेंटिफाई मोर एंड मोर सच बैकवर्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मेरे ख्याल से ये पीरियोडिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए हर एक राज्य में, क्योंकि हर एक राज्य की स्थिति अलग है। मंडल कमीशन वॉज वन सच अटेम्प्ट। तो ये सब चर्चाएं बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत शांत तरीके से चर्चाएं होनी चाहिए। रिजर्वेशन हटाने की चर्चा हमारी रास्ते पर नहीं होनी चाहिए, इससे देश का बंटवारा हो जाएगा।
3: इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। आजादी के बाद संविधान ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों का रास्ता बनाया, लेकिन पिछड़े वर्गों की पहचान कौन करेगा और उन्हें सरकारी व्यवस्था में प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा, ये सवाल बना रहा। इसी सवाल के जवाब की तलाश में 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना, यानी काका कालेलकर आयोग बनाया गया। आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए कई आधार सुझाए और 2,399 जातियों और समुदायों को पिछड़े वर्गों की सूची में रखा, लेकिन इसकी सिफारिशें व्यापक रूप से लागू नहीं हो सकी। और फिर आया 1970 का दशक, देश की राजनीति बदल रही थी, पिछड़े वर्गों के राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व की मांग तेज हो रही थी।
6: चला रहा।
3: 1 जनवरी 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। इसकी अध्यक्षता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल को सौंपी गई। यही आगे चलकर मंडल आयोग के नाम से जाना गया। मंडल आयोग ने देश भर में पिछड़ेपन का अध्ययन किया। आयोग ने सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक संकेतों के आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान करने की कोशिश की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को सरकार को सौंपी। और यहीं से सामने आया वो आंकड़ा जिसने आने वाले दशक में भारतीय राजनीति को हिला दिया। मंडल आयोग ने अनुमान लगाया कि देश की आबादी का करीब 52% हिस्सा ओबीसी है। यह आंकड़ा उस समय उपलब्ध 1931 की जाति जनगणना के आंकड़ों और आयोग की अपनी गणना पर आधारित था। आयोग ने 3,743 जातियों और समुदायों को ओबीसी के रूप में चिन्हित किया था। उस समय एससी और एसटी के लिए कुल 22.5% आरक्षण पहले से था। मंडल आयोग ने इसके ऊपर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, यानी कुल आरक्षण 49.5% तक पहुंचता। मंडल आयोग की रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी, लेकिन रिपोर्ट लागू नहीं हुई। सरकारें बदली, सियासी समीकरण बदले, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशें फाइलों में पड़ी रही। फिर आया 1989 का लोकसभा चुनाव। जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा किया। कांग्रेस से अलग होकर वीपी सिंह विपक्ष की राजनीति का बड़ा चेहरा बने और जनता दल सत्ता में आया। बीजेपी और लेफ्ट दलों के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार के भीतर भी सियासी खींचतान शुरू हो चुकी थी। उप प्रधानमंत्री देवीलाल से वीपी सिंह के रिश्ते बिगड़ रहे थे। सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा था और इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला हुआ। 7 अगस्त 1990, वीपी सिंह सरकार ने केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने का ऐलान कर दिया।
6: I'm not a villain in the scheduled caste. They have very good feelings for me. Where am I a villain for? Majority I'm not. And because upper caste thinks their world is the nation and their world is all. And therefore anybody who's good or bad is that's the end of the world.
3: लेकिन इस ऐलान के साथ ही देश की सड़कों पर ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसकी तस्वीरें आज भी भारतीय राजनीति के सबसे उथल पुथल भरे दौर की याद दिलाती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर जेएनयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर बीएचयू तक कई जगह छात्र सड़कों पर उतर आए। आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन हुए, कई जगह पुलिस से झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चली और आंदोलन के दौरान कुछ छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश तक की।
7: डेमोंस्ट्रेशन करते हैं तो पुलिस हम पर लाठी डंडे बरसाती है, जबकि प्रो रिजर्वेशनिस्ट रैली को पुलिस स्कॉर्ट करके ले जाती है। ना ही सरकार हमारे साथ है, ना ही एमपीस हमारे साथ है, ना ही एमएलएज हमारे साथ है, तो हमारे पास मात्र महात्मा गांधी का एक चीज बचा है, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस।
2: करेंगे हम, जलाएंगे, बस जलाएंगे, अब क्या करेंगे, हमारे पास और कोई और चारा नहीं है, और क्या करेंगे, जीविका के लिए तो कुछ करना ही होगा, आखिर नहीं तो रहेंगे। हम लोग जो है साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया है, बंदूक चलाना सीखेंगे, और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे, यही यहाँ से लिखेंगे भी और यही यहाँ से खून भी बहाएंगे।
3: एक तरफ आरक्षण विरोधी छात्र इसे मेरिट और प्रतियोगिताओं से जोड़कर सवाल उठा रहे थे, तो दूसरी तरफ पिछड़े वर्गों के बीच इसे प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा था। यानी एक ही फैसले को लेकर देश दो अलग अलग नजरियों में बंटता दिख रहा था। लेकिन मंडल की इस आग के बीच राजनीति की दूसरी धारा भी तेज हो रही थी। एक तरफ मंडल, दूसरी तरफ कमंडल और भारतीय राजनीति के सामने एक नया सामाजिक सियासी समीकरण आकार ले रहा था।
8: Few journalists who were accompanying me right from there, in the very first day, कहा तो पानी जी, डज इट सीम टू यू दैट यू आर मेकिंग हिस्ट्री ऑफ सम काइंड? आई सेड आई एम परप्लेक्स्ड, आई एम बैफल्ड, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, इट विल टेक टाइम. प्रमोद महाजन हु वॉज विथ मी, he was also somewhat wonderstruck.
3: मंडल का विरोध सिर्फ सड़कों पर नहीं था, सरकार के भीतर भी राजनीतिक संकट गहराने लगा. वीपी सिंह सरकार को समर्थन दे रही बीजेपी और केंद्र सरकार के बीच अयोध्या के मुद्दे पर टकराव बढ़ा. आखिरकार राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला और नवंबर 1990 में वीपी सिंह सरकार गिर गई. लेकिन मंडल का फैसला वापस नहीं लिया गया, बल्कि इसने भारतीय राजनीति में एक ऐसा नया अध्याय खोल दिया जिसमें पिछड़ा वर्ग सिर्फ सामाजिक श्रेणी में नहीं रहा बल्कि एक बड़ा राजनीतिक समूह बनकर सामने आया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. '92 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में 9 जजों की संविधान पीठ ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा. लेकिन अदालत ने इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी तय कर दी. क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर करने का सिद्धांत सामने आया और आरक्षण की कुल सीमा को सामान्य परिस्थितियों में 50% तक रखने की बात कही गई.
9: हाँ, हम ये भी मान सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है, वैसे ही दारिद्रता दूसरे कास्ट में भी है जो पिछड़े हैं, पर जिन पर छू अछूत की जो भेदभाव है वो लागू नहीं होता है. तो उस वर्ग में क्रीमी लेयर को निकाले, जो यानी जो आगे बढ़ चुके हैं, जिनके पास पैसा है उन्हें निकाल दीजिएगा, पर जो जिस जहां बिछड़ापन है उनके लिए आरक्षण दिया जा सकता है. वो ब्रॉडली वही फैसला था मैं इंदिरा साहनी का. तो वो जो बैलेंसिंग जो 91-92 में जो हुआ था वो अभी अब क्या 30-40 साल होते आए हैं, तो वो भी सामाजिक न्याय का एक हिस्सा बन चुका है.
3: यानी मंडल आयोग की सिफारिश सिर्फ राजनीतिक फैसला बनकर नहीं रही, वो न्यायपालिका की कसौटी से भी गुजरी और फिर आरक्षण की व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बन गई. इसके बाद ओबीसी आरक्षण का दायरा सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं रहा, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया. और मंडल के बाद सिर्फ आरक्षण की व्यवस्था नहीं बदली, राजनीति का सामाजिक आधार भी बदल गया.
0: ओबीसी से आगे बढ़कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण की. आखिर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का रास्ता कब खुला और कैसे खुला? 2019 में 103वें संविधान संशोधन के जरिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण के दायरे से बाहर रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है. लेकिन सवाल सिर्फ 10% आरक्षण का नहीं है, सवाल यह है कि इसमें सुधार की मांग क्यों उठ रही है.
10: एससी एसटी ओबीसी यू आर हाई मतलब अनडिजर्व, तो ईडब्ल्यूएस कहाँ घुसेगा? ओबीसी का साथ आएगा, एससी का साथ आएगा? ये हम लोग का सवाल है.
11: सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े सभी धर्मों के लोगों को नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाएगा.
12: ओबीसी को 6 लाख और यहाँ 8-7 लाख, तो गरीबी रेखा का मापदंड क्या होगा?
13: नरेंद्र मोदी जी का था अच्छा लक्षण, मिल रहा है सवर्णों को आरक्षण.
3: 2019 की यह तस्वीर है जब ईडब्ल्यूएस पर संसद में मुहर लगी और भारतीय आरक्षण व्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ा.
14: अनुसूची विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है. अनुसूचित विधेयक का अंग बनी.
15: द कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल 2019 इस सत्र के दौरान पारित किए गए.
3: ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का केंद्र सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन किया और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया.
11: कई दशकों से देश के आम जनता के मुख्य मांग रही है कि जब
13: एसी एसटी ओबीसी लोगों को आरक्षण मिला है तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य श्रेणी के लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था हो। अब यह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन से प्राप्त होने जा रहा है। अब सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े सभी धर्मों के लोगों को नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें 10% कोटा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होगा, जिससे लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की मांग पूरी होगी।
3: यानी पहली बार संविधान में आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे लोगों के लिए आरक्षण का स्पष्ट रास्ता बना जो एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण के दायरे में नहीं आते थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल था कि ईडब्ल्यूएस में कौन आएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का आधार जातिगत या सामाजिक पिछड़ापन नहीं था, इसका आधार था आर्थिक कमजोरी।

0: सवर्ण समाज में सभी लोग अमीर नहीं है, उनको उनके उनमें गरीब लोग जो है उनको 10% आरक्षण देने का निर्णय हो चुका है।
1: देश के ऐसे सामान्य वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा के आसपास का जीवन जीते हैं, उनके हित में भी ये ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत करके उनके हकों को उन तक पहुंचाने का काम इसके माध्यम से हम करने वाले हैं।
2: ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा उन लोगों को देने की व्यवस्था की गई जो एससी, एसटी और ओबीसी की आरक्षित श्रेणियों में नहीं आते हैं। ईडब्ल्यूएस पात्रता के लिए परिवार की सकल वार्षिक आय की सीमा 8 लाख रुपए से कम रखी गई है। कृषि भूमि 5 एकड़ से कम हो, आवासीय फ्लैट 1,000 वर्ग फुट से कम हो, यानी सरकार ने आर्थिक कमजोरी को सिर्फ कम आमदनी से नहीं जोड़ा बल्कि आय और संपत्ति दोनों को आरक्षण का हिस्सा बनाया। अब सवाल ये था कि 10% आरक्षण आखिर मिलेगा कहाँ? पहला, सरकारी नौकरियों में केंद्र सरकार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण है। डीओपीटी के अनुसार ये केंद्र सरकार की सिविल पोस्ट और सेवाओं में लागू है। दूसरा, सरकारी और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले में भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन यहीं से एक नई बहस शुरू हुई, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद सवाल उठा कि क्या आर्थिक कमजोरी को आरक्षण का आधार बनाए जाना संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नवंबर 2022 में 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण को देश की आरक्षण व्यवस्था में संवैधानिक मान्यता मिल गई। हालांकि ईडब्ल्यूएस और एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण में एक बड़ा फर्क है जिस पर बार बार बहस होती है। ईडब्ल्यूएस और एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण में एक बड़ा फर्क यही है कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण तो मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार की भर्ती में एससी, एसटी, ओबीसी जैसी उम्र, फीस और प्रयासों की छूट नहीं मिलती। यानी करीब 7 दशक से ज्यादा लंबी आरक्षण की कहानी में एक बड़ा बदलाव तो हो गया, लेकिन एक बार फिर से सुधार की मांग है। अब आरक्षण का दायरा सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान तक नहीं रहा, आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग भी इसके दायरे में आ गया है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या जरूरतमंद तक लाभ पहुंच रहा है या फिर इसमें और सुधार की जरूरत है।
3: 92.0 में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: इन 2018 इन दिल्ली आई हैड अ लेक्चर एंड मुस्लिम ब्रदर्स वर आल्सो देयर एंड दे आस्क्ड मी द क्वेश्चन, यू आर ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, यू से हिंदू राष्ट्र, व्हाट अबाउट अस मुस्लिम्स, वुड यू drive us out? I said, no, that is not Hindutva. If any Hindu thinks that there should be no Muslim in Bharat, he will not remain Hindu. If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
3: We are saying united in oneness and what? I cannot hear you. That is the third line. You omitted the second line. Don't omit the second line. United in oneness. And decorated by the diversity.

0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
1: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से भारत उज्बेकिस्तान के रिश्तों में नई उड़ान। द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी बोले, दोनों देश ठोस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। यूरेनियम को लेकर समझौता। संघ प्रमुख के मुस्लिम वाले बयान पर बयानबाजी तेज हुई। मौलाना बोले, अब जमीन पर भी दिखे असर। विपक्ष का वार, विदेश में समझदारी की बातें, देश में चुप्पी क्यों। यूपी की लड़ाई, भ्रष्टाचार पर गरमाए योगी के आरोपों के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को सामने लाया, कहा इन लोगों ने पैसा खाया। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा, फिर उफान पर त्रिशूली नदी, तेज धार में बहा पुल, तबाही की मौत का आंकड़ा 734 के पार पहुंचा, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। और यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, 23 साल का रिकॉर्ड टूटा, शहर बना है झील, सड़कों पर दौड़ी नावें, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान में हैं। ताशकंद में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है जिसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान को भारत का प्रमुख साझेदार बताया है। दोनों ही देशों में $1 बिलियन से ज्यादा का द्विपक्षीय कारोबार होता है। यूरेनियम सप्लाई को लेकर भी उज्बेकिस्तान से बात हुई है और इसके अलावा कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों ही देशों में बात बनी है। तो ठोस रणनीति से आगे बढ़ेंगे दोनों ही देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जा रहा है जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है। और आपको बता दें कि ये जो 2 दिवसीय दौरा है हर मायने में बहुत खास रहा है, भारत के लिए भी और उज्बेकिस्तान के लिए भी। दोनों देशों में $1 बिलियन से ज्यादा का द्विपक्षीय कारोबार होता है। यूरेनियम सप्लाई को लेकर भी उज्बेकिस्तान के साथ प्रधानमंत्री की बात हुई है। इसके अलावा कई और अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर भी दोनों ही देशों के बीच बात बन गई है।
1: हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो, ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहां एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया, ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। 2 दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने ये बुक देखी आपकी, जिसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई, हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए, हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहां न्यू टैस्केंट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहां से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहां न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहां से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं।
0: और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय जुड़ गए। प्रणय, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कुल मिलाकर रणनीतिक बढ़त की भारत की बात की जाए, साथ ही साथ मध्य एशिया में जो भारत की बढ़ती हुई सक्रियता है उसके लिहाज से जो ये यात्रा है और जो समझौते हुए हैं वो कितने महत्वपूर्ण है।
2: शशि, कूटनीति की उलझी और पेचीदा भाषा से अलग हटकर अगर हम सहज और सरल भाषा के अंदर बात करें तो आखिर भारत उज्बेकिस्तान के साथ अपनी साझेदारी को क्यों मजबूत करना चाहता है। इसको अगर हम व्यापार और कारोबार के लिहाज से देखें तो उज्बेकिस्तान में भारत 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम अब मध्य एशिया के पूरे इलाके के अंदर अपनी व्यापारिक मौजूदगी बढ़ाना चाहते हैं। $1 अरब का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है और जिसका दायरा बढ़ाया जाना है, इसका संकल्प आपने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान, इस भाषण के अंदर भी सुना जो उन्होंने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की मौजूदगी में दिया। इसके अलावा यूरेनियम की सप्लाई यानी ऊर्जा सप्लाई के लिहाज से ये साझेदारी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो गिफ्ट सिटी और सिस्टर सिटी कंसेप्ट की बात प्रधानमंत्री मोदी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं वो बताता है कि किस तरीके से उज्बेकिस्तान, जिसके साथ भारत के बड़े ऐतिहासिक पुराने संबंध रहे, यदि हम भाषाई स्तर पर देखें तो बताया, कहा जाता है कि समोसा जो है वो आपका, हमारा पसंदीदा, वो समोसा मध्य एशिया के इलाके से ही भारत में आया, वहां भी उसे समसा कहा जाता है। कई शब्द ऐसे हैं जो उज्बेक भाषा में हिंदी के अंदर एक जैसे हैं, समान हैं। इसके अलावा व्यापार, कारोबार, निवेश, इसके लिहाज से महत्वपूर्ण है। उज्बेकिस्तान कनेक्टिविटी के लिहाज से मध्य एशिया में भारत की व्यापारिक मौजूदगी मजबूत हो सके उसके लिहाज से एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। और इसी लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये जो मध्य एशिया की यात्रा है जिसकी शुरुआत उज्बेकिस्तान से हुई है और जिसका समापन जो है वो किर्गिस्तान में होगा एससीओ की बैठक के हाशिए पर, वहां भी जो मध्य एशिया के जो राष्ट्र प्रमुख आएंगे उनके साथ बातचीत में भी ये साझेदारी और ये दोस्ती और मजबूत होती नजर आएगी, जिसका सीधा असर भारत के व्यापार कारोबार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए आपका, बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर ये जो यात्रा है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री की। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे नेपाल के बारे में क्योंकि भीषण बाढ़ से बड़ी तबाही वहां मची हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी बीच मृतकों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही में अब तक 234 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है जबकि 2500 से ज्यादा लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो अभी भी लापता हैं। और इसी बीच लगातार लोगों की तलाश के लिए नेपाल की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार दुर्गम इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं, जिंदगियों को खोजा जा रहा है हेलीकॉप्टर की मदद से। और आपको बता दें कि नेपाल में इस वक्त त्रिशूली नदी में फिर से भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इतने बुरे हालातों में एक बार फिर से बाढ़ का पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। रविवार सुबह आई बाढ़ में गोरखा के गंडकी गांव पालिका और साथ ही धादिंग में बेनीघाट और गांव पालिका को जोड़ने वाली चरौंदी सस्पेंशन पुल के बहने की खबर है। अचानक से बढ़े हुए नदी के जलस्तर और तेज बहाव के चलते पुल देखते ही देखते त्रिशूली नदी में समा गया। तस्वीरें देखिए जरा, पुल के बह जाने के बाद दोनों इलाकों के बीच जो आवागमन का रास्ता था वो प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये और बड़ा संकट है कोने कोने तक पहुंचकर जिंदगियों को तलाशने के लिए, उन तक मदद पहुंचाने के लिए। देखिए पुल पूरी तरह से इस नदी में समा चुका है तो दोनों ही तरफ का जो संपर्क का साधन था वो पूरी तरह से नदी में समा चुका। और ये बहुत बड़ी मुश्किल है सेना के सामने, रेस्क्यू टीम्स के सामने, कि कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, वहां से उन्हें रेस्क्यू किया जाए, खाने की तमाम सामग्रियां वहां तक पहुंचाई जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं, जो तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार नेपाल से। आशुतोष, फिलहाल क्या जानकारी है, मौसम के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, और एक बार फिर से हम रौद्र रूप दिखा रहे हैं जल का, कि आज सुबह फिर से सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा नजर आया है नदी का जल स्तर।
3: दरअसल 4:30 से 5 बजे स्थानीय समयानुसार शशि वो महसूस होने लगा था, मैं जहां पर हूं बिल्कुल नदी के किनारे हूं। मेरे पीछे जो आप धारा देख रहे हैं दरअसल भटकोशी की धारा है। आमतौर पर मैं चाहूंगा कि आपको एक बार करीब से भी तस्वीरें दिखाऊं भटकोशी की, कि सुबह से जो बदलाव आया था वो इस नदी में आया था। हालांकि अब इसका जो विकराल रूप है उसमें थोड़ी कमी है, लेकिन सुबह दरअसल ऐसी स्थिति थी कि दरअसल इसमें आवाजें बहुत जोर जोर से, जैसे कहते ना कि नदी में जब लहरें उफान करती हैं तो कितनी डरावनी होती है, लगभग वैसी ही तस्वीर यहाँ पर थी। और वो सुबह चेतावनी जो है प्रशासन के द्वारा दी गई थी कि यहाँ रहने वाले तमाम लोग चले जाएं और किनारे हो जाएं, उनको इवैक्यूएट कराया गया था। और चूंकि जब यहाँ पर सुबह जलस्तर बढ़ा था, 7 बजे अलर्ट जारी किया गया था, और 8 से 8:15 के बीच में 1 घंटे में पानी जो आप देख रहे हैं कि गंडक नदी और तमाम सारी नदियों में, क्योंकि पहाड़ के कई हिस्सों में आप कह रहे हैं मौसम तो इस इलाके में फिर भी ठीक है। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी जो रुसवा तक का पहला शहर है वहां तक भी मौसम ठीक था, और इसी वजह से राहत बचाव कार्य के लिए हेली ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन जिस इलाकों से, तिब्बत के जिस इलाकों से, ये जो ठीक पीछे दिखाई दे रहे हैं सीधी मेरी ऊंचाई पर इन पहाड़ियों के पीछे जहां तिब्बत की सीमा शुरू होती है, वहां के फॉर्मेशन पे जलाशय बने हुए हैं, और जब वो वार्निंग आती है कि वहां से कुछ पानी नीचे आ रहा है, उसके बाद ही जो पीछे नदी या भटकोशी है उसका स्तर बढ़ता है, और यहां पानी जब आएगा तो नीचे जाएगा, जिसके बाद जो ये डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि खतरा टला नहीं है, क्योंकि जो जलाशय टूटे थे उसने अपने साथ छोटे छोटे और कई जलाशय बनाए हैं। अगर उसमें कोई आइस एवलांच आ जाता है या फिर मलबा लूज होता है, कोई पत्थर भी टूट के नीचे गिरता है तो उस बैरियर को तोड़ देगा, और इसीलिए खतरा बना हुआ है कि अगर फिर बैरियर टूटता है, कोई नहीं जानता उस जलाशयों में जो पानी है वो अभी कितना है, कितनी मात्रा उसकी नीचे आएगी, उसके साथ मलबा कितना आएगा, इसीलिए जो रास्ते हैं उनको खोलने में भी मुश्किल है, और सैलाब की तबाही की तस्वीरें लगातार चल रही है। खतरा भी टला नहीं है,
0: बिल्कुल हम समझ सकते हैं खतरा भी टला नहीं है, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आशुतोष आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि नेपाल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच बटार इलाके में बर्बाद हुए 16 प्लांट तक आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा वहां पहुंचे थे, वहां का हाल वो बता रहे हैं कि आखिर सैलाब ने किस कदर वहां तबाही मचाई है।
3: आज तक पर आप वटार में तबाही की वो तस्वीरें देख रहे हैं। 25 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया, कई सारे यहां पर इमारतें थी, और ये सारा हिस्सा अब दलदल में, अगर आप देखेंगे यहां पर, मुझे ये भी नहीं अंदाजा है कि जमीन से आखिर इसकी ऊंचाई कितनी है। और सबसे बड़ी दिक्कत दरअसल ये है कि इसको रीबिल्ड करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ऊर्जा पहाड़ों की सबसे ज्यादा जरूरत है, और सोलर प्लांट के चलते दरअसल ये पूरा जो लैंडस्केप अगर आप देखेंगे, नदी की धारा 50-100 मीटर की होती थी, और ये इसी इलाके में प्लांट लगाए जाते थे, लोगों के आने जाने का इलाका होता था। लेकिन अब जब सब कुछ एक मलबे के अंदर दबा हुआ है, क्या इमारतें, क्या मकान, दुकान, इस तरह की जो प्रोजेक्ट है, परियोजनाएं हैं, उससे पता चलता है कि नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। खासकर ये जो सोलर परियोजना, जिन जगहों पर हम यहां पर पहुंचे हैं, सब कुछ तबाहो बर्बाद दिखाई दे रहा है, और जाहिर है कि इस नुकसान से नेपाल को उबरने में काफी समय लगेगा।
0: तो सोलर प्लांट में हर तरफ बर्बादी का मंजर है, यहां कुछ भी ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं जो वाकई में बताती हैं कि जब यहां पर सैलाब आया होगा मौत को लेकर, तो वहां का मंजर कितना भयानक और दर्दनाक रहा होगा।
3: कहते हैं ना, त्रासदी इस तरह की आपदा कैसी कैसी लेकर के आती है। ये किसी का टिफिन है, संभवतः किसी का खाना रहा होगा। अब इन इलाकों में उतरता हूँ तो पता चलता है कि लोग खाना वाना खा रहे होंगे, अपने घरों में बैठे होंगे, और ये भी नहीं पता ये 25-50 किलोमीटर कितनी दूर से बह करके आया है। खाना भी नहीं है जो खा रहा था या खा रही होगी, उसका भी पता नहीं है। ये किसी पर्यटक का है, काम करने वाला, हालांकि इस तरह का टिफिन जो परियोजनाओं में लोग काम करते हैं उनका होता है, मजदूरों का, कारीगरों का होता है। और अब ये जो टिफिन है वो यहाँ पर मिला, देखिए सब कुछ सब रेत से भरा हुआ था, और ये तबाही के निशान अपने साथ कई सारी मानवीय त्रासदियों के निशान भी छोड़ जाते हैं। इससे आप पता चलता है कि कितने लोग लापता होंगे, इतने लोग जो मारे गए हैं, क्यों इस सैलाब के चलते मारे गए, और ये संख्या जो है कहाँ रुकेगी, मरने वालों का आंकड़ा कहाँ रुकेगा, गुमशुदा लोगों का आंकड़ा कहाँ रुकेगा, ये कोई नहीं जानता।
0: आशुतोष के पास हम फिर से एक बार रुक करेंगे। आशुतोष, फिलहाल जो स्थिति है वो कैसी है, खासतौर से जहां भीषण तबाही हुई है वहां तक मदद पहुंचाने में क्या आसानी है, या फिर मौसम एक बार फिर से बहुत बड़ी मुश्किलें बना हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लगातार मौसम की वजह से रेस्क्यू करना और ज्यादा मुश्किल हो रहा है।
3: आप दरअसल आज सुबह से बारिश तो नहीं हुई, अच्छी बात ये रही शशि, वैली खुला हुआ है, इन बादलों को अगर इग्नोर करें तो हाँ, फिर भी अभी वैली खुली है। एयर ऑपरेशन आपको मेरे पीछे जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, दरअसल हेली ऑपरेशंस की हैं, हर 2 से 3 मिनट पर वो टेक ऑफ लैंडिंग हो रही हैं। इवैक्यूएशन जो हेलीपैड के जरिए फिर से एक जो है उड़ान फिर शुरू हुई है, तो ये कर तो रहे हैं। दरअसल क्या है कि आप एक चॉपर में एक साथ 8 या 10 लोगों को ला सकते हैं। यहां से जब वो हेलीकॉप्टर जा रहे हैं तो रेस्क्यूअर्स को ले जा रहे हैं, जो लोग हेलीपैड या आसपास, मैंने कहा आज ऐसे लोगों से मुलाकात हुई कि भारतीय सेना के एक पूर्व जवान थे, उन्होंने बताया कि 2 दिन पहाड़ों में लगातार वो चलते रहे और वो खुद को ही नहीं बल्कि अपने साथ 10 से 12 लोगों को उन्होंने वहां से निकाला, बचाने में मदद की। 18 साल का लड़का मिला, वो बता रहा था कि कैसे डर के मारे जब भागे तो उसने हिम्मत जुटाई, अपने साथ के लोगों को कहा कि सीधे ऊपर चलो, ऊंचाई पर चलो। ऐसे ऐसे बहादुरी के किस्से और ऐसे ऐसे जो गम की बातें हैं सब कुछ सुना कि इन्होंने अपनों को खोया, कि इन्होंने खुद बहते जाते लोगों को देखा है। तो जो वहां पर है वहां उनके पास पानी पहुंचाई जा रही है, खाना ड्रॉप किया जा रहा है। अब आप मेरे पीछे जो एक गांव देख रही हैं, ये नदी के जिस किनारे पर, वहां कोई रास्ता ही नहीं है। अब एकमात्र जो वहां लोग ऊंचाई पर बचे हैं, आप उन्हें खाना कैसे देंगे? तो वहां हेली ड्रॉप किया जा रहा है कि रसद सामग्री, खाना पीना, दवाइयां पहुंच जाए और लोगों को भी, पर्सनल्स को भी डिप्लॉय किया जा रहा है।
0: रास्ता कटने के बाद वहां तक मदद पहुंचाना, लोगों को वहां से रेस्क्यू करना, और ऐसे में बारिश और ज्यादा मुश्किलें पैदा करती है। बात हम चित्रकूट के बारे में करेंगे क्योंकि यहां पर भी सैलाबी संकट है। मंदाकिनी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट डूबे हुए हैं, शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है, लोग संकटों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की मदद के लिए लगातार सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। भारी बारिश के बीच पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है, तो नदी नाले सब उफान पर हैं, सैकड़ों दुकानों में पानी भर चुका है, निचले इलाकों में घरों में पानी भरा हुआ है, लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। जरा तस्वीरें देखिए, घरों में सीने से ऊपर तक पानी है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर निकलते हुए जवानों को आप देखिए, परिवार वालों की परेशानियां आप समझिए। और आपको ये भी बता दें कि हनुमान धारा जो पुल है वो बह चुका है, मंदाकिनी नदी का पानी कई गांवों में घुस चुका है, निचला इलाका पूरी तरह से जलमग्न है, डूबा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो गलियां हैं वो पूरी तरह से नदियों में तब्दील हो चुकी है, जहां पर नाव चल रही है, लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू कर रही है हमारी सेना। तो चित्रकूट की कुछ तस्वीरें दिखाती हैं जो बयां करने के लिए काफी है कि किस तरह के हालात यहां पैदा हो चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि सेना ने हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया हुआ है, जरूरत पड़ने पर उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर बोट्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। निचले इलाकों में हजारों घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी में जलमग्न है, पानी में पानी वहां भरा हुआ है, सैकड़ों दुकानें पानी में डूबी हुई है, और जो आसपास का इलाका है उनके तमाम जो गांव है, कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं मंदाकिनी के बढ़े हुए जलस्तर के बाद से। और इसीलिए लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हो सके तो घरों से बाहर ना निकलें, और साथ ही मदद के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लोगों को लगातार रेस्क्यू करने का काम जारी है, खाने पीने का सामान भेजा जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। और ऐसे में स्थिति जरा देखिए कि किस तरह की यहां पैदा हो गई है, हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए।
4: भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई,
5: पलट गई भाई, गई डूब गई।
4: ये तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब हैं कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है।
6: नाव लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अति शीघ्र ही यहाँ पहुंचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और इन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा।
4: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
7: मंदाकिनी नदी ने एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है और इस बार खतरे के निशान से ऊपर ही नहीं बल्कि पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस हम खड़े हैं रामघाट पे, जहां मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है, वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें, यहां पर सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं। लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं। जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं।
4: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
8: पानी का जो जल स्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें पूरी प्रकार से। जहाँ पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट्स, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुँचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट्स, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
4: संकट बड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है। कई लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रेन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके।
8: यहाँ पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है, वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है या कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है, तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं, सभी व्यवस्थाएं की गई है।
4: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसे ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। चित्रकूट से अखिलेश कुमार, सोनकर आज तक।
0: मंदाकिनी नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और चित्रकूट के कई गांवों में जो स्थिति है बड़ी ज्यादा खराब है।
7: मंदाकिनी नदी ने फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है और इस बार खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में मंदाकिनी नदी ने रामघाट के साथ साथ कई गांवों में तबाही मचाई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर है उसका कितना तेज बहाव है, जो पूरी तरीके से इस गांव को अपनी आगोश में ले लिया है। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी के जो जलधारा है वह कितनी तेज बहाव से बह रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये सीधे गाँव को जाने वाला रास्ता है, जो अब लोग गाँव को खाली कर सीधे सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो 2003 में बाढ़ आई थी वैसा ही इस बाढ़ का नजारा है। तो जो लगभग मंदाकिनी नदी का जो डेंजर पॉइंट था वह 126 सेंटीमीटर था और दोपहर तक 131 सेंटीमीटर के ऊपर मंदाकिनी नदी का बाढ़ का जो पानी है वह बह रहा था और लगातार ऐसे में जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जो अब यह मंदाकिनी नदी लोगों के लिए आफत साबित होने वाली है। अखिलेश सुनकर आज तक।
0: और इसी बीच आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद चित्रकूट में राहत और बचाव का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। चित्रकूट के जिलाधिकारी और एसएसपी खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। पूरे अभियान की निगरानी खुद तमाम आला अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। तो बाढ़ और बारिश के बीच में राहत का काम शुरू कर दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। सेना पहले से ही मौजूद है, हेलीकॉप्टर्स की तैनाती है और आपको बता दें कि चारों ही तरफ आपको आने जाने का जो सहारा है वो सिर्फ बोट्स नजर आएंगी जिनके जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है।
9: निकालो इनको भाई, आप लोग तो जा सकते हो, उतारो।
0: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: इन एसोसिएशन विद
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
7: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
8: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
7: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
9: 19 साल के छात्र साहिल रजाब ने दावा किया उन पर सुरक्षा बलों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
7: हर बात देश के सामने।
8: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
7: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती।
13: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।
14: हमारे CLP राजस्थान के मंदिर जाते हैं, बीजेपी के नेता शुद्धिकरण करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने, और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और RSS के लोग करते हैं। सिर्फ बीजेपी और RSS के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से भारत उज्बेकिस्तान के रिश्तों में नई उड़ान। द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी बोले, दोनों देश ठोस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। यूरेनियम को लेकर समझौता।

सर विपक्ष का वार, विदेश में समझदारी की बातें, देश में चुप्पी क्यों? यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई योगी के आरोपों के जवाब में। अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को सामने लाया, कहा इन लोगों ने पैसा खाया। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा, फिर उफान पर त्रिशूली नदी, तेज धार में बहा पुल, तबाही की मौत का आंकड़ा 734 के पार पहुंचा, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। और यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, 23 साल का रिकॉर्ड टूटा, शहर बना है झील, सड़कों पर दौड़ी नावें, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू।

understand.

नेपाल की आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 700 पार कर चुका है। जो लोग गुमशुदा हैं उनकी संख्या 2500 के पार जा चुकी है। कोई नहीं जानता यह आंकड़ा कब रुकेगा, कहां थमेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। मैं इस समय आपदा ग्रस्त नेपाल के उस इलाके में हूं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। ग्राउंड जीरो से लगातार आज तक की टीम आपको हर अपडेट दे रही है। इस आपदा के बीच, इस त्रासदी के बीच, जहां राहत बचाव कार्य अभियान चल रहे हैं, तमाम चुनौतियों से जूझ रही हैं, ऐसे में कई लोग हैं जो अपनों का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया भर से मदद नेपाल पहुंच रही है, लेकिन इन मदद के बीच मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। रास्ते खोलने का अभियान चल रहा है, लोगों को बचाने का अभियान चल रहा है, और अभियान इस बात का भी चल रहा है कि जो लोग मुश्किल जगहों पर फंसे हैं उन्हें समय रहते खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, दवाइयां मिल जाए, रसद पहुंच जाए। नेपाल में त्रिशूली नदी के बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई हुई है। तबाही ऐसी कि जिसके चलते गंडकी में नदी का जलस्तर बढ़ गया। धाडिंग के पास दो शहरों को जोड़ने वाला पुल लगभग लगभग धराशायी होते बचा। हालात ऐसे थे कि पानी का जलस्तर बढ़ा तो चारों ओर चीख पुकार मच गई। लोगों में डर का माहौल देखने को मिला और एक बार फिर वही त्रासदी का पहला दिन याद आया जो 5 दिन पहले नेपाल ने देखा था। दरअसल ये भटकोशी की धारा और इसी के साथ साथ पहाड़ों से आने वाली तमाम सारी नदियों में जैसे पानी का स्तर बढ़ा, उसका असर निचले इलाकों में देखने को मिला है। तो धडिंग के पास दरअसल चरौंदी का सस्पेंशन पुल इसके प्रवाह में आया। वो पुल पूरी तरह बह गया त्रिशूली नदी में। वो पुल देखते ही देखते समा गया। पुल के बह जाने से दोनों इलाकों के बीच आवागमन भी प्रभावित हुआ। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सुबह से भी अलर्ट जारी किया गया है कि ऊपरी इलाकों में भी भटकोशी का स्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते यहां रहने वाले तमाम लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। 1200 पुलिसकर्मी पहाड़ से लेकर के मैदानी इलाकों पर नदियों के किनारे तैनात किए गए हैं, जिनकी ड्यूटी ये है कि लोग किनारों पर न जाएं।

0: नेपाल में आपदाग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है, इसको ऐसे समझिए कि नुआकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई
1: ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, सीधा ले चलते हैं।
2: अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर के आता है और आज जब मैं इस ऑर्डर अवार्ड को स्वीकार कर रहा हूं तब मैं उस जिम्मेवारी का एहसास करता हूं और मैं आज उज्बेकिस्तान की इस ऐतिहासिक भूमि से उज्बेकिस्तान के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा, ये दोस्ती पूरी तरह से निभा के रहेगा। एक्सेलेंसी, हम दोनों देश साथ मिलकर के पूरे समर्पण भाव से ग्लोबल साउथ की एक संयुक्त आवाज बनेंगे, ग्लोबल साउथ के कल्याण के लिए अपने प्रयासों में हम कोई कमी नहीं रखेंगे और पूरी मानवता के कल्याण के मिशन को भी हम भली भांति निभाने का भरपूर प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू। आशीर्वाद।

0: मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, उन्हें नवाजा गया है। इस लिहाज से कुल मिलाकर देखा जाए तो यात्रा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग जैसे मुद्दों पर खास फोकस रहा है दोनों ही देशों का। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर मध्य एशिया तक भारत की रणनीतिक और आर्थिक पहुंच के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से मध्य एशिया में दोनों देशों की बढ़ती भागीदारी दोनों ही देशों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उज्बेकिस्तान दौरा भारत की कूटनीति के लिहाज से भी बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है। मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत करने के साथ साथ इस दौरे पर व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग जैसे तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री की बात हुई है। वहां के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सर्वोच्च सम्मान से नवाजते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से भव्य स्वागत कल भारतीयों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया था। कुल मिलाकर ये दो दिवसीय दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा खास है दोनों ही देशों के लिहाज से। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ गए। प्रणय, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि बहुत ही महत्वपूर्ण यह मुद्दा है, कुल मिलाकर रणनीतिक साझेदारी की बात की जाए, मध्य एशिया में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव की बात की जाए, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यह संबोधित किया है, साथ ही साथ बार बार कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक तरीके से भी भारत लगातार अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे झंडे बुलंद कर रहा है।
1: शशीर, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है वो तो अपने 15 साल पूरे कर ही चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने यह तय किया है कि अब द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या कॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर एलिवेट किया जाए, यानी उसका दायरा बढ़ाया जाए। और न केवल दोनों देशों के बीच में ये रणनीतिक साझेदारी है जिसका दायरा बढ़ाया जा रहा है, बल्कि दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, यानी दोनों देशों के लोगों के बीच में जो संपर्क है, साझेदारी है, उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसके तमाम आयाम जो हैं वो तलाशे जा रहे हैं, चाहे ऊर्जा सहयोग हो, चाहे व्यापारिक साझेदारी हो, चाहे निवेश के अवसर हो, इन तमाम की चीजों के ऊपर तो काम हो ही रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को 36वां ग्लोबल अवार्ड भी मिला है, यानी एक और देश इस फहरिस्त में शामिल हुआ है जिसने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा है। और ये न केवल प्रधानमंत्री मोदी की के योगदान का सम्मान है बल्कि भारत और उज्बेकिस्तान की दोस्ती का भी सम्मान है, जिसके एक प्रतिरूप के तौर पर ये जो ओलिव दर्जलाली ऑस्ट्रिक ऑर्डर इन टास्क जो है वो एक सम्मान है, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उज्बेकिस्तान का, जिससे प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा भी गया है और साथ ही भारत और उज्बेकिस्तान की दोस्ती को एक नई मजबूती दी गई।
0: बिल्कुल प्रणय, आप बने रहे हमारे साथ, अपने दर्शकों को सुनवाते एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने इस मौके पर क्या कहा।
2: बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर के आता है और आज जब मैं इस ऑर्डर अवार्ड को स्वीकार कर रहा हूं तब मैं उस जिम्मेवारी का एहसास करता हूं और मैं आज उज्बेकिस्तान की इस ऐतिहासिक भूमि से उज्बेकिस्तान के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा, ये दोस्ती पूरी तरह से निभा के रहेगा। एक्सेलेंसी, हम दोनों देश साथ मिलकर के पूरे समर्पण भाव से ग्लोबल साउथ की एक संयुक्त आवाज बनेंगे, ग्लोबल साउथ के कल्याण के लिए अपने प्रयासों में हम कोई कमी नहीं रखेंगे और पूरी मानवता के कल्याण के मिशन को भी हम भली भांति निभाने का भरपूर प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए मैं आपका हृदय।
0: प्रणय, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे इस महत्वपूर्ण मुलाकात का, इस गर्मजोशी का, सर्वोच्च सम्मान का, जिस तरीके से वहां भव्य उनका स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री का, टेक अवे भारत के लिहाज से क्या रहा?
1: देखिए स्वागत, सत्कार, मेहमान नवाजी, ये सारे प्रतीक होते हैं उस गर्मजोशी का जो दोनों देशों के रिश्तों के अंदर नजर आती है। और ये केवल सम्मान नहीं है बल्कि ये जताने की कोशिश भी है उज्बेकिस्तान की तरफ से कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को कितनी अहमियत देता है। अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो चाहे वो यूरेनियम को लेकर ऊर्जा सप्लाई का सहयोग का समझौता हो, जिसकी रफ्तार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिसका जिक्र किया, उल्लेख किया, इसके साथ साथ व्यापार, निवेश, कारोबार के लिहाज से भारत और उज्बेकिस्तान कैसे नजदीक आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारत पिछले कुछ समय से लगातार ये कोशिश कर रहा है शशि कि किस तरीके से भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशे जा सकें, उनके लिए विस्तार के अवसर तलाशे जा सकें। और उस लिहाज से मध्य एशिया का जो दरवाजा उज्बेकिस्तान या ताशकंद से खुलता है वो काफी व्यापक है, क्योंकि उज्बेकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री तो है ही सही, लेकिन उसके साथ साथ ये एक ऐसी जगह भी है जो कि एक ड्राईपोर्ट के तौर पर कनेक्टिविटी का एक हब बना है पिछले कुछ सालों के दौरान। और उज्बेकिस्तान भी उसका दायरा बढ़ाना चाहता है। भारत इस कनेक्टिविटी के जरिए मध्य एशिया का जो सेंट्रल एशिया का पूरा क्षेत्र है, जितने भी जो पूर्व सोवियत संघ के देश हैं जो उज्बेकिस्तान के नजदीक हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। और साथ ही ये अफगानिस्तान, ईरान के क्षेत्र में भारत की जो निर्माण परियोजनाएं हैं उन्हें भी कनेक्ट करता है। तो इसीलिए ये भारत को ज्यादा व्यापक अवसर देता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रणय आपका। तो नरेंद्र मोदी अब उज्बेकिस्तान से किर्गिस्तान जाएंगे। एससीओ समिट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है, जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उनकी। आगे बढ़ेंगे और नेपाल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जबरदस्त तरीके की तबाही की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, और ज्यादा बुरे हालात हैं मौसम की वजह से, क्योंकि रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। आप तक ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता आशुतोष पहुंचाएंगे।

0: नेपाल में आपदाग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है, इसको ऐसे समझिए कि नुआकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता है, कुछ लोगों को उतारता है और फिर जरूरी सामान लेकर उन दुर्गम पहाड़ों की ओर उड़ जाता है जहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
1: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोग बचाया जा रहा है। मुश्किल दरअसल मौसम बन जाती है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, ये जिंदगी की जंग दरअसल रेस अगेंस्ट टाइम है और ऐसे में ये जो हेलीकॉप्टर है वो सबसे बड़ी लाइफ लाइन बनकर सामने आ रहे हैं। इसी ऑपरेशन के जरिए लोगों को बचाया जा रहा है।
0: अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो नुआकोट एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के इंजन कभी बंद नहीं होते। रेस्क्यू टीमें लगातार उड़ान भर रही हैं। नेपाली सेना के साथ साथ सिविल हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में लगा दिए गए हैं।
1: लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर काफी तेजी से चल रहे हैं। एक के बाद एक उड़ाने हैं, हेलीकॉप्टर या तो जो सैनिक है या फिर जवान रेस्क्यूअर है उन्हें एयर ड्रॉप कर रहे हैं या फिर उसके साथ साथ ये संभव है। नेपाल के लिए अब तक का सबसे बड़ा एयर इवैक्यूएशन ऑपरेशन है प्रभावित इलाकों से लोगों को बचाकर लाने के लिए।
0: नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों में जाने का एकमात्र तरीका ये हेलीकॉप्टर ही है, क्योंकि रसुआ समेत कई इलाके पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गए हैं।
1: नुआकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है। जहाजों की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो सेना के लोग और उसके साथ सिविल अथॉरिटी जितने भी हेलीकॉप्टर हैं उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में वहां पर खाना पानी दवाइयां जरूरत की चीजें पहुंचाई जा सके। इसी के साथ दूसरी तरफ जहाँ पर मेडिकल कैंप बनाया गया है तो जो घायल एयरलिफ्ट करके लाए जा रहे हैं उनका यहाँ पर इलाज भी किया जा रहा है। मेडिकल कैंप यहाँ से किया गया है और इसी के साथ बाद में तमाम लोगों को यहाँ से सुरक्षित ठिकानों पर भी भेजा जा रहा है। एयर ऑपरेशन एकमात्र साधन बचा है क्योंकि सड़कें पूरी तरह कट चुकी हैं, तो अब सिर्फ हेलीकॉप्टर का सहारा है जिनके जरिए इस पूरे बड़े ऑपरेशन को पहाड़ी इलाकों में अंजाम दिया जा रहा है।
0: रसुआ के दुर्गम इलाकों में कितने लोग बचे हैं, कितने लोग लापता हैं, सही सही आकलन तभी हो पाएगा जब रेस्क्यू टीमें जमीन पर उतरेंगी। जिन लोगों का रेस्क्यू करके बेस कैंप लाया गया है उन्होंने इस आपदा की भयावहता बयां की।
2: खाने पीने के लिए कोई जगह
3: मिला था
2: तो मदद कैसे पहुंची आपको? दो दिन पैदल चलते रहे। आपको याद है जब पानी आया तो उसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा था?
3: मालूम नहीं, ऊपर कोई लाइन कोई संचार सुविधा कुछ नहीं है, कोई जानकारी नहीं।
2: डर लगा था मन कितने लोग
3: बहुत आदमी थे लेकिन मेरे साथ
2: सब बच गए। जब उस समय सैलाब आया था, मुझको पानी आया तो आप लोग क्या कुछ देख पा रहे थे वहाँ?
4: उधर सब गाड़ी घटना मन से सब मर गया यार।
2: बहुत आपकी आंखों के सामने?
4: हाँ, आंखों के सामने मन से मर गया। बहुत
2: कई सारे लोग नायक बनकर के निकले, खासकर जो युवा थे वो समय रहते अलर्ट हुए अपने लोगों को, उन्होंने ऊपर किया, उन्होंने कहा कि

0: कुछ लोग किस्मत वाले भी थे जो किसी तरह से बच गए।
1: आप लोग किस इलाके में थे? कितने दिन से थे आप लोग वहाँ पे? पाँच दिन। तो वहाँ पर क्या स्थिति थी? खाना पीना था? कितने दिन से छुटे हुए थे आप लोग? कितने लोग थे आप लोग जो वहाँ पे थे? कितना जना था वहाँ पे? तीन जना थे।
0: रसुआ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए जो लोग किस्मत से बच भी गए हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
2: बाहर गिरा है।
1: आप लोग वहीं पे थे?
2: लैंडस्लाइड हुआ है।
1: तो आप लोग मतलब बचे कैसे वहाँ पे? जब आए तो कहाँ गए थे?
2: ऊपर से चढ़ा गए।
1: फोन कॉल लग रहा था, खाना पीना,
2: खाना पाना तो ठीक है लेकिन फोन तो नहीं है।
0: रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को बेस कैंप में फर्स्ट एड दी जा रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास ही मेडिकल कैंप लगाया है, जहां पीने के पानी के साथ साथ जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।
1: इस आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए नेपाली सेना ने यहां पर एक मेडिकल कैंप तैयार किया है। एक चौथा फिर अस्पताल समझ लीजिए एयर बेस है, तो जहां पर लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है। उसके बाद यहां इलाज किया जाता है, और उसके बाद कई बार जो गंभीर खतरे में है उन्हें तुरंत काठमांडू में लिफ्ट कर लिया जाता है। आप समझिए कि जिस तरह के लोग आई है, जो पानी के बहाव में थे, मलबे के बहाव में थे, किसी का दम टूट रहा था, उन सबको ला सकती बड़ी चुनौती है। और इसीलिए जितनी एजेंसियां हैं, जितने हाथ हैं, हर कोई मदद के लिए खड़ा है। इधर नेपाल की सेना ने इसको अपने अंजाम मेडिकल कैंप में उनका ख्याल रखा जा रहा है, इलाज पहुंचाया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है।
0: आशुतोष मिश्रा, नुआकोट बेस कैंप, नेपाल। आज तक
3: तो नेपाल में भीषण बाढ़ से मची तबाही के बाद मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, और इसी बीच नेपाल से भारत आने वाली नदियों में शव बहकर भी आने लगे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह।
4: हम इस वक्त मौजूद हैं नवलपरासी जिले के नारायणी नदी पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नारायणी नदी है, और इसके पीछे से जब ये नदी और आता है तो ये त्रिशूली नदी भी है। और सबसे ज़्यादा जो लाशें बह बह कर आई हैं उस घटना के बाद, वो दरअसल त्रिशूली और नारायणी नदी में ही जो है सबसे ज़्यादा लाशें बह कर आई हैं। और इसी नदी में जो है काफ़ी सारे शवों को स्थानीय लोगों ने और फिर नेपाल पुलिस के लोगों ने जो है वो निकाला है। और आप समझ लीजिए कि कितना ये खतरनाक ये पूरा इलाका है। आप देखिए चारों तरफ जो है आपको केवल बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, और फिर ये पानी और पानी की धार अपने आप में सब कुछ बयान कर रहा है कि किस तरीके की त्रासदी नेपाल ने झेली है। और दरअसल 26 अगस्त के बाद जब काफ़ी सारे शव जो बह कर आ रहे थे, तो शवों के साथ बहुत सारे पेड़ लकड़ियाँ भी जो हैं वो भी बह बह कर आ रही थी। और फिर स्थानीय लोगों ने, आप देखिए यहाँ पर इन लकड़ियों को जो है ये इकट्ठा किया है पानी से निकाल निकाल कर अपने शायद अपनी ज़रूरत के लिए। अभी भी आप देख सकते हैं नदी में कितनी सारी लकड़ियां बड़ी बड़ी जो हैं वो बह रही हैं। सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ रोहित सिंह, जिला नवलपरासी, नेपाल। आज तक।
3: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
5: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: काठमांडू के रनवे पर लैंड करता भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा मालवाहक विमान इस बात का प्रमाण है कि जब विपदा आती है तो भारत फर्स्ट रिस्पोंडेंट बनकर आगे आता है। पड़ोसी देश नेपाल सदी की सबसे बड़ी त्रासदी की चपेट में है, ऐसे में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारतीय वायुसेना के विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ते हैं और नेपाल के काठमांडू में जरूरी सामग्री पहुंचाकर वापस आ जाते हैं और फिर अगली खेप की तैयारी में जुट जाते हैं। नेपाल में तबाही इस कदर हुई है कि बाजार, गांव, शहर सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जरूरी सामान का संकट है, आपातकालीन दवाएं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो गया है। ऐसे में भारत एक के बाद एक खेप भेज रहा है ताकि नेपाल के आपदा पीड़ितों की सहायता हो सके। तबाही की इन तस्वीरों के बीच इंसान पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है। बस कोशिश जारी है जिंदगियों को बचाने की। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों के नागरिक नेपाल में लापता हैं। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन पूरी ताकत से चल रहा है। भारत समेत कई देशों ने तलाशी अभियान में सहायता की बात कही, लेकिन नेपाल सरकार ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि साल 2015 के भूकंप में विदेशी मदद से रेस्क्यू करने का अनुभव ठीक नहीं था, इसलिए तलाशी अभियान में विदेशी मदद नहीं चाहिए। नेपाल सरकार ने साफ किया है कि तलाशी में मदद नहीं चाहिए।
1: ओह सॉरी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर, यूरेनियम समेत कई अहम समझौते। संत प्रमुख के मुस्लिम वाले बयान पर बयानबाजी तेज, मौलाना बोले कि अब जमीन पर भी दिखे असर, विपक्ष का वार, विदेश में समझदारी की बातें, देश में चुप्पी क्यों। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई, योगी के जेबीएनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को सामने लेकर आए, कहा इन लोगों ने पैसा खाया। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा, फिर से उफान पर त्रिशूली नदी, तेज धार में बहा पुल, तबाही से मौत का आंकड़ा 734 पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, 23 साल का रिकॉर्ड टूटा, शहर बना झील, सड़कों पर दौड़ी नावें, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अब समय हो गया है आपके शहर की खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाने का। 100 शहर 100 खबर की शुरुआत करते हैं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नेपाल त्रासदी में त्रिशूली नदी में बाढ़ का फिर से भीषण खतरा। गोरखा धादिंग जिले को जोड़ने वाला चरौंदी पुल पूरी तरह से बहा। नेपाल मारमेरी युद्ध स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आर्मी के जवान मुस्तैद। सेना के हेलीकॉप्टर से लगातार मुहैया की जा रही है मदद। नेपाल में भीषण बाढ़ के चलते हालात गंभीर। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 734 पहुंचे। 2400 से ज्यादा लोग लापता। लापता लोगों में 390 भारतीय पर्यटक भी शामिल। भारत की ओर से नेपाल को लगातार मुहैया करवाई जा रही राहत। अधिकारियों ने फोटे कोशी और त्रिशूली इलाकों में लोगों को और बचाव दलों को सतर्क रहने, सुरक्षित जगहों पर भी जाने की चेतावनी दी। सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले ग्यूरोंग सीमा क्षेत्र में चीनी बचाव दल शुक्रवार को पहुंच पाया। 21 सदस्यीय टीम का खोजी अभियान भी जारी। सीमा क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज में पानी और मलबे का सैलाब। इमारतों को बहाते और जान बचाकर भागते हुए लोगों को इसमें दिखाए। नेपाल के ऊपर इलाकों में बनी दो बांध जैसी झीलों पर नजर रखी जा रही है और अब तक ये पूरी तरह से खाली जब तक नहीं होती तो खतरा बना रहेगा। भारत ने नेपाल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप काठमांडू भेजी। भारतीय नागरिकों पर एमईए का नया अपडेट। भारत सरकार के मुताबिक अब तक नेपाल में 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। भारतीय नागरिकों को बचाव और राहत अभियान के लिए विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम बनाया। काठमांडू और बीजिंग से भारतीय दूतावासों में यह हेल्पलाइन। नेपाल की जरूरत के अनुसार भारत अतिरिक्त सहायता में जुटा रहा है और इसमें वैली ब्रिज को स्थापित करने वाली तकनीक टीमें भी शामिल हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद बनी झील का पानी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और चीन के मुताबिक झील का क्षेत्रफल घटकर अब 99,000 वर्ग मीटर रहा। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 106 पर्यटकों की सुरक्षित हुई वापसी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से नागपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। मुश्किल हालात के बीच में भारतीय रेलवे ने संभाला मोर्चा। 106 पर्यटकों के लिए रेलवे ने अतिरिक्त कोच लगाए। रेलवे ने स्पेशल इंतजाम करके भेजा घर। भारत उज्बेकिस्तान के रिश्तों की नई उड़ान। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी बोले कि दोनों देश ठोस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। यूरेनियम को लेकर समझौता। प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक और कीर्तिमान। प्रधानमंत्री को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला। ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया हेल्थ का संदेश। योग फेडरेशन के कार्यक्रम में हुए शामिल। पीएम मोदी ने योग में हिस्सा ले रहे लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाए। नमस्ते इंडिया का नजारा। उज्बेकिस्तान की ताशकंद में भारतीय संस्कृति की झलक दिखी। बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। उज्बेकिस्तान यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया जहां पर यहां हुए अद्भुत स्वागत का जिक्र किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो किया साझा। भारत और उज्बेकिस्तान के लोगों के बीच योग सांस्कृतिक सेतु का काम कर रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात का कार्यक्रम का 137वां एपिसोड का प्रसारण सूर्यपथ तिरंगा अभियान के साथ नशा मुक्त भारत का भी संदेश दिया। स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अमरनाथ यात्रा का किया जिक्र। कहा कि अभियान में 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को इकट्ठा करके प्रोसेस किया गया। पीएम मोदी ने स्पेस सेक्टर में भी भारत के बढ़ते कदम का जिक्र किया। कहा कि मिशन शक्ति सेट से 12,000 या छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिल रहा है। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के कृष्णा शेषाद्री की तारीफ की। भारतीय इतिहास पर बनाए गए उनकी वेबसाइट को बेहद रोचक बताया। पीएम मोदी ने महान अभिनेता उत्तम कुमार को भी याद किया। 3 सितंबर को मनाई जाएगी उनकी जन्म शताब्दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत के डीएनए में एकता और विविधता है। मोहन भागवत ने धर्मगुरुओं के सम्मेलन को संबोधित किया। कहा कि कोई भी हिंदू सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होना चाहिए तो वो हिंदू नहीं है। संघ प्रमुख के इस मुस्लिम वाले बयान पर बयानबाजी तेज। मौलाना बोले कि अब जमीन पर भी इसका असर दिखे। विपक्ष का वार, विदेश में समझदारी और देश में चुप्पी क्यों। सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम को लेकर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में टाला फैसला। 21 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। इंदौर में 12 सितंबर को छात्रों के गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 50,000 छात्रों को जुटाने की तैयारी। जयपुर में नीट पीजी परीक्षा को लेकर बवाल। बिजली नहीं होने के कारण सीतापुर सेंटर पर नहीं हो पाया टेस्ट। अभ्यर्थी डॉक्टर्स का गुस्सा भड़का। जयपुर में सीतापुर सेंटर में नीट पीजी परीक्षा स्थगित। अब 5 सितंबर को एग्जाम होगा। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में 21 साल की नीट छात्रा की मौत का मामला आया सामने। नीट काउंसिलिंग की पहले लिस्ट में नाम नहीं होने पर सुसाइड किया। आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद का लखनऊ से मथुरा तक कूच है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि में मांस मदिरा बिक्री पर रोक लगाने की मांग। अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा कि जाति जनगणना हो, आबादी के हिसाब से और समाज को सम्मान देंगे। लखनऊ के रिवर फ्रंट पर समाज के राजा की प्रतिमा लगाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। अखिलेश का योगी सरकार पर जेपीएनआई से बेचने का आरोप, बोले कि पार्किंग और कैफे से भी पैसा कमाएंगे। पेट्रोल में मिलावट, महंगाई और सरकारी एम्बुलेंस व्यवस्था को लेकर निशाना भी। अखिलेश का बीजेपी पर पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा में भ्रष्टाचार का आरोप, बोले कि तांबे की बताई मिट्टी की निकली, यूपी में लूट डकैती का दावा। अखिलेश बोले गरीबों और महिलाओं के सम्मान के लिए सपा करेगी काम। 26,000 बंद किए गए स्कूल फिर से चलाने का वादा। अखिलेश बोले कि बीजेपी नहीं चाहते पीडीए समाज पढ़े लिखे बने। पीएम मोदी की सरकार के दो कैबिनेट के मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आरक्षण के मुद्दे पर भिड़े, एक दूसरे का इस्तीफा मांगा। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए कहा कि चिराग को तो गरीबों के हितों की परवाह ही नहीं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नए विवाद में फंसे स्टैंडअप कॉमेडियन समय राणा शो में बिहारी वर्सेस कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाने का मामला आया। बिहार के मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले कि अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। बीजेपी विधायक राम कदम ने समय राणा पर विवादित बयान देकर मुफ्त में पब्लिसिटी हासिल करने का लगाया आरोप, कहा कि धर्म और समुदाय मजाक का विषय है। इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर पीस फोरम का भी तीखा रिएक्शन, कहा कि बिहार कोई अपमानजनक शब्द नहीं, कश्मीर कोई मजाक का विषय। पंजाब में भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध समेत 13 मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन, संगरूर डीसी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना। संगरूर डीसी कार्यालय के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ डटे किसान, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की तैयारियां हैं और ट्रॉलियों में खाने पीने रहने के इंतजाम है। फिट इंडिया मिशन के तहत दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हरी झंडी दिखाई। साइकिल रैली में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी लिया हिस्सा, साइकिल चलाकर लोगों को हेल्थ का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर में रियासी के अंजी खड्ड ब्रिज में वंदे भारत ट्रेन गुजरी, ऊंचाई से दिखाई शानदार नजारा। चित्रकूट के रामघाट और निर्मोही अखाड़ा इलाके में बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में बाढ़ से पूरा इलाका प्रभावित दिखा। चित्रकूट में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है मंदाकिनी नदी, बाढ़ प्रभावित एक दर्जन से ज्यादा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी अप्रोच रोड का एक कोना बाढ़ में बहा, झांसी प्रयागराज नेशनल हाईवे में भारी वाहनों का यातायात बंद। चित्रकूट में रातभर चला राहत और बचाव का अभियान, बाढ़ में फंसे हुए कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर से भी मदद दी जा रही, बोट और नावों के साथ रात दिन बचाव काम जारी। चित्रकूट के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, बाढ़ पीड़ितों के बीच में राहत सामग्री बांटे। चित्रकूट में बाढ़ के बीच में यूपी और एमपी के डीएम एसएसपी ने खुद नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश से बिगड़े हालात और उमरी गांव में पुल के ऊपर 2 फीट तक पानी बह रहा है। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के चलते पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में जलभराव। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश के बाद मौसम सुहाना, खूबसूरत नजारा। ओडिशा के भुवनेश्वर में जोरदार बारिश से बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर के चलते मौसम बदला। बिहार के पश्चिमी चंपारण में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, कई इलाकों में मंडरा है बाढ़ का खतरा। बेगूसराय में भारी बारिश के साथ गंगा नदी में हो रहा है लगातार कटाव, कई मकानों के गिरने का खतरा बढ़ा, खाली कराए गए घर। देहरादून में तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा, टपकेश्वर महादेव मंदिर तक पानी का उफान। प्रयागराज में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में शानदार नजारा दिखा, सीढ़ियों से उतरता हुआ पवित्र गंगा जल से बजरंग बली को करा गया स्नान। वाराणसी में एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ा है, कई घाट जलमग्न, प्रशासन अलर्ट। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी एक बार फिर से उफान पर, कई मकान और कई बीघा खेत नदी में समाये। जमशेदपुर में भारी बारिश के चलते बढ़ा जलस्तर और चांडिल डैम के खोले गए 15 गेट, निचले इलाकों में लोग सतर्क। बिहार के कटिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जगह जगह पानी भरने से कई मार्गों का संपर्क कट गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मूसलाधार बारिश, उफान पर आए कई नदी नाले।

दिल्ली में राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग, दमकल की 25 गाड़ियों ने आग बुझाई। सोनीपत में कच्चे क्वार्टर में लगे भीषण आग और कंबलों की दुकान समेत 5 दुकानें यहां जलकर आग। ग्रेटर नोएडा में 6 साल की मासूम की हत्या के मामले में आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर बेला फुसलाकर कमरे में जाने और शव को ले जाने का वीडियो आया था सामने। भोपाल में बदमाश का पीछा कर रहे पुलिस की बाइक ने 8 साल की बच्ची को टक्कर मार दी, सिर में गंभीर चोट आई। हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, जीप स्कूटी की भिड़ंत, 6 साल की बच्ची समेत 3 की मौत। गाजियाबाद में शॉर्ट सर्किट के कारण खिलौना फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया। इंदौर में चौकीदार की कार से कुचलकर हत्या, प्रेमी प्रेमिका गिरफ्तार, सड़क हादसे के पीछे निकली हत्या की साजिश। नोएडा के छिजारसी में 13,000 अवैध बिजली कनेक्शन, विभाग ने एक्शन किया शुरू। सोनभद्र में पति की हत्या का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची साजिश, 4 गिरफ्तार। रेवाड़ी में पत्नी को छूने पर दोस्त की हत्या, शराब पार्टी में चाकू से कई बार बार, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मुठगा इलाके में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। फिरोजपुर में दिन दहाड़े कार सवार हमलावरों ने बाइक सवार शख्स पर की तोड़फोड़, फायरिंग और मौके पर युवक की मौत। नागपुर में वाहन शॉप में चोरी की गई, 60,000 रुपए लेकर 3 चोर फरार। जालना में बटन गोलियों के अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और यहां से 6,600 नशीली गोलियों के साथ 4 गिरफ्तार। नागपुर में पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की, पड़ोसियों ने बचाई जान।

0: 1 तारीख पर रिलीज होगी किंग नाम से दो फिल्में। बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान से भिड़ेंगे मेगास्टार नागार्जुन। मेकर से नागार्जुन के 67वें जन्मदिन पर टाइटल और पहली झलक की रिवील। फिल्म का टाइटल किंग 100 रखा गया। 24 दिसंबर को रिलीज होगी। हिंदी हॉरर कॉमेडी और एडवेंचर वेब सीरीज अली बाबा और 40 भूत ओटीटी पर जल्द देगी दस्तक। 11 सितंबर को हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। दृश्यम 3 में फिर से विजय सलगांवकर बनेंगे अजय देवगन। नए पोस्टर ने बढ़ाया सस्पेंस। 2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगा। एक्टर डॉक्टर शिवा राजकुमार का नया अवतार दिखाई देगा। ओरिजिनल मॉन्स्टर का मोशन पोस्टर आउट। जल्दी शूटिंग होगी शुरू। शिवराज कुमार ने बेल टीजर का उनका धमाल है और पुलिस ऑफिसर की दमदार भूमिका में शिव को राजकुमार दिखाई देंगे। टीजर रिलीज होने के बाद फिल्म का क्रेज भी बढ़ा। अपकमिंग फिल्म दी पैराडाइज का दूसरा गाना यश नागुला रिलीज हुआ और नानी और कीर्ति सुरेश की जोड़ी धमाल मचाते देख रहे हैं। यश नागुला गाने की शानदार लॉन्चिंग अनिरुद्ध रविचंद्रन के साथ स्टेज पर नानी के धमाकेदार एंट्री। बांग्ला फिल्म डॉक्टर काकू का ऑफिशियल टीजर रिलीज। शिक्षा और चिकित्सा को लेकर खास संदेश। शिक्षा और इलाज सेवा है कारोबार नहीं। एक्टर अनुपम खेर ने शेयर किया एक भावुक वीडियो। बोले कि आज में जीना चाहिए सिर्फ मुहावरा नहीं हाल के हादसों ने जिंदगी की सच्चाई का एहसास कराया। और अब बात करते हैं चित्रकूट में आए सैलाबी संकट के जहां पर मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप देख रहा है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और ये आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट डूब गए हैं। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। लोग संकट में घिरे हैं और लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बीच में पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।
1: भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई।
2: पलट गई भाई गई। डूब गए।
1: तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं। बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब हैं कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है।
3: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अतिशीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। उन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा।
1: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
4: मंदाकिनी नदी ने एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है और इस बार खतरे के निशान से ऊपर ही नहीं बल्कि पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस हम खड़े हैं रामघाट पे जहां मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है, वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें, यहां पर सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं। लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं। जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं।
1: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
5: पानी का जो जलस्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें, पूरी प्रकार से जहाँ पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहां पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट्स, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट्स, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
1: संकट बड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है, कई लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रेन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।
5: हमारे यहाँ पर रेन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है, कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है, तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।
1: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि यहाँ अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है, अगर मौसम की मार ऐसे ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। चित्रकूट से अखिलेश कुमार सोनकर, आज तक।
0: मंदाकिनी नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और चित्रकूट के कई गांव में क्या स्थिति वो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। स्थिति बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब, घाट डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, खेत कई जगहों पर जलमग्न दिखाई दे रहे हैं, रिहायशी इलाकों में जो है पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।
6: मंदाकिनी नदी ने फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है और इस बार खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में मंदाकिनी नदी ने रामघाट के साथ साथ कई गांव में तबाही मचाई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर है उसका कितना तेज बहाव है, जो पूरी तरीके से इस गांव को अपनी आगोश में ले लिया है। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी की जो जलधारा है वह कितनी तेज बहाव से बह रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये सीधे गांव को जाने वाला रास्ता है, जो अब लोग गांव को खाली कर सीधे सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो 2003 में बाढ़ आई थी वैसा ही इस बाढ़ का नजारा है। तो जो लगभग मंदाकिनी नदी का जो डेंजर पॉइंट था वह 126 सेंटीमीटर था और दोपहर तक 131 सेंटीमीटर के ऊपर मंदाकिनी नदी का बाढ़ का जो पानी है वो बह रहा था और लगातार ऐसे में जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जो अब यह मंदाकिनी नदी लोगों के लिए आफत साबित होने वाली है। अखिलेश सोनकर, आज तक।
0: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म, मानवता, एकता को लेकर कुछ बयान दिए जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा भारत में हो रहे हैं। भारत में मुसलमानों पर दिए गए उनके बयान को लेकर चर्चा है। कार्यक्रम में दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि हमारी पूजा पद्धतियां अलग हो सकते हैं पर अंतिम सत्य मानवता ही है, ह्यूमैनिटी है। जो सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए वो हिंदू नहीं है।
7: In 2018 in Delhi, I had a lecture and Muslim brothers were also there and they asked me the question, you are a Hindu organization, you say Hindu Rashtra, what about us Muslims? Would you drive us out? I said, no, that is not Hindutva. If any Hindu thinks that there should be no Muslim in Bharat, he will not remain Hindu. If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
0: कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय परंपरा के कई उदाहरण दिए और साथ ही कहा कि एकता और विविधता भारत की पहचान है।
8: We are saying united in oneness and what? I cannot hear you. That is the third line. You omitted the second line. Don't omit the second line. United in oneness and decorated by the diversity.
0: हिंदुत्व और मुसलमानों को लेकर मोहन भागवत के बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं हैं, उन्होंने क्या राय रखे है वो आपको सुनाते हैं।
9: देखिए, मोहन भागवत जी का बयान अच्छा बयान है और जो हिंदू मुसलमानों के खिलाफ है वो हिंदू नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए कि हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ, अजीज रिश्तेदार भाई नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है। लिहाजा इसको मिलके सबको सोचना चाहिए कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इमामबाड़ा चर्च सिनेगॉग और दूसरी धार्मिक जगहों को लेके एक दूसरे के दस्ते गरीबा होना, एक दूसरे से इख्तलाफ करना ये अच्छी चीज नहीं है, बल्कि दोनों को चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो दोनों को अपनी बाहें फैला के पूरी तरीके से एक दूसरे का वेलकम और स्वागत करना चाहिए।
10: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहनाया जाए।
11: अपने जो उनके निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी उनके आचरण की समीक्षा करके उनको उनके बारे में निर्णय ले ले। मोहन आदरणीय भागवत जी,
12: ये कितना विरोधाभासी है। क्या मोहन भागवत जी को नहीं पता है कि क्या हो रहा है? केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री कौन सी जुबान बोलते हैं? मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, तीन चार को तो तुरंत आप फौरी तौर पे गिन सकते हैं।
0: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: आगे आगे,
16: अरे उधर उधर किधर,
15: करेक्ट करेक्ट,
17: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
1: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
3: ये जो तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।
4: इस सपा का मतलब ही है लूट खसोट, इस समाजवादी पार्टी का मतलब ही है कि डकैतों का एक गिरोह। ये लोग नहीं है, 17 के पहले मां क्या कहावत थी, देख सपाई बिटिया घबराई, यानी हर बेटी चिंतित रहती थी, हर अभिभावक चिंतित रहता था क्या होगा। किसी भी मां बाप के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है बेटी की सुरक्षा, हर मां बाप के लिए चिंता होती है, हर भाई की चिंता होती है। लेकिन इन सपाइयों ने बेटी के साथ जो व्यवहार किया था, कल मैं देख रहा था, जब हम फ्री में बस यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे थे 26 को, तो समाजवादी पार्टी के बबुआ की नींद भी टूटी और वो भी एक प्रेस वार्ता जल्दी जल्दी में बुलाने लग गए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: उज़्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर, यूरेनियम समेत कई अहम समझौते। संघ प्रमुख के मुस्लिम वाले बैन पर बयानबाजी तेज, मौलाना बोले कि अब जमीन पर भी दिखे असर, विपक्ष का बार विदेश में समझदारी की बातें, देश में चुप्पी क्यों। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई, योगी के जेपी एनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को लाया सामने, कहा इन लोगों ने पैसा खाया। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा, फिर से उफान पर त्रिशूली नदी, तेज धार में बहा पुल, तबाही में मौत का आंकड़ा 768 तक पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, 23 साल का रिकॉर्ड टूटा, शहर बना झील, सड़कों पर दौड़ी नावें, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू।
1: मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। जो भी इलाका ऐसा आया जिसकी ऊंचाई उतनी नहीं थी, वो सारे क्षेत्र जो है वो तबाह होते चले गए। नदी ने जब अपने बांध को तोड़ा तो वो फर्क नहीं करती रही कि कौन सा इलाका जंगल पहाड़ है और कौन सा इलाका ऐसा है जहां इंसान बसते हैं। पानी का स्तर बढ़ता है, वो एक गाड़ी को अपनी जगह से उठाता है और तेज बहाव में गाड़ियां बहती चली जाती हैं। अपनों की तलाश में बहुत सारे लोग आर्मी के उस अस्थाई कैंप के बाहर मौजूद हैं, जहां पर वो सूची लगाई जाती है जिसमें अपनों के नाम को लोग ढूंढते हैं।
2: तबाही के निशान भटकोशी ये त्रिशूली नदी अपने साथ छोड़ गई है, और इतना ही नहीं, देखिए बड़े बड़े बोल्डर किस तरह सब मलबे के साथ बह के आए थे। तबाही के निशान अपने साथ कई सारी मानवीय त्रासदियों के निशान भी छोड़ जाते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। त्रिशूली नदी के किनारे किनारे नेपाल में दिख रहा है किस तरीके से रिहायशी इलाकों, बाजारों में मौत का तांडव, बर्बादी का तांडव हर तरफ है। और त्रिशूली नदी के किनारे किनारे ही हम सब आगे बढ़ते हुए आपके लिए आज तक के जरिए वो रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। हम अगले एक घंटे में आपको वो रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे और तमाम अपडेट्स भी बताएंगे, क्योंकि रोज मौत का आंकड़ा जो है वो कुछ और बढ़ जा रहा है। जो अस्पताल हैं उनके लिए लाशों को रख पाना बहुत मुश्किल इस समय प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो लोग अभी भी अपने घर वालों का इंतजार कर रहे हैं उनकी आंखें पथराई हुई हैं। वो उस कैंप के बाहर लगातार इंतजार कर रहे हैं जहां रिलीफ के साथ उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू किए हुए कुछ लोगों के साथ लौटते हैं। लोग सोचते हैं कहीं कोई अपना लौट रहा हो।

0: नेपाल में आपदाग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है, इसको ऐसे समझिए कि नुआकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता है, कुछ लोगों को उतारता है और फिर जरूरी सामान लेकर उन दुर्गम पहाड़ों की ओर उड़ जाता है जहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
1: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोग बचाया जा रहा है। मुश्किल दरअसल मौसम बन जाती है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, ये जिंदगी की जंग दरअसल रेस अगेंस्ट टाइम है और ऐसे में ये जो हेलीकॉप्टर है वो सबसे बड़ी लाइफ लाइन बनकर सामने आ रहे हैं। इसी ऑपरेशन के जरिए लोगों को बचाया जा रहा है।
0: अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो नुआकोट एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के इंजन कभी बंद नहीं होते। रेस्क्यू टीमें लगातार उड़ान भर रही हैं। नेपाली सेना के साथ साथ सिविल हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में लगा दिए गए हैं।
1: लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर काफी तेजी से चल रहे हैं। एक के बाद एक उड़ाने हैं, हेलीकॉप्टर या तो जो सैनिक है या फिर जवान रेस्क्यूअर है उन्हें एयर ड्रॉप कर रहे हैं या फिर इसके साथ साथ खाना पीना प्रभावित कोशिश की जा रही है। ये संभव है नेपाल के लिए अब तक का सबसे बड़ा एयर इवैक्यूएशन ऑपरेशन है प्रभावित इलाकों से लोगों को बचाकर लाने के लिए।
0: नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों में जाने का एकमात्र तरीका ये हेलीकॉप्टर ही है, क्योंकि रसुआ समेत कई इलाके पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गए हैं।
1: नुआकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है। जहाजों की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो सेना के लोग और उसके साथ सिविल अथॉरिटी जितने भी हेलीकॉप्टर हैं उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में वहां पर खाना पानी दवाइयां जरूरत की चीजें पहुंचाई जा सके। इसी के साथ दूसरी तरफ जहां पर मेडिकल कैंप बनाया गया है तो जो घायल एयरलिफ्ट करके लाए जा रहे हैं उनका यहां पर इलाज भी किया जा रहा है। एक मेडिकल कैंप यहां से किया गया है और इसी के साथ बाद में तमाम लोगों को यहां से सुरक्षित ठिकानों पर भी भेजा जा रहा है। एयर ऑपरेशन एकमात्र साधन बचा है क्योंकि सड़कें पूरी तरह कट चुकी हैं, तो अब सिर्फ हेलीकॉप्टर का सहारा है जिनके जरिए पूरे बड़े ऑपरेशन को पहाड़ी इलाकों में अंजाम दिया जा रहा है।
0: रसुआ के दुर्गम इलाकों में कितने लोग बचे हैं, कितने लोग लापता हैं, सही सही आकलन तभी हो पाएगा जब रेस्क्यू टीमें जमीन पर उतरेंगी। जिन लोगों का रेस्क्यू करके बेस कैंप लाया गया है उन्होंने इस आपदा की भयावहता बयां की।
2: खाने पीने के लिए कोई जगह तो मदद कैसे पाती आपको? दो दिन पैदल चलते रहे। आपको याद है जब पानी आया तो उसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा था?
3: मालूम नहीं, ऊपर कोई लाइन कोई संचार सुविधा कुछ नहीं है, कोई जानकारी नहीं।
2: डर लगा था मन कितने लोग
3: बहुत आदमी थे लेकिन मेरे साथ
2: सब बच गए। जब उस समय सैलाब आया था, पानी आया तो आप लोगों को क्या कुछ देख पा रहे थे वहाँ पे?
4: उधर सब गाड़ी घोटना मन से सब मर गया यार।
2: बहुत आपकी आंखों के सामने?
4: हाँ, आंखों के सामने मन से मर गया। बहुत
2: आपका परिवार के सब लोग
4: सब सेफ है?
2: सब
4: परिवार सब
2: सेफ। आपने बचाया लोगों को?
4: लोग मेरे
2: लेकिन कई सारे लोग नायक बनकर के निकले, खासकर जो युवा थे वो समय रहते अलर्ट हुए, अपने लोगों को उन्होंने ऊपर किया, उन्होंने कहा कि पहाड़ी रास्तों पर जाएं ताकि लोगों की जान बच सके।
0: इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, जिंदगियों को मलबे में सिमटते देखा। कुछ लोग किस्मत वाले भी थे जो किसी तरह से बच गए।
2: आप लोग किस इलाके में थे? कितने दिन से थे आप लोग वहाँ पे?
5: 5 दिन।
2: तो वहाँ पर क्या स्थिति थी? खाना पीना था? कितने दिन से छुटे हुए थे आपको? कितने लोग थे आप लोग जो वहाँ पे थे? कितना जना था वहाँ पे?
5: 3 जना थे।
0: रसुआ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है, वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए जो लोग किस्मत से बच भी गए हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
6: बाहर जीना है।
2: आप लोग वहीं पे थे पानी?
6: हाँ, लैंडस्लाइड हुआ है।
2: तो आप लोग मतलब बचे कैसे वहाँ पे? जब आए तो कहाँ गए थे?
6: ऊपर से चढ़ाई
2: थे, फोन कॉल लग रहा था, बात करते थे, खाना पीना
6: खाना पाना तो ठीक है लेकिन फोन तो नहीं है।
0: रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को बेस कैंप में फर्स्ट एड दी जा रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास ही मेडिकल कैंप लगाया है, जहां पीने के पानी के साथ साथ जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।
2: इस आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए नेपाली सेना ने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप तैयार किया है। चंद्रपित अस्पताल आप समझ लीजिए एयर बेस है, तो जहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है, उसके बाद जहाँ उनका इलाज किया जाता है, और उसके बाद कई बार जो गंभीर खतरे में है उन्हें तुरंत काठमांडू में लिफ्ट कर लिया जाता है। आप समझिए कि जिस तरह के लोगों की चीजें आई है, जो पानी के बहाव में थे, मलबे के बहाव में थे, किसी का दम टूट रहा था, उन सबको ला सकती है। बड़ी सी चुनौती है, और इसीलिए जितनी एजेंसियां हैं, जितने हाथ हैं, हर कोई मदद के लिए खड़ा है। एक तरफ नेपाल की सेना ने इसको अपने अंजाम दिए, मेडिकल कैंप में उसका ख्याल रखा जा रहा है, इलाज पहुंचाया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है।
0: आशुतोष मिश्रा, नुआकोट बेस कैंप, नेपाल, आज तक।
7: आशुतोष ने एक इलाके की रिपोर्ट आपको दिखाई, लेकिन इसके ठीक बगल में जो दूसरा इलाका है, वहां पर भी मंजर कुछ अलग नहीं है। वहां पर भी आप देखेंगे कि जितने भी बैंक हैं, रेस्टोरेंट हैं, घर हैं, वो सब मलबे के नीचे नजर आ रहे हैं। वहां के हालात देखिए मेरी इस रिपोर्ट में।
0: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
7: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है, तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए, त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी, ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स, और आगे आप होटल्स देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहाँ पर है, वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
0: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
8: देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया, तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए, तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्टनर, पर वे उधर चले गए।
7: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा आता वो दिख रहा था?
8: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो स्नेक के आते ना, ऐसे ऐसे करके।
7: अच्छा?
8: थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके, हाई हाई हाई करके।
7: अच्छा अच्छा।
8: तो ऐसे चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
7: सबसे जरूरी था भागना तेज,
8: वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे, और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
7: देखा सामने,
8: हाँ नहीं ऐसे करके, वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
7: आपने बचा लिया। हाँ,
0: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी, आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो, लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल दी।
9: तो जंगला खुला हुआ है ना, जो हल्का इधर हुआ है, जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
7: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
9: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
10: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
9: मम्मी पापा बोल रहे थे लोग अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
10: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था? ये सब घर यहाँ पे तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
9: हाँ जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे एक सिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था। हाँ। बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं,
10: किसी का काम बचा ना घर बचा,
9: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा, बस आदमी बच गए ना, वही हम लोग के लिए बहुत काफी। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए वही काफी है।
0: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की तलाश कर रहे हैं।
11: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी एक हाँ। दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
10: कहाँ रह रहे थे
11: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
10: अच्छा।
11: क्या कहता हूँ मैं,
10: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे, तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
11: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है।
10: हाँ।
11: और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
10: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
11: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
10: कितने साल की है
11: ये बच्ची? दो साल की है।
10: दो साल की बच्ची।
11: ये दीदी हुई।
10: हाँ।
11: ये भांजी है, ये भी भांजी है।
10: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
11: नहीं मिल पा रहे हैं।
10: आप हर जगह जाके बस
11: ढूंढ रहे हैं?
0: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
10: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी है वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
0: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
12: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्टर का, 15-20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल गए, सब खाना खा के ये रास्ता हो गए।
10: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
12: हाँ।
10: कैसा डरावना था?
12: बहुत एकदम डरावना था, बहुत।
10: नुकसान कितना हो गया आपको?
12: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको
10: जान किसी के नहीं गई,
12: सरकार ने
10: जान किसी के नहीं गई,
12: नहीं गए, नहीं गए, नहीं जान किसी के नहीं गए। 4-5 मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शॉटर लगाने की भी मौका नहीं मिला।
10: यही रास्ता था?
12: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ 5 जाना थे, 5 आदमी थे, और मेरा बेटा उधर काम करता थे, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
0: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
10: यहीं पर रहते हैं आप?
13: जी यहीं पर रहते हैं।
10: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
13: बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया।

0: डेवलपमेंट विकास बैंक
1: हाँ, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं?
0: लग रहा है नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है, थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
1: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
0: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
1: क्या परिवर्तन हुआ है?
0: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
1: हाँ।
0: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
1: ये खेत था,
0: खेत था इसके पछाड़ी।
1: अच्छा।
0: इस साइड में पूरे घर था यहाँ। हाँ। पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
1: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं।
0: हाँ, इसी
1: और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
0: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
2: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
3: ऊपर ऊपर
1: ऊपर
3: छत में,
1: छत में फंसा हुआ है कुत्ता मुर्गा,
3: ये 40-50 है,
1: 40-50 ऊपर फंसा हुआ
3: है, दो आया और उधर है।
1: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
3: ऊपर से निकाला, अभी
1: दो
3: था, एक किधर गया मालूम नहीं,
1: एक एकदम ऊपर। बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा?
3: खाना नहीं मिला।
1: यही कुछ जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका क्या नाम है इसका?
3: स्वीटी।
1: स्वीटी नाम है। स्वीटी आ गई तुम वापस?
3: खराब हुआ।
2: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
1: जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
4: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी, इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
5: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा, और मानो जैसे कयामत बरसी हो शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है, और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को।
1: हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन नेपाल की इस त्रासदी से जुड़े हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रधानमंत्री मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर भी जोर दिया गया। यूरेनियम समेत कई अहम समझौते। संत प्रमुख मोहन भागवत के मुस्लिम वाले बयान पर बयानबाजी तेज। मौलाना बोले अब जमीन पर भी दिखे असर। विपक्ष का वार, विदेश में समझदारी की बातें, देश में चुप्पी क्यों। उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के जेपीएनआईसी के आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति सामने लाए, कहा इन लोगों ने पैसा खाया। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा, फिर उफान पर त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल, तबाही में मौत का आंकड़ा 768 तक पहुंचा। जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप। 23 साल बाद रिकॉर्ड टूटा, शहर बना झील। सड़कों पर दौड़ी नावे, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशंस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो गुड।
0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कहते हैं युद्ध शुरू करना जितना आसान होता है, उसे खत्म करना उतना ही मुसीबत वाला होता है। आज के दौर में दुनिया भर के तमाम देशों के अंदर बड़े युद्ध चल रहे हैं, लेकिन अभी माना जा रहा है कि युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जहां रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, वहीं ईरान, अमेरिका और इजराइल भी लड़ रहे हैं। और अभी भी ये युद्ध शुरू तो हुआ था एक स्पेशल ऑपरेशन के नाम पर, लेकिन एक महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। आज रणभूमि में बात करेंगे इन तमाम युद्ध क्षेत्रों की, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार रणभूमि स्पेशल में आपके लिए क्या कुछ होने वाला है। रणभूमि स्पेशल में दुनिया में घट रही तमाम हलचल की खबरें होंगी, जहां युद्ध भी होगा और कुदरत का क्रोध भी होगा। रणभूमि स्पेशल की पहली खबर में आपको लिए चलेंगे यूक्रेन, जहां पर राजधानी कीव में रूस ने एक बार फिर से ताजा हमले किए हैं और अब तक के सबसे भीषण हमले ने माना जा रहा है, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई। रणभूमि स्पेशल की दूसरी खबर आपको लिए चलेंगे पश्चिमी एशिया में, जहां पर ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता मुस्तफा खमनेई ने मुस्लिम देशों से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान भी किया और डोनाल्ड ट्रंप को नई चेतावनी भी दी है। रणभूमि स्पेशल की तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि महायुद्ध में अब तक करीबन 8,000 लोगों की मौत हो चुकी है। रणभूमि स्पेशल की चौथी खबर में आपको बताएंगे बेहाल नेपाल की, जहां पर अब भी तबाही जारी है, जिसमें एक पुल आज फिर त्रिशूली नदी के तेज बहाव में बह गया। रणभूमि स्पेशल की आखिरी बड़ी खबर आपको लिए चलेंगे उज्बेकिस्तान में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस समय उनके दौरे पर हैं और जहां वो सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा भी गया। पीएम मोदी कल एक बार फिर से किर्गिस्तान जाएंगे, जहां पर एससीओ समिट में वो शामिल होने वाले। आज रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल सर हमारे साथ होंगे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इन तमाम खबरों के विश्लेषण के बारे में और इनकी इनसाइट्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार रणभूमि स्पेशल में आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें रूस और यूक्रेन युद्ध की, जिसे रूस ने एक बार फिर से महीने भर में यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त हमले किए हैं और उन्हें भरने में कई साल तक लग जाएंगे। पिछले 3 दिनों से रूस लगातार मिसाइलें और ड्रोन से बम बरसा रहा है, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। रिहायशी इलाकों में कई इमारतें जमींदोज हो चुकी है और इन हमलों के बाद आए लगातार इन इलाकों में आग भी बुझाने का काम जारी है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को सबक सिखाने के लिए बड़ी चेतावनी भी दी है।
3: कीव में रूसी हमले ने मचाया कोहराम। एयर स्ट्राइक में 37 लोगों की गई जान। आग की लपटों में घिरे दफ्तर दुकान। कीव एक बार फिर दहल रहा है। कीव एक बार फिर रूसी हमलों का शिकार बना है। यूक्रेन की राजधानी की ये तस्वीरें तबाही की सारी कहानी बयां कर रही हैं। रूसी बमबारी ने कीव और आसपास के कई इलाकों पर इतने बम बरसाए हैं कि 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लगातार तीसरी रात भर रूस के ड्रोन बम बरसाते रहे, एक के बाद एक धमाके होते रहे। रिहायशी इलाकों की कई इमारतों में आग लग गई और लोग फंस गए। सारी रात बचाव अभियान चलाया गया और आग बुझाने की कोशिश की जाती रही। धू धू कर जलता ये वेयर हाउस तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। धमाके के साथ ही इसमें आग लग गई और काले धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कई घंटे लग गए। रूसी हमलों ने कीव रीजन में ही नहीं ओडेसा में भी भारी तबाही मचाई है, जहां एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए।
4: Станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальною операцією. Мої співчуття усім рідним та близьким. Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям.
3: रूसी मिसाइलें और ड्रोन लगातार अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन एंटी मिसाइल सिस्टम न होने से यूक्रेन इन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: तो आपने अभी हमारी एक खास रिपोर्ट देखी, लेकिन यह युद्ध कितना ज्यादा भीषण होता जा रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अमेरिका ने भी अब सायरन बजाना शुरू कर दिया। दरअसल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका के हवाले से यह कहा गया है कि कीव में रहने वाले सभी अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी है कि वो तुरंत कीव छोड़ दे और या फिर शहर पर होने वाले संभावित मिसाइल हमलों को देखते हुए बम शेल्टर्स की शरण ले ले, क्योंकि आशंका है कि रूस फिर से कीव पर बड़े हमले कर सकता है और ये हमले इतने ज्यादा भीषण है कि जिसको लेकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को नया अलर्ट, नया एडवाइजरी जारी किया और तुरंत कीव छोड़ने का आदेश भी दिया गया है। दरअसल रूस और यूक्रेन ने अब एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रणों पर अटैक करने शुरू कर दिए और रिहायशी इलाकों पर सबसे ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां पर यूक्रेन और रूस ने ऊर्जा केंद्र और बड़े पावर प्लांट पर हमले तेज कर दिए। इसके लिए रूस ने बड़े स्तर पर तैयारियां भी किया। जानकारी के मुताबिक कीव ने रूस में नागरिकों के बुनियादी ढांचों और रूस के ईंधन और ऊर्जा क्षेत्रों पर लगातार हमले किए और रूस अब उसी का बदला लेने के लिए रेसिप्रोकल अटैक भी कर रहा है। यानी रूस भी अब कीव के रिहायशी इलाकों में ऊर्जा संयंत्रणों पर और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने पर के लिए बड़े अटैक कर रहा है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय ताजा हालात किस तरीके के हैं। कीव पर पिछले कई दिनों में सबसे ज्यादा भीषण हमले किए गए, 400 से ज्यादा ड्रोन एक बार फिर से इंटरसेप्ट किए गए और माना ही जा रहा है कि रूस अब बड़े मिसाइलों से लगातार कीव के आसपास के इलाकों पर अटैक कर रहा है, जिसमें उसका मुख्य टारगेट है ऊर्जा संयंत्र और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी के चलते कहा यह भी जा रहा है कि कीव के पास मौजूद कई ऐसे जहां पर ड्रोन्स बनते हैं या फिर ड्रोन आप कह सकते हैं अनआर्म्ड बोट्स बनती हैं, उनको भी रूस ने टारगेट किया है। रूस का मानना यह है कि वो लगातार यूक्रेन की इन प्रोडक्शन लाइंस को बर्बाद कर देना चाहता है। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट यह भी मिल रहा है कि यूक्रेन ने भी रूस पर जवाबी हमले किए हैं और रात भर रूस के इलाकों पर यूक्रेन ने करीबन 494 से ज्यादा आत्मघाती कामिकाजी ड्रोन से मार गिराने का दावा किया है। मतलब यह है कि यूक्रेन भी अब रूस पर बड़े अटैक कर रहा है, सैकड़ों ड्रोन से रूस पर बड़े हमले किए गए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि वार पलटवार का दौर कैसे ज्यादा भीषण युद्ध में तब्दील होता जा रहा है।
5: धमाके से पैदा हुए प्रेशर की चपेट
0: में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय यूक्रेन ने भी 494 से ज्यादा कामकाजी ड्रोन से रूस पर हमले किए गए। हालांकि रूस की तरफ से कहा गया कि उसने इन सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी यूक्रेन भी अब भी बड़े ड्रोन हमले लगातार रूस खास तौर पे मॉस्को को टारगेट कर रहा है।

और देखिए रूस और यूक्रेन की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब आपको एक और युद्ध के बारे में अपडेट बताते हैं। दरअसल जंग के एक और ठिकाने पर जहां पर पश्चिम एशिया की ओर जहां पर 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका और ईरान का युद्ध अभी थमने का और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल बम नहीं बरस रहे, लेकिन कूटनीति और अर्थनीति की जंग और तेज हो गई। इन 6 महीनों में ईरान ने बहुत कुछ खोया। अब तो आधिकारिक तौर पर वो ये मानने लग गया है कि अमेरिका की नाकेबंदी और पाबंदियों की वजह से ही आर्थिक मोर्चे पर उसको उसकी कमर टूट गई है, लेकिन फिर भी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अमेरिका से बदला जरूर लेगा।

0: फंस गया ईरान, निर्यात कम होने से मचा कोहराम। अमेरिकी नाकेबंदी से हॉर्मुज में बढ़ा घमासान। तेल के खेल ने बिगाड़ी अर्थव्यवस्था की तस्वीर। बीत गए युद्ध के 6 महीने, नहीं हुई कोई डील। ना तो ईरान ने अब तक हथियार डाले हैं, ना ही अमेरिका एक भी कदम पीछे हटने को तैयार है। मिसाइलों से बम बरसाकर सुप्रीम लीडर और टॉप कमांडरों को मारने से शुरू हुए इस महायुद्ध को 6 महीने बीत चुके हैं। ईरान के कई शहरों में बर्बादी का मंजर आज भी दिखाई देता है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाली ये जंग कहने को सीज फायर के दौर से गुजर रही है, लेकिन तेल के खेल ने ईरान की हालत खस्ता कर दी है। कीमतें आसमान छू रही हैं और विदेशी मुद्रा बची नहीं है। ऊपर से हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी ने जहाजों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगा रखी है। ईरान में तेल निकल तो करीब करीब उतना ही रहा है जितना युद्ध से पहले निकलता था, लेकिन बिक नहीं रहा है या फिर बिकने दिया नहीं जा रहा है। तेल के इस खेल ने ईरान का बुरा हाल कर दिया है, इतना बुरा हाल कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन आने वाली सर्दियों में वर्क फ्रॉम होम की अपील कर रहे हैं ताकि आने जाने का खर्चा और बिजली बच सके।
1: من حتی الان تو فکر اینیم و با سرانم من صحبت کردم تو زمستان یه سری از ادارات رو ببندیم میکنیم دورکاری، حداقل برق مصرف نمیکنم، گاز مصرف نمیکنم، رفت و آمد و بنزین رو مصرف نمیکنم، دورکاری هم میشه کرد.
2: اصلا گفته میشد
1: مشکلش قانونه، یعنی این سری قوانین به ما میگه این باید 8 ساعت بیاد، باید اینو تعامل بکنیم که این از بین بره. اختیار در البته الان مسیرهای به اسم دورکاری هست، با دورکاری میشه یه کاری کرد.
0: ایران کو آرتھک طور پر الگ تھلگ کرنے کی امریکہ کی مہم کافی حد تک رنگ لائی ہے، اس سے ایران کی مصیبتیں بڑھی ہیں، لیکن یہ مہم ابھی تک ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر پائی ہے۔ آج تک بیورو۔
3: اور دیکھیں اس وقت اسی سے جڑی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ایران کی راجدھانی تہران میں جہاں پر ایبن سینا سکوئر پر ایئر ڈیفنس ڈے کے دوران جشن میں میڈسن 16 میسائل سسٹم کی تصویریں یا پھر اس کو سارجنی کیا گیا۔ جانکاری کے مطابق ایران نے امریکہ سے یدھ کے دوران جتنی بھی اپنی سینے طاقت کو گوایا تھا اب اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ایران لگا ہوا، اور اسی کی پردرشنی ایک بار پھر سے اس نے اپنے ڈیفنس ڈے کے دوران دکھائی۔ اسی کڑی میں اس نے اپنے میڈسن 16 میسائل سسٹمز کو لوگوں کے سامنے کی، اس کی نمائش کی، اور ایران ایسا پہلے بھی کرتا ہے۔ دراصل آزادی اسکوئر ہو یا پھر اس کے مہتوپورن علاقے تہران کے ان علاقوں میں ایران لگاتار اپنے یہ میسائل سسٹمز، اپنی میسائلیں، اپنے ڈیفنس سسٹمز کی نمائش اس لیے کرتا ہے تاکہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہ اس کے پاس سینے شمتائیں اب بھی کافی ہیں۔ دراصل یہ یدھ تو رک چکا ہے، سیز فائر ہے، لیکن اب بھی یہ مانا جا رہا ہے کہ یدھ کبھی بھی بھڑک سکتا ہے اور کبھی بھی نئے حملے شروع ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ 28 فروری سے لگاتار اب سے لے کر ابھی کے 6 مہینوں کے دوران ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر کتنے حملے کیے اور اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر کتنے حملے کیے۔ بڑی اسکرین پر میں آپ کو دکھا کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخرکار اس سمے تازہ آنکڑے کیا بتاتے ہیں۔ دراصل پشمی ایشیا میں مہایدھ میں کتنے حملے کس دیش پہ کیے گئے، یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اب تک کتنے حملے ایران پر اٹیک جو ہوئے، 2053 سے زیادہ اٹیک ایران پر کیے گئے ہیں، یہ میں آپ کو اس موجودہ یدھ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد یو ایس اور اسرائیل کے اٹیک کتنے ہیں، یہ 3580 کے قریب یو ایس اور اسرائیل نے اٹیک کیے ہیں، اور ایران نے اٹیک کتنے کیے، 2053، یہ تمام دیشوں کے اوپر۔ یعنی میں آپ کو یہ آنکڑا بھی بتا رہا ہوں، یہ اٹیک کہاں کہاں کیے گئے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ دراصل یہ ایران ہے، اور ایران نے سمبھاوت ان تمام علاقوں کے اندر، چاہے وہ اسرائیل ہو، مڈل ایسٹ کے دیش ہو، ان تمام جگہوں کے اوپر یہ بڑے اٹیک کیے ہیں، چاہے وہ عمان کی کھاڑی ہو یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان علاقوں کے اندر جس میں سعودی عرب سے زیادہ، ان تمام دیشوں پر اٹیک کیے گئے ہیں مڈل ایسٹ میں۔ اور ایران پر کتنے اٹیک کیے گئے میں آپ کو بتایا، 3580 سے زیادہ ایران پر اٹیک کیے گئے، یہ 28 فروری سے 28 اگست تک کا آنکڑا، یعنی 6 مہینوں کے دوران یہ آنکڑا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہارمز میں کیا یتھاستھتی بنی ہوئی ہے۔ دراصل اگر آپ دیکھیں کہ ہارمز میں جہازوں پر اٹیک کس طریقے، 70 جہازوں پر حملے کیے گئے، یہ 28 فروری سے 29 اگست تک کا آنکڑا ہے۔ 6 مہینوں کا آنکڑا میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیے کہ کیا ہے 6 مہینوں کی پرستھتیاں اس یدھ کو لے کر، اور جس میں 19 ناویکوں کی موت ہوئی ہے 28 فروری سے 29 अगस्त तक के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। एक बार फिर ये देखकर समझ लीजिए और ये जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं दरअसल ये वो टैंकर्स हैं जिन पर अटैक किए गए थे। ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी 35 किलोमीटर का वो गलियारा जहां पर ये अटैक्स किए गए और गल्फ ऑफ ओमान और यहां पर पर्शियन गल्फ का इलाका और इन्हीं इलाकों के अंदर इन 70 टैंकर्स पे अटैक किए गए। अब युद्ध से पहले रोजाना औसत क्या थी यहां से टैंकर्स के गुजरने की ये भी आप समझिए। दरअसल युद्ध से पहले यानी 28 फरवरी से पहले औसतन 100 टैंकर्स इस गलियारे से या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते थे यानी 100 टैंकर्स रोजाना यहां से निकला करते थे। लेकिन अब 28 फरवरी के बाद क्या परिस्थिति बन गई, अब यहां पर टैंकर्स की जो संख्या है वो 7 टैंकर्स सिर्फ 7 टैंकर्स यहां से गुजर पाते हैं। और आप देखिए क्यों, क्योंकि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी दो भागों में बांट दिया गया है। नॉर्थ का स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या माना जाता है कि वो पूरी तरीके से ईरान के नियंत्रण में और साउथ का जो इलाका है साउथ ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर अमेरिका यहां से आवाजाही को संचालित करने की कोशिश करता है और शायद इसी वजह से अब लगातार आप मान के चलिए कि ये 6 महीनों के आंकड़े आपको बताते हैं कि कैसे परिस्थितियां एकदम से बदल गई। भले ही एक दूसरे के बीच में युद्ध ना हो रहा हो एक दूसरे पर हमले ना किए जा रहे हो लेकिन अब भी परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं और अब भी दोनों के बीच कोई हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे खास मेहमान मेजर जनरल बिशंबर दयाल सर हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। बिशंबर सर, अगर देखा जाए इन परिस्थितियों को, दोनों युद्ध की हम बात कर रहे हैं, युद्ध को शुरू तो कर दिया गया चाहे वो यूक्रेन और रूसिया का युद्ध हो जो करीबन 4.5 साल से चल रहा है और 6 महीने से चल रहा है ईरान अमेरिका और इसराइल का युद्ध, क्या आपको लगता है कि इन दोनों युद्ध की परिस्थितियों को हम समझे कि यहां से कोई एग्जिट पॉइंट निकलता हुआ देख रहा है, क्योंकि हर तरफ हर पार्टी हर देश लगातार अपनी शर्तों को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड है।
2: सुमित पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जहां तक पहले एक युद्ध की बात करें जो अभी आधुनिक जो अभी लेटेस्ट है जो 5 साल से चल रहा है उस पर बाद में आते हैं, जहां तक ईरान और अमेरिका की बात है देखिए एक स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट है और उस स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट का अभी जैसे आपने खुद बताया कि उसका ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक मतलब दुनिया को उसका जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की उस पर ज्यादा प्रहार है, चाहे ईरान की खुद की अर्थव्यवस्था हो चाहे गल्फ कंट्रीज की खुद की गिरती हुई एक्सपोर्ट्स हो चाहे भारत जैसे देश है जिनको इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है और चाहे खुद अमेरिका भी है। तो ये एक और इसमें क्या है देखिए वो शर्तें ऐसी की ऐसी हैं, यूक्रेन आज भी ईरान के अंदर कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई मुद्दा नहीं रहा, एक जो लड़ाई में मुद्दा नहीं था हॉर्मुज स्ट्रेट का वो मुद्दा आके खड़ा हो गया, एक जो मुद्दा नहीं था इतनी सिविल सैंक्शंस का ईरान पे वो मुद्दा आके खड़ा हो गया, सैंक्शंस तो थी लेकिन ऐसी सिविल सैंक्शंस नहीं थी। तो ईरान खड़ा है उसका इकोनॉमिक लॉस हो रहा है और जब तक अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन नहीं हो लेते मेरा मानना यह है कि ये ईज ऑफ कन्वीनियंस है दोनों साइड्स को, ना अमेरिका ज्यादा इसमें कुछ करेगा और ना ईरान इसमें कुछ करेगा, ये चलता रहेगा। कहीं ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने इसको एक जब तक मिटम नहीं हो लेते अमेरिका में जब तक इस युद्ध को रोक रखा है और या तो उसके बाद अमेरिका विड्रॉ कर जाएगा 99% क्योंकि वो और इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं और इकोनॉमिक सैंक्शन यूज करेगा और हॉर्मुज का भी कोई दूसरा इलाज निकल जाएगा जिसको आज ईरान अपना ट्रंप यूज कर रहा है हॉर्मुज को, हॉर्मुज की जो भी उसने आज के दिन हॉर्मुज एक ऐसी स्ट्रेटजिक इशू बना दिया उसने जिससे वो अपनी अपनी अपनी अहमियत पे टिका हुआ है, तो वो उसका भी ऑल्टरनेटिव निकलेगा। जहां तक बात रशिया और यूक्रेन की युद्ध है, देखिए रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी एक बात सोचनी पड़ेगी कि वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं है, वो सिर्फ औपचारिक तौर पर है, एक्चुअली में वो रशिया और नाटो का युद्ध चल रहा है।
3: बिल्कुल,
2: जहां तक ग्राउंड पे फ्रंट्स की बात है डॉनबास के जो बाकी जो डॉनबास में जो खासकर डोनेस्क रीजन है लोहांस तकरीबन जो एम था रशिया का वो अचीव कर चुका, लेकिन डोनेस्क में अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत हाईली फोर्टिफाइड है बाय यूक्रेनियंस और जिसको ना बाईपास कर पा रहा रशिया और ना ही डिस्ट्रॉय कर पा रहा, कहीं वहां भी मुझे ऐसे लगता है कि रशिया की जीत जरूर हो रही है लेकिन रशिया को ऐसा स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर नहीं कर रहा, टैक्टिकली डिस्ट्रॉय कर रहा है, वहां पे भी लड़ाई इकोनॉमिक होगी है, रशिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट रशिया की इनसाइड जो रशिया की एनर्जी सोर्सेज हैं जो रशिया के कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं जो रशिया की इंडस्ट्री है जो रशिया की ऑयल इंडस्ट्री जो रशिया के पोर्ट्स हैं नॉर्थ सी जैसे वहां पे डायरेक्ट टारगेटिंग की जा रही है कि रशिया की जो जो एबिलिटी है, इकोनॉमिक एबिलिटी है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, उसको कमजोर किया जाए।
3: बिल्कुल, एक बात बताइए बिशंबर सर, हम दोनों ही देशों में जो बदलाव स्ट्रैटेजीज में देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि युद्ध अब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं हो रहा है, वो उनकी आर्थिक चीजों पर हो रहा है, चाहे वो रूस यूक्रेन की बात कर लीजिए, चाहे ईरान भी अगर पलटवार कर रहा है सऊदी के ऊपर या मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर, या फिर ईरान पर भी जो हमले हो रहे हैं वो उसकी ऑयल रिफाइनरीज पर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है, लेकिन इसका खामियाजा, इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है और उसकी डिपेंडेंसी जो पूरी दुनिया की है वो अमेरिका पर बढ़ती जा रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका चाहता है कि हाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऑयल रिफाइनरी, ये ऑयल स्ट्रक्चर्स बर्बाद हो जाए ताकि पूरी दुनिया एक बार फिर से अमेरिका का रुख कर ले?
2: देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि उन्होंने तो अपने एक्स प्रेसिडेंट्स को बिठा के अपने इनॉग्रल में बोला ना कि मैं भारत की, मैं दोबारा से गोल्डन पीरियड लाऊंगा अमेरिका के लिए, अमेरिकन अमेरिका गोल्डन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तो उनका इकोनॉमिक राइज तो है, उनको उनको देखिए पूरे अमेरिकन स्ट्रेटजी समझते हैं कि चाइना को अगर कभी आपको कंटेन करना है और चाइना को अगर अब आपको आगे नहीं बढ़ने देना तो अमेरिका को इकोनॉमिकली रिवाइव, एनर्जी सोर्स इज द सोल पर्पस, एनर्जी जो कंट्रोल ओवर एनर्जी है वो वेनेजुएला से स्टार्ट हुआ, देखिए अपने यहाँ ड्रिलिंग बढ़ाई वो देखिए, पूरा का पूरा रशियन ऑयल पे जितनी सैंक्शन लगाई है और जितना अब ये पूरा का पूरा गल्फ में क्या है, ये लड़ाई एनर्जी की है, कंट्रोल ओवर एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन सबको मालूम है कि यहां से दुनिया का 25-30% जो है नेचुरल गैस और जितनी जितनी यहां से एक्सपोर्ट है हॉर्मुज के थ्रू, वो सारा डिस्टर्ब करने का था। तो अमेरिका सफर कर रहा है लेकिन मिड टर्म को काउंटर करने के लिए वो इतने लॉसेस नहीं जाएगा।
3: लेकिन लेकिन सर ऐसा ना हो कि मिड टर्म आते आते पूरी दुनिया में परिस्थितियां ऐसी बन जाए कि मतलब ये चीजें दोबारा से रिवाइव ना हो पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बिशंबर दयाल सर थे। तो देखिए मैं बता रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से मिड टर्म चुनावों का अभी वेट कर रहा है अमेरिका, लेकिन उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सभी फैसले 360 डिग्री चेंज हो रहे हैं और उनका पलटवार या फिर उनका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आप रुख करते हैं उज्बेकिस्तान का, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है। ताशकंद में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है जिसमें कई मुद्दों पर सहमति भी बनी है। पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान को भारत का प्रमुख साझेदार भी बताया। दोनों देशों ने $1 बिलियन से ज्यादा का द्विपक्षीय कारोबार भी किया और आपको बताते हैं कि यूरेनियम सप्लाई को लेकर भी उज्बेकिस्तान से बात हुई है। इन 5 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय वहां पर कितने महत्वपूर्ण दौरे पर हैं और मोदी के उज्बेकिस्तान दौरे का सारा सार भी आपको इन तस्वीरों में दिख जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी का उज्बेकिस्तान में अपना सर्वोच्च सम्मान भी उनको दिया गया। चलिए अब रुक करते हैं उस खबर का जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रणभूमि स्पेशल में आप बात करेंगे नेपाल में आई भीषण बाढ़ की, जहां पर भारी तबाही मची है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। इस वक्त मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल में बाढ़ में हुई तबाही में अब तक करीबन 734 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 2500 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच लगातार लोगों की तलाश के लिए नेपाल की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश भी जारी है, लेकिन अब भी कई बार जो मौसम के मिजाज के बदलने के बाद चीजें वहां पर बिगड़ी और कई बार रेस्क्यू ऑपरेशंस को बीच बीच में रोकना भी पड़ा, लेकिन फिर भी वहां पर मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम, या फिर आप कह सकते हैं कि वहां पर मौजूद सेना और लोकल प्रशासन की टीम लगातार वहां पर अब भी काम कर रही है। 2500 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर की भीषण बाढ़ से तबाही में बहा सस्पेंशन पुल। देखिए आपको बताया त्रिशूली नदी में एक बार फिर से पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ा और उसके बाद सस्पेंशन बह गया और गोरखा को थानिंग से जोड़ने वाला ये सस्पेंशन पुल बह गया। तेज जल प्रवाह से नदी से मिनटों में समाया ये पुल। आप देख सकते हैं पानी के तेज बहाव में कैसे आप इसे बहाकर ले गया। चलिए रणभूमि में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
1: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
2: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
3: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
4: इसीलिए सेनको इंडिया का
5: अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
1: अब मैं क्या ही बोलूं?
6: परिवार अटूट भरोसा।
7: In association with
8: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: सेरा सैनिटरीवेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
3: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
2: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
4: 19 साल के छात्र साहिल रजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
2: हर बात देश के सामने।
5: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
2: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।
6: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
7: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। तरीकी एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर भी जोर। यूरेनियम समेत कई अहम समझौते। संघ प्रमुख के मुस्लिम वाले बयान पर बयानबाजी तेज। मौलाना बोले अब जमीन पर भी दिखे असर। विपक्ष का वार, विदेश में समझदारी की बातें, देश में चुप्पी क्यों। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के जेपीएनआईसी के आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को सामने लाए, कहा इन लोगों ने पैसा खाया। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा। फिर उफान पर त्रिशूली नदी, तेज धार में बापोल। तबाही से मौत का आंकड़ा 768 तक पहुंचा। जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप। 23 साल का रिकॉर्ड भी टूटा। शहर बना झील। सड़कों पर दौड़ी नावें। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: ताकत के तराजू का पलड़ा, पैसों के वजन और बारूद के धमाके से हर बार झुके, ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार शांति की चाहत और एकता की ताकत भी शक्ति का संतुलन बनाती है, और किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने, चलाए रखने के लिए शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है। पावर प्ले में आज बात करेंगे ऐसे ही शक्ति संतुलन की भी, क्योंकि अगले 15 दिनों में होने जा रही दो बड़ी बैठकें अहम है, जो तय करेंगी कि दुनिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिक्स की धुरी किस तरफ और कैसे झुकेगी। मैप रूम में आपको दिखाएंगे कि अंतरिक्ष में तैयार हो रहा है जोर आजमाइश के अखाड़े की वो तस्वीर कौन सी है, जहां चीन बड़ी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। साथ ही बात करेंगे इंसान से लेकर मशीन के उन तमाम किरदारों की जो इस हफ्ते बने हैं पावर प्लेयर्स। साथ ही होगी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की उस टीम की जो बीते 2 हफ्तों के दौरान दुनिया के अलग अलग देशों की राजधानियों में नजर आई, दौरा करती दिखाई दी। इसी शो में आप और हम मिलकर पढ़ेंगे वो सारे सिग्नल भी जो नेपाल में पहाड़ पर आई भीषण आपदा दिखा रही है। तो चलिए करते हैं शुरुआत पावर प्ले की। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। दुनिया के शक्ति मंच पर जल्दी ही दो तस्वीरें ऐसी दिखाई देने वाली हैं जिन पर सारे विश्व की नजर होगी। खास तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इन्हें और भी गौर से देखेंगे। जब बिश्केक और नई दिल्ली के अंदर ईरान, रूस और चीन के नेता एक साथ नजर आएंगे, जब किर्गिस्तान की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक साथ एक बैठक में दिखाई देंगे, और दिल्ली में यूएई और ईरान के नेता ब्रिक्स की बैठक का हिस्सा होंगे। ये अमेरिका और पश्चिमी देशों के घटते रसूख, नई वैश्विक व्यवस्था बनाने की कोशिश और बहुध्रुवीय दुनिया के प्रबंधन के लिहाज से बड़ी अहम मुलाकातें हैं। डॉलर के दबदबे को मिल रही चुनौती के उसे लेकर वेस्टर्न माइंडसेट के खिलाफ बगावती नाराजगी के लिहाज से भारत में हो रही ब्रिक्स और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हो रही एससीओ की बैठकें काफी हद तक ये तय करेंगी कि क्या ये दुनिया में शक्ति संतुलन साधने की ईमानदार कोशिश है या फिर अपने ही आपसी झगड़ों में उलझा बस एक जमावड़ा। क्या है ये पूरी कहानी, देखिए हमारी ये पड़ताल, हमारी ये पावर स्टोरी।
3: दुनिया के शक्ति मंच पर अगले 2 हफ्तों में दो बड़ी बैठकें हैं, एक बिश्केक में, दूसरी दिल्ली में। इनकी तस्वीरों पर सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सारी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि बिश्केक में रूस और चीन के साथ ईरान के नेता साथ दिखाई देंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार भारत पाकिस्तान के नेता भी उसी मंच पर होंगे। पिछली बार तियानजिन में जब नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन साथ ढहाका लगाते नजर आए थे तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमने भारत और रूस को सबसे गहरे, सबसे अंधेरे चीन के हवाले खो दिया। मगर अगले ही दिन सुर बदल गया। सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने लिखा, भारत से खास रिश्ता है, चिंता की बात नहीं। मोदी ने भी तारीफ का जवाब दिया। अब देखना यह है कि बिश्केक के बाद ट्रंप आखिर क्या कहते हैं। मगर हाँ, एक तस्वीर शायद नहीं बदलेगी, मोदी शहबाज की बॉडी लैंग्वेज वाली तस्वीर। तियानजिन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तरफ प्रधानमंत्री मोदी की पीठ थी, इस बार भी रुख मिलने की संभावना कम ही है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों की इबारत भले न बदले, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के घटते रसूख के साथ वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की तस्वीर तेजी से बदल रही है। बहुध्रुवी दुनिया की चाहत को नया जोर मिल रहा है। यही वजह है कि बिश्केक की SCO और 12-13 सितंबर को दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स की बैठक दोनों अहम है, जो शायद ये तय करेंगी कि इन बैठकों के जरिए शक्ति संतुलन की क्या कोई ईमानदार कोशिश हो रही है या फिर ये आपसी झगड़ों में उलझे मुल्कों का महज एक जमघट है। बिश्केक की शिखर बैठक के साथ साथ दिल्ली में ब्रिक्स समिट की तैयारी भी पुरजोर तरीके से चल रही है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आना तय है। शी जिनपिंग आते हैं तो 7 साल और गलवान के बाद उनका यह पहला भारत दौरा होगा। लेकिन असली चुनौती जमावड़ा करने की नहीं, एकता बनाने की है। मई में दिल्ली में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ईरान और UAE के टकराव के चलते बिना किसी साझा बयान के ये मुलाकात खत्म हुई थी। द्विपक्षीय विवादों की यह वही फॉल्ट लाइन है जहां बहुध्रुवी दुनिया बनाने की कोशिशें अक्सर लड़खड़ाती हैं। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीते कुछ सालों के दौरान इन दोनों संगठनों का दायरा बढ़ा है। 2010 में 5 सदस्यों से शुरू हुआ ब्रिक्स अब 11 सदस्यों की संख्या तक पहुंच चुका है। वहीं SCO में भारत समेत अब 10 देश हैं और 16 डायलॉग पार्टनर। नई व्यवस्था बने न बने विकल्प हर कोई बढ़ाना चाहता है। डॉलर पर निर्भरता घटाने की कोशिशें तेजी से चल रही हैं। भुगतान के नए तरीके तलाशे जा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट की क्रांति की अगुवाई तो UPI की महारत रखने वाला भारत ही कर रहा है। शायद यही वजह है कि सत्ता के तराजू पर भारत का वजन ट्रंप के लिए भी मायने रखता है। बरसों से खेमों का विरोधी, बहुध्रुवी व्यवस्था का पैरोकार और साथ ही ब्रिक्स और क्वाड दोनों संस्थाओं का संस्थापक देश भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। लेकिन असली शक्ति संतुलन के लिए सिर्फ भारत को बुलाना काफी नहीं है, बल्कि उसकी बात को तवज्जो देना भी अहम है। क्योंकि भारत ये कहता है कि अब वक्त आ गया है UN, WTO और IMF जैसी संस्थाओं के ढांचे में आमूलचूल बदलाव किया जाए, सुधार किया जाए। रूस यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया तक की जंग ने ये दिखा दिया है कि टकराव का एक्सीलेटर तो आसानी से दबा दिया गया, लेकिन ब्रेक कहीं गायब दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुद्दा ये नहीं है कि बिश्केक और दिल्ली में कौन कौन साथ बैठता है, बल्कि मसला तो ये है कि जब ब्रेक ही फेल हो तो सिर्फ नया रास्ता बना लेने से क्या दुनिया की गाड़ी संभल जाएगी।
2: धरती पर तो सारी सियासत चलती और संचालित होती है सरहदों के हिसाब से, लेकिन दुनिया की महाशक्तियां उन इलाकों को भी अपनी ताकत का अखाड़ा बना रही हैं जहां पर सरहदें कोई मायने नहीं रखते हैं। और इसी लिहाज से अब आज हम चर्चा करेंगे मैप रूम में उन जगहों की, यानी उस जगह की जहां पर सरहदें खत्म हो जाती हैं, जहां एक असीम विस्तार है। हम बात करेंगे मैप रूम में अंतरिक्ष की, और अंतरिक्ष की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि अंतरिक्ष में इन दिनों बड़ी तेजी से एक रेस चल रही है, और यह रेस है अपनी ताकत बनाने की, अपनी ताकत बढ़ाने की। और इस रेस में इस समय एक बड़ा अखाड़ा जम रहा है। वहां पर चीन भी है, रूस भी है, अमेरिका भी है, भारत भी है। और यहां पर चीन की चर्चा इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हम बात कर रहे हैं उस लॉन्ग मार्च C7 रॉकेट के लॉन्च की जो 25 अगस्त को हुआ था, जिसके साथ चीन ने अपनी ड्यूअल टेक्नोलॉजी को नए सिरे से टेस्ट किया है। यानी एक साथ अंतरिक्ष के अंदर 7 सैटेलाइट कैसे लॉन्च किए जा सकते हैं, कितनी जल्दी से जल्दी ये रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं, और साथ ही कितनी जल्दी से ये अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट स्थापित किए जा सकते हैं। चीन के स्टार्टअप लैंड स्पेस के ZUKE-3 रॉकेट को वापस बुलाया गया, यानी ये री एंट्री यूजेबल जो रॉकेट्स होते हैं उनके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। री यूजेबल रॉकेट के मामले में चुनिंदा देशों के फहरिस्त के अंदर चीन अब शामिल हो चुका है। साथ ही अंतरिक्ष स्टेशन पर माइक्रोग्रेविटी के अंदर धान उगाने की भी तैयारी कर रहा है चीन। अपना स्पेस स्टेशन पहले ही लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है। इसके साथ साथ भविष्य में मानव युक्त मिशन की दिशा में भी बड़ी कामयाबी चीन हासिल करना चाहता है। यानी मैन इन स्पेस के लिहाज से चीन की तैयारी बड़ी तेजी से चल रही है, और चीन की इस तैयारी की चर्चा हम इस लिहाज से भी कर रहे हैं क्योंकि चांद पर भी चीन पीछे नहीं रहना चाहता है। और दक्षिणी ध्रुव पर जमे हुए पानी और बर्फ को खोजने की योजना से चीन ने कई रॉकेट लॉन्च किए हैं। चंगाई 7 नाम के मिशन पर तेजी से चीन काम करता हुआ नजर आ रहा है, और ये चांद पर चीन के मिशन की वो तस्वीर है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि 2030 से पहले चांद पर इंसान को उतारने की तैयारी चीन कर रहा है। और चीन के इस रफ्तार की चर्चा को अगर मैं आपको आंकड़ों में बताऊं तो 2024 के अंदर चीन ने करीब करीब 68 स्पेस लॉन्च किए थे। उसके बाद 2025 के अंदर यह आंकड़ा हो गया 97, और 2026 के अंदर यह आंकड़ा अब पहुंच चुका है 140। यानी चीन ने अकेले 2026 के अंदर ही 140 स्पेस लॉन्च कर दिए हैं। चीन का ये नक्शा जरा देखिए, और खास तौर पर ये पीले रंग में चमकते हुए जो इलाके आप देख रहे हैं, ये इलाके बहुत महत्वपूर्ण है। ये इलाके वो हैं जहां पर चीन ने बाकायदा स्पेस जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बड़े बड़े फील्ड्स तैयार किए हैं। वांचुंग में सैटेलाइट लॉन्च की क्षमता को चीन बढ़ा रहा है। ये हाइनान प्रांत के अंदर चीन का वो वांचुंग का इलाका है जो स्पेस पोर्ट के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, यानी स्पेस लॉन्च के लिए चीन ने यहां पर स्पेस पोर्ट बनाया है। इसके अलावा ग्वांगझाउ, जिसे आम तौर पर माना जाता है कि वो जगह जहां पर बड़े बड़े व्यापारिक जो प्रतिष्ठान हैं वो मौजूद हैं, चीन की बड़ी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हैं और लोग सामान खरीदने यहां जाते हैं, लेकिन चीन के स्पेस प्रोग्राम के लिहाज से भी ये ग्वांगझाउ का इलाका बेहद अहमियत रखता है, बहुत महत्वपूर्ण ये इलाका है। इसके अलावा चीन लगातार हाइनान कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च की साइट पर भी काम शुरू कर चुका है, साथ ही सैटेलाइट सुपर फैक्ट्री में ट्रायल के प्रोडक्शन शुरू हो चुके हैं, यानी उसकी भी एक सुपर फैक्ट्री बना रहा है चीन। इस लिहाज से चीन की ये जो सारी पूरी तरतीब है, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो अहमियत रखती है। इस लिहाज से भी अहमियत रखती है कि ग्वांगझाउ के अंदर एरोस्पेस टाउन का काम शुरू कर चुका है चीन, अंतरिक्ष के अंदर वो दबदबा कायम करना चाहता है जिसके जरिए वो धरती के साथ साथ अंतरिक्ष में आसमान में भी अपनी ताकत का दायरा बढ़ा सके। और अब अंतरिक्ष के अखाड़े के बाद एक बार फिर लौटते हैं धरती की राजनीति पर और चर्चा करते हैं राजनीति के खिलाड़ियों की, क्योंकि अब हम सेगमेंट पर पहुंच चुके हैं पावर प्लेयर्स के। और मेरे पास यहां पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ये चार तस्वीरें उन लोगों की है जो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस हफ्ते की सियासत में कहीं ना कहीं इनके बयानों की, इनके कामकाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की, क्योंकि बालेन इस समय एक ऐसी स्थिति में घिरे हुए हैं जहां पर उनके सामने बड़ी चुनौती है। उन्हें यह साबित करना है कि वो नेपाल को संभाल सकते हैं, यानी एक रैपर से राजनेता बने बालेन शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि नेपाल को इस भीषण संकट से कैसे निकाला जाए। फिलहाल सबसे कठिन दौर से, एक अग्नि परीक्षा से इस समय बालेन शाह जूझते हुए नजर आ रहे हैं। आपदा से निपटने की सबसे बड़ी चुनौती बालेन शाह के सामने है। कई विदेशी नागरिक, जिसके अंदर 100 से ज्यादा भारतीय मौजूद हैं, वो भी वहां पर या तो हताहत भी हुए हैं, कई लोग गुमशुदा भी हैं, कई लोगों की तलाश जारी है। एक बड़ी उथल पुथल की स्थिति नेपाल के अंदर नजर आ रही है। सबसे पहले मदद देने की बात भारत की तरफ से की गई, जिसका शुक्रिया बालेन शाह की तरफ से किया गया, और बालेन शाह के इस प्रबंधन के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन पूरी दुनिया की नजर एक और शख्स पर है जो आम तौर पर तस्वीरों में कम नजर आता है, और वो शख्स आपको फौजी वर्दी में नजर आ रहा है। जरा गौर से देखिए, ये शख्स है पाकिस्तान के आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक। ये पाकिस्तान के एनएसए भी हैं और इन्हें आसिम मुनीर का प्रतिस्पर्धी भी माना जाता है। हाल ही में कुवैत के दौरे पर थे और यहां पर तो वो फौजी वर्दी में नजर आ रहे हैं, लेकिन कुवैत में वो सिविलियन कपड़ों के अंदर नजर आए, बाकायदा सूट बूट पहन के गए थे कुवैत में मुलाकात करने के लिए, और वहां जो उन्होंने मुलाकात की उसका असर नजर आया। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, और इस मुलाकात का असर ये था कि कुवैत के साथ पाकिस्तान का एक सुरक्षा समझौता हुआ है। एक और शख्स जो बहुत चर्चा में है वो है नेटली हार। ये नेटली हार इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन्हें इन दिनों माना जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे करीबी हैं, सबसे चहेती बताई जा रही हैं, और इन्हें ये जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, इन्हें ह्यूमन प्रिंटर भी कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन पे इतना भरोसा करते हैं कि हाल ही में तुर्की में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा था तो उन्हें जिस फूड कंटेनर के अंदर CIA ने और साथ ही जो उनकी सीक्रेट सर्विस थी उसने पहुंचाया, तो उनके साथ साथ नेटली हार्प भी थी। कहा जा रहा है कि ह्यूमन प्रिंटर है, और आने वाले समय में नेटली हार्प की भूमिका अमेरिका की राजनीति में बड़ी हो सकती है जब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में। लेकिन इंसानों की चर्चा के साथ साथ चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है मशीन की भी, क्योंकि चीन में बीते दिनों एक रेस आयोजित की गई, एक कॉम्पिटिशन आयोजित की गई जिसे रोबोट ओलंपिक कहा गया, और ये रोबोट ओलंपिक में तियानगोंग अल्ट्रा नाम का एक रोबोट जो है वो नजर आया, और इसने एक रेस में हिस्सा लिया 8.64 सेकंड 100 मीटर की दौड़ के अंदर। ये रिकॉर्ड है, हालांकि ये रिकॉर्ड दर्ज नहीं होगा क्योंकि एक मशीन का रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी ये रिकॉर्ड इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि ये रोबोट जीत इसलिए भी नहीं पाया क्योंकि ये रेस तो पूरी कर गया, पका कर गया, लेकिन रेस पूरी करने के साथ साथ ये औंधे मुंह भी गिर गया। लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा है कि जितनी तेजी से रोबोट सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं इंसानों के लिए और उनके कामकाज के लिए खतरा बनने की तैयारी में जरूर है। पावर प्लेयर में अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसमें हम इंडिया इंपैक्ट को आंकने की कोशिश करते हैं, यानी वो घटनाएं, वो चीजें जो सीधे तौर पर भारत पर असर डालती हैं और दुनिया पर भारत के असर को दिखाती हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एशिया के दौरे पर हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम जो है वो दुनिया के अलग अलग राजधानियों के अंदर बीते दो हफ्तों के दौरान नजर आई। तो इंडिया इंपैक्ट में आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर टीम नरेंद्र मोदी क्या करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 24 से 25 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के NSA अजीत डोवाल चीन की राजधानी बीजिंग में मौजूद थे। चीन के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात हुई और यह मुलाकात इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन 3488 किलोमीटर की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो सीमा है दोनों के बीच जिसका विवाद है, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। विवादित बॉर्डर के कुछ हिस्से जल्दी तय किए जा सके इसको लेकर यह वार्ता चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन NSA बीजिंग में थे तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 23 और 24 अगस्त को रूस की राजधानी मॉस्को में थे। भारत और रूस के बीच में जो व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है उसे कम किया जाए, भारत के लिए विदेशी मुद्रा का नया बाजार खोजा जाए और रूस में भारतीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके, इसकी कोशिश इसकी कवायद भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के दौरे की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। उनका एक एजेंडा था और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की। आर्थिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग रूस के साथ बढ़ाया जा सके। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अमेरिका यात्रा है, अमेरिका और कनाडा दोनों ही जगह पर निर्मला सीतारमण यात्रा करती हुई नजर आ रही हैं, वहां पर चर्चाएं हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं और भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील अटकी हुई है आखिर उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सका है। लगता है अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के साथ में निर्मला सीतारमण की मुलाकात महत्वपूर्ण होगी। ये सारी चीजें भारत की आर्थिक साझेदारी कैसे मजबूत की जा सके दुनिया की जो आर्थिक महाशक्तियां हैं उनके साथ, उस लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। लेकिन एक और यात्रा चर्चा में रही इन दिनों, वो थी जापान के दौरे पर गए थे भारत के वाणिज्य मंत्री जापान और सिंगापुर की यात्रा पर। और ये जो दौरा था जापान का ये कई लिहाज से महत्वपूर्ण था। भारत की नई आर्थिक महाशक्तियों के साथ साझेदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है उसके लिहाज से महत्वपूर्ण था। साथ ही बीते दिनों जापान के साथ भारत का जो आर्थिक कोलैबोरेशन है, भारत का जो आर्थिक सहयोग है उसको मजबूत करने, उसका दायरा बढ़ाने की कोशिश लगातार चल रही है। व्यापार बढ़ाया जाए, निवेश बढ़ाया जाए, तकनीक जापान की, उत्पादन भारत का और ये दोस्ती बन जाए, विन विन पॉसिबिलिटी, विन विन इक्वेशन, यही कोशिश भारत की भी है। और साथ ही भारत की कोशिश है कि किस तरीके से अपना मुद्रा भंडार बढ़ाया जा सके। हाल ही में RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ प्रयोग किए थे, कुछ नई योजनाएं लागू की थी जिनके जरिए भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 729 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। और ये कोशिश और कवायद है भारत का खजाना बढ़ाने की, पॉसिबिलिटी विन विन इक्वेशन, यही कोशिश भारत की भी है। और साथ ही भारत की कोशिश है कि किस तरीके से अपना मुद्रा भंडार बढ़ाया जा सके। हाल ही में RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ प्रयोग किए थे, कुछ नई योजनाएं लागू की थी जिनके

व्यापार बढ़ाया जाए, निवेश बढ़ाया जाए, तकनीक जापान की, उत्पादन भारत का, और ये दोस्ती बन जाए, विन विन पॉसिबिलिटी, विन विन इक्वेशन, यही कोशिश भारत की भी है और साथ ही भारत की कोशिश है कि किस तरीके से अपना मुद्रा भंडार बढ़ाया जा सके। हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ प्रयोग किए थे, कुछ नई योजनाएं लागू की थी जिनके जरिए भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 729 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है और ये कोशिश और कवायद है भारत का खजाना बढ़ाने की। पॉसिबिलिटी विन विन इक्वेशन, यही कोशिश भारत की भी है और साथ ही भारत की कोशिश है कि किस तरीके से अपना मुद्रा भंडार बढ़ाया जा सके। हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ प्रयोग किए थे, कुछ नई योजनाएं लागू की थी जिनके जरिए भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 729 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है और ये कोशिश और कवायद है भारत का खजाना बढ़ाने की हो रहे हैं। साथ ही सवाल खड़े हो रहे हैं त्रिशूली नदी के बहाव से रास्ते में जो गेरोंग शहर है, यानी जो गेरोंग काउंटी है, जो रसुआ गढ़ी का जो आप बॉर्डर पॉइंट देख रहे हैं, ये जो गेट आप देख रहे हैं जो तिब्बत की तरफ है, उसके दूसरी तरफ गेरोंग काउंटी है और दूसरी तरफ रसुआ इलाका है नेपाल का, और इन दोनों इलाकों के बीच में जो गेट बनाया गया था ये ठीक उस मोड़ पर बनाया गया था जहां से नदी मोड़ लेती है और शायद यही वजह थी कि इतनी भीषण बाढ़ आई जिसके अंदर न वो गेट बचा और न ही वो बॉर्डर पॉइंट बचा, लेकिन अपने साथ साथ वो कई जिंदगियों को बहा कर ले गया, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। रसुआ सीमा पर नदियों के संगम पर ही ये गेरोंग पोर्ट बना

0: पर ही ये गेरोंग पोर्ट बनाया गया था, जिसे जियोरोंग पोर्ट भी कहा जाता है। इस जियोरोंग पोर्ट के बह जाने ने न केवल वहां पर तबाही मचाई बल्कि कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं जो नेपाल और चीन की सीमा पर प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और साथ ही ये पूरा सिस्टम हिमालयन सिस्टम जो है वो जुड़ा हुआ है, यानी तिब्बत से पानी नीचे नेपाल में आता है और नेपाल से पानी फिर भारत के अंदर आता है, और इसलिए गंडक का सिस्टम, कोसी का सिस्टम, ये जो रिवर बेसिन सिस्टम है, ये आपस में जुड़े हुए हैं और इसलिए भारत की चिंताएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नेपाल के इलाकों में तेज आते नदी के बहाव ने सारी चीजों को रौंद डाला, वहां पर तबाही का जो मंजर खड़ा किया है वो न केवल इस पूरे इलाके के लिए बल्कि हिमालय की सेहत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रहा है, जिन पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। क्योंकि न केवल धरती पर तापमान का पारा लगातार बढ़ रहा है बल्कि ये जलवायु परिवर्तन का जो इक्वेशन है, जो जलवायु परिवर्तन की स्थिति है, वो काफी हद तक तय करती है कि किस लिहाज से इस पूरे इलाके के अंदर सियासत भी करवट लेगी। तो आज तक के इस शो पावर प्ले में फिलहाल इतना ही। अगले रविवार को हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे नई लीड स्टोरी के साथ, नए पावर प्लेयर्स को लेकर, नए संकेतों के मायने समझाने को लेकर। कि तब तक देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत की।
2: भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई,
3: पलट गई भाई, गई डूब गई। ये
2: तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब हैं कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। संकट बड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है। कई लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रेन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसे ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। चित्रकूट से अखिलेश कुमार, सोनकर, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ये बुक देखिए आपकी, इसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई, हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए, हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर। यूरेनियम समेत कई अहम समझौते। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुस्लिम वाले बैन पर बैनबाजी तेज। मौलाना बोले, अब जमीन पर भी देखिए असर। विपक्ष कवार, विदेश में समझदारी की बातें, देश में चुप्पी क्यों। यूपी की लड़ाई, भ्रष्टाचार पर गरमाए योगी के जेपी। एनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को सामने वो लेकर आए, कहा इन लोगों ने पैसा खाया। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा, फिर से उफान पर त्रिशूली नदी, तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 768 तक पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, 23 साल का रिकॉर्ड टूटा, शहर बना झील। सड़कों पर दौड़ी नावें, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: राजीव ढौंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रमाणिक नंबर वन शो दंगल। यूपी में 2027 की चुनावी जंग अभी दूर है, लेकिन सियासत का दंगल अभी से सच चुका है और इस दंगल में सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है भ्रष्टाचार का मुद्दा। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर JPNIC से लेकर एक्सप्रेस वे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है जो पलटवार करते हुए अखिलेश सरकार के दौर के खर्च को उनके दौर की योजनाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और आज जो आरोप लगाए जा रहे हैं कल वही घोषणा पत्र का हिस्सा भी बन सकते हैं। आज जिस योजना पर सवाल उठ रहा है कल उसी पर वोट भी मांगा या रोका जा सकता है। लोकतंत्र में सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा चुनावों में जनता का भरोसा होता है और यूपी की राजनीति में 2027 तक यह भरोसा किसके पक्ष में जाता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ योगी सरकार अपने काम और विकास को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरना चाहेगी तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव सरकार की कमियों, कथित भ्रष्टाचार और जवाबदेही के सवालों को चुनावी हथियार बनाने की कोशिश करेंगे। 2027 के रण में भ्रष्टाचार का मुद्दा किसके लिए हथियार बनेगा और किसे पहुंचाएगा सबसे बड़ी चोट, आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी JPNIC। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर JPNIC को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
2: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। JPNIC बीजेपी ने जेपी बेच दिया और मैंने कैलकुलेशन बताया, पार्किंग से ये पैसा कमा लेंगे इतना। अभी तो कैफे रेस्टोरेंट की तरफ मैं नहीं गया हूं, कैफे से ही पैसा कमा लेंगे।
1: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ JPNIC के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़, इसके बावजूद काम अधूरा रहा। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया
3: कि 200 करोड़ रुपए के कार्य में 864 करोड़ खर्च कर दिए और तब भी अधूरा। आज इन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और कहा कि सरकार के पैसे से बने हुए इस JPNIC को वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाएगी, उसमें होटल भी रहेगा, जिम भी रहेगा, क्लब भी रहेगा, यानी सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी। जिसमें कौन है? उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं और भी तमाम इनके सागिर्द हैं।
1: JPNIC के बाद बात पहुंचती है सड़क और एक्सप्रेसवे तक। अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं।
2: कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे जो बना है, बताइए 4000 करोड़ से ज्यादा महंगा और 63 किलोमीटर का केवल हाईवे है। चलो दूसरे जिलों के सड़कों पे तो कुछ गोलमाल कर लिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी सड़क पे ही गोलमाल कर लिया। जो गोरखपुर लिंक बना है 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक है, 7000 करोड़ का जो फोर लेन है, सोचिए 7000 करोड़ का।
1: वहीं बीजेपी का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है।
3: 2017 के पहले भी तो राज्य में सरकार थी, राज्य भी वही है, नौकरशाही भी वही है, लेकिन तब न विकास था, न सुरक्षा थी, न सम्मान था, न रोजगार था, न गरीब के लिए आवास था, न गरीब के घर में शौचालय था, न किसी व्यक्ति को रसोई गैस का कनेक्शन मिल पाता था, न बिजली आती थी, न सड़क थी, स्कूल नकल के अड्डे बन गए थे और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की जर्जर हालत उस समय की सरकारों की जर्जरता का ही प्रमाण प्रस्तुत करता था।
1: भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
2: हम तो बचपन से ये देखते आए हैं, पूरा देश जानता है, सीता माँ को चुराने वाला भेष बदल करके आया था। सीता माँ को भी भेष बदल करके कोई आया था, इसलिए सावधान रहिए ऐसे लोगों से। और मंदिर के बाहर हम लोग देखते हैं दान मांगने वाले लोग, भिक्षा मांगने वाले लोग बड़ी संख्या में बैठते हैं, लेकिन कभी भी भिखारी भी मंदिर के अंदर चोरी नहीं करता। मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था, राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है, जिसको लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
3: बहन और भाइयों, अच्छी सरकार होती है बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के सबको लाभ मिलता है। ये रसोईया तो सब जाति के हैं, शिक्षा मित्र भी सभी जातियों के हैं, अनुदेशक भी सभी जातियों के हैं, जिन महापुरुषों का स्मारक बनाए जा रहे हैं ये सभी जातियों के हैं। कांग्रेस की पीड़ा तो है, अयोध्या में राम मंदिर क्यों बन गया? क्योंकि ये तो कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यहाँ सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं, और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
0: दंगल की शुरुआत करने से पहले अब उन सवालों पर डालते हैं नजर जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहेगी केंद्र। सवाल नंबर एक, लखनऊ में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का आखिर सच क्या है? सवाल नंबर दो, जेपीएनआईसी के मुद्दे को अखिलेश यादव जोर शोर से आखिर क्यों उठा रहे हैं? और सवाल नंबर तीन, क्या भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमे जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे ईशान त्यागी, सुभासपा से हमारे साथ सुभासपा नेता पीयूष मिश्रा जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक रोहित सिंह हमारे साथ हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे, जेपीएनआईसी बेचना आपकी उपलब्धि तो नहीं बल्कि आपकी नाकामी को दर्शा रहा है, यह आप पर आरोप लग रहा है कि जहां 80% पैसा खर्च हो गया था आम जनता का, महज 20% पैसा आपको खर्च करना था, वो आपने नहीं किया और उसके बाद आपने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। मतलब इतनी मेहनत, आम आदमी के टैक्स का पैसा, और उसके बाद जो भी मलाई खाएगी वो एक प्राइवेट कंपनी खाएगी।
4: देखिए राजीव जी, महत्वपूर्ण यह है कि जेपीएनआईसी बेचा गया है, यह बात झूठ बार बार फैलाने की चेष्टा की जा रही है। जेपीएनआईसी बेचा नहीं गया है, बल्कि संचालन के लिए और रखरखाव के लिए एक निजी संस्था को लीज पर दिया गया है, और लीज पर देने से उत्तर प्रदेश की सरकार को उस रकम की भरपाई हो रही है जो रकम अखिलेश यादव की सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई, कोई उनके अपनी व्यक्तिगत कमाई नहीं है, जिसको व्यक्तिगत एक क्लब के तौर पर विकसित करने की चेष्टा कर रहे थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों को उस क्लब का मेंबर बनाने की चेष्टा कर रहे थे। 800 करोड़ रुपए की कम उसमें खर्च कर दिया था उत्तर प्रदेश सरकार का, 18 महीने में प्रोजेक्ट को पूरा करना था। प्राथमिक लागत उसकी जो प्रारंभिक डीपीआर बना था वो 200 करोड़ का था, लागत बढ़ते बढ़ते 800 करोड़ तक पहुंच गई, उसके बावजूद प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो पाया। लगभग 200-250 करोड़ रुपए खर्च करने की अभी भी आवश्यकता महसूस हो रही थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने निर्णय लिया कि इसको एक निजी संस्था को चलाने के लिए और रखरखाव के लिए लीज पर दिया जाना चाहिए, ताकि वो रकम की वापसी हो जाए जो रकम अखिलेश यादव सरकार ने जनता की गाड़ी कमाई उसमें लगा देने का काम किया था। महत्वपूर्ण यह है कि जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर, जिन्होंने अपना जीवन बहुत सादगी के साथ जिया, जो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के नायक रहे, उनके नाम पर एक इतने बड़े भ्रष्टाचार का जीवंत उदाहरण खड़ा कर देने का काम अखिलेश यादव ने किया। क्या इसकी सजा अखिलेश यादव को नहीं मिलनी चाहिए? क्या है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय नारायण केंद्र में, इस जेपीएनआईसी केंद्र में क्लब की व्यवस्था है, वहां अच्छे सभागार बने हुए हैं, वहां हेलीकॉप्टर उससे उतरने की व्यवस्था है, बहुत अच्छा रेस्तरां है, ये सारी व्यवस्थाएं जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर? आप जयप्रकाश नारायण जी के नाम को भी अपमानित करने की चेष्टा कर रहे थे कि उनके नाम पर एक भ्रष्टाचार की आपने बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके रखी। निश्चित तौर पर जनता के बीच में जब जब जेपीएनआईसी की चर्चा होगी, अखिलेश यादव के कार्यकाल के उस भ्रष्टाचार को हम जीवंत लेकर के सामने आएंगे। और ये जेपीएनआईसी के बगल में
5: तो फिर अगर रिवर फ्रंट आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, पार्टी की नेता तो दूसरा टर्म चल रहा है, वो भी अब अंत में ही है, 27 में चुनाव भी है, क्या कार्रवाई आपने की? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो किस तरह का भ्रष्टाचार उन्होंने किया?
4: देखिए राजीव, कुछ कुछ मामले ऐसे होते हैं ना जो इलीगल नहीं होते, इमोरल होते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें जानबूझ करके उसको लापरवाही से, उपेक्षापूर्वक कार्रवाई से उसकी टाइमलाइन को बढ़ा करके, उसकी लागत मूल्य को बढ़ा करके, देखिए भ्रष्टाचार करने के ऐसे तरीके होते हैं कि उसमें कोई फंसे ना, उसमें कोई इस बात के लिए जिम्मेदार ना बनाया जाए, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई उसमें जरूर लग जाए। जेपीएनआईसी में इसी प्रकार के प्रयत्न किए गए, ये ठीक उसी प्रकार के प्रयत्न है जैसे जानबूझ करके एक्सप्रेस वे के अलाइनमेंट को चेंज कर दिया जाता है। अब इलीगल तो नहीं होता है, अलाइनमेंट चेंज कर देना, पहले से जानकारी दे देना, ये इलीगल तो नहीं होता है, लेकिन इमोरल जरूर होता है। आप लाभान्वित करना चाहते हैं अपने लोगों को, उपकृत करना चाहते हैं अपने लोगों को, यही काम समाजवादी पार्टी ने जानबूझ करके बहुत साफगोई से किया कि उसमें कोई भ्रष्टाचार में रंगे हाथ ना पकड़ा जाए, किसी की सीधी जवाबदेही तय ना हो जाए, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना कि 200 करोड़ से जो डीपीआर बनता है वो 800 करोड़ खर्च हो जाते हैं और उसके बावजूद वो काम पूरा नहीं होता है। क्या जनता के पैसे की इस तरह से भंडरबांट होगी? क्या जनता के पैसे का इस प्रकार से दोहन होगा? यह नहीं स्वीकार किया जा सकता है, और इसीलिए जनता के उस पैसे को रिकवर करने के लिए हमने एक निजी संस्था को उसको संचालन के लिए दिया है।
5: आपके तरह अमित जी में अब आप आइए चर्चा में, कि उसको आप बताइए, सरकार कह रही है कि लीज पर इसलिए दिया है ताकि हम जो घाटा इसमें हुआ है उसकी भरपाई भी कर सकें, जो आने वाला जो भी इसमें खर्च लगने वाला है वो भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। लेकिन आप ये बताइए, 200 करोड़ की लागत थी, 864 करोड़ के आसपास एक कैसे खर्चा पहुंच गया? मतलब 200 करोड़ से जैसे ही ये लिमिट एक्सीड हो रही थी तो आपको तो काम रोक देना चाहिए था तभी।
6: देखिए मुख्यमंत्री जी अपना गला बहुत फाड़ फाड़ के माननीय अखिलेश यादव जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। राजीव भाई, राकेश भाई के पास ये अथॉरिटी नहीं है वो इस बात का जवाब दे दें कि जेपीएनआईसी जो बनाने वाला था उसका बिल्डर, उसका आर्किटेक्ट, वो आज भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। मुख्यमंत्री जी उनके घर पे आलू पूरी की सब्जी खाने जाते हैं, हलवा खाने जाते हैं, तो जो मेन जिम्मेदार लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है और राकेश भाई तो उस आदमी का नाम नहीं ले सकते। दूसरी बात, जेपी नारायण की
5: आप ले लीजिए, अमित जी,
6: जेपी मोमेंट में जेपी की आस्तीन में छिप कर भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी समाजवाद के रास्ते पर चलेगी। हमारा ये कहना है कि एक ऐसा शाहकार बिल्डिंग जहां पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए, वो इस पूरे बिल्डिंग में सीधे आकर पूरा बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। नंबर टू, जो कुछ इसके अंदर बना हुआ, लाइब्रेरीज, ऑडिटोरियम, होटल्स के कमरे, सरकार चाहती तो उसके 20 बड़े मंत्रालय इस जेपी नारायण सेंटर में शिफ्ट हो सकते हैं। देश भर के यूपी के बच्चे आए, वो देखें कि जेपी ने संपूर्ण क्रांति में क्या बात बोली, उसका पूरा जो पूरा एक अंदर जो पूरा इमेजिनेशन है आजादी की लड़ाई से लेकर जेपी तक का, उसका विवरण है वहां पर। तीसरी बात ये है कि आपने कहा कि साहब इतना लागत था, इतना लागत पहुंच गया। आपको मैं बताऊं, जौनपुर रिवर फ्रंट और एसटीपी का पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है, 264 करोड़ का प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था 2017 में उनके जो विधायक हैं जौनपुर सदर के, आज वो 850 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। शाही पुल को जौनपुर के उसको मोड़ा गया, जो गोमती नदी गोमती जी है वहां पर, पूरी शहर की नालियां सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम जिम्मेदार थे, आप संजय सेठ को जेल भेजते, लेकिन संजय सेठ के घर पे मुख्यमंत्री जी जाके आलू पूरी की दावत खा रहे हैं और राकेश भाई को आलू पूरी मिली कि नहीं मिली मुझे नहीं मालूम। तो सीधी सी बात यह है कि समाजवादी सरकार आने के बाद ये जो जौनपुर रिवरफ्रंट एसटीपी का जो घोटाला है, जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चोर है, समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, 264 करोड़ का एसटीपी का पावर प्लांट और रिवरफ्रंट आपने 850 करोड़ पहुंचाया।
5: अच्छा अमित जी, भी बता दीजिए कि अगर मान लीजिए आप सत्ता में आ जाते हैं तो आप इस लीज का क्या करेंगे, इसको बने रहने देंगे या खत्म करवाएंगे?
6: हमारा ये कहना है कि जब आप कुछ बना नहीं सकते तो आपको बेचने का कोई अधिकार नहीं। हम चाहते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग में एक ऐसी भारत की नया बिल्डिंग है, आप उसमें 25 मंत्रालय शिफ्ट कर दो। क्यों आपको किसी को फ्री फंड में इसको देना था? आप बड़े बड़े पूंजीपतियों के 100-200 करोड़ में आप उसके कर्जे माफ कर दे रहे हो। एक गरीब लोगों का, मिडिल क्लास के लोगों का बैंक अगर 5 लाख रुपए का कर्जा हो जाए उसको फांसी लगवा देते हैं भारतीय जनता पार्टी और बैंक के लोग, लेकिन आप पैसे माफ कर रहे हैं। आप इतनी बड़ी बिल्डिंग, आप महल बेच रहे हैं, आप राजमहल बेच रहे हैं, आप किले बेच रहे हैं। एक किला बना सकते हैं आप एक जेपीएनआईसी का बदल आप बना सकते हैं, तो आपको यह अधिकार नहीं।
5: इसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा, ईशान और दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। इसका राकेश जी आप जवाब दीजिए कि लीज पर देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप दूसरे काम भी कर सकते हैं, बशर्ते आप करना चाहते हैं। क्या ये रियलिटी नहीं है? क्या आप नहीं चाहते थे कि जेपीएनआईसी का क्रेडिट समाजवादी पार्टी को मिले?
4: देखिए राजीव, महत्वपूर्ण यह है कि मुझे याद आता है जब मायावती जी ने एक अंबेडकर स्मारक के नाम से एक बिल्डिंग इसी जेपीएनआईसी के बहुत नजदीक ही बनाई है, और अंबेडकर स्मारक जब बना था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर तो मुलायम सिंह यादव ने उसको अय्यासी का अड्डा कहा था। यानी आपकी सोच थी कि इस तरह के भव्य स्मारक नहीं बनने चाहिए, भले ही वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बन रहे हो। फिर जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर आपने एक क्लब संस्कृति का इस बिल्डिंग को बनाने की आवश्यकता क्या थी? एक क्या है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में? क्या गरीबों गरीब बच्चों की वहां पढ़ाई होने वाली है? पिछड़े बच्चों की वहां पढ़ाई होने वाली है? क्या करने वाले थे वहां? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता को जानना चाहिए कि आखिरकार एक अच्छे क्लब के तौर पर, एक अच्छा रेस्तरा जहां पर हो, जहां हेलीकॉप्टर से उतर सके, अपने परिवार की मिल्कियत के तौर पर आपने आजीवन मेंबर उसमें पहले से ही घोषित कर दिए थे कि डिंपल यादव वहां होंगे, राजेंद्र चौधरी वहां होंगे, अखिलेश यादव उसके मेंबर होंगे, अपने परिवार का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर आप जेपीएनआईसी का निर्माण कर रहे थे। सरकार का काम यह नहीं है, और इसीलिए सरकार ने इस काम को करने के लिए निजी संस्था को अनुबंध किया। लेकिन
5: निजी संस्था को आपने देखा, रियलिटी तो ये भी है ना कि वो निजी संस्था भी तो मेंबरशिप लेगी, वो भी तो मोटा मोटा पैसा लेगी आम आदमी से। आम आदमी तो खैर जा नहीं पाएगा, खास आदमी कह सकते हैं।
4: नहीं, सरकार कम से कम आम आदमी का पैसा वापस तो लौट के आएगा। ये जो सरकार का 864 करोड़ रुपए फूंक दिया गया था, ये 864 करोड़ रुपए वापस तो लौट करके आएगा ना?
5: ठीक है, मैं अमित जा रहा हूँ, लेकिन मैं ईशान का एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ इस बीच में। ठीक है,
4: इसके पैसे से निजी मौज मस्ती के लिए इस तरह की कोई जगह नहीं
5: है। ईशान ये बताइए कि सरकार करे कि हमारा बड़ा स्मार्ट डिसीजन है कि हम पैसा बचाना चाहते हैं, खर्चा भी कम होगा और सरकार अब कमाएगी भी, इससे एलडीए भी कमाएगा। क्या आप मानते हैं कि एक स्मार्ट डिसीजन है ये योगी सरकार का?
6: नहीं नहीं, देखिए इसमें सीधे सीधे जिन लोगों ने इसको खरीदा है,
7: राजीव जी देखिए, केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार, जिन लोगों ने एक भी इंस्टीट्यूशन स्थापित नहीं किया, जिन लोगों ने एक भी ईंट नहीं रखी, जिन लोगों ने एक भी निर्माण कार्य नहीं किया बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का, वो सबको बेच रही है। आप देखिए, केंद्र सरकार एयरपोर्ट्स बेच रही है, पोर्ट्स बेच रही है, एलआईसी को बेच रही है, इसरो को प्राइवेटाइज कर रही है, डीआरडीओ को प्राइवेटाइज कर रही है, ओएनजीसी को प्राइवेटाइज कर रही है। इससे नुकसान किसको हो रहा है? देश के आम नागरिक को हो रहा है, देश के युवाओं को हो रहा है। उसी राह पे उत्तर प्रदेश की सरकार भी चल पड़ी है, योगी आदित्यनाथ जी भी चल पड़े हैं। जिस तरीके से मोदी जी एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी साथ से एक कदम आगे जाके 7000 करोड़ रुपए गाड़ी कमाई के उत्तर प्रदेश की जनता के अपनी एडवर्टाइजिंग में खर्च करे। रही बात देखिए करप्शन की, अगर ये लोग बात करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी जब जीरो करप्शन की बात करती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो खुद गेरुआ वस्त्रधारी हैं, एक मठ के मठाधीश भी हैं, और वो जब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन मैं एक केस का जिक्र करके आपको बताता हूं कि किस तरह की जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन भारतीय जनता पार्टी के राज में है। मनीष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक केस था, हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी 2023 में। हाईकोर्ट ने दिसंबर नवंबर में बोला कि एक हाई पावर्ड कमेटी बननी चाहिए जिसका चीफ सेक्रेटरी की देखरेख में ये बननी चाहिए, जो करप्शन के जो केसेस हैं, जो फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस हैं, उनको मैनेज करेगी, उनको जल्दी से उनका निपटारा करने का काम करेगी और सजा करवाएगी। लेकिन और उसमें टाइम फ्रेम देता है हाईकोर्ट 6 महीने का। उत्तर प्रदेश की सरकार को 2 साल लग जाते हैं वो हाई पावर्ड कमेटी बनाने में, वो भी तब जब हाईकोर्ट किसी दूसरे केस में सुनवाई कर रहा होता है और वो हाई पावर्ड कमेटी के बारे में पूछता है तो पता चलता है साहब वो हाई पावर्ड कमेटी तो बनी नहीं, वो हाई पावर्ड कमेटी दिसंबर के 2023 में जाके बनी, ये तो इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। दूसरी बात भाई, ये बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की और ये बात करते हैं करप्शन की। सबसे बड़ा करप्शन अगर किसी ने किया है, 100 करोड़ हिंदुओं को ठगने का अगर काम किसी ने किया है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में इन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी करके, जमीन के घोटाले करके, वहां पर चढ़ावा चोरी करके इन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं को ठगने का काम किया। इससे बड़ा करप्शन का केस कोई नहीं हो सकता। अच्छा अब बात करें, चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ये लोग बात करते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे में 1000 करोड़ रुपए बनाया, आपने बनाया था, वो तो एक बारिश नहीं झेल पाया, वो तो ढह गया। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे आप देख लीजिए उसकी क्या हालत है, आप देख लीजिए। अगर आप चलिए बात करते हैं बच्चों की, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं सुन रहा था, मिड डे मील्स में राजीव जी किस तरीके का खाना मिल रहा है बच्चों के, नमक और आटा, नमक और रोटी मिल रही है, पानी जैसी सब्जी मिल रही है, क्या आप अपने बच्चे को ये सब खिलवा पाएंगे जो आज देश के जो गरीब बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के जो गरीब बच्चे हैं वो खा रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, बालू माफिया पे आइए आप, बालू माफिया को उत्तर प्रदेश की सरकार आज तक नहीं रोक पाई। एनजीटी ने अभी कुछ दिन पहले ही, 10 दिन पहले ही नोएडा, बागपत और गाजियाबाद के जो एसएसपी को और कमिश्नर्स को आदेश दिया है कि इस पे आप बताइए कि जो यमुना में बालू माफिया है उसको आप क्यों नहीं रोक पा रहे, और गंगा के बालू माफिया की तो बात ही मत करिए, बुरे हाल।
5: ईशान आपके पास ऐसा लग रहा है कि बड़ी लंबी सूची है, मैं आपके पास अब आता हूं, मैं पीयूष जी आपके पास, अच्छा कंप्लीट करने जल्दी से,
7: बस एक आखिरी डेटा कोट कर देता हूं। जल शक्ति मंत्रालय जो मंत्री हैं उन्होंने राज्यसभा में यह डेटा कोट किया है कि जो करप्शन के केसेस हैं जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, पूरे देश में 17,000 केसेस हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में 14,264 केसेस हैं, यानी कि 85% केसेस जो करप्शन के हैं वो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं पिछले 10 सालों में। ये बताइए आप कि आपने इन पे क्या कार्रवाई करी, ये बताइए कि आपने प्रभु श्री राम के मंदिर में जिन्होंने चंदा चोरी किया, अनिल मिश्रा से लेके चंपत राय से लेके नृपेंद्र मिश्रा पे,
5: ये पॉइंट आ गया। मैं पीयूष जी आपके पास लौटने से पहले, चूंकि सवाल बीजेपी से है और एक लंबी सूची उन्होंने गिनाई है, मैं चाहता हूं राकेश जी इस पर आप जवाब दें। क्या आप तो कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ, और आप देखिए कांग्रेस कितनी लंबी सूची लेकर आए हैं आज।
4: कांग्रेस की सूची मैंने देखी, कांग्रेस ने बता दिया कि रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बेल बेच दिया, कई सारी चीजें बता दी। खरीदार कौन है ये नहीं बताया, उसकी कीमत क्या लगाई ये नहीं बताया। देश की इस तरह की संपत्तियों को बेचने का ये जो बेशर्मी भरा बयान देते हैं ना कांग्रेस पार्टी के लोग, आकर के कुछ भी बोल देंगे चैनल पर, किसी को कुछ कोई भी आरोप लगा देंगे, आपके काम चल जाएगा। बार बार चंदा चोरी की बात करते हैं, वो कांग्रेसी बात कर रहे हैं जिनके नेता अब तक प्रभु रामलला का दर्शन करने नहीं गए, जिनके कलेजे पर सांप लौटते थे कि कैसे प्रभु रामलला का मंदिर बनने ना पाए, हर प्रकार के प्रयत्न किए, जल्दी सुनवाई ना होने पाए, कपिल सिब्बल को खड़ा कर दिया इसलिए कि राम मंदिर की जल्दी सुनवाई ना होने दे। उन कारसेवकों जिन्होंने अपना बलिदान किया है, उन कारसेवकों पर ये अत्याचार आरोप लगाने का काम करते हैं कि उन्होंने चंदा चोरी कर ली, क्योंकि किसी भी प्रयागराज से ये प्रयत्न करते हैं कि कैसे आस्था पर चोट पहुंचाई जा सके, कैसे प्रभु राम के मंदिर को विवाद के घेरे में लाया जा सके, लेकिन होने वाला नहीं है। राकेश के मंदिर में और
5: अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने 4,000 करोड़ खर्च कर दिए 63 किलोमीटर के लिए, हर तरफ गोलमाल है। वो कह रहे हैं गोरखपुर लिंक में आपने 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, यहाँ भी गोलमाल है।
4: नहीं, देखिए अखिलेश यादव पहले अपने डेटा को दुरुस्त करें। उत्तर प्रदेश ने आज लगातार एक्सप्रेसवे बना करके और पूरे देश भर के कुल एक्सप्रेसवे का 55% हिस्सा देने का काम किया है, और जो लोग बार बार ये आरोप लगा रहे ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सरकमह में गड्ढे हो गए, उनको मुझे लगता है कि अपने कार्यकाल की इस तस्वीर को जरूर देखना चाहिए। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तस्वीर है, ये उद्घाटन होने के तुरंत बाद 50 फीट गड्ढे में गई हुई एसयूवी की फोटो है, और अभी भी कोई इंटरनेट पर तलाशना चाहेगा ये फोटो सबको दिखाई पड़ जाएगी कि कैसे 50 फीट तक गड्ढे में आगरा एक्सप्रेसवे पर उनकी ये गाड़ी चली गई थी। अपने कार्यकाल को याद करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
5: 30 सेकंड में आपको उसके बाद पूरा समय दूंगा, पीयूष जी के पास भी जाने, लेकिन इस पर आप रिप्लाई जरूर दें कि आप अपने समय के
4: काम करेंगे उसी पर आरोप
5: भी याद रखें। वो कह रहे हैं समय क्या आरोप क्या लगेगा
6: राजीव जी। मैं देखिए राजीव, बहुत छोटी बात मैं कहना चाहता हूं। इनके जो शाहकार हैं, जब आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा 500 बेड का 100 सीटेड, अखिलेश यादव जी ने बहुत ही विजनरी प्रोजेक्ट जौनपुर को वहां का मेडिकल कॉलेज दिया, चलिए आपने भाजपा के नेता के नाम पे कर लिया, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि 550 करोड़ का 5-स्टार नुमा, मतलब जेपी एनआईसी का 3 गुना बड़ा हॉस्पिटल सरकारी जौनपुर को दिया गया, लेकिन इनका नकारा विधायक, इनका नकारा भारतीय जनता पार्टी की जौनपुर की पूरी पूरी पूरी जो भी इनकी तिगड़ी है वहां पे, उन्होंने मिलके पूरे मेडिकल कॉलेज को बर्बाद कर दिया। आप जानते हैं एनेस्थीसिया से लेकर रेडियोलॉजी फॉरेंसिक का एकेडमिक नहीं है, 100 बच्चे वहां से पास होके आज वो देश विदेश में जाके लोगों की पता नहीं क्या मदद कर रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। उनका बड़ा जिम्मा नहीं है, जिम्मा सरकार का था। तो कोई भी आप प्रोजेक्ट ले लीजिए, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज 550 करोड़ का, राकेश त्रिपाठी भाई तो कुछ कह भी नहीं सकते, देखिए वो पॉइंट पे नहीं आ रहे। मैंने पूछा कि जेपी एनआईसी का कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार आर्किटेक्ट किस पार्टी में, नाम बता दीजिए, सिर्फ नाम बता दे। क्या मुख्यमंत्री जी उनके यहां दावत खाने नहीं जाते हैं? मुख्यमंत्री जी दावत खाने जाते हैं, जिसको ये अखिलेश जी भ्रष्टाचारी हो गए और जिसके यहां पूरी हलवा लौकी की सब्जी खा रहे हैं, उसके यहां आपको भ्रष्टाचार समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आपकी पार्टी में चला गया तो वो आपके लिए देवता हो गया, क्योंकि माल आ गया, माल आए, बर्बाद कर दो प्रोजेक्ट, जो भी सरकारी चीजें अखिलेश जी ने बनाई थी उसे बेच दो। इकाना जब बना क्यों नहीं बेचा इकाना आपने? अटल जी का नाम चिपका दिया, चलिए अटल जी के नाम से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी का जो कार्यालय है विधानसभा के सामने लोक भवन में आप जाके बैठते हो, अटल जी की प्रतिमा लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेपी एनआईसी को आपने बेचकर जिन लोगों को दिया है,
5: ठीक है,
6: 60 गांठ है भारतीय जनता पार्टी की।
5: मैं इस पर जवाब ले लूंगा, ठीक है, इस पर मैं राकेश जी से जवाब दूंगा, लेकिन पीयूष जी के, मैं राकेश जी अभी थोड़ा सा, क्योंकि उन मेहमानों के पास मैं बिल्कुल नहीं गया, बहुत धीरे से उनके पास, यार उनका रिएक्शन भी आना जरूरी है। पीयूष जी, मतलब आपकी पार्टी पिछड़ों, गरीबों, वंचितों की बात करते, लेकिन यहाँ तो सरकारी संपत्ति का निजीकरण हो रहा है और आपको इस पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है?
8: नहीं राजीव जी, मैं आपको स्पष्ट करूं कि जो जेपी एनआईसी का जो प्रकरण है, ये जैसा कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा देती है, वही परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक इन्होंने किला और महल बना के रखा था, जिसपे राकेश जी ने स्पष्ट किया कि कौन कौन मेंबर होता, कौन कौन सदस्य होता, इन्हीं के पीडीए जो हैं परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग, उन्हीं सबको घुसेड़ रखा था। और आपको अच्छे से याद होगा राजीव जी कि एक घोटाला हुआ था, रिवर फ्रंट घोटाला, जिसकी जांचें अभी चल रही हैं, जिसपे गिड़गिड़ाते हुए आए दिन में समाजवादी पार्टी के लोग और बड़े बड़े नेता जो इनके राष्ट्रीय महासचिव जो है वो पाए जाते हैं गिड़गिड़ाते हुए। तो ये समाजवादी पार्टी, भाई साहब अमीक भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा तो अमीक भाई आपको जौनपुर से विधायकी लड़नी है, मुझे जानकारी है, आप जौनपुर के लिए इतने लालायित हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, जरा सब्र रखें अमीक भाई। अमीक भाई आपको जौनपुर में लालायित इतना मत हो, जौनपुर से आपको विधायकी लड़नी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कृपया मुझे भी सुनने का कष्ट कर ले। तो ये जो 200 करोड़ से 800 करोड़ का जो ये रेवड़ी और चूरन बांटा गया, जिसपे ये इनके रिवर फ्रंट घोटाले के तथा कथित ठेकेदार लोग मिट्टी पाटने से लेकर टाइल लगाने का और इंटीरियर करने का काम कर रहे थे, तो जो इस सब पे जो पेमेंट पे रोक लगी ना, इन सपाइयों के छातियों पर सांप लौटने का कार्य कर गया। और वो ऐसे ऐसे नेता लोग इनके थे जो रिवर फ्रंट घोटाले का इतना घोटाला खाए थे और उसको 200 करोड़ से 800 करोड़ तक का बजट पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। तो अमित भाई इसको भी जरा ध्यान रखे कि 200 से 800 करोड़ रुपए का बजट कैसे पहुंचा। मुझे पता है कि यह सब आपके पेट में दर्द होने, यह सब लाजमी है और आपको जौनपुर के लिए चुनाव लड़ना है, तो आपके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और आप विधायक बने जरूर बने, लेकिन सीट का चुनाव सही करिएगा, क्योंकि जौनपुर के माननीय सांसद जो हैं आजकल, वो कहीं पे कहां निगाहें और निशाना रख रहे हैं, पता लगे वो खुद ही ना टूट के चले जाए। और जिस जौनपुर के मेडिकल कॉलेज की आप दुहाई दे रहे हैं, सांसद जी वो भी थे वहां, थोड़ा आप अपना हिस्ट्री चेक करिए और जौनपुर का पूरा इतिहास आप खगाल के देखिए, कॉलेज का कहीं ना कहीं आपके जो तथाकथित आज के सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, उनकी भी संलिप्तता मिलेगी, उन्होंने उन्नतीकरण के लिए आज तक क्या किया, और जो परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपने जो ये ताबूत खड़ा किया था जेपीएनआईसी का,
5: उनको
8: लीज पर देकर उसके पैसे को पूरा रिकवर करने का कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जो अब इस 30 साल की लीज पे जाके जिसकी भरपाई भाजपा सरकार कराएगी और सिपाहियों के जो सीने पर सांप जो चल रहे हैं उसके दर्द से राहत मिलेगा।
5: ठीक है रोहित, रोहित जी जिस प्रोजेक्ट पर 80% आम आदमी का पैसा खर्च हो गया है, मतलब उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा खर्च हो गया है, क्या आपको नहीं लगता कि उसको लीज पर दे देना फायदे से ज्यादा नुकसान का सौदा लगता है? 20% और खर्च कर देते फिनिशिंग।
9: धोंदियाल जी, धोंदियाल जी, पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश के जो अगुवा हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी, इनको एक बात स्पष्ट रूप से समझना होगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और राज नारायण जी जैसे समाजवादी पुरोधाओं के आत्मा को भी इन्होंने तृप्ति देने का काम नहीं किया। जयप्रकाश नारायण जी ने कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया, परिवारवाद के खिलाफ संघर्ष किया, और अखिलेश यादव जी कांग्रेस के चरणों में जाकर समर्पित हो गए और अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को पीडीए बना दिया, पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश। एक विषय तो ये हो गया। अब आप आइए जयप्रकाश नारायण जी के संदर्भ में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को देश का सर्वोच्च सम्मान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 1999 में देने का काम किया, और समाजवादी पार्टी के अगुवा श्रीमान अखिलेश यादव जी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के स्मृति में दिल्ली लखनऊ के प्रतिष्ठित इलाके में जो बिल्डिंग बनवाने का काम किया, जिसमें लूटपतार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उसको सुव्यवस्थित करने का काम कौन सरकार करने जा रही है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है, क्योंकि जनसंघ के बड़े नेताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में कांग्रेस के भय, भूख, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के कुत्सित राजनीति के खिलाफ देश की जनता के संरक्षण के लिए इनकलाब जिंदाबाद किया था। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। भारतीय जनता पार्टी ने 1999 में वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश के सबसे बड़े पुरोधा जेपी को सम्मान दिया, भारत रत्न का। और आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो खुद जेपी सेनानी रहे, जिन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल होकर कांग्रेस की हिटलरशाही नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया, आज उनके नेतृत्व की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में काम कर रही है, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जेपीएनआईसी की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने के लिए सरकार काम करने जा रही है। अपेंडिक्स का दर्द कब बढ़ गया पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश के नेताओं को? इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपने परिवार को एस्टैब्लिश करने का काम किया, और परिवार के अलावा इनको कोई मतलब नहीं है। सैफई में अगर बीडीसी का पद मिल जाए तो पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने भाई, भतीजा, पोता, पोती को उस पद पर विद्यमान करा देंगे। यही समाजवाद है क्या? समाज का वाद का मतलब परिवारवाद नहीं है। समाजवाद का मतलब गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी और समाज के अंतिम व्यक्ति का संरक्षण है, जो जेपी चाहते थे, जो राजनारायण चाहते थे, जो लोहिया चाहते थे। राजनारायण का बेटा बेटी कहां है, किसी को पता है क्या? लोहिया के परिवार के लोग कहां हैं, किसी को पता है क्या? जयप्रकाश नारायण के परिवार के लोग कहां हैं, किसी को पता है क्या? पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश के नेता अखिलेश यादव ने क्या कभी जानने का प्रयास किया जेपी के लोग कहां हैं, लोहिया के लोग कहां हैं, राजनारायण के लोग कहां हैं? इनको तो बस सफाई में अपना भाई
5: क्योंकि आपका टारगेट समाजवादी पार्टी भी थी और कांग्रेस भी थी, तो दोनों से एक एक रिएक्शन लेता हूं, फिर राकेश जी आपके पास आऊंगा। पहले ईशान आप ही बोले, पहले ईशान आप ही बोले
9: क्या है पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश के नेता अखिलेश यादव, जवाब देना होगा उत्तर प्रदेश की जनता को।
7: राजीव जी आपको एक काम करना चाहिए था, मैं आपको एक सलाह दे देता हूं कि राकेश त्रिपाठी जी के नाम के आगे तो बड़ा प्रवक्ता लिखवा दीजिए बीजेपी का, और रोहित सिंह के नाम के आगे छोटा प्रवक्ता लिखवा दीजिए बीजेपी का। ये जो भाषणबाजी अभी इन्होंने करी, क्या भारतीय जनता पार्टी से हिम्मत है रोहित सिंह जी आपकी ये पूछने की कि जो प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी किया उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हो? क्या आप में हिम्मत है? भाई आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, शांत रहिए राजीव जी, सबको शांत करवाइए,
5: भाजपा
7: को शांत करवाइए,
9: बकवास करते हैं आप,
7: भाजपा के पिट्ठू को शांत करवाइए, भाजपा के पिट्ठू को शांत करवाइए,
9: आप लोगों ने जयप्रकाश नारायण के नाम
7: भाजपा के पिट्ठू को शांत करवाइए
9: काम किया, बड़ी बड़ी बात करते हैं।
5: रोहित जी हो गए ना, आपने इतनी सारी बातें कर दी,
7: राजीव जी
5: जवाब उनका भी तो सुनेंगे। हाँ ईशान जी
7: ऐसे नहीं बोलूंगा, क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि ये पूछ सके सूबे के मुख्यमंत्री से कि हजारों करोड़ रुपए कुंभ में खर्च करे लेकिन उसमें इतनी अव्यवस्था कैसे हो गई, उसमें इतनी स्टैम्पीड कैसे हो गई? हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार था, सबसे बड़ा समागम था इलाहाबाद में, उसमें इतनी बड़ी स्टैम्पीड कैसे हुई, इतनी अव्यवस्था कैसे हुई? इतनी जो बंदरबाट करी आपने उसमें पैसे की हिंदुओं के नाम पे, उससे हिंदू आस्था को आहत हुआ है। आपने जो बंदरबाट करी राम मंदिर में उससे हिंदू आस्था को आहत हुआ है। आप जो बच्चों के नाम पे मिड डे मील का पैसा खा रहे हो वो बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे, वो गरीब परिवार आपको माफ नहीं करेंगे। आपने जो स्मार्ट मीटर इंप्लीमेंट कर दिए बिना किसी पॉलिसी के, उसमें जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जब हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में हम सबके सामने लेकर आएंगे कि स्मार्ट मीटर में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। हम सबके सामने लेकर आएंगे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को आज एडमिशन नहीं मिलता है प्राइवेट स्कूल्स में, और उसमें बीएसए से लेके डीएम की सबकी बंदर माठ है ऊपर तक, आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं। आज राजीव जी हाल ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक, पासपोर्ट से लेके जाति प्रमाण पत्र तक एक गरीब आदमी को अगर बनवाना पड़ जाए तो उसको एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है, और इस तरीके का करप्शन है ब्यूरोक्रेसी में, और पटवारी से लेकर डीएम तक सब इसमें करप्शन के भागीदार है, लेकिन ये सरकार नहीं रोक पा रही है। लेकिन रोहित सिंह जी को नहीं दिखेगा, रोहित सिंह जी को तो बीजेपी के पिट्ठू बनना है, इनको ये नहीं दिखेगा कि किस तरीके से एक अनामिका शुक्ला स्कैम हुआ था। मैं आपको बताता हूं, अनामिका शुक्ला नाम की एक लड़की, एक महिला के नाम पर 25 पोस्ट भरी गई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। इस पे जवाब दीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस पे जवाब दीजिए कि आपने जिस तरीके से एक एक एक्सप्रेसवे में इतने बड़े बड़े आपने वहां पे स्कैम किया है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जा रहे हैं।
5: राकेश जी, इस पर आप पर्टिकुलर जवाब दें, अनामिका शुक्ला केस इसके साथ साथ जो अमित जमे जी लगातार सवाल पूछ रहे हैं संजय सेठ को लेकर कि वो हलवा पूरी किसने खाया, आपने खाया कि नहीं खाया, तो इस पर भी मैं पर्टिकुलर आपका जवाब चाहता हूं कि ठेकेदार आर्किटेक्ट तो अब आपकी पार्टी में।
4: देखिए दो बातें स्पष्ट कर दूं। देखिए अगर ठेकेदार को केवल दोषी बताने की चेष्टा अगर आज अमित जमी कर रहे हैं तो पहले इस बात का जवाब दें कि जिसको ठेकेदार बता करके दोषी बता रहे हैं उसको अपनी पार्टी से राज्यसभा भेजने का काम क्यों किया था आपने? आप स्वयं उसको इसका मतलब हिस्सेदार बना करके राज्यसभा भेज रहे थे तब तक तो मामला ठीक था और सब ठेकेदार पर ठीकरा फोड़ेंगे। अरे पॉलिसी आप बना रहे थे, वित्तीय स्वीकृति आप दे रहे थे, आप परमिशन ग्रांटेड करते हैं, सरकार तो पॉलिसी बनाती है ना, ठेकेदार तो इंप्लीमेंट करता है भाई। आप जैसा निर्णय करोगे, इंजीनियर जैसा बताएगा, वित्त विभाग जैसी स्वीकृति देगा वैसा निर्णय करेगा ना। आप ठेकेदार पर ठीकरा फोड़ने की चेष्टा कर रहे हो, इससे जनता सहमत होगी नहीं, जनता इसको स्वीकार करेगी नहीं। मैं जानता हूं कि आपकी पीड़ा बहुत है और अमित जमी ने अभी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा हुआ मेडिकल कॉलेज की चर्चा करती। याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश में कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के पास कुल 17 मेडिकल कॉलेज थे और आज उत्तर प्रदेश में हर जिले के पास अपना मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तक केवल 1340 मेडिकल की सीटें थी और यूजी में। आज भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद 14,500 सीटें हैं। सर मानी चाहिए आपको, आप आंकड़ा मिला करके देखिए ना कि कितना बड़ा अंतर है। और ईशान त्यागी को मैं देख रहा हूं, ये जानबूझ करके चिन्हित कर करके बार बार हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए प्रश्नों को चोट करने की कोशिश करते हैं, उनको कुंभ में से बहुत पीड़ा हो रही है। अरे एक बार नहीं पीड़ा आपको हुई थी जब कुंभ का अध्यक्ष बना दिया था आजम खान को और कुंभ में स्टैम्पेड हुई थी, भूल गया क्या? स्मृति लोप का शिकार हो गया क्या? 27 साल यूपी बेहाल का नारा लेकर के ईशान त्यागी जब कांग्रेस पार्टी आई थी ना 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले, तब आपको तब दिखाई पड़ रहा था, लेकिन फिर जब आप जान गए कि आज समाजवादी पार्टी के बिना सहयोग के आप हाथ की उंगलियां 5 और 5 सीटें नहीं जीत सकते, दम नहीं है, क्षमता नहीं है, पूरी ताकत लगाई तो 2 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते, आपका आपके कर्म यही है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के इस बड़बोलेपन से पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट बता दो, पटवारी से लेकर के राज्यपाल तक सब भ्रष्ट है। आपकी यही आज करनी के नाते आज की यह दशा है, कांग्रेस पार्टी की दशा इसी कारण से है जो पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने अनामिका शुक्ला का मुद्दा उठाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पकड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल अनामिका शुक्ला नहीं, 350 से ज्यादा बेसिक शिक्षक आज गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजे हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में गलत तरीके से भर्ती हो गए थे और अभी भी एसटीएफ जांच कर रही है। ऐसे लोगों के अंक पत्रों की, प्रमाण पत्रों की अब भी जांच हो रही है। बड़े पैमाने पर जातिवाद के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर, चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो जिसमें अनिल यादव जैसे अपराधी को बिठाल करके हाईकोर्ट ने अगर हटाया ना होता तो अनिल यादव जैसे लोग यूपीएससी का बंटर
5: करने का काम करेंगे। 20 सेकंड में बोलेगा ईशान, ठीक है, आप लोगों को 20 सेकंड बोलेंगे, मैं अमित जी के पास जा रहा हूं।
4: 20 सेकंड में आप बोलते थे, आज मौन साधे बैठे हैं।
7: देखिए मैंने मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं। मैंने कुंभ पे सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं। मैंने प्रभु श्री राम की चंदा चोरी की बात करी, लेकिन कोई जवाब नहीं। जिनके कंधों पे बैठ के ये सत्ता तक पहुंचे, अर्षाई भी बात कर रहे थे मेडिकल कॉलेजेस की। भाई बहराइच मेडिकल कॉलेज आपको याद होगा,
4: 17.5 करोड़
7: जो फर्जी बिल
4: चाहिए कांग्रेस को, मंदिर में क्या मान
10: आप क्यों नहीं लेना चाहिए? आप कौन होते हैं ये बताने वाले? अमित शाह को आज तक गए नहीं राम मंदिर,
4: कैसे होती है?
10: अमित शाह को गए नहीं राम मंदिर,
4: नाम नहीं लेना चाहिए तुमको।
10: क्यों नहीं गए मोहन भागवत
4: जैसे लोगों ने भगवान के मंदिर बनाने में हर प्रकार की
10: मोहन भागवत डुबकी लगाने? क्यों अमित शाह नहीं गए अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर? क्यों आपने द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में? ये बताइए, कैसे आप ये बताइए कि बहराइच में जो आपने मेडिकल कॉलेज बनाया था, उसमें जो फर्जी बिल लगाए थे 17.5 करोड़ रुपए के, उसपे आपने क्या कार्रवाई करी?
4: आजकल बहुत
10: आपने जो कोडीन सिरप आपके राज में कोडीन सिरप बिक रहा था, जहरीली दवाई बिक रही थी जिसको खाके बच्चे मर गए, उसपे आपने क्या किया ये बताइए?
4: आपके उंगली में पांच अंगूठी की
10: आवाज
4: बोल रही है,
5: आप दोनों की बात आगे, मैं अमित जी को फिर से चर्चा में लाते हैं और फिर से हम एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि डिबेट हमारी डिरेल भी ना हो। लेकिन अमित जी, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा? क्योंकि बीजेपी कह रहे कि कोई भ्रष्टाचार का मामला है नहीं, आपके पास मुद्दे नहीं है तो बस क्रिएट किए जा रहे हैं, बस आरोप भर रहे हैं।
10: आपकी बौखलाहट दिख रही
5: है अमित जी।
6: देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिला पंचायत से लेकर जब से ये प्रशासक बने हैं और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और ये जो बारिश हुई है, पूरी नगर पंचायतें जहां पे भी मेयर हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूरी पोल खुल रही है। समाजवादी पार्टी ने शिक्षा के लिए बड़ी तहरीक चलाई, आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय संजय सिंह जी ने
4: ये ग्राम पंचायतों में प्रशासक बना देने पर
6: जैसे कि वो
4: प्रधानों को निर्वाचित प्रधानों को आप कह रहे हो भ्रष्टाचारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये आखिरकार आप पूरे उत्तर प्रदेश के ग्राम
10: थोड़ी लगाम लगाइए, ये व्यक्ति अपना मानसिक
6: संतुलन
4: नहीं, आप ग्राम प्रधानों को भ्रष्टाचारी देने के लिए माफी मांगिए अमित जमेई, वरना 2027 के विधानसभा चुनाव में यही ग्राम के प्रधान आपकी साइकिल को पंचर के चेन पर करके हाथ
6: में ऑडियो कम कराइए, इनका ऑडियो कम कराइए पहले। राजीव भाई मुझे बोलने दीजिए पहले।
5: नहीं राकेश जी, अभी उनको सुन लीजिए ना, वो बता रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार है, मैं अमित जी आप बताइए भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो कहां कहां किन किन सेक्टर में कैसे कैसे हुआ है? हाँ
6: अच्छा मैं बोल दूं, पहले इनका ऑडियो कम कराइए प्लीज, 10 सेकंड दे दीजिए लेकिन ऑडियो कम कराइए। प्रशासक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। आज प्रधानों को मजबूर किया जा रहा है कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कमीशन दीजिए। भाजपा मजबूर कर रही है प्रधानों को, इनका मंत्री कहता है मीटिंग बुलाओ, प्रधान का काम है भाजपा की मीटिंग बुलाना। दूसरी बात, शिक्षा को लेकर स्कूल ठीक करो, समाजवादी पार्टी ने पूरे सूबे में आदरणीय संजय सिंह जी ने स्कूल ठीक करो का आंदोलन चलाया, पूरी पोल पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की खुल
4: गई।
6: और राकेश त्रिपाठी को हलवा पूरी संजय सेठ क्या नहीं मिला, मुख्यमंत्री जी को लेकर नहीं गए, नाराज हम क्यों हो रहे हैं?
4: आप क्या पढ़ा रहे थे?
6: संजय सेठ से कहूंगा, संजय सेठ जी से कहूंगा, राकेश त्रिपाठी को बुला के हलवा पूरी खिलाइए। मतलब अखिलेश जी भ्रष्टाचारी है और संजय सेठ देवता है, जहां मुख्यमंत्री जी हलवा पूरी खड़े आते हैं। राकेश भाई आपको
4: समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में दरी बिछाओगे, नारा ही लगाओगे, नहीं पाओगे, गलतफहमी में मत रहो।
6: देश के प्रधानमंत्री
4: अमित जावेद जैसे लोगों को
6: प्रधानमंत्री,
4: आप केवल वहां वोट बैंक
6: रहोगे,
4: आप वोट बैंक
5: रहोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा।
4: सच्चाई को स्वीकार कर लो, पहचान लो सच्चाई को।
6: राजीव भाई
5: राकेश जी उनकी बात, लेकिन आपसे 20 ही सेकंड में कंप्लीट करें, फिर मैं रोहित जी आ रहा हूँ आपके पास और पीयूष जी आपके पास आ रहा हूँ, 20 सेकंड में कंप्लीट करें।
6: हाँ देखिए देश के मुखिया स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल थे गांधी जी के साथ, देश के मुखिया शेख हसीना के वालिद के साथ बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी में भी शामिल थे, जेपी मूवमेंट में भी शामिल थे। अरे कोई ऐसा देश का आंदोलन जिसमें वो शामिल नहीं थे? दूसरी बात यह कि ये कौन है भैया विश्लेषक? राजीव भाई मैं आप बहुत अच्छे इंसान है, आप बहुत अच्छे सीजन एंकर हैं, अगली बार से कोई समाजवादी वामपंथी विश्लेषक भी तो बिठाइए। ये कौन से विश्लेषक हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका पढ़ाई लिखाई क्या है, ये कहाँ के एकेडमिक हैं, कहाँ के प्रोफेसर हैं, कहाँ से, कभी वैज्ञानिक लिखते हैं, कभी आप शास्त्री हैं, आजादी विश्लेषक हैं। अरे दुग्गल जी हर दिन क्या क्या बनते हो, रोहित सिंह और दुग्गल हर दिन क्या क्या बनते हो, समाजवादी विश्लेषक भी तो बिठाओ, वामपंथी विश्लेषक भी तो बिठाओ, कांग्रेस समर्थक भी तो बिठाओ।
5: आप अपनी पार्टी का पक्ष तो अच्छे से रख ही रहे हैं ना अमेक जी, लेकिन मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा, रोहित जी खुद अपने आप को डिफेंड करने के काबिल होंगे। रोहित रोहित आप ही इस पर बोले, फिर पीयूष जी आपके पास।
9: ए अमित चमई जी, अखिलेश यादव की चालीसा पढ़ के जौनपुर से टिकट नहीं मिलने वाला है, और मिलेगा तो 27 में जो 27 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को नवाजने जा रही है उसमें आपकी सीट नहीं आएगी। चुप रहिए, सुनिए पहले चुपचाप से, अपने हैसियत पर आके बात कीजिए, आप तय कीजिएगा कौन किसका विश्लेषण करेगा। देश की जनता को बोलने का अधिकार है। आप दलित विरोधी हैं, आप अम्बेडकर विरोधी हैं, आप संविधान विरोधी हैं, आप पिछड़ा विरोधी हैं, आप गरीब विरोधी हैं, आपने समाजवाद के नाम पर भाई भतीजावाद के बीज को बरगद का पेड़ बनाया है। अखिलेश यादव ने क्या किया, अगर मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र नहीं होते मुख्यमंत्री नहीं बनते।
5: समय कम है, मैं नहीं चाहता कि डिबेट हमारी इधर उधर व्यक्तिगत टीका टिप्पणियों में चले जाए, क्योंकि मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित जी ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। पीयूष जी आपके पास, चूंकि ऑपोजिशन एक आरोप लगा रहा है आप पर कि कमीशन लेकर सारा का सारा काम हो रहा है, और अमित जी तो ये भी कह रहे हैं कि माल खाया जा रहा है, क्या वाकई कमीशन लेकर ये प्राइवेट कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, और लिए जा रहे हैं तो फिर सुबह सपा क्या कर रही है? हाँ
8: राजीव भाई, मैं पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं कि अमित भाई ने एक आरोप लगाया है कि पंचायत में प्रशासक और जो बनाए गए हैं, तो इनको यह माफी मांगनी चाहिए कि इस जिस तरीके से उलूल जुलूल बात कर, चूंकि पंचायती राज विभाग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास है, जिस तरीके का इन्होंने अनर्गल बयान और देकर अनर्गल भाषा बोलकर जो गलत आरोप लगाया है, 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह चुके हैं कि माननीय अखिलेश जी 27 में नहीं अगली पैदाइश की तैयारी करें माननीय मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो समाजवादी पार्टी के साथ वही होने वाला है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि अखिलेश यादव 27 में नहीं अगली पैदाइश के लिए तैयारी करें, तब वो कोई चुनाव जीत पाएंगे। माफी मांगनी चाहिए अमित जयमई को सबसे कि अनर्गल आरोप प्रशासक ऊपर लगा रहे हैं, गलत भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, ये अपना खुद का भ्रष्टाचार 200 करोड़ से 800 करोड़ तक, ये जो पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी परिवार डिंपल और अखिलेश का खड़ा करके इन्होंने बनाया, उस पर इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको अपना केवल कमी छुपाने के लिए आज बैठकर टीवी पर आरोप लगाने का कार्य करना पड़ रहा है। यही प्रशासक 2027 में इनकी सीट को 27 सीट दिलाने का कार्य करेंगे और इनको गढ़ में ले जाने का कार्य।
5: पीयूष जी बताइए कि वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाने, वो कह रहे कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गई, तमाम मतलब भ्रष्टाचार के इतने एक्सप्रेस वे में इतना गड़बड़ झाला और गोलमाल हो गया, आपको क्या लग रहा है कि ये सब हुआ है या सिर्फ ऐसे आरोप लगाया जा रहा है?
8: राम मंदिर के लिए तो स्पष्ट ही है ना कि एसआईटी बनी, जो जो आरोपी थे टिंकू यादव मिंटू यादव सब जेल गए ना, सबको पता है, जानकारी है, और जो एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं
5: बड़ों को तो बचा लिया करते थे,
8: गाड़ी की फोटो आपको राकेश जी ने दिखा दी, नवनीत सहगल जी का तो पैर टूट गया था जो इनके तब तत्कालीन सहयोगी हुआ करते थे, एक वरिष्ठ आईएएस हुआ करते थे, तो इनको अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनको केवल केवल जो जो डेवलपमेंट माननीय योगी जी के समय में हो रहा, 200 करोड़ से 800 करोड़ तक इन्होंने कितना बड़ा घोटाला करके इन जवानी कुर्बान गैंगों को ठेका दे देकर पहुंचाया, उनको ऊपर पहुंचाया और उनको आगे बढ़ाया, उनके भ्रष्टाचार इनको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, केवल और केवल 200 करोड़ से 800 करोड़ का जो इन्होंने माल खाया वो केवल इनको अब नहीं मिल पाएगा, उसका इनको बहुत दर्द हो रहा है, इसी के नाते अमित जयमय जी की यह भाषा हो रही है।
5: ठीक है राकेश जी, अब आपकी टिप्पणी भी आ जाए।
11: मैं बस एक सवाल, अमित जयमई आज भी इस पार्टी को, इस बात को स्वीकार करें कि इनकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से कहा था कि अंबेडकर स्मारक अय्याशी का अड्डा है, क्या अभी भी अपने उस बात पर कायम है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक को अय्याशी का अड्डा बताने वाले लोग जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना रहे थे जिसमें मौज मस्ती के सामान जुटा रहे थे, जिसमें रेस्तरा बना रहे थे, जिसमें क्लब बना रहे थे, आखिरकार वो क्या है? क्या उसको कुछ चीज का अड्डा कहा जाए? क्या इनके परिवार के जुटान का वो अड्डा था? इस बात को लेकर के अमित जयमई को जरूर स्पष्ट करना चाहिए।
5: ठीक है अमित जयमई जी, स्पष्टीकरण दे, फिर ईशान आ रहा हूँ आपके पास, इस समय आपको दूंगा इसके बाद, पहले चूंकि उनकी तरफ सवाल है। अमित जी
12: पीटा जाता है आपके ना,
6: देखिए स्पष्टीकरण तो इन चंदा चोरों को देना चाहिए, उल्टे ये हमसे दिलवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय काशीराम जी और मरहूम नेता मुलायम सिंह यादव जी का जो काम बचा हुआ है 2027 में, राकेश त्रिपाठी भाई हम आपसे बात करेंगे, आपको साफ कर देंगे उत्तर प्रदेश में। नंबर टू देखिए राजीव भाई, इन्होंने अभी भी नहीं बताया, इन्होंने अभी भी नहीं बताया,
8: पैदाइश में नहीं अगली पैदाइश में।
6: मैं अगर अखिलेश
10: अयासी का अड्डा बताया था, जेपीएनआईसी क्या है,
8: सत्ताईस में नहीं अगली पैदाइश की तैयारी,
10: अम्बेडकर स्मारक अयासी का अड्डा था तो जेपीएनआईसी क्या है।
5: देखिए मुझे समय इतनी चल रहा है, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। दंगल में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज।
12: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
13: Bharat ki apni electric sawari, so good.
14: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा। इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे।
15: आगे आगे,
16: अरे उधर
15: उधर गया,
16: करेक्ट करेक्ट
17: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए।

0: आगे आगे
1: अरे उधर
0: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: इतिहास, धर्म और संस्कृति की त्रिवेणी पर सजेगी यूपी के विकास की महफिल। कुंभ नगरी प्रयागराज में होगी बड़े मुद्दों पर बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है सिर्फ यूपी तक पर।
3: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
4: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।
5: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती।
6: ये तो तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। तरी की एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।
7: इस सपा का मतलब ही है लूट खसोट, इस समाजवादी पार्टी का मतलब ही है कि डकैतों का एक गिरोह। ये लोग नहीं है, 17 के पहले मां क्या कहावत थी, देख सपाई बिटिया घबराई, यानी हर बेटी चिंतित रहती थी, हर अभिभावक चिंतित रहता था क्या होगा। किसी भी मां बाप के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है बेटी की सुरक्षा, हर मां बाप के लिए चिंता होती है, हर भाई की चिंता होती है, लेकिन इन सपाइयों ने बेटी के साथ जो व्यवहार किया था, कल मैं देख रहा था जब हम फ्री में बस यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे थे 26 को, तो समाजवादी पार्टी के बबुआ की नींद भी टूटी और वो भी एक प्रेस वार्ता जल्दी जल्दी में बुलाने लग गए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

0: वसूल लेना चाहिए। वेरी गुड।
1: भले ही हल्द्वानी में खरगे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हों, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में FIR दर्ज करने की मांग की।
0: जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, RSS के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ FIR SC एक्ट में FIR दर्ज किया।
1: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं। दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
2: अगर कोई कई जगह वेदर इट इज दिस स्टेट और दैट स्टेट अगर हो रहा है तो उसको ठीक करना हमारा सबका जिम्मेदारी है, लेकिन इसको बहाना बना के ड्रामा करने के लिए उधर जाते हैं तो लोग सबक सिखा है, आगे भी सिखा देंगे।
3: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना। आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है, कई उदाहरण उन्होंने गिना। अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रहीं, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रहीं, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
1: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही है।
4: कांग्रेस जिस तरह से अफवाह फैलाने का काम कर रही है और दलित समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है कि वहां पर हल्द्वानी में रामला ग्राउंड में शुद्धिकरण किया गया है और जब खड़गे जी दलित समाज से आते हैं उनका अपमान हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी मनसा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपने आप से अलग करती है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी संस्था के माध्यम से वहां हवन किया गया, शुद्धिकरण किया गया तो उनका काम है, किंतु इस तरह का भ्रम फैलाना ठीक नहीं है।
1: युवा महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।

0: उज़्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर। यूरेनियम समेत कई अहम समझौते। पीएम ने शास्त्री स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। संघ प्रमुख के मुस्लिम वाले बयान पर बयानबाजी तेज। मौलाना बोले अब जमीन पर भी दिखे असर। ओवैसी ने आरएसएस पर लोकतंत्र का विरोध करने का लगाया आरोप। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के जेपीएनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को सामने लाया, कहा इन लोगों ने पैसा खाया। लुधियाना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में युवक गिरफ्तार। अलग अलग मोबाइल नंबरों से धमकी देने का भी आरोप। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा। फिर उफान पर त्रिशूली नदी तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 768 तक पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। आज बहस उस बहस पर होगी जो देश में छिड़ गई है। राहुल गांधी ने दरअसल मनुस्मृति को कोट करते हुए ये कहा कि महिलाओं को दबाने वाली बातें इसमें लिखी गई हैं और उस वजह से आज देश में काफी हद तक महिलाओं को दबाया जा रहा है। उन्होंने स्मैश द पेट्रियार्की की एक कोट दिया है। अब ये क्या है, उनका ये आशय था इससे कि जो पितृसत्ता यानी पुरुष प्रधान समाज हमने गढ़ा है उसमें जो पुरुषों का वर्चस्व रहता है उसको दबाना, उसको स्मैश करना, उसको खत्म करना जरूरी है। लेकिन यहां से एक नई बहस की शुरुआत हुई क्योंकि मनुस्मृति को कोट किया था। तो ऐसे में चर्चा यह छिड़ गई कि क्या मनुस्मृति और धर्म किसी तरह से महिलाओं को दबा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी सामने आई और पुराना एक वीडियो राहुल गांधी का लेकर आई है जिसमें वो कह रहे थे कि हिजाब इट इज अ चॉइस फॉर वुमेन, मतलब वो किस तरह का कपड़ा पहनना चाहती है ये उनके लिए चॉइस है। तो अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि अलग अलग मापदंड हिंदू धर्म के खिलाफ राहुल गांधी बोलते हैं लेकिन जब बात इस्लाम की आती है तो वो चुप हो जाते हैं और वहां पर महिलाओं को अगर किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, दबाया जाता है तो उस पर कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। तो आज बड़ी बहस है महिलाओं को लेकर, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो राउंड टेबल में शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी से सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो पक्ष रखेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। इधर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर संगीत रागी है, और आलोक शर्मा जी का साथ दो मेहमान जो देने वाले हैं उसमें विवेक सिलस जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और प्रोफेसर राजकुमार राजन जी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें सिलसिलेवार ढंग से किसने क्या कहा, क्यों आज ये बड़ी बहस छिड़ गई है, इस रिपोर्ट में देखिए।
2: एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती है सेफ्टी के कारण।
3: सियासत में एक नई महाभारत छिड़ गई है।
2: हिंसा से बचने के लिए 50% महिला।
3: हाल ही में महिलाओं के साथ कार्यक्रम में स्मैश द पेट्रियार्की के ऐलान के साथ राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर हमला बोला था
2: कि एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट।
3: स्मैश द पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता को कुचलना वो विचार है जो दावा करता है कि महिलाओं को समाज में दबाया गया, उन्हें अवसर नहीं मिले। इसके पीछे समाज की दकियानूसी सोच जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बेटियों को बेटों के बराबर मौका और सम्मान देने की बात कह चुके हैं। लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि स्मैश द पेट्रियार्की कहकर राहुल हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी का पुराना वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा था, मनुस्मृति और हिंदू महिलाओं के संदर्भ में राहुल गांधी पितृसत्ता को ध्वस्त करने की बात करते हैं लेकिन जब बात हिजाब और अबाया की आती है तो वही चुनाव की स्वतंत्रता बन जाता है।
4: सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है, क्या अबाया और हिजाब उतार
5: देंगे? मेरा मेरी व्यू है, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है।
3: बीजेपी ने इंस्टाग्राम पोस्टर में भी राहुल गांधी पर हमला बोला था। राहुल के स्मैश द पेट्रियार्की के जवाब में पोस्टर में लिखा है, भारत माता की जय शुरू करते हैं। इसी पोस्ट के दूसरे पोस्टर्स में शाह बानो केस, 3 तलाक, 33% महिला आरक्षण और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में महिलाओं की भागीदारी नहीं होने को लेकर सीधा प्रहार है। इसी महीने राहुल के मंच पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर फूहड़ टिप्पणी पर भी बीजेपी ने उन्हें घेरा था।
6: 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर यह बयान दिया और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे एक मित्र देश इटली की।
3: मनुस्मृति के विरोध के नाम पर सियासत का नया हंगामा ऐसे समय में शुरू हुआ है जब एक एक कर राज्यों के चुनावों में महिला वोटरों को लुभाने की स्कीम्स के बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, सुधांशु जी आप ही से करते हैं। मतलब राहुल गांधी स्मैश द पेट्रियार्की कह रहे थे, मतलब एक समाज में जो पुरुष प्रधान समाज हमने गढ़ लिया है जिसमें हमको आज जाकर 2026 में ये सोचना पड़ रहा है कि हमें एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर आरक्षण महिलाओं को देना पड़े क्योंकि उनकी तो उनका रिप्रेजेंटेशन ही देश की संसद में नहीं हुआ। अगर महिलाओं की ताकत के बारे में वो कह रहे हैं कि भाई पुरुष प्रधान समाज जो पितृसत्ता है उसको स्मैश द पेट्रियार्की, तो आप लोग मनुस्मृति को डिफेंड क्यों कर रहे हैं?
7: देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, मनुस्मृति तो बहाना है, उसके पीछे असली चेहरा है मैकाले, मार्क्स और मौलाना है। इन तीनों के द्वारा हैक्ड दिमाग से जो इस समय राहुल गांधी जी को अल्ट्रा लेफ्ट अल्ट्रा नक्सल, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, उसके अनुसार इनको यह कार्य करने के लिए दिखाई पड़ रहा है। इस समय भारत में कहीं से भी लड़ाई लड़ानी, उत्तर दक्षिण में लड़ाना है, राज्यों में लड़ाना है, भाषा पे लड़ाना है, जात पे लड़ाना है, फिर वो भी ना होए तो जनरेशंस में लड़ाना है, फिर हो तो स्त्री और पुरुष के बीच में लड़ाना है। अब मैं जो आपने कहा ये फिर ये संस्कृत निष्ठ शब्द पितृसत्तात्मक क्यों प्रयोग किया जाता है, मर्दुम अजीम रवायत क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है, राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं ये 4BB मर्दुम अजीम रवायत है कि नहीं, तलाक बिद्दत यानी सिर्फ पुरुष दे सकता है ट्रिपल तलाक, ये मर्दुम अजीम रवायत है कि नहीं, जब महिला घर से बाहर निकलेगी तो मेहरम के ही संरक्षण में निकलेगी। अभी जमात इस्लामी ने कहा है बांग्लादेश में कि स्त्रियों को तो राजनीति में आना ही नहीं चाहिए, यदि आए तो एक मेहरम के संरक्षण में आना चाहिए, और भारत में कांग्रेस के शासनकाल में हज पे जाने के लिए मेहरम की व्यवस्था कानूनी मान्यता प्राप्त थी, यानी दो बेटियां दो बहनें मां बहन मां बेटी जाना चाहे तो नहीं जा सकती थी, एक मेहरम चाहिए था जिसे मोदी जी की सरकार ने समाप्त किया। अब मैं पूछना चाहता हूं हलाला से महिला पवित्र हो जाती है ये मर्दुम अजीम रवायत है कि नहीं, मगर दिखाना तो पितृसत्तात्मक है। और मैं बिल्कुल राजनीतिक जवाब देता हूं फिर सैद्धांतिक भी जवाब दूंगा, और अगर राहुल गांधी जी को इतना लगता है स्मैश द पैट्रियार्की तो मैं उनसे कहना चाहूंगा अपनी आदरणीय माता जी से कहें कि सोनिया गांधी जी ने क्यों अपने पति का नाम सरनेम तो महिलाएं लगाती हैं फर्स्ट नेम भी काहे बदल लिया है भाई, कह दे स्मैश द पैट्रियार्की, लीव सोनिया गांधी एंड से एंटोनियो माइनो। और राहुल गांधी जी को भी कहना चाहिए स्मैश द पैट्रियार्की, मैं अब अपने पिताजी का नाम नहीं माता जी का नाम लगाऊंगा, आई एम राहुल माइनो। यह है असली चेहरा, इसलिए मैंने कहा मनुस्मृति बहाना है, असली चेहरा मैकाले, मार्क्स और मौलाना है। अब मैं मनुस्मृति पे भी एक बात कहना चाहूंगा जो राहुल गांधी जी कहते हैं पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ, मनुस्मृति कहां है ओरिजिनल, जो विलियम जोन्स की ट्रांसलेटेड है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जज था 1784 में, वो ये कहता है कि 1783 में भारत आया, और आप कल्पना करिए दर्शकों तक एक साल के अंदर उसने संस्कृत भी सीख ली, इतना गहरा अध्ययन कर दिया कि संस्कृत के 3-3 ग्रंथों का अनुवाद कर दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम, विद्याधर का हितोपदेश और मनुस्मृति। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा हमारे सहयोगी बताएंगे मनुस्मृति जो लिखी है विलियम जोन्स ने उसका हेडिंग क्या है, नाम क्या है किताब का पता है आपको? नाम पता हो बताइए फिर मैं अपना वक्त पूरा करूं।
8: मैं यहाँ जनरल नॉलेज मनुस्मृति,
7: अच्छा जनरल नॉलेज आया हूं मैं, मतलब
8: आज का सवाल
7: नहीं
8: देख मैं आपके बीच में नहीं बोला
7: सर, अब मैं पूरी बात करूं,
1: मैंने सिर्फ खत्म कीजिए दो लाइन में,
7: वो है ऑर्डिनेंस ऑफ मनु हिंदू कोड लॉ, और उसमें संस्कृत का एक श्लोक नहीं है, दैट इज टोटल कमेंट्री, और उसको ये कहते यथार्थ है। और पहली बार जहां संस्कृत के श्लोकों का रेफरेंस है 1883 में, 1813 में एक लिखता है, वो है उसका नाम है जॉन जॉर्ज बुहलर, वो पहली बार लिखता है अपना मनगढ़ंत सारी चीजें डालता है जिसका कोई प्राइमरी सोर्स अवेलेबल नहीं है, मगर उसके बावजूद उसी को सच मानते हैं। अब मैं दूसरा कोट करना चाहता हूं, फ्रेडरिक नीचे, जर्मनों ने तो कभी हम पे शासन नहीं किया, उसने जो लिखा है एक फ्रेंच जो अनुवाद था उसके आधार पर, उसमें सारी चीजें नहीं है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, ये विलियम जोन्स स्क्रिप्ट को मनुस्मृतिक नाम देकर हिंदू समाज में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का एजेंडा लेकर, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के इंटरनेशनल थॉट से प्रेरित होकर ये जो करना चाह रहे हैं वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस ढंग से हिंदू समाज में बंटवारा हो सके।
1: चलिए
7: वो साफ दिखाई पड़ता और कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर खड़गे जी से ये बोला था तो कहा था ऑथेंटिकेट करिए ओरिजिनल
1: मनुस्मृति लेकर आए हो क्या है
9: खड़गे जी से।
1: ठीक है चलिए आप तो इसके बाद बताइएगा आलोक जी,
9: खड़गे जी से शुरू कर लेते हैं।
1: हाँ वो भी बताइएगा लेकिन सवाल भी सुन लीजिए, क्या ये आरोप में दम नहीं है कि आप हिंदू धर्म के की समीक्षा तो करते हैं खुले में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इस्लाम में महिलाओं का उत्पीड़न होता है, ईरान में जब बच्ची को मारा गया था उसके बाद पूरे विश्व में उस पर हुआ, लेकिन उस पर किसी की आवाज हमने नहीं सुनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
10: आज का विषय केवल सीधा सीधा यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि पुरुष और महिला में भेद नहीं होना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, उनको बराबरी का स्थान मिलना चाहिए। इन्होंने पूरी डिबेट हिंदू मुसलमान फलाने ने क्या कहा उसने क्या कहा उस पर ले गए। अंकिता भंडारी पे दो सवाल पूछ लूंगा तो जनरल नॉलेज अभी फेल हो जाएगी इनकी। दुर्भाग्य यह है कि आप जो मूल विषय था कि महिलाओं को आगे स्थान मिलना चाहिए उसको आप पूरी तरह से हिंदू मुसलमान एंगल देना चाहते हैं। आपको अगर लगता है कि हिजाब में कोई दिक्कत है तो भाई जिसको मन करता हिजाब पहन ले, जिसको मन करता नहीं पहने। बहुत से ब्राह्मण तिलक नहीं लगाते, बहुत से ब्राह्मण नॉनवेज खाते हैं, कौन क्या खाता है क्या पहनता है कैसे रहता है उसमें बीजेपी और आरएसएस हमेशा इंटरफेयर क्यों करती है, विषय ये है। मुझे लगता है कि ये पर्सनल इशू जब लेकर आते हैं आप तो आप मूल मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अगर आप मूल मुद्दे पे हैं, संसद में आप एनसीआरबी के आंकड़ों पर बात करते हैं ना सांसद महोदय, आप एनसीआरबी में बताते कि किस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार 50% बढ़ गया, जिसको मनुस्मृति में तमाम ऐसी जगहें जो दलितों के ऊपर गलत बात कहती हैं आज के हिसाब से, महिलाओं के ऊपर तमाम तरह की गलत बात कहती हैं, और आपका जो माइंडसेट है वो स्वयं मनुस्मृति से प्रेरित है, इसीलिए मनुस्मृति की बहुत सी छाप आपके यूसीसी में नजर आती है। मनुस्मृति जो कहती है कि 7 साल तक बच्चा ना हो तो फिर दूसरा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उस तरह की छाप आपके गोवा के यूसीसी में नजर आती है कि अगर एक महिला से पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति ना हो तो आपको दूसरी शादी। मैं फिर बता दूं यार, दोहे में नहीं है वहां पर, संस्कृत में है, मनुस्मृति में दोहे नहीं है।
7: नहीं, नहीं,
10: दूसरी चीज, अरे सुन सुनिए ना भाई, जब भी यूसीसी बना है 2 साल 4 साल हुए, 2 साल 4 साल हुए हैं, कुछ नहीं है उसके अंदर, केवल ढकोसला है। एक पत्नी से अगर बच्चा पैदा ना हो तो दूसरी पत्नी कर लो, ये आपके यूसीसी में लिखा है। उत्तराखंड के यूसीसी में लिव इन के ऊपर लिखा हुआ है, लिव इन में है तो जाकर आपको बताना होगा थाने में, इसके अलावा कुछ हो तो बता दो मुझे भाई यूसीसी में। दुर्भाग्य यह है कि आपको आज की वर्तमान की समस्याओं से मुद्दों को भटकाना है। आप आने वाली जनरेशन को गटर जनरेशन कहते हैं, उस पर आपको चर्चा नहीं करनी है। आप जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पंचर लगाने वाला बोलना है, उस पर आपको चर्चा नहीं करनी है। आपको हर चीज को हिंदू मुसलमान पर ले जाना है। मैं तो पूछ रहा हूं महिलाओं के लिए, आपने अगर आप मुस्लिम महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, आपने 3 तलाक का भी क्या बिल अपनी मर्जी से बनाया था? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक केस चल रहा था, आपने संसद में लाए, उसमें तमाम लोगों ने अपने अपने विचार रखे, और इस तरह के तमाम कानून पहले भी बनते रहे हैं। आप जातिवाद को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं? आप धर्मवाद को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं? आपके पूरे वक्तव्य से पूरा पता चला कि आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, आपका कोई मतलब नहीं। हम पूछ रहे हैं चाइना घुस के बैठ गया है बाउंड्री पे, आप मनुस्मृति पे अटके पड़े। हम पूछ रहे हैं अमेरिका के सामने सरेंडर क्यों किया है, आप मनुस्मृति पे बात कर रहे हैं।
7: हम बात कर रहे हैं
10: सुनिए ना भाई, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, हम पूछ रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट आई है संसद में, उस पर भी चर्चा कर लेना। 22 दिन तक देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री बच्चों के सवालों पर भाग के खड़े हो गए। मनुस्मृति पे बात करनी है, उसमें ये पॉजिटिव है उसमें ये नेगेटिव है। हम पूछ रहे हैं पैलेट गन किसने चलाई, AK-47 किसने चलाई, 152 पेपर लीक कैसे हुए। हम पूछ रहे हैं राम मंदिर में डकैती क्यों हुई, मोदी जी रील बना रहे हैं। 6 साल का बच्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, 12 साल से देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, 22 दिन तक संसद से भागे रहते हैं।
7: नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि सरकारी विभागों में खाली पद जो है वो डबल हो गए। आप कह रहे हैं मनुस्मृति की बात करेंगे। दुर्भाग्य यह है कि आपको जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो गाय गऊ गंगा गीता सब चीजें पवित्र लगती हैं, फिर आप आ जाते हैं तो गाय के काटने की परमिशन दे देते हैं आप सरकारी तौर पर। आप जिस तरह से गणेश जी को अपने रथ के सामने नचाते हैं उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी की पतंग बना के उड़ा देते हैं आप, रामचंद्र जी का प्रभु का उंगली पकड़ के लाते हैं फिर उनके घर में ढाका डाल देते हैं। दुर्भाग्य यह है कि आपकी जो डबल स्टैंडर्ड है उसकी वजह से आज देश भुगत रहा है। पूरे देश को आप लोगों ने भ्रष्टाचार के ढेर पर बैठा दिया है। पुल बनने से पहले बह रहे हैं, जो हाईवेज आप आज तक मोदी जी ने बनाए सारे के सारे परेशान हो गए लोग उनके ऊपर चलकर, किस तरह से हवाई अड्डों के छत गिर रही है, ये सब मोदी जी की देन है।
1: चलिए जवाब दीजिए सुधांशु जी,
7: पर बात नहीं करना,
1: असल मुद्दों से हटाना चाहते हैं। मनुस्मृति को कोट किया राहुल गांधी ने, आपने लपक क्यों लिया?
7: चाहते हैं आप
1: मनुस्मृति कोट किसने किया बताइए?
7: मैं फिर कोट करना है उसमें अगर कोई चीज गलत है तो मेरे पास भी 10 चीज है।
1: तो लेके कौन आया पोलिटिकल डिस्कशन?
7: मैं भी लेकर आया हूँ, लेकिन अगर
1: मनुस्मृति की वजह से आज औरतों को दबाया जा रहा है, आपको लगता है घर घर में मनुस्मृति पड़ी जा रही है?
7: ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।
1: तो क्या कनेक्शन है?
7: पर्पस
1: क्या था मनुस्मृति को कोट करने का?
7: कितना बड़ा कनेक्शन बताया कि मनुस्मृति से जो प्रभावित लोग हैं वो अपने यूसीसी में उसके मनुस्मृति।
1: चलिए अब जवाब दीजिए डायरेक्ट,
7: इसलिए उन्होंने एग्जांपल दिया मैंने गोवा का,
1: इसलिए उन्होंने मनुस्मृति को।
7: आपके लाखों दर्शकों को बहुत बात समझ में आ गई होगी कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आलोक जी को, इन्होंने साबित कर दिया कि जो विषय राहुल गांधी लाए थे उसका डिफेंस करना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। एकदम भागते हुए डीके बोस भागते हुए उन्होंने ये कहा कि हमें दूसरे विषयों पर बात करनी थी, ये सारे विषय क्यों नहीं उठाए राहुल गांधी जी ने? विषय वही लाए और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैं बात बताता हूं, यह मैं पूछना चाहता हूं कि भारत में 4 करोड़ गरीब प्रधानमंत्री आवास बने जिसमें 3 करोड़ में रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पे है, कोई कल्पना कर सकता था 2014 से पहले कि गरीब वर्ग की महिलाओं का पहली बात तो मकान होगा और उसमें 3 करोड़ ऐसी होंगी जिनका रजिस्ट्री में नाम होगा? ये मोदी सरकार ने किया है। ये बताइए 16 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना, वो लकड़ी से फूंकती थी आंखों का पानी, वो किसने बचाया? मोदी जी ने बचाया। शौचालय घर घर दिया जिसको इज्जत घर कहा गया, किसने किया? मोदी जी ने किया। आज 55 करोड़ जनधन योजना, आज ही उसके 12 साल पूरे हुए हैं, 55 करोड़ अकाउंट है जिसमें 60% महिलाओं के हैं। IMF वर्ल्ड बैंक ने इस बात की तारीफ की है कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ इससे सबसे ज्यादा इंपावरमेंट महिलाओं को हुआ, क्योंकि गांव में बैठी हुई एक महिला 4 गांव दूर जाकर किसी बैंक की शाखा से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती थी, आज डिजिटल ट्रांजेक्शन से हुआ। उसके बाद आप देखिए आज सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में महिलाएं हैं तो हमारे दौर में, परमानेंट कमीशन मिला आर्मी में तो हमारे दौर में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में परमानेंट आई हमारे दौर में। और अगर मैं आपसे यह कहना चाहूं कि हमारे टाइम में इतने प्रकार के कार्य हुए कि डिफेंस फोर्सेस से लेके महिला संरक्षण को लेकर जितने भी प्रकार के कार्य हुए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे दौर में आया, इसलिए। और फिर मैं कहना चाहता हूं भाई साहब गलत तो सही है, अब मैं एक कोट कर दे रहा हूं और मैं अंजना जी कह रहा हूं, मैं जान के पढ़ रहा हूं क्योंकि इनकी तरफ के क्लिप कट हुआ, गैंग क्या करता है कि वो मेरा स्टेटमेंट बना के चेप कर देगा। अब मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आई डू नॉट रिगार्ड मनुस्मृति एज एन इविल, इट कंटेन्स मच दैट इज एडमायरेबल, but in its present form undoubtedly certain man things are bad but those appears to be interpolation, yani jo burai hai woh hastakshep hai, kisne kaha? Mahatma Gandhi in his letter to P.T. Pillai on 4th of May 1928 aur alok ji aur congress ke log kaan khol ke aankh phad ke sune, the collected verse of Mahatma Gandhi volume 36 letter number 348. ab ek aur dialogue suniye, there is no doubt about it that the Manu and Yagyavalk were the great souls and we must read them what they have written with respect and they are our heroes. Kisne kaha? Jawaharlal Nehru on the floor of the house on 4th of May 1955. Source is selected verse of Jawaharlal Nehru volume 28 page number 60-70. Ab aaiye. Dr. Baba Sahib Ambedkar ne kaha ki Manu aur Yagyavalk ki smriti mein itni achhi baat thi ki behno ko Raksha Bandhan ka din 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए, मगर हमारा वो ट्रेडिशन छूट गया। अफसोस है कि हमारी सरकार वो मानने को तैयार नहीं है जो मनु और याज्ञवल्क ने लिखा था, तो कम से कम 1/4 हिस्सा लड़कियों को देना चाहिए। ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा 24 फरवरी 1949। और मैं कहना चाहता हूं आपको, पता है सबसे ऑथेंटिक ऑफिशियल पब्लिकेशन क्या है मनुस्मृति का? पब्लिश बाई भारतीय विद्या भवन, पब्लिश बाई भारतीय विद्या भवन,
1: ठीक है,
7: और वो 1972, और उसमें जानते क्या लिखा है? पब्लिश विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 72 में किसकी सरकार थी? इंदिरा जी की। अब आइए, अगेन इट इज पब्लिश्ड, नो टीका, वो ओरिजिनल मनुस्मृति नहीं है, नो टीकाकारों की है, वरुरुच से लेके मेधातिथि से लेके कल्लूक भट्ट तक, अब 85 में फिर वो छपती है और क्या लिखा है, पब्लिश्ड विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 85 में किसकी सरकार थी? राजीव गांधी जी की। वो तो गजब का आदमी है, बाप गलत, दादी गलत, बाप के नाना गलत, गांधी गलत, अंबेडकर गलत, और मैं अवतरित हुआ हूं इस धराधाम पे धमधम धमधम करते हुए कांग्रेस को ले जाने के लिए। अब इसीलिए मैंने ये सारी बातें फैक्ट के साथ कोट की हैं और मुझे पूरा विश्वास है एक भी चीज का फैक्ट
10: शो बिगड़ जाएगा भाई। देखो आप एक तरफा मत चलो,
7: आप बताइए गांधी नेहरू
1: बोलिए बोलिए सुनिए।
10: दर्शक सोच रहे होंगे कह रहे भाई कहना क्या चाहते हो आपने जो भी कहा है उसका आज के वर्तमान से फर्क।
7: यही तो हम भी कह रहे हैं, आज क्या लेना देना था
10: भाई। जरा एक मिनट रुकिए ना, अब रुकिए जरा। आपने कहा कि बाबा साहब ने कहा कि 1/4 उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। सोनिया गांधी ने तो 2009 में यूपीए 1 की सरकार में आधा कर दिया, 50%। अगर एक बच्चा, एक बेटा है, एक बेटी है, तो दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। हम तो कभी नहीं कह रहे, हम तो उसके ऊपर नहीं कि हमने जनधन अकाउंट खुलवा लिया। अरे सुनिए ना भाई जरा, जनधन अकाउंट 89% जो है वो डॉर्मेंट हो गए। क्या उनकी हालत है? वो बंद पड़े हैं, उनमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, क्या ऐसा है कि नहीं है?
7: आधार
10: कितने पेनल्टी उनके ऊपर आई है जिस समय पर आधार कार्ड,
7: जनधन में जीरो बैलेंस का अकाउंट है, पेनल्टी का प्रावधान नहीं है, कुछ भी आगे बोले।
10: अरे भाई उसके बावजूद
7: जनधन में जीरो बैलेंस
10: है, मैं कह रहा हूं उसके बावजूद पेनल्टी है,
7: उसके बावजूद
10: आप थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए, उसके बावजूद पेनल्टी है और ये सच्चाई है। आप कहेंगे तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा अकाउंट नंबर।
7: अरे मैसेज नहीं है, बताओ
10: ना भाई, अकाउंट नंबर याद लेके आपकी तरह यहाँ
7: अकाउंट नंबर याद,
10: जीके के सवाल पे थोड़ी है।
7: जीके का सवाल
10: सुनिए भाई जरा, सुनिए,
7: नॉलेज नहीं होती।
10: इन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन बिल, अरे भाई 2 साल हो गए उसके ऊपर कुंडली मार के आप लोग क्यों बैठे हो? 2024 में जो बिल पास हुआ उसको आज तक लागू क्यों नहीं?
7: 23 में
10: 24 में चुनाव हुआ उसमें लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी नियत में खोट था। अभी मैं कह रहा हूं कि अभी नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसमें महिलाओं को जो रोजगार है ऑर्गेनाइज सेक्टर में मात्र 3% है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पिछले 10 साल में महिलाओं की बढ़ी है। महिलाओं और पुरुषों का जो प्रॉपर्टी का अपना शेयर है, रिसोर्सेज का, वो गैप लगातार बढ़ता चला जा रहा। भाषण दे रहे हैं महिला वंदना पे, 16 करोड़ ये बना दिया, उससे पहले तो शौचालय थे ही नहीं इस देश के अंदर। विद्या बालन का एडवर्टीजमेंट पिछले 20 साल से चल रहा था, 23 के 23 फ्लैगशिप प्रोग्रामों के नाम बदले आपने और आप आगे चले गए।
1: चलिए प्रोफेसर संगीत आ गया भाई, जल्दी जल्दी
10: मुझे केवल ये बता दीजिए कि इस देश के अंदर कितनी परसेंट महिलाएं अनेमिक हैं? 49% महिलाएं जो जिनके अंदर खून की कमी है उस पर बात कर लीजिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित हैं उस पर बात नहीं करेंगे,
7: करिए बात।
10: उसने ये था, अरे सांसद आप हैं, आप बताइए ना।
7: अच्छा
10: आप बताइए कितनी महिलाएं एनीमिक हैं?
1: फिर आप दोनों की बहस हो जाएगी, बाकी लोग चेहरे देखते रह जाएंगे।
10: एक मिनट आप बताइए, हमने तो 73 में 74 में संशोधन में महिलाओं को राजनीति में भी हिस्सा दिया आपने, लेकिन एक बिल पास होने के बावजूद उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हो क्योंकि आपकी नियत साफ नहीं।
7: सुनिए,
10: हम कह रहे हैं पुरुष प्रधान समाज की छोड़कर ये बराबरी का समाज आना चाहिए। आप हिजाब पर जाएंगे, आप किसी के कपड़ों पर जाएंगे,
1: हिजाब पर क्या दिक्कत है?
10: मुझे कोई दिक्कत नहीं,
1: तो हिजाब पर
10: मैं कहता हूँ किसी का हिजाब का मन है तो हिजाब पहने, किसी का मन कुछ है तो वो पहने। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो लोग हमारी जनरेशन गटर जनरेशन कह रहे हैं उस पर बात कीजिए। 9 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर
1: 29 साल
10: के जो न तो स्कूल जाते हैं न रोजगार में, यूरोप की आधी आबादी है। आप मनुस्मृति के पीछे पड़े हुए हैं, उसमें ये लिखा है उसमें लिखा है, मैं 4 सेंटेंस पढ़ के सुना
1: तो राहुल जी ने किया।
10: मैं फिर कह रहा हूँ
1: मौका देते हैं,
10: एक मिनट सबसे गुणहीन पति भी देवता के समान पूज्य है क्या ये?
7: मैं
10: कुरान में कंपेयर कर ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि इसका खराब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों करूंगा भाई? मैं दो धर्मों को कंपेयर करने का काम तो आरएसएस का है।
7: अच्छा चलिए,
10: द्वेष फैलाने का काम आरएसएस का मेरा नहीं, मैं तो संविधान की बात करूंगा।
1: अब सुनिए, आप दोनों का लंबा लंबा जवाब हो गया, एक एक लाइन से, बाकी लोग चेहरा नहीं देखेंगे।
7: संविधान के अनुसार कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार, महिला मंत्री 0, हिमाचल में सरकार महिला मंत्री 0,
10: क्या बात,
7: तेलंगाना में सरकार 2,
10: कर्नाटक में 2,
7: एक थी वो पिछली बार खत्म हो गई, अब आइए केरल में 2, चार राज्यों में चार मंत्री
10: यार आप लोग
7: बताइए।
10: मैं फिर कह रहा हूँ डीके शिव कुमार का आज आप अकाउंट खोल लो, 2 मंत्रियों ने,
7: आप बताइए
10: मुख्यमंत्री को 2 मंत्रियों ने, महिला
7: सरकार
10: राखी बांधी,
7: बताओ कितनी मंत्री है महिला?
11: बेकार की बात,
7: अरे आप ये बेकार की बात,
11: आज तक आरएसएस की, आज तक आरएसएस की कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी है जरा बता दीजिए।
7: राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति का चौथी स्वयंसेवक संघ की
11: बनी है जरा बता दीजिए मुझे,
7: स्वयंसेवक संघ की
11: बीजेपी की बता दीजिए कितनी महिला अध्यक्ष बनी है,
7: बताता हूं,
11: बताइए ना नाम,
7: बताता हूं,
11: बताइए,
7: हम तो ज्यादातर
11: विपक्ष में, बताइए ना बीजेपी की आज तक कितनी अध्यक्ष बनी है,
12: चिल्ला रहे हैं,
11: बताइए सर नाम,
1: अब एक एक लाइन से बोलने दूंगी मैं आप दोनों को, बाकी लोग
11: नाम बताइए ना,
7: भारत के इतिहास
11: आरएसएस के कितनी चीफ महिला बनी है,
7: अरे भाई,
11: और बीजेपी की अध्यक्ष आज तक कितनी बनी है, एक का नाम बताइए मुझे,
7: बताएं,
11: बताइए,
7: अब सुनो पूरी, अब बोल सकता हूँ,
11: दोनों का जवाब दीजिए,
7: मैं बताता हूँ,
11: बीजेपी
7: भारत की पहली प्रतिपक्ष महिला सुषमा स्वराज हमने दी,
11: अरे
7: भारत की पहली विदेश मंत्री महिला हमने दी, भारत की पहली रक्षा मंत्री हमने दी,
11: कैबिनेट महिला बनी
7: दो महिलाएं बताइए
11: हमने दी,
7: अब
11: बीजेपी की महिला अध्यक्ष कोई भी बताया हो उसका नाम बताइए,
1: आलोक जी बारी बारी,
7: अच्छा बताइए
11: बीजेपी की महिला अध्यक्ष बनी हो आज तक कोई उसका नाम बताइए,
7: बेटी बहू ब्रिगेड के अलावा महिला अध्यक्ष
11: बनाया यार, बाकी सब
7: नहीं बताइए
11: मुझे, केवल ये बताया बीजेपी,
7: अरे मैं कह रहा हूँ आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया, आपने रक्षा मंत्री बनाया, आपने विदेश मंत्री बनाया, आपने वित्त मंत्री बनाया, लॉन्गेस्ट टर्मिंग विदेश मंत्री हमारी,
1: अच्छा ठीक है आप संगीत रागे जी,
11: अध्यक्ष महिला बनी है उसका नाम बताइए,
1: ठीक है आप,
7: अच्छा बेटी बहू की बीजेपी महिला अध्यक्ष बनी,
11: बीजेपी,
7: अरे बताओ पेट्रियार्की के अलावा कोई महिला अध्यक्ष
11: बनी, हमने तो एनिमेशन, हमने तो
1: आप लोग इनको समझाइए, आप लोग इनको समझाइए,
11: एनी बेसन 1916 में,
1: अरे राउंड टेबल, राउंड टेबल, राउंड टेबल का मतलब ये नहीं है कि दो लोग जो चिल्ला सकते हैं वो चिल्लाते
11: नहीं, नहीं मुझे केवल ये,
1: बाकी चार लोगों को इंतजार करना है,
11: अंजना जी मुझे उत्तर नहीं मिला, आरएसएस का चीफ
1: सुनिए,
11: कोई महिला रही
1: आपको एक बात बताती हूँ, इस मामले में सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चलिए संगीत रागी जी,
11: बीजेपी के एक भी अध्यक्ष महिला बनी उसका नाम चाहिए,
1: संगीत रागी जी,
7: पैट्रियार्की का
11: बताइए ना भाई मुझे, महिला का नाम, एक महिला जो मनुस्मृति का नाम बताइए,
1: की मानसिकता रखने वाले लोग इस वक्त देश को चला रहे हैं और इसीलिए महिलाओं के खिलाफ काम किया जा रहा है, इस पर क्या काउंटर है आपका?
13: देखिए सबसे पहले तो जो मनुस्मृति पर बात करते हैं उनको शायद भारत का टाइमलाइन का सेंस भी नहीं है जिसके बारे में वो बात करते हैं, हम जिस मनुस्मृति की बात करते हैं ये मनु परंपरा होती है, इस पृथ्वी की आयु 4,32,00,00,000 है और 14 मनवांतर होते हैं और जिस मनवांतर में हम रह रहे हैं वो वैवस्वत मनवांतर होते हैं, ऐसे आंख मत मेरी तरफ गुस्साइए मत, जब हम लोग संकल्प मंत्र पढ़ते हैं तो संकल्प मंत्र पढ़ते हुए हम क्या कहते हैं, वैवस्वत मनवांतर, और वैवस्वत मनवांतर के अंदर 38,00,000 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यदि हम मान लेते हैं, मैं मान लेते हैं
7: कलयुग प्रथम चरण,
13: कलयुग प्रथम चरण है तो एक मिनट
11: आगे भी चलें
13: सर,
11: फिर गोत्र भी बता,
13: पंडित जी
11: यही तो हम कह रहे हैं कि गोत्रों पे भी विभाजन,
1: गुरु जी बोलने दीजिए,
7: अपना गोत्र बताया है राहुल गांधी,
1: गुरु जी
7: पार्टी,
11: राहुल गांधी ने कभी नहीं बोला,
1: बहुत मुश्किल है, नहीं तो फिर चीखते रहिए लोग सुन ही नहीं पाएंगे,
11: ये लिखती है स्त्रियों की बुद्धि स्थिर अस्थिर होती, ये मनुस्मृति में लिखा,
7: कहाँ लिखा है, ओरिजिनल दिखाइए,
11: अरे भाई
7: ओरिजिनल टेक्स्ट दिखाइए,
11: 8.7
7: ओरिजिनल टेक्स्ट
11: के साथ
7: जो आपकी छपी है सरकार के द्वारा उसमें
11: मैं श्लोक के साथ बैठा हूं,
7: नहीं नहीं ये तो कोई भी,
11: मैं श्लोक का नंबर भी बताओ,
7: ओरिजिनल बताओ भाई,
11: आप उस पुस्तक का श्लोक करना चाहते हैं जो पुस्तक महिलाओं में विभेद करती है, शूद्रों को डाउन करते नहीं है, और उसी का नतीजा है
1: कि खड़गे
11: जी जिस मंच पर भाषण देकर आए क्योंकि वो दलित थे इसलिए उस मंच का शुद्धिकरण बीजेपी ने किया, पूरी तरह से मनुस्मृति से ये लोग
1: जवाब दे लेंगे,
11: नहीं नहीं मैं
1: उसी, मत
11: मैं okay, उसी हाँ। उसी का जवाब दे देता हूं, पहले उसी का जवाब,
7: खड़गे जी वाले पे,
13: सबसे पहले तो खड़गे जी को दलित होने के कारण सोनिया गांधी ने अपमानित किया, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि वहां पर कोई और खड़ा होता, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उम्र में उनसे बड़े थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पद और ओहदे में अनुभव में सबसे ज्यादा बड़े थे, उसके बावजूद भी वो डांट खाते रह गए,
1: कहां डांट खाया,
13: अरे भाई सोनिया गांधी ने कहा स्टॉप
7: करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं आप,
11: फिर हमको बोलने लेने
7: दीजिए, आप मुझे केवल बताइए मंच का शुद्धिकरण क्यों हुआ, खड़गे जी के मंच का शुद्धिकरण आरएसएस दलितों ने
11: इसलिए सोनिया गांधी,
7: इसका उत्तर चाहिए हमें,
11: वो अध्यक्ष
7: आज भी
1: बारी बारी से आलोक जी
7: विरोधी,
1: आपने बोल लिया, आप
7: सुनिए, वहां पर रामलीला मैदान में मजहबी नारे लगे इसलिए हुआ,
11: कोई मजहबी नारा नहीं लगा, मैं उस मंच पर था, मैं वहीं पर, देखिए
1: बोले,
11: देखिए
13: सबसे पहले तो मैंने इसीलिए कहा कि खड़गे जी को दलित होने के कारण श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपमानित किया। यदि कोई वहां ब्राह्मण अध्यक्ष होता तो सोनिया गांधी जी की हैसियत नहीं थी कि इस प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। दूसरी बात, प्लीज प्लीज, कोई नहीं कह सकता कि स्टॉप स्टॉप, हु आर यू टू डिसाइड, यू आर जस्ट ए पार्लियामेंट्री,
11: कोई भी जस्ट में बात करने में क्या दिक्कत है भाई?
13: कैसे वो बोल सकते थे?
11: क्या प्रॉब्लम है?
13: कैसे वो बोल सकते थे?
11: नहीं बोल सकते थे,
13: नहीं बोल सकते थे।
11: जिसका मन में आता है झूठ बोल के चला जाता
13: है। संस्कार होता है, एक जगत प्रकाश प्रधानमंत्री को होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रसाद नड्डा
11: विषय पर नहीं आएंगे
13: तो प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरी बात, मैंने इसीलिए कहा कि राहुल गांधी जब मनुस्मृति को कोट करते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती है कि मनुस्मृति कब हुआ, क्या आदि मनु के साथ हुआ था? आदि मनु का उम्र जो होता है आज से 2 करोड़ से ज्यादा वर्ष होता है। दूसरी बात, यदि हम वैवस्वत मनु का ये बात करते हैं तब भी मानते हैं कि 38 लाख वर्ष पहले ये हुआ। इतने सालों में कितना इंटरपोलेशन होता है, जो हिस्टोग्राफी है, स्क्रिप्चुरल हिस्टोग्राफी और जो जो अभी साइंटिफिक हिस्टोग्राफी, दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। जो स्क्रिप्चुरल हिस्टोग्राफी है वो बहुत मिलीनियम में चला जाता है, जो अभी मॉडर्न हिस्टोग्राफी है आज से कम 700 पढ़ा लिखा चीज आपको थोड़े बुद्धि में आएगा। अरे सर, पढ़ा लिखा चीज बुद्धि में नहीं आएगा।
11: नहीं, बुद्धि में नहीं आएगा,
13: पढ़ी लिखी चीजें नहीं बुद्धि में आएगी।
11: बुद्धि में किताब
13: तो पढ़ते नहीं है, किताब पढ़ने से तो
6: विवेक सिलस जी को दिखा दीजिए,
13: तो पढ़ने लिखने से होता नहीं
11: है। विवेक सिलस जी को दिखा दीजिए,
6: पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, जल्दी कंक्लूड कीजिए, कंक्लूड कीजिए।
11: दर्शक सोच कहना क्या चाहते हो भाई?
13: मैं कह रहा हूं कि इतने वर्ष का लिखा हुआ टेक्स्ट उसमें बहुत इंटरपोलेशन हुआ है, कोई ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, और मनुस्मृति का नाम लेकर आप
11: सिर्फ नारी को गाली देने लगे।
13: अरे भाई, बिल पे बोलो ना,
6: एक एक साइलेंट पॉइंट है मिस्टर आलोक शर्मा, यानी यानी
13: बाइबल और कुरान पर बोलकर।
6: अच्छा रागी जी, एक सवाल तो
13: सुनिए, हिम्मत है सोनिया,
6: फिर वहां पहुंच गए। रागी जी सुनिए ना, रागी जी सुनिए, तो आप ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रापोलेशन है, और अगर ये एक्स्ट्रापोलेशन मनुस्मृति का है तो ये गलत है।
11: गांधी ने कहा है,
6: गलत है ना, गलत है ना, गलत है ना, गलत है ना,
13: बिल्कुल।
6: मैं तो बोलिए ना, कहीं डिफेंड कर रहे हैं मनुस्मृति को, बोलिए। विवेक सिलस जी, विवेक सिलस, रुक जाइए आलोक जी,
11: गांधी जी को आदर्श मान रहे हैं, गजब है।
13: क्या मनुस्मृति गांधी से चलाती है
11: इनको? चार बीवी भागने नहीं दूंगा, एक मिनट भागने नहीं दूंगा, चार बीवी बोलो, चार बीवी में बोलो इस बैच पे पैट्रियार्की।
10: मैं फिर मैं
11: बोल रहा हूँ ना, तो क्यों ना बोलिए ना,
10: बोलिए बोल
11: चार बीवी पे।
10: आप कानून लाओ ना, चार की जगह
11: कानून बना के रखा था। ट्राइबल पॉपुलेशन में ऐसा है कि नहीं है?
13: अरे भाई,
11: अभी इसीलिए तुम आएंगे, क्या ट्राइबल पॉपुलेशन में ऐसा है
13: कि
11: नहीं
13: है कि आप टैक्स
11: ट्राइबल में है तो चलेगा,
13: क्योंकि चूंकि
11: मुसलमानों में है तो क्या
13: मुसलमान कर रहे
11: हैं? भंडारी में बोलो ना,
6: वो अंकिता बोलिए, क्योंकि
11: अंकिता भंडारी में बोलो, अंकिता दत्ता में बोलो, तुम्हारी अंकिता भंडारी में बोलो, सीबीआई जांच कहां?
13: राधिका खेड़ा में बोलो,
11: बोलने के लिए क्या दिक्कत है? बोलने के लिए क्यों नहीं बोलेंगे?
13: हमारे साथ
11: चूरी बोलेंगे,
6: बोलिए विवेक सिलसिला, आप उनको बताइए ना, आप ही की तरफ है। अरे आलोक जी, आपने दोनों को चुप रखा है, मतलब 10 मिनट बचा है शो का, बोलना है कि नहीं इन दोनों को?
11: बंधन वालों से इनको कुछ नहीं,
6: जल्दी से बोलिए विवेक सिलसिला, जल्दी से।
12: देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये बोलूंगा, जो जहां तक आरएसएस की बात है, आज आरएसएस चर्चा में भी है। अंजना जी, मोहन भागवत जी समय अमेरिका मेडिकल मेडिसिन स्क्वायर मैनहट्टन पे भाषण देने जा रहे
6: हैं, आपके नेता ने पोस्ट भी किया,
12: पोस्ट भी किया, इसीलिए कह रहा हूँ ना, आरएसएस तो पहला था अंजना जी जिन्होंने ये कहा कि संविधान से बेहतर तो मनुस्मृति है। संविधान को जलाने वाले आरएसएस के लोग, ठीक इंडिपेंडेंस के बाद विरोध करने वाले आरएसएस के लोग, तिरंगा का विरोध करने वाले आरएसएस का लोग, भारत के संविधान का विरोध करने वाले आरएसएस के लोग, अभी इन्होंने उदाहरण दिया, एक मिनट रुकिए,
13: संविधान जलाया
12: दिल्ली के अंदर, एक मिनट
6: उन्होंने बोला भी नहीं,
12: एक शब्द नहीं बोलता आप लोग अपना, लेकिन मेरी बात आ जाने,
6: जल्दी पूछ।
12: देखिए खड़गे जी की बात की इन्होंने कि शुद्धिकरण हुआ हल्द्वानी में। अंजना जी, आप याद करिए, जब अखिलेश जी 2017 मुख्यमंत्री नहीं रहे तो सीएम हाउस का शुद्धिकरण किसने कराया, गंगा जल से किसने धुलवाया, मनुस्मृति है कि नहीं है, ये इनकी इनकी सोच है कि नहीं है? जब अखिलेश जी मंदिर में गए तो उसको उनके हटने के बाद, वहां से निकलने के बाद पूरे मंदिर को गंगाजल से धुलवाया गया कि ओबीसी आए, भारतीय जनता पार्टी की सोच है,
11: और क्या सोच है? और
12: इतना ही आपको वो है,
11: भगवान कृष्ण
12: ओबीसी तो सही। सुधांशु जी, आप बहुत बोल लिए। देखिए अंजना जी, 20 सितंबर 2023 लोकसभा, 21 सितंबर 2023 राज्यसभा पूर्ण बहुमत से महिला आरक्षण पास, आज तक लागू क्यों नहीं किया? सुधांशु जी से मेरी बात हो रही है, 2024 में आने चैनल पे इन्होंने कहा था 2029 से लागू करेंगे।
7: हाँ,
12: क्या कर रहे हैं आप?
7: उसमें कौन सा
12: क्लॉज? चिट्ठी भेजी है आपको, पता है कि नहीं?
7: क्या
12: खड़गे जी ने चिट्ठी भेजी है कि 2029 से महिला आरक्षण 543 सांसद पे लागू होना चाहिए, आप कर रहे हैं हाँ या ना इसका जवाब दीजिए।
1: 543
7: हाँ मैं कह रहा हूँ, उसमें लिखा है कि नहीं मेरा समर्थन साथ होना चाहिए।
12: मेरी पार्टी पूरा समर्थन कर रही है।
1: सीमन लटकेगा तो नहीं होगा,
7: लिखा हुआ है आप में।
1: मैं बदलिए,
7: छोड़ो, वन थर्ड दोगे ना महिलाओं को, बोलो अपने टिकट देने में क्या समस्या? देखेंगे अभी देखेंगे, अभी दूध का दूध पानी का नहीं होगा। संविधान तो बदल दो, मैं अपना नहीं बदलू।
12: 2024 लेकर आइए ना।
7: अच्छा चलिए, 2024 के चुनाव में, 24 चुनाव में कितनी महिला थी?
12: 34
7: कैसे? 24 के चुनाव में कितनी महिला टिकट दिया था बताओ? 80 में दिया था
12: सांसद हमारी महिला?
7: नहीं नहीं सांसद नहीं, 80 में कितना टिकट दिए थे? 80 में कितना टिकट?
1: जल्दी से, जल्दी से
14: जी। नमस्कार अंजना जी, मुझे सबसे पहले बस महज द पेट्रियार्की पे ना ये बोलना है कि वहां देख लीजिए कितनी महिलाएं बैठी हैं और यहाँ देख लीजिए अगर महिला का कोई प्रतिनिधित्व हो रहा है तो यहाँ हो रहा है। दिस इज व्हाट द मेंटालिटी इज, व्हाट इज व्हाट द मेंटालिटी इज कि स्मैश द पेट्रियार्की ये लोग कहने के लिए करते और करते नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर मनुस्मृति की ही बात करनी है तो बाकी हिंदू धर्म क्यों नहीं दिखता है? ये वही शिव है जो वही काली है जिन्होंने शिव को रोका था, ये हिंदू धर्म में है, ये वही यत्र नारस्तु पूजते ये वही है जो मनुस्मृति में है। लेकिन आपको अध्याय 3 नहीं देखना है, ये वही है जहां गार्गी मैत्री दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी पार्वती काली चंडी और ऋग्वेद में केवल एक पहली लोपा मुद्रा पहली इकलौती महिला सेंट है, महिला ऋषि जो है वो हिंदू धर्म में है। कौन से और धर्म में आप कहते हो और धर्मों की बात ना करें? क्यों और धर्मों की बात ना करें? अरे
7: कौन सी
14: आलोक जी आपकी आदत है,
1: शर्मा जी इनका मौका नहीं लगेगा, डिबेट खत्म हो रहा है। उनको दिखाइए जी, आप कैसे डिनाई कर सकते हैं बाइबल को, आप कैसे डिनाई कर सकते हैं कुरान को? एंड आई कोट हियर, मैं कुरान से कोट कर रही हूँ 4.34
7: मुसलमान,
1: मैं कुरान से कोट कर रही हूँ, पत्नियाँ जो अज्ञात पालन करने वाली हो और जो पत्नियाँ ऐसी हो जो सरकाशी का तुम्हें भय हो उन्हें समझाओ और बिस्तर में उन्हें अकेला छोड़ दो और अति आवश्यक हो तो उन्हें मारो भी, ये कुरान कहती है। तो स्मैश दी पैट्रियार्की क्यों नहीं आती? और मैं आपको बाइबल से कोट करती हूँ, तिमोथी 2.11-1.2, लेट अ वुमन, लेट अ वुमन लर्न। सर मैं न्यू टेस्टमेंट को कोट कर रही हूँ, सर मैं
12: कोट नहीं कर रही हूँ, क्रिश्चियन
1: स्कूल से
12: हूँ, दूध का दूध पानी के पानी,
1: मैं आपको कॉर्नीथियन से भी कोट कर देती हूँ, मैं आपको कॉर्नीथियन भी कोट कर देती हूँ, वो तो न्यू टेस्टमेंट है सर, मैं क्वीन मेरी स्कूल की पढ़ी हूँ, मैं क्वीन मेरी स्कूल की पढ़ी हूँ सर, बिल्कुल क्रिश्चियन स्कूल की पढ़ी हूँ। अ वुमन शुड कीप साइलेंट इन चर्चेस, वाइफ सबमिट टू योर हस्बैंड्स एज इज फिटिंग इन द लॉर्ड, ये सब है जो हम स्मैश दी पैट्रियार्की की बात नहीं करते।
6: विवेक जी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इधर एक हो गया, हो गया इस्लाम को भी डिफेंड करने के लिए इस तरफ लोग हैं, क्रिश्चियनिटी को भी डिफेंड करने। अरे भाई हर धर्म में महिलाओं के साथ हो रहा है, आज भी अगर आप जाइएगा रोम में और चाहिएगा चर्च में जाना तो कहेंगे सिर को ढकिए, हर जगह तक का डिफेंड काहे कर रहे थे?
7: डिफेंड नहीं कर रहा हूं, अभी तो डिफेंड कर रहे थे मैम, उनका कोड गलत,
6: कौन सा वो धर्म है, कौन सी वो पार्टी है जिसमें सब कुछ एकदम सामान्य और बराबरी का अधिकार मिल गया? अरे गुरुजी हो गया,
14: उनको इस्लाम में क्यों नहीं दिखता, उनको क्रिश्चियनिटी में क्यों नहीं दिखता?
6: प्रोफेसर राजकुमार राजन बोलिए,
14: आधा क्यों दिखता है?
7: अरे मैम संविधान की बात करो, संविधान क्या हो,
14: सर
11: नारी शक्ति मंडल बिल लागू करवाओ, आपको जो मिलेगा
12: कॉम्प्लीमेंट करना है,
11: आपको टिकट मिलेगा, आप संसद बनेंगे, संसद बन जाएंगे, आप सांसद बनेंगी, बिल लागू करवाओ। आप अंकिता भंडारी पे बोलो, आप एनसीआरबी के आंकड़ों पे बोलो, आप 2000 साल पहले मत जाओ, आप भारत और आरएसएस के चक्कर में मत पड़ो।
14: अरे शर्मा जी, नहीं लाया मनुस्मृति का जिक्र,
6: आरजेडी समाजवादी को तो चुप ही करा दिया आज आपने।
14: इंडिया गठबंधन रिलेशनशिप में
6: बोले बोले किताब लेके आए, बोलिए ना
15: जना जी, मनुस्मृति पर बहस चल रही है, विमर्श चल रहा है, पूरा देश में एक नए विमर्श, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि मनुस्मृति पर जितनी भी बातें होती है, अक्सर मैं देखता हूँ सत्ता पक्ष के लोग यह कह देते हैं कि यह टीका टिप्पणी जो है मिथ्या है। तो ओरिजिनल क्या है भाई, कौन यह साबित करेगा ओरिजिनल को? बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी कहा था कि सारे धर्म शास्त्रों को एक जगह कर देना चाहिए, एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए, ऑथेंटिक ये है।
7: और
15: आज मैं मनुस्मृति पर बात हो रही है तो मैं पंडित रामेश्वर भट्ट की पुस्तक है मैं अपने साथ लेते आया हूँ।
7: किसकी है?
15: और इसमें कहिए ना, इसमें जो उदित है जो राहुल गांधी ने कहा वो पद पेपर के सुनाना चाहता हूँ।
7: और मनुस्मृति में कितने अध्याय किताब हाथ पे, पता नहीं मनुस्मृति में कितने अध्याय है, पहले अध्याय में क्या लिखा है, पहले अध्याय में क्या विषय
15: है,
7: कुछ नहीं पता, यही होता है। वो मैकाले मानसी
14: अम्बेडकर
15: ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था?
11: नहीं जलाने वाली कार्रवाई में जहाँ पर जलाया गया था वहाँ वो खड़े थे 1938 में, उसके बाद
15: ऐतिहासिक दूसरी बात सर, ऐतिहासिक तथ्य को आप मोड़ रहे हैं।
11: राजू जी एक चीज बता
15: देखे,
11: सौ नंबर इस पे जाएंगे,
15: वही तो मैं कह रहा हूँ। सरकार नहीं है,
11: मत को
15: अगर पुस्तक के एक ही भजन बहुत सारे आ रहे हैं तो उस पर रोक लगना चाहिए।
11: अरे भाई
15: हजार में है बात होगी,
11: नहीं
15: विमर्श होगा,
11: अरे भाई
15: उसको मानना पड़ेगा आपको
11: भाई। ऐसा है,
14: ये रोक लगाने वाली सरकार नहीं है सर,
11: ये
14: रोक लगाने वाली सरकार नहीं है, ये आपकी मानसिकता है कि किताबों पे रोक लगाएगी, ये आपकी मानसिकता है कि किताबों पे रोक लगाएगी।
11: कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरकार के अंदर होने पर संस्कृति मंत्रालय से
16: छोटी छोटी न्यूज पे जेल में डाल देती है।
7: एक मिनट
16: वालों को जेल में डाल देती
7: है। एक मिनट सरकार छह साल के बच्चे को,
6: आखिरी के दो दो कमेंट लेते हैं, दो दो लाइन आलोक जी आप बोल लीजिए, आलोक जी आप जल्दी से बोल लीजिए, दो लाइन जल्दी से,
14: क्योंकि घर पे लोग कुछ कर रहे थे तो इमरजेंसी कौन लाया था, कौन सरकारों की क्या बात कर रहे हैं आलोक जी, आप
6: जल्दी
14: पार्शियल एमनीजिया में आप मत जिए प्लीज।
10: दुर्भाग्य ये है कि 22 दिन तक संसद को फेस नहीं कर सकते, अंकिता भंडारी पे जवाब नहीं दे सकते, एनसीआरबी के आंकड़ों को पढ़ नहीं सकते, नीति आयोग के ऊपर एक शब्द नहीं बोल सकते, राम मंदिर की डकैती के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, पेपर लीक होते रहे, होते हो आज, होते हो कल, होते हो। दुर्भाग्य यह है कि आज वर्तमान में इस सरकार को नहीं जीना है, उसको केवल और केवल पिछले इतिहास के पन्नों को उठा कर रखना।
6: छोटा सा बस इतना ही बड़ा
7: लगता है, सिर्फ इन्हीं की बात को राहुल गांधी को समझना चाहिए था कि वर्तमान की बात करनी है। आलोक शर्मा जी जाके राहुल गांधी जी को ज्ञान दीजिए, ज्ञानदेव पाणे बनके, कि वर्तमान की बात करो, उसकी बात मत करो। और अगर पीछे जाओगे तो मैं एक और फैक्ट बोल देना चाहता हूं, विस्क्राफ्ट एक्ट का नाम सुना है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट था, कोई बुराई नहीं थी, चर्च के कहने के ऊपर बाकायदा पार्लियामेंट ने एक्ट पारित करके किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित करके जिंदा जला दे।
16: वर्तमान में जी लो, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दो,
11: डाइन
7: एक मिनट में लास्ट एक लाइन कहता हूं, मैं सिर्फ एक लाइन कहता हूं, दुनिया में एकमात्र हिंदू संस्कृति है जिसने ईश्वर में स्त्री को स्थान दिया है, दुनिया में हर संस्कृति धर्म सभ्यता में ईश्वर सिर्फ पुरुष है,
11: कोई स्त्री तत्व नहीं, हमारे अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है, हमारे यहां शिव शक्ति है, लक्ष्मी नारायण है, सीताराम है, राधे श्याम है, बताओ हैसियत हो तो कोई बताए, मैं चैलेंज करके पूछता हूँ।
12: अंकिता भंडारी भी स्त्री थी कि नहीं थी?
14: चलिए यहीं पर इस बहस का अंत करते हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर चीखा चिल्लाहट अंत में होने लगी, पूजा अपनी जगह है, बराबरी का अधिकार महिलाओं को मिले इस पर फोकस होना चाहिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए

0: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा।
1: इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
0: ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे।
2: बहुत टायर्ड हो गई। Take a date,
3: not bites. No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: In association with
3: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
4: Tak, digital first channels, 11 billion views, 85 million unique viewers, one stop solution for your brand, regional or hyper local reach. हर शहर, हर कस्बे तक advertise करने के लिए email करें।
5: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
6: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
5: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
7: 19 साल के छात्र साहिल लजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
5: हर बात देश के सामने।
6: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
5: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।
8: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती।
9: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।
10: In 2018 in Delhi, I had a lecture and Muslim brothers were also there and they asked me the question, you are a Hindu organization, you say Hindu Rashtra, what about us Muslims, would you drive us out? I said no, that is not Hindutva. If any Hindu thinks that there should be no Muslim in Bharat, he will not remain Hindu. If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
11: We are saying united in oneness and what? I cannot hear you. That is the third line. You omitted the second line. Don't omit the second line. United in oneness and decorated by the diversity.
12: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट पर लिखा है कि हम उन्हें एक ऐसे महान नेता के रूप में याद करते हैं जिनका देश के लिए अटूट समर्पण

0: वहां की एक सड़क शास्त्री स्ट्रीट के नाम से पहचाने जाती है, शास्त्री मेमोरियल वहां पर उनकी प्रतिमा है, और उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी आज अर्पित करते हुए दिखाई दे, साथ साथ गांधी विद्या केंद्र में भी प्रधानमंत्री गए। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देख रहे आज तक
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: so sorry.
1: Yeah.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती है सेफ्टी के कारण।
3: सियासत में एक नई महाभारत छिड़ गई है।
2: हिंसा से बचने के लिए 50% महिला।
3: हाल ही में महिलाओं के साथ कार्यक्रम में स्मैश द पेट्रियार्की के ऐलान के साथ राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर हमला बोला था
2: कि एक माइंडसेट है। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट।
3: स्मैश द पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता को कुचलना वो विचार है जो दावा करता है कि महिलाओं को समाज में दबाया गया, उन्हें अवसर नहीं मिले। इसके पीछे समाज की दकियानूसी सोच जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बेटियों को बेटों के बराबर मौका और सम्मान देने की बात कह चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि स्मैश द पेट्रियार्की कहकर राहुल हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी का पुराना वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा था, मनुस्मृति और हिंदू महिलाओं के संदर्भ में राहुल गांधी पितृसत्ता को ध्वस्त करने की बात करते हैं, लेकिन जब बात हिजाब और अबाया की आती है तो वही चुनाव की स्वतंत्रता बन जाता है।
4: सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार
5: देंगे? मेरा मेरी व्यू है, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी मेरी तो ये राय है।
3: बीजेपी ने इंस्टाग्राम पोस्टर में भी राहुल गांधी पर हमला बोला था। राहुल के स्मैश द पेट्रियार्की के जवाब में पोस्टर में लिखा है, भारत माता की जय शुरू करते हैं। इसी पोस्ट के दूसरे पोस्टर्स में शाहबानो केस, 3 तलाक, 33% महिला आरक्षण और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में महिलाओं की भागीदारी नहीं होने को लेकर सीधा प्रहार है। इसी महीने राहुल के मंच पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर फूहड़ टिप्पणी पर भी बीजेपी ने उन्हें घेरा था।
6: 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर ये बयान दिया और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे

0: एक मित्र देश इटली की।
1: मनुस्मृति के विरोध के नाम पर सियासत का नया हंगामा ऐसे समय में शुरू हुआ है जब एक एक कर राज्यों के चुनावों में महिला वोटरों को लुभाने की स्कीम्स के बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो

0: शाम के 7 बजने वाले हैं। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अगले आधे घंटे में आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय भारत में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर। यूरेनियम समेत कई अहम समझौते। शास्त्री स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। संघ प्रमुख के मुस्लिम वाले बयान पर बयानबाजी तेज। मौलाना बोले कि अब जमीन पर भी दिखे असर। ओवैसी ने आरएसएस पर लोकतंत्र का विरोध करने का लगाया आरोप। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के जेपी एनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को सामने लेकर आए, कहा इन लोगों ने खाया पैसा। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप की हत्या। नहर में मिला शव। गोली मारकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा खतरा। फिर से उफान पर त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 781 तक पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शो की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं, और ये बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां पर एक हिंदूवादी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह की गोली मार दी गई है, उनकी हत्या कर दी गई है। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में थे और गाड़ी में ही गोली मारकर उनकी हत्या की गई, और उसके बाद से शव को नहर में फेंका गया। लखनऊ के दुबग्गा थाना इलाके के पास की यह घटना, जहां शव मिला है। धीरेंद्र लखनऊ के पीजीआई इलाके के रहने वाले थे, मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले थे, और उनकी हत्या कर दी गई है। गोलियों से भूनकर उनको मार डाला गया है। लखनऊ में यह घटना घटित हुई है, और गोली गाड़ी में मारी गई और उसके बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर पर यह प्रश्न चिन्ह है। हमारे संवाददाता संतोष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, कौन थे हत्यारे, किसने मर्डर किया, क्या विवाद था, क्या जानकारियां मिल रही हैं शुरुआती?
1: देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह को गोली मारकर हत्या की गई। पहले उनका किडनैप किया गया, 2 दिन से वो लापता थे। घर वालों ने लखनऊ के सुशांत गोल सिटी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, और 2 दिनों से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर दबाए थी। वो गुपचुप तरीके से इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन आज अचानक ये पूरा मामला तब खुला जब लाश बरामद हो गई। सुशांत गोल सिटी थाना क्षेत्र से इनकी फॉर्च्यूनर मिली, और वहां से लास्ट टाइम से मूवमेंट इनका देखा गया, और उसके बाद ये पीजीआई थाना क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन लाश मिली करीब 12 से 14 किलोमीटर दूर दुबग्गा के नहर में ये लाश मिली है। अज्ञात स्थान है जहां पर ये लाश मिली है। गोली मार करके हत्या कर दी गई है। अभी तक पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
0: लेकिन अगर हुआ था तो उन्होंने क्या परिवार को किसी तरह की कोई धमकी दी, कोई फिरौती का कॉल आया, क्या विवाद था, किसके साथ उनका विवाद चल रहा था?
1: देखिये, अभी तक जो जानकारी है कि उनकी सिर्फ गुमशुदगी थी। वो घर से निकले थे लेकिन लौट कर नहीं आए, और लौट कर नहीं आने के चलते परिवार वालों ने अनहोनी की आशंका के साथ पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी, और पुलिस तलाश भी कर रही थी, लेकिन वो अपने ढंग से तलाश कर रही थी। और आज 2 दिन बाद जब लाश मिली है तो हड़कंप मचा है। मौके पर फॉरेंसिक टीमें पहुंची हुई है। सातोरी का ये इलाका है, दुबग्गा थाना क्षेत्र पड़ता है, जहां पर ये अज्ञात
0: स्थान
1: जहां पर ये
0: लाश मिली है। पुलिस की नाकामी है कि आप पहले तो ढूंढ नहीं पाए, उसके बाद अब मिला भी है तो उनका शव मिला है, वो भी बहुत सारे सवालों के साथ। बहुत शुक्रिया संतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मची सियासत की। उत्तर प्रदेश की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर अब जंग तेज हो गई है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर जेपी एनआईसी से लेकर एक्सप्रेस बेस, राम मंदिर चढ़ावा, चोरी का मुद्दा अब जोर शोर से उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो पलटवार करते हुए अखिलेश सरकार के दौर के खर्च को, उनके दौर की योजनाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है, और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, यानी जेपीएनआईसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जेपीएनआईसी को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
3: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। जेपी एनआईसी बीजेपी ने जेपी बेच दिया।
2: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी एनआईसी के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया, उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़। इसके बावजूद काम अधूरा रहा। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
4: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
2: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं बीजेपी का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
3: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था, राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है, जिसको लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
4: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
2: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं, और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म, मानवता, एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारत में मुसलमानों पर दिए गए उनके बयान की हो रही है। अब उनके बयान पर सियासत भी जबरदस्त है।
5: अमेरिका के न्यूयॉर्क में मानवता को लेकर कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे। मोहन भागवत ने यूं तो धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में रह रहे मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। पहले वो बयान सुनिए।
6: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
5: मोहन भागवत ने उधर न्यूयॉर्क में बयान दिए और यहाँ हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई। मोहन भागवत के बयान को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हाथों हाथ लिया।
7: हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ, अजीज रिश्तेदार, भाई, नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है।
8: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहनाया जाए।
5: मोहन भागवत के बयान ने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया। विपक्ष भागवत के बहाने बीजेपी को घेरने लगी।
9: अपने जो उनके निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी उनके आचरण की समीक्षा करके उनको उनके बारे में निर्णय ले ले। मोहन आदरणीय भागवत जी,
10: केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री कौन सी जुबान बोलते हैं, मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, तीन चार को तो तुरंत आप फौरी तौर पे गिन सकते हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान के सरजमी पे एक बात और अमेरिका की धरती पे सुविधानुसार दूसरी बात, ये विरोधाभास देश को लील लेगा।
5: मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत सुलगी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच में विवाद खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी की बेटे संतोष सुमन ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी, जिसके बाद से दोनों ही नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।
5: सवर्ण छात्रों ने जिस रोज से आरक्षण में बदलाव के लिए आवाज उठाई, उसी रोज से आरक्षण को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी। इसी सियासत के जोर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दे दिया और इसी बयान ने एनडीए में बवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान नाराज हो गए।
11: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहां कहा गया कि आर्थिक आधार पे। तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें वो आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। मांझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या मांझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें।
5: चिराग पासवान सीधे सीधे जीतन राम मांझी का इस्तीफा मांगने लगे तो जीतन राम मांझी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। अब मांझी ने भी चिराग का इस्तीफा मांग लिया है।
12: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।
5: मतलब आरक्षण पर एनडीए के नेताओं ने आपस में ही विवाद कर लिया है। इन बयानों के बीच में संतोष सुमन का बयान दोबारा आया है।
13: मैंने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों को, चाहे किसी को भी, तो समाज में कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ तक अभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुँचा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको संवेदना रखनी चाहिए और ऐसी नीति और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको भी आरक्षण का लाभ हो सके।
5: अब आरक्षण पर कोहराम मचा हुआ है। एनडीए के भीतर ही नेता एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज जयपुर की, जहां पर नीट पीजी की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा के दौरान बार बार लाइट कटी और कंप्यूटर बंद हुआ, जिससे परीक्षा प्रभावित हुई। छात्रों के हंगामे के बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है।
5: ये छात्रों का आक्रोश है, ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, ये शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों की नारेबाजी है। तस्वीरें जयपुर के सीतापुर में एक सेंटर की है जहां नीट पीजी की परीक्षा होनी थी। वैसे तो देश भर के 1000 से ज्यादा सेंटर्स पर आज नीट पीजी की परीक्षा हुई, मगर जयपुर के सीतापुर में ये परीक्षा नहीं हो सकी। आरोप है कि बिजली न होने से परीक्षा में देरी हुई। बाद में लगातार पावर कट हुआ तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द हुई तो छात्र और उनके परिजनों की आंखों में आंसू आ गए।
14: 5 साल ये MBBS की तैयारी कर रही है, पीजी की तैयारी में लगा हुआ है, कितना पढ़ना पड़ता है, इस दोबारा पेपर देगा, इसका ट्रॉमा हम नहीं झेल सकते। 3 साल पीजी की उसमें लगेगा, वहाँ पे भी ट्रॉमा है। इनको एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। आज पेपर इजी आया था, इन लोगों का अगर एग्जाम होता है तो प्लीज आप इनको एडिशनल बेनिफिट।
15: उसमें ना एसी है, 3.5 घंटे तक कोई एग्जाम देगा, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता। मैं पूरे पसीने में हो गया था स्टार्टिंग से।
16: अगर 9:15 के आसपास 36 क्वेश्चंस अगर बट चुके हैं तो ये पेपर लीक है। क्या पता किसी और सेंटर पे कोई इन 36 क्वेश्चन को देख चुका हो। 36 क्वेश्चन जानते हैं आप कितने होते हैं, सेम नंबर पे 1000 रैंक में चेंज आ जाती है। क्लस्टरिंग इतनी गंदी होती है, सेम क्वेश्चन, सेम पेपर पे, सेम क्वेश्चन पे। तो अगर
17: ना लाइट गई ना कुछ गया, सिर्फ कंप्यूटर बंद हो गया ऑटोमेटिक, ऐसे कैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और ये सिस्टम में ग्लीच नहीं है, ये पेपर लीक है। नीचे हैकिंग चल रही थी, कोई भाई पैसे देके पास हो चुका है।
5: छात्राओं का गुस्सा फूटा और छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे।
18: जयपुर में नीट पीजी एग्जाम के बीच बिजली गुल हुई और उसके बाद अभ्यर्थी थे जो कि एग्जाम छोड़कर बाहर आ गए और अब परीक्षा सेंटर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जो अभ्यर्थी है वो नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर ये बीच एग्जाम छोड़कर यहाँ पर आ गए, जिसके बाद यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर के बाहर यहाँ पर हंगामा बरपा है। देखिए अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, आंकड़ों से इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, कब ये बिजली गुल हुई?
19: सर ये जब हम एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे के लिए बिजली गुल हो गई, इनके सारे सिस्टम बंद हो गए। उसके बाद में डेढ़ घंटे में कम से कम 5 से 7 बार है सिस्टम बंद हुआ है और हर बार कम से कम 5-10 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं और बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, खुलेआम चीटिंग हो रही है।
5: छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 5 सितंबर को होगी। विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
0: पंजाब के संगरूर में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ डीसी दफ्तर पहुंच गए हैं और दोनों ही मुख्य रास्तों को घेरकर लंबे धरने की पूरी तैयारी कर ली है।
5: भारत यूएस ट्रेड डील के विरोध में फिर से उतर आए हैं पंजाब के किसान। संगरूर में डीसी ऑफिस के बाहर किसानों ने तंबू गाड़ दिया है। किसानों के पास राशन, चारपाई, चूल्हे, पंखे और एसी तक मौजूद हैं। ट्रॉलियों को ही रहने खाने का ठिकाना बना लिया गया है। किसानों ने धरना स्थल को ही अपना पूरा आशियाना बना लिया है। ट्रॉलियों के भीतर चारपाइयां बिछ चुकी हैं, राशन का पूरा बंदोबस्त है और चूल्हे भी चढ़ा दिए गए हैं। लंबे समय तक डटे रहने के इरादे से जरूरत का हर सामान पहले ही जुटा लिया गया है। वहीं भीषण गर्मी से राहत के लिए ट्रॉलियों में पंखे लगाए गए हैं। इस पूरे इंतजाम से किसानों का इरादा साफ नजर आता है। वे अपनी मांगों पर लंबे समय तक प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इस धरने की मुख्य वजह प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील है, जिससे किसान अपनी आमदनी पर बड़ा खतरा मान रहे हैं। इसके अलावा किसान मजदूरों की पूरी कर्ज माफी, फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और नई कृषि नीति लागू करने की मांग भी जोर शोर से उठा रहे हैं। यह पूरा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहक की अगुवाई में खोला गया है। संगठन ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस बात नहीं बनती तब तक ये धरना जारी रहेगा। कमलजीत संधू के साथ कुलवीर सिंह, संगरूर आज तक।
0: अब बात नेपाल में मचे हाहाकार की। नेपाल में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जिन इलाकों में यह तबाही सबसे ज्यादा हुई है वहां पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है। सड़कें टूट चुके हैं, संपर्क के साधन ठप हैं और दुर्गम पहाड़ों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है। नुवाकोट एयरबेस से लगातार उड़ाने भरे जा रहे हैं, कहीं लोगों को निकालने के लिए तो कहीं पर राहत पहुंचाने के लिए। अब आपको दिखाते हैं इन पहाड़ों में जिंदगी बचाने की जंग आखिर लड़ी कैसे जा रही है।
20: नेपाल में आपदाग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है, इसको ऐसे समझिए कि नुवाकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता है, कुछ लोगों को उतारता है और फिर जरूरी सामान लेकर उन दुर्गम पहाड़ों की ओर उड़ जाता है जहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
1: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोगों को बचाया जा रहा है।
20: अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो नुआकोट एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के इंजन कभी बंद नहीं होते। रेस्क्यू टीमें लगातार उड़ान भर रही हैं। नेपाली सेना के साथ साथ सिविल हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में लगा दिए गए हैं।
1: लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर काफी तेजी से चल रहे हैं। एक के बाद एक उड़ाने हैं हेलीकॉप्टर, या तो जो सैनिक हैं या फिर जवान रेस्क्यूअर हैं उन्हें एयर ड्रॉप कर रहे हैं या फिर उसके साथ साथ जैसा खाना पीना हो रहा है उसे कोशिश की जा रही है।
20: नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों में जाने का एकमात्र तरीका ये हेलीकॉप्टर ही है, क्योंकि रसुआ समेत कई इलाके पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गए हैं।
1: नुआकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है। जहाजों की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
20: इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, जिंदगियों को मलबे में सिमटते देखा। कुछ लोग किस्मत वाले भी थे जो किसी तरह से बच गए।
1: आप लोग किस इलाके में थे? कितने दिन से थे आप लोग वहाँ पे? बात नहीं, तो वहाँ पर क्या स्थिति थी? खाना पीना था? कितने दिन से छुटे हुए थे आप लोग? कितने लोग थे आप लोग जो वहाँ पे थे?
20: रसुआ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। वहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए जो लोग किस्मत से बच भी गए हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
21: बाहर गिरा है।
1: आप लोग वहीं पे थे पानी?
21: हाँ, लैंडस्लाइड हुआ है।
1: तो आप लोग मतलब बचे कैसे वहाँ पे? जब आए तो
21: ऊपर से चढ़ाए
20: रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को बेस कैंप में फर्स्ट एड दी जा रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास ही मेडिकल कैंप लगाया है जहां पीने के पानी के साथ साथ जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।
1: इस आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए नेपाली सेना ने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप तैयार किया है। एक चौथा अस्पताल आप समझ लीजिए एयर बेस है, तो जहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है, उसके बाद जहाँ उनका इलाज किया जाता है और उसके बाद कई बार जो गंभीर खतरे में है उन्हें तुरंत काठमांडू में लिफ्ट कर लिया जाता है। आप समझिए कि जिस तरह के लोग आई है, जो पानी के बहाव में थे, मलबे के बहाव में थे, किसी का दम टूट रहा था, उन सबको ला सकती है। बड़ी चुनौती है और इसीलिए जितनी एजेंसियां हैं, जितने हाथ हैं, हर कोई मदद के लिए खड़ा है। एक तरफ नेपाल की सेना है जिसको अपने जो अंजाम दिए मेडिकल कैंप में, उसका ख्याल रखा जा रहा है, इलाज पहुंचाया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है।
20: आशुतोष मिश्रा, नुआकोट बेस कैंप, नेपाल, आज तक।
0: और अब रुख करते हैं उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद का, जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं। ताशकंद में भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने उज़्बेकिस्तान को भारत का प्रमुख साझेदार बताया। दोनों देशों में $1 बिलियन से ज्यादा का द्विपक्षीय कारोबार होता है। यूरेनियम सप्लाई को लेकर भी उज़्बेकिस्तान के साथ बातचीत हुई और इन 5 तस्वीरों में पीएम मोदी के उज़्बेकिस्तान दौरे का सार दिख जाएगा। आज पीएम मोदी का उज़्बेकिस्तान ने अपना सर्वोच्च सम्मान भी पीएम मोदी को दिया है।
22: हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए, हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहाँ न्यू टैस्केंट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहां से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं।
0: सेक्टर में कैसे योगदान दिया जा सकता है और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस पर काफी चिंतन मंथन भी हुआ है। तो ये पांच तस्वीरें पीएम मोदी का भव्य स्वागत से लेकर भारतीय समुदाय से मिलना, चर्चा करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होना और दोनों ही देशों के बीच में रिश्तों को और मजबूत करने पर ये दौरा इंपॉर्टेंट रहा। आज से हिंदुस्तान की बेटियां एशिया कप जीतने का अपना अभियान शुरू करने जा रहे हैं। पिछले साल फाइनल में हार की कसक निकालने का वक्त अब आ गया है। आज रात 8 बजे मुकाबला है थाईलैंड के साथ और अपने आखिरी लीग मैच मुकाबले में टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान होगा।
5: भारतीय महिला टीम इस बार पूरे करेगी अरमान। आज से शुरू होगा एशिया कप का अभियान। थाईलैंड हांगकांग के बाद निशाने पर होगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान की बेटियां तैयार हैं एक और मैदान मारने के लिए। मौका है एशिया कप का जिसमें एक से बढ़कर एक टीमें खेलने आई हैं। दुबई में शुरू हुए इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम आज से अपने अभियान का आगाज करने जा रही है। आज कहने को भारतीय महिला टीम का मुकाबला थाईलैंड जैसे कमजोर टीम से है, लेकिन भारत इसे बड़े मुकाबलों की तैयारी के तौर पर लेगा। आज रात 8 बजे भारत को थाईलैंड से खेलना है तो इसके बाद 3 सितंबर को हांगकांग से मुकाबला होगा, लेकिन असली मजा आने वाला है 5 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान का भारत के हाथों इस बार भी पिटना तय है, लेकिन हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया को पिछली बार की कसर इस बार पूरी करनी है। पिछली बार श्रीलंका ने फाइनल में भारत को हरा दिया था। वैसे एशिया कप में अरसे से भारत का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदर्शन में लय हासिल करने की होगी। इस साल टीम इंडिया इस फॉर्मेट में जीती कम है, हारी ज्यादा है। ऐसे में एशिया कप जीतकर हरमनप्रीत एंड कंपनी कई सवालों के जवाब भी देना चाहेगी। आज तक ब्यूरो।
0: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।

0: आगे आगे
1: उधर
0: उधर गया।
1: करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
4: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
5: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके की एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

इस सपा का मतलब ही है लूट खसोट, इस समाजवादी पार्टी का मतलब ही है कि डकैतों का एक गिरोह। ये लोग नहीं है, 17 के पहले मां क्या क्या कहावत थी, देख सपाई बिटिया घबराई, यानी हर बेटी चिंतित रहती थी, हर अभिभावक चिंतित रहता था क्या होगा। किसी भी मां बाप के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है बेटी की सुरक्षा, हर मां बाप के लिए चिंता होती है, हर भाई की चिंता होती है। लेकिन इन सपाइयों ने बेटी के साथ जो व्यवहार किया था, कल मैं देख रहा था, जब हम फ्री में बस यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे थे 26 को, तो समाजवादी पार्टी के बबुआ की नींद भी टूटी और वो भी एक प्रेस वार्ता जल्दी जल्दी में बुलाने लग गए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: उज़्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर। यूरेनियम समेत कई अहम समझौते। शास्त्री स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। संघ प्रमुख के मुस्लिम वाले बयान पर बयानबाजी। मौलाना बोले अब जमीन पर भी दिखे असर। ओवैसी ने आरएसएस पर लोकतंत्र का विरोध करने का आरोप लगाया। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के जेपी एनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को सामने लाए, कहा इन लोगों ने पैसा खाया। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप की हत्या। नहर में मिला शव। गोली मारकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा खतरा। फिर उफान पर है त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 781 तक। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। विशेष की शुरुआत चित्रकूट में आए सैलाबी संकट के साथ करते हैं, जहां पर मंदाकिनी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर भारी आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट डूब गए हैं। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। लोग संकट में घिरे हैं। लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और भारी बारिश के बीच में पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।
3: ये इधर कुछ दो आदमी लाल जाने के होंगे।
4: पानी में तैरता हुआ शहर देखा है कभी? अब देख लीजिए, जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही है। शहर में सैलाब आया है। दुकान मकान सब पानी में डूबे हुए। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी।
5: चित्रकूट जनपद में मंदाकिनी नदी ने रौद रूप धारण कर पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे कल मंदाकिनी नदी लगभग 9 मीटर के ऊपर बह रही थी, जिससे रामघाट का जो एरिया था पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। जिन सड़कों पर कभी वाहन चलते थे वहां नाव चलने लगी थी। मंदाकिनी नदी के बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि मध्य प्रदेश प्रशासन को यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना पड़ा है और SDTRF टीम जो यूपी प्रशासन था, SDRF टीम और PAC टीम को लगा करके जो लोग अपने घरों में फंसे थे उनको रेस्क्यू करके बचाया गया है।
4: बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए, लोग फंसे हुए हैं। बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब है कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ इस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है।
3: अभी आप आसमान देखिए, मौसम कैसा है। ऊपर बोर्ड पे अगर खाना है तो दे दो, जो बचे हैं उनको खाना दे दो। निकालो इनको भाई, आप लोग बचा सकते हो उनको उतारो।
4: दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है।
6: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अतिशीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और इन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए।
4: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
7: इस हम खड़े हैं रामघाट पे, जहां आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है, वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें यहां पर, सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं। लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं। जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से लगभग आधा दर्जन से लोगों का गाँव का संपर्क टूट गया है।
4: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
8: और पानी का जो जलस्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें पूरी प्रकार से। जहाँ पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट्स, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
4: संकट बड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है। कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।
8: आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है, कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है, तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं। सभी व्यवस्थाएं की गई है।
4: अब इन तस्वीरों को देखिए। ये नेशनल हाईवे 35 पर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर बना पुल था जिसे मंदाकिनी की लहरें अपने साथ बहा ले गई।
7: ऐसे हम खड़े हैं उसी मंदाकिनी रोड के पुल पर जहाँ इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह मंदाकिनी नदी का मेन पुल है जो NH 35 पे यह पुल बनाया गया है जो शहर को जोड़ता है। उसी रास्ते से प्रयागराज के लिए जाया जाता है, लेकिन कल मंदाकिनी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पुल के ऊपर से यहाँ पानी बह रहा था, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी के पुल का अप्रोच रोड है वह उसका रोड का लगभग 20 मीटर नीचे धस गया है, जिसकी वजह से ये अप्रोच रोड का जो एक कोना है वह हट गया है। यहाँ पर पुल को बनाने के लिए जो कर्मी है यहाँ पर लगे हुए हैं।
4: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और उन तक मदद पहुंचाई। दिन रात लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसी ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। अखिलेश कुमार सोनकर, चित्रकूट आज तक।
0: चित्रकूट के हालात आपने देख लिया, अब आपको प्रयागराज की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर गंगा और यमुना ने रौद्र रूप धर लिया है। गंगा के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है और हालात कैसे हैं कि लोगों के घरों में ये बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपने सामानों के साथ दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं।

0: देखते ही देखते ये पूरा ट्रक पानी में समा गया। इतना पानी कि डूबे हैं मकान, डूबी हैं दुकानें, डूबे हैं मैदान, डूबी है सड़क, डूबा है शहर, मचा है कहर। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं। गंगा यमुना में ऐसा उफान आया कि शहर पानी पानी हो गया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर का असर अब शहर की प्रमुख सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। प्रयागराज का दारागंज इलाका लबालब है। लोग अपना सामान सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं।
1: ये प्रयागराज का दारागंज इलाका है और इस दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट है। यहाँ पर भी गंगा का पानी सड़कों पर आ गया है और लोग अपना सामान इसी तरह निकाल रहे हैं, क्योंकि अचानक लोगों का कहना है कि पानी आया और इनकी जो दुकानें हैं वो पानी में डूब गई हैं, और इस तरह से ये अपना सामान पानी से सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये परेशानी इनका कहना हर साल की है और ऐसे ही इनको हर साल परेशान होना पड़ता है। अपना सामान ये लोग निकाल रहे हैं क्योंकि ये दुकानदार हैं और इनका जो सामान है इस बाढ़ के पानी में डूबता जा रहा है। यहाँ पर सब्जियों की दुकानें लगा करती थी, लेकिन बाढ़ की वजह से यहाँ पर भी इनका सामान डूब रहा है। कुछ लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, लेकिन लगातार ऐसे ही जलस्तर बढ़ता रहा तो ये पूरी सड़क भी पानी से भर जाएगी।
0: लोग परेशान हैं, जाए तो कहाँ जाए।
2: काउंट लगवाए तो दाम नहीं मिल के काउंट है ले दुकान दौड़े तक। अरे रहा सब्जी और दुकान रखे रहे ऐसे किराना हो रहा सब। अरे हमारा तो पूरा दुकान सब दब पाही गवा।
3: परेशानी क्या बड़े, परेशानी आने जाने में तकलीफ होती है और सब्जी साग खरीदने में, और प्लस आपका यहाँ मतलब इतने गंगा जी बढ़ जाती हैं कि मतलब नाव भी चलती हैं और समस्याएं तो बहुत है। अब क्या बताएं।
1: अच्छा सड़कें सामान भी डूब रहा है।
3: हाँ सामान तो डूबता ही है,
1: दुकानें डूब।
3: हाँ दुकान भी डूबते, नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं नुकसान नहीं होता, नुकसान भी होता।
1: अच्छा जब पानी बढ़ जाता है तो किस तरह से आने जाने का सहारा, नाव रहता है।
3: नाव के अलावा कोई रास्ता ही नहीं इधर।
1: अभी तो बढ़ेगा।
3: हाँ अभी तो बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, लगभग एक मंजिल तक, एक मंजिल दो मंजिल भी जा सकता है।
0: इसी तरह बक्सी बांध के पास गंगा पथ पूरी तरह पानी में डूब गया। यहीं पर इस ट्रक को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते ट्रक का अधिकांश हिस्सा पानी के बाढ़ में समा गया। बताया जा रहा है कि जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा पथ पर पानी भर चुका था, लेकिन ड्राइवर ने उसी रास्ते से ट्रक निकालने की कोशिश की और ट्रक बीच गहरे पानी में फंस गया। ये तो शुक्र था कि ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर नागवासुकी रोड यानी मरीन ड्राइव पर भी देखने को मिल रहा है। सड़क पर कई फीट तक पानी भर जाने से रास्ते को बंद कर दिया गया है। शाम के समय बड़ी संख्या में लोग जिस मरीन ड्राइव पर घूमने आते थे, वहां चारों ओर बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। सड़क के जलमग्न होने से आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।
1: हम इस वक्त नागवासुकी रोड पे है और गंगा यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस नागवासुकी रोड में बाढ़ का पानी अब रास्तों पर आ गया है। इसे मरीन ड्राइव कहते हैं। शाम के वक्त लोग यहाँ घूमने और अपना मन बहलाने आते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी बढ़ने के कारण सड़कों पर पानी आ गया है, लोगों के घर डूब रहे हैं और यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है ताकि यहाँ पर लोग गहरे पानी में ना जाएं। और यहाँ पर लगातार दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण सड़कों पर पानी आ गया है। ये सलोरी बघाड़े का इलाका है जहाँ पर ये बाढ़ का पानी आने से लोगों को घरों में पानी अब जाने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और पीछे की तरफ यहाँ पर गंगा पथ है जो कि कुंभ के दौरान 2019 में बनाया गया था, जिसमें एक ट्रक गहरे पानी में समा गया है। फिलहाल दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी परेशानी भी बढ़ना तय माना जा रहा है।
0: अब निचले इलाके में रहने वाले लोग परेशान हैं, उन्हें बाढ़ का डर सता रहा है।
4: ये पानी तो बढ़ रहा है, घरों में अब घुसने के कगार पर है और ये हमेशा 24 आवर्स जो है चलने वाली सड़क थी जो अब डूबने के कगार पर है।
1: रास्ता बंद हो रहा है,
4: एकदम रास्ता बंद हो गया है।
5: ऊपर कहीं ले जाके पानी आ गया तो कहाँ से यहाँ चलेगा।
1: कितना पानी बढ़ा है।
5: अरे बहुत बढ़ा है, कल वहाँ नागवासुकी के पास सामने सूखा था, कल से वहाँ से यहाँ तक बहुत आ गया पानी।
0: गंगा और यमुना के लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच प्रयागराज का पूरा संगम क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूब गया है। जिस संगम क्षेत्र में कभी माघ मेला और कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आती थी, वहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मेला क्षेत्र की सड़कें और रास्ते भी जलमग्न हो चुके हैं।
6: प्रयागराज में तेजी से बढ़ते जलस्तर के बीच में हम जिस नाव पे सवार होकर जा रहे हैं, ये माघ मेला कुंभ मेला क्षेत्र है, यानी जिस जगह पहले यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ हुआ करती थी, अब जलस्तर बढ़ने की वजह से यहाँ पर पानी है। आप देखिए पीछे मेरे नजारा, तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये वो जगह है। दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां पर आरती होती है और वो आरती वाली जगह भी प्रयागराज में बढ़ते गंगा के जलस्तर को लेकर डूब गया है। उसके अलावा दूसरी तरफ देखेंगे तो प्रयागराज का हनुमान मंदिर का जाने वाला रास्ता है जो दूसरी तरफ है, और वहां के सामने अगर देखेंगे आप तो वो नजर आ रहा आरती करने वाला स्थल, यानी आरती जहां पर होती है वो है। वो देखिए आरती स्थल डूब गया है। इसी रास्तों से आरती स्थल से होते हुए कई सेक्टरों में जाते थे लोग। पीपाए का पुल नंबर 1 ये रास्ता ले जाता था, लेकिन अब यहाँ पर बाढ़ का पानी है।
0: बाढ़ के पानी की वजह से माघ मेला क्षेत्र में दुकानें अब ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की ओर शिफ्ट हो गई हैं। वहीं पूजा पाठ कराने वाले पंडा समाज ने भी अपने झंडे और पूजा स्थल को दूसरी सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। अब पंडा परेशान है क्योंकि उनके यजमानों को नहीं मालूम कि नई जगह वो कहां बैठ रहे हैं।
7: समस्या ये है कि पहले और हमेशा हम लोगों का तख्त जो है हनुमान मंदिर के बगल जो है चौराहे के कॉर्नर पे लगता था, तो जो हमारे यात्री हैं वो सबको यह मालूम था कि हम पंडित बेनी माधव शिव प्रसाद का तख्त वहां लगता है, लेकिन चूंकि अब वहां जो है जल भराव होने के कारण हम लोग सुरक्षित स्थान पर यहाँ परेड मैदान पे आ गए हैं।
8: बहुत दिक्कत हुआ, हम लोगों का तख्त हनुमान मंदिर के आगे रहता था, लेकिन जल आने की वजह से हम लोगों को इधर परेड ग्राउंड पे आना पड़ा सुरक्षित स्थान पे। जितने भी पंडा लोगों थे झंडा सहित अपने मेला ग्राउंड के मैदान में आ गए हैं सुरक्षित, लेकिन हम लोगों के यात्री बहुत इधर उधर हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, क्योंकि यात्री तो पुराना स्थान ही जानता है ना, नया स्थान बहुत ढूंढने में दिक्कत होती है उसको हर प्रकार से।
0: प्रयागराज में गंगा किनारे रहने वालों की मुसीबतें बढ़ी हैं क्योंकि फिलहाल गंगा का जलस्तर कम नहीं हो रहा है और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पंकज श्रीवास्तव के साथ आनंद राज, प्रयागराज आज तक।
9: सिर्फ चित्रकूट और प्रयागराज में ही नदियां उफान पर नहीं है बल्कि यूपी के कई शहरों में बिल्कुल ऐसे ही हाल है। बाराबंकी में सरयू नदी में उफान है तो वाराणसी में गंगा घाट डूब चुके हैं। आलम यह है कि गलियों में दाह संस्कार किया जा रहा है।
0: धसती जमीन और ये कटान खौफनाक है। तस्वीरें बाराबंकी की, देखिए सरयू में उफान आया और आसपास का इलाका पानी पानी हो गया। रामनगर तहसील के गांव केदारीपुर, बेलहरी और सरसंडा क्षेत्र में तेज कटान के चलते कई मकान और कई बीघा खेत नदी में समा गए। लगातार हो रही कटान से ग्रामीण और किसान दहशत में हैं। अब आपको वाराणसी की तस्वीरें दिखाते हैं। गंगा में आई बाढ़ की विभीषिका ने न केवल आम लोगों के जीवन पर असर डाला है बल्कि मोक्ष के रास्ते पर भी एक बड़ी अड़चन बनकर खड़ी हो गई है। बाढ़ के पानी में शमशान घाट डूब गए हैं, जिसके बाद मजबूरी में पक्के घाटों के ऊपर तंग गलियों में मुखाग्नि दी जा रही है।
9: विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहाँ कहा गया है कि आर्थिक आधार पे। तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें वो आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। माझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या माझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें, उनके सुपुत्र भी यहाँ पे हैं, फिर वो भी इस्तीफा दे दें।
1: नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।

0: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहाँ कहा गया कि आर्थिक आधार पे। तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें, वो आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। मांझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या मांझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें, उनके सुपुत्र भी यहाँ पे हैं, फिर वो भी इस्तीफा दे दें।
1: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा।
1: इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
0: ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे।

भले ही हल्द्वानी में खरगे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हों, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

0: लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया।
1: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं। दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
2: अगर कोई कई जगह वेदर इट इज दिस स्टेट और द स्टेट अगर हो रहा है तो उसको ठीक करना हमारा सबका जिम्मेदारी है, लेकिन इसको बहाना बना के ड्रामा करने के लिए उधर जाते हैं तो लोग सबक सिखा है, आगे भी सिखा देंगे।
3: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना। आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है, कई उदाहरण उन्होंने गिना। अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रहीं, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रहीं, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
1: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही है।
4: कांग्रेस जिस तरह से अफवाह फैलाने का काम कर रही है और दलित समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है कि वहां पर हल्द्वानी में रामला ग्राउंड में शुद्धिकरण किया गया है और जब खड़गे जी दलित समाज से आते हैं उनका अपमान हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी मनसा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपने आप से अलग करती है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी संस्था के माध्यम से वहां हवन किया गया, शुद्धिकरण किया गया तो उनका काम है, किंतु इस तरह का भ्रम फैलाना ठीक नहीं है।
1: युवा महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर, यूरेनियम समेत कई अहम समझौते, शास्त्री स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। संघ प्रमुख के मुस्लिम वाले बैन पर बैनबाजी, मौलाना बोले अब जमीन पर भी दिखे असर, ओवैसी ने आरएसएस पर लोकतंत्र का विरोध करने का लगाया आरोप। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई, योगी के जेपी एनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का मामला लेकर आए सामने, कहा कि इन लोगों ने खाया पैसा। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप की हत्या, नहर में मिला शव, गोली मारकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा खतरा, फिर से उफान पर त्रिशूली नदी, तेज दहार में बहा पुल, तबाही में मौत का आंकड़ा 781 तक पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दुनिया की सबसे युवा, सबसे नई और सबसे नाजुक, सबसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय। पिछले कुछ समय में जिस तरह की त्रासदियां उत्पन्न हो रही हैं हिमालय के इस क्षेत्र में, वो पूरी दुनिया को संकेत दे रही है, चेतावनी दे रही है।

0: कह रहे हैं कि दो पुल था पर पुल का नामो निशान नहीं है। सोचिए इतनी शक्ति से उतने आवेग से पूरा मलबा आया होगा।
1: यहाँ पे हाइड्रो पावर यहाँ था और फिर यहाँ से नहर निकाल कर आपको देवीघाट हाइड्रो पावर
0: दे। नहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है, उसका ढांचा सब बह गया
1: पूरा नीचे।
0: अच्छा नीचे है,
1: नीचे है दागे उसमें।
2: अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्क में, पर वे उधर चले गए।
0: ऊंचा दिख रहा था ऐसे कैसे? हाँ। होता वो दिख रहा था
2: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना जो इसने क्या आते ना ऐसे ऐसे करके। अच्छा। थोड़ा थोड़ा ऊपर हाई हाई हाई हाई करके।
0: अच्छा।
2: तो ऐसा सब क्या आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। जो लोग ना अपना सामान बचाने के लिए लेने गए ना तो वो लोग चले गए, और जो लोग अपने जान बचा के भाग गए वो बच गए।
3: नेपाल में 26 अगस्त को जो भागा सिर्फ वही बचा, बाकी सब सैलाब में बह गए। नेपाल में जो कुछ हुआ क्या उस प्राकृतिक आपदा को ईश्वर की इच्छा, उनकी मर्जी कहने वालों की कमी नहीं। लेकिन जिस बात पर सबको मंथन करना चाहिए वो है हिमालय की चेतावनी, जो हर प्राकृतिक आपदा के बाद गहरी और गंभीर हो रही है। नेपाल की त्रासदी का हर वायरल वीडियो ये चीख कर बताता है कि ये कोई आम बाढ़ नहीं है। इस वीडियो में दिख रहे लोग भले ही तकदीर वाले हों, जिन्हें अपनों को बचाने का वक्त मिल गया हो, जो उनका हाथ पकड़कर समय पर भाग निकले हों, लेकिन नेपाल की ये तस्वीर पूछती है कि आपदा क्यों आई, तिब्बत में ग्लेशियर क्यों टूटा, क्यों हिमालय के ग्लेशियर दरक रहे हैं, गर्म होते जा रहे हैं। नेपाल की त्रासदी कई दिनों बाद जिंदा बचे लोगों के चमत्कार की भले ही लगने लगी हो, लेकिन हमें याद दिला रही है कि जैसे दिल का दौरा अचानक नहीं आता, वो दशकों से इंसान के भीतर पनप रहा होता है, उसी तरह हिमालय पर्वत श्रृंखला में ग्लेशियर का उम्मीद से पहले पिघलकर नदी में गिरना, पानी का रुकना, उसका इकट्ठा होना और फिर अपनी ही दीवार को तोड़कर एक साथ नेपाल के रसुआ जिले में आ गिरना, उस बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर नेपाल की तरह भारत भी उसकी चपेट में आ सकता है।
0: जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
3: नेपाल में 26 अगस्त की सुबह आई बाढ़ के बाद अलर्ट जारी करने के समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चीन के तिब्बत में 26 तारीख को जिस ग्लेशियर के टूटने से ये सब कुछ हुआ, उसे लेकर नेपाल सरकार की तरफ से लोगों को दावा है समय रहते अलर्ट भेज दिया गया था, खासकर नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले 6 लाख लोगों को। लेकिन अब इसे प्रकृति को लेकर लापरवाही कहिए या फिर कुछ और, नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटे कोशी नदी में जहां पानी के साथ मलबा और चट्टानों का सैलाब नेपाल में बढ़ रहा था, तब लोग इस चेतावनी को लेकर उदासीन थे। इसका नतीजा ये हुआ कि जब सैलाब के रूप में तबाही सामने थी, तब भी लोग भागने के बजाय उसका वीडियो बना रहे थे, उससे जुड़े खतरे को देख कर भी अनजान बने हुए थे। इसी का नतीजा ये निकला कि इतने सारे लोग बेमौत मारे गए, क्योंकि उन्हें हिमालय के गुस्से का अंदाजा नहीं था।
2: दरअसल क्या हुआ था, ऑलमोस्ट 9:15 का टाइम हुआ था ना, तो वो लोग आए जो आर्मी है ना, आर्मी लोग आके बाइक पे आके वो लोग अनाउंस किया कि बाढ़ आ रहा है।
0: अच्छा।
2: पर इतना नहीं बोला कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो सब लोग पहली दफा पे आ चुका था ना, तो सब लोग समझ गए मैं भी पहले जैसा
0: उस टाइम धीरे धीरे से नॉर्मल बाढ़ की तरह
2: नॉर्मल था। तो किसी की भी ये नहीं सोच हुआ कि हमारा जितना भी जिनसी सामान है तो हम निकालना चाहे, जो हमारा कीमत है जैसा पैसा वगैरह ना, तो सोचा कि हाँ मैं भी थोड़ा थोड़ा आया होगा, मैं भी नॉर्मल, तो ये सोच के सब लोग नॉर्मल जैसे रहे। तो 9:15 के बाद ऑलमोस्ट जो सबने देखा ना था उधर से आ गए।
3: नेपाल में इस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए लोगों के पास ठीक ठाक समय था, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित स्थानों पर नहीं भागे। लगा कि पानी उनके घर के पास से गुजर जाए, उन्हें लगा कि उन्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा, लेकिन इसी सोच ने उनका सब कुछ छीन लिया।
1: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
0: क्या परिवर्तन हुआ है?
1: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
0: हाँ।
1: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
0: ये खेत था,
1: खेत था इसके पछाड़ी।
0: अच्छा।
1: इस साइड में पूरे घर था, यहाँ पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
0: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं।
1: हाँ,
0: और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
1: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
0: आपकी कौन मिसिंग है?
4: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी, एक हाँ। दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
0: कहाँ रह रहे थे
4: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
0: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे, तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
4: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है।
0: हाँ।
4: और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
0: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
4: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
0: कितने साल की है
4: ये बच्ची? 2 साल की है।
0: 2 साल की
4: जी। ये दीदी हुई।
0: हाँ।
4: ये भांजी है, ये भी भांजी है।
0: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
4: नहीं मिल पा रहे हैं।
0: आप हर जगह जाके ढूंढ
4: रहे हैं।
3: 26 अगस्त को ग्लेशियर टूटने से अचानक आई बाढ़ से तबाह होने वाली बस्तियों में नुआकोट जिले का त्रिशूली सबसे प्रमुख है, जिसके बाजारों में तबाही को दौड़ कर आते सब कुछ तबाह करते हुए सारी दुनिया ने देखा है। उसी 30,000 की आबादी वाले कस्बे में कभी बाजार था, लेकिन अब वहां पर सिर्फ पत्थर और कीचड़ है। सड़कें गायब है, घर, दुकानें, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक सब मलबे में दबा है। पूरा शहर उजड़ गया है। इस तबाही के बाद घर लौटे लोग सब कुछ खोने से टूटते दिख रहे हैं। सैलाब के बाद अपने घरों में वापसी करते ये लोग भले जिंदा हो, लेकिन अब इनके लिए एक एक पल पहाड़ बन गया है। नेपाल की ये चेहरे भले ही अलग अलग हों, लेकिन सबका दर्द एक जैसा है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने हिमालय की गोद में रहने वाले 5 करोड़ लोगों को याद दिलाया है कि जलवायु परिवर्तन खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है, जिसने नेपाल जैसी आपदा का जोखिम पहले से कई गुना ज्यादा कर दिया है। ग्लेशियरों के तेजी से बदलते आकार, अचानक आने वाली बाढ़ और कमजोर चेतावनी तंत्र का ही असर है कि हिमालय अब साफ साफ बता रहा है कि मेरी सुनो, वरना इससे भी बड़ी तबाही आएगी। इंसानी बस्तियां तिनके की तरह उड़ जाएंगी। नुआकोट की तरह शहर के शहर वीरान हो जाएंगे। अगर कुछ बचेगा तो सिर्फ तबाही के निशान।
0: ये ऋषिका है। ऋषिका, पूरा नाम क्या हुआ आपका?
5: मेरा नाम पुराने में ऋषिका कुमारी कलवार। मैं
0: किस क्लास में पढ़ती हूँ?
5: मैं अभी 12 में पढ़ती हूँ, काठमांडू।
0: अच्छा, तो यहाँ पर तुम्हारा घर था जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। ये क्या क्या है, पूरा एरिया हमको समझाओ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये क्या था?
5: ये कृषि विकास बैंक है, जहाँ पे मतलब यहाँ के नजदीक बैंक पे यही था,
0: ये बैंक था। और ये ट्रक तो कैसे गिर गया?
5: ये ट्रक यहाँ पे जस्ट लगे पार्किंग की तरह था ना यहाँ पे।
0: हाँ।
5: तो ये पूरा धस गया। हम लोग का भी ट्रक धस गया उधर ही है। हम लोग का भी वैसे ही हो गया। यहाँ पे एक और ट्रक था, वो भी किसी का अंदर दबा हुआ है। उधर वहाँ पे भी ट्रक है।
0: हाँ,
5: वो भी
0: हाँ। अच्छा, ये पार्किंग था तो सबका, जिसका भी ट्रक था वो यहाँ पे धस गया है
5: जी
0: सबका।
5: मेरे पेरेंट्स को ज्यादा देर पहले इन्फॉर्म नहीं हुआ कि पानी आया है, बस वो लोग बस गए। वही मेरे लिए बहुत काफी है। बहुत मैं खुशी हूँ कि भले सब
0: चीज़ कौन सा वाला है?
5: मेरा घर उधर वाला है।
0: कौन सा?
5: पिंक कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
0: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
5: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
0: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
5: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
0: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था।
3: नेपाल की आपदा ने साबित कर दिया है कि हिमालय अब और अधिक मानवीय दबाव सहन करने को तैयार नहीं। कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड तक में हमारे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। उनके ऊपर अनगिनत खतरनाक झीलें आकार ले रही हैं। इस तरह हिमालय की गोद में बसा भारतीय उपमहाद्वीप अब प्रकृति के ऐसे गुस्से का सामना कर रहा है जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया। नेपाल तिब्बत की तबाही इसका ताजा उदाहरण है। सवाल है कि क्या हिमालय की तरफ से ये भारत के लिए सबसे गंभीर और अंतिम चेतावनी है? नेपाल जैसी तबाही लाने वाली भारत में कितनी झीलें हैं? क्या नेपाल की बाढ़ सिर्फ शुरुआत है? इससे भी बड़ी तबाही हिमालय के किसी हिस्से में क्या पनप रही है? हिमालय की तरफ से बढ़ते इस जोखिम को कैसे रोका जा सकता है?
0: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए, त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा, पर ऐसा नहीं है। यहां पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी, ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं क्योंकि यहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहां पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। इस तरह की त्रासदी को सिर्फ एक कारण से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि उस पूरी सिस्टम को, पूरी प्रणाली को समझना होगा जो गलत हो रहा है। परमाफ्रॉस्ट पिघलने का जो समय काल है, उसकी जो अवधि है, उसकी जो रफ्तार है, वो दुनिया में सबसे तेजी से हिमालय की पर्वत श्रृंखला में ही देखा जा रहा है। परमाफ्रॉस्ट को इस हिसाब से समझिए कि जो बर्फ के पहाड़ हैं उनको एक बर्फीले सीमेंट के रूप में अंदर से जो जोड़े रखता है वो चीज होती है, और अगर उसके पिघलने की रफ्तार तेज हो जाए तो क्या होगा पूरे क्षेत्र के लिए, आप समझ सकते हैं।
3: नेपाल की तबाही का ये वो वीडियो है जो भारत को याद दिला रहा है कि हिमालय कितना खतरनाक हो रहा है। नेपाल में राहत और बचाव के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर का ध्यान खींचने के लिए नेपाल का ये नौजवान हाथ में टी शर्ट लहराता दिखा ताकि बचाव दल को उसकी लोकेशन का पता चल सके। आखिरकार नेपाल आर्मी का एक हेलीकॉप्टर घर के पास पहुंचा और छत के ऊपर मंडराने लगा, और फिर बाढ़ की तबाही में फंसे नेपाल के इस नौजवान को हेलीकॉप्टर की लैंडिंग स्किड पकड़कर जिंदगी के उस सुरक्षा चक्र में पहुंचाया गया जिसकी उम्मीद इसको भी नहीं रही होगी। नेपाल की ऐसी ही एक कहानी मौत की लहरों के सामने खड़ी जिंदगी की भी है, जिससे सबक मिला कि सैलाब जैसे हालात हों तो इरादे इस घर जैसे अटल होने चाहिए, तभी टिक पाओगे, सांस चलेगी। नुआकोट जिले के त्रिशूली नदी के पास हरे रंग का एक घर सारी दुनिया देख चुकी है, क्योंकि जो सैलाब आसपास की सारी इमारतों को वहां ले गया वो इस हरे रंग के घर का कुछ नहीं कर पाए। इस घर की मजबूती दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि कैसे एक छोटा सा घर इतने भयानक सैलाब को झेल गया। कुछ के लिए ये आपदा में चमत्कार की कहानी जिसमें रहने वाले लोग सुरक्षित बचा लिए गए, लेकिन नेपाल की त्रासदी तस्वीरों और उनकी कहानियों से कहीं बड़ी है, क्योंकि मामला हिमालय का है जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। हर त्रासदी में मानवीयता के साथ इंसानी मूल्यों का पाताल दिखता है, तभी तो इस त्रासदी में भी लोगों ने बैंक के लॉकर को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, औजारों से इसे तोड़ा और इससे निकले नोटों को आपस में बांट लिया। ये बैंक लॉकर रसुआ से बहकर धडिंग पहुंचा था, लेकिन नेपाल की त्रासदी को अगर आप इतना भर सीमित मान रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि नुआकोट में मची ये तबाही, खत्म हुए आशियाने, रेंगती जिंदगी, ये बात याद दिलाती है कि हिमालय गर्म हो रहा है, उसके ग्लेशियर खतरनाक हो रहे हैं। नेपाल की तबाही हमें याद दिला रही है कि एक ग्लेशियर अगर इतनी बड़ी और भयानक तबाही मचा सकता है तो फिर सोचिए हिमालय में मौजूद हजारों ग्लेशियर इसी तरह खतरनाक हुए तो फिर क्या होगा। नेपाल में तबाही की शुरुआत तिब्बत में बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरने से हुई, नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा और पानी किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान ने हिमालय के इलाके ग्लेशियर झीलों को टाइम बम बना दिया है। ऊंचाई वाले संवेदनशील इलाकों में बर्फबारी की जगह बारिश बढ़ रही है, इससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और झीलों में पानी की मात्रा बढ़ रही है। कमजोर प्राकृतिक बांधों पर बढ़ते पानी के दबाव के साथ भारी बारिश, बादल फटना, भूस्खलन, हिमस्खलन, रॉक फॉल, भूकंप और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा बढ़ाती जा रही है। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियर झील फटने की हालात में है। इसरो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियर झीलें हैं। इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त टूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झील के रूप में मौजूद हैं। पहाड़ों पर झील बनने की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ लद्दाख में ही 3,219 ऐसी झीलों की पहचान की गई। सबसे खबरदार करने वाली बात ये कि इन झीलों की प्राकृतिक दीवारें बहुत कमजोर होती हैं, इसीलिए हिमालयी क्षेत्र में आने वाला भूकंप, भारी बारिश या फिर एवलांच इन दीवारों को तोड़ सकता है। सिक्किम की लोनक झील और उत्तराखंड की चमोली में आए जल प्रलय इसका जीता जागता उदाहरण है।
6: कि ग्लेशियर जो हैं वो वीक पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से, और तीसरा हमारे जो नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं तो वो उनको वीकन करते हैं। तो उस वजह से क्या हो गया है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हम इनको कैसे मॉनिटर करें।
3: एक्सपर्ट कहते हैं कि ये खतरा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हिमालय में टूटे ग्लेशियर लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए तबाही कभी साल 2013 में केदारनाथ तो कभी चमोली और सिक्किम के रूप में सामने आती है, क्योंकि हिमालय में ज्यादातर ग्लेशियर फ्रैक्चर्ड हो रहे हैं, यानी उनमें ठोस बर्फ की कमी हो रही है। कुछ ऐसे ग्लेशियर हैं जिनमें बीच बीच में बर्फ का घनत्व कम हो गया है। ऐसी स्थिति में लाखों टन वजनी बर्फ के पहाड़ अपना सपोर्ट खो रहे हैं और हैंगिंग यानी लटके ग्लेशियर की तरह खड़े हैं, जो कभी भी हल्के भूकंप, भारी बारिश और एवलांच से गिरकर बड़ी तबाही ला सकते हैं।
6: उस मॉनिटरिंग में फ्रैक्चर जो ग्लेशियर हैं बेसिकली वो टूटे हुए हिस्से होते हैं, जैसे कि आप एक पूरा फिक्स है अपने मोरिन पे, लेकिन वो अगर हिल जाता है तो एक पर्टिकुलर जो पार्ट है वो फ्रैक्चर हो जाता है। ये जो मूव कर रहे होते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं, और फ्रैक्चर होने की वजह से उनके टूट के गिरने की या लेक पे या रिवराइन सिस्टम को ब्लॉक करने की संभावना बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से संभावित खतरे होते हैं। तो जो फ्रैक्चर आप कह सकते हैं ग्लेशियर है, वो इन सिंपल टर्म जो ग्लेशियर के वीकन पार्ट हैं, टूटे हुए क्रैक्स को दिखाने वाले संरचना हैं।
3: नेपाल में भी तबाही की शुरुआत ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नदी में गिरना रहा, जिससे ऐसी भयानक तबाही मची कि लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। तिब्बत में बनी जिस पोस्ट से भारतीय कैलाश मानसरोवर जाते थे, जिसे चारों तरफ से सैलाब ने घेर कर दुनिया को डराया, वो 26 तारीख के बाद साफ हो गया। आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पोस्ट तबाही से पहले देखी जा सकती है, लेकिन तबाही के बाद उसका नामो निशान नहीं दिखता है। चीन की सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में नेपाल चीन का बॉर्डर पूरी तरह तबाह दिखता है, इंसानी बस्तियां और रास्ते गायब हो गए। नेपाल का यह हादसा बताता है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिमालयी इलाके की कुल 7,500 से ज्यादा झीलों में से 189 का रेड जोन में होना बहुत चिंताजनक है।
7: बढ़ेगा ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है उसके रिट्रीट होने से, उसमें यानी बड़े ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और उसमें नेचुरल मोरेन डैम पर प्रेशर बढ़ा रहा है, और उसमें आइस या रॉक का एवलेंच होने का खतरा और ग्लोफ होने की संभावना ये बढ़ जाती है।
3: चीन की तरफ से जारी अब सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए, जो बताती है कि झील ओवरफ्लो हो रही हैं। इसके बाद नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया, क्योंकि 26 तारीख जैसी तबाही का खतरा नेपाल में बढ़ रहा है। अब सवाल है कि इससे बचने का तरीका क्या है, भारत ऐसी आपदा से बचने के लिए क्या कुछ कर सकता है।
6: दो तरह के रिस्क होते हैं, पहले मैं वो बताना चाहूंगा एक्चुअली। पहला गोल्फ ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, और दूसरा क्या है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर फ्रैक्चर होता है और फिर वो रिवर के फ्लो को ब्लॉक कर देता है, जो हमने सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन नेपाल में देखी, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। अब इसको लेकर भारत सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। सबसे पहला अगर आपको ध्यान हो तो मिशन मौसम लॉन्च हुआ लगभग 2 साल पहले, जिसमें वेदर रिलेटेड मॉनिटरिंग फोरकास्ट को बढ़ावा देना ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्थगन किया जा सके। दूसरा अगर आप देखेंगे कि इसमें हमने सैटेलाइट और मशीन लर्निंग या एआई का यूज बढ़ाया ताकि जो हमारी फोरकास्टिंग यानी कि जो टाइम लैग है उसे कम किया जाए।
3: इस तरह हिमालय में लगातार ग्लेशियर उससे बनने वाली झीलों की निगरानी करके ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टूटते ग्लेशियर तबाही की टिक-टिक से कम नहीं है।
0: नेपाल में आखिर क्या हुआ? एक ग्लेशियर टूटा जिसके बाद ये विपत्ति आई। नेपाल तिब्बत सीमा पर जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, खासकर चीन की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वो इस क्षेत्र के लिए क्या बेहद घातक साबित हो सकता है?
8: नेपाल चीन सीमा के पास बाढ़ के बाद बनी झील का ज्यादातर पानी प्राकृतिक रास्ते से निकलने पर सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि इससे निचले इलाकों में अचानक बढ़ी बाढ़ का खतरा फिलहाल कम हो गया है। ये झील पिछले बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बनी थी, जिसकी शुरुआत लांगटांग री पर्वत क्षेत्र में ग्लेशियर और चट्टानों का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरने से हुई। नेपाल पर भले ही संकट के बादल गहराने कम हो गए हों, लेकिन 26 तारीख को उसे लगी चोट के जख्म इतने गहरे हैं कि उसे भरने में काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि नेपाल में त्रिशूली नदी अब भी खतरनाक रूप में है। उसमें आई बाढ़ में गोरखा के गंडपी गांवपालिका और धाड़िंग के बेनीघाट गांवपालिका को जोड़ने वाला चरौंदी सस्पेंशन पुल बह गया। अचानक बढ़े नदी के जलस्तर और तेज बहाव के चलते पुल देखते ही देखते त्रिशूली नदी में समा गया। पुल के बह जाने से दोनों इलाकों के बीच आना जाना बंद हो गया। नेपाल में तमाम पुल का बह जाना सिर्फ आवाजाही से जुड़ा मामला नहीं है, हिमालय में पुल का सीधा रिश्ता रोजगार से भी है। आप ही सोचिए, जिन लोगों का सब कुछ तबाह हो चुका है, जिनके पास खाने तक को नहीं है, उन तक मदद पहुंचाना रास्तों के बह जाने से कितनी असंभव हो गई है। अब राहत पहुंचाने का सारा दारोमदार नेपाल की सेना के कंधों पर है, जो हेलीकॉप्टर से लोगों को बचा भी रही है और राहत का सामान भी पहुंचा रही है। इस बीच एक सवाल अपनों की खोजबीन से भी जुड़ा है। दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सही सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है।
0: राहत, बचाव और इंतजार। इंतजार जो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, लेकिन जब वो एक व्यक्ति के रूप में आपके सामने होता है तो आपको दर्द उसका समझ में आता है। संजीव जी हमारे साथ इस समय है, बॉस्टन से आए हैं। उनकी वाइफ यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आई थी। रसुआ जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वहां पर थी, आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं?
9: नहीं, तो मेरा उनसे जो लास्ट कांटेक्ट हुआ था वो नेपाल का टाइम था 26 तारीख 26 को, और यहाँ पे मॉर्निंग 8:35 AM पे, एग्जैक्टली 8:35 AM पे मेरा उनसे बात हुआ फोन पे, और वो कॉल मेरा उनसे 11 मिनट चला, 10-11 मिनट, तो ऑलमोस्ट 8:45 तक, 8:45 तक मैं उनसे कॉल में था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि उनको कॉल आ रहा है, बाकी टीम बुला रही है, तो वो चले गई। एंड उसके शायद 2 मिनट के बाद ये हो गया, उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं।
8: नेपाल की ये बेबसी भारत के लिए किसी अलर्ट से कम नहीं है, क्योंकि हिमालय के गर्म होने का नतीजा हमें भी नेपाल के हादसों के रूप में भुगतना पड़ रहा है। नेपाल में आई अचानक बाढ़ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के कर्मचारी सुरंगों में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज चलाया जा रहा है। त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ कामयाबी मिली है। बचाव कर्मी मशीनों की मदद से मिट्टी और गाद हटा रहे हैं। सुरंग में 6 इंच का छेद कर पाइप के जरिए हवा पहुंचाई जा रही है। इसे बढ़ाकर मेन होल बनाने की तैयारी है, ताकि बचाव दल सुरंग के अंदर जाकर लोगों की तलाश कर सके। इस टनल को नेपाल आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खोजा। जब सेना के हेलीकॉप्टर से इस टनल के बाहर खड़े मजदूर ने मदद मांगी, तब पता चला कि जब त्रिशूली नदी में विनाशकारी फ्लैश फ्लड आई, तो उसने सबको अपने साथ समेट दिया। माना गया कि सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए ऊंचाई की तरफ भागे और सैकड़ों मजदूरों ने सहारा लिया इस टनल का। हिमालय की गोद में बसा चाहे नेपाल हो या फिर भारत का उत्तराखंड, पहाड़ों का दरकना, अचानक बाढ़ आना, बादल फटना अब आम बात हो चुकी है। इसमें सुरंग हादसे भी शामिल हैं, जो विकास के मॉडल पर गंभीर सवाल या निशान लगा दिया है। बता दिया कि हिमालय की अनदेखी चारों तरफ हो रही है, वो चाहे नेपाल हो या फिर भारत, इसलिए तबाही चारों तरफ तेजी से बढ़ी है। सवाल यह है कि हिमालय की पीठ पर विकास के बढ़ते इस बोझ के नतीजे क्या होंगे, क्योंकि भारत का हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। आईआईटी रोपड़ और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त अध्ययन में हिमाचल प्रदेश की 0.02 वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक क्षेत्र वाली 94 ग्लेशियर झीलों का आकलन किया गया। इनमें 88 झीलें बाढ़ के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील पाई गई है। अध्ययन के अनुसार हिमाचल में ग्लेशियर झीलों की संख्या 1990 में 107 थी, जो 2024 में बढ़कर 669 हो गई, यानी 34 वर्षों में 525% की वृद्धि हुई। इन झीलों का कुल क्षेत्रफल भी 5.54 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 11.20 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो करीब 102% की वृद्धि है। बड़ी चिंता छोटी यानी 0.01 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र वाली झीलों को लेकर है। इनकी संख्या 1990 में केवल 9 थी, जो 2024 में बढ़कर 487 हो गई। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अचानक तेज बारिश, बादल फटने, भूस्खलन या हिमस्खलन से अचानक बड़ी मात्रा में पानी झील में पहुंचने का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है, जिससे ग्लेशियर के प्राकृतिक बांध को भेदने का खतरा पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। नेपाल में भी यही हुआ, इसलिए भारत में भी निचले इलाकों की सड़कों, पुलों, जल विद्युत परियोजनाओं और दूसरे अहम ढांचे कई गुना ज्यादा खतरे की जद में हैं। एक चिंता 58 झीलों के सक्रिय भूकंपीय गतिविधियों और टेक्टोनिक फॉल्ट के खतरे वाले क्षेत्र में होने से भी है। 52 झीलों में आइस कोर यानी बर्फ की आंतरिक परत के पिघलने से रिसाव और बांध टूटने का जोखिम है। वहीं 44 झीलों की ढलानों पर रॉक फॉल का खतरा दर्ज किया गया है।
6: ग्लेशियर जो हैं वो वीक पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से, और तीसरा हमारे जो नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं तो वो उनको वीकन करते हैं। तो उस वजह से क्या हो गया है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हम इनको कैसे मॉनिटर करें। अब उस मॉनिटरिंग में फ्रैक्चर जो ग्लेशियर हैं बेसिकली वो टूटे हुए हिस्से होते हैं, जैसे कि आप एक पूरा फिक्स है अपने मोरिन पे, लेकिन वो अगर हिल जाता है तो एक पर्टिकुलर जो पार्ट है वो फ्रैक्चर हो जाता है। ये जो मूव कर रहे होते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं, और फ्रैक्चर होने की वजह से उनके टूट के गिरने की या लेक पे या रिवराइन सिस्टम को ब्लॉक करने की संभावना बढ़ जाती है।
8: इस तरह जो ग्लेशियर झीलें दशकों तक सिर्फ हमारे लिए जीवन देने वाली रही, उन्हें हमने विकास की अंतिम दौड़ में खतरनाक बना दिया है। नेपाल से लगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ग्लेशियरों के पिघलने से उच्च हिमालयी क्षेत्र में 77 से अधिक नई झीलें बन गई हैं, जो मलबे से भरी हैं और किसी भी भू गतिविधि या भारी वर्षा में फट सकती है। यह हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ ला सकता है, इससे नीचे के बसे गांवों, खेती और पनबिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं गोरी गंगा क्षेत्र बेसिन का जो 30.9% हिस्सा बर्फ से ढका था, वो 2022 में घटकर ये केवल 10.99% रह गया, यानी 32 साल में लगभग 20% बर्फ खत्म हो गई। अगर यही दर रही तो 2040 से पहले ये बेसिन पूरी तरह बर्फ विहीन हो सकता है।
10: जैसे मवांग लेक है आपका, इधर धौली गंगा बेसिन में माचरताल है, धौली गंगा बेसिन में मवांग आपका गौरी गंगा में हो गया, आपका ये देवताल हो गया आपका नीति वैली में, तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा चेंज। जैसे हमने इसकी स्टडी की तो इसमें कम से कम जो है करीब 0.5 स्क्वायर किलोमीटर से जो है 1.4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हो गया उसका आज की डेट में ये वसुधरा ताल का। तो चेंजेस बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों में, और आगे जो फ्रंट में इसका बिल्कुल लूज एंड कंसोलिडेटेड मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है और डेंजर है डाउनस्ट्रीम में।
11: हिमालय का तापमान बढ़ने से विकास के नाम पर अंधाधुंध निर्माण से खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सवाल यह है कि क्या नेपाल की भयानक तबाही के बाद इस पर दोबारा विचार होगा? आज तक ब्यूरो।
0: बात केवल नेपाल की नहीं है, बात पूरे हिमालय के क्षेत्र की है, बात उत्तराखंड की भी है, जहां पर चमोली त्रासदी देख लीजिए, केदारनाथ की त्रासदी देख लीजिए, या फिर जोशीमठ में जमीन जिस तरीके से नीचे सिंक कर रही है उस चीज को देख लीजिए। ये पूरे संकेत बहुत बड़ा अलार्म है मानवता के लिए।
11: नेपाल की तबाही ने एक बार फिर हिमालय को चर्चा के केंद्र मिला दिया है। सबसे बड़ा सवाल उसके ग्लेशियर को लेकर है, जिन्हें एशिया के वाटर टावर भी कहा जाता है। हिमालय के जो ग्लेशियर हजारों सालों में जमे हुए थे, वो पिछले कुछ दशकों में तेजी से पिघले हैं। इस वजह से हिमालय पर निर्भर 2 अरब से ज्यादा लोगों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हिमालयी ग्लेशियरों से पिघल कर आने वाली पानी पर निर्भर है। अब आप सोचिए, हिमालय में अगर ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार इसी तरह बरकरार रही तो फिर कितनी बड़ी आबादी प्रभावित होगी, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार शामिल हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने इस साल की शुरुआत में बताया कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों की बर्फ 2000 के बाद से दोगुनी तेजी से पिघल रही है। जलवायु परिवर्तन ने चेतावनी दी है कि बर्फ पिघलने की रफ्तार, पानी की कमी और जलवायु से जुड़े खतरों के बढ़ने का तत्काल जोखिम पैदा करती है। ऐसी तमाम रिपोर्ट हिमालय को लेकर समय समय पर आती रही हैं, लेकिन इस रिपोर्ट का आंकड़ा जमीनी स्तर पर जुटाया गया, जिस पर नेपाल की तबाही ने मोहर लगा दी। 26 अगस्त को नेपाल में जो हुआ उसने एक बार फिर याद दिलाया है कि हिमालय के ग्लेशियर बड़े और महाविनाशकारी खतरे का अलार्म बजा रहे हैं, जिनकी अनदेखी भविष्य में भारत समेत इस पर निर्भर देशों को भारी पड़ सकती है, क्योंकि हिमालय देशों की सीमाओं से परे है। साल 2013 की केदारनाथ महाप्रलय के बाद से हिमालय के इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। केदारनाथ के बाद उत्तराखंड के चमोली में ऋषि गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा नदी घाटियों में अचानक तेज बाढ़ आई थी, जिसमें 200 लोगों की जान चली गई थी। इस तरह नेपाल और चमोली में हुए हादसे, ऊंचाई वाले हिमालय इलाके में अचानक हुई प्राकृतिक घटना के बाद पानी और मलबे का प्रवाह नदी घाटी की ओर पहुंचा, जिससे तबाही मची। चमोली के हादसे के 2 साल बाद 2023 में सिक्किम की साउथ लोनक ग्लेशियर झील का प्राकृतिक बांध टूटने से सुनामी जैसी लहरें उठी और सैलाब से मची तबाही। तब भी सवाल उठ रहा था कि क्या हिमालय में ग्लेशियर टाइम बम बनते जा रहे हैं।
12: इट इज अ वार्निंग कॉल फॉर इंडिया बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस द सिमिलर थिंग्स इन उत्तराखंड एंड इन सिक्किम आल्सो इन रिसेंट पास्ट।
11: चिंता की बात यह है कि हिमालय क्षेत्र में 221 ग्लेशियर झीलों के फटने पर बाढ़ आने की आशंका वैज्ञानिक जता रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और सिक्किम की नदी घाटियां भी संवेदनशील जोन में हैं। इनमें अगर बाढ़ आई तो 6 राज्यों के 39 जिलों में असर हो सकता है। चिंता की बात यह है कि चाहे उत्तराखंड, हिमाचल हो या फिर सिक्किम, हिमालय क्षेत्र में हर जगह पर्यावरण का शोषण करने के आरोप लगते हैं। ऐसे में ग्लेशियर की बर्फ पिघलने की रफ्तार फिलहाल तो कम होती नहीं दिखती, अगर सिलसिला नहीं थमा तो फिर बर्फ पिघलने से हिमस्खलन होगा और झीलें बनेंगी, नेपाल जैसी त्रासदी दोहराई जाएगी। चिंता की बात यह है कि भारत में नेपाल से अधिक घनी आबादी नदियों के किनारे रहती है, जहां नदियों के किनारे होटल रिसोर्ट बनते जा रहे हैं।
10: हिमालय की बात करें तो हिमालय में ऑलमोस्ट जो है सभी रीजन जो है वल्नरेबल है और खतरनाक है। ग्लेशियर रिट्रीट होने की वजह से जो है आगे जो वैकेट एरिया है, उस वैकेट एरिया में लूज एंड कंसोलिडेटेड मटेरियल है जो हाईली, या तो हाईली सैचुरेटेड है या फिर ड्राई है, उसके जो है हल्के से भी रेनफॉल या रेनफॉल होने से उस रीजन में एक बड़ा डिजास्टर का खतरा हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने जो है 2013 में केदारनाथ, थराली और तमोक में भी देखे।
13: अर्ली वार्निंग सिस्टम करके सीबीआरए ने एक अवलांच अर्ली वार्निंग मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है, जो उत्तराखंड में 2 जगह पे इंस्टॉल किए हैं, ढूंढी और एक वसुंधरा ताल में। तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक वो आज मतलब टेस्ट कर रहे हैं, अगले 6 से 1 साल के बाद में वी आर प्लानिंग टू हैंड इट ओवर टू स्टेट गवर्नमेंट, जो SDMA उसको ऑपरेट कर सकता है। ये जो मतलब जो रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल से मतलब जो ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, जो बर्फ का स्ट्रक्चर है, ये सब देर आर सो मेनी पैरामीटर्स। सो वो सब देखने के बाद उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, कौन से टाइम पे ट्रिगर हो रहा है, उससे पता चलेगा।
11: हिमालय में हर साल कहीं ना कहीं तबाही मचती है, इसके बाद कुछ दिन तक पर्यावरण को लेकर चिंता होती है, सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जल्द ही सब कुछ भुला दिया जाता है। इस बार हिमालय को लेकर नींद से उठाने का काम नेपाल ने किया है।
0: सिक्किम की त्रासदी जो हम हर वर्ष एक नए रूप में देखते हैं, वहां से भी संकेत बड़े हो जाते हैं। सिक्किम का पूरा इलाका किस तरीके से कुदरत के सामने इस समय लाचार नजर आता है, उसके कारण क्या है, वैज्ञानिक कितनी गंभीरता से इन सभी घटनाओं को ले रहे हैं।
11: नेपाल की तरह ही सिक्किम में भी हिमनदी झील अचानक फटी और तीस्ता नदी में अचानक सैलाब आ गया और चारों तरफ तबाही मच गई। सिक्किम हो या फिर नेपाल, सवाल ये है कि क्या वह तबाही की एक बड़ी वजह तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र में चीन का अंधाधुंध विकास है, जिसने पहाड़ों को खोखला कर दिया है। ग्लेशियर के नीचे बनाई जा रही सुरंगों ने हिमालय में हजारों साल पुराने संतुलन को बिगाड़ दिया है, क्योंकि नेपाल ने ऐसा पहली बार देखा कि चीन से आई तबाही पहाड़ भी अपने साथ बहा लाई हो। नेपाल में ही सवाल उठे कि क्या उसका यह हाल चीन की वजह से हुआ, क्योंकि जब तिब्बत में तबाही मचाने के बाद यह सैलाब नेपाल की तरफ बढ़ रहा था, तब चीन ने नेपाल को सतर्क क्यों नहीं किया। नेपाल के लोगों की तरफ से बनाए गए ये वीडियो बताते हैं कि अगर समय रहते चीन ने नेपाल को अलर्ट कर दिया होता तो शायद इतने लोग नहीं मरते। अब नेपाल के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर चीन ने पड़ोसी होने का धर्म क्यों नहीं निभाया। 26 तारीख को नेपाल के रसुआ जिले के लोग, जो तिब्बत की सीमा के बेहद करीब है, वो सुबह 9 बजे तक इस आपदा से बेखबर थे। तभी तिब्बत की तरफ से आई भोटेकोशी नदी में पानी का ऐसा प्रचंड सैलाब था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। नेपाल में ही से लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि जो चीन खुद को दोस्त बताता है, जिसका नेपाल में बड़ा प्रभाव है, जिसके पास एक से बढ़कर एक तकनीक है, वो चुप क्यों रहा। ये सवाल पूछने वालों में राज राय शामिल है, जो नेपाल की श्रम संस्कृति पार्टी के चेयरमैन और प्रमुख नेता है।
14: चीनसे प्रविधिले एकदम सुसज्जित भनेर हामीले त बुझेका छौँ। अब त्यहाँबाट त्यो आयो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारलाई जानकारी भयो कि भएन कि होइन, त्यो चिज हो। अब त्यो त त्यहाँ माथिबाट सुरु भएको रहेछ, जानकारी हुनु पर्थ्यो। त्यो यदि त्यसो भएको भए त्यहाँनिर भनौँ न जति क्षति भयो, अब त्यो भौतिक क्षति त अब घर बोकेर लाने कुरो भएन, तर मानवीय क्षति हुन चाहिँ त्यहाँबाट बस्थ्यो होइन। पूर्व सूचना प्रणाली चाहिँ त्यसको लागि हो खासमा।
11: नेपाल करस्पोन्डेन्स नाम के एक ट्विटर हैंडल से चीन की तरफ से तिब्बत में 26 तारीख को आई तबाही से बचने की ड्रिल करने का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें चीनी रेस्क्यू वर्कर 5 तारीख को ड्रिल करते हुए दिखाए जाते हैं। नेपाल की तरफ से जताई जा रही शंका की वजह चीन का समय पर नेपाल को अलर्ट न किया जाना है। चीन के केरुंग क्षेत्र में चीनी समय अनुसार सुबह 10:30 बजे ही बाढ़ आ चुकी थी। नेपाल और चीन के समय में 2 घंटे 15 मिनट का अंतर है, इस लिहाज से नेपाली समय के अनुसार ये आपदा सुबह 8:15 पर ही आ गई थी। अगर चीन तुरंत इसकी जानकारी नेपाल को दे देता तो सीमावर्ती इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता था, लेकिन चीन की ओर से आधिकारिक जानकारी लगभग 45 मिनट छोड़िए दावा है 1:30 बजे साझा की गई, जिससे नेपाल को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब नेपाल के लोगों को लग रहा है कि चीन ने उन्हें पहले खबरदार न करके धोखा दिया है, जबकि नेपाल की सरकारें चीन का ध्यान रखती रही हैं, लेकिन चीन ने नेपाल का ध्यान नहीं रखा। नेपाल की इस शिकायत को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता, इसे आप महाविनाश की टाइमलाइन से समझिए। तिब्बत में लेहंदे नदी में ग्लेशियर टूटकर गिरने से मलबे से नदी का बहाव रुक गया, नदी का रास्ता रुकने से कृत्रिम झील बन गई, लेकिन जब इस झील में ज्यादा पानी भरा तो मलबा हट गया और भोटेकोशी नदी में बाढ़ आ गई, इसी समय तिब्बत में सुबह 8:37 पर भूकंप आया और 9 बजे के आसपास भोटेकोशी नदी अप्रत्याशित तूफान के साथ तिब्बत से नेपाल में घुस गई। उसने रसुआ, नुवाकोट और धारडिंग इलाकों में तबाही मचा दी। अब नेपाल के लोगों की शिकायत है कि जो हेलीकॉप्टर तिब्बत के जिस ग्लेशियर के ऊपर घूम रहा है, जिसके टूटने से सारी तबाही आई, उसके बारे में समय रहते उसे क्यों नहीं चेताया गया? क्योंकि नेपाल से ही ऐसे दर्जनों वीडियो आए जिसमें लोगों के अलर्ट करने पर कई लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। नेपाल में चीन को लेकर गुस्से की दूसरी वजह तिब्बत में होता अंधाधुंध निर्माण है। नेपाल के पत्रकारों के एक समूह नेपाल कॉरेस्पोंडेंट्स ने एक बड़ा दावा किया है। इस समूह का आरोप है कि रसुआ जिले में आई ये तबाही दरअसल तिब्बत सीमा पर चीन के अंधाधुंध निर्माण कार्य और उसके कारण आए हिमस्खलन का नतीजा है। इस तबाही के लिए शिनजियांग तिब्बत इलाकों में उसके बेलगाम निर्माण कार्यों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चीन नेपाल सीमा पर ऊंचाई वाले ग्लेशियर वाले इलाकों में चीन ने गांव और बस्तियां बसा दी हैं, पहाड़ों को काटकर नदी का रास्ता बदल दिया है, जिसने पहले से संवेदनशील हिमालयी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। इस वजह से चीन नेपाल सीमा पर हर साल हिमस्खलन और फ्लैश फ्लड से तबाही मच रही है। हालांकि इन आरोपों को चीन की तरफ से खारिज किया गया, उसकी तरफ से नेपाल को मदद भी दी गई। नेपाल में जहां चीन को लेकर शक और शंका है, वहीं वहां के मंत्री और नेता भारत की मदद के लिए दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं।
15: I have expressed our deepest gratitude to government of India for all the support they have provided to us, and we are in active collaboration with government of India to share our emerging need as we understand from the ground perspective. We are communicating our needs.
11: नेपाल की तरफ भारत भी चीन को लेकर भरोसे से भरा नहीं है। उसकी वजह हिमालय में उसकी तरफ से बनाया जा रहा सबसे बड़ा बांध है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जो असम ब्रह्मपुत्र की वजह से हर साल भयानक बाढ़ आती है, जिससे बड़ी तबाही मचती है, उसमें चीन के सबसे बड़े बांध के बन जाने के बाद बेतहाशा इजाफा हो सकता है। ये चीन का 3 गॉर्जेस डैम है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डैम माना जाता है। लेकिन चीन हिमालय में इससे भी बड़ा डैम बना रहा है, जो भारत के बेहद नजदीक होने के साथ साथ भूकंप के खतरे वाले इलाके में है। अब आप ही सोचिए कि अगर तिब्बत में ग्लेशियर टूटने या भूकंप ने नेपाल का ये हाल कर दिया, तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा बांध टूटा तो फिर भारत में कितनी बड़ी तबाही होगी। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, उसे मेडोक और यारलुंग सांगपो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को ही यारलुंग सांगपो कहते हैं। बांध को ग्रेट बैंड क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जहां पर नदी मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है। चिंता की बात यह है कि चीन का बांध के लिए हिमालय के पहाड़ों में लंबी सुरंगें खोदे जाने का प्लान है, ताकि बिजली उत्पादन के लिए नदी का रुख बदल जाए। कुदरत के साथ ये खिलवाड़ कभी आपदा बनी तो नदी का पानी ऐसा प्रलय लाएगा जो सपने में भी नहीं सोची जा सकती। इसलिए भारत ने इस बांध को बनाने का विरोध किया है। भारत हो या फिर बांग्लादेश, दोनों देश ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्से में हैं। सबसे बड़ा बांध बनने पर चीन मानसून और भारी बारिश के समय मनमर्जी से पानी छोड़ सकता है, जो भयानक बाढ़ का कारण बन सकती है। वहीं सूखे के हालात में पानी रोक भी सकता है, जिससे भारत में सूखे की समस्या पैदा हो सकती है। चीन हिमालय में सुरंग समेत कई बड़े प्रोजेक्ट के जरिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। दावा है कि ग्लेशियर के नीचे की जमीन खोखली हो चुकी है। इस बीच अगर वो उत्तर पूर्व के नजदीक दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाता है, तो एक्सपर्ट को लगता है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि अगर तराई का हिस्सा ही पानी से भरा हो और हिमालय पर कोई गहरा प्रभाव पड़े, तो फिर भूकंप के खतरे का अंदेशा लगातार बना रहता है। इस जगह डैम बनाने से भूकंप और प्राकृतिक आपदा का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा।
16: अभी के लिए हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं लखनऊ से, बड़ी खबर जहां पर हिंदुवादी नेता की हत्या कर दी गई। हिंदुवादी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और शव को नहर में फेंक दिया गया। हिंदुवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में थे और गोली मारकर हत्या की गई। शव को उसके बाद नहर में फेंका गया। लखनऊ के दुबग्गा थाना इलाके के पास से शव मिला है। धीरेन्द्र लखनऊ के पीजीआई इलाके के रहने वाले थे, मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले थे और परिवार की तरफ से ये भी बताया गया कि दो दिन पहले लापता हुए थे। बाकायदा पुलिस में शिकायत भी की गई थी और अब उनका शव मिला है और गोलियां लगा हुआ शव है।
1: लखनऊ में हिंदुवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि उनकी छह टीमें इस मामले में जांच में जुट गई हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के ड्राइवर और उसके एक सहयोगी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह को गोली मारी गई और फिर उसके बाद उनकी लाश करीब 20 किलोमीटर दूर शहर से एक सुनसान इलाके में फेंकी गई। मैं इस समय पर उसी जगह पर मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देखिए, ये रिंग रोड है, ये दुबग्गा का ये रिंग रोड है। दूर से आते हुए ये तमाम उन्नाव हरदोई के रास्तों को जोड़ने वाला ये रास्ता है, सुनसान रास्ता है। और यहीं से ये जब ये रास्ता आगे बढ़ता है तो यहां से होते हुए रास्ता इधर ये एक सुनसान रास्ते की तरफ जाता है। ये एक आम का बाग है। इस आम के बाग की तरफ यहां पर मेरे बाई तरफ आपको एक नहर पतली सी नजर आ एक गई हुई है। बारिश के मौसम में इसमें पानी है और ये इसी सुनसान इलाके का फायदा उठाते हुए हत्यारे थे। उन्होंने धीरेन्द्र प्रताप सिंह को गोली मारने के बाद उनकी हत्या करने के बाद उनकी लाश को इस यहां पर फेंक दिया और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरी हत्या के पीछे उन्नाव में एक जमीनी विवाद अभी प्राथमिक जांच में सामने आ रहा है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के ड्राइवर और उसके एक अन्य साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सहयोगी अंकित मिश्रा के साथ संतोष कुमार, आज तक।
0: धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या के संबंध में एक बड़ी खबर मिल रही है। हथियारों को लेकर यह बड़ी खबर है, ड्राइवर को पकड़ा गया है। ड्राइवर ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने हत्या की है। आरोपी रवि ने दोस्तों के साथ मिलकर, बताया जा रहा है कि गोली मारी, उसके बाद से शव को फेंका। हिंदुवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप हत्याकांड में यह खुलासा हुआ है और इस हत्या में शामिल कोई और नहीं बल्कि उनका ड्राइवर ही बताया जा रहा है। और ड्राइवर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग की और वारदात को अंजाम दिया, मारा। हिंदुवादी नेता की हत्या के मामले में यह बड़ा अपडेट मिला है। अबाद उत्तर प्रदेश में मची सियासत की करते हैं, यूपी की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर जंग तेज हो गई। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर जेपीएनआईसी से लेकर एक्सप्रेसवे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो पलटवार करते हुए अखिलेश सरकार के दौर के खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी जेपीएनआईसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जेपीएनआईसी को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
3: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। जेपी एनआईसी बीजेपी ने जेपी बेच दिया।
2: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी एनआईसी के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़, इसके बावजूद काम अधूरा रहा। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
4: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें

0: धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था, राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है, जिसको लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
2: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यहाँ सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं, और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
3: और अब रुख करते हैं उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद का, जहां पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है। और ताशकंद में भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने उज़्बेकिस्तान को भारत का प्रमुख साझेदार बताया। दोनों देशों में $1 बिलियन से ज्यादा का द्विपक्षीय कारोबार होता है। यूरेनियम सप्लाई को लेकर भी उज़्बेकिस्तान के साथ बातचीत हुई। और इन पांच तस्वीरों में पीएम मोदी के उज़्बेकिस्तान दौरे का सार भी दिख जाएगा। पीएम मोदी का उज़्बेकिस्तान में सर्वोच्च सम्मान के साथ आज उनका सम्मान भी हुआ, उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया।
4: हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए, हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहाँ न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहाँ से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम उन्हें एक ऐसे महान नेता के रूप में याद करते हैं, जिनका देश के लिए अटूट समर्पण आज भी हर पीढ़ी को प्रेरणा देता है। शास्त्री स्मारक के बाद पीएम ने महात्मा गांधी विद्या केंद्र का दौरा भी किया। तो ये दो तस्वीरें, एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, जिनका देहांत यहीं पर ताशकंद में ताशकंद समझौते के बाद हुआ था, और वहां पर महात्मा गांधी विद्या केंद्र भी स्थापित है और वहां भी प्रधानमंत्री गए। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि यह शहर पहले कैसा रहा होगा। इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
8: ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है।
9: जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस. तो अब डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना.
2: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है.
3: Take a date, not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया. Lion dates,
3: take
4: nut bites.
3: Take a lion date, not bites.
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल में आई जल त्रासदी को 4 दिन हो चुके हैं और अब भी मलबे में शवों का निकलना बंद नहीं हुआ है। इस हादसे में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लापता हैं। नेपाल अपने इतिहास की एक बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है, 35 देशों के नागरिक प्रभावित हुए हैं। इसके साथ साथ अब एक नई आपदा के संकेत मिलने लगे हैं, जिसकी तैयारी करना नेपाल के लिए बड़ा चैलेंज है। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ इस नए खतरे ने नेपाल से नेपाल कैसे निपट रहा है, आज हम आपको दिखाएंगे।

0: पानी, मिट्टी और मलबे का सैलाब अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गया। कई घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए। कई गांवों का संपर्क टूट गया। नेपाल में फ्लैश फ्लड से तबाही जारी है। अब तक 675 से ज्यादा मौतें और 2400 से ज्यादा लोग लापता हैं। 15,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी रेस्क्यू में जुटे हैं। कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण राहत और बचाव का काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। नेपाल के मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों में फिर बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। कोशी, बागमती और गंडकी के पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। बाढ़ के बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में फंसे लोगों को निकालना बड़ी चुनौती है। त्रिशूली 3A, 3B और अपर त्रिशूली 1 में लोगों के फंसे होने की आशंका है। बाढ़ में 19 पुल बहने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। राहत सामग्री और जरूरी सामान पहुंचाना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। इसी बीच चीन नेपाल सीमा पर ग्लेशियर टूटने से बनी झील का क्षेत्रफल घटकर 99,000 वर्ग मीटर हो गया है। इसके बावजूद खतरा बरकरार है और 24 घंटे निगरानी जारी है। वहीं ग्लेशियर के नीचे 1,20,000 वर्ग मीटर से बड़ी दूसरी झील भी चिंता बढ़ा रही है। इसकी निगरानी ड्रोन और रडार से की जा रही है। नेपाल में इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। एक तरफ मलबे में अपनों की तलाश है, दूसरी तरफ सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने की चुनौती और अब मौसम भी नई मुश्किल पैदा कर सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: घटना एक महिला के शव से जुड़ी है। बाढ़ के पानी में बहते हुए नेपाल की नारायणी नदी के किनारे उनका शव पहुंचा और सोचिए इस शव को लेकर किसी भी इंसान का क्या फर्ज होना चाहिए था। इंसानियत के नाते वहां मौजूद लोगों को सम्मान के साथ इन महिला का शव बाहर निकालना चाहिए था। उनके परिवार तक कम से कम कोशिश करनी चाहिए थी कि खबर पहुंचे, पता लगाते कि कौन है, कहां से है। कम से कम उनके शव की गरिमा बनाकर रखनी चाहिए थी, उनका अंतिम संस्कार ही कर देते। लेकिन इस वीडियो में जो दिखाई देता है वो इस सोच को झकझोर देता है। यकीन नहीं होगा, जो दो लोग इस महिला का शव निकालने के लिए आए वो उनके कानों की बालियां चुराना चाहते थे। नेपाल की स्थानीय पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने महिला के बाल पकड़कर उसके सिर को खींचा ताकि वो कानों में पहनी बालियों तक आसानी से पहुंच सके। इसके बाद उन्होंने उसके कानों से सोने की इन बालियों को नोच लिया। सोचिए बाढ़, प्रलय, त्रासदी, इस महिला से पहले ही उसका सब कुछ छिन चुका था, लेकिन इंसान का लालच उसकी देह को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कुदरत की बाढ़ ने घरों को बहाया, पेड़ों को उखाड़ा, पुलों को तोड़ा, जिंदगियां छीन ली, परिवार के परिवार, गांव के गांव बर्बाद कर दिए। लेकिन इस वीडियो ने एक दूसरी बाढ़ दिखाई और वो थी लालच की बाढ़। वो लालच जो इंसान को यह भी भुला देता है कि सामने कोई चीज नहीं बल्कि किसी की मां, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, एक महिला है। लेकिन अब तक नेपाल की बाढ़ में इंसानों को मरते हुए देखा होगा आपने। आज हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो में देखें कि कैसे इन लोगों ने इंसानियत को मार डाला।

नजरें झुक जाती हैं। सोचिए ये कैसा लालच है। इन लोगों को इस महिला के कानों में सोने की बालियां तो दिखाई दी, लेकिन उन्हें इस महिला की इतनी बड़ी जो उनकी उनका शरीर था वहां पर नहीं दिखा कि इसका अंतिम संस्कार करें। इस मामले में नेपाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी अब कर लिया है, जिनमें एक आरोपी का नाम मदन गुरुंग है जो 25 साल का है और दूसरे आरोपी का नाम उमेश चौधरी है जो 38 साल का है। दोनों आरोपी नेपाल के सुनसरी जिले के रहने वाले हैं, जिन पर शव का अपमान करने, आपदा के वक्त चोरी करने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। जब वक्त ने इंसानों की परीक्षा ली है, तब तब वो इंसानियत की डगर पर कई बार लड़खड़ाए हैं। आज से 120 साल पहले जब 1906 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक विनाशकारी भूकंप आया और इसमें हजारों लोग मारे गए, तब वहां बड़े पैमाने पर लूटपाट की घटनाएं भी हुई थी। लोगों ने ना केवल ढह चुकी दुकानों को लूटा, बल्कि मलबे में दबे लोगों, घायलों की उंगलियां काटकर सोने की अंगूठियां, गहने, जेबों से पैसे चुरा लिए। उस वक्त इन घटनाओं को देखते हुए लूटपाट करने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके बाद जब जांच हुई तो यह पता चला कि उस वक्त कुछ अमेरिकी नेशनल गार्ड के जवानों और पुलिसकर्मियों ने मलबे से कीमती सामान और शवों से गहने चुराए थे। और यह ऐसी पहली और आखिरी घटना नहीं रही। 2004 में जब जब हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी आए, या 2010 में हेटी में जब भूकंप आया, तब भी इन आपदाओं में मारे गए लोगों के शवों से सोना चुराने की घटनाएं हुई। और इन्हीं घटनाओं के कारण जिनीवा कन्वेंशन के तहत यह अनिवार्य किया गया कि किसी भी आपदा, किसी भी युद्ध के बाद मृतकों के शवों की पहचान, उनके सामान को सुरक्षित रखकर उनके परिजनों को सौंपना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी होगी। लेकिन सोचिए ऐसे कानून इंसान के लालच को आखिर कहां रोक पाते हैं। हालांकि यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर इंसान इन लोगों की तरह लालच में है, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें आप देखेंगे नेपाल में अब भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो जान जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरों को बचा रहे हैं। कोई अनजान व्यक्ति के लिए रस्सी लेकर दौड़ रहा है अपनी जान को खतरे में डालकर, तो कोई अपने घर का दरवाजा खोल देता है, कोई भूखे को खाना देता है, कोई मलबे में दबे इंसान को निकालने के लिए घंटों अपनी जान की परवाह तक नहीं करता। खाना पीना भूल कर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं, आम लोग लगे हुए हैं। और यहां पे शख्स को भी देखिए जिसे बाढ़ के पानी से सोने के गहने और कुछ कैश मिला, लेकिन इस व्यक्ति ने इन गहनों को अपने पास नहीं रखा, मतलब उसके तो हाथ में आया। उसने कहा कि ये सोना जिन लोगों का भी रहा होगा वो उन्हें लौटाने के लिए तैयार है और पुलिस भी इस काम में उसकी मदद करे। ऐसे भी लोग हैं, देखिए। अब आप ये देखिए कि नेपाल में दूसरी तबाही का खतरा क्यों मंडरा रहा है। आज सुबह चाइना ने तिब्बत के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अचानक अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस को स्थगित कर दिया, रोक दिया। कारण यह बताया कि जिन दो नदियों में ग्लेशियर का मलबा फंसने से एक बैरियर झील बन गई थी, वो झील अब कभी भी फट सकती है। चाइना के सरकारी मीडिया के मुताबिक अभी इस झील का पानी ओवरफ्लो होकर लगातार नेपाल की नदियों में जा रहा है, लेकिन अगले कुछ घंटों या इस हफ्ते के आखिरी तक ये झील पूरी तरह फट सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इसके कारण नेपाल में लगातार दूसरी बार महाप्रलय का संकट पैदा हो सकता है। चाइना के जल संसाधन मंत्रालय और सीसीटीवी न्यूज चैनल के मुताबिक ये बैरियर झील बुधवार को उस वक्त बनी जब ग्लेशियर या बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग होकर नीचे गिरा। अगर इसे इस ग्राफिक्स की मदद से समझें तो जब हिमालय के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटता है और वो टूटकर नदी में गिरता है, तब इस मलबे ने नदी का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। यानी जैसे स्विमिंग पूल में पानी भरने लगता है, ठीक उसी तरह इस मलबे के कारण यह नदी रुक गई और उसके पीछे पानी जमा होकर एक प्राकृतिक झील बन गई जिसे अब बैरियर लेक कहा जा रहा है। यह झील इसलिए खतरनाक है क्योंकि अभी इसका जो आकार है वो 7 करोड़ घन फीट है, लेकिन अगले 3 दिनों में यही आकार 17 करोड़ 60 लाख घन फीट हो जाएगा। चाइना का कहना है कि अगर इस इलाके में लगातार बारिश होती है, इसके कारण नदी में पानी की मात्रा बढ़ती है, तो यह आकार
और भी विशाल रूप ले सकता है, जो किसी वाटर बॉम्ब जैसा होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 17 करोड़ 60 लाख घन फीट पानी ओलंपिक खेलों के 2000 स्विमिंग पूल्स के पानी के बराबर होता है। इतना पानी अगर अचानक निकल जाए तो वो नीचे बहने वाली पूरी घाटी को तबाह कर सकता है, क्योंकि जब वो नीचे बहने लगता है तो अपने साथ मलबा लाता है और उस मलबे के साथ जब वो नीचे आता है तब वो विनाशकारी होता है। और यही अभी नेपाल के सामने सबसे बड़ा संकट है। अब सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस झील का पानी अब ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है, यानी ये पानी इस झील में लगातार बढ़ रहा है और वो अब ऊपर से बहकर उसी नदी में जा रहा है जिसने बुधवार को नेपाल में तबाही मचाई थी, और इस नदी का नाम भोटेकोशी नदी है। अगर ये बैरियर झील अगले 2 दिनों में पूरी तरह टूट जाती है तो इससे नेपाल में दूसरी प्रलय भी उसी रास्ते से आएगी जिस रास्ते से पहली प्रलय आई। इससे उन लोगों का ज्यादा खतरा होगा जो नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस इस वक्त चला रहे हैं, क्योंकि यही कारण है कि पहले चाइना ने तिब्बत में अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस को रोका और अब नेपाल भी प्रभावित इलाकों में अपने बचाव कर्मियों को पीछे हटा रहा है क्योंकि खतरा बहुत बड़ा आ गया है। यहां बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में जो आलोचनाएं हो रही हैं उसके बाद भी इस बैरियर झील को लेकर चाइना ज्यादा सावधानी अब बरत रहा है। चाइना के वैज्ञानिक लगातार सैटेलाइट से इस झील की निगरानी कर रहे हैं, पानी का स्तर माप रहे हैं, कंप्यूटर मॉडल से अनुमान लगा रहे हैं कि बांध टूटने पर पानी कहां तक जाएगा, तबाही कैसे हो सकती है, कितनी बड़ी होगी। आप खुद देखिए, जिस जगह ये झील बनी है उसके पास चाइना के वैज्ञानिक ड्रोन्स की मदद से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब तक ये झील फट सकती है, इसका पानी किस दिशा में जा सकता है।

0: मैप लोकल अथॉरिटीज से हमें मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो तबाही हुई वो यहीं से शुरू हुई और ये जगह यहीं पर मार्क की गई है। बैरियर लेक समुद्र तल से लगभग 2950 मीटर की ऊंचाई पर है। यही बॉर्डर लाइन दिखाने वाली लाइन बहुत साफ नहीं है। लोकल अथॉरिटीज से मिली जानकारी और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये लेक असल में चीन और नेपाल दोनों तरफ है। तो जब बैरियर लेक से पानी का बहाव शुरू हुआ तो उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और कमांड सेंटर के मुताबिक पानी को लगभग 20 किलोमीटर बहने में सिर्फ 7 मिनट लगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रफ्तार कितनी तेज होगी और कितनी तेज पानी नीचे आया होगा। हम अभी यहाँ मौजूद हैं और जैसा मैंने पहले बताया कि हम बॉर्डर गेट से लगभग 7.7 किलोमीटर दूर हैं। ये जो लाल डॉट दिख रहा है जो बॉर्डर गेट है वो असल में यहीं पर है।
1: आने वाले हफ्ते में जिरोंग पोर्ट इलाके में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना को देखते हुए बैरियर लेक में पानी का बहाव लगभग 15 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड रहने का अनुमान है, जबकि पानी का फ्लो अभी भी बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से खतरा और बढ़ता जा रहा है।
2: द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि चाइना के वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक नहीं बल्कि दूसरी नई झील भी देखी है। ये झील नेपाल के लांगटांग लिरुंग एक पर्वत है। लांगटांग लिरुंग उस पर्वत की उत्तरी ढलान के नीचे बन रही है, ठीक वहीं जहां शुरुआती चट्टान और ग्लेशियर टकराए थे। और अगर ऐसा होता है तो नेपाल के लिए ये अच्छी खबर कतई नहीं होगी। पहले ही बर्बादी का मंजर आपने देखा है। इसके अलावा अगर मौजूदा संकट किसी तरह टल भी गया तब भी भविष्य में नेपाल, भूटान और भारत के नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है, बिहार, इन सब के लिए परिस्थितियां अच्छी नहीं दिखाई देती हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए अब आप हमारे इस विश्लेषण को जरूर देखिए। सबसे पहले ये बात हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जिस टिबेट में कभी सड़कें बनाना मुश्किल था, वहां चाइना ने अंधाधुंध निर्माण कर दिया है। इस निर्माण के कारण तिब्बत का हिमालय क्षेत्र और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है, बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम हो गया है। असल में हिमालय में बहुत ऊंचाई पर जमीन हो, चट्टानों के बीच एक परमा फ्रॉस्ट होता है। अब ये परमा फ्रॉस्ट क्या है? इस परमा फ्रॉस्ट को आप प्राकृतिक सीमेंट कह सकते हैं, प्राकृतिक सीमेंट कहिए या फिर आप इसको गोंद की तरह, मतलब जो इकट्ठा करके चिपका के रखता है पहाड़ों को अपनी जगह से। ये परमा फ्रॉस्ट जो है वो हिलने नहीं देता है चट्टानों को, बर्फ को, पहाड़ की अलग अलग परतों को, ये मजबूती से जोड़ कर रखता है। लेकिन जिस तरह पृथ्वी गर्म हो रही है, हिमालय क्षेत्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है, वहां पर प्राकृतिक ये जो एक साथ रखने वाला परमा फ्रॉस्ट है जो जोड़ कर रखता है वो प्राकृतिक गोंद ही समझिए पिघलने लगा है। भाई इतना निर्माण होगा, इतना कंस्ट्रक्शन होगा, पहाड़ियों में इस तरह से टनल्स बनाए जाएंगे तो पूरा वो पहाड़ियां हिल जाती हैं और उसके बाद से धीरे धीरे पूरा तापमान बढ़ता है, प्रभाव एक के बाद एक जुड़ता जाता है और फिर ये हालत होती है। क्योंकि ये जो गोंद, ये जो परमा फ्रॉस्ट हम आपको बता रहे हैं, ये परमा फ्रॉस्ट पिघल रहा है, इसीलिए पहाड़ों की ढलान कमजोर हो रही है, चट्टानें ज्यादा टूट रही हैं, ग्लेशियर के टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से ये प्रलय आ रही है। संक्षेप में कहें तो पहाड़ों के कमजोर होने से चट्टाने और ग्लेशियर टूटने का जो खतरा बढ़ रहा है उससे हिमालय में बनी ग्लेशियर लेक फट रही है। और अगर ये चीज आगे और बढ़ी तो इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए हम आपको स्क्रीन पर एक मैप दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नेपाल, चाइना, भारत की सीमा पर हिमालय क्षेत्र में मार्क किए गए इन डॉट्स को देखेंगे जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आइए चलते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी जो ग्लेशियर झीलें हैं नेपाल में, ये देखिए एक झील फटने से ही इतनी तबाही हुई है जो आप देख रहे हैं। इस लाइन को समझिए और फिर इसकी सिग्निफिकेंस को देखिए जो हम बता रहे हैं। क्योंकि एक झील फटने से इतना हुआ है, लेकिन जब आप देखेंगे ये है नेपाल, यहां पर ये जो आप आउटलाइन देख रहे हैं ये नेपाल का बॉर्डर है, ऊपर है चाइना, ठीक है, ये ऊपर हो गया चाइना, ये इधर हो गया भारत इस तरफ। अब ये जो आप ग्लेशियर झीलें देख रहे हैं ये ब्लू, दूर से आपको लग रहा है मैप का हिस्सा है लेकिन आप इसको करीब से देखिए कितने सारे डॉट्स हैं। मैं बस एक एरिया में डॉट्स को आपके लिए करके दिखाती हूँ कितने सारे डॉट्स हैं। इतने सारे झील तो एक एरिया में है। मतलब इनको जब आप मैग्नीफाई करेंगे, जूम इन करके दिखा दीजिए, और ये सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये पूरे इस इलाके में है जो आप देख रहे हैं। ये वाला हिस्सा देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख गए। अब यहां से होते हुए पूरा बढ़ते जाइए, ये जो पूरा एक तरह से ये जोन आप देख रहे हैं ऊपर, ये सारा आपको ऐसे झीलें दिख रही हैं, ऐसे ग्लेशियल झीलें। यही नहीं है, नीचे में भी है, यहां देखिए यहां तक, तो नेपाल वाले हिस्से में भी है। तो आप समझिए कि ये पूरा हिस्सा जो मैंने आपके लिए नीले में किया है, ये पूरा हिस्सा ऐसे, ये इसमें इतनी सारी झीलें हैं जो अनगिनत झीलें आप कह सकते हैं, और इस वजह से कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है उसका सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब आपको इसका अगला जो है वो दिखा देते हैं, ताकि आपको समझ में आए। हिमाचल में जो तबाही अभी तक हुई है उसमें अगर आप देखेंगे, हिमालय में इस पूरे इलाके में जब आप इंडिया में, तो 1900 के बाद हिमालय में कई ग्लेशियर्स टूटे हैं। 26 अगस्त को एवलांच और बाढ़ वाली जगह जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाली जगह है वो, ये नेपाल का हिस्सा, फिर आप देख रहे हैं ये भारत, इधर भूटान है, चाइना है। तो 1900 के बाद हिमालय में कई ग्लेशियर्स टूटे हैं, और उसी को यहां पर आप रेड वाले जोन में देख रहे हैं। तो येलो से सर्कल है और रेड जो आप ट्रायंगल, थोड़ा जूम इन कीजिए, जब आप जूम इन करेंगे तो आप दिखा पाएंगे, ये जो रेड ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं ये सारे ऐसी ग्लेशियर्स हैं जो टूटे हैं। तो साल 1900 के बाद हिमालय में कितने ग्लेशियर्स टूटे हैं उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, और उसी से आपको समझ में भी आ जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर यह खतरा इस वक्त भी इन जगहों पर मंडरा रहा है। तो यहां जरूरी यह है कि तिब्बत में चाइना जो सड़कें, पुल, बड़े बड़े बांध बना रहा है, उनके बारे में एक बार सोचा जाए, और ये सोचने की जरूरत क्यों है उसके लिए आप अब इस खबर को देख लीजिए। हमने पहले आपको दिखा दिया कितनी सारी वहां झीलें हैं, कितने ग्लेशियर्स टूट चुके हैं पहले, बहुत खतरनाक ये जोन बनता जा रहा है। साल 2020 में नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट आई, अब ये रिपोर्ट कहती थी कि तिब्बत में सड़कें, हाईवे बनाने के लिए 11 नदियों का रास्ता बदला गया, यानी ये नदियां ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जिस रास्ते बह रही थी वो रास्ते बंद कर दिए गए, और इसके कारण नेपाल का दावा है कि 36 हेक्टेयर जमीन चाइना के पास चली गई। यानी मान लीजिए जिस जगह मैं अभी खड़ी हूं, अगर यहां कोई नदी बह रही है तो चाइना उस नदी का रास्ता बदलकर उसे यहां से काफी आगे तक ले जाते हैं, जाता है, और फिर जगह पर कब्जा करके इन्हीं नदियों पर बांध बनाकर पहाड़ों के अंदर बड़ी बड़ी टनल्स बना लेता है। और ये सब जानते हैं कि टनल बनाने के लिए पहाड़ों में कैसे ड्रिलिंग मशीन इस्तेमाल होती है, बहुत आसान काम नहीं होता है ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ों में ड्रिलिंग करके टनल्स बनाना, पूरा इकोसिस्टम वहां का हिल जाता है, पूरे पहाड़ हिल जाते हैं। अब आप ये समझिए कि जब चाइना, भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने अपनी रेस्क्यू टीम, हेलीकॉप्टर्स नेपाल में भेजने की कोशिश की, पेशकश की, तो नेपाल ने इनकार क्यों किया? नेपाल की सरकार ने कहा है कि वो दूसरे देशों से राहत सामग्री, आर्थिक मदद, जरूरी सामान, पैसा भी सब लेने को तैयार है, लेकिन अगर कोई देश अपनी रेस्क्यू टीम, हेलीकॉप्टर्स नेपाल में भेजना चाहता है तो नेपाल इस मदद को लेने से इनकार करता है। अब नेपाल ने यह फैसला तब किया है जब चाइना, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत कई देशों ने मदद की पेशकश की। इससे कई लोगों के मन में यह सवाल आया कि नेपाल की सरकार ने ऐसा क्यों किया है, भाई क्या ये उसकी गलती है, वो आखिर क्यों नहीं सहायता ले रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। अगर इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो ये पता चलता है कि नेपाल के पास इस फैसले के लिए कोई ठोस वजह है। उसे 2015 में भूकंप जब आया तो काफी कुछ सीखा, अप्रैल 2015 में जब नेपाल में लगभग 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, तब नेपाल में दूसरे देशों की फॉरेन रेस्क्यू टीम्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल टीम्स, इंजीनियर्स, अलग अलग देशों के दूसरे विशेषज्ञ भेजे गए। इससे नेपाल में बचाव अभियान को तो गति मिली, लेकिन इसी के साथ उसके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये थी कि उस वक्त नेपाल में इतने सारे अलग अलग देशों के लोग और संगठन एक साथ आ गए, हर टीम को कहां जाना है, किस इलाके में काम करना है, किससे संपर्क करना है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत, कौन सा काम किसके हिस्से में जाएगा, हेलीकॉप्टर्स कहां उतरेगा। अब एक ही जगह पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए, उसी हेलीपैड के लिए कई लोग बुकिंग मांग रहे थे, किसे पहले बचाया जाएगा, इन चीजों में नेपाल की सरकार उलझ कर रह गई। सरल भाषा में कहें तो ऐसी बुरी तरह से कंफ्यूजन फैला कि भूकंप से ज्यादा जटिल ये बचाओ अभियान बन गया, और नेपाल की सरकार रेस्क्यू करने वाली टीम्स के बीच तालमेल बैठा नहीं पा रही थी। इसके अलावा उस वक्त नेपाल में जिन अलग अलग देशों से टीमें आई थी उनके बीच एक कॉम्पिटिशन शुरू हो गया, प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। यानी हर देश ये दिखाने लगा कि उसे आपदा प्रबंधन बचाव अभियान में ज्यादा महारत हासिल है। और उस वक्त भूकंप के कई महीनों बाद नेपाल की सरकार ने विदेशों से आई इस मदद की समीक्षा की और ये तय किया कि वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी। इसकी वजह नेपाल की एक स्पष्ट कमांड बनाएगा, नेपाल ही बनाएगा। उसकी सुरक्षा एजेंसियां बचाव अभियान में मदद करेंगी और दूसरे देशों से मदद नहीं ली जाएगी, अभी नेपाल यही कह रहा है। लेकिन हाँ, अगर पैसे दिए जाए, राहत सामग्री दिए जाए तो उसको नेपाल स्वीकार कर रहा है। यहां पर इन तस्वीरों को भी देखिए, दिल टूट जाएगा। इस वक्त मलबे और नदियों से निकाले जा रहे सैकड़ों शवों को नेपाल के अलग अलग अस्पतालों के मुर्दा घरों में ले जाया जा रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज, ये तस्वीरें देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है कि पानी और मलबे के भीषण बहाव के कारण कई शव इस कदर क्षतविक्षत हो चुके हैं कि उनको देख पाना मुश्किल है, क्योंकि अस्पतालों के मुर्दा घर पूरी तरह भर चुके हैं। इससे प्रशासन ने अब शवों के चेहरे, कपड़ों और शरीर के विशेष निशानों या शरीर पर गहने की तस्वीरें ली है और इन तस्वीरों को अस्पतालों के बाहर नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जा रहा है। और जब अपनों की तलाश में आए लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो मानो उनका कलेजा फटा जा रहा है। और इनमें भी कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने इन कांपते हाथों से ये देख रहे हैं कि कहीं इनमें कोई शव उनके अपने का तो नहीं। देखिए,

0: dapat si Pan Jervin mo ya.
1: अभी तक उसका कोई खबर नहीं आया है, कैसे कोई पता नहीं चल रहा है।

अब आप ये देखिए कि नेपाल 2300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे मुश्किल हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला रहा है। 26 अगस्त को जब नेपाल में प्रलय आई तब वहां एक सुरंग में 450 से ज्यादा लोग फंस गए थे। ये सुरंग रसुवा के सबसे बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की थी। उस वक्त बाढ़ के मलबे और भारी कीचड़ के कारण सुरंग का मुख्य द्वार पूरी तरह छिप चुका था, जिससे शुरुआती तौर पर प्रवेश द्वार को ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। और ऐसा माना जा रहा था कि सुरंग में कीचड़ का मलबा पत्थर आने के कारण 450 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद नेपाली सेना ने अपनी विशेष आपदा राहत टीम्स को इस सुरंग के पास तैनात किया, क्योंकि सुरंग के अंदर बिजली नहीं थी और हर जगह घने कीचड़ की मोटी परतें जमी थी। इसलिए रेस्क्यू टीम ने एक खास तरकीब अपनाई। कई लोगों की जिंदगी इससे बची है। उन्होंने क्रॉलिंग टेक्निक के तहत सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। यानी नेपाली सेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर पेट के बल घिसटते हुए कीचड़ को चीरते हुए टनल के उन हिस्सों तक पहुंचे जहां लोग फंसे हुए थे। इंसानियत की इससे बड़ी तस्वीर नहीं दिख सकती है। हालांकि इसके बाद भी अंदर फंसे श्रमिकों को बाहर लाना आसान नहीं था, क्योंकि टनल के मुहाने पर ही और अंदरूनी हिस्सों में बहुत सारा मलवा, गाद और इतनी मोटी, जिसको कहते हैं स्लेट, जमी थी कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। और यह भी डर था कि रेस्क्यू टीम के साथ सुरंग में फंसे लोग अंदर धंस सकते हैं। इसी के बाद ये फैसला हुआ कि नेपाली सेना के जवान इन श्रमिकों को अपनी पीठ पर लादकर रेंगते हुए सुरंग से बाहर निकलेंगे और इनकी जान बचाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन असंभव माना जा रहा था, उसमें अब तक 350 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और बाकी 100 और लोगों को बाहर लाने की कोशिशें इस वक्त भी चल रही हैं। देखिए,

कई लोग इसे नेपाल फ्लड मिस्ट्री का नाम दे रहे हैं। ऐसी मिस्ट्री, ऐसा रहस्य जो नेपाल और चाइना के दावों के साथ उलझती जा रही है, और आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए जो नेपाल के बेत्रावती बाजार का है। अब जो लोग इस वीडियो के आधार पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि तिब्बत बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर नेपाल के बेत्रावती इलाके में भी पानी का बहाव इतना तेज कैसे था, तो उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये सवाल ही पूरी तरह गलत है। जब लाखों करोड़ों लीटर पानी अचानक नदियों में आता है तो वो कुछ दूर जाने के बाद रुक नहीं जाता है, वो उसी रफ्तार के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक नदियों में बहता है। और यहां नेपाल की प्रलय में भी ऐसा ही हुआ। नेपाल की सरकार क्या कह रही है? उनका कहना है कि यह प्रलय इतना भयानक था कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर त्रिशूली नदी का जलस्तर करीब 9 मीटर बढ़ गया। 9 मीटर का मतलब हुआ बिजली के एक बड़े खंभे जितनी ऊंचाई, आप समझ लीजिए, या फिर लगभग 5 लोगों को मिलाकर जितनी हाइट होगी उतना जलस्तर सिर्फ 30 मिनट के अंदर 9 मीटर बढ़ गया। इससे यह पता चलता है कि ये तमाम ये जो स्थिति है, ये जो सामान्य बाढ़ की घटना ये नहीं थी, बल्कि शायद नेपाल और तिब्बत के इतिहास की सबसे बड़ी प्रलय की घटना थी। और यही कारण है कि इस घटना को लेकर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर चाइना को इसके बारे में कैसे पता नहीं चला, या चाइना ने नेपाल को समय रहते इसकी चेतावनी क्यों नहीं दी। इन आरोपों को लेकर आज काठमांडू में भी काफी हलचल रही, और इसी हलचल के बीच चाइना और नेपाल की तरफ से अलग अलग दावे सामने आए हैं। जैसे नेपाल में चाइना के दूतावास ने कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है कि चाइना ने नेपाल को इस प्रलय की समय रहते जानकारी नहीं दी। चाइना ने इन आरोपों को भी गलत बताया है कि तिब्बत में किसी बांध के टूटने से ये प्रलय आए। चाइना यही कह रहा है कि 26 अगस्त की सुबह नेपाल की तरफ एक भूकंप आया था जिसके कारण पहाड़ों में आइस एवलांच यानी बर्फ का तूफान पैदा हुआ, और बाद में ये पहाड़ के मलबे के साथ मिलकर नदियों में समा गया और इसने एक प्रलय का रूप ले लिया। चाइना यह भी कह रहा है कि इस वक्त आरोप लगाने की नहीं बल्कि एक दूसरे का सहयोग करने की जरूरत है। दूसरी तरफ है नेपाल। नेपाल सरकार ने इस घटना को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल और नेपाल की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का शुरुआती आकलन यह है कि तिब्बत बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर उत्तर में एक ग्लेशियर लेक यानी झील जो है उसमें अचानक धमाका हुआ। बाद में इसी झील का पानी पहाड़ के मलबे के साथ तिब्बत की लेंडे नदी में आया और फिर इसी से ये नेपाल में प्रवेश कर गया। अब नेपाल ये दावा क्यों कर रहा है, उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा। ये वीडियो हमने आपको कल भी दिखाया था, कई बार दिखाया, जिसमें नेपाल बॉर्डर के उस पार तिब्बत के जिरोंग पोर्ट का इमिग्रेशन ऑफिस इस प्रलय में पूरी तरह नष्ट हो गया था। पहली नजर में इस वीडियो को देखकर यही लगता है कि मिट्टी और मलबे का सैलाब दूसरी तरफ से तिब्बत में आया था। लेकिन जब आप इसी जिरोंग पोर्ट की एक साल पुरानी तस्वीर को यहां देखेंगे तो इसमें एक नई कहानी नजर आती है। अब ये जो इमिग्रेशन ऑफिस जो पूरी तरह से पानी से बर्बाद हो गया है, वो सबसे नीचे आपको दिख रहा है जहां पर चाइना का एक फ्लैग आप देख रहे हैं। पहली नजर में इस वीडियो को देखकर यही लगता है कि मिट्टी और मलबे का सैलाब दूसरी तरफ से तिब्बत में आया था। लेकिन जब आप इसी जिरोंग पोर्ट की एक साल पुरानी तस्वीर को यहां देखेंगे

और उसके बाद मलबे के बहने से पैदा हुए थे। आप सोचिए इतनी ऊंचाई से ये नदियां आ रही हैं, इतने मोमेंटम के साथ जो मलबा है, चीजें हैं, पहाड़ की टुकड़ियां हैं, वो सब अपने साथ तेज रफ्तार से ला रही हैं। तो उसका मोमेंटम ऐसा हो जाता है जैसे कि पूरे इलाके में एक कंपन हो जाए। यानी जिस घटना को शुरुआत में भूकंप समझा गया था वो असल में ग्लेशियर से जुड़ी घटना थी। इसी तरह की बात हिमालय क्षेत्र के संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, उसने भी यही कही है। इस एजेंसी ने नेपाल बॉर्डर के पास तिब्बत के इलाकों की मौजूदा सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया है और इसमें यह पता चला है कि तिब्बत में करीब 5,150 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर के ऊपर बनी झील 26 अगस्त की सुबह अचानक खाली हो गई। तो बाढ़ से पहले इस झील का क्षेत्रफल करीब 0.75 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन बाढ़ के बाद यह घटकर 0.61 वर्ग किलोमीटर रह गया। इसका मतलब यह हुआ कि झील का काफी पानी अचानक बाहर निकला और इसी के बाद यह प्रलय आई, और ऐसा इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का अनुमान है जिसके हवाले से हम आपको यह बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इसी तरह का दावा जो है वो नेपाल भी कर रहा है। नेपाल की आपदा प्रबंधन एजेंसी का दावा है कि तिब्बत में करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ और चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आया। इसके बाद इस मलबे ने तिब्बत की लेंडे कोला नदी का रास्ता रोक दिया। कुछ समय के लिए वो पानी जमा हुआ, लेकिन बाद में जब ये रास्ता खुला तो उस प्रलय ने तिब्बत और नेपाल को अपनी चपेट में ले लिया। और यहां ये सवाल भी उठता है कि चाइना को इस झील के बारे में पता कैसे नहीं चला। ये सवाल न सिर्फ नेपाल में कई एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं बल्कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर चाइना ने वक्त पर बता दिया होता तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। अब देखिए, चाइना के पास तिब्बत के हिमालय क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए बड़ी संख्या में सैटेलाइट मौजूद है। इनमें भी गाफेन है, गाफेन और याओगान, ये तमाम ऐसे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं चाइना के जो खास तौर पर तिब्बत, हिमालय, इन तमाम इलाकों की निगरानी का ही काम है इनका। जैसे गाफेन जो है वो चाइना के हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम का हिस्सा माना जाता है जो तिब्बत के इलाकों की बहुत बारीकी से तस्वीरें ले सकता है, जबकि याओगान जो है वो चाइना के सभी सैटेलाइट्स की एक बड़ी श्रृंखला है। अब चाइना इन्हें आधिकारिक तौर पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहता है, जिनके जरिए दूसरे देशों और भारत में भी सैन्य जासूसी के आरोप लगते हैं। और सोचिए, जब चाइना के पास ऐसे आधुनिक मॉडर्न सैटेलाइट सिस्टम्स हैं तो इस बात पर कैसे विश्वास किया जा सके, ये सवाल आज नेपाल में बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि चाइना ने नेपाल के पास तिब्बत में इस झील को पहले कभी देखा ही नहीं और फिर जब इसका खतरा शुरू हुआ तो इसको इसका अंदाजा ही नहीं लगा, और आखिर क्यों उसने कोई सूचना नहीं दी। यहाँ एक और बड़ी बात यह है कि चाइना और नेपाल के बीच पिछले कई सालों से जल संबंधी समझौते और डेटा शेयरिंग की पूरी व्यवस्था है, और ये व्यवस्था कहती है कि अगर ऊपरी इलाकों में कोई ग्लेशियर लेक बनती है या कोई दूसरा खतरा पैदा होता है तो उसकी जानकारी चाइना द्वारा नेपाल को बिना किसी शर्त के दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद नेपाल का ऐसा आरोप है कि उसे तिब्बत की तरफ से झील के बढ़ने या उसके अचानक फटने की कोई भी चेतावनी पहले से नहीं दी गई, और यह भी लगातार दूसरी बार हुआ है। 8 जुलाई 2025 को भी तिब्बत में ऐसी ही ग्लेशियर झील के अचानक फटने की घटना हुई थी। उसमें भी पानी और मलबे ने नेपाल और तिब्बत के बीच बने मैत्री पुल को नष्ट कर दिया था। 9 लोगों की मौत हुई थी, जिससे नेपाल में कई लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि चाइना उसके साथ संवेदनशील जानकारी साझा क्यों नहीं कर रहा है, और क्या इसके पीछे तिब्बत में चाइना द्वारा बनाए जा रहे बांध, सड़कें, सुरंगे, दूसरे जो ढांचे हैं वो भी हो सकते हैं। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हिमालय क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर वहां की भौगोलिक स्थितियों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, और जब इन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में टनल बनाई जाती है, बांध बनाकर पानी रोका जाता है या सड़कें और पोर्ट्स बनाए जाते हैं तो खतरा बढ़ता है, ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ता है क्योंकि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ऐसी निर्माण गतिविधियां ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बनी ग्लेशियर लेक को नाजुक बना देती हैं। अब ये ग्लेशियर लेक्स है, वहां का पूरा जो इकोसिस्टम है वो हिलता है, और संभव है कि नेपाल की सीमा के पास तिब्बत में भी

0: कुछ ऐसा ही हुआ हो। आपको यकीन नहीं होगा कि हिमालय के पहाड़ों में जितना निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बनाया है उसका 15% भी किसी और देश ने नहीं बनाया है। 2025 तक चाइना तिब्बत में कुल 125,000 किलोमीटर हाईवे और सड़कों का नेटवर्क बना चुका है। आप सोचिए, यह स्थिति भी तब है जब तिब्बत को दुनिया की रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जहां की ऊंचाई, ठंड, बहुत पतली हवा के कारण यहां सदियों तक आधुनिक सड़क नेटवर्क नहीं था। लेकिन अब यहां सड़कें भी हाईवे जैसी हैं। तिब्बत के इन्हीं पहाड़ों में चाइना ने 1,359 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई है और अब भी चाइना इस क्षेत्र में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे लाइन बना रहा है जो तिब्बत को चाइना के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी। अब इसी तिब्बत में कुल 8 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो अब भी ऑपरेशनल है और इसी तिब्बत में 193 हाइड्रोपावर डैम्स या प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो या तो अभी चल रहे हैं या निर्माणाधीन हैं या फिर प्रपोज्ड हैं, प्रस्तावित हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाती हूं कि इस वक्त तिब्बत क्षेत्र में चाइना कितनी तेजी से अपने जो पहाड़ हैं उनको खोद खोद कर वहां पर बड़े बड़े ढांचे बना रहा है, बांध बना रहा है और किस तरह से हाइड्रो पार्क के प्रोजेक्ट्स बना रहा है। तो सबसे पहले ये जो आप ब्लू सर्कल देख रहे हैं, ब्लू वाले जितने डॉट्स आपको दिखेंगे वो सभी हैं हाइड्रो पार्क डैम्स। तो आप देख लीजिए, ये नेपाल है यहां पर और नेपाल के जस्ट ऊपर ये तिब्बत का पूरा इलाका, चाइना आप देख ही रहे हैं, चाइना में ये तिब्बत का इलाका और तिब्बत में इस वक्त क्या कर रहा है। तो हाइड्रो पार्क डैम्स इतने हैं, ब्लू पुल और सुरंगे तो पूछिए मत, मतलब ये आप देख ही रहे हैं कितने सारे हैं डॉट्स, यहां तक है सारे इलाकों में। नदियों के पास जाहिर तौर पर ये हाइड्रो पावर डैम ज्यादा है। एरोडोम और हेलीपैड आप देखिए, लाल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब लगभग सोचिए 30-35। रेलवे भी रेड से है, ये कलर कोडिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, काला जिसके चारों तरफ है तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इसमें डिम हो गया है क्योंकि एरोड्रोम सिर्फ रेड था पर रेलवे में ब्लैक सर्कल भी है बाहर में तो थोड़ा सा मिक्स हो गया है। लेकिन ये थोड़ा सा जो लाइट ब्लू है और उस पर डार्क लाइन है ब्लैक का, वो ट्रंक रोड है। तो ये पूरे ये जो सर्कल्स हैं वो इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से तिब्बत में चाइना ने काफी निर्माण किया है, हाइड्रो पावर डैम्स हो, पुल हो, सुरंगे हो, एरोडोम हो, हेलीपैड हो, रेलवे हो और इन सब के जरिए वो पूरे इलाके में जिस तरह से अपना निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। जब चाइना तिब्बत के इन ऊंचे और मुश्किल पहाड़ों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है तब इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की ये रिपोर्ट कहती है कि हिमालय का जो क्षेत्र भारत, नेपाल और चाइना की सीमा में आता है वहां भी 47 ग्लेशियर लेक्स मौजूद हो सकते हैं और इनमें भी जानते हैं सबसे ज्यादा 25 झीलें चाइना के तिब्बत में है, 21 नेपाल में है और एक ऐसी झील इस क्षेत्र में भारत में है। और इसलिए अब बड़ा आरोप यही लग रहा है कि अगर चाइना तिब्बत में अपनी निर्माण गतिविधियों को छिपाने के लिए ऐसी झीलों का खतरा सार्वजनिक करता या इन्हें नेपाल, भूटान, भारत को नहीं बताता तो ये संकट कितना बड़ा हो जाएगा। ये बात हमने आपसे कल भी कही थी कि नेपाल में आई बाढ़ की तस्वीरें तो पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है। हमारी आज तक की टीम भी नेपाल पहुंच गई है जिसने नेपाल में हुई इस तबाही की लगातार कवरेज की है। लेकिन चाइना को लेकर अब भी सवाल बने हुए हैं क्योंकि चाइना में हुई तबाही की कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही। अब चाइना का जो सरकारी न्यूज नेटवर्क है जिसे चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क या CGTN कहा जाता है, उसने नेपाल की सीमा के पास तिब्बत से रिपोर्टिंग तो की है, यह भी दिखाया है कि तिब्बत में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया जा रहा है, लेकिन CGTN कहीं भी बाढ़ की तस्वीरें नहीं दिखाता, वो इसे मड स्लाइड कह रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि चाइना इसे झील फटने से हुई तबाही नहीं बता रहा। तो ये कह रहा है वो कि पहाड़ से जो मिट्टी और मलबा अचानक बहकर नीचे आया उससे वहां हालात बिगड़े और ये भी नेपाल के कारण हुआ है। देखिए,
1: We are now on our way to Jilin County in southwest China's Xinjiang Autonomous Region along the Nepal and China border where a mudslide has struck, caused a major casualty. And we arrived at Jakarta Airport this morning and now we are following a part of a rescue team from China Annan Group. and trying to reach the disaster area as quickly as possible. And along the way, we can see some rescue vehicles and personnel being mobilized toward the affected area. Here is still like about 500 kilometers away, so we cannot see many rescue team. But as we reach nearby, we will see full-scale the rescue team.
2: So this search and rescue team have brought search and rescue dogs, as I just mentioned, but they say some of the challenges, including, for example, mudslides. Mudslides will make it even more challenging for search and rescue dog to smell potential survivors that are trapped underneath. Because in that case of scenario, according to their...
0: अब ये देखिए कि इस प्रलय ने नेपाल को आर्थिक रूप से कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है. इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था कितने साल पीछे जा सकती है. इस पूरी घटना में नेपाल की करीब 748 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित हो गई है. यह नेपाल की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 17% है. इसी प्रलय में नेपाल के 9 ऐसे हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हुए हैं जो ऑपरेशनल थे, यानी चालू थे, जबकि 5 निर्माणाधीन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए हैं. कुल क्षमता 390 मेगावाट थी. पानी के तेज बहाव और मलबे के कारण नेपाल में 25 मेगावाट का एक सोलर प्लांट प्रभावित हुआ है. नुकसान बहुत हुआ है. यह भारत के लिहाज से भी अहम है क्योंकि गर्मियों और मानसून के वक्त नेपाल भारत को बिजली का निर्यात करता है और सर्दियों में भारत नेपाल को बिजली का निर्यात करता है. इस बाढ़ में नेपाल चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड रूट बंद हो गया है, जहां से दोनों देशों के बीच 30% का व्यापार होता था. यानी आने वाले दिनों में इससे नेपाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी. इसी बाढ़ में कम से कम 1 दर्जन पुल हों, जैसा कि आप देख रहे हैं. पुल तो जैसे टूट रहे थे खिलौनों की तरह. सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें पूरी तरह तबाह हो गई हैं. और अगर ग्लोबल टाइम्स के दावे के मुताबिक देखें तो नेपाल की सीमा पर बनी बैरियल झील भी अगले 1-2 दिनों में फट सकती है. और अगर वो फट जाती है तो स्थिति और भी भयानक हो जाएगी. ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि नेपाल पहले ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था. 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल की कुल अर्थव्यवस्था 4,48,000 करोड़ रुपए की है, जबकि चाइना के सिर्फ तिब्बत की कुल अर्थव्यवस्था इससे कुछ कम 3,67,000 करोड़ रुपए की है. यानी नेपाल के सामने इस वक्त संकट बहुत बड़ा है. और अगर वहां फिर से ऐसी कोई प्रलय आई तो नेपाल पूरी तरह टूट जाएगा. यहां हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि नेपाल की सरकार ऐसा कह रही है कि यह प्रलय इतनी भयानक थी कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर त्रिशूली नदी का जलस्तर जो है वो करीब 9 मीटर बढ़ गया. आप देख रहे हैं 9 मीटर का मतलब, जो कि आप समझ लीजिए 5 लोग अगर बैक टू बैक खड़े हों या फिर एक बिजली का पोल. 30 मिनट के अंदर 3 बास्केटबॉल के स्टैंड्स लग जाए, इतनी ऊंचाई उसकी बढ़ गई. इससे ये पता चलता है कि सामान्य बाढ़ की घटना नहीं थी, बल्कि ये शायद नेपाल और तिब्बत के इतिहास की सबसे बड़ी प्रलय की घटना थी. बड़ी बड़ी इमारतें, पुल, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सब कुछ जैसे निगल गया. जलस्तर इतना बढ़ गया था. और यहां आपको नेपाल के सांसद हर्क सांपांग राय को भी सुनना चाहिए, जो ये कह रहे हैं कि अगर चाइना समय रहते नेपाल को पर्याप्त जानकारी देता तो शायद नेपाल में इतनी बड़ी आपदा नहीं आती. सुनिए.
3: चीन चाहिँ प्रविधिले एकदम सुसज्जित भनेर हामीले त बुझेका छौँ. अब त्यहाँबाट त्यो आयो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारलाई जानकारी भयो कि भएन कि होइन, त्यो चिज हो. अब त्यो त त्यहाँ माथिबाट सुरु भएको रहेछ, जानकारी हुनु पर्थ्यो. त्यो यदि त्यसो भएको भए त्यहाँनिर भनौँ न जति क्षति भयो, अब त्यो भौतिक क्षति त अब बोके घर बोकेर लाने कुरो भएन, तर मानवीय क्षति हुन चाहिँ त्यहाँबाट बस्थ्यो होइन. पूर्व सूचना प्रणाली चाहिँ त्यसको लागि हो खासमा.
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. समय को समझना समझदारी है, समय पर समझना जिम्मेदारी.
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
6: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि यह शहर पहले कैसा रहा होगा. इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है. यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है. जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
2: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
3: एक दो एक
4: ए श्राम।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
3: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।
4: एक दो एक
5: ए श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो एक श्राम।

0: करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मैं करता हूँ ना,
2: मैं करूँगा।
3: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
1: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
3: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
1: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
3: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर। यूरेनियम समेत कई अहम समझौते। शास्त्री स्मारक पर श्रद्धांजलि की अर्पित की। संघ प्रमुख के मुस्लिम मौले बयान पर बयानबाजी। मौलाना बोले अब जमीन पर भी दिखे असर। ओवैसी ने आरएसएस पर लोकतंत्र का विरोध करने का लगाया आरोप। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाए। योगी के जेपी एनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का उठाया मामला। कहा इन लोगों ने पैसा खाया। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप की हत्या के मामले में खुलासा। ड्राइवर ने ही दो दोस्तों के साथ मिलकर मारी गोली। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा खतरा। फिर से उफान पर त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 788 पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।

0: बैग पानी आया हम लोग ऊपर ऊपर भागे थे। अच्छा। क्या हम लोग की जिंदगी हम लोग खत्म हो गया।
1: जो लोग ना अपना सामान बचाने के लिए लेने गए ना तो वो लोग चले गए, और जो लोग अपने जान बचा के भाग गए वो बच गए।
2: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा और अभी कैसा दिख रहा है।
3: लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते, लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
2: 35 मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। वहीं इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। ये हब है, ये जहाँ पर पीड़ित है और जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है।
4: तीन भांजी, एक दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
2: घर में भी भर गया है, पूरा ऊपर तक आ गया था। उनके इशारों से हम समझते हैं वो दूर है, ना वो हम तक आ सकते हैं ना हम उन तक जा सकते हैं, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि दरवाजे के ऊपर के हिस्से तक आया था वो मलबा। पूरी सड़क पर बर्बादी के निशान है, दलदल उतर आया है यहाँ की सड़क पर। जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर पड़ती हैं और उसके बाद फिर एक बार उठ खड़ा होने का जो जज्बा होता है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अथक प्रयास अभी चल रहे हैं, लोगों को ढूंढने की भी कोशिश चल रही है। लोग उठ तो खड़े हुए हैं लेकिन अभी भी उस लम्हे को, उस मौके को, उस तबाही के मंजर को भुला नहीं पा रहे हैं।
5: नेपाल, कराहता हुआ नेपाल, तबाही यहां इतने दबे पांव आई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
0: क्या हम लोग जिंदगी हम लोग खत्म हो गया
6: तो बिना जो बिना ब्रदर
7: इसमें नाम नहीं है
6: इसका पापा।
2: कितनी देर में कुल ये पूरा आ गया होगा?
0: एक मिनट
2: के अंदर
8: मेरे भाई को जैसे जैसे निकालना पड़ेगा, वो कहाँ है, कैसे है, लापता है 3 दिन से।
5: बड़े बड़े ब्रिज, ऊंची ऊंची इमारतें, नदियों के किनारे बसे घर, स्कूल, दुकान, मकान सब तिनके की तरह बह गए। पानी उतरा तो जैसे जिंदगी का रंग ही उतर गया था। जहां कल तक रौनकें थीं, वहां अब मातम है। जहां तक नजर जाती है वहां तक मिट्टी, गाद, पत्थर और जिंदगी के सामानों के बिखरे हुए निशान मिल रहे हैं। लोग मिट्टी के ढेरों में कुछ बच जाने की उम्मीदें कुरेद रहे हैं, लेकिन कहां क्या मिले न बस्तियों का पता चल पा रहा है न घरों का। ये नेपाल का उत्तरी इलाका है, धादिंग जिले का बेरैनी कभी पर्यटन की तस्वीर हुआ करता था। खुशियां, कह कहे यहाँ की पहचान हुआ करते थे, लेकिन पानी के प्रहार ने सब खत्म कर दिया। सब कुछ स्याह सफेद रह गया, सारे रंग गायब है।
2: घरों का हाल देखिए आप, ये जिस रोड पर हम खड़े हैं इस समय, ये एक पक्की सड़क है और एक अच्छी सड़क है, एक चौड़ी सड़क है, हाईवे का हिस्सा है इनके, लेकिन अभी इस पर देखिए रेत मलबा। ये घर के अंदर का हिस्सा अगर आप देखें तो वहां तक पानी पहुंच गया है, वहां तक पहुंचने के बीच में जो है वो दलदल है। घर वाले वहां पर खड़े हैं अभी किसी तरीके से, कुछ यहां पर जेसीबीज हमें दिख रही हैं जिसके साथ इसको खोदने की कोशिश हो रही है। वहां पर एक जेसीबी को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे मलबे के नीचे वो आकर दबा है, उसके आगे बाइक घुसी हुई है उसके नीचे। ये बीच का जो हिस्सा है ये बहुत ज्यादा प्रभाव का हिस्सा है। ट्रक देखिए, ट्रक का जब पानी उतरा भी है, मलबा नीचे गया भी है, तो उसका आधा चक्का अभी भी उसके नीचे है, लेकिन ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो ये ट्रक धस गया था इस मलबे में।
5: देखिए पेड़ों और तारों को, मलबे के अवशेष वहां तक दिख रहे हैं और सोचिए कैसे रहा होगा लहरों के साथ पत्थर और कीचड़ का वो प्रहार जिसने सब एक झटके में खत्म कर दिया। नेपाल की लाइफ लाइन कहे जाने वाले राजमार्ग की ये तस्वीरें देखिए, जहाँ कभी गाड़ियां सरपट दौड़ती थी वहाँ आज कई फीट ऊंची कीचड़ और लेदों की परत जमी है। बेरानी बाजार का पूरा व्यापार ठप हो चुका है, दुकानें मलबे में दबी हैं और हाईवे को खोलने के लिए सेना और प्रशासन के बुलडोजर 24 घंटे मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन तबाही का पैमाना इतना बड़ा है कि रास्ते साफ होने का नाम नहीं ले रहे।
7: किसी भी देश में जब कोई आपदा आती है वहां की सेनाएं सबसे पहले जो जमीन पर है वो उतरती हैं। यहाँ पर भी नेपाल में हम देख रहे हैं कि नेपाल के जो सुरक्षा बल है, नेपाल के सैनिक हैं, वो सब यहाँ उतर रहे हैं और मदद कर रहे हैं आम लोगों की और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरी सड़क है वो उसका एक हिस्सा और अहम हिस्सा वो खुला रहे। देखिए जेसीबी के साथ इस मलबे को किसी तरीके से यहाँ से हटा दिया जाए, एक तरफ कम से कम किया जाए ताकि सड़क यहाँ पर चल पाए। ये NH4 है जो सीधा उसी एरिया को जाता है जहाँ पर ये हादसा हुआ है। अब देखिए कि है बहुत मुश्किल, ये काम है बहुत मुश्किल काम। एक जेसीबी यहाँ पर लगी है क्योंकि पूरा एरिया जो है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड है।
5: जिनका सब चला गया उन्हें अब भी यकीन नहीं हो पा रहा कि एक मिनट पहले तक जो था वो कहाँ चला गया। अब उनके पास बस यादें हैं और लोगों को बताने के लिए सिर्फ पीड़ा से भरी कहानियाँ।
9: इस टाइम आया
0: जी, जी जी जी जी हम लोग वहाँ थे।
9: हाँ।
0: वो एक बैग पानी आया, हम लोग ऊपर भागे थे।
9: अच्छा।
0: क्या हम लोग की जिंदगी हम लोग खत्म हो गया।
9: तो पूरा आपका वो जो पूरा
0: जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी हम लोग का गैरेज था। वो भैया गैरेज था जी। वो भैया गैरेज था।
9: सब लोग, आप लोग सबका मतलब रोजगार एक तरीके से खत्म हो गया है।
0: जी जी जी जी हम लोग खत्म हो गया।
9: कितनी देर में कुल ये पूरा आ गया होगा?
0: एक मिनट के अंदर में क्या क्या हो गया जी।
9: तो अब ऐसे इस दलदल जैसे आप लोग को ऐसे करके जाना पड़ रहा है अपने घर गैराज सब में?
0: जी जी।
9: कोई भी सामान निकल पा रहा है, यूज लाइक है कि नहीं?
0: कुछ भी सामान नहीं हम लोग को जी। पूरा कमती में लमसम नहीं देने, 20-30 लाख का सामान था हम लोग का। कम सामान था, बहुत सामान था हम लोग का, सब सामान खत्म हो गया। अब हम लोग समझे कि रोड पे नहीं हम लोग आए।
9: जितने लोग रोड के अगल बगल हैं, क्योंकि नदी बगल में है
0: जी।
9: नदी ही है ना बगल में?
0: जी जी, उधर बगल में नदी है।
9: हाँ।
0: उसके पार नदी है।
9: तो जितने लोग रोड के अगल बगल नदी के बगल रह रहे हैं सबका जीवन
0: नहीं, हाँ अभी मतलब उधर उधर घर नहीं है।
9: हाँ।
0: जी उधर
9: जहाँ भी घर है।
0: हाँ, जहाँ
9: मतलब
0: घर
9: ये सब घर भी तो ऊपर तक लग रहा
0: है,
9: ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ।
0: जी जी जी।
9: ये आपका घर है
10: जी?
9: ये ऐसे आना जाना पड़ रहा है अभी आपको? ये कितनी देर के अंदर ये पूरा सैलाब आ गया था, कैसे आप लोग इसमें से बचे थे?
10: नहीं, मैं तो काठमांडू में थे, अभी शाम का आया है।
9: और बाकी लोग घर पे थे?
10: हाँ,
9: कि वो भी
10: घर पे थे। ये आने का टाइम में वो ऊपर गया है।
9: हाँ।
10: ऊपर गया।
9: अच्छा, तो अभी जो अंदर है वो आपकी?
10: मेरा वो बहन है।
9: बहन है आपकी? हाँ। तो वो वहाँ पर वैसे मिट्टी में आप लोग को पूरा अंदर जाना पड़ रहा है, बाहर आना पड़ रहा है, सामान सब
10: अंदर है,
9: अंदर
10: पूरा खराब है,
9: पूरा खराब हो गया है।
5: रोजगार फिर कब बस सकेगा पता नहीं, भविष्य का क्या होगा पता नहीं, जिंदगी कैसे चलेगी पता नहीं, ये सवाल लोगों के जहन में चल रहे हैं। लेकिन फिर भी कोशिशें जारी हैं जिंदा रहने की, जद्दोजहद जारी है हालात से लड़ने की। ऐसे में नेपाल के सुरक्षा बल भी जुटे हैं ताकि स्थितियां कुछ बेहतर हो जाए।
7: जो नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल है, आप इस समय उनको यहाँ की कीचड़, यहाँ के मलबे, यहाँ के दलदल में राहत कार्य करते हुए देख सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए नेपाल की सेना के जो जवान हैं वो देख सकते हैं, यानी कि चाहे सरहदों पर ड्यूटी रहे किसी की या फिर अपने देश की सेवा का प्रण इन्होंने लिया हो, लेकिन इस समय चाहे ये अर्धसैनिक बल के जवान हो या फिर नेपाल की सेना के सैनिक, वो सब अपने देश के इस राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं।
5: भारी बारिश और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से आए सैलाब के कारण त्रिशूली और भोटे कोशी नदियों का जलस्तर बेहद बढ़ गया। इस तबाही में 35 मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरह प्रभावित हुई है। त्रिशूली नदी में पानी मलबे के साथ पूरे आवेग से आया, आवेग भी ऐसा जिसके सामने कंक्रीट के ब्रिज भी टिक नहीं पाए।
7: 35 मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया, आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही विशाल।
5: भोटे काशी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल की त्रिशूली नदी में मिलती है जो आगे चलकर भारत में गंडक नदी के रूप में बहती है। यह पुल इसी नदी पर बना था जो पानी का तेज प्रहार नहीं झेल पाया और एक मिनट से भी कम समय में तहस नहस हो गया। ये कोई साधारण तबाही नहीं थी, ये वो तबाही थी जिसकी लाइव तस्वीरें दुनिया ने पहली बार देखी थी। ये सिर्फ एक महाविनाश नहीं था, ये था महाविनाश का चेन रिएक्शन। ये एक ऐसा प्राकृतिक डोमिनो इफेक्ट था जिसमें पहली घटना ने अगली कई घटनाओं को जन्म दे दिया, एक घटना ने दूसरे को जन्म दिया, फिर तीसरे, फिर चौथे, और इस तरह करके ये पूरा चेन रिएक्शन बन गया जिसने नेपाल को ऐसे जख्म दिए कि वो जिंदगी भर याद रखेगा।
11: जी ये डूंगे खोला है ना, त्रिशूली खोला, धोबी खोला, ते ही हम लोग का घर, घर दुकान उकान कुछ भी नहीं। हम लोग आदमी तो बहुत सुरक्षित, हम लोग इतना थे पार्क में, हमारे पुलिस है ताने रसरी तान कर निकाल के हम लोग का सुरक्षित। कितना लोग संसद बाजार को सब भाग गया, कोई नहीं था बाजार को भी, लोग सब भाग गया, हम लोग तो भागे, सब छोड़ कर भाग गए हम लोग जी, सब भाग गए। त्रिशूली खोला का तो एक भी आदमी नहीं है, त्रिशूली बाजार में एक भी आदमी नहीं बचा, हम लोग तो भागे सब सामान लेकर जी। हमको धोबी खोला है ना, वही हमको पसंद कुछ नहीं, हमको न खाने गए न बसने, कुछ भी नहीं ठिकाना हम लोग का है, हमको घर है मोतिहारी जिला से पकड़ दिया।
5: लेकिन सवाल उठता है कि ये तबाही आई कैसे, वो कौन से फैक्टर थे जो तबाही का कारण बने। लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर का ग्लेशियर करीब 1200 मीटर नीचे गिरा। ये ऊंचाई पर ग्लेशियर और पहाड़ का बड़ा लैंडस्लाइड था। ऊंचाई से बर्फ गिरी तो नीचे पहाड़ पर ही एक अस्थायी पानी की झील बन गई। इसमें बड़ी चट्टानें, छोटे पत्थर और मिट्टी साथ जुड़ गई। ये पूरा वजन बहुत तेजी से नीचे आने लगा। वजन बढ़ने के कारण पानी ने मलबे पर दबाव बढ़ाया और अचानक मलबे का बांध टूट गया। जो पानी जमा था वो एक साथ नीचे चला आया और तबाही शुरू हो गई। एक ऐसी तबाही जिसने नेपाल को आर्थिक रूप से भी तोड़ दिया। नेपाल के वित्त मंत्री ने कहा कि इस त्रासदी में नेपाल को कम से कम 4-5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2015 में आए भूकंप से ये नुकसान काफी कम है।
12: When it comes to reconstruction, I think we'll need to have a separate conversation because that's a bigger budget.
5: लेकिन तबाहियों से नेपाल का रिश्ता पुराना क्यों है? ये क्यों कभी ना खत्म होने वाला एक चक्र बन गया है? एक योजना तैयार होती है, पैसा मंजूर होता है, पुल या सड़क बनाई जाती है और इससे पहले कि उस निवेश से पूरा आर्थिक फायदा मिल पाए, नई बाढ़ या भूस्खलन या भूकंप उसे नुकसान पहुंचा देता है। फिर दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी नेपाल बार बार उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है लेकिन उस निवेश का पूरा रिटर्न हासिल नहीं कर पा रहा। एक छोटी और पहाड़ों से घिरी अर्थव्यवस्था के लिए कृषि, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट और हाइड्रो पावर पर बार बार पड़ने वाले ऐसे झटके बेहद नुकसानदेह हो सकते हैं, क्योंकि यही वो क्षेत्र हैं जिन पर नेपाल की अर्थव्यवस्था निर्भर है। 2015 में आए गोरखा भूकंप से नेपाल को 7.1 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इसमें लगभग 5.2 बिलियन डॉलर का नुकसान इमारतों, सड़कों, पुलों के तबाह होने से हुआ। करीब 1.9 बिलियन डॉलर का दूसरा आर्थिक नुकसान था। 2017 में बड़े तराई की बाढ़ में नेपाल को 584.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। भरपाई और पुनर्निर्माण के लिए 706.1 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त जरूरत बताई गई। 2024 में आई बाढ़ और भूस्खलन से अनुमानित 304.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करीब 251.06 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2025 में रसुआ में ग्लेशियल बाढ़ आई। इस घटना से व्यापार, सड़कों, हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। हजारों करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान बताया गया। और अब 2026 में रसुआ में फ्लैश फ्लड, जिसका आर्थिक नुकसान वित्त मंत्री 4 से 5 बिलियन डॉलर बता रहे हैं। नेपाल की इस त्रासदी में करीब 734 लोगों की मौत हो गई। 2498 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और सबसे बड़ा चैलेंज इन्हीं लापता लोगों को ढूंढना ही है।

0: तबाही आई तो उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आशियाने उजाड़ दिए, सपने तोड़ दिए, उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया, जिंदगी भर की कमाई पल भर में खत्म कर दी, जिंदगियों को छीन लिया और दे दिया कभी ना खत्म होने वाला दर्द, कभी ना भुलाई जाने वाली यादें, कभी ना भरने वाले जख्म। जिस नदी के किनारे देवी घाट की जिंदगी बसी थी, वही नदी इस बार अपने साथ पहाड़ का मलबा लेकर आई। घरों के अंदर कीचड़ भर गया, पुल टूट गए और लोग अपने ही घरों के मलबे में जिंदगी के बचे हुए सामान तलाशने लगे।
1: ये देवी घाट की प्रहरी चौकी हम आपको दिखा रहे हैं और आगे देवी घाट बाजार है, पूरा त्रिशूली बाजार का हाल आपने देखा। ये देवी घाट की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये भी पूरी तरीके से इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। चाहे आप छोटी सी एक चाय की दुकान को देख लें, यहां पर खड़े हुए ट्रैक्टर्स को देखकर शायद आपको वो पैमाना ज्यादा समझ में आएगा, और साथ ही वो दुकानों के शेड्स, इधर मंदिर का भी हिस्सा है जो पूरी तरीके से मिट्टी और मलबे के नीचे है।
0: देवी घाट में त्रिशूली और तदी नदियों का संगम है। इसी संगम के आसपास फ्लैश फ्लड ने बेहद भारी तबाही मचाई। देवी घाट और आसपास के इलाके रेत के मैदान में बदल गए।
1: वहीं रहना, वहीं रहो। यहां पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको पता नहीं कि पैर आपके कितने नीचे जाएंगे। मेरा पैर अभी भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। कुछ पीछे जाके कोई स्टिक में ढूंढती हूं।
0: बाढ़ ने वो तबाही मचाई कि लोगों के दो दो मंजिला मकान मलबे में दब गए। कई घरों में मिट्टी और मलबा भर गया।
2: ये यहाँ घर थियो, सब पूरा घर ही घर थियो, नहीं
3: मंदिर भी
2: मंदिर थियो, घर थियो, रोड थियो, अनि राम्रो ठाउँ थियो नि।
1: सब अच्छा था यहाँ?
2: छैन, अब अहिले केही छैन,
1: अब कुछ नहीं है यहाँ पर। कैसा लगा था पहले?
3: यहाँ पहिला तो ऐसा मंदिर है, मंदिर के भवन है,
1: ये मंदिर इसके नीचे भी आप कह रहे हैं कि कुछ कुछ है जो दब गया है।
3: दब गया था, यहाँ रोड है ऊपर से, यहाँ इधर ऊपर खोला बगता है, जैसे 100 मीटर होता है
1: थोड़ा थोड़ा दिख।
3: हाँ, खोला पर यहाँ यहाँ बड़ा बगता है, वो वहाँ पे 100 मीटर रहता है दूर। हम जैसे रोड है, ये बाजार है,
1: डोर बाजार।
3: यहाँ तो 400-500 दूर घर है,
1: 400-500
3: घर दूर है। इसमें यहाँ डेट हुआ 10 लोग पे,
1: बताया जा रहा है कि लापता है, नहीं मिल रहा है।
3: यहाँ तो घर तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। यहाँ
0: अभी भी लापता है और सबसे बड़ा चैलेंज इन्हीं लापता लोगों को ढूंढना है। बाढ़ खत्म हुई तो लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला शुरू हुआ। आज तक की टीम पहुंची नेपाल के विदूर भी, जहां लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा था। यहां रेस्क्यू किए गए लोगों और लापता लोगों की जानकारी भी साझा की जा रही थी।
1: तो ये पूरे एरिया में जितने लोग हैं, जो रसुआ के भी दिख रहे हैं हमें, यहाँ पर आगे देखिए जो वो भारत का बता रहे हैं, ये टिमरे रसुआ से लोग जो मिले हैं, सैफ्रुवेशी रसुआ, किस्तार, नोवाकोट, तो ये पूरे एरिया से जो जो मिले हैं। और इधर देखिए ये जो भारत की तरफ से ये सूची है जिसमें प्रमोद साहनी, सुदामा कुमार साह, चितरंजन, नेहा जलाम, ये सारी लिस्ट है पूरी जो भारतवासी हैं जो अभी इसमें मिल गए हैं। अभी भी कई लापता हैं, लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब आकर अपनों को ढूंढ रहे हैं कि कहीं उनका नाम हो तो जाकर रिलीफ कैंप में वो देख सकें। और हर कोई अपने घर वालों को यहाँ पर तलाशने के लिए आया है। लंबी सूची लगी है, जब भी कोई नया कुछ लोग मिलते हैं तो लास्ट में वो लिस्ट इसमें ऐड हो जाते हैं, और इसीलिए जो लोग यहाँ पर हैं वो वापस आकर यहाँ पर देखते हैं। तो वो पहले से जो लिस्ट लगी गई है, और ये जो सेकंड रो आप देख रहे हैं इसमें जो भी नया मिल रहा है उन सबको यहाँ पर लाकर उनके नाम को यहाँ पर डाला जा रहा है, जिस इलाके से वो मिले हैं उन सबको।
0: विदुर नोवाकोट जिले में आता है और इस आपदा में खास तौर पर प्रभावित इलाकों में रहा है। विदुर खुद रसुआ के ग्लेशियर कोलैप्स वाले शुरुआती इलाके से नीचे की तरफ है, इसलिए वहां भी तबाही का मंजर भयानक था। लोग अब अपनों की तलाश में यहां उम्मीद लगाए बैठे हैं।
4: पर कोई खो गया आपका?
5: हमारा दो चार लोग खो गया।
4: तो लिस्ट बार बार नहीं आ रहा है? अभी लिस्ट में आ गया नाम?
5: नाम नहीं पता, पता नहीं।
6: जहाँ को गाड़ी आया था उससे कॉन्टेक्ट भी लिए, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है।
4: दो दोस्त
6: वो गाड़ी लेकर रोस रहे थे चाइना बॉर्डर, अभी तक नहीं कॉन्टेक्ट नहीं।
4: चीचा को ढूंढ रहे हैं आप लोग? आपको लग रहा है कि निकाल के लाएगा तो यहीं पर आएगा सबसे पहले? कभी आप लोग का कांटेक्ट नहीं हो पाया?
6: नहीं हो पाया।
4: फोन लगा?
6: नहीं लगा। 3 दिन हुआ
7: अभी संपर्क नहीं है।
4: पापा नहीं मिल पा रहे हैं? कहाँ कहाँ पर से आए हैं आप लोग? यही रहते हैं? 26 तारीख के बाद नहीं मिल पाए?
8: आईडी पावर से काम करते थे ना, अभी उधर मिसिंग है 46 लोग, फंस रहे हैं अभी, रेस्क्यू हो रहा है।
4: यहाँ पर जो नेपाल आर्मी है उसका बेस है, आप यहाँ पर देखिए जो नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, और उसके साथ ही जो सिविलियन चॉपर्स हैं वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। तो उन सबको यहाँ पर दरअसल कहीं से भी अगर कोई रेस्क्यू हो पाता है, जो एक दो की संख्या में ही है, और बहुत घंटे बीत गए हैं एक भी नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही एक भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर आता है सभी लोग टकटकी लगाए यहाँ पर देखने लगते हैं कि क्या कोई आया तो नहीं, कोई पहुंचा तो नहीं, कोई नया नाम तो इस लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है। और यहाँ पर जो रिलीफ ऑपरेशन है उनके लिए भी बहुत सामग्री भी लाई जा रही है, क्योंकि ये सबसे ये हब है, ये जहाँ पर पीड़ित हैं, जहाँ पर लोग विस्थापित हुए हैं, जहाँ से और जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है।

0: राहत, बचाव और इंतजार। इंतजार जो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, लेकिन जब वो एक व्यक्ति के रूप में आपके सामने होता है तो आपको दर्द उसका समझ में आता है। संजीव जी हमारे साथ इस समय हैं, बॉस्टन से आए हैं, उनकी वाइफ यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आई थी। रसुआ जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वहां पर थी, आप कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं?
1: नहीं, तो मेरा उनसे जो लास्ट कॉन्टेक्ट हुआ था वो नेपाल का टाइम था 26 तारीख को, और यहाँ पे मॉर्निंग 8:35 AM पे, एग्जैक्टली 8:35 AM पे मेरा उनसे बात हुआ फोन पे, और वो कॉल मेरा उनसे 11 मिनट चला, 10-11 मिनट, सो ऑलमोस्ट 8:45 तक, 8:45 तक मैं उनसे कॉल में था, और उसके बाद उन्होंने बोला कि उनको कॉल आ रहा है, बाकी टीम बुला रही है, तो वो चली गई, एंड उसके शायद 2 मिनट के बाद ये हो गया, उसके बाद से कोई कॉन्टेक्ट नहीं।
0: क्या उनकी तस्वीर देख सकते हैं? क्या नाम है?
1: जीवन ज्योति।
0: जीवन ज्योति,
1: हाँ।
0: ये अकेले आई थी बॉस्टन से?
1: अकेले सोलो ट्रिप पे आई थी।
0: आज तक के जरिए वो तस्वीर दिखाकर यही कोशिश है कि उस पूरे एरिया में जितने भी लोग देख रहे हो, टीवी पर इस तस्वीर को देख रहे हो, वो अगर कोई भी जानकारी रखते हैं तो कॉल करवाएं। किसी भी तरह का अगर कोई किसी को इन्फॉर्मेशन हो, आप दिल्ली से आए हैं उनके साथ, ये तस्वीर वो दिखाकर एक ही अपील आप लोग कर रहे हैं। संजीव जी हमारे साथ इस समय हैं, बॉस्टन से आए हैं, उनकी वाइफ यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आई थी, कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं?
1: नहीं, ऑलमोस्ट 8:45 तक, 8:45 तक मैं उनसे कॉल में था, और उसके बाद उन्होंने बोला कि उनको कॉल आ रहा है, बाकी टीम बुला रही है, तो वो चली गई, एंड उसके शायद 2 मिनट के बाद ये हो गया, उसके बाद से कोई कॉन्टेक्ट नहीं।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
3: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
4: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।

0: आगे आगे,
1: अरे उधर
0: उधर किधर,
1: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: In association with
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

एसईओ समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर। संग्रामों के मुस्लिम वाले बैन पर बयानबाजी तेज। मौलाना बोले अब जमीन पर दिखे असर। ओवैसी ने आरएसएस पर लोकतंत्र का विरोध करने का आरोप लगाया। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के जेपीएनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी की मूर्ति का विषय उठाया। कहा इन लोगों ने पैसा खाया। लखनऊ में हिंदुवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप की हत्या के मामले में खुलासा। ड्राइवर ने ही दो दोस्तों के साथ मिलकर मारी गोली। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा। फिर से उफान पर त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।

0: ब्रेक पानी आया हम लोग ऊपर भागे थे।
1: अच्छा।
0: क्या हम लोग की जिंदगी हम लोग खत्म हो गया।
2: जो लोग ना अपना सामान बचाने के लिए लेने गए ना तो वो लोग चले गए, और जो लोग अपने जान बचा के भाग गए वो बच गए।
3: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा और अभी कैसा दिख रहा है।
4: लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
3: 35 मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं।
5: इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है।
3: वहीं रो इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। ये हब है, ये जहाँ पर पीड़ित हैं और जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है।
6: तीन भांजी, एक दीदी और एक नतनी मिसिंग है।

0: तो मैंने देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया। तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे है या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए। तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्टनर, पर वे उधर चले गए।
1: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा होता वो दिख रहा था?
0: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो इसने के आते ना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई हाई हाई करके।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो ऐसा चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
1: सबसे जरूरी था भागना,
0: वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
1: देखा सामने,
0: हाँ नहीं ऐसे करके वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
1: आपने बचा लिया। हाँ,
2: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही हैं। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही तजुर्बा ऐसा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल गई।
3: खुला हुआ है ना जो हल्का इधर हुआ है, जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
1: अच्छा, अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
3: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
1: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
3: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
1: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था। ये सब घर यहाँ पे तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
3: हाँ जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, वो भी मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे एक सिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था, बहुत अच्छा भी था। वो भी कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे, ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं।
1: किसी का काम बचा ना घर बचा,
3: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा, बस आदमी बच गए ना, वही हम लोग के लिए बहुत काफी। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए हैं, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए ना वही काफी है।
2: ऋषिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ भी ऐसे कई परिवार हैं जो अपने मोहल्ले में अपनों को तलाश कर रहे हैं।
4: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी, एक दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
1: कहाँ रह रहे थे
4: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
1: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे, तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
4: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है।
1: हाँ।
4: और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
1: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
4: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
1: कितने साल की है
4: ये बच्ची? दो साल की है।
1: दो साल की
4: जी। ये दीदी हुई। हाँ। ये भांजी है, ये भी भांजी है।
1: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
4: नहीं मिल पा रहे हैं।
1: आप हर जगह जाके ढूंढ
4: रहे हैं?
2: चौपालों से लेकर चौराहों तक और अस्पतालों से लेकर स्कूलों तक, नेपाल के नुआकोट एक विशाल शरणार्थी शिविर में बदल गया है। यहाँ दुनिया के लोग ठहरने आते थे, अब वहाँ कुछ बचा नहीं है सिवाय कोहराम के। तबाही के बाद अब यहाँ जीवित सभ्यता नहीं, सभ्यता का अवशेष बाकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
1: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी है वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
2: पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पहाड़ टूट रहे थे, धरती हिल रही थी। बच्चे स्कूल में थे, युवा काम पर निकले थे, टूरिस्ट सेल्फी ले रहे थे, और अचानक से पानी का प्रहार होता है। कुछ को भागने का मौका मिल गया वो बच गए, जो भाग नहीं पाए वो मिट्टी में दफन हो गए। इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
5: टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का, 15-20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल के सब खाना खा के यही रास्ते हो गए।
1: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?

0: कैसा डरावना था बहुत, क्या?
1: बहुत बहुत बहुत एकदम डरावना था वो बोले बहुत।
0: नुकसान कितना हो गया आपको?
1: नुकसान था उधर वो 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना कितना, आप सरकार ने उसको
0: जान किसी के नहीं गई,
1: सरकार नहीं
0: जान किसी की नहीं गई,
1: नहीं गए, नहीं गए, नहीं जान जान किसी की नहीं गई। 4-5 मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शटर लगाने के भी मौका न मिला।
0: यही रास्ता था,
1: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ 5 आदमी थे और मेरा बेटा उधर काम करता थे, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
2: कुछ ही लोग नजर आते हैं अब इस शहर में, पता नहीं कहां चले गए हजारों लोग। मलबों को देखिए तो जवाब का अंदाजा भी होता है और डर भी लगता है। यहां रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
0: क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
3: बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब यहां पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है, खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
0: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
3: डेवलपमेंट विकास बैंक,
0: हाँ, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
3: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है, थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
0: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
3: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
0: क्या परिवर्तन हुआ है?
3: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से। ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
0: ये खेत था,
3: खेत था इसके पछाड़ी।
0: अच्छा,
3: इस साइड में पूरे घर था, यहाँ पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
0: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
3: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले,
0: ये बाउंड्री था जो गिर गया,
3: विकास बैंक हुआ
0: और उसके उस तरफ एक जेल,
3: जेल है जेल।
2: ये केवल ईंट पत्थरों से बने घर का खत्म हो जाना नहीं है, ये खत्म हो जाना है उन धड़कनों का जिनमें आबाद थी लोगों की खुशियां। इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
0: का नीचे
4: ऊपर ऊपर
0: ऊपर
4: छत में है,
0: छत में फंसा हुआ है कुत्ता मुर्गा,
4: ये 40-50 है,
0: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है,
4: दो आया और उधर है।
0: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं, ये कुत्ता भी ऊपर से है,
4: निकाला अभी
0: दो था,
4: एक किधर गया मालूम नहीं, एक
0: एकदम ऊपर बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा,
4: खाना नहीं मिला।
0: यही जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका क्या नाम है इसका?
4: स्वीटी।
0: स्वीटी नाम है? स्वीटी आ गई तुम वापस?
5: उसका कान नहीं सुनता,
4: खराब हुआ।
2: कुछ भी साबुत नहीं बचा है, कुछ भी नहीं, एक भी घर ऐसा नहीं जिसके सारे कोने दुरुस्त हों। किसी की दीवार टूटी है, किसी की छत, किसी की सीढ़ियां, किसी का बरामदा और सबका मन, जिसे जुड़ने में पता नहीं कितने बरस गुजर जाएंगे। सबका अपना अपना दर्द है, हर चेहरा अपने आप में कहानी है।
0: नेपाल की तबाही के जरिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो किसी बड़े, किसी विनाशकारी खतरे की आहट के रूप में देखे जाने चाहिए। ये सवाल उठाने की वजह है, वजह ये कि पिछले 15 सालों में ऐसी प्रलयंकारी ये छठी त्रासदी है।

0: 축제!
1: नेपाल की त्रासदी ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया है कि क्या हिमालय के ग्लेशियर बड़े और महाविनाशकारी खतरे का अलार्म बजा रहे हैं। ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 15 वर्षों में नेपाल की तबाही ऐसी छठी घटना है। ग्लेशियर में ग्लेशियर टूटने के कारण केदारनाथ में भारी तबाही हुई, हजारों लोग मारे गए। 2016 में भोटेकोशी तिब्बत नेपाल सीमा पर झील का प्राकृतिक बांध टूटने पर आए सैलाब में सैकड़ों लोग बह गए। 2021 में नेपाल के सिंधु पालचोक में बारिश और ग्लेशियर पिघलने के कारण मेल मची नदी में आई बाढ़ में सैकड़ों घर और कई इंसान बह गए। 2021 में ही उत्तराखंड के चमोली में बर्फ का बड़ा ग्लेशियर टूटकर झील में गिरा, जिससे नदियों में सैलाब आया और 200 से ज्यादा लोग मारे गए। 2023 में सिक्किम की दक्षिण लोनक ग्लेशियर झील का प्राकृतिक बांध टूट गया, तब सुनामी जैसी ऊंची लहरें देखी गईं और सैलाब ने जमकर तबाही मचाई। और 2026 में अब नेपाल की ये वर्तमान तबाही है। सवाल उठ रहा है कि क्या हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर टाइम बम बनते जा रहे हैं?
2: दिस इज वार्निंग कॉल फॉर इंडिया बिकॉज़ वी हैव एक्सपीरियंस द सिमिलर थिंग्स इन उत्तराखंड एंड इन सिक्किम आल्सो इन रिसेंट पास्ट।
1: देहरादून स्थित बाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय रीजन में 221 ग्लेशियर झीलों की पहचान की गई है, जिनके फटने पर अचानक बाढ़ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा बन सकता है। रिसर्च में कोसी, यारलुंग जांगबो, मानस और ऊपरी सिंधु नदी घाटियों को सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में रखा गया है। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और सिक्किम की कई नदी घाटियां संवेदनशील जोन में हैं। बाढ़ आई तो इसकी चपेट में 6 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 39 जिलों पर असर पड़ सकता है।
3: हिमालय की बात करें तो हिमालय में ऑलमोस्ट जो है सभी रीजन जो है वल्नरेबल है और खतरनाक है। ग्लेशियर रिट्रीट होने की वजह से जो है आगे जो वैकेट एरिया है, उस वैकेट एरिया में लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है जो हाईली या तो हाईली सैचुरेटेड है या फिर ड्राई है, उसके जो है हल्के से भी रेनफॉल होने से उस रीजन में एक बड़ा डिजास्टर का खतरा हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने जो है 2013 में केदारनाथ, थराली और तमोक में भी देखे हैं।
1: उत्तराखंड भी संकट के इस दायरे से बाहर नहीं है। वहाँ खतरा सिर्फ ग्लेशियर झीलों से नहीं बल्कि खड़ी ढलानों पर मौजूद हैंगिंग ग्लेशियर्स से भी है। अलकनंदा बेसिन में 221 हैंगिंग ग्लेशियर्स की पहचान हुई है, जो आने वाले समय में बद्रीनाथ माणा सहित चमोली के निचले क्षेत्रों में तबाही ला सकते हैं।
4: अर्ली वार्निंग सिस्टम करके सीबीआरआई ने एक अवलांच अर्ली वार्निंग मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है, जो उत्तराखंड में 2 जगह पे इंस्टॉल किए हैं, डूंडी और एक वसुंधरा ताल में। तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक वो आज टेस्ट कर रहे हैं, अगले 6 से 1 साल के बाद में वी आर प्लानिंग टू हैंड इट ओवर टू स्टेट गवर्नमेंट, जो SDMA उसको ऑपरेट कर सकता है। ये जो जो रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल से जो ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, जो बर्फ का स्ट्रक्चर है, ये सब देर आर सो मेनी पैरामीटर्स। सो वो सब देखने के बाद उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, कौन से टाइम पे ट्रिगर हो रहा है, उससे पता चलेगा।
1: रिसर्च के अनुसार हिमालय में अभी 8,357 से 9,280 ग्लेशियल झीलें हैं। इनमें 1990 के बाद 1,052 नई झीलें बनी हैं। ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं, ऊंचाई वाले इलाकों में पानी जमा होने की नई जगहें बन रही हैं। पुरानी झीलों का आकार भी बढ़ रहा है। इनके क्षेत्रफल में 17%, 20% और 76% तक बढ़ोतरी हुई है। सबसे तेज बढ़ोतरी 2010 से 2020 के बीच देखी गई। 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में झीलों के क्षेत्रफल में वृद्धि सबसे ज्यादा रही। जम्मू कश्मीर में चिनाब और झेलम, हिमाचल प्रदेश में चिनाब और व्यास तथा सिक्किम में तीस्ता नदी घाटी को विशेष चिंता वाले क्षेत्र माना गया है। यहाँ खतरा सिर्फ झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ तक सीमित नहीं है, संभावित बाढ़ के रास्ते में सड़कें, पुल, आबादी और जल विद्युत परियोजनाओं पर भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि अचानक आने वाला पानी सिर्फ नदी के बहाव को नहीं बढ़ाएगा बल्कि रास्ते में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
0: कि जितने भी ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इतने भी मेजर प्रोजेक्ट बॉर्डर एरिया पे हैं, इनके अपस्ट्रीम और इवन सोर्स एरिया की लगातार मॉनिटरिंग के उपरांत अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट अगर हमारे पास आधे घंटे का भी समय होता है तो कम से कम जान माल तो बचाया जा सकता है।
1: नेपाल की त्रासदी लगातार इस खतरे से अवगत करा रही है। जरूरत संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों की निगरानी की है। इसके आधार पर बचाव की तैयारियों को मजबूत करने की जरूरत है। सैटेलाइट तस्वीरों के साथ जमीन पर लगे रेडार कैमरास बर्फ के अंदर होने वाली हलचल की निगरानी

0: रहते मिले तो सड़क बंद करने और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे जान माल का नुकसान कम तो किया ही जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
1: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
0: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
2: 19 साल के छात्र साहिल रजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
0: हर बात देश के सामने।
3: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
0: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती है सेफ्टी के कारण।
2: सियासत में एक नई महाभारत छिड़ गई है।
1: हिंसा से बचने के लिए 50% महिला।
2: हाल ही में महिलाओं के साथ कार्यक्रम में स्मैश द पेट्रियार्की के ऐलान के साथ राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर हमला बोला था
1: कि एक माइंडसेट है। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट।
2: स्मैश द पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता को कुचलना वो विचार है जो दावा करता है कि महिलाओं को समाज में दबाया गया, उन्हें अवसर नहीं मिले। इसके पीछे समाज की दकियारूसी सोच जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बेटियों को बेटों के बराबर मौका और सम्मान देने की बात कह चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि स्मैश द पेट्रियार्की कहकर राहुल हिंदू धर्म को टारगेट करते

0: हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी का पुराना वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा था, मनुस्मृति और हिंदू महिलाओं के संदर्भ में राहुल गांधी पितृसत्ता को ध्वस्त करने की बात करते हैं, लेकिन जब बात हिजाब और अबाया की आती है तो वही चुनाव की स्वतंत्रता बन जाता है।
1: सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार
2: देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है।
0: बीजेपी ने इंस्टाग्राम पोस्टर में भी राहुल गांधी पर हमला बोला था। राहुल के स्मैश द पेट्रियार्की के जवाब में पोस्टर में लिखा है, भारत माता की जय शुरू करते हैं। इसी पोस्ट के दूसरे पोस्टर्स में शाहबानो केस, 3 तलाक, 33% महिला आरक्षण और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में महिलाओं की भागीदारी नहीं होने को लेकर सीधा प्रहार है। इसी महीने राहुल के मंच पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर फूहट टिप्पणी पर भी बीजेपी ने उन्हें घेरा था।
3: 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर यह बयान दिया और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे एक मित्र देश इटली की।
0: मनुस्मृति के विरोध के नाम पर सियासत का नया हंगामा ऐसे समय में शुरू हुआ है जब एक एक कर राज्यों के चुनावों में महिला वोटरों को लुभाने की स्कीम्स के बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।

0: एसईओ समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर। संघ प्रमुख के मुस्लिम वाले बैन पर बयानबाजी तेज। मौलाना बोले अब जमीन पर भी दिखे असर। ओवैसी ने आरएसएस पर लोकतंत्र का विरोध करने का लगाया आरोप। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के जेपी एनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का उठाया मुद्दा। कहा इन लोगों ने पैसा खाया। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप की हत्या के मामले में खुलासा। ड्राइवर ने ही दो दोस्तों के साथ मिलकर मारी थी गोली। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। और नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा। फिर उफान पर त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक बहुत बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई है और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुद्धिकरण को जातिगत रंग देने के आरोप में हल्द्वानी कोतवाली में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया गया। राहुल गांधी पर एससी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर आपको देते हैं। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया था। मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड हल्द्वानी गए थे और उनका जो कार्यक्रम था 8 अगस्त को, उसके बाद 9 तारीख को वहां एक शुद्धिकरण हुआ कथित। उसके बाद से राहुल गांधी ने लगभग 20 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जातिगत आधार पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भेदभाव और भी बहुत सारी बातें उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। लेकिन हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आरोप तो राहुल गांधी ने लगाया था, अब उन पर ही आरोप लग रहे हैं। किसने एफआईआर करवाई है और किन धाराओं में एफआईआर हुई है?
1: देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के से राहुल गांधी ने बोला कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जिस तरीके का भेदभाव हुआ और शुद्धिकरण किया गया, उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और बीएनएस की जो धारा 196 और 299 है उसके तहत दर्ज हुआ है मामला। और एससी एसटी एक्ट 89 की धारा 3(1) में अनुसूचित जाति के युवक है अमित कुमार की शिकायत पर ये मामला दर्ज हुआ है एफआईआर पूरा। और उनका मानना है कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। राहुल गांधी ने शुद्धिकरण यज्ञ को बताया था दलित विरोधी। 8 अगस्त को हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद एक हिंदूवादी संगठन ने किया था शुद्धिकरण क्रिया। रामलीला मैदान में फैलाई गई गंदगी और यही लगे मुस्लिम संप्रदाय के नारों के विरोध में हुआ था शुद्धिकरण का। कांग्रेस से खड़गे ने दलित होने से जोड़कर स्थिति राजनीति, इसको लेकर जो है पूरा मामला जो है राहुल गांधी में दर्ज हुआ है। जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया था और ये मामला पूरा अमित कुमार है, उन्होंने दर्ज कराया है हल्द्वानी के अंदर। और धारा बीएनएस की जो धारा 299
0: है उसके तहत पूरा मामला दर्ज हुआ। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस जानकारी के लिए। तो अमित कुमार जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, उन्होंने खुद कहा है कि मैं खुद वहां मौजूद था और मैं खुद वाल्मीकि समाज से आता हूं और भावनाएं हमारी आहत हुई हैं। ऐसे में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। और अब आगे देखिए क्राइम कहानियां शम्स ताहिर खान के साथ।
2: नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। 29 मई 2022 ये वो तारीख थी जब पंजाब के मशहूर सिंगर, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का उन्हीं के गांव मूसेवाला में कत्ल कर दिया गया था। वो अपने घर से निकले, कुछ लोग पहले से ही रेकी कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, वो अपनी गाड़ियों में थे और सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी जैसी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहाँ पे गाड़ी की स्पीड स्लो, पहले से घात लगाए बैठे शूटरों ने अचानक अंधाधुंध गोलियां चलाई और सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। बहुत सारी ऐसी कहानियां आपको सिद्धू मूसेवाला के उस शूट आउट पर सुना चुका हूँ। 2022 के बाद 4 साल बीत गए। 4 साल के बाद एक तरह से मूसेवाला गांव से लगभग 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के शामली में सिद्धू मूसेवाला पार्ट टू हुआ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले की मौत के बाद लॉरेंस गैंग से जुड़े गोल्डी बरार ने यह जिम्मेदारी ली थी कि उन्हीं लोगों ने सिद्धू मूसेवाले को मारा है। और वजह क्या बताई थी? बहुत सारी वजह थी लेकिन उसमें एक खास वजह यह थी कि मूसेवाला ने एक गाना गाया था बम्बिहा बोले। अब बम्बिहा एक गैंग जो बम्बिहा के नाम पर था और यह गैंग चला करता था। इस गैंग की दुश्मनी लॉरेंस गैंग से थी, तो बम्बिया के फेवर में गाना गाने की वजह से लॉरेंस और गोल्डी बरार को यह लगा कि सिद्धू मूसेवाला उसके दुश्मन गैंग के साथ है। और इसे एक गाना बम्बिया बोले ने कायदे से बुनियाद रखी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की, क्योंकि बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाले गए और बताया गया। हालांकि ये भी था कि सिद्धू मूसेवाले ने लॉरेंस गैंग के लिए गाना गाने से मना कर दिया था उनकी तारीफ में, लेकिन उन्हें ज्यादा बुरा ये लगा कि उनके एंटी गैंग बम्बिया ग्रुप के लिए मूसेवाला ने गाना गाया और फिर मूसेवाले का कत्ल हो गया। अब मैंने पार्ट टू क्यों कहा, जिस हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की आज कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, इसकी बुनियाद बहुत पहले पड़ी थी। 24 सितंबर 2021 दिल्ली में रोनी कोर्ट, रोनी की अदालत, दोपहर के करीब 2 बजे थे। कोर्ट में रूम नंबर 207, यहां पर एक गैंगस्टर की पेशी थी और ये गैंगस्टर कोई और नहीं जितेंद्र गोगी था, दिल्ली का एक बड़ा गैंगस्टर जितेंद्र गोगी, गोगी गैंग के नाम से भी बदनाम और कुख्यात, बहुत सारे इसमें गैंगस्टर जुड़े हुए थे और वो उनका सरगना था जितेंद्र गोगी। एक केस के सिलसिले में वो गिरफ्तार हुआ और उसको तिहाड़ जेल में रखा गया। उसी केस के सिलसिले में 24 सितंबर 2021 को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में उसे पेश किया गया। कोर्ट पहुंचने के बाद सुनवाई का वक्त आ गया था, लंच के फौरन बाद जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे, रूम नंबर 207 में यह सुनवाई होनी थी। जितेंद्र गोगी को कोर्ट के अंदर ले जाया गया, अंदर कोर्ट में तमाम वकील बैठे हुए थे, गोगी को पुलिस वाली अपनी कस्टडी में पुलिस वाले लेकर आए थे, वो सब दरवाजे के पास थे, कुछ पीछे खड़े थे कोर्ट रूम में। और इससे पहले कि कार्यवाही शुरू होती, अचानक उसी कोर्ट रूम में वकील के भेस में वकील के कपड़े पहने दो लोग खड़े होते हैं, अचानक अपनी जेब से पिस्टल निकालते हैं, गोगी का निशाना लेते हैं और गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। गोगी की कोर्ट रूम में ही मौत हो जाती है, वहां हड़कंप मच जाता है। जब ये गोली चली और गोली खाने के बाद गोगी गिरा, जज साहब के बिल्कुल करीब था और जज साहब उस कोर्ट रूम में सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। बाद में गोगी को गोली मारने वाले दोनों शूटर जो वकील के भेस में आए थे, दिल्ली पुलिस के लोगों ने जवाबी गोलीबारी में उन दोनों को भी मार डाला। तो इस तरह कोर्ट रूम में 3 मर्द कत्ल हुआ उस दिन, लेकिन गोगी मारा गया। अब आप कहेंगे कि अंकित बालियान का इस गोगी मर्डर केस से क्या लेना देना, और मैं ये क्यों सुना रहा हूं 2021 की कहानी, शायद मैं पहले सुना चुका हूं। तो 2021 24 सितंबर की यह कहानी गोगी का दिल्ली के रोनी कोर्ट में शूट आउट और मर्डर इसलिए बता रहा हूं, 27 अगस्त दिल्ली के करीब शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान का जो कत्ल हुआ, इसी कोर्ट रूम के शूट आउट से उसका एक कनेक्शन है। गोगी के कत्ल के करीब 15 महीने बाद 2021 24 सितंबर में कोर्ट रूम के अंदर गोगी का कत्ल हुआ, उसके बाद 15 जनवरी 2023 एक गाना आता है और वो गाना काफी सुपरहिट होता है, 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं उसके यूट्यूब पर। और ये वो गाना था जिसने अचानक अंकित बालियान को एक हरियाणवी सिंगर के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया। ये पहला सुपरहिट गाना था अंकित बालियान का और इस गाने की वजह से अंकित बालियान को शोहरत मिली, लोग उसे जानने लगे। और इस गाने के बोल क्या थे, जो गाना हिट हुआ उस गाने के बोल थे, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज के भी आएंगे पसीने। ये गाना था, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज के भी आएंगे पसीने। अब ये गाना आया 15 जनवरी 2023 को, अंकित बालियान का कत्ल होता है 26 अगस्त 2026 को। तो यानी के लगभग 23 के बाद अगर आप देखें तो 2.5 साल के आसपास हो गए। फिर उस गाने के लिए अब क्यों, और ये गाना ही क्यों मौत की वजह है? तो वजह यह है कि इस गाने में जो बोल हैं कि भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज को भी आएंगे पसीने, ये दोनों चीजें एक रियल स्टोरी थी। रियल स्टोरी ये कि जब जितेंद्र गोगी यानी गोगी गैंग के सरगना को रोहिणी की कोर्ट में गोली मारी गई, तो वो कोर्ट के अंदर मारी गई थी और जज साहब सामने बैठे थे, जज को पसीने आ गए थे। मीडिया में खबर है ये, क्योंकि सामने गोली चल रही है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंसान डरेगा, जज भी इंसान होते हैं। और उसी को उठाकर एक गाना, एक बोल बना दिया अंकित बालियान ने। अब ये इत्तफाक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि गोगी से इसको आप जोड़ें, लेकिन कुछ गैंगस्टर ऐसे जिनको लगा कि ये गोगी का मजाक उड़ा रहा है, और ये पूरा गाना अंकित बालियान ने गोगी के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट के ऊपर लिखा है कि कोर्ट में गोली मारेंगे और जज को पसीने आएंगे, और ये हो चुका था 2021 में। तो बस इस बात पर एक गैंग अंकित बालियान का दुश्मन बन गया। लेकिन यहां सवाल है कि 2.5 साल बाद ही ये गाना क्यों याद आया, उस वक्त क्यों नहीं, अब वो तो अभी जांच की बात है। लेकिन खैर, अब 26 अगस्त को अंकित बालियान की मौत होती है। पहले मौत की कहानी, फिर दावे की कहानी। अनिल बालियान शामली में रहा करते, शामली के पास एक गांव है, उसी गांव में, और उसी शामली में एक जिम है, जिस जिम में वो पिछले एक साल से जा रहे थे। 26 अगस्त की शाम करीब 4 बजे अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में वो जिम के बाहर पहुंचते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, जिम का बैग उनके हाथ में है। इसके बाद वो जिम में दाखिल होते हैं। जब जिम में दाखिल होते हैं तब 4:15 से 4:30 बजे का वक्त हुआ था। अंकित बालियान इस बात से बेखबर थे कि जब वो जिम के पास आए, गाड़ी रोकी, जिम में गए, 4 लड़के 2 मोटरसाइकिल पर सवार उनका इंतजार कर रहे थे। उन चारों का इरादा जिम जाने से पहले ही अंकित बालियान को मारने का था, लेकिन शायद मौका नहीं मिला, और जब तक वो मार पाते अंकित जिम के अंदर दाखिल हो गए। अब उन्होंने जिम के करीबी एक दुकान के बाहर अपनी दोनों मोटरसाइकिल पार्क कर दी, और अब इंतजार करने लगे कि अंकित बाहर आए तब गोली मारे। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक वो चारों शूटर हथियारों से लैस बीच सड़क पर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, बाइक पार्क। इसके बाद 6 बजे के बाद अंकित बालियान जिम से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद जैसे ही अपने स्कॉर्पियो के करीब पहुंचते हैं, दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक वो चारों एक साथ टूट पड़ते हैं, चारों तरफ से घेर कर अंकित बालियान पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अंकित बालियान अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठकर खुद को सुरक्षित बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता यह कि गाड़ी के अंदर जब वो बैठते हैं दरवाजा लॉक नहीं होता। एक शूटर दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोलकर गोली मारता है, और इसके बाद अगले कई मिनट तक चारों शूटर उस गाड़ी और अंकित बालियान का निशाना लेकर गोली चलाते रहते हैं। फिर चारों शूटर को जब लग जाता है कि अब बचने की उम्मीद नहीं है, वो वापस आते हैं, दुकान के बाहर खड़े अपने दोनों बाइक को उठाते हैं और निकल देते हैं। कमाल ये कि इन चारों शूटर ने अपना चेहरा छुपाने की भी कोशिश नहीं की। चाहते तो आराम से हेलमेट से अपना चेहरा छुपा सकते थे, लेकिन नहीं। इत्तफाक से वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में इन चारों की जो शक्ल है वो कैद हो गई मोटरसाइकिल पर जाते हुए इंसिडेंट के बाद, और ये है वो चार शूटर जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अंकित बालियान को गोली मारने के बाद ये चारों तसल्ली से बिना हेलमेट के निकल गए वहां से। इस शूटआउट को अपनी आंखों से देखा बहुत लोगों ने होगा। 3 ऐसे विटनेस मिले जिन्होंने पूरी कहानी सुनाई। मैं चाहता हूँ उन तीनों विटनेस ने क्या देखा पहले आपको सुनाता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ।
3: देखा जी, पहले तो हमें लगा बुलेट की आवाज है पटाखों की, क्योंकि आजकल क्या है यहाँ एरिया जो है पटाखों क्या फेमस है, बुलेट के या बाइकों में लम्डे ला रहे पटाखे मारते रहते हैं। हमें तो वो लगा 5 मिनट, तो 5 मिनट बाद जब यहाँ से बैठे हुए देखा कि गोली चल रही है, जब हमें जैसे चल रही हमने एकदम शटर गिराया अपना, खिड़की खोल ली थी उनने, खाली खिड़की खोली थी जब ही गोलियां चल रही उस पर।
4: कितने राउंड गोलियां चली है?
3: कम से कम 20 राउंड गोलियां चली जी पूरी।
4: आपके आवाज आई?
3: हाँ जी, आवाज भी आई, देखी भी, लाइव देखी बिल्कुल।
4: अच्छा, ये भी बताया कि आपसे उन्होंने बदमाशों ने शटर बंद करवा लिया?
3: हाँ जी, शटर भी बंद करवाया हमारे से, जब भी तो बाइक ठाक ले गए, फिर उनका यहाँ थोड़ा सा सामान रह गया था वो, फिर हमने पुलिस वालों को सोपा
5: कि हम यहाँ पे खड़े हुए थे, तो उधर से मतलब फायरिंग की आवाज़ आई, चार पाँच पाँच छः फायरिंग लगातार एक साथ हुई। तो हमें लगा कि पहले तो ऐसे लगा कि कोई बुलेट से पटाखे मार रहा, फिर जैसे जाके देखा यहीं से देखा बाहर से तो दिखा कि एक बंदा पड़ा हुआ है गाड़ी की साइड में और चार लोग खड़े हुए हैं, उधर हाथों में सबके कट्टे थे, पिस्टल वगैरह थी। और मतलब पहले उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद वो लड़का जो नीचे गिर गया, फिर उसमें नीचे गिरे गिरे में उन्होंने गोलियां बजाई। फिर बाद में मतलब दहशत इधर इतनी फैल गई कि सब लोग इधर उधर भागने लगे। अब फिर मतलब उन्होंने कट्टा ऐसे लहराया, सबको डराने की कोशिश की कि भाई कोई बताएगा नहीं, अब ऐसे करके उन्होंने कोशिश की। तो हमने भी अपना सेटर डाल दिया, तो बस यही था। फिर एक बाद में भी उन्होंने गोलियां चलाई एक दो, तो 5 से 10 मिनट तो कम से कम इधर वो रहे ही हैं। वो जिम से निकला, जैसे कि अपनी गाड़ी की तरफ चला तो तुरंत गोलियां चलनी स्टार्ट हुई। उसने भागने की कोशिश की, अब इधर से भागा गाड़ी के पीछे तो उधर से बंदे आ गए, इधर से गोलियां चलनी स्टार्ट हुई, तो वो भाग नहीं पाया, वो वहीं गिर गया।
6: वो
5: वहीं गाड़ी थी, वो दूसरी तरफ नाली थी, तो वहीं बीच में फंस गया, वहीं पर गोली लगी एक दो तो गिर गया, फिर उसमें गिरे गिरे में गोली बजाई।
2: तो आपने इन चश्मदीदों को सुना। अब तब तक कुछ लोग उठाकर अंकित वालियान को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वहां पहले ही बता देते हैं कि इनकी मौत तो पहले हो चुकी है, यानी जब गोली मारी गई मौके पर ही मौत हो चुकी थी। 5 गोलियां अंकित बालियान को लगी थी। पुलिस ने मौके से सड़क से कुल 18 खोखे कलेक्ट किए, समेटे। 18 खोखे का मतलब था कि 18 राउंड गोलियां चली, 18 खोखे गिनकर पुलिस ने बताया। बाकी की गोलियां गाड़ी में लगी स्कॉर्पियो में। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर वालों को सौंप दिया गया। अब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन इससे पहले कि यूपी पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती, 26 तारीख की शाम को ही अंकित बालियान की मौत के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है, और उस पोस्ट में यह जिम्मेदारी ली जाती है कि अंकित बालियान को किसने मारा है। यह है वो सोशल मीडिया का पोस्ट। इस पोस्ट में जो लिखा है मैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूं। सभी भाइयों को राम राम। ये जो आज अंकित बालियान का शामली में मर्डर हुआ है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मैं भोलू शाहपुरिया ब्रैकेट में सोनीपत लेता हूं। ये सोनीपत का रहने वाला है। ये हमारे दुश्मनों का साथ देता था, हमारे गोगी भाई के साथ हुई घटना पे इसने गाना बनाया था, और हमारे दुश्मनों का आपराधिक कामों में साथ देता था। इसका अंजाम इसको मिल गया, और जो भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा उन सबका यही हाल होगा। ये तो अभी शुरुआत है, सबका नंबर आएगा। वेट एंड वॉच, गोगी भाई, फज्जो भाई, गोगी ग्रुप। ये है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट जिसमें ये क्लेम किया गया। इस पोस्ट के जरिए जो जिम्मेदारी ली गई, जिसमें एक लाइन है कि हमारे गोगी भाई के साथ हुई घटना पर इसने गाना बनाया था, ये उसी गाने का जिक्र है जो जनवरी 2023 में अंकित बालियान ने गाया, जिसके बोल खुद लिखे, और जिस गाने की वजह से अंकित बालियान को एक मकबूलियत मिली, मशहूर हुआ, और यही गाना शायद उसकी मौत की वजह बनी, क्योंकि इस पोस्ट के हिसाब से। अब जैसे ही ये पोस्ट आया, यूपी पुलिस की फौरन कई टीमें बनाई गई, यूपीएसटीएफ को इसमें शामिल किया गया। अब चूंकि शामली जहां पर है, जहां ये गोली मारी गई, वहां से हरियाणा का बॉर्डर मुश्किल से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है, और चारों जिस तरीके से बिना नंबर प्लेट के, बिना हेलमेट के चेहरा दिखाते हुए आए, और फिर ये क्लेम किया सोशल मीडिया पर, इससे पुलिस को लगा कि इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं लॉरेंस या गोल्डी ब्लार गैंग से। गोगी ग्रुप वैसे भी माना जाता है लॉरेंस या फिर गोल्डी ब्लार के करीबी होने की वजह से। तो जैसे ही ये सब हुआ, एसटीएफ की भी टीम बनाई गई, 4 टीमें सोनीपत भेजी गई, बाकी की टीमें अलग लगी हुई हैं। ये यूपी में दूसरा ऐसा इंसिडेंट है। इससे पहले दिशा पटानी जो फिल्म एक्ट्रेस है, उनके घर के बाहर बरेली में गोली चली थी, और उस पर भी जिम्मेदारी ली थी लॉरेंस के करीबियों ने। हालांकि बाद में जिन्होंने गोली चलाई वो दोनों शूटर मारे गए थे। अब इस केस में ये 4 शूटर हैं, और यूपी पुलिस जो यूपी के एसटीएफ के चीफ हैं, एसटीएफ एनकाउंटर के लिए जानी जाती है, स्पेशल टास्क फोर्स अमिताभ यश, उन्होंने बाकायदा कैमरे पर कहा है कि ये जो गैंग है ये यूपी में अब अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है, और ये यूपी पुलिस के लिए एक चैलेंज है, चुनौती है, और यूपी पुलिस इस चुनौती का सामना करेगी। तो अब तफ्तीश जारी है। अंकित बालियान हरियाणवी सिंगर है कौन? तो अंकित बालियान का जो जन्म है वो इसी शामली के पास एक गांव है और उसी गांव में 32 साल के ये हैं, बंती खेड़ा वहां पर हुआ। पढ़ाई लिखाई रोहतक और सोनीपत में। शुरू से ही अंकित कबड्डी का प्लेयर बनना चाहता था और इंडिया के लिए कबड्डी खेलना चाहता था और कहते हैं कि कबड्डी का अच्छा ठीक ठाक प्लेयर भी था। लेकिन 2022 के आसपास कबड्डी खेलते वक्त पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया और फिर उसने कबड्डी को छोड़ दिया। इसके बाद कुछ वक्त के लिए मोबाइल की एक दुकान चलाई। उसे म्यूजिक का शौक था और चूंकि जिस जगह पर रहता था हरियाणा की सरहद, आना जाना ज्यादातर पूरी जिंदगी हरियाणा में गुजार दी, तो उसने फिर रोहतक और सोनीपत को अपना बेस बनाया और वहां म्यूजिक इस इंडस्ट्री से जुड़े कुछ बड़े लोगों के साथ काम करना शुरू किया और उन्हीं के साथ लगा रहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना कुछ नाम कमाएंगे। बहुत सारे एल्बम बनाता रहा बाकी लोगों के साथ, लेकिन असली पहचान जो मिली वो मिली 2023 में, इसी भरी कोर्ट में गोली मारेंगे जज को पसीना आएगा। ठीक सिद्धू मूसेवाला की तरह अंकित बालियान के भी जितने गाने हैं उसमें गोली, बम, गैंग, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। हालांकि बाद में अंकित के इसी गाने को जो कोर्ट में मारेंगे गोली बैंड लगा दिया गया था, 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे। इसके बाद अंकित बालियान को जो और शोहरत मिली हरियाणवी गाने से, उनमें बेबी बदमाश, गैनर, बॉडी बिल्डर, ये सारे PTI, ये सारे गाने शामिल थे और ठीक ठाक चल रहा था। 50 से ज्यादा एल्बम निकल चुका था, अभी भी 15-20 एल्बम निकलने वाला था और करियर ठीक ठाक चल रहा था। अब वो इलेक्शन में राजनीति में भी उतरने वाले थे, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना था, पोस्टर भी लगे हुए थे। लेकिन वही गाना जिसने यहां तक पहुंचाया वही गाना जान ले लेगा, ये मतलब अजीब था। और कमाल ये देखिए, यह इत्तफाक कहें, जिम जाने से पहले अपनी गाड़ी में बैठकर अंकित बालियान ने एक गाना गाया था खुद, और उस गाने के बोल कुछ ऐसे थे कि सड़क पे मर्डर, 26 अगस्त की। और इस गाने को जो बोला उसके वीडियो है, कुछ देर के बाद ही सड़क पे वाकई मर्डर हो जाता खुद अंकित बालियान का। अंकित बालियान ने वो क्या गुनगुनाया मैं चाहता हूँ वो आप भी सुनिए।
6: खास भाई की बड़क के ऊपर मर्डर मार दे सड़क के ऊपर, जो खटकेगा वो भटकेगा साला बच जावेगा कुकर।
2: ये मौत से पहले का शायद अंकित बालियान का आखिरी वीडियो है। अब जिस गोगी गैंग की वजह से अंकित बालियान की जान गई, अभी तक की तफ्तीश के हिसाब से ये गोगी गैंग दिल्ली का एक कुख्यात गैंग था और गोगी गैंग की दुश्मनी थी टिल्लू ताजपुरिया गैंग, ये भी बाहरी दिल्ली अलीपुर के इलाके की तरफ। ये दोनों गैंग, दिल्ली में कोई भी गैंग बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलता, तो लेकिन ये दो गैंग थे जो आपसी दुश्मनी की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारी जाने गई, एक गोगी गैंग एक टिल्लू ताजपुरिया गैंग, इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। 2021 में टिल्लू ताजपुरिया के लोगों ने, उसके गैंग ने रोनी कोर्ट में गोगी को निपटा दिया। इत्तेफाक से टिल्लू ताजपुरिया भी खुद तिहाड़ में बंद था और गोगी भी, गोगी कोर्ट में मारा गया। अब गोगी गैंग बदला लेना चाहती थी टिल्लू ताजपुरिया से और मौका भी मिल गया। करीब 15 महीने के बाद जब गोगी का कोर्ट में मर्डर हुआ, गोगी के लोगों ने तिहाड़ जेल के बैरक में सुबह सुबह टिल्लू ताजपुरिया पर हमला किया, 70 से ज्यादा चाकू से वार किए। वो चाकू भी प्लेट और उसको काट काट कर जेल के अंदर ही बनाए गए थे और उसका CCTV कैमरा था उस वक्त का, वो कहानी आपको डिटेल में सुनाइए। तो गोगी गैंग का सरगना गोगी भी मारा गया, टिल्लू ताजपुरिया गैंग का सरगना टिल्लू ताजपुरिया भी मारा गया, लेकिन उनके गुर्गे अभी भी हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। और अब जिस शख्स ने ये जिम्मेदारी ली है वो गोगी ग्रुप का ही एक बंदा है और उसका नाम है भोलू शाहपुरिया। कहते हैं ये गोल्डी बरार का करीब है और इसी ने जिम्मेदारी ली है सोशल मीडिया के जरिए कि अंकित बालियान को हमने मारा है। अब पुलिस की कई टीमें, 4 टीमें तो हरियाणा में हैं, बाकी यूपी के अलग अलग जगहों पर हैं, लगी हुई हैं कि किसी तरीके से ये शूटर मिले। लेकिन हर केस की तरह, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, ये जो भाड़े के हथियारे हैं यहाँ तक तो पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन जो मास्टरमाइंड, जो सरगना है, उनका कुछ नहीं हो पाता। सिद्धू मूसेवाला के केस को 4 साल हो गया, आज भी गोल्डी बराड़ हमारे हाथ नहीं लगा। गोल्डी बराड़ का बॉस लॉरेंस बिश्नोई कब से अहमदाबाद की साबरमती जेल में है, लेकिन उसके इशारे पर देश के बाहर कत्ल हो रहे हैं, कानून कुछ नहीं कर पा रहा है। तो जो आजाद हैं उन्हें हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, और जो कैद में हैं उन पर भी हम कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, और यही वजह है कि जब तब शूट आउट हो रहा है। अब पता नहीं क्या मजबूरी है कि जो कम से कम आपके कैद में है लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग, उन पर कंट्रोल कैसे नहीं। कई बार ये हुआ कि जेल में मोबाइल है, मोबाइल से सब कुछ चलता है, तो भैया वो कनेक्शन क्यों नहीं काटा जा सकता? अगर अंदर से कोई मैसेज बाहर जाएगा ही नहीं तो फिर ये क्राइम कहां से होगा? किसी की सुपारी क्यों निकलेगी? कोई सिंगर क्यों मारा जाएगा? लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं। जेल के अंदर जो है जिन्हें पकड़े हुए हैं उन पर भी कंट्रोल नहीं है, और जो बाहर हैं उन्हें पकड़ने का आपके अंदर दम नहीं है अभी। तो वजह यह है कि इस तरह के शूट आउट और ये सारी चीजें हम लोगों के सामने जब तब आती रहती हैं, अफसोस की बात है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है, ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
2: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: इस युद्ध समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। उज़्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वसम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में FIR दर्ज। SC ST एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने करवाया केस। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के JP NIC पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का विषय उठाया। कहा, इन लोगों ने पैसा खाया। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप की हत्या के मामले में खुलासा। ड्राइवर ने ही दो दोस्तों के साथ मिलकर मारी थी गोली। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। और नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा। फिर उफान पर त्रिशूली नदी तेज धार में बहापुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। चित्रकूट में आए सैलाबी संकट की अब बात करते हैं, जहां मंदाकिनी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर भारी आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट टूट गए हैं। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। लोग संकट में घिरे हैं और लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और भारी बारिश के बीच में पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।
1: आसमान देखिए मौसम कैसा है।
2: पानी में तैरता हुआ शहर देखा है कभी? अब देख लीजिए, जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही है। शहर में सैलाब आया है। दुकान मकान सब पानी में डूबे हुए। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी।
3: चित्रकूट जनपद में मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे कल मंदाकिनी नदी लगभग 9 मीटर के ऊपर बह रही थी, जिससे रामघाट का जो एरिया था पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। जिन सड़कों पर कभी वाहन चलते थे वहां नाव चलने लगी थी। मंदाकिनी नदी के बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि मध्य प्रदेश प्रशासन को यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना पड़ा है। और SDPRF टीम, जो यूपी प्रशासन था, SDRF टीम और PAC टीम को लगा करके जो लोग अपने घरों में फंसे थे उनको रेस्क्यू करके बचाया गया है।
2: बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए, लोग फंसे हुए हैं। बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब है कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ इस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है।
1: अभी आप आसमान देखिए मौसम कैसा है। ऊपर बोर्ड पे अगर खाना है तो दे दो, जो बचे हैं उनको खाना दे दो। निकालो इनको भाई, आप लोग बचा सकते हो उनको उतारो।
2: दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है।
4: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अति शीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। और इन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
5: हम खड़े हैं रामघाट पे, जहां मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है, वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें, यहां पर सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं। लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं। जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से लगभग आधा दर्जन से लोगों का गाँव का संपर्क टूट गया है।
2: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
6: और पानी का जो जल स्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें, पूरी प्रकार से जहाँ पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट्स, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुँचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट्स, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
2: संकट बड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है, कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।
6: आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहां पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है वहां पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहां पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहां पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है, कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है, तो आज आप आने वाले समय में जो है वहां पे रुक सकते हैं, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।
2: अब इन तस्वीरों को देखिए, ये नेशनल हाईवे 35 पर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर बना पुल था जिसे मंदाकिनी की लहरें अपने साथ बहा ले गई।
7: ऐसे हम खड़े हैं उसी मंदाकिनी रोड के पुल पर जहाँ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह मंदाकिनी नदी का मेन पुल है जो NH 35 पे यह पुल बनाया गया है जो शहर को जोड़ता है, उसी रास्ते से प्रयागराज के लिए जाया जाता है। लेकिन कल मंदाकिनी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पुल के ऊपर से यहाँ पानी बह रहा था, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी के पुल का अप्रोच रोड है वह उसका रोड का लगभग 20 मीटर नीचे धस गया है, जिसकी वजह से ये अप्रोच रोड का जो एक कोना है वह हट गया। यहाँ पर पुल को बनाने के लिए जो कर्मी है यहाँ पर लगे हुए हैं।
2: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और उन तक मदद पहुंचाई। दिन रात लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसी ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। अखिलेश कुमार सोनकर, चित्रकूट आज तक।
0: चित्रकूट के हालात तो आपने देख लिया, अब आपको प्रयागराज की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर गंगा और यमुना ने रौद्र रूप धर लिया है। गंगा के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग अपने सामान के साथ दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं।

0: देखते ही देखते ये पूरा ट्रक पानी में समा गया। इतना पानी कि डूबे हैं मकान, डूबी हैं दुकानें, डूबे हैं मैदान, डूबी है सड़क, डूबा है शहर, मचा है कहर। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं। गंगा और यमुना में ऐसा उफान आया कि शहर पानी पानी हो गया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर का असर अब शहर की प्रमुख सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। प्रयागराज का तारागंज इलाका लबालब है। लोग अपना सामान सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं।
1: ये प्रयागराज का तारागंज इलाका है और इस तारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट है। यहाँ पर भी गंगा का पानी सड़कों पर आ गया है और लोग अपना सामान इसी तरह निकाल रहे हैं, क्योंकि अचानक लोगों का कहना है कि पानी आया और इनकी जो दुकानें हैं वो पानी में डूब गई हैं और इस तरह से ये अपना सामान पानी से सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये परेशानी इनका कहना हर साल की है और ऐसे ही इनको हर साल परेशान होना पड़ता है। अपना सामान ये लोग निकाल रहे हैं क्योंकि ये दुकानदार हैं और इनका जो सामान है इस बाढ़ के पानी में डूबता जा रहा है। यहाँ पर सब्जियों की दुकानें लगा करती थी, लेकिन बाढ़ की वजह से यहाँ पर भी इनका सामान डूब रहा है। कुछ लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, लेकिन लगातार ऐसे ही जलस्तर बढ़ता रहा तो ये पूरी सड़क भी पानी से भर जाएगी।
0: लोग परेशान हैं, जाए तो कहाँ जाए।
2: अरे रहा सब्जी और दुकान रखे रहे किराना, अरे हमारा तो पूरा दुकान सब गवा।
3: परेशानी क्या बड़े, परेशानी आने जाने में तकलीफ होती है और सब्जी साग खरीदने में, और प्लस आपका यहाँ मतलब इतने गंगा जी बढ़ जाती हैं कि मतलब नाव भी चलती हैं और समस्याएं तो बहुत है। अब क्या बताएं।
1: अच्छा, सड़कें सामान भी डूब रहा है।
3: हाँ, सामान तो डूबता ही है,
1: दुकानें डूब,
3: हाँ दुकान भी डूबते, नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं नुकसान नहीं होता, नुकसान भी होता।
1: अच्छा, जब पानी बढ़ जाता है तो किस तरह से आने जाने का सहारा, नाव रहते
3: हैं? नाव के अलावा कोई रास्ता ही नहीं इधर।
1: अभी तो बढ़ेगा।
3: हाँ अभी तो बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, लगभग एक मंजिल तक, एक मंजिल दो मंजिल भी जा सकता है।
0: इसी तरह बक्सी बांध के पास गंगा पथ पूरी तरह पानी में डूब गया। यहीं पर इस ट्रक को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते ट्रक का अधिकांश हिस्सा पानी के बाढ़ में समा गया। बताया जा रहा है कि जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा पथ पर पानी भर चुका था, लेकिन ड्राइवर ने उसी रास्ते से ट्रक निकालने की कोशिश की और ट्रक बीच गहरे पानी में फंस गया। ये तो शुक्र था कि ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर नागवासुकी रोड यानी मरीन ड्राइव पर भी देखने को मिल रहा है। सड़क पर कई फीट तक पानी भर जाने से रास्ते को बंद कर दिया गया है। शाम के समय बड़ी संख्या में लोग जिस मरीन ड्राइव पर घूमने आते थे, वहां चारों ओर बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। सड़क के जलमग्न होने से आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।
1: हम इस वक्त नागवासुकी रोड पे है और गंगा यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस नागवासुकी रोड में बाढ़ का पानी अब रास्तों पर आ गया है। इसे मरीन ड्राइव कहते हैं। शाम के वक्त लोग यहाँ घूमने और अपना मन बहलाने आते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी बढ़ने के कारण सड़कों पर पानी आ गया है, लोगों के घर डूब रहे हैं और यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है ताकि यहाँ पर लोग गहरे पानी में ना जाएं। और यहाँ पर लगातार दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण सड़कों पर पानी आ गया है। ये सलोरी बघाड़े का इलाका है जहाँ पर ये बाढ़ का पानी आने से लोगों को घरों में पानी अब जाने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और पीछे की तरफ यहाँ पर गंगा पथ है जो कि कुंभ के दौरान 2019 में बनाया गया था, जिसमें एक ट्रक गहरे पानी में समा गया है। फिलहाल दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी परेशानी भी बढ़ना तय माना जा रहा है।
0: अब निचले इलाके में रहने वाले लोग परेशान हैं, उन्हें बाढ़ का डर सता रहा है।
4: ये पानी तो बढ़ रहा है, घरों में अब घुसने के कगार पर है और ये हमेशा 24 आवर्स जो है चलने वाली सड़क थी जो अब डूबने के कगार पर है।
1: रास्ता बंद हो रहा है,
4: एकदम रास्ता बंद हो गया है।
5: ऊपर कहीं ले जाके पानी आ गया तो कहाँ से यहाँ चलेगा।
1: कितना पानी बढ़ा है?
5: अरे बहुत बढ़ा है। कल वहाँ नागवासुकी के पास सामने सूखा था, कल से वहाँ से यहाँ तक बहुत आ गया पानी।
0: गंगा और यमुना के लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच प्रयागराज का पूरा संगम क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूब गया है। जिस संगम क्षेत्र में कभी माघ मेला और कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आती थी, वहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मेला क्षेत्र की सड़कें और रास्ते भी जलमग्न हो चुके हैं।
6: प्रयागराज में तेजी से बढ़ते जलस्तर के बीच में हम जिस नाव पे सवार होकर जा रहे हैं, ये माघ मेला कुंभ मेला क्षेत्र है। यानी जिस जगह पहले यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ हुआ करती थी, अब जलस्तर बढ़ने की वजह से यहाँ पर पानी है। आप देखिए पीछे मेरे नजारा, तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ये वो जगह है, दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां पर आरती होती है, और वो आरती वाली जगह भी प्रयागराज में बढ़ते गंगा के जलस्तर को लेकर डूब गया है। उसके अलावा दूसरी तरफ देखेंगे तो प्रयागराज का हनुमान मंदिर का जाने वाला रास्ता है जो दूसरी तरफ है, और वहां के सामने अगर देखेंगे आप तो वो नजर आ रहा आरती करने वाला स्थल, यानी आरती जहां पर होती है वो है। वो देखिएगा आरती स्थल डूब गया है। इसी रास्तों से आरती स्थल से होते हुए कई सेक्टरों में जाते थे लोग। पीपाए का पुल नंबर 1 ये रास्ता ले जाता था, लेकिन अब यहाँ पर बाढ़ का पानी है।
0: बाढ़ के पानी की वजह से माघ मेला क्षेत्र में दुकानें अब ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की ओर शिफ्ट हो गई है। वहीं पूजा पाठ कराने वाले पंडा समाज ने भी अपने झंडे और पूजा स्थल को दूसरी सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। अब पंडा परेशान है क्योंकि उनके यजमानों को नहीं मालूम कि नई जगह वो कहां बैठ रहे हैं।
7: समस्या ये है कि पहले और हमेशा हम लोगों का तखत जो है हनुमान मंदिर के बगल जो है चौराहे के कॉर्नर पे लगता था, तो जो हमारे यात्री हैं वो सबको यह मालूम था कि हम पंडित बेनी माधव शिव प्रसाद का तखत वहां लगता है, लेकिन चूंकि अब वहां जो है जल भराव होने के कारण हम लोग सुरक्षित स्थान पर यहाँ परेड मैदान पे आ गए हैं।
8: बहुत दिक्कत हुआ, हम लोगों का तखत हनुमान मंदिर के आगे रहता था, लेकिन जल आने की वजह से हम लोगों को इधर परेड ग्राउंड पे आना पड़ा सुरक्षित स्थान पे। जितने भी पंडा लोगों थे झंडा सहित अपने मेला ग्राउंड के मैदान में आ गए हैं सुरक्षित, लेकिन हम लोगों के यात्री बहुत इधर उधर हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, क्योंकि यात्री तो पुराना स्थान ही जानता है ना, नया स्थान बहुत ढूंढने में दिक्कत होती है उसको हर प्रकार से।
0: प्रयागराज में गंगा किनारे रहने वालों की मुसीबतें बढ़ी हैं क्योंकि फिलहाल गंगा का जलस्तर कम नहीं हो रहा है और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पंकज श्रीवास्तव के साथ आनंद राज, प्रयागराज आज तक।
9: तो सिर्फ चित्रकूट या प्रयागराज में ही नहीं बल्कि नदियां अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शहरों में उफान पर है। बिल्कुल ऐसे ही हाल है, बाराबंकी में सरयू नदी में उफान है तो वाराणसी में गंगा के घाट डूब चुके हैं। आलम यह है कि गलियों में दाह संस्कार किया जा रहा है।
0: धसती जमीन और ये कटान खौफनाक है। तस्वीरें बाराबंकी की, देखिए सरयू में उफान आया और आसपास का इलाका पानी पानी हो गया। रामनगर तहसील के गांव केदारीपुर, बेलहरी और सरसंडा क्षेत्र में तेज कटान के चलते कई मकान और कई बीघा खेत नदी में समा गए। लगातार हो रही कटान से ग्रामीण और किसान दहशत में हैं। अब आपको वाराणसी की तस्वीरें दिखाते हैं। गंगा में आई बाढ़ की विभीषिका ने न केवल आम लोगों के जीवन पर असर डाला है बल्कि मोक्ष के रास्ते पर भी एक बड़ी अड़चन बनकर खड़ी हो गई है। बाढ़ के पानी में शमशान घाट डूब गए हैं, जिसके बाद मजबूरी में पक्के घाटों के ऊपर तंग गलियों में मुखाग्नि दी जा रही है।
10: पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिखना शुरू हो गया है। दो बार घटने के बाद वाराणसी में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि न केवल आम जनजीवन बल्कि मोक्ष के द्वार भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है, क्योंकि इस समय हमारी मौजूदगी हरिश्चंद्र शमशान घाट पर है और देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी ने पूरे पक्के घाटों को डुबो दिया है, शमशान घाट को डुबो दिया है, जिसकी वजह से इस तंग गली, सकरी गली, गंदगी, उमस, तपिस से होते हुए शव यात्रियों को आना पड़ रहा है।
0: यूपी के बाद बिहार के कटिहार की तस्वीरें देखिए। सड़कों पर सैलाब आया है, यहाँ नाव चलने की नौबत आ गई है। लोग नाव के सहारे जरूरी सामान ला रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ सैलाब नजर आता है। लोग बाइक को नाव पर लाद कर ले जा रहे हैं। ये स्कूल भी पूरी तरह डूबा नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं कि इस समस्या से निजात कैसे मिले।
11: बाहर है पंडित जी।
12: अच्छा,
11: अब बहुत भीषण बाढ़ है।
12: अच्छा,
11: दरवाजा पर पानी पूरा भरा हुआ है, जनता के गलने बढ़ होता है, तकलीफ होता है।
12: तो सरकार के तरफ से नाव का व्यवस्था दिया है?
11: कुछ नहीं दिया है।
12: तो कैसे
13: बाढ़ आज लगभग 15 दिन से है।
12: अच्छा, कौन कौन गांव बाढ़ में डूबा हुआ है?
13: मोहना चांदपुर 83 धुरियाही पंचायत पड़ता है, मोहना चांदपुर पंचायत है, भवानीपुर है, ये पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है।
12: अच्छा, कैसे आप लोग आना जाना कर रहे हैं?
13: नाव से।
12: अच्छा, प्राइवेट नाव या सरकारी नाव?
13: प्राइवेट नाव, सरकारी नाव नहीं है।
12: पैसा भी लगता है जाने में?
13: हाँ।
12: कितना लेता है?
13: 40 रुपए लेता है गाड़ी आदमी से, हम लोग का।
14: अच्छा, पानी हो गया है, पानी के टेंशन से यहाँ नीचे ऊपर में आए हैं, और न पखेना का साधन है, न पानी का साधन है, न लाइन का साधन है। यही
0: कटिहार में बाढ़ क्षेत्र का मुआयना करने कांग्रेस नेता तारिक अनवर पहुँचे।
15: स्थिति तो बहुत गंभीर है मोहना चांदपुर का, और इसीलिए आए जब हमको जानकारी मिली कि पूरे गांव में करीब 7-8 वार्ड में पानी घुस चुका है और चारों तरफ से यहां गांव में लोग घिरे हुए हैं, तो वो ये वस्तु स्थिति को जानने के लिए, देखने के लिए हम सब लोग आए थे।
0: नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और इसी के साथ बढ़ रही है लोगों की समस्याएं, जिनसे निजात कब मिलेगा मालूम नहीं। आज तक ब्यूरो।
9: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: अब आज उत्तर प्रदेश में मची सियासत की करते हैं। यूपी की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर जंग तेज हो गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर जेपीएनआईसी से लेकर एक्सप्रेस वेज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो पलटवार कर रही है और अखिलेश सरकार के दौर के खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है।
2: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी जेपीएनआईसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जेपीएनआईसी को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
3: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। जेपीएनआईसी बीजेपी ने जेपी बेच दिया।
2: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपीएनआईसी के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़, इसके बावजूद काम अधूरा रहा। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
4: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
2: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं बीजेपी का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
3: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है जिसको लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रक्त

0: आत्माओं का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं, और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
2: आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच में विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच ये बयानबाजी तेज हुई है।
3: सवर्ण छात्रों ने जिस रोज से आरक्षण में बदलाव के लिए आवाज उठाई, उसी रोज से आरक्षण को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी। इसी सियासत के जोर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दे दिया, और इसी बयान ने एनडीए में बवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान नाराज हो गए।
4: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहां कहा गया कि आर्थिक आधार पे, तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहां से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें वो आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। मांझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या मांझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें।
3: चिराग पासवान सीधे सीधे जीतन राम मांझी का इस्तीफा मांगने लगे तो जीतन राम मांझी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। अब मांझी ने भी चिराग का इस्तीफा मांग लिया है।
5: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।
3: मतलब आरक्षण पर एनडीए के नेताओं ने आपस में ही विवाद कर लिया है। इन बयानों के बीच में संतोष सुमन का बयान दोबारा आया है।
6: मैंने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों को, चाहे किसी को भी, तो समाज में कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ तक अभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुँचा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको संवेदना रखनी चाहिए और ऐसी नीति और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको भी आरक्षण का लाभ हो सके।
3: अब आरक्षण पर कोहराम मचा हुआ है। एनडीए के भीतर ही नेता एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: एसईओ समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की नई उड़ान पर जोर। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में FIR दर्ज। SC ST एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने करवाया केस। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के JP NIC पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का मुद्दा उठाया, कहा इन लोगों ने खाया पैसा। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप की हत्या के मामले में खुलासा। ड्राइवर ने ही दो दोस्तों के साथ मिलकर मारी गोली। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। और नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा। फिर उफान पर त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पीएम मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, ओली दाराजली डसलिक से सम्मानित हुए। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में यूरेनियम समेत 11 समझौतों पर लगी मोहर, पीएम मोदी बोले ऊर्जा व्यापार और निवेश पर जोर। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने भारत को बताया विश्वसनीय साझेदार का, भारतीयों के लिए 20 दिन की फ्री वीजा व्यवस्था। पीएम मोदी ने ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि, कहा शास्त्री जी का देश के लिए अटूट समर्पण आज भी हर पीढ़ी को प्रेरणा देता है। किर्गिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बिश्केक में एससीओ समिट में लेंगे भाग। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के साथ किया संवाद, जन भागीदारी के साथ राष्ट्र निर्माण की बात कही। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी कि नशा मुक्त अभियान तेजी से चल रहा है, नशा मुक्ति पर सकारात्मक कंटेंट बनाने की अपील। पीएम मोदी ने स्पेस सेक्टर में भारत के बढ़ते कदम का भी किया जिक्र, कहा कि मिशन शक्ति सेट से 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिल रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात में मुंबई के कृष्णा शेषाद्री की तारीफ की, भारतीय इतिहास पर बनाई गई उनकी वेबसाइट को बेहद रोचक बताया। राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में FIR दर्ज, राहुल गांधी पर अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, शुद्धिकरण मामले पर। JPNIC को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को गिरा, कहा कि ये सरकार सब कुछ बेच देगी, यूपी में लूट मची है। योगी का भी समाजवादी पार्टी पर आरोप, कहा कि JPNIC पर कब्जे की समाजवादी पार्टी ने कोशिश की, 864 करोड़ खर्च कर दिए, उसके बाद भी अधूरा। जयंत चौधरी का अखिलेश यादव पर निशाना, जाति का चश्मा पहनकर यूपी की व्यवस्था उल्टा पुल्टा करने में लगे अखिलेश की राजनीति और उनके PDF फॉर्मूले पर सवाल। अखिलेश यादव को AIMIM की नसीहत, यूपी के सीएम बनना चाहते हैं तो ओवैसी को लेकर आए। लखनऊ में वकीलों के चैंबर पर कार्रवाई, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर अतिक्रमण कर बनाए गए चैंबर पर एक्शन। अमेरिका के न्यूयॉर्क में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत के DNA में एकता और विविधता, कोई हिंदू सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होना चाहिए तो वो हिंदू नहीं है। भागवत के बयान पर ओवैसी का निशाना कि भागवत का बयान पुरानी रणनीति का हिस्सा, RSS ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया नहीं है। पंजाब में भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध समेत 13 मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन तेज, संगरूर DC कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना। लखनऊ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह में रहे मौजूद। गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। नेपाल में तबाही से मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 788 लोगों की मौत, लगभग 2500 लोग लापता। नेपाल की भोटे कोशी नदी में लगातार बढ़ रहा जलस्तर, रसुवा नुवाकोट धादिंग और चितवन में अलर्ट। भारत से नेपाल की सहायता के लिए भेजे गए चौथे खेप, 11 टन राहत सामग्री शामिल। 7 और वैली ब्रिज बनाने के लिए भी जल्द से जल्द भेजा जाएगा सामान, विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट करके दी जानकारी। नेपाल की हाइड्रो पावर टनल में फंसे हुए लोगों की जान बचाने के लिए भारतीय एक्सपर्ट्स और नेपाली सेना ने साथ में काम किया, जा रही बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर चित्रकूट में तबाही, मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप, बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन से ली गई तस्वीरें, पूरा शहर डूबा दिखाई दिया। चित्रकूट के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, बाढ़ पीड़ितों के बीच में बांटी राहत सामग्री। यूपी में चित्रकूट में बाढ़ के बीच में ग्राउंड जीरो पर उतरे DM, SSP, CM योगी ने निर्देश दिए, बाढ़ और राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर। 23 साल के बाद आए रिकॉर्ड बाढ़ के बाद मंदाकिनी का पानी उतरने लगा है, बाढ़ से आए मलबे को हटाने का काम कर रहा है प्रशासन। MP में मौसमी बारिश के चलते बिगड़े हालात, पन्ना में उमरी गांव में पुल के ऊपर से 2 फीट पानी बह रहा है। आज उत्तराखंड के पौड़ी और चमोली में स्कूलों की छुट्टियां, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन का फैसला। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी एक बार फिर से उफान पर है, कई मकान और कई बीघा खेत नदी में समाये। जमशेदपुर में भारी बारिश के चलते बढ़ा जलस्तर, चांडिल डैम के खोले गए 15 फाटक, निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश के बाद मौसम सुहाना, खूबसूरत नजारा दिखा। हिमाचल के सोलन के परवाणु में मूसलाधार बारिश, उफान पर नदी नाले। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप की हत्या, नहर में मिला शव, ड्राइवर समेत 2 आरोपी हिरासत में लिए गए, जांच के लिए 6 टीमें गठित। वाराणसी में ट्रेन पर पत्थरबाजी के मामले में कार्रवाई, GRP RPF की टीम ने 6 आरोपियों को पकड़ा, विवाद के बाद ट्रेन पर पथराव का आरोप। लुधियाना में जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहा था ये जासूस। जयपुर के सितारपुरा सेंटर पर नहीं हो पाई नीट PG की परीक्षा, 5 सितंबर को परीक्षा होगी।
रक्षाबंधन पर्व पर 3 दिन में लगभग 89 लाख यात्रियों ने निःशुल्क बस यात्रा का फायदा उठाया। 2025 का रिकॉर्ड टूटा और इस बार 10,68,000 से ज्यादा यात्रियों ने निःशुल्क बस यात्रा की। नोएडा में पिता के मुक्का मारने के बाद से 5 साल के बच्चे की हुई मौत, हिरासत में आरोपी पिता। मुंबई के बांद्रा इलाके में कार ने 8 साल के बच्चे को कुचला, मौके पर ही बच्चे की मौत। कोटा में हिमांशु भाव गैंग के 4 बदमाश हुए अरेस्ट, दिल्ली स्पेशल सेल का ही ऑपरेशन। बरेली में गर्लफ्रेंड के शौक पूरा करने के लिए ऑटो ड्राइवर को लूटने वाले 2 भाई गिरफ्तार, सवारी बनकर ऑटो में बैठा करते थे। झारखंड के गढ़वा में डायन बताकर महिला पर खोलता पानी उड़े लगा, महिला बुरी तरह से जख्मी है, सदर हॉस्पिटल में भर्ती। भोपाल में बदमाश का पीछा कर रही पुलिस, बाइक ने 8 साल की बच्ची को टक्कर मार दी, सिर में गंभीर चोट। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, जीप स्कूटी की भिड़ंत में 6 साल के बच्चे की मौत समेत 3 लोगों की मौत। दिल्ली में राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग, दमकल की 25 गाड़ियों ने आग बुझाई। सोनीपत के कच्चे क्वार्टर में लगी भीषण आग, कंबलों की दुकान समेत 5 दुकानें जलकर राख। सूरत में सड़क किनारे खड़ी कार का दरवाजा अचानक खोलने पर मोपेड सवार शख्स टकराया, मौके पर मौत। अलीगढ़ में पैतृक जमीन के विवाद में चौकी पहुंचे अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह, 7 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा, पूर्वजों की कृषि भूमि को अवैध रूप से बेचने का मामला। मेरठ में फर्नीचर शोरूम में घुसकर 3 भाइयों पर हमला, तोड़फोड़ वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज। खरगोन में नीलोफर हत्याकांड में 8 साल की बेटी ने खुला राज, पिता को बताया गुनहगार, आरोपी फरार। यूपी के कौशाम्बी में मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत, एयरफोन लगाकर पटरी पर रील्स देख रहा था। गुजरात के बनासकांठा में आवारा कुत्तों का आतंक, सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए आए लोगों पर हमला कर दिया। अयोध्या में श्री कृष्ण का नाम लिखी चांदी का शिला का पूजन, संतों और श्रद्धालुओं ने पुष्प बारिश की। महोबा में 845 में ऐतिहासिक कजली मेले का भव्य आयोजन और अलहउदल के शौर्य की याद में जनसैलाब उमड़ा। झांसी में भी श्री कृष्ण की शाही सवारी निकली, नाचते गाते भक्तों का स्वागत। बागेश्वरी माता मंदिर के बिल्कुल नजदीक पहुंचा शेर, वन विभाग ने दिखाई मुस्तैदे, शेर को रेस्क्यू किया गया। विशाखापट्टनम में डॉक्टर्स ने लॉन्च की आई डोनेशन कैंपेन, लोगों से नेत्रदान के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल में आई जल त्रासदी को 4 दिन हो चुके हैं और अब भी मलबे में शवों का निकलना बंद नहीं हुआ है। इस हादसे में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लापता हैं। नेपाल अपने इतिहास की एक बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है, 35 देशों के नागरिक प्रभावित हुए हैं। इसके साथ साथ अब एक नई आपदा के संकेत मिलने लगे हैं, जिसकी तैयारी करना नेपाल के लिए बड़ा चैलेंज है। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ इस नए खतरे ने नेपाल से नेपाल कैसे निपट रहा है, आज हम आपको दिखाएंगे।

0: पानी, मिट्टी और मलबे का सैलाब अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गया। कई घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए। कई गांवों का संपर्क टूट गया। नेपाल में फ्लैश फ्लड से तबाही जारी है। अब तक 675 से ज्यादा मौतें और 2400 से ज्यादा लोग लापता हैं। 15,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी रेस्क्यू में जुटे हैं। कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण राहत और बचाव का काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। नेपाल के मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों में फिर बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। कोशी, बागमती और गंडकी के पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। बाढ़ के बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में फंसे लोगों को निकालना बड़ी चुनौती है। त्रिशूली 3A, 3B और अपर त्रिशूली 1 में लोगों के फंसे होने की आशंका है। बाढ़ में 19 पुल बहने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। राहत सामग्री और जरूरी सामान पहुंचाना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। इसी बीच चीन नेपाल सीमा पर ग्लेशियर टूटने से बनी झील का क्षेत्रफल घटकर 99,000 वर्ग मीटर हो गया है। इसके बावजूद खतरा बरकरार है और 24 घंटे निगरानी जारी है। वहीं ग्लेशियर के नीचे 1,20,000 वर्ग मीटर से बड़ी दूसरी झील भी चिंता बढ़ा रही है। इसकी निगरानी ड्रोन और रडार से की जा रही है। नेपाल में इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। एक तरफ मलबे में अपनों की तलाश है, दूसरी तरफ सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने की चुनौती और अब मौसम भी नई मुश्किल पैदा कर सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: एक महिला के शव से जुड़ी है। बाढ़ के पानी में बहते हुए नेपाल की नारायणी नदी के किनारे उनका शव पहुंचा और सोचिए इस शव को लेकर किसी भी इंसान का क्या फर्ज होना चाहिए था। इंसानियत के नाते वहां मौजूद लोगों को सम्मान के साथ इन महिला का शव बाहर निकालना चाहिए था। उनके परिवार तक कम से कम कोशिश करनी चाहिए थी कि खबर पहुंचे, पता लगाते कि कौन है, कहां से है। कम से कम उनके शव की गरिमा बनाकर रखनी चाहिए थी, उनका अंतिम संस्कार ही कर देते। लेकिन इस वीडियो में जो दिखाई देता है वो इस सोच को झकझोर देता है। यकीन नहीं होगा, जो दो लोग इस महिला का शव निकालने के लिए आए वो उनके कानों की बालियां चुराना चाहते थे। नेपाल की स्थानीय पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने महिला के बाल पकड़कर उसके सिर को खींचा ताकि वो कानों में पहनी बालियों तक आसानी से पहुंच सके। इसके बाद उन्होंने उसके कानों से सोने की इन बालियों को नोच लिया। सोचिए बाढ़, प्रलय, त्रासदी, इस महिला से पहले ही उसका सब कुछ छिन चुका था, लेकिन इंसान का लालच उसकी देह को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कुदरत की बाढ़ ने घरों को बहाया, पेड़ों को उखाड़ा, पुलों को तोड़ा, जिंदगियां छीन ली, परिवार के परिवार, गांव के गांव बर्बाद कर दिए। लेकिन इस वीडियो ने एक दूसरी बाढ़ दिखाई और वो थी लालच की बाढ़। वो लालच जो इंसान को यह भी भुला देता है कि सामने कोई चीज नहीं बल्कि किसी की मां, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, एक महिला है। लेकिन अब तक नेपाल की बाढ़ में इंसानों को मरते हुए देखा होगा आपने। आज हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो में देखें कि कैसे इन लोगों ने इंसानियत को मार डाला।

नजरें झुक जाती हैं। सोचिए ये कैसा लालच है। इन लोगों को इस महिला के कानों में सोने की बालियां तो दिखाई दी, लेकिन उन्हें इस महिला की इतनी बड़ी जो उनकी उनका शरीर था वहां पर नहीं दिखा कि इसका अंतिम संस्कार करें। इस मामले में नेपाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी अब कर लिया है, जिनमें एक आरोपी का नाम मदन गुरुंग है जो 25 साल का है और दूसरे आरोपी का नाम उमेश चौधरी है जो 38 साल का है। दोनों आरोपी नेपाल के सुनसरी जिले के रहने वाले हैं, जिन पर शव का अपमान करने, आपदा के वक्त चोरी करने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। जब वक्त ने इंसानों की परीक्षा ली है, तब तब वो इंसानियत की डगर पर कई बार लड़खड़ाए। आज से 120 साल पहले जब 1906 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक विनाशकारी भूकंप आया और इसमें हजारों लोग मारे गए, तब वहां बड़े पैमाने पर लूटपाट की घटनाएं भी हुई थी। लोगों ने ना केवल ढह चुकी दुकानों को लूटा, बल्कि मलबे में दबे लोगों, घायलों की उंगलियां काटकर सोने की अंगूठियां, गहने, जेबों से पैसे चुरा लिए। उस वक्त इन घटनाओं को देखते हुए लूटपाट करने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके बाद जब जांच हुई तो ये पता चला कि उस वक्त कुछ अमेरिकी नेशनल गार्ड के जवानों और पुलिसकर्मियों ने मलबे से कीमती सामान और शवों से गहने चुराए थे। और यह ऐसी पहली और आखिरी घटना नहीं रही। 2004 में जब जब हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी आए, या 2010 में हेटी में जब भूकंप आया, तब भी इन आपदाओं में मारे गए लोगों के शवों से सोना चुराने की घटनाएं हुई। और इन्हीं घटनाओं के कारण जिनीवा कन्वेंशन के तहत यह अनिवार्य किया गया कि किसी भी आपदा, किसी भी युद्ध के बाद मृतकों के शवों की पहचान, उनके सामान को सुरक्षित रखकर उनके परिजनों को सौंपना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी होगी। लेकिन सोचिए ऐसे कानून इंसान के लालच को आखिर कहां रोक पाते हैं। हालांकि यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर इंसान इन लोगों की तरह लालच में है, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें आप देखेंगे नेपाल में अभी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो जान जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरों को बचा रहे हैं। कोई अनजान व्यक्ति के लिए रस्सी लेकर दौड़ रहा है अपनी जान को खतरे में डालकर, तो कोई अपने घर का दरवाजा खोल देता है, कोई भूखे को खाना देता है, कोई मलबे में दबे इंसान को निकालने के लिए घंटों अपनी जान की परवाह तक नहीं करता। खाना पीना भूल कर वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, आम लोग लगे हुए हैं। और यहां पर शख्स को भी देखिए जिसे बाढ़ के पानी से सोने के गहने और कुछ कैश मिला, लेकिन इस व्यक्ति ने इन गहनों को अपने पास नहीं रखा, मतलब उसके तो हाथ में आया। उसने कहा कि ये सोना जिन लोगों का भी रहा होगा वो उन्हें लौटाने के लिए तैयार है और पुलिस भी इस काम में उसकी मदद करे। ऐसे भी लोग हैं, देखिए। अब आप ये देखिए कि नेपाल में दूसरी तबाही का खतरा क्यों मंडरा रहा है। आज सुबह चाइना ने तिब्बत के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अचानक अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस को स्थगित कर दिया, रोक दिया। कारण यह बताया कि जिन दो नदियों में ग्लेशियर का मलबा फंसने से एक बैरियर झील बन गई थी, वो झील अब कभी भी फट सकती है। चाइना के सरकारी मीडिया के मुताबिक अभी इस झील का पानी ओवरफ्लो होकर लगातार नेपाल की नदियों में जा रहा है, लेकिन अगले कुछ घंटों या इस हफ्ते के आखिरी तक ये झील पूरी तरह फट सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इसके कारण नेपाल में लगातार दूसरी बार महाप्रलय का संकट पैदा हो सकता है। चाइना के जल संसाधन मंत्रालय और सीसीटीवी न्यूज चैनल के मुताबिक ये बैरियर झील बुधवार को उस वक्त बनी जब ग्लेशियर या बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग होकर नीचे गिरा। अगर इसे इस ग्राफिक्स की मदद से समझें तो जब हिमालय के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटता है और वो टूटकर नदी में गिरता है, तब इस मलबे ने नदी का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। यानी जैसे स्विमिंग पूल में पानी भरने लगता है, ठीक उसी तरह इस मलबे के कारण ये नदी रुक गई और उसके पीछे पानी जमा होकर एक प्राकृतिक झील बन गई जिसे अब बैरियर लेक कहा जा रहा है। ये झील इसलिए खतरनाक है क्योंकि अभी इसका जो आकार है वो 7 करोड़ घन फीट है, लेकिन अगले 3 दिनों में यही आकार 17 करोड़ 60 लाख घन फीट हो जाएगा। चाइना का कहना है कि अगर इस इलाके में लगातार बारिश होती है, इसके कारण नदी में पानी की मात्रा बढ़ती है,
तो यह आकार और भी विशाल रूप ले सकता है, जो किसी वाटर बॉम्ब जैसा होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 17 करोड़ 60 लाख घन फीट पानी ओलंपिक खेलों के 2000 स्विमिंग पूल्स के पानी के बराबर होता है। इतना पानी अगर अचानक निकल जाए तो वो नीचे बहने वाली पूरी घाटी को तबाह कर सकता है, क्योंकि जब वो नीचे बहने लगता है तो अपने साथ मलबा लाता है, और उस मलबे के साथ जब वो नीचे आता है तब वो विनाशकारी होता है, और यही अभी नेपाल के सामने सबसे बड़ा संकट है। अब सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस झील का पानी अब ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है, यानी ये पानी इस झील में लगातार बढ़ रहा है और वो अब ऊपर से बहकर उसी नदी में जा रहा है जिसने बुधवार को नेपाल में तबाही मचाई थी, और इस नदी का नाम भोटेकोशी नदी है। अगर ये बैरियर झील अगले 2 दिनों में पूरी तरह टूट जाती है तो इससे नेपाल में दूसरी प्रलय भी उसी रास्ते से आएगी जिस रास्ते से पहली प्रलय आई। इससे उन लोगों का ज्यादा खतरा होगा जो नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस इस वक्त चला रहे हैं, क्योंकि यही कारण है कि पहले चाइना ने तिब्बत में अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस को रोका और अब नेपाल भी प्रभावित इलाकों में अपने बचाव कर्मियों को पीछे हटा रहा है क्योंकि खतरा बहुत बड़ा आ गया है। यहां बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में जो आलोचनाएं हो रही हैं उसके बाद भी इस बैरियर झील को लेकर चाइना ज्यादा सावधानी अब बरत रहा है। चाइना के वैज्ञानिक लगातार सैटेलाइट से इस झील की निगरानी कर रहे हैं, पानी का स्तर माप रहे हैं, कंप्यूटर मॉडल से अनुमान लगा रहे हैं कि बांध टूटने पर पानी कहां तक जाएगा, तबाही कैसे हो सकती है, कितनी बड़ी होगी। आप खुद देखिए, जिस जगह ये झील बनी है उसके पास चाइना के वैज्ञानिक ड्रोन्स की मदद से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब तक ये झील फट सकती है, इसका पानी किस दिशा में जा सकता है।

0: map that is provided by local authorities.
1: ये मैप लोकल अथॉरिटीज से हमें मिला है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो तबाही हुई वो यहीं से शुरू हुई और ये जगह यहीं पर मार्क की गई है. बैरियर लेक समुद्र तल से लगभग 2950 मीटर की ऊंचाई पर है. यहीं बॉर्डर लाइन दिखाने वाली लाइन बहुत साफ नहीं है. लोकल अथॉरिटीज से मिली जानकारी और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये लेक असल में चीन और नेपाल दोनों तरफ है. तो जब बैरियर लेक से पानी का बहाव शुरू हुआ तो उसकी रफ्तार बेहद तेज थी. जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और कमांड सेंटर के मुताबिक पानी को लगभग 20 किलोमीटर बहने में सिर्फ 7 मिनट लगे. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रफ्तार कितनी तेज होगी और कितनी तेज पानी नीचे आया होगा. हम अभी यहाँ मौजूद हैं और जैसा मैंने पहले बताया कि हम बॉर्डर गेट से लगभग 7.7 किलोमीटर दूर है. ये जो लाल डॉट दिख रहा है जो बॉर्डर गेट है वो असल में यहीं पर है.
2: आने वाले हफ्ते में जिरोंग पोर्ट इलाके में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना को देखते हुए बैरियर लेक में पानी का बहाव लगभग 15 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड रहने का अनुमान है. जबकि पानी का फ्लो अभी भी बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह से खतरा और बढ़ता जा रहा है.
3: द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि चाइना के वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक नहीं बल्कि दूसरी नई झील भी देखी है. ये झील नेपाल के लांगटांग लिरुंग, एक पर्वत है लांगटांग लिरुंग, उस पर्वत की उत्तरी ढलान के नीचे बन रही है, ठीक वहीं जहां शुरुआती चट्टान और ग्लेशियर टकराए थे. और अगर ऐसा होता है तो नेपाल के लिए ये अच्छी खबर कतई नहीं होगी. पहले ही बर्बादी का मंजर आपने देखा है. इसके अलावा अगर मौजूदा संकट किसी तरह टल भी गया तब भी भविष्य में नेपाल, भूटान और भारत के नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं, बिहार, इन सबके लिए परिस्थितियां अच्छी नहीं दिखाई देती हैं. और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए अब आप हमारे इस विश्लेषण को जरूर देखिए. सबसे पहले ये बात हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जिस टिबेट में कभी सड़कें बनाना मुश्किल था वहां चाइना ने अंधाधुंध निर्माण कर दिया है. इस निर्माण के कारण तिब्बत का हिमालय क्षेत्र और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है, बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम हो गया है. असल में हिमालय में बहुत ऊंचाई पर जमीन हो, चट्टानों के बीच एक परमाफ्रॉस्ट होता है. अब ये परमाफ्रॉस्ट क्या है? इस परमाफ्रॉस्ट को आप प्राकृतिक सीमेंट कह सकते हैं. प्राकृतिक सीमेंट कहिए या फिर आप इसको गोंद की तरह, मतलब जो इकट्ठा करके चिपका के रखता है पहाड़ों को अपनी जगह से. ये परमाफ्रॉस्ट जो है वो हिलने नहीं देता है चट्टानों को, बर्फ को, पहाड़ की अलग अलग परतों को ये मजबूती से जोड़ कर रखता है. लेकिन जिस तरह पृथ्वी गर्म हो रही है, हिमालय क्षेत्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है, वहां पर प्राकृतिक ये जो एक साथ रखने वाला परमाफ्रॉस्ट है जो जोड़कर रखता है वो प्राकृतिक गोंद ही समझिए पिघलने लगा है. भाई इतना निर्माण होगा, इतना कंस्ट्रक्शन होगा, पहाड़ियों में इस तरह से टनल्स बनाए जाएंगे तो पूरा वो पहाड़ियां हिल जाती हैं और उसके बाद से धीरे धीरे पूरा तापमान बढ़ता है, प्रभाव एक के बाद एक जुड़ता जाता है और फिर ये हालत होती है. क्योंकि ये जो गोंद, ये जो परमाफ्रॉस्ट हम आपको बता रहे हैं, ये परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, इसीलिए पहाड़ों की ढलान कमजोर हो रही है, चट्टानें ज्यादा टूट रही हैं, ग्लेशियर के टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से ये प्रलय आ रही है. संक्षेप में कहें तो पहाड़ों के कमजोर होने से चट्टानें और ग्लेशियर टूटने का जो खतरा बढ़ रहा है उससे हिमालय में बनी ग्लेशियर लेक फट रही है. और अगर ये चीज आगे और बढ़ी तो इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए हम आपको स्क्रीन पर एक मैप दिखाएंगे. लेकिन उससे पहले अगर आप नेपाल, चाइना, भारत की सीमा पर हिमालय क्षेत्र में मार्क किए गए इन डॉट्स को देखेंगे जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आइए चलते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी जो ग्लेशियर झीलें हैं नेपाल में, ये देखिए एक झील फटने से ही इतनी तबाही हुई है जो आप देख रहे हैं. इस लाइन को समझिए और फिर इसके सिग्निफिकेंस को देखिए जो हम बता रहे हैं. क्योंकि एक झील फटने से इतना हुआ है, लेकिन जब आप देखेंगे ये है नेपाल, यहां पर ये जो आप आउटलाइन देख रहे हैं ये नेपाल का बॉर्डर है, ऊपर है चाइना, ठीक है, ये ऊपर हो गया चाइना, ये इधर हो गया भारत इस तरफ. अब ये जो आप ग्लेशियर झीले देख रहे हैं ये ब्लू, दूर से आपको लग रहा है मैप का हिस्सा है लेकिन आप इसको करीब से देखिए कितने सारे डॉट्स हैं. मैं बस एक एरिया में डॉट्स को आपके लिए करके दिखाती हूं कितने सारे डॉट्स हैं. इतने सारे झील तो एक एरिया में है. मतलब इनको जब आप मैग्निफाई करेंगे, जूम इन करके दिखा दीजिए, और ये सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये पूरे इस इलाके में है जो आप देख रहे हैं। ये वाला हिस्सा देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख गए। अब यहां से होते हुए पूरा बढ़ते जाइए, ये जो पूरा एक तरह से ये जोन आप देख रहे हैं ऊपर, ये सारा आपको ऐसे झीलें दिख रही हैं, ऐसे ग्लेशियल झीलें। यही नहीं है, नीचे में भी है, यहां देखिए यहां तक, तो नेपाल वाले हिस्से में भी है। तो आप समझिए कि ये पूरा हिस्सा जो मैंने आपके लिए नीले में किया है, ये पूरा हिस्सा ऐसे, ये इसमें इतनी सारी झीलें हैं, जो अनगिनत झीलें आप कह सकते हैं, और इस वजह से कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है उसका सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब आपको इसका अगला जो है वो दिखा देते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा। हिमाचल में जो तबाही अभी तक हुई है उसमें अगर आप देखेंगे, हिमालय में इस पूरे इलाके में, जब आप इंडिया में, तो 1900 के बाद हिमालय में कई ग्लेशियर्स टूटे हैं। 26 अगस्त को एवलांच और बाढ़ वाली जगह जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाली जगह है वो, ये नेपाल का हिस्सा, फिर आप देख रहे हैं ये भारत, इधर भूटान है, चाइना है। तो 1900 के बाद हिमालय में कई ग्लेशियर्स टूटे हैं, और उसी को यहां पर आप रेड वाले जोन में देख रहे हैं। तो येलो से सर्कल है और रेड जो आप ट्रायंगल, थोड़ा जूम इन कीजिए, जब आप जूम इन करेंगे तो आप दिखा पाएंगे, ये जो रेड ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं, ये सारी ऐसी ग्लेशियर्स हैं जो टूटे हैं। तो साल 1900 के बाद हिमालय में कितने ग्लेशियर्स टूटे हैं उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, और उसी से आपको समझ में भी आ जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर यह खतरा इस वक्त भी इन जगहों पर मंडरा रहा है। तो यहां जरूरी यह है कि तिब्बत में चाइना जो सड़कें, पुल, बड़े बड़े बांध बना रहा है, उनके बारे में एक बार सोचा जाए। और ये सोचने की जरूरत क्यों है, उसके लिए आप अब इस खबर को देख लीजिए। हमने पहले आपको दिखा दिया कितनी सारी वहां झीलें हैं, कितने ग्लेशियर्स टूट चुके हैं पहले, बहुत खतरनाक ये जोन बनता जा रहा है। साल 2020 में नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट आई, अब ये रिपोर्ट कहती थी कि तिब्बत में सड़कें, हाईवे बनाने के लिए 11 नदियों का रास्ता बदला गया, यानी ये नदियां ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जिस रास्ते बह रही थी वो रास्ते बंद कर दिए गए, और इसके कारण नेपाल का दावा है कि 36 हेक्टेयर जमीन चाइना के पास चली गई। यानी मान लीजिए जिस जगह मैं अभी खड़ी हूं, अगर यहां कोई नदी बह रही है तो चाइना उस नदी का रास्ता बदलकर उसे यहां से काफी आगे तक ले जाते हैं, जाता है, और फिर जगह पर कब्जा करके इन्हीं नदियों पर बांध बनाकर पहाड़ों के अंदर बड़ी बड़ी टनल्स बना लेता है। और ये सब जानते हैं कि टनल बनाने के लिए पहाड़ों में कैसे ड्रिलिंग मशीन इस्तेमाल होती है, बहुत आसान काम नहीं होता है, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ों में ड्रिलिंग करके टनल्स बनाना, पूरा इकोसिस्टम वहां का हिल जाता है, पूरे पहाड़ हिल जाते हैं। अब आप ये समझिए कि जब चाइना, भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने अपनी रेस्क्यू टीम, हेलीकॉप्टर्स नेपाल में भेजने की कोशिश की, पेशकश की, तो नेपाल ने इनकार क्यों किया? नेपाल की सरकार ने कहा है कि वो दूसरे देशों से राहत सामग्री, आर्थिक मदद, जरूरी सामान, पैसा भी सब लेने को तैयार है, लेकिन अगर कोई देश अपनी रेस्क्यू टीम, हेलीकॉप्टर्स नेपाल में भेजना चाहता है तो नेपाल इस मदद को लेने से इनकार करता है। अब नेपाल ने यह फैसला तब किया है जब चाइना, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत कई देशों ने मदद की पेशकश की। इससे कई लोगों के मन में यह सवाल आया कि नेपाल की सरकार ने ऐसा क्यों किया है, भाई क्या ये उसकी गलती है, वो आखिर क्यों नहीं सहायता ले रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। अगर इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो यह पता चलता है कि नेपाल के पास इस फैसले के लिए कोई ठोस वजह है। उसे 2015 में भूकंप जब आया तो काफी कुछ सीखा। अप्रैल 2015 में जब नेपाल में लगभग 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, तब नेपाल में दूसरे देशों की फॉरेन रेस्क्यू टीम्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल टीम्स, इंजीनियर्स, अलग अलग देशों के दूसरे विशेषज्ञ भेजे गए। इससे नेपाल में बचाव अभियान को तो गति मिली, लेकिन इसी के साथ उसके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये थी कि उस वक्त नेपाल में इतने सारे अलग अलग देशों के लोग और संगठन एक साथ आ गए, हर टीम को कहां जाना है, किस इलाके में काम करना है, किससे संपर्क करना है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत, कौन सा काम किसके हिस्से में जाएगा, हेलीकॉप्टर्स कहां उतरेगा, अब एक ही जगह पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए उसी हेलीपैड के लिए कई लोग बुकिंग मांग रहे थे, किसे पहले बचाया जाएगा, इन चीजों में नेपाल की सरकार उलझ कर रह गई। सरल भाषा में कहें तो ऐसी बुरी तरह से कंफ्यूजन फैला कि भूकंप से ज्यादा जटिल ये बचाओ अभियान बन गया, और नेपाल की सरकार रेस्क्यू करने वाली टीम्स के बीच तालमेल बैठा नहीं पा रही थी। इसके अलावा उस वक्त नेपाल में जिन अलग अलग देशों से टीमें आई थी उनके बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया, प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, यानी हर देश ये दिखाने लगा कि उसे आपदा प्रबंधन बचाव अभियान में ज्यादा महारत हासिल है। और उस वक्त भूकंप के कई महीनों बाद नेपाल की सरकार ने विदेशों से आई इस मदद की समीक्षा की और ये तय किया कि वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी। इसकी वजह नेपाल की एक स्पष्ट कमांड बनाएगा, नेपाल ही बनाएगा, उसकी सुरक्षा एजेंसियां बचाव अभियान में मदद करेंगी और दूसरे देशों से मदद नहीं ली जाएगी, अभी नेपाल यही कह रहा है। लेकिन हाँ, अगर पैसे दिए जाए, राहत सामग्री दिए जाए तो उसको नेपाल स्वीकार कर रहा है। यहां पर इन तस्वीरों को भी देखिए, दिल टूट जाएगा। इस वक्त मलबे और नदियों से निकाले जा रहे सैकड़ों शवों को नेपाल के अलग अलग अस्पतालों के मुर्दाघरों में ले जाया जा रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज, ये तस्वीरें देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है कि पानी और मलबे के भीषण बहाव के कारण कई शव इस कदर क्षत विक्षत हो चुके हैं कि उनको देख पाना मुश्किल है, क्योंकि अस्पतालों के मुर्दाघर पूरी तरह भर चुके हैं। इसलिए प्रशासन ने अब शवों के चेहरे, कपड़ों और शरीर के विशेष निशानों या शरीर पर गहने की तस्वीरें ली है और इन तस्वीरों को अस्पतालों के बाहर नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जा रहा है। और जब अपनों की तलाश में आए लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो मानो उनका कलेजा फटा जा रहा है। और इनमें भी कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने इन कांपते हाथों से ये देख रहे हैं कि कहीं इनमें कोई शव उनके अपने का तो नहीं। देखिए,

अब आप ये देखिए कि नेपाल 2300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे मुश्किल हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला रहा है। 26 अगस्त को जब नेपाल में प्रलय आई तब वहां एक सुरंग में 450 से ज्यादा लोग फंस गए थे। ये सुरंग रसुवा के सबसे बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की थी। उस वक्त बाढ़ के मलबे और भारी कीचड़ के कारण सुरंग का मुख्य द्वार पूरी तरह छिप चुका था, जिससे शुरुआती तौर पर प्रवेश द्वार को ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। और ऐसा माना जा रहा था कि सुरंग में कीचड़ का मलबा पत्थर आने के कारण 450 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद नेपाली सेना ने अपनी विशेष आपदा राहत टीम्स को इस सुरंग के पास तैनात किया, क्योंकि सुरंग के अंदर बिजली नहीं थी और हर जगह घने कीचड़ की मोटी परतें जमी थी। इसलिए रेस्क्यू टीम ने एक खास तरकीब अपनाई। कई लोगों की जिंदगी इससे बची है। उन्होंने क्रॉलिंग टेक्निक के तहत सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। यानी नेपाली सेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर पेट के बल घिसटते हुए कीचड़ को चीरते हुए टनल के उन हिस्सों तक पहुंचे जहां लोग फंसे हुए थे। इंसानियत की इससे बड़ी तस्वीर नहीं दिख सकती है। हालांकि इसके बाद भी अंदर फंसे श्रमिकों को बाहर लाना आसान नहीं था, क्योंकि टनल के मुहाने पर ही और अंदरूनी हिस्सों में बहुत सारा मलवा, गाद और इतनी मोटी, जिसको कहते हैं स्लेट, जमी थी कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। और यह भी डर था कि रेस्क्यू टीम के साथ सुरंग में फंसे लोग अंदर धंस सकते हैं। इसी के बाद ये फैसला हुआ कि नेपाली सेना के जवान इन श्रमिकों को अपनी पीठ पर लादकर रेंगते हुए सुरंग से बाहर निकलेंगे और इनकी जान बचाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन असंभव माना जा रहा था, उसमें अब तक 350 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और बाकी 100 और लोगों को बाहर लाने की कोशिशें इस वक्त भी चल रही हैं। देखिए,

कई लोग इसे नेपाल फ्लड मिस्ट्री का नाम दे रहे हैं। ऐसी मिस्ट्री, ऐसा रहस्य जो नेपाल और चाइना के दावों के साथ उलझती जा रही है, और आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए जो नेपाल के बेत्रावती बाजार का है। अब जो लोग इस वीडियो के आधार पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि तिब्बत बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर नेपाल के बेत्रावती इलाके में भी पानी का बहाव इतना तेज कैसे था, तो उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये सवाल ही पूरी तरह गलत है। जब लाखों करोड़ों लीटर पानी अचानक नदियों में आता है तो वो कुछ दूर जाने के बाद रुक नहीं जाता है, वो उसी रफ्तार के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक नदियों में बहता है। और यहां नेपाल की प्रलय में भी ऐसा ही हुआ। नेपाल की सरकार क्या कह रही है? उनका कहना है कि यह प्रलय इतना भयानक था कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर त्रिशूली नदी का जलस्तर करीब 9 मीटर बढ़ गया। 9 मीटर का मतलब हुआ बिजली के एक बड़े खंभे जितनी ऊंचाई, आप समझ लीजिए, या फिर लगभग 5 लोगों को मिलाकर जितनी हाइट होगी उतना जलस्तर सिर्फ 30 मिनट के अंदर 9 मीटर बढ़ गया। इससे यह पता चलता है कि ये तमाम ये जो स्थिति है, ये जो सामान्य बाढ़ की घटना ये नहीं थी, बल्कि शायद नेपाल और तिब्बत के इतिहास की सबसे बड़ी प्रलय की घटना थी। और यही कारण है कि इस घटना को लेकर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर चाइना को इसके बारे में कैसे पता नहीं चला, या चाइना ने नेपाल को समय रहते इसकी चेतावनी क्यों नहीं दी। इन आरोपों को लेकर आज काठमांडू में भी काफी हलचल रही, और इसी हलचल के बीच चाइना और नेपाल की तरफ से अलग अलग दावे सामने आए हैं। जैसे नेपाल में चाइना के दूतावास ने कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है कि चाइना ने नेपाल को इस प्रलय की समय रहते जानकारी नहीं दी। चाइना ने इन आरोपों को भी गलत बताया है कि तिब्बत में किसी बांध के टूटने से ये प्रलय आए। चाइना यही कह रहा है कि 26 अगस्त की सुबह नेपाल की तरफ एक भूकंप आया था जिसके कारण पहाड़ों में आइस एवलांच यानी बर्फ का तूफान पैदा हुआ, और बाद में ये पहाड़ के मलबे के साथ मिलकर नदियों में समा गया और इसने एक प्रलय का रूप ले लिया। चाइना यह भी कह रहा है कि इस वक्त आरोप लगाने की नहीं बल्कि एक दूसरे का सहयोग करने की जरूरत है। दूसरी तरफ है नेपाल। नेपाल सरकार ने इस घटना को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल और नेपाल की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का शुरुआती आकलन यह है कि तिब्बत बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर उत्तर में एक ग्लेशियर लेक यानी झील जो है उसमें अचानक धमाका हुआ। बाद में इसी झील का पानी पहाड़ के मलबे के साथ तिब्बत की लेंडे नदी में आया और फिर इसी से ये नेपाल में प्रवेश कर गया। अब नेपाल ये दावा क्यों कर रहा है, उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा। ये वीडियो हमने आपको कल भी दिखाया था, कई बार दिखाया, जिसमें नेपाल बॉर्डर के उस पार तिब्बत के जिरोंग पोर्ट का इमिग्रेशन ऑफिस इस प्रलय में पूरी तरह नष्ट हो गया था। पहली नजर में इस वीडियो को देखकर यही लगता है कि मिट्टी और मलबे का सैलाब दूसरी तरफ से तिब्बत में आया था। लेकिन जब आप इसी जिरोंग पोर्ट की एक साल पुरानी तस्वीर को यहां देखेंगे तो इसमें एक नई कहानी नजर आती है। अब ये जो इमिग्रेशन ऑफिस जो पूरी तरह से पानी से बर्बाद हो गया है, वो सबसे नीचे आपको दिख रहा है जहां पर चाइना का एक फ्लैग आप देख रहे हैं, सफेद बिल्डिंग बड़ी सी। वहीं अगर आप देखिए तो एक तरफ है लहंडे खेला, ये नदी है लहंडे खोला, यहां से पानी आता है, और ये जो केरंग खोला है उसमें जाना है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए इसमें ये दिखता है कि बॉर्डर पर तिब्बत और नेपाल के बीच जो मैत्री पुल बनाया गया है, बीच में आपको एक फ्रेंडशिप ब्रिज अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देखिए उसको ब्लैक पर येलो से, वो मैत्री पुल बनाया गया, उसके नीचे दो नदियां बह रही हैं,
ये दोनों नदियां तिब्बत क्षेत्र से नेपाल में आती हैं। तो ये दोनों नदियां जो है वो बहके आगे जा रही हैं। लेंडे खोला कहते हैं और जो दाएं हाथ पर है उसे किरोंग खोला कहते हैं। अब नेपाल की सरकार ये कह रही है कि तिब्बत में जो झील फटी उसका मलबा बाएं हाथ वाली जो लेंडे नदी है उसमें आया था, और ये इसलिए भी संभव है क्योंकि हमने तिब्बत की साइड से जो वीडियो देखा उसमें सैलाब किरोंग सांगपो नदी की तरफ आता है, जिसका मतलब ये हुआ कि तिब्बत की लेंडे नदी में जो प्रलय आई उसी ने बॉर्डर पर तिब्बत के इस इमिग्रेशन ऑफिस और मैत्री पुल को ध्वस्त किया, और बाद में ये पानी नेपाल की भोटे कोशी नदी और फिर त्रिशूली नदी में आगे बढ़ गया। तो आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये पूरी कहानी है क्या, क्योंकि जब आप इस मैप पर देखेंगे तो ये तो सबसे पहले ये वाली जगह देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये पुल है, ये वो मैत्री पुल है जिसमें आप इधर आप देख रहे हैं चाइना और इधर नेपाल। तो ये वो मैत्री ब्रिज है जिसको आप देख रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच में बनाया गया है, ये वाला पुल वाला एरिया है। अब ये दो नदियां हैं, अब ये दो नदियों में एक है लेंडे खोला, यहां से पानी आया, और ये जो है यहीं से पानी, जब आप इस वीडियो को भी देखेंगे, हम कुछ देर में आपको वीडियो दिखाएंगे, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये पानी एक तरफ से आता हुआ पूरी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। तो ये जो पानी का बहाव है वो ऐसे आता है और ऐसे करके इस पूरे बिल्डिंग की तरफ जाता है। दूसरी नदी जो आप देख रहे हैं ये केरंग खोला नदी है, अब ये चाइना है और यहीं पर ये पूरी बिल्डिंग जो कहती है। तो आप इससे समझ रहे हैं ये जो इमिग्रेशन चेक पोस्ट जो आपको दिख रहा है, जो हमने आपको कल भी दिखाया था, वो इमिग्रेशन चेक पोस्ट जिस पर ये आ रहा है। इसमें आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं बहाव पानी का, ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पानी का बहाव आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, ये वाले पूरे इलाके में दिख रहा है, ये इधर से जो ये लेंडे खोला नदी है उसी से ये पानी आता है और फिर चेक पोस्ट इमिग्रेशन ऑफिस को पूरी तरह से बहा ले जाता है। तो एक बार ये वीडियो भी आपको दिखा देंगे, ये देखिए। अब जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो देखिएगा बाई तरफ से, इस तरफ से जिधर लेंडे खोला नदी है, ये देखिए इधर से ये पानी आता है, और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर नेपाल का ऐसा अनुमान है कि ये प्रलय चाइना के तिब्बत की तरफ से आई, जबकि चाइना ये कह रहा है कि अपनी तरफ से कि नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में भूकंप आया था इसलिए ये पूरी घटना घटी है। हालांकि चाइना के इस दावे पर अब अमेरिका भी सवाल उठा रहा है। पूरी दुनिया में भूकंप और ज्वालामुखी की निगरानी करने वाली अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि शुरुआत में उसे भी ऐसा लगा था कि नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास जो प्रलय आया है, प्रलय आने से पहले सुबह 8:37 पर 4.4 तीव्रता का एक भूकंप आया था, लेकिन बाद में जब इसका गहराई से अध्ययन हुआ तो ये पता चला कि उस समय महसूस किए गए ये झटके भूकंप के थे ही नहीं। अमेरिका की एजेंसी कहती है कि ये सिग्नल हकीकत में ग्लेशियर के टूटने, बर्फ पत्थर के गिरने और उसके बाद मलबे के बहने से पैदा हुए थे। आप सोचिए इतनी ऊंचाई से ये नदियां आ रही हैं, इतने मोमेंटम के साथ जो मलबा है, चीजें हैं, पहाड़ की टुकड़ियां हैं, वो सब अपने साथ तेज रफ्तार से ला रही हैं। तो उसका मोमेंटम ऐसा हो जाता है जैसे कि पूरे इलाके में एक कंपन हो जाए। यानी जिस घटना को शुरुआत में भूकंप समझा गया था वो असल में ग्लेशियर से जुड़ी घटना थी। इसी तरह की बात हिमालय क्षेत्र के संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, उसने भी यही कही है। इस एजेंसी ने नेपाल बॉर्डर के पास तिब्बत के इलाकों की मौजूदा सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया है, और इसमें यह पता चला है कि तिब्बत में करीब 5,150 की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर के ऊपर बनी झील 26 अगस्त की सुबह अचानक खाली हो गई। तो बाढ़ से पहले इस झील का क्षेत्रफल करीब 0.75 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन बाढ़ के बाद यह घटकर 0.61 वर्ग किलोमीटर रह गया। इसका मतलब यह हुआ कि झील का काफी पानी अचानक बाहर निकला और इसी के बाद यह प्रलय आई, और ऐसा इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का अनुमान है जिसके हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इसी तरह का दावा जो है वो नेपाल भी कर रहा है। नेपाल की आपदा प्रबंधन एजेंसी का दावा है
कि तिब्बत में करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ और चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आया। इसके बाद इस मलबे ने तिब्बत की लेंडे कोला नदी का रास्ता रोक दिया। कुछ समय के लिए वो पानी जमा हुआ, लेकिन बाद में जब ये रास्ता खुला तो उस प्रलय ने तिब्बत और नेपाल को अपनी चपेट में ले लिया। और यहां ये सवाल भी उठता है कि चाइना को इस झील के बारे में पता कैसे नहीं चला। ये सवाल न सिर्फ नेपाल में कई एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं, बल्कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर चाइना ने वक्त पर बता दिया होता तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। अब देखिए, चाइना के पास तिब्बत के हिमालय क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए बड़ी संख्या में सैटेलाइट मौजूद है। इनमें भी गाफेन है, गाफेन और याओगान। ये तमाम ऐसे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं चाइना के जो खास तौर पर तिब्बत, हिमालय, इन तमाम इलाकों की निगरानी का ही काम है इनका। जैसे गाफेन जो है वो चाइना के हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, जो तिब्बत के इलाकों की बहुत बारीकी से तस्वीरें ले सकता है। जबकि याओगान जो है वो चाइना के सभी सैटेलाइट्स की एक बड़ी श्रृंखला है। अब चाइना इन्हें आधिकारिक तौर पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहता है, जिनके जरिए दूसरे देशों और भारत में भी सैन्य जासूसी के आरोप लगते हैं। और सोचिए, जब चाइना के पास ऐसे आधुनिक मॉडर्न सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, तो इस बात पर कैसे विश्वास किया जा सके? ये सवाल आज नेपाल में बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि चाइना ने नेपाल के पास तिब्बत में इस झील को पहले कभी देखा ही नहीं, और फिर जब इसका खतरा शुरू हुआ तो इसका अंदाजा ही नहीं लगा, और आखिर क्यों उसने कोई सूचना नहीं दी? यहाँ एक और बड़ी बात यह है कि चाइना और नेपाल के बीच पिछले कई सालों से जल संबंधी समझौते और डेटा शेयरिंग की पूरी व्यवस्था है। और ये व्यवस्था कहती है कि अगर ऊपरी इलाकों में कोई ग्लेशियर लेक बनती है या कोई दूसरा खतरा पैदा होता है तो उसकी जानकारी चाइना द्वारा नेपाल को बिना किसी शर्त के दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद नेपाल का ऐसा आरोप है कि उसे तिब्बत की तरफ से झील के बढ़ने या उसके अचानक फटने की कोई भी चेतावनी पहले से नहीं दी गई, और ये भी लगातार दूसरी बार हुआ है। 8 जुलाई 2025 को भी तिब्बत में ऐसी ही ग्लेशियर झील के अचानक फटने की घटना हुई थी। उसमें भी पानी और मलबे ने नेपाल और तिब्बत के बीच बने मैत्री पुल को नष्ट कर दिया था। 9 लोगों की मौत हुई थी, जिससे नेपाल में कई लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि चाइना उसके साथ संवेदनशील जानकारी साझा क्यों नहीं कर रहा है, और क्या इसके पीछे तिब्बत में चाइना द्वारा बनाए जा रहे बांध, सड़कें, सुरंगे, दूसरे जो ढांचे हैं वो भी हो सकते हैं। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हिमालय क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर वहां की भौगोलिक स्थितियों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। और जब इन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में टनल बनाई जाती है, बांध बनाकर पानी रोका जाता है, या सड़कें और पोर्ट्स बनाए जाते हैं, तो खतरा बढ़ता है, ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ता है, क्योंकि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ऐसी निर्माण गतिविधियां ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बनी ग्लेशियर लेक को नाजुक बना देती हैं। अब ये ग्लेशियर लेक्स हैं, वहां का पूरा जो इकोसिस्टम है वो हिलता है, और संभव है कि नेपाल की सीमा के पास तिब्बत में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। आपको यकीन नहीं होगा कि हिमालय के पहाड़ों में जितना निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बनाया है उसका 15% भी किसी और देश ने नहीं बनाया। 2025 तक चाइना तिब्बत में कुल 125,000 किलोमीटर हाईवे और सड़कों का नेटवर्क बना चुका है। अब सोचिए, यह स्थिति भी तब है जब तिब्बत को दुनिया की रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जहां की ऊंचाई, ठंड, बहुत पतली हवा के कारण यहां सदियों तक आधुनिक सड़क नेटवर्क नहीं था, लेकिन अब यहां सड़कें भी हाईवे जैसी हैं। तिब्बत के इन्हीं पहाड़ों में चाइना ने 1,359 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई है, और अब भी चाइना इस क्षेत्र में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे लाइन बना रहा है जो तिब्बत को चाइना के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी। अब इसी तिब्बत में कुल 8 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो अब भी ऑपरेशनल है, और इसी तिब्बत में 193 हाइड्रो पावर डैम्स या प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो या तो अभी चल रहे हैं, या निर्माणाधीन है, या फिर प्रपोज है, प्रस्तावित है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाती हूं कि इस वक्त तिब्बत क्षेत्र में चाइना कितनी तेजी से अपने जो पहाड़ हैं उनको खोद खोद कर वहां पर बड़े बड़े ढांचे बना रहा है, बांध बना रहा है, और किस तरह से हाइड्रो पार्क के प्रोजेक्ट्स बना रहा है।
तो सबसे पहले ये जो आप ब्लू सर्कल देख रहे हैं, ब्लू वाले जितने डॉट्स आपको दिखेंगे वो सभी हैं हाइड्रो पावर डैम्स। तो आप देख लीजिए, ये नेपाल है यहां पर, और नेपाल के जस्ट ऊपर ये तिब्बत का पूरा इलाका, चाइना आप देख ही रहे हैं, चाइना में ये तिब्बत का इलाका, और तिब्बत में इस वक्त क्या कर रहा है। तो हाइड्रो पावर डैम्स इतने हैं ब्लू, पुल और सुरंगे तो पूछिए मत, मतलब ये आप देख ही रहे हैं कितने सारे हैं डॉट्स, यहां तक है सारे इलाकों में, नदियों के पास जाहिर तौर पर ये हाइड्रो पावर डैम ज्यादा है। एरोडोम और हेलीपैड आप देखिए लाल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब लगभग सोचिए 30-35। रेलवे भी रेड से है, ये कलर कोडिंग में थोड़ी गड़

0: मिक्स हो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा जो लाइट ब्लू है और उस पे डार्क लाइन है ब्लैक का, वो ट्रंक रोड है। तो ये पूरे ये जो सर्कल्स हैं वो इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से तिब्बत में चाइना ने काफी निर्माण किया है। हाइड्रोपावर डैम्स हो, पुल हो, सुरंगे हो, एरोडोम हो, हेलीपैड हो, रेलवे हो, और इन सब के जरिए वो पूरे इलाके में जिस तरह से अपना निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, जब चाइना तिब्बत के इन ऊंचे और मुश्किल पहाड़ों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, तब इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की ये रिपोर्ट कहती है कि हिमालय का जो क्षेत्र भारत, नेपाल और चाइना की सीमा में आता है, वहां भी 47 ग्लेशियर लेक्स मौजूद हो सकते हैं। और इनमें भी जानते हैं सबसे ज्यादा 25 झीलें चाइना के तिब्बत में है, 21 नेपाल में है और एक ऐसी झील इस क्षेत्र में भारत में है। और इसलिए अब बड़ा आरोप यही लग रहा है कि अगर चाइना तिब्बत में अपनी निर्माण गतिविधियों को छिपाने के लिए ऐसी झीलों का खतरा सार्वजनिक करता या इन्हें नेपाल, भूटान, भारत को नहीं बताता तो ये संकट कितना बड़ा हो जाएगा। ये बात हमने आपसे कल भी कही थी कि नेपाल में आई बाढ़ की तस्वीरें तो पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है। हमारी आज तक की टीम भी नेपाल पहुंच गई है, जिसने नेपाल में हुई इस तबाही की लगातार कवरेज की है। लेकिन चाइना को लेकर अब भी सवाल बने हुए हैं, क्योंकि चाइना में हुई तबाही की कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही। अब चाइना का जो सरकारी न्यूज नेटवर्क है, जिसे चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क या CGTN कहा जाता है, उसने नेपाल की सीमा के पास तिब्बत से रिपोर्टिंग तो की है, यह भी दिखाया है कि तिब्बत में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन CGTN कहीं भी बाढ़ की तस्वीरें नहीं दिखाता। वो इसे मड स्लाइड कह रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि चाइना इसे झील फटने से हुई तबाही नहीं बता रहा। तो ये कह रहा है वो कि पहाड़ से जो मिट्टी और मलबा अचानक बहकर नीचे आया, उससे वहां हालात बिगड़े, और ये भी नेपाल के कारण हुआ है। देखिए,
1: We are now on our way to Jilin County in southwest China's Xinjiang Autonomous Region along the Nepal and China border, where a mudslide has struck, caused a major casualty. And we arrived at Chicago Airport this morning, and now we are following a part of a rescue team from China Anan Group and trying to reach the disaster area as quickly as possible. And along the way, we can see some rescue vehicles and personnel are being mobilized towards affected area. Here is still like about 500 kilometers away, so we cannot see many rescue team. But as we reach nearby, we will see full-scale the rescue team.
2: So this search and rescue team have brought search and rescue dogs, as I just mentioned, but they say some of the challenges, including, for example, mudslides. Mudslides will make it even more challenging for search and rescue dogs to smell potential survivors that are trapped underneath. Because in the case of scenario, according to their...
0: अब ये देखिए कि इस प्रलय ने नेपाल को आर्थिक रूप से कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था कितने साल पीछे जा सकती है। इस पूरी घटना में नेपाल की करीब 748 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित हो गई है। ये नेपाल की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 17% है। इसी प्रलय में नेपाल के 9 ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हुए हैं जो ऑपरेशनल थे, यानी चालू थे, जबकि 5 निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए हैं। कुल क्षमता 390 मेगावाट थी। पानी के तेज बहाव और मलबे के कारण नेपाल में 25 मेगावाट का एक सोलर प्लांट प्रभावित हुआ है। नुकसान बहुत हुआ है। यह भारत के लिहाज से भी अहम है, क्योंकि गर्मियों और मानसून के वक्त नेपाल भारत को बिजली का निर्यात करता है और सर्दियों में भारत नेपाल को बिजली का निर्यात करता है। इस बाढ़ में नेपाल चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड रूट बंद हो गया है, जहां से दोनों देशों के बीच 30% का व्यापार होता था। यानी आने वाले दिनों में इससे नेपाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसी बाढ़ में कम से कम 1 दर्जन पुल हो, जैसा कि आप देख रहे हैं, पुल तो जैसे टूट रहे थे खिलौनों की तरह। सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें पूरी तरह तबाह हो गई है। और अगर ग्लोबल टाइम्स के दावे के मुताबिक देखें तो नेपाल की सीमा पर बनी बैरियल झील भी अगले 1-2 दिनों में फट सकती है, और अगर वो फट जाती है तो स्थिति और भी भयानक हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि नेपाल पहले ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल की कुल अर्थव्यवस्था 4,48,000 करोड़ रुपए की है, जबकि चाइना के सिर्फ तिब्बत की कुल अर्थव्यवस्था

0: इससे कुछ कम 3,67,000 करोड़ रुपए की है। यानी नेपाल के सामने इस वक्त संकट बहुत बड़ा है और अगर वहां फिर से ऐसी कोई प्रलय आई तो नेपाल पूरी तरह टूट जाएगा। यह हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि नेपाल की सरकार ऐसा कह रही है कि यह प्रलय इतनी भयानक थी कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर त्रिशूली नदी का जलस्तर जो है वो करीब 9 मीटर बढ़ गया। आप देख रहे हैं 9 मीटर का मतलब जो कि आप समझ लीजिए 5 लोग अगर बैक टू बैक खड़े हों या फिर एक बिजली का पोल, 30 मिनट के अंदर 3 बास्केटबॉल के स्टैंड्स लग जाएं, इतनी ऊंचाई उसकी बढ़ गई। इससे ये पता चलता है कि ये सामान्य बाढ़ की घटना नहीं थी बल्कि ये शायद नेपाल और तिब्बत के इतिहास की सबसे बड़ी प्रलय की घटना थी। बड़ी बड़ी इमारतें, पुल, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सब कुछ जैसे निगल गया, जलस्तर इतना बढ़ गया था। और यहाँ आपको नेपाल के सांसद हर्क साम्पांग राई को भी सुनना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि अगर चाइना समय रहते नेपाल को पर्याप्त जानकारी देता तो शायद नेपाल में इतनी बड़ी आपदा नहीं आती। सुनिए।
1: चीन चाहिँ प्रविधिले एकदम सुसज्जित भनेर हामीले त बुझेका छौँ। अब त्यहाँबाट त्यो आयो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारलाई जानकारी भयो कि भएन कि होइन त्यो चिज हो। अब त्यो त त्यहाँ माथिबाट सुरु भएको रहेछ, जानकारी हुनु पर्थ्यो। त्यो यदि त्यसो भएको भए त्यहाँनिर भनौँ न जति क्षति भयो, अब त्यो भौतिक क्षति त अब बोके घर बोकेर लाने कुरो भएन, तर मानवीय क्षति हुन चाहिँ त्यहाँबाट बस्थ्यो होइन। पूर्व सूचना प्रणाली चाहिँ त्यसको लागि हो खासमा।
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। समय को समझना समझदारी है, समय पर समझना जिम्मेदारी।
2: उत्तर प्रदेश में मची सियासत की करते हैं, यूपी की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर जंग तेज हो गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर जेपीएनआईसी से लेकर एक्सप्रेस वेज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो पलटवार कर रही है और अखिलेश सरकार के दौर के खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है।
3: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी जेपीएनआईसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जेपीएनआईसी को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
4: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। जेपीएनआईसी बीजेपी ने जेपी बेच दिया।
3: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपीएनआईसी के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़, इसके बावजूद काम अधूरा रहा। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
5: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
3: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं बीजेपी का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
4: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
3: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था, राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है जिसको लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
5: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे।
3: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं, और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
2: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया, और इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चर्चा उनके मुसलमानों पर दिए गए बयान की हो रही है। अब उनके बयान पर सियासत भी जबरदस्त है।
6: अमेरिका के न्यूयॉर्क में मानवता को लेकर कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे। मोहन भागवत ने यूं तो धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में रह रहे मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। पहले वो बयान सुनिए।
7: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
6: मोहन भागवत ने उधर न्यूयॉर्क में बयान दिए और यहाँ हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई। मोहन भागवत के बयान को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हाथों हाथ लिया।
8: हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ, अजीज रिश्तेदार, भाई, नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है।
9: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहनाया जाए।
6: मोहन भागवत के बयान ने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया। विपक्ष भागवत के बहाने बीजेपी को घेरने लगी।
10: अपने जो उनके निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी उनके आचरण की समीक्षा करके उनको उनके बारे में निर्णय ले ले। मोहन आदरणीय भागवत जी,
11: केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री कौन सी जुबान बोलते हैं, मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, तीन चार को तो तुरंत आप फौरी तौर पे गिन सकते हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान के सर जमी पे एक बात और अमेरिका की धरती पे सुविधा अनुसार दूसरी बात, ये विरोधाभास देश को लील लेगा।
6: मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत सुलगी हुई है। आज तक ब्यूरो।
2: आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच में विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच ये बयानबाजी तेज हुई है।
6: सवर्ण छात्रों ने जिस रोज से आरक्षण में बदलाव के लिए आवाज उठाई उसी रोज से आरक्षण को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी। इसी सियासत के जोर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दे दिया और इसी बयान ने एनडीए में बवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान नाराज हो गए।
12: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहां कहा गया कि आर्थिक आधार पे, तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की। जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें, आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें, वो आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें, जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है, तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। माझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो क्या माझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें।
6: चिराग पासवान सीधे सीधे जीतन राम मांझी का इस्तीफा मांगने लगे, तो जीतन राम मांझी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। अब मांझी ने भी चिराग का इस्तीफा मांग लिया है।
13: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा, हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।
6: मतलब आरक्षण पर एनडीए के नेताओं ने आपस में ही विवाद कर लिया है। इन बयानों के बीच में संतोष सुमन का बयान दोबारा आया है।
14: मैंने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों को, चाहे किसी को भी, तो समाज में कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ तक अभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुँचा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको संवेदना रखनी चाहिए और ऐसी नीति और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको भी आरक्षण का लाभ हो सके।
6: अब आरक्षण पर कोहराम मचा हुआ है। एनडीए के भीतर ही नेता एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: अब आज जयपुर की, जहां पर नीट पीजी की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ है और छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान बार बार लाइट कटी, कंप्यूटर बंद हुए, जिससे उनकी परीक्षा प्रभावित हुई। छात्रों के हंगामे के बाद इस सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है।
6: ये छात्रों का आक्रोश है, ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, ये शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों की नारेबाजी है। तस्वीरें जयपुर के सीतापुर में एक सेंटर की है जहां नीट पीजी की परीक्षा होनी थी। वैसे तो देश भर के 1000 से ज्यादा सेंटर्स पर आज नीट पीजी की परीक्षा हुई, मगर जयपुर के सीतापुर में ये परीक्षा नहीं हो सकी। आरोप है कि बिजली न होने से परीक्षा में देरी हुई। बाद में लगातार पावर कट हुआ तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द हुई तो छात्र और उनके परिजनों की आंखों में आंसू आ गए।
15: MBBS की तैयारी कर रही है, पीजी की तैयारी में लगा हुआ है, कितना पढ़ना पड़ता है, इस दोबारा पेपर देगा, इसका ट्रॉमा हम नहीं झेल सकते। 3 साल पीजी की उसमें लगेगा, वहाँ पे भी ट्रॉमा है। इनको एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। आज पेपर इजी आया था, इन लोगों का अगर एग्जाम होता है तो प्लीज आप इनको एडिशनल बेनिफिट।
16: उसमें न AC है, 3.5 घंटे तक कोई एग्जाम देगा, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता। मैं पूरे पसीने में हो गया था स्टार्टिंग से।
17: अगर 9:15 के आसपास 36 क्वेश्चंस अगर बट चुके हैं तो ये पेपर लीक है। क्या पता किसी और सेंटर पे कोई इन 36 क्वेश्चन को देख चुका हो। 36 क्वेश्चन जानते हैं आप कितने होते हैं, सेम नंबर पे 1000 रैंक में चेंज आ जाती है। क्लस्टरिंग इतनी गंदी होती है, सेम क्वेश्चन, सेम पेपर पे, सेम क्वेश्चन पे। तो अगर
18: ना लाइट गई ना कुछ गया, सिर्फ कंप्यूटर बंद हो गया ऑटोमेटिक, ऐसे कैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और ये सिस्टम में ग्लीच नहीं है, ये पेपर लीक है, नीचे हैकिंग चल रही थी, कोई भाई पैसे दे के पास हो चुका है।
6: छात्राओं का गुस्सा फूटा और छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे।
19: जयपुर में नीट पीजी एग्जाम के बीच बिजली गुल हुई और उसके बाद अभ्यर्थी थे जो कि एग्जाम छोड़कर बाहर आ गए और अब परीक्षा सेंटर के बाहर ये प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें देखिए, जो अभ्यर्थी है वो नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर ये बीच एग्जाम छोड़कर यहां पर आ गए, जिसके बाद यहां पर ये एग्जाम सेंटर के बाहर यहां पर हंगामा बरपा। ये देखिए अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, आखिरों से इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, कब हुई है बिजली गुल हुई?
20: सर ये जब हम एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे के लिए बिजली गुल हो गई, इनके सारे सिस्टम बंद हो गए। उसके बाद में डेढ़ घंटे में कम से कम 5 से 7 बार है सिस्टम बंद हुआ है, और हर बार कम से कम 5-10 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं और बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, खुलेआम चीटिंग हो रही है।
6: छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है, अब ये परीक्षा 5 सितंबर को होगी। विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
2: पंजाब के संगरूर में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ डीसी दफ्तर पहुंच गए हैं। दोनों ही मुख्य रास्तों को घेर कर लंबे धरने की तैयारी पूरी कर ली है।
6: भारत यूएस ट्रेड डील के विरोध में फिर से उतर आए हैं पंजाब के किसान। संगरूर में डीसी ऑफिस के बाहर किसानों ने तंबू गाड़ दिया है। किसानों के पास राशन, चारपाई, चूल्हे, पंखे और एसी तक मौजूद है। ट्रॉलियों को ही रहने खाने का ठिकाना बना लिया गया है। किसानों ने धरना स्थल को ही अपना पूरा आशियाना बना लिया है। ट्रॉलियों के भीतर चारपाइयां बिछ चुकी हैं, राशन का पूरा बंदोबस्त है और चूल्हे भी चढ़ा दिए गए हैं। लंबे समय तक डटे रहने के इरादे से जरूरत का हर सामान पहले ही जुटा लिया गया है। वहीं भीषण गर्मी से राहत के लिए ट्रॉलियों में पंखे लगाए गए हैं। इस पूरे इंतजाम से किसानों का इरादा साफ नजर आता है, वे अपनी मांगों पर लंबे समय तक प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इस धरने की मुख्य वजह प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील है, जिससे किसान अपनी आमदनी पर बड़ा खतरा मान रहे हैं। इसके अलावा किसान मजदूरों की पूरी कर्ज माफी, फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और नई कृषि नीति लागू करने की मांग भी जोर शोर से उठा रहे हैं। यह पूरा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की अगुवाई में खोला गया है। संगठन ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस बात नहीं बनती तब तक ये धरना जारी रहेगा। कमलजीत संधु के साथ कुलवीर सिंह, संगरूर आज तक।
2: अब बात करेंगे चित्रकूट में आए सैलाबी संकट की, जहां पर मंदाकिनी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर भारी आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट डूब गए हैं, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, लोग संकट में घिरे हैं और लोगों की मदद के लिए लगातार इसके ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बीच में पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।
21: आसमान देखिए मौसम कैसा है।
22: ये इधर कुछ दो आदमी लाल जाने के होंगे।
3: पानी में तैरता हुआ शहर देखा है कभी? अब देख लीजिए, जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही है। शहर में सैलाब आया है, दुकान मकान सब पानी में डूबे हुए। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी।
23: चित्रकूट जनपद में मंदाकिनी नदी ने रौद रूप धारण कर पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे कल मंदाकिनी नदी लगभग 9 मीटर के ऊपर बह रही थी, जिससे रामघाट का जो एरिया था पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। जिन सड़कों पर कभी वाहन चलते थे वहां नाव चलने लगी थी। मंदाकिनी नदी के बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि मध्य प्रदेश प्रशासन को यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना पड़ा है, और SDTRF टीम जो यूपी प्रशासन था, SDRF टीम और PAC टीम को लगा करके जो लोग अपने घरों में फंसे थे उनको रेस्क्यू करके बचाया गया है।
3: बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए, लोग फंसे हुए, बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब है कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ इस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है।
21: अभी आप आसमान देखिए मौसम कैसा है।
0: सर बोर्ड पे अगर खाना है तो दे दो, जो बच्चे हैं उनको खाना दे दो, निकालो इनको भाई, आप लोग बचा सकते हो उनको उतारो।
3: दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है, लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई।
1: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अतिशीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और इन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए।
3: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है, नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
4: इस हम खड़े हैं रामघाट पे, जहाँ मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है, वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें, यहां पर सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं, लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं, जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है, यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से लगभग आधा दर्जन से लोगों का गाँव का संपर्क टूट गया है।
3: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
5: और पानी का जो जल स्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें पूरी प्रकार से। जहाँ पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट्स, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
3: संकट बड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है, कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके।
5: आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है, वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है, कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है, तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं, सभी व्यवस्थाएं की गई है।
3: अब इन तस्वीरों को देखिए, ये नेशनल हाईवे 35 पर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर बना पुल था जिसे मंदाकिनी की लहरें अपने साथ बहा ले गई।
4: ऐसे हम खड़े हैं उसी मंदाकिनी रोड के पुल पर, जहां इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह मंदाकिनी नदी का मेन पुल है जो NH 35 पे यह पुल बनाया गया है जो शहर को जोड़ता है, उसी रास्ते से प्रयागराज के लिए जाया जाता है। लेकिन कल मंदाकिनी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पुल के ऊपर से यहाँ पानी बह रहा था, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी के पुल का अप्रोच रोड है वह उसका रोड का लगभग 20 मीटर नीचे धस गया है, जिसकी वजह से ये अप्रोच रोड का जो एक कोना है वह हट गया है। यहाँ पर पुल को बनाने के लिए जो कर्मी है यहाँ पर लगे हुए हैं।
3: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और उन तक मदद पहुंचाई। दिन रात लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसी ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। अखिलेश कुमार सोनकर, चित्रकूट आज तक।
2: अब आज नेपाल में मचे हाहाकार के, नेपाल में तबाही के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जिन इलाकों में यह तबाही सबसे ज्यादा हुई है वहां पर पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सड़कें टूट चुके हैं, संपर्क के साधन ठप हैं और दुर्गम पहाड़ों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है। नुवाकोट एयरबेस से लगातार उड़ाने भरी जा रही है, कहीं लोगों को निकालने के लिए, कहीं राहत पहुंचाने के लिए। देखिए इन पहाड़ों में जिंदगी बचाने की जंग आखिर कैसे लड़ी जा रही है।
3: नेपाल में आपदा ग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है, इसको ऐसे समझिए कि नुवाकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता है, कुछ लोगों को उतारता है
7: और फिर जरूरी सामान लेकर उन दुर्गम पहाड़ों की ओर उड़ जाता है जहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
8: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोगों को बचाया जा रहा है।
7: अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो नुआकोट एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के इंजन कभी बंद नहीं होते। रेस्क्यू टीमें लगातार उड़ान भर रही हैं। नेपाली सेना के साथ साथ सिविल हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में लगा दिए गए हैं।
8: लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर काफी तेजी से चल रहे हैं। एक के बाद एक उड़ाने हैं हेलीकॉप्टर, या तो जो सैनिक हैं या फिर जवान रेस्क्यूअर हैं उन्हें एयरड्रॉप कर रहे हैं या फिर इसके साथ साथ खाना पीना प्रभावित इलाकों
7: नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों में जाने का एकमात्र तरीका ये हेलीकॉप्टर ही है, क्योंकि रसुआ समेत कई इलाके पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गए हैं।
8: नुआकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है। जहाजों की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
7: इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, जिंदगियों को मलबे में सिमटते देखा। कुछ लोग किस्मत वाले भी थे जो किसी तरह से बच गए।
8: आप लोग किस इलाके में थे? कितने दिन से थे आप लोग वहाँ पे? पाँच दिन। तो वहाँ पर क्या स्थिति थी? खाना पीना था? कितने दिन से छुटे हुए थे आपको? कितने लोग थे आप लोग जो वहाँ पे थे?
7: रसुआ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए जो लोग किस्मत से बच भी गए हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
9: बाहर दिना है।
8: आप लोग वहीं कैसे पाए?
9: लैंडस्लाइड हुआ है।
8: तो आप लोग मतलब बचे कैसे वहाँ पे? जब आए तो कहाँ गए थे?
9: ऊपर से चढ़ा गए।
7: रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को बेस कैंप में फर्स्ट एड दी जा रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास ही मेडिकल कैंप लगाया है जहां पीने के पानी के साथ साथ जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।
8: इस आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए नेपाली सेना ने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप तैयार किया है। एक चौथा फिर अस्पताल आप समझ लीजिए एयर बेस है, तो जहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है, उसके बाद जहाँ उनका इलाज किया जाता है और उसके बाद कई बार जो गंभीर खतरे में है उन्हें तुरंत काठमांडू में लिफ्ट कर लिया जाता है। आप समझिए कि जिस तरह के लोगों की सुविधाएं आई हैं, जो पानी के बहाव में थे, मलबे के बहाव में थे, किसी का दम घुट रहा था, उन सबको ला कर बड़ी चुनौती है। और इसीलिए जितनी एजेंसियां हैं, जितने हाथ हैं, हर कोई मदद के लिए खड़ा है। एक तरफ नेपाल की सेना है, उसको अपने जो अंजाम के लिए मेडिकल कैंप में उनका ख्याल रखा जा रहा है, इलाज पहुँचाया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है।
7: आशुतोष मिश्रा, नुआकोट बेस कैंप, नेपाल। आज तक
2: रूस ने इस महीने यूक्रेन की राजधानी कीव को इतने जख्म दिए हैं कि उन्हें भरने में कई साल लग जाएंगे। पिछले 3 दिन से रूस लगातार मिसाइल और ड्रोन से बम बरसा रहा है जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। रिहायशी इलाकों में कई इमारतों में इन हमलों के बाद आग लग गई जिसे बुझाने में बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को सबक सिखाने की चेतावनी दी है।
3: कीव में रूसी हमले ने मचाया कोहराम। एयर स्ट्राइक में 37 लोगों की गई जान। आग की लपटों में घिरे दफ्तर दुकान। कीव एक बार फिर दहल रहा है। कीव एक बार फिर रूसी हमलों का शिकार बना है। यूक्रेन की राजधानी की ये तस्वीरें तबाही की सारी कहानी बयां कर रही हैं। रूसी बमबारी ने कीव और आसपास के कई इलाकों पर इतने बम बरसाए हैं कि 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लगातार तीसरी रात भर रूस के ड्रोन बम बरसाते रहे, एक के बाद एक धमाके होते रहे। रिहायशी इलाकों की कई इमारतों में आग लग गई और लोग फंस गए। सारी रात बचाव अभियान चलाया गया और आग बुझाने की कोशिश की जाती रही। धू धू कर जलता ये वेयरहाउस तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। धमाके के साथ ही इसमें आग लग गई और काले धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कई घंटे लग गए। रूसी हमलों ने कीव रीजन में ही नहीं ओडेसा में भी भारी तबाही मचाई है, जहां एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए।
10: І станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальною операцією. Мої співчуття усім рідним та близьким. Завали ще розбирають, і кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям.
3: रूसी मिसाइलें और ड्रोन लगातार अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन एंटी मिसाइल सिस्टम न होने से यूक्रेन इन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: एसईओ समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की नई उड़ान पर जोर। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में FIR दर्ज। SC ST एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने करवाया केस। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के JP NIC पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का मुद्दा उठाया, कहा इन लोगों ने खाया पैसा। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप की हत्या के मामले में खुलासा। ड्राइवर ने ही दो दोस्तों के साथ मिलकर मारी गोली। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। और नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा। फिर उफान पर त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब आज उत्तर प्रदेश में मची सियासत की करते हैं। यूपी की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर जंग तेज हो गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर JP NIC से लेकर एक्सप्रेसवेज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। दूसरी तरफ BJP है जो पलटवार कर रही है और अखिलेश सरकार के दौर के खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है।
1: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी JP NIC। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर JP NIC को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
2: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। JP NIC BJP ने JP बेच दिया।
1: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ JP NIC के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। CM योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़। इसके बावजूद काम अधूरा रहा। CM योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
3: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
1: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं BJP का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
2: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है जिसको लेकर CM योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
3: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ सड़क बिजली पानी कानून व्यवस्था रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं, और BJP के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया, और इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चर्चा उनके मुसलमानों पर दिए गए बयान की हो रही है। अब उनके बयान पर सियासत भी जबरदस्त है।
4: अमेरिका के न्यूयॉर्क में मानवता को लेकर कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे। मोहन भागवत ने यूं तो धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में रह रहे मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। पहले वो बयान सुनिए।
5: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
4: मोहन भागवत ने उधर न्यूयॉर्क में बयान दिए और यहाँ हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई। मोहन भागवत के बयान को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हाथों हाथ लिया।
6: हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं, और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ, अजीज रिश्तेदार, भाई, नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है।
7: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहनाया जाए।
4: मोहन भागवत के बयान ने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया। विपक्ष भागवत के बहाने बीजेपी को घेरने लगी।
8: अपने जो उनके निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी उनके आचरण की समीक्षा करके उनको उनके बारे में निर्णय ले ले। मोहन आदरणीय भागवत जी,
9: केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री कौन सी जुबान बोलते हैं? मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, तीन चार को तो तुरंत आप फौरी तौर पे गिन सकते हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान के सरजमी पे एक बात और अमेरिका की धरती पे सुविधानुसार दूसरी बात, ये विरोधाभास देश को लील लेगा।
4: मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत सुलगी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच में विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच ये बयानबाजी तेज हुई है।
4: सवर्ण छात्रों ने जिस रोज से आरक्षण में बदलाव के लिए आवाज उठाई उसी रोज से आरक्षण को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी। इसी सियासत के जोर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दे दिया, और इसी बयान ने एनडीए में बवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान नाराज हो गए।
10: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहां कहा गया कि आर्थिक आधार पे। तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें वो आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। मांझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या मांझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें।
4: चिराग पासवान सीधे सीधे जीतन राम मांझी का इस्तीफा मांगने लगे तो जीतन राम मांझी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। अब मांझी ने भी चिराग का इस्तीफा मांग लिया है।
11: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।
4: मतलब आरक्षण पर एनडीए के नेताओं ने आपस में ही विवाद कर लिया है। इन बयानों के बीच में संतोष सुमन का बयान दोबारा आया है।
12: मैंने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों को, चाहे किसी को भी, तो समाज में कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ तक अभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुँचा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको संवेदना रखनी चाहिए और ऐसी नीति और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको भी आरक्षण का लाभ हो सके।
4: अब आरक्षण पर कोहराम मचा हुआ है। एनडीए के भीतर ही नेता एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज जयपुर की, जहां पर नीट पीजी की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ है और छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान बार बार लाइट कटी, कंप्यूटर बंद हुए जिससे उनकी परीक्षा प्रभावित हुई। छात्रों के हंगामे के बाद इस सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है।
4: ये छात्रों का आक्रोश है, ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, ये शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों की नारेबाजी है। तस्वीरें जयपुर के सीतापुर में एक सेंटर की है जहां नीट पीजी की परीक्षा होनी थी। वैसे तो देश भर के 1000 से ज्यादा सेंटर्स पर आज नीट पीजी की परीक्षा हुई, मगर जयपुर के सीतापुर में ये परीक्षा नहीं हो सकी। आरोप है कि बिजली न होने से परीक्षा में देरी हुई। बाद में लगातार पावर कट हुआ तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द हुई तो छात्र और उनके परिजनों की आंखों में आंसू आ गए।
13: MBBS की तैयारी कर रही है, पीजी की तैयारी में लगा हुआ है, कितना पढ़ना पड़ता है, इस दोबारा पेपर देगा, इसका ट्रॉमा हम नहीं झेल सकते। 3 साल पीजी की उसमें लगेगा, वहाँ पे भी ट्रॉमा है। इनको एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। आज पेपर इजी आया था, इन लोगों का अगर एग्जाम होता है तो प्लीज आप इनको एडिशनल बेनिफिट।
14: उसमें न AC है, 3.5 घंटे तक कोई एग्जाम देगा, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता। मैं पूरे पसीने में हो गया था स्टार्टिंग से।
15: अगर 9:15 के आसपास 36 क्वेश्चंस अगर बट चुके हैं तो ये पेपर लीक है। क्या पता किसी और सेंटर पे कोई इन 36 क्वेश्चन को देख चुका हो। 36 क्वेश्चन जानते हैं आप कितने होते हैं, सेम नंबर पे 1000 रैंक में चेंज आ जाती है। क्लस्टरिंग इतनी गंदी होती है, सेम क्वेश्चन, सेम पेपर पे, सेम क्वेश्चन पे। तो अगर
16: ना लाइट गई ना कुछ गया, सिर्फ कंप्यूटर बंद हो गया ऑटोमेटिक, ऐसे कैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और ये सिस्टम में ग्लीच नहीं है, ये पेपर लीक है, नीचे हैकिंग चल रही थी, कोई भाई पैसे देके पास हो चुका है।
4: छात्राओं का गुस्सा फूटा और छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे।
17: जयपुर में नीट पीजी एग्जाम के बीच बिजली गुल हुई और उसके बाद अभ्यर्थी थे जो कि एग्जाम छोड़कर बाहर आ गए और अब परीक्षा सेंटर के बाहर ये प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें देखिए, जो अभ्यर्थी है वो नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर ये बीच एग्जाम छोड़कर यहां पर आ गए, जिसके बाद यहां पर ये एग्जाम सेंटर के बाहर यहां पर हंगामा बरपा। ये देखिए अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, आक्रोश है, इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, कब ये बिजली गुल हुई?
18: सर ये जब हम एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे के लिए बिजली गुल हो गई, इनके सारे सिस्टम बंद हो गए। उसके बाद में डेढ़ घंटे में कम से कम 5 से 7 बार सिस्टम बंद हुआ है और हर बार कम से कम 5-10 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं और बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, खुलेआम चीटिंग हो रही है।
4: छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 5 सितंबर को होगी। विशाल शर्मा, जयपुर, आज तक।
0: अब बात करेंगे चित्रकूट में आए सैलाबी संकट की, जहां पर मंदाकिनी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर भारी आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट डूब गए हैं, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, लोग संकट में घिरे हैं और लोगों की मदद के लिए लगातार इसके ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बीच में पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।
19: आसमान देखिए मौसम कैसा है।
20: ये इधर कुछ दो आदमी लाल जाने के होंगे।
21: पानी में तैरता हुआ शहर देखा है कभी? अब देख लीजिए, जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही है। शहर में सैलाब आया है, दुकान मकान सब पानी में डूबे हुए। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी।
22: चित्रकूट जनपद में मंदाकिनी नदी ने रौद रूप धारण कर पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे कल मंदाकिनी नदी लगभग 9 मीटर के ऊपर बह रही थी, जिससे रामघाट का जो एरिया था पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। जिन सड़कों पर कभी वाहन चलते थे वहां नाव चलने लगी थी। मंदाकिनी नदी के बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि मध्य प्रदेश प्रशासन को यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना पड़ा है और SDPRF टीम जो यूपी प्रशासन था, SDRF टीम और PAC टीम को लगा करके जो लोग अपने घरों में फंसे थे उनको रेस्क्यू करके बचाया गया है।
21: बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए, लोग फंसे हुए हैं। बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब है कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ इस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है।
19: अभी आप आसमान देखिए मौसम कैसा है। ऊपर बोर्ड पे अगर खाना है तो दे दो, जो बचे हैं उनको खाना दे दो, निकालो इनको भाई, आप लोग बचा सकते हो उनको उतारो।
21: दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है।
23: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अतिशीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और इन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए।
21: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
24: इसम खड़े हैं रामघाट पे, जहां आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है, वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें, यहां पर सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं। लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं। जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से लगभग आधा दर्जन से लोगों का गाँव का संपर्क टूट गया है।
21: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
25: और पानी का जो जल स्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें पूरी प्रकार से। जहां पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहां पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट्स, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
21: संकट बड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है। कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके।
25: आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है, वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है, कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है, तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।
21: अब इन तस्वीरों को देखिए, ये नेशनल हाईवे 35 पर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर बना पुल था जिसे मंदाकिनी की लहरें अपने साथ बहा ले गई।
1: खड़े हैं उसी मंदाकिनी रोड के पुल पर जहाँ इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह मंदाकिनी नदी का मेन पुल है जो NH 35 पे यह पुल बनाया गया है जो शहर को जोड़ता है, उसी रास्ते से प्रयागराज के लिए जाया जाता है। लेकिन कल मंदाकिनी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पुल के ऊपर से यहाँ पानी बह रहा था, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी के पुल का अप्रोच रोड है वह उसका रोड का लगभग 20 मीटर नीचे धस गया है, जिसकी वजह से ये अप्रोच रोड का जो एक कोना है वह हट गया है। यहाँ पर पुल को बनाने के लिए जो कर्मी है यहाँ पर लगे हुए हैं।
21: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और उन तक मदद पहुंचाई। दिन रात लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसी ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। अखिलेश कुमार सोनकर, चित्रकूट आज तक।
0: अब आज नेपाल में मचे हाहाकार के नेपाल में तबाही के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जिन इलाकों में यह तबाही सबसे ज्यादा हुई है वहां पर पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सड़कें टूट चुके हैं, संपर्क के साधन ठप हैं और दुर्गम पहाड़ों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है। नुवाकोट एयरबेस से लगातार उड़ाने भरी जा रहे हैं, कहीं लोगों को निकालने के लिए, कहीं राहत पहुंचाने के लिए। देखिए इन पहाड़ों में जिंदगी बचाने की जंग आखिर कैसे लड़ी जा रही है।
21: नेपाल में आपदाग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है, इसको ऐसे समझिए कि नुवाकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता है, कुछ लोगों को उतारता है और फिर जरूरी सामान लेकर उन दुर्गम पहाड़ों की ओर उड़ जाता है जहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
2: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोगों को बचाया जा रहा है।
21: अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो नुवाकोट एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के इंजन कभी बंद नहीं होते, रेस्क्यू टीमें लगातार उड़ान भर रही हैं। नेपाली सेना के साथ साथ सिविल हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में लगा दिए गए हैं।
2: लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर काफी तेजी से चल रहे हैं, एक के बाद एक उड़ाने हैं हेलीकॉप्टर, या तो जो सैनिक हैं या फिर जवान रेस्क्यूअर हैं उन्हें एयर ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर उसके साथ साथ खाना पीना प्रभावित इलाकों में जा रही है।
21: नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों में जाने का एकमात्र तरीका ये हेलीकॉप्टर ही है, क्योंकि रसुआ समेत कई इलाके पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गए हैं।
2: नुवाकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है, जहाजों की संख्या हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहे हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
21: इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, जिंदगियों को मलबे में सिमटते देखा। कुछ लोग किस्मत वाले भी थे जो किसी तरह से बच गए।
2: आप लोग किस इलाके में थे? कितने दिन से थे आप लोग वहाँ पे? तो वहाँ पर क्या स्थिति थी, खाना पीना था?

0: रसुआ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है, वहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए जो लोग किस्मत से बच भी गए हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
1: बाहर जीना है
2: आप लोग, वहीं कैसे
1: पाएंगे? हाँ, स्लाइड हुआ है।
2: तो आप लोग मतलब बचे कैसे वहाँ पे? जब आए तो कहाँ गए थे?
1: ऊपर से चढ़ाए
2: तो फिर फोन कॉल लग रहा था, बात खाना पीना
1: तो ठीक है, लेकिन फोन तो नहीं है।
0: रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को बेस कैंप में फर्स्ट एड दी जा रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास ही मेडिकल कैंप लगाया है, जहां पीने के पानी के साथ साथ जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।
3: इस आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए नेपाली सेना ने यहां पर एक मेडिकल कैंप तैयार किया है। एक चौथा फिर अस्पताल बेस है, तो जहां पर लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है, उसके बाद इलाज किया जाता है, और उसके बाद कई बार जो गंभीर खतरे में है उन्हें तुरंत काठमांडू में एडमिट कर लिया जाता है। आप समझिए कि जिस तरह के लोगों की स्थितियां आई है, जो पानी के बहाव में थे, मलबे के बहाव में थे, किसी का दम टूट रहा था, उन सबको ला सकती बड़ी सी चुनौती है, और इसीलिए जितनी एजेंसियां हैं, जितने हाथ हैं, हर कोई मदद के लिए खड़ा है। इधर नेपाल की सेना ने जो अंजाम मेडिकल कैंप में उनका ख्याल रखा जा रहा है, इलाज पहुंचाया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है।
0: आशुतोष मिश्रा, नुआकोट बेस कैंप, नेपाल। आज तक
4: रूस ने इस महीने यूक्रेन की राजधानी कीव को इतने जख्म दिए हैं कि उन्हें भरने में कई साल लग जाएंगे। पिछले 3 दिन से रूस लगातार मिसाइल और ड्रोन से बम बरसा रहा है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। रिहायशी इलाकों में कई इमारतों में इन हमलों के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने में बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को सबक सिखाने की चेतावनी दी है।
5: कीव में रूसी हमले ने मचाया कोहराम। एयर स्ट्राइक में 37 लोगों की गई जान। आग की लपटों में घिरे दफ्तर दुकान। कीव एक बार फिर दहल रहा है। कीव एक बार फिर रूसी हमलों का शिकार बना है। यूक्रेन की राजधानी की ये तस्वीरें तबाही की सारी कहानी बयां कर रही हैं। रूसी बमबारी ने कीव और आसपास के कई इलाकों पर इतने बम बरसाए हैं कि 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लगातार तीसरी रात भर रूस के ड्रोन बम बरसाते रहे, एक के बाद एक धमाके होते रहे। रिहायशी इलाकों की कई इमारतों में आग लग गई और लोग फंस गए। सारी रात बचाव अभियान चलाया गया और आग बुझाने की कोशिश की जाती रही। धू धू कर जलता ये वेयर हाउस तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। धमाके के साथ ही इसमें आग लग गई और काले धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कई घंटे लग गए। रूसी हमलों ने कीव रीजन में ही नहीं, ओडेसा में भी भारी तबाही मचाई है, जहां एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए।
6: Станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальною операцією. Мої співчуття усім рідним та близьким. Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям.
5: रूसी मिसाइलें और ड्रोन लगातार अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन एंटी मिसाइल सिस्टम न होने से यूक्रेन इन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: एसईओ समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की नई उड़ान पर जोर। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में FIR दर्ज। SC/ST एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने करवाया केस। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के JP NIC पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का मुद्दा उठाया, कहा इन लोगों ने खाया पैसा। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप की हत्या के मामले में खुलासा। ड्राइवर ने ही दो दोस्तों के साथ मिलकर मारी गोली। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। और नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा। फिर उफान पर त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बात उत्तर प्रदेश में मची सियासत की करते हैं। यूपी की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर जंग तेज हो गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर JP NIC से लेकर एक्सप्रेसवेज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। दूसरी तरफ BJP है जो पलटवार कर रही है और अखिलेश सरकार के दौर के खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है।
1: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी JP NIC। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर JP NIC को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
2: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। JP NIC BJP ने JP बेच दिया।
1: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ JP NIC के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। CM योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़। इसके बावजूद काम अधूरा रहा। CM योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
3: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
1: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं BJP का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
2: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है जिसको लेकर CM योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
3: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ सड़क बिजली पानी कानून व्यवस्था रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं। और BJP के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया और इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चर्चा उनके मुसलमानों पर दिए गए बयान की हो रही है। अब उनके बयान पर सियासत भी जबरदस्त है।
4: अमेरिका के न्यूयॉर्क में मानवता को लेकर कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे। मोहन भागवत ने यूं तो धर्म मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में रह रहे मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। पहले वो बयान सुनिए।
5: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
4: मोहन भागवत ने उधर न्यूयॉर्क में बयान दिए और यहाँ हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई। मोहन भागवत के बयान को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हाथों हाथ लिया।
6: हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ, अजीज रिश्तेदार भाई नातेदार बाद में आता है पड़ोसी पहले खड़ा होता है।
7: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहनाया जाए।
4: मोहन भागवत के बयान ने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया। विपक्ष भागवत के बहाने बीजेपी को घेरने लगी।
8: अपने जो उनके निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी उनके आचरण की समीक्षा करके उनको उनके बारे में निर्णय ले ले। मोहन आदरणीय भागवत जी,
9: केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री कौन सी जुबान बोलते हैं? मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के 3-4 को तो तुरंत आप फौरी तौर पे गिन सकते हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान के सर जमी पे एक बात और अमेरिका की धरती पे सुविधा अनुसार दूसरी बात, ये विरोधाभास देश को लील लेगा।
4: मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत सुलगी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच में विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच ये बयानबाजी तेज हुई है।
4: सवर्ण छात्रों ने जिस रोज से आरक्षण में बदलाव के लिए आवाज उठाई उसी रोज से आरक्षण को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी। इसी सियासत के जोर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दे दिया और इसी बयान ने एनडीए में बवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान नाराज हो गए।
10: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहां कहा गया कि आर्थिक आधार पे। तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं तो ये छोड़ दें, आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें, वो आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। मांझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या मांझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें।
4: चिराग पासवान सीधे सीधे जीतन राम मांझी का इस्तीफा मांगने लगे तो जीतन राम मांझी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। अब मांझी ने भी चिराग का इस्तीफा मांग लिया है।
11: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको ही इस्तीफा देना चाहिए।
4: मतलब आरक्षण पर एनडीए के नेताओं ने आपस में ही विवाद कर लिया है। इन बयानों के बीच में संतोष सुमन का बयान दोबारा आया है।
12: मैंने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों को चाहे किसी को भी, तो समाज में कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहां तक अभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको संवेदना रखनी चाहिए और ऐसी नीति और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको भी आरक्षण का लाभ हो सके।
4: अब आरक्षण पर कोहराम मचा हुआ है। एनडीए के भीतर ही नेता एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज जयपुर की, जहां पर नीट पीजी की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ है और छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान बार बार लाइट कटी, कंप्यूटर बंद हुए जिससे उनकी परीक्षा प्रभावित हुई। छात्रों के हंगामे के बाद इस सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है।
4: ये छात्रों का आक्रोश है, ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, ये शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों की नारेबाजी है। तस्वीरें जयपुर के सीतापुर में एक सेंटर की है जहां नीट पीजी की परीक्षा होनी थी। वैसे तो देश भर के 1000 से ज्यादा सेंटर्स पर आज नीट पीजी की परीक्षा हुई, मगर जयपुर के सीतापुर में ये परीक्षा नहीं हो सकी। आरोप है कि बिजली न होने से परीक्षा में देरी हुई। बाद में लगातार पावर कट हुआ तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द हुई तो छात्र और उनके परिजनों की आंखों में आंसू आ गए।
13: पाँच साल इसने MBBS की तैयारी करी है, PG की तैयारी में लगा हुआ है, कितना पढ़ना पड़ता है, इस दोबारा पेपर देगा, इसका ट्रोमा हम नहीं झेल सकते। 3 साल PG की उसमें लगेगा, वहाँ पे भी ट्रोमा है। इनको एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। आज पेपर इजी आया था, इन लोगों का अगर एग्जाम होता है तो प्लीज आप इनको एडिशनल बेनिफिट।
14: उसमें न AC है, 3.5 घंटे तक कोई एग्जाम देगा, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता। मैं पूरे पसीने में हो गया था स्टार्टिंग से।
15: अगर 9:15 के आसपास 36 क्वेश्चंस अगर बट चुके हैं तो ये पेपर लीक है। क्या पता किसी और सेंटर पे कोई इन 36 क्वेश्चन को देख चुका हो। 36 क्वेश्चन जानते हैं आप कितने होते हैं, सेम नंबर पे 1000 रैंक में चेंज आ जाती है। क्लस्टरिंग इतनी गंदी होती है, सेम क्वेश्चन, सेम पेपर पे, सेम क्वेश्चन पे। तो अगर
16: ना लाइट गई ना कुछ गया, सिर्फ कंप्यूटर बंद हो गया ऑटोमेटिक, ऐसे कैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और ये सिस्टम में ग्लीच नहीं है, ये पेपर लीक है, नीचे हैकिंग चल रही थी, कोई भाई पैसे देके पास हो चुका है।
4: छात्राओं का गुस्सा फूटा और छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे।
17: जयपुर में नीट PG एग्जाम के बीच बिजली गुल हुई और उसके बाद अभ्यर्थी थे जो कि एग्जाम छोड़कर बाहर आ गए और अब परीक्षा सेंटर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जो अभ्यर्थी है वो नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर ये बीच एग्जाम छोड़कर यहां पर आ गए, जिसके बाद यहां पर ये एग्जाम सेंटर के बाहर यहां पर हंगामा बरपा। ये देखिए अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहां पर है, आक्रोश से इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, कब ये बिजली गुल हुई?
18: सर ये जब हम एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे के लिए बिजली गुल हो गई, इनके सारे सिस्टम बंद हो गए। उसके बाद में डेढ़ घंटे में कम से कम 5 से 7 बार है सिस्टम बंद हुआ है और हर बार कम से कम 5-10 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं और बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, खुलेआम चीटिंग हो रही है।
4: छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 5 सितंबर को होगी। विशाल शर्मा, जयपुर, आज तक।
0: अब बात करेंगे चित्रकूट में आए सैलाबी संकट की, जहां पर मंदाकिनी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर भारी आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट डूब गए हैं, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, लोग संकट में घिरे हैं और लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बीच में पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।
19: आसमान देखिए मौसम कैसा है।
20: ये इधर कुछ दो आदमी लाल जाने के होंगे।
1: पानी में तैरता हुआ शहर देखा है कभी? अब देख लीजिए, जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही है। शहर में सैलाब आया है, दुकान मकान सब पानी में डूबे हुए। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी।
21: चित्रकूट जनपद में मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे कल मंदाकिनी नदी लगभग 9 मीटर के ऊपर बह रही थी, जिससे रामघाट का जो एरिया था पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। जिन सड़कों पर कभी वाहन चलते थे वहां नाव चलने लगी थी। मंदाकिनी नदी के बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि मध्य प्रदेश प्रशासन को यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना पड़ा है और SDTRF टीम जो यूपी प्रशासन था, SDRF टीम और PAC टीम को लगा करके जो लोग अपने घरों में फंसे थे उनको रेस्क्यू करके बचाया गया है।
1: बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब है कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ इस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है।
19: अभी आप आसमान देखिए मौसम कैसा है। ऊपर बोर्ड पे अगर खाना है तो दे दो, जो बचे हैं उनको खाना दे दो, निकालो इनको भाई, आप लोग बचा सकते हो उनको उतारो।
1: दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है।
22: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अतिशीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और इन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए।
1: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
23: इस हम खड़े हैं रामघाट पे, जहां आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है, वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें, यहां पर सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं। लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं। जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से लगभग आधा दर्जन से लोगों का गाँव का संपर्क टूट गया है।
1: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
24: और पानी का जो जल स्तर है वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें पूरी प्रकार से। जहाँ पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट्स, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
1: संकट बड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है। कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके।
24: आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है, वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है या कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है, तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।
1: अब इन तस्वीरों को देखिए, ये नेशनल हाईवे 35 पर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर बना पुल था जिसे मंदाकिनी की लहरें अपने साथ बहा ले गई।
2: हम खड़े हैं उसी मंदाकिनी रोड के पुल पर, जहाँ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह मंदाकिनी नदी का मेन पुल है, जो NH 35 पे यह पुल बनाया गया है जो शहर को जोड़ता है, उसी रास्ते से प्रयागराज के लिए जाया जाता है। लेकिन कल मंदाकिनी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पुल के ऊपर से यहाँ पानी बह रहा था, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी के पुल का अप्रोच रोड है वह उसका रोड का लगभग 20 मीटर नीचे धस गया है, जिसकी वजह से ये अप्रोच रोड का जो एक कोना है वह हट गया। यहाँ पर पुल को बनाने के लिए जो कर्मी है यहाँ पर लगे हुए हैं।
1: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और उन तक मदद पहुंचाई। दिन रात लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसी ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। अखिलेश कुमार सोनकर, चित्रकूट आज तक।
0: अब आज नेपाल में मचे हाहाकार के, नेपाल में तबाही के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जिन इलाकों में ये तबाही सबसे ज्यादा हुई है वहां पर पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सड़कें टूट चुके हैं, संपर्क के साधन ठप हैं और दुर्गम पहाड़ों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है। नुआकोट एयरबेस से लगातार उड़ाने भरी जा रही है, कहीं लोगों को निकालने के लिए, कहीं राहत पहुंचाने के लिए। देखिए इन पहाड़ों में जिंदगी बचाने की जंग आखिर कैसे लड़ी जा रही है।
1: नेपाल में आपदाग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है, इसको ऐसे समझिए कि नुआकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता है, कुछ लोगों को उतारता है और फिर जरूरी सामान लेकर उन दुर्गम पहाड़ों की ओर उड़ जाता है जहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
3: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोग बचाया जा रहा है।
1: अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो नुआकोट एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के इंजन कभी बंद नहीं होते, रेस्क्यू टीमें लगातार उड़ान भर रही हैं। नेपाली सेना के साथ साथ सिविल हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में लगा दिए गए हैं।
3: लगातार राहत बचाव कार्य यहाँ पर काफी तेजी से चल रहे हैं, एक के बाद एक उड़ाने हैं हेलीकॉप्टर, या तो जो सैनिक हैं या फिर जवान रेस्क्यूअर हैं उन्हें एयर ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर इसके साथ साथ प्रभावित इलाकों
1: में। नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों में जाने का एकमात्र तरीका ये हेलीकॉप्टर ही है, क्योंकि रसुआ समेत कई इलाके पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गए हैं।
3: नुआकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है, जहाजों की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
1: इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, जिंदगियों को मलबे में सिमटते देखा। कुछ लोग किस्मत वाले भी थे जो किसी तरह से बच गए।
3: आप लोग किस इलाके में थे? कितने दिन से थे आप लोग वहाँ पे? पाँच दिन। तो वहाँ पर क्या स्थिति थी, खाना पीना था? कितने दिन से छुटे हुए थे आप लोग? कितने लोग थे आप लोग जो वहाँ पे थे? कितना जना था वहाँ पे? तीन जना थे।
1: रसुआ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है, वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए जो लोग किस्मत से बच भी गए हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को बेस कैंप में फर्स्ट एड दी जा रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास ही मेडिकल कैंप लगाया है, जहां पीने के पानी के साथ साथ जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।
3: इस आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए नेपाली सेना ने यहां पर एक मेडिकल कैंप तैयार किया है, एक चौथा फिर अस्पताल, आप समझ लीजिए एयर बेस है, तो जहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है, उसके बाद जहाँ इलाज किया जाता है
5: और उसके बाद कई बार जो गंभीर खतरे में है उन्हें तुरंत कार्यशाला में अलर्ट कर लिया जाता है। आप समझे कि जिस तरह के लोग आई है जो पानी के बहाव में थे, मलबे के बहाव में थे, किसी का दम टूट रहा था, उन सबको ला सकते बड़ी चुनौती है। और इसीलिए जितनी एजेंसियां हैं, जितने हाथ हैं, हर कोई मदद के लिए खड़ा है। एक तरह के बाद किसी ने जो ऑपरेशन अंजाम मेडिकल कैंप में उसका ख्याल रखा जा रहा है, इलाज पहुंचाया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है।
6: आशुतोष मिश्रा, नुआकोट बेस कैंप, नेपाल। आज तक
0: रूस ने इस महीने यूक्रेन की राजधानी कीव को इतने जख्म दिए हैं कि उन्हें भरने में कई साल लग जाएंगे। पिछले तीन दिन से रूस लगातार मिसाइल और ड्रोन से बम बरसा रहा है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। रिहायशी इलाकों में कई इमारतों में इन हमलों के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने में बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को सबक सिखाने की चेतावनी दी है।
1: कीव में रूसी हमले ने मचाया कोहराम। एयर स्ट्राइक में 37 लोगों की गई जान। आग की लपटों में घिरे दफ्तर दुकान। कीव एक बार फिर दहल रहा है। कीव एक बार फिर रूसी हमलों का शिकार बना है। यूक्रेन की राजधानी की ये तस्वीरें तबाही की सारी कहानी बयां कर रही हैं। रूसी बमबारी ने कीव और आसपास के कई इलाकों पर इतने बम बरसाए हैं कि 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लगातार तीसरी रात भर रूस के ड्रोन बम बरसाते रहे, एक के बाद एक धमाके होते रहे। रिहायशी इलाकों की कई इमारतों में आग लग गई और लोग फंस गए। सारी रात बचाव अभियान चलाया गया और आग बुझाने की कोशिश की जाती रही। धू धू कर जलता ये वेयर हाउस तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। धमाके के साथ ही इसमें आग लग गई और काले धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कई घंटे लग गए। रूसी हमलों ने कीव रीजन में ही नहीं, ओडेसा में भी भारी तबाही मचाई है, जहां एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए।
7: Станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальною операцією. Мої співчуття усім рідним та близьким. Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям.
1: रूसी मिसाइलें और ड्रोन लगातार अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन एंटी मिसाइल सिस्टम न होने से यूक्रेन इन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: एसईओ समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की नई उड़ान पर जोर। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज। एससी एसटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने करवाया केस। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के जेपी एनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का मुद्दा उठाया, कहा इन लोगों ने खाया पैसा। लखनऊ में हिंदुवादी नेता धीरेंद्र प्रताप की हत्या के मामले में खुलासा। ड्राइवर ने ही दो दोस्तों के साथ मिलकर मारी गोली। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। और नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा। फिर उफान पर त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब बात उत्तर प्रदेश में मची सियासत की करते हैं। यूपी की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर जंग तेज हो गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर जेपी एनआईसी से लेकर एक्सप्रेसवेज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो पलटवार कर रही है और अखिलेश सरकार के दौर के खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है।
1: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी जेपीएनआईसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जेपीएनआईसी को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
2: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। जेपीएनआईसी बीजेपी ने जेपी बेच दिया।
1: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपीएनआईसी के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़। इसके बावजूद काम अधूरा रहा। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
3: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
1: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं बीजेपी का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
2: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है जिसको लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
3: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ सड़क बिजली पानी कानून व्यवस्था रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं, और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया और इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चर्चा उनके मुसलमानों पर दिए गए बयान की हो रही है। अब उनके बयान पर सियासत भी जबरदस्त है।
4: अमेरिका के न्यूयॉर्क में मानवता को लेकर कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे। मोहन भागवत ने यूं तो धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में रह रहे मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। पहले वो बयान सुनिए।
5: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
4: मोहन भागवत ने उधर न्यूयॉर्क में बयान दिए और यहाँ हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई। मोहन भागवत के बयान को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हाथों हाथ लिया।
6: हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ, अजीज रिश्तेदार भाई नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है।
7: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहनाया जाए।
4: मोहन भागवत के बयान ने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया। विपक्ष भागवत के बहाने बीजेपी को घेरने लगी।
8: अपने जो उनके निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी उनके आचरण की समीक्षा करके उनको उनके बारे में निर्णय ले ले। मोहन आदरणीय भागवत जी,
9: केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री कौन सी जुबान बोलते हैं? मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, तीन चार को तो तुरंत आप फौरी तौर पे गिन सकते हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान के सरजमी पे एक बात और अमेरिका की धरती पे सुविधानुसार दूसरी बात, ये विरोधाभास देश को लील लेगा।
4: मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत सुलगी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच में विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच ये बयानबाजी तेज हुई है।
4: सवर्ण छात्रों ने जिस रोज से आरक्षण में बदलाव के लिए आवाज उठाई उसी रोज से आरक्षण को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी। इसी सियासत के जोर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दे दिया और इसी बयान ने एनडीए में बवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान नाराज हो गए।
10: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहां कहा गया कि आर्थिक आधार पे? तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहां से? जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का, मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं तो ये छोड़ दें, आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें, वो आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। मांझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या मांझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें।
4: चिराग पासवान सीधे सीधे जीतन राम मांझी का इस्तीफा मांगने लगे तो जीतन राम मांझी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। अब मांझी ने भी चिराग का इस्तीफा मांग लिया है।
11: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।
4: मतलब आरक्षण पर एनडीए के नेताओं ने आपस में ही विवाद कर लिया है। इन बयानों के बीच में संतोष सुमन का बयान दोबारा आया है।
12: मैंने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों को, चाहे किसी को भी, तो समाज में कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहां तक अभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको संवेदना रखनी चाहिए और ऐसी नीति और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको भी आरक्षण का लाभ हो सके।
4: अब आरक्षण पर कोहराम मचा हुआ है। एनडीए के भीतर ही नेता एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज जयपुर की, जहां पर नीट पीजी की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ है और छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान बार बार लाइट कटी, कंप्यूटर बंद हुए जिससे उनकी परीक्षा प्रभावित हुई। छात्रों के हंगामे के बाद इस सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है।
4: ये छात्रों का आक्रोश है, ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, ये शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों की नारेबाजी है। तस्वीरें जयपुर के सीतापुर में एक सेंटर की है जहां नीट पीजी की परीक्षा होनी थी। वैसे तो देश भर के 1000 से ज्यादा सेंटर्स पर आज नीट पीजी की परीक्षा हुई, मगर जयपुर के सीतापुर में ये परीक्षा नहीं हो सकी। आरोप है कि बिजली न होने से परीक्षा में देरी हुई। बाद में लगातार पावर कट हुआ तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द हुई तो छात्र और उनके परिजनों की आंखों में आंसू आ गए।
13: पाँच साल MBBS की तैयारी करी है, पीजी की तैयारी में लगा हुआ है, कितना पढ़ना पड़ता है, इस दोबारा पेपर देगा, इसका ट्रोमा हम नहीं झेल सकते। 3 साल पीजी की उसमें लगेगा, वहाँ पे भी ट्रोमा है। इनको एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। आज पेपर इजी आया था, इन लोगों का अगर एग्जाम होता है तो प्लीज आप इनको एडिशनल बेनिफिट।
14: उसमें ना AC है, 3.5 घंटे तक कोई एग्जाम देगा, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता। मैं पूरे पसीने में हो गया था स्टार्टिंग से।
15: अगर 9:15 के आसपास 36 क्वेश्चंस अगर बट चुके हैं तो ये पेपर लीक है। क्या पता किसी और सेंटर पे कोई इन 36 क्वेश्चन को देख चुका हो। 36 क्वेश्चन जानते हैं आप कितने होते हैं, सेम नंबर पे 1000 रैंक में चेंज आ जाती है। क्लस्टरिंग इतनी गंदी होती है, सेम क्वेश्चन, सेम पेपर पे, सेम क्वेश्चन पे। तो अगर
16: ना लाइट गई ना कुछ गया, सिर्फ कंप्यूटर बंद हो गया ऑटोमेटिक, ऐसे कैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और ये सिस्टम में ग्लीच नहीं है, ये पेपर लीक है, नीचे हैकिंग चल रही थी, कोई भाई पैसे देके पास हो चुका है।
4: छात्राओं का गुस्सा फूटा और छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे।
17: जयपुर में नीट पीजी एग्जाम के बीच बिजली गुल हुई और उसके बाद अभ्यर्थी थे जो कि एग्जाम छोड़कर बाहर आ गए और अब परीक्षा सेंटर के बाहर ये प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें देखिए, जो अभ्यर्थी है वो नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर ये बीच एग्जाम छोड़कर यहां पर आ गए, जिसके बाद यहां पर ये एग्जाम सेंटर के बाहर यहां पर हंगामा बरपा। ये देखिए अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहां पर है, आक्रोश से इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, कब ये बिजली गुल हुई?
18: सर ये जब हम एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे के लिए बिजली गुल हो गई, इनके सारे सिस्टम बंद हो गए। उसके बाद में डेढ़ घंटे में कम से कम 5 से 7 बार है सिस्टम बंद हुआ है और हर बार कम से कम 5-10 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं और बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, खुलेआम चीटिंग हो रही है।
4: छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 5 सितंबर को होगी। विशाल शर्मा, जयपुर, आज तक।
0: पंजाब के संगरूर में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ DC दफ्तर पहुंच गए हैं। दोनों ही मुख्य रास्तों को घेर कर लंबे धरने की तैयारी पूरी कर ली है।
19: यहां
4: भारत यूएस ट्रेड डील के विरोध में फिर से उतर आए हैं पंजाब के किसान। संगरूर में डीसी ऑफिस के बाहर किसानों ने तंबू गाड़ दिया है। किसानों के पास राशन, चारपाई, चूल्हे, पंखे और एसी तक मौजूद हैं। ट्रॉलियों को ही रहने खाने का ठिकाना बना लिया गया है। किसानों ने धरना स्थल को ही अपना पूरा आशियाना बना लिया है। ट्रॉलियों के भीतर चारपाइयां बिछ चुकी हैं, राशन का पूरा बंदोबस्त है और चूल्हे भी चढ़ा दिए गए हैं। लंबे समय तक डटे रहने के इरादे से जरूरत का हर सामान पहले ही जुटा लिया गया है। वहीं भीषण गर्मी से राहत के लिए ट्रॉलियों में पंखे लगाए गए हैं। इस पूरे इंतजाम से किसानों का इरादा साफ नजर आता है। वे अपनी मांगों पर लंबे समय तक प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इस धरने की मुख्य वजह प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील है, जिससे किसान अपनी आमदनी पर बड़ा खतरा मान रहे हैं। इसके अलावा किसान मजदूरों की पूरी कर्ज माफी, फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और नई कृषि नीति लागू करने की मांग भी जोर शोर से उठा रहे हैं। ये पूरा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की अगुवाई में खोला गया है। संगठन ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस बात नहीं बनती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। कमलजीत संधू के साथ कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: अब बात करेंगे चित्रकूट में आए सैलाबी संकट की, जहां पर मंदाकिनी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर भारी आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट डूब गए हैं, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, लोग संकट में घिरे हैं और लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बीच में पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।
19: आसमान देखिए मौसम कैसा है।
20: पानी में तैरता हुआ शहर देखा है कभी? अब देख लीजिए, जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही है। शहर में सैलाब आया है, दुकान मकान सब पानी में डूबे हुए। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी।
21: चित्रकूट जनपद में मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे कल मंदाकिनी नदी लगभग 9 मीटर के ऊपर बह रही थी, जिससे रामघाट का जो एरिया था पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। जिन सड़कों पर कभी वाहन चलते थे वहां नाव चलने लगी थी। मंदाकिनी नदी के बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि मध्य प्रदेश प्रशासन को यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना पड़ा है और SDRF टीम जो यूपी प्रशासन था, SDRF टीम और PAC टीम को लगा करके जो लोग अपने घरों में फंसे थे उनको रेस्क्यू करके बचाया गया है।
20: बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए, लोग फंसे हुए हैं, बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब है कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ इस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है।
19: अभी आप आसमान देखिए मौसम कैसा है। ऊपर बोर्ड पे अगर खाना है तो दे दो, जो बचे हैं उनको खाना दे दो, निकालो इनको भाई, आप लोग बचा सकते हो उनको उतारो।
20: दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है।
22: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अति शीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। उन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए।
20: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
23: हम खड़े हैं रामघाट पे, जहां मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है, वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें, यहां पर सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं, लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं। जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से लगभग आधा दर्जन से लोगों का गाँव का संपर्क टूट गया है।
20: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
1: और पानी का जो जल स्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें। पूरी प्रकार से जहाँ पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
20: संकट बड़ा है। सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है। कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।
1: आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है या कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं। सभी व्यवस्थाएं की गई है।
20: अब इन तस्वीरों को देखिए। ये नेशनल हाईवे 35 पर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर बना पुल था जिसे मंदाकिनी की लहरें अपने साथ बहा ले गई।
2: ऐसे हम खड़े हैं उसी मंदाकिनी रोड के पुल पर जहाँ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह मंदाकिनी नदी का मेन पुल है जो NH 35 पे यह पुल बनाया गया है जो शहर को जोड़ता है। उसी रास्ते से प्रयागराज के लिए जाया जाता है। लेकिन कल मंदाकिनी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पुल के ऊपर से यहाँ पानी बह रहा था, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी के पुल का अप्रोच रोड है वह उसका रोड का लगभग 20 मीटर नीचे धस गया है, जिसकी वजह से ये अप्रोच रोड का जो एक कोना है वह हट गया है। यहाँ पर पुल को बनाने के लिए जो कर्मी है यहाँ पर लगे हुए हैं।
20: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और उन तक मदद पहुंचाई। दिन रात लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है क्योंकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसी ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। अखिलेश कुमार सोनकर, चित्रकूट आज तक।
0: अब आज नेपाल में मचे हाहाकार के नेपाल में तबाही के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जिन इलाकों में यह तबाही सबसे ज्यादा हुई है वहां पर पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं, संपर्क के साधन ठप हैं और दुर्गम पहाड़ों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है। नुआकोट एयरबेस से लगातार उड़ाने भरी जा रहे हैं कहीं लोगों को निकालने के लिए, कहीं राहत पहुंचाने के लिए। देखिए इन पहाड़ों में जिंदगी बचाने की जंग आखिर कैसे लड़ी जा रही है।
20: नेपाल में आपदाग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है इसको ऐसे समझिए कि नुआकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता है, कुछ लोगों को उतारता है और फिर जरूरी सामान लेकर उन दुर्गम पहाड़ों की ओर उड़ जाता है जहाँ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
3: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोग बचाया जा रहा है।
20: अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो नुआकोट एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के इंजन कभी बंद नहीं होते। रेस्क्यू टीमें लगातार उड़ान भर रही हैं। नेपाली सेना के साथ साथ सिविल हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में लगा दिए गए हैं।
3: लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर काफी तेजी से चल रहे हैं। एक के बाद एक उड़ाने हैं और हेलीकॉप्टर या तो जो सैनिक हैं या फिर जवान रेस्क्यूअर हैं उन्हें एयर ड्रॉप कर रहे हैं या फिर उसके साथ साथ जैसा खाना पीना प्रभावित इलाकों में कोशिश की जा रही है।
20: नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों में जाने का एकमात्र तरीका ये हेलीकॉप्टर ही है क्योंकि रसुआ समेत कई इलाके पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गए हैं।
3: नुआकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है। जहाजों की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
20: इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, जिंदगियों को मलबे में सिमटते देखा। कुछ लोग किस्मत वाले भी थे जो किसी तरह से बच गए।
3: आप लोग किस इलाके में थे? कितने दिन से थे आप लोग वहाँ पे? तो वहाँ पर क्या स्थिति थी? खाना पीना था? कितने दिन से फंसे हुए थे आप लोग? कितने लोग थे आप लोग जो वहाँ पे थे? कितना जना था वहाँ पे? तीन जना थे।
20: रसुआ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए जो लोग किस्मत से बच भी गए हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
3: आओ, बाहर जीना है। आप लोग वहीं पे

0: रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को बेस कैंप में फर्स्ट एड दी जा रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास ही मेडिकल कैंप लगाया है, जहां पीने के पानी के साथ साथ जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।
1: इस आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए नेपाल की सेना ने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप तैयार किया है। एक 14 फीट अस्पताल आप समझ लीजिए एयर बेस बेस है, तो जहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है, उसके बाद जहाँ उनका इलाज किया जाता है, और उसके बाद कई बार जो गंभीर खतरे में है उन्हें तुरंत काठमांडू में लिफ्ट कर लिया जाता है। आप समझिए कि जिस तरह के लोगों की स्थितियां आई है, जो पानी के बहाव में थे, मलबे के बहाव में थे, किसी का दम टूट रहा था, उन सबको ला सकते हैं। बड़ी चुनौती है, और इसीलिए जितनी एजेंसियां हैं, जितने हाथ हैं, हर कोई मदद के लिए खड़ा है। इधर नेपाल की सेना जो है अपने जीवन अंजाम दे रही है, मेडिकल कैंप में उनका ख्याल रखा जा रहा है, इलाज पहुंचाया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है।
0: आशुतोष मिश्रा, नुआकोट बेस कैंप, नेपाल, आज तक।
2: रूस ने इस महीने यूक्रेन की राजधानी कीव को इतने जख्म दिए हैं कि उन्हें भरने में कई साल लग जाएंगे। पिछले 3 दिन से रूस लगातार मिसाइल और ड्रोन से बम बरसा रहा है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। रिहायशी इलाकों में कई इमारतों में इन हमलों के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने में बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को सबक सिखाने की चेतावनी दी है।
3: कीव में रूसी हमले ने मचाया कोहराम। एयर स्ट्राइक में 37 लोगों की गई जान। आग की लपटों में घिरे दफ्तर दुकान। कीव एक बार फिर दहल रहा है। कीव एक बार फिर रूसी हमलों का शिकार बना है। यूक्रेन की राजधानी की ये तस्वीरें तबाही की सारी कहानी बयां कर रही हैं। रूसी बमबारी ने कीव और आसपास के कई इलाकों पर इतने बम बरसाए हैं कि 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लगातार तीसरी रात भर रूस के ड्रोन बम बरसाते रहे, एक के बाद एक धमाके होते रहे। रिहायशी इलाकों की कई इमारतों में आग लग गई और लोग फंस गए। सारी रात बचाव अभियान चलाया गया और आग बुझाने की कोशिश की जाती रही। धू धू कर जलता ये वेयर हाउस तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। धमाके के साथ ही इसमें आग लग गई और काले धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कई घंटे लग गए। रूसी हमलों ने कीव रीजन में ही नहीं, ओडेसा में भी भारी तबाही मचाई है, जहां एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए।
4: Станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальною операцією. Мої співчуття усім рідним та близьким. Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям.
3: रूसी मिसाइलें और ड्रोन लगातार अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन एंटी मिसाइल सिस्टम न होने से यूक्रेन इन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: एसईओ समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की नई उड़ान पर जोर। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज। एससी एसटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने करवाया केस। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई योगी के जेपी एनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का मुद्दा उठाया। कहा इन लोगों ने खाया पैसा। लखनऊ में हिंदुवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप की हत्या के मामले में खुलासा। ड्राइवर ने ही दो दोस्तों के साथ मिलकर मारी गोली। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। और नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा। फिर उफान पर त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब आज उत्तर प्रदेश में मची सियासत की करते हैं। यूपी की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर जंग तेज हो गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर जेपी एनआईसी से लेकर एक्सप्रेसवेज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो पलटवार कर रही है और अखिलेश सरकार के दौर के खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है।
1: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी जेपीएनआईसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जेपीएनआईसी को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
2: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। जेपीएनआईसी बीजेपी ने जेपी बेच दिया।
1: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपीएनआईसी के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़। इसके बावजूद काम अधूरा रहा। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
3: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
1: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं बीजेपी का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
2: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है जिसको लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
3: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ सड़क बिजली पानी कानून व्यवस्था रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं। और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया और इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चर्चा उनके मुसलमानों पर दिए गए बयान की हो रही है। अब उनके बयान पर सियासत भी जबरदस्त है।
4: अमेरिका के न्यूयॉर्क में मानवता को लेकर कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे। मोहन भागवत ने यूं तो धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में रह रहे मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। पहले वो बयान सुनिए।
5: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
4: मोहन भागवत ने उधर न्यूयॉर्क में बयान दिए और यहाँ हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई। मोहन भागवत के बयान को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हाथों हाथ लिया।
6: हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ, अजीज रिश्तेदार भाई नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है।
7: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहनाया जाए।
4: मोहन भागवत के बयान ने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया। विपक्ष भागवत के बहाने बीजेपी को घेरने लगी।
8: अपने जो उनके निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी उनके आचरण की समीक्षा करके उनको उनके बारे में निर्णय ले ले। मोहन आदरणीय भागवत जी,
9: केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री कौन सी जुबान बोलते हैं? मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, तीन चार को तो तुरंत आप फौरी तौर पे गिन सकते हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान के सरजमी पे एक बात और अमेरिका की धरती पे सुविधानुसार दूसरी बात, ये विरोधाभास देश को लील लेगा।
4: मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत सुलगी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच में विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच ये बयानबाजी तेज हुई है।
4: सवर्ण छात्रों ने जिस रोज से आरक्षण में बदलाव के लिए आवाज उठाई उसी रोज से आरक्षण को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी। इसी सियासत के जोर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दे दिया और इसी बयान ने एनडीए में बवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान नाराज हो गए।
10: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहां कहा गया कि आर्थिक आधार पे? तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से? जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का, मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें वो आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। मांझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या मांझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें।
4: चिराग पासवान सीधे सीधे जीतन राम मांझी का इस्तीफा मांगने लगे तो जीतन राम मांझी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। अब मांझी ने भी चिराग का इस्तीफा मांग लिया है।
11: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोटर सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।
4: मतलब आरक्षण पर एनडीए के नेताओं ने आपस में ही विवाद कर लिया है। इन बयानों के बीच में संतोष सुमन का बयान दोबारा आया है।
12: मैंने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों को, चाहे किसी को भी, तो समाज में कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहां तक अभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको संवेदना रखनी चाहिए और ऐसी नीति और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको भी आरक्षण का लाभ हो सके।
4: अब आरक्षण पर कोहराम मचा हुआ है। एनडीए के भीतर ही नेता एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज जयपुर की, जहां पर नीट पीजी की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ है और छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान बार बार लाइट कटी, कंप्यूटर बंद हुए जिससे उनकी परीक्षा प्रभावित हुई। छात्रों के हंगामे के बाद इस सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है।
4: ये छात्रों का आक्रोश है, ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, ये शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों की नारेबाजी है। तस्वीरें जयपुर के सीतापुर में एक सेंटर की है जहां नीट पीजी की परीक्षा होनी थी। वैसे तो देश भर के 1000 से ज्यादा सेंटर्स पर आज नीट पीजी की परीक्षा हुई, मगर जयपुर के सीतापुर में ये परीक्षा नहीं हो सकी। आरोप है कि बिजली न होने से परीक्षा में देरी हुई। बाद में लगातार पावर कट हुआ तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द हुई तो छात्र और उनके परिजनों की आंखों में आंसू आ गए।
13: 5 साल इससे एमबीबीएस की तैयारी करी है, पीजी की तैयारी में लगा हुआ है, कितना पढ़ना पड़ता है, इस दोबारा पेपर देगा, इसका ट्रोमा हम नहीं झेल सकते। 3 साल पीजी की उसपे लगेगा, वहाँ पे भी ट्रोमा है। इनको एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। आज पेपर इजी आया था, इन लोगों का अगर एग्जाम होता है तो प्लीज आप इनको एडिशनल बेनिफिट।
14: उसमें न एसी है, 3.5 घंटे तक कोई एग्जाम देगा, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता। मैं पूरे पसीने में हो गया था स्टार्टिंग से।
15: अगर 9:15 के आसपास 36 क्वेश्चंस अगर बट चुके हैं तो ये पेपर लीक है। क्या पता किसी और सेंटर पे कोई इन 36 क्वेश्चन को देख चुका हो। 36 क्वेश्चन जानते हैं आप कितने होते हैं, सेम नंबर पे 1000 रैंक में चेंज आ जाती है। क्लस्टरिंग इतनी गंदी होती है, सेम क्वेश्चन पे। तो अगर
16: ना लाइट गई ना कुछ गया, सिर्फ कंप्यूटर बंद हो गया ऑटोमेटिक, ऐसे कैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और ये सिस्टम में ग्लीच नहीं है, ये पेपर लीक है, नीचे हैकिंग चल रही थी, कोई भाई पैसे दे के पास हो चुका है।
4: छात्राओं का गुस्सा फूटा और छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे।
17: जयपुर में नीट पीजी एग्जाम के बीच बिजली गुल हुई और उसके बाद अभ्यर्थी थे जो कि एग्जाम छोड़कर बाहर आ गए और अब परीक्षा सेंटर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जो अभ्यर्थी है वो नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर ये बीच एग्जाम छोड़कर यहाँ पर आ गए, जिसके बाद यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर के बाहर यहाँ पर हंगामा बरपा है। देखिए अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, आक्रोश से इनसे बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, कब ये बिजली गुल हुई?
18: सर ये जब हम एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे के लिए बिजली गुल हो गई, इनके सारे सिस्टम बंद हो गए। उसके बाद में डेढ़ घंटे में कम से कम 5 से 7 बार है सिस्टम बंद हुआ है और हर बार कम से कम 5-10 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं और बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, खुलेआम चीटिंग हो रही है।
4: छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 5 सितंबर को होगी। विशाल शर्मा, जयपुर, आज तक।
0: पंजाब के संगरूर में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ डीसी दफ्तर पहुंच गए हैं। दोनों ही मुख्य रास्तों को घेर कर लंबे धरने की तैयारी पूरी कर ली है।
19: ये
4: भारत यूएस ट्रेड डील के विरोध में फिर से उतर आए हैं पंजाब के किसान। संगरूर में डीसी ऑफिस के बाहर किसानों ने तंबू गाड़ दिया है। किसानों के पास राशन, चारपाई, चूल्हे, पंखे और एसी तक मौजूद हैं। ट्रॉलियों को ही रहने खाने का ठिकाना बना लिया गया है। किसानों ने धरना स्थल को ही अपना पूरा आशियाना बना लिया है। ट्रॉलियों के भीतर चारपाइयां बिछ चुकी हैं, राशन का पूरा बंदोबस्त है और चूल्हे भी चढ़ा दिए गए हैं। लंबे समय तक डटे रहने के इरादे से जरूरत का हर सामान पहले ही जुटा लिया गया है। वहीं भीषण गर्मी से राहत के लिए ट्रॉलियों में पंखे लगाए गए हैं। इस पूरे इंतजाम से किसानों का इरादा साफ नजर आता है। वे अपनी मांगों पर लंबे समय तक प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इस धरने की मुख्य वजह प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील है, जिससे किसान अपनी आमदनी पर बड़ा खतरा मान रहे हैं। इसके अलावा किसान मजदूरों की पूरी कर्ज माफी, फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और नई कृषि नीति लागू करने की मांग भी जोर शोर से उठा रहे हैं। ये पूरा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की अगुवाई में खोला गया है। संगठन ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस बात नहीं बनती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। कमलजीत संधु के साथ कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: अब बात करेंगे चित्रकूट में आए सैलाबी संकट की, जहां पर मंदाकिनी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर भारी आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट डूब गए हैं, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, लोग संकट में घिरे हैं और लोगों की मदद के लिए लगातार इसके ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बीच में पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।
19: आसमान देखिए मौसम कैसा है।
20: ये इधर कुछ दो आदमी लाल जाने में होंगे।
21: पानी में तैरता हुआ शहर देखा है कभी? अब देख लीजिए, जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही है। शहर में सैलाब आया है, दुकान मकान सब पानी में डूबे हुए। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी।
22: चित्रकूट जनपद में मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे कल मंदाकिनी नदी लगभग 9 मीटर के ऊपर बह रही थी, जिससे रामघाट का जो एरिया था पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। जिन सड़कों पर कभी वाहन चलते थे वहां नाव चलने लगी थी। मंदाकिनी नदी के बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि मध्य प्रदेश प्रशासन को यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना पड़ा है और SDPRF टीम, जो यूपी प्रशासन था, SDRF टीम और PAC टीम को लगा करके जो लोग अपने घरों में फंसे थे उनको रेस्क्यू करके बचाया गया है।
21: बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए, लोग फंसे हुए, बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब है कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ इस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है।
19: अभी आप आसमान देखिए मौसम कैसा है। ऊपर बोर्ड पे अगर खाना है तो दे दो, बचे हैं उनको खाना दे दो, निकालो इनको भाई, आप लोग बचा सकते हो उनको उतारो।
21: दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है।
23: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अतिशीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और इन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए।
21: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
24: इसम खड़े हैं रामघाट पे, जहां मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है, वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें, यहां पर सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं, लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं। जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से लगभग आधा दर्जन से लोगों का गाँव का संपर्क टूट गया है।
21: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
1: और पानी का जो जल स्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें। पूरी प्रकार से जहाँ पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट्स, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
21: संकट बड़ा है। सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है। कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।
1: आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है, कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है, तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं। सभी व्यवस्थाएं की गई है।
21: अब इन तस्वीरों को देखिए। ये नेशनल हाईवे 35 पर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर बना पुल था जिसे मंदाकिनी की लहरें अपने साथ बहा ले गई।
24: ऐसे हम खड़े हैं उसी मंदाकिनी रोड के पुल पर जहाँ इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह मंदाकिनी नदी का मेन पुल है जो NH 35 पे यह पुल बनाया गया है जो शहर को जोड़ता है। उसी रास्ते से प्रयागराज के लिए जाया जाता है। लेकिन कल मंदाकिनी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पुल के ऊपर से यहाँ पानी बह रहा था, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी के पुल का अप्रोच रोड है वह उसका रोड का लगभग 20 मीटर नीचे धस गया है, जिसकी वजह से ये अप्रोच रोड का जो एक कोना है वह हट गया। यहाँ पर पुल को बनाने के लिए जो कर्मी है यहाँ पर लगे हुए हैं।
21: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और उन तक मदद पहुंचाई। दिन रात लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है क्योंकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसी ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। अखिलेश कुमार सोनकर, चित्रकूट आज तक।
0: अब आज नेपाल में मचे हाहाकार के नेपाल में तबाही के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जिन इलाकों में यह तबाही सबसे ज्यादा हुई है वहां पर पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं, संपर्क के साधन ठप हैं और दुर्गम पहाड़ों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है। नुआकोट एयरबेस से लगातार उड़ाने भरी जा रही है कहीं लोगों को निकालने के लिए, कहीं राहत पहुंचाने के लिए। देखिए इन पहाड़ों में जिंदगी बचाने की जंग आखिर कैसे लड़ी जा रही है।
21: नेपाल में आपदा ग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है इसको ऐसे समझिए कि नुआकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता है, कुछ लोगों को उतारता है और फिर जरूरी सामान लेकर उन दुर्गम पहाड़ों की ओर उड़ जाता है जहाँ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
2: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोगों को बचाया जा रहा है।
21: अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो नुआकोट एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के इंजन कभी बंद नहीं होते। रेस्क्यू टीमें लगातार उड़ान भर रही हैं। नेपाली सेना के साथ साथ सिविल हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में लगा दिए गए हैं।
2: लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर काफी तेजी से चल रहे हैं। एक के बाद एक उड़ाने हैं हेलीकॉप्टर, या तो जो सैनिक हैं या फिर जवान रेस्क्यूअर हैं उन्हें एयर ड्रॉप कर रहे हैं या फिर उसके साथ साथ खाना पीना उड़ाने की कोशिश की जा रही है।
21: नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों में जाने का एकमात्र तरीका ये हेलीकॉप्टर ही है क्योंकि रसुआ समेत कई इलाके पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गए हैं।
2: नुआकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है। जहाजों की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुँचाने की कोशिश की जा रही है।
21: इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, जिंदगियों को मलबे में सिमटते देखा। कुछ लोग किस्मत वाले भी थे जो किसी तरह से बच गए।
2: आप लोग किस इलाके में थे? कितने दिन से थे आप लोग वहाँ पे? बात नहीं, तो वहाँ पर क्या स्थिति थी? खाना पीना था? कितने दिन से फंसे हुए थे आप लोग? कितने लोग थे आप लोग जो वहाँ पे थे? कितना जना था वहाँ पे? तीन जना थे।
21: रसुआ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए जो लोग किस्मत से बच भी गए हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को बेस कैंप में फर्स्ट एड दी जा रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास ही मेडिकल कैंप लगाया है, जहां पीने के पानी के साथ साथ जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।
2: इस आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए नेपाली सेना ने यहां पर एक मेडिकल कैंप तैयार किया है। एक चौथा फिर अस्पताल आप समझ लीजिए, एयर बेस है, तो जहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ इलाज किया जाता है। और उसके बाद कई बार जो गंभीर खतरे में है उन्हें तुरंत काठमांडू में लिफ्ट कर लिया जाता है। आप समझिए कि जिस तरह के लोग आई है, जो पानी के बहाव में, मलबे के बहाव में है, किसी का दम टूट रहा था, उन सबको ला सकते हैं। बड़ी चुनौती है और इसीलिए जितनी एजेंसियां हैं, जितने हाथ हैं, हर कोई मदद के लिए खड़ा है। इधर नेपाल की सेना ने इसको ऑपरेशन अंजाम दिया है। मेडिकल कैंप में उसका ख्याल रखा जा रहा है, इलाज पहुंचाया जा रहा है।
21: आशुतोष मिश्रा, नुआकोट बेस कैंप, नेपाल, आज तक।
0: रूस ने इस महीने यूक्रेन की राजधानी कीव को इतने जख्म दिए हैं कि उन्हें भरने में कई साल लग जाएंगे। पिछले 3 दिन से रूस लगातार मिसाइल और ड्रोन से बम बरसा रहा है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। रिहायशी इलाकों में कई इमारतों में इन हमलों के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने में बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को सबक सिखाने की चेतावनी दी है।
21: कीव में रूसी हमले ने मचाया कोहराम। एयर स्ट्राइक में 37 लोगों की गई जान। आग की लपटों में घिरे दफ्तर दुकान। कीव एक बार फिर दहल रहा है। कीव एक बार फिर रूसी हमलों का शिकार बना है। कीव एक बार फिर रूसी हमलों का शिकार बना है। यूक्रेन की राजधानी की ये तस्वीरें तबाही की सारी कहानी बयां कर रही हैं। रूसी बमबारी ने कीव और आसपास के कई इलाकों पर इतने बम बरसाए हैं कि 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लगातार तीसरी रात भर रूस के ड्रोन बम बरसाते रहे, एक के बाद एक धमाके होते रहे। रिहायशी धू धू कर जलता ये वेयर हाउस तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। धमाके के साथ ही इसमें आग लग गई और काले धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कई घंटे लग गए। रूसी हमलों ने कीव रीजन में ही नहीं, ओडेसा में भी भारी तबाही मचाई है, जहां एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए।
3: Станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальною операцією. Мої співчуття усім рідним та близьким. Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр Міністр внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям.
5: रूसी मिसाइलें और ड्रोन लगातार अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन एंटी मिसाइल सिस्टम न होने से यूक्रेन इन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: एसईओ समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की नई उड़ान पर जोर। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज। एससी एसटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने करवाया केस। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के जेपी एनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का मुद्दा उठाया, कहा इन लोगों ने खाया पैसा। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप की हत्या के मामले में खुलासा। ड्राइवर ने ही दो दोस्तों के साथ मिलकर मारी गोली। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। और नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा। फिर उफान पर त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बात उत्तर प्रदेश में मची सियासत की करते हैं। यूपी की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर जंग तेज हो गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर जेपी एनआईसी से लेकर एक्सप्रेसवेज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो पलटवार कर रही है और अखिलेश सरकार के दौर के खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है।
1: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी जेपीएनआईसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जेपीएनआईसी को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
2: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। जेपी एनआईसी बीजेपी ने जेपी बेच दिया।
1: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी एनआईसी के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़। इसके बावजूद काम अधूरा रहा। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
3: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
1: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं बीजेपी का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
2: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है जिसको लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
3: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ सड़क बिजली पानी कानून व्यवस्था रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं। और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया और इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चर्चा उनके मुसलमानों पर दिए गए बयान की हो रही है। अब उनके बयान पर सियासत भी जबरदस्त है।
4: अमेरिका के न्यूयॉर्क में मानवता को लेकर कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे। मोहन भागवत ने यूं तो धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में रह रहे मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। पहले वो बयान सुनिए।
5: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
4: मोहन भागवत ने उधर न्यूयॉर्क में बयान दिए और यहाँ हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई। मोहन भागवत के बयान को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हाथों हाथ लिया।
6: हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ, अजीज रिश्तेदार भाई नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है।
7: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहनाया जाए।
4: मोहन भागवत के बयान ने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया। विपक्ष भागवत के बहाने बीजेपी को घेरने लगी।
8: अपने जो उनके निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी उनके आचरण की समीक्षा करके उनको उनके बारे में निर्णय ले ले। मोहन आदरणीय भागवत जी,
9: केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री कौन सी जुबान बोलते हैं? मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, तीन चार को तो तुरंत आप फौरी तौर पे गिन सकते हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान के सरजमी पे एक बात और अमेरिका की धरती पे सुविधानुसार दूसरी बात, ये विरोधाभास देश को लील लेगा।
4: मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत सुलगी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच में विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच ये बयानबाजी तेज हुई है।
4: सवर्ण छात्रों ने जिस रोज से आरक्षण में बदलाव के लिए आवाज उठाई उसी रोज से आरक्षण को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी। इसी सियासत के जोर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दे दिया और इसी बयान ने एनडीए में बवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान नाराज हो गए।
10: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहां कहा गया कि आर्थिक आधार पे। तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें वो आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। मांझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या मांझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें।
4: चिराग पासवान सीधे सीधे जीतन राम मांझी का इस्तीफा मांगने लगे तो जीतन राम मांझी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। अब मांझी ने भी चिराग का इस्तीफा मांग लिया है।
11: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।
4: मतलब आरक्षण पर एनडीए के नेताओं ने आपस में ही विवाद कर लिया है। इन बयानों के बीच में संतोष सुमन का बयान दोबारा आया है।
12: मैंने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों को चाहे किसी को भी, तो समाज में कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ तक अभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुँचा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको संवेदना रखनी चाहिए और ऐसी नीति और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको भी आरक्षण का लाभ हो सके।
4: अब आरक्षण पर कोहराम मचा हुआ है। एनडीए के भीतर ही नेता एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज जयपुर की, जहां पर नीट पीजी की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ है और छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान बार बार लाइट कटी, कंप्यूटर बंद हुए जिससे उनकी परीक्षा प्रभावित हुई। छात्रों के हंगामे के बाद इस सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है।
4: ये छात्रों का आक्रोश है, ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, ये शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों की नारेबाजी है। तस्वीरें जयपुर के सीतापुर में एक सेंटर की है जहां नीट पीजी की परीक्षा होनी थी। वैसे तो देश भर के 1000 से ज्यादा सेंटर्स पर आज नीट पीजी की परीक्षा हुई, मगर जयपुर के सीतापुर में ये परीक्षा नहीं हो सकी। आरोप है कि बिजली न होने से परीक्षा में देरी हुई। बाद में लगातार पावर कट हुआ तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द हुई तो छात्र और उनके परिजनों की आंखों में आंसू आ गए।
13: पाँच साल MBBS की तैयारी करी है, पीजी की तैयारी में लगा हुआ है, कितना पढ़ना पड़ता है, इस दोबारा पेपर देगा, इसका ट्रॉमा हम नहीं झेल सकते। 3 साल पीजी की उसमें लगेगा, वहाँ पे भी ट्रॉमा है। इनको एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। आज पेपर इजी आया था, इन लोगों का अगर एग्जाम होता है तो प्लीज आप इनको एडिशनल बेनिफिट।
14: उसमें न AC है, 3.5 घंटे तक कोई एग्जाम देगा, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता। मैं पूरे पसीने में हो गया था स्टार्टिंग से।
15: अगर 9:15 के आसपास 36 क्वेश्चंस अगर बट चुके हैं तो ये पेपर लीक है। क्या पता किसी और सेंटर पे कोई इन 36 क्वेश्चन को देख चुका हो। 36 क्वेश्चन जानते हैं आप कितने होते हैं, सेम नंबर पे 1000 रैंक में चेंज आ जाती है। क्लस्टरिंग इतनी गंदी होती है, सेम क्वेश्चन, सेम पेपर पे, सेम क्वेश्चन पे। तो अगर
16: ना लाइट गई ना कुछ गया, सिर्फ कंप्यूटर बंद हो गया ऑटोमेटिक, ऐसे कैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और ये सिस्टम में ग्लीच नहीं है, ये पेपर लीक है, नीचे हैकिंग चल रही थी, कोई भाई पैसे देके पास हो चुका है।
4: छात्राओं का गुस्सा फूटा और छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे।
17: जयपुर में नीट पीजी एग्जाम के बीच बिजली गुल हुई और उसके बाद अभ्यर्थी थे जो कि एग्जाम छोड़कर बाहर आ गए और अब परीक्षा सेंटर के बाहर ये प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें देखिए, जो अभ्यर्थी है वो नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर ये बीच एग्जाम छोड़कर यहाँ पर आ गए, जिसके बाद यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर के बाहर यहाँ पर हंगामा बरपा। ये देखिए अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, आक्रोश से इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, कब हुई ये बिजली गुल हुई?
18: सर ये जब हम एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे के लिए बिजली गुल हो गई, इनके सारे सिस्टम बंद हो गए। उसके बाद में डेढ़ घंटे में कम से कम 5 से 7 बार है सिस्टम बंद हुआ है और हर बार कम से कम 5-10 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं और बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, खुलेआम चीटिंग हो रही है।
4: छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 5 सितंबर को होगी। विशाल शर्मा, जयपुर, आज तक।
0: पंजाब के संगरूर में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ DC दफ्तर पहुंच गए हैं। दोनों ही मुख्य रास्तों को घेर कर लंबे धरने की तैयारी पूरी कर ली है।
19: ये
4: भारत यूएस ट्रेड डील के विरोध में फिर से उतर आए हैं पंजाब के किसान। संगरूर में डीसी ऑफिस के बाहर किसानों ने तंबू गाड़ दिया है। किसानों के पास राशन, चारपाई, चूल्हे, पंखे और एसी तक मौजूद है। ट्रॉलियों को ही रहने खाने का ठिकाना बना लिया गया है। किसानों ने धरना स्थल को ही अपना पूरा आशियाना बना लिया है। ट्रॉलियों के भीतर चारपाइयां बिछ चुकी हैं, राशन का पूरा बंदोबस्त है और चूल्हे भी चढ़ा दिए गए हैं। लंबे समय तक डटे रहने के इरादे से जरूरत का हर सामान पहले ही जुटा लिया गया है। वहीं भीषण गर्मी से राहत के लिए ट्रॉलियों में पंखे लगाए गए हैं। इस पूरे इंतजाम से किसानों का इरादा साफ नजर आता है। वे अपनी मांगों पर लंबे समय तक प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इस धरने की मुख्य वजह प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील है, जिससे किसान अपनी आमदनी पर बड़ा खतरा मान रहे हैं। इसके अलावा किसान मजदूरों की पूरी कर्ज माफी, फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और नई कृषि नीति लागू करने की मांग भी जोर शोर से उठा रहे हैं। यह पूरा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की अगुवाई में खोला गया है। संगठन ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस बात नहीं बनती तब तक ये धरना जारी रहेगा। कमलजीत संधू के साथ कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: अब बात करेंगे चित्रकूट में आए सैलाबी संकट की, जहां पर मंदाकिनी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर भारी आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट डूब गए हैं, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, लोग संकट में घिरे हैं और लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बीच में पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।
19: आसमान देखिए मौसम कैसा है।
20: पानी में तैरता हुआ शहर देखा है कभी? अब देख लीजिए, जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही है। शहर में सैलाब आया है, दुकान मकान सब पानी में डूबे हुए। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी।
21: चित्रकूट जनपद में मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे कल मंदाकिनी नदी लगभग 9 मीटर के ऊपर बह रही थी, जिससे रामघाट का जो एरिया था पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। जिन सड़कों पर कभी वाहन चलते थे वहां नाव चलने लगी थी। मंदाकिनी नदी के बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि मध्य प्रदेश प्रशासन को यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना पड़ा है और SDRF टीम जो यूपी प्रशासन था, SDRF टीम और PAC टीम को लगा करके जो लोग अपने घरों में फंसे थे उनको रेस्क्यू करके बचाया गया है।
20: बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए, लोग फंसे हुए, बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब है कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ इस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है।
19: अभी आप आसमान देखिए मौसम कैसा है। ऊपर बोर्ड पे अगर खाना है तो दे दो, जो बचे हैं उनको खाना दे दो, निकालो इनको भाई, आप लोग बचा सकते हो उनको उतारो।
20: दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है।
22: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अति शीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और इन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए।
20: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
23: इस हम खड़े हैं रामघाट पे, जहां मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें यहां पर सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं, लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं, जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से लगभग आधा दर्जन से लोगों का गाँव का संपर्क टूट गया है।
20: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
1: और पानी का जो जलस्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें पूरी प्रकार से। जहाँ पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
20: संकट बड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है। कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके।
1: आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है या कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं, सभी व्यवस्थाएं की गई है।
20: अब इन तस्वीरों को देखिए, ये नेशनल हाईवे 35 पर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर बना पुल था जिसे मंदाकिनी की लहरें अपने साथ बहा ले गई।
23: ऐसे हम खड़े हैं उसी मंदाकिनी रोड के पुल पर जहां आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह मंदाकिनी नदी का मेन पुल है जो NH 35 पे यह पुल बनाया गया है जो शहर को जोड़ता है। उसी रास्ते से प्रयागराज के लिए जाया जाता है, लेकिन कल मंदाकिनी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पुल के ऊपर से यहाँ पानी बह रहा था, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी के पुल का अप्रोच रोड है वह उसका रोड का लगभग 20 मीटर नीचे धस गया है, जिसकी वजह से ये अप्रोच रोड का जो एक कोना है वह हट गया। यहाँ पर पुल को बनाने के लिए जो कर्मी है यहाँ पर लगे हुए हैं।
20: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और उन तक मदद पहुंचाई। दिन रात लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है क्योंकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसी ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। अखिलेश कुमार सोनकर, चित्रकूट आज तक।
0: अब आज नेपाल में मचे हाहाकार के, नेपाल में तबाही के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जिन इलाकों में ये तबाही सबसे ज्यादा हुई है वहां पर पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं, संपर्क के साधन ठप हैं और दुर्गम पहाड़ों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है। नुआकोट एयरबेस से लगातार उड़ाने भरी जा रहे हैं कहीं लोगों को निकालने के लिए, कहीं राहत पहुंचाने के लिए। देखिए इन पहाड़ों में जिंदगी बचाने की जंग आखिर कैसे लड़ी जा रही है।
20: नेपाल में आपदाग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है इसको ऐसे समझिए कि नुआकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता है, कुछ लोगों को उतारता है और फिर जरूरी सामान लेकर उन दुर्गम पहाड़ों की ओर उड़ जाता है जहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
2: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोग बचाया जा रहा है।
20: अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो नुआकोट एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के इंजन कभी बंद नहीं होते, रेस्क्यू टीमें लगातार उड़ान भर रही हैं। नेपाली सेना के साथ साथ सिविल हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में लगा दिए गए हैं।
2: लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर काफी तेजी से चल रहे हैं, एक के बाद एक उड़ाने हैं या तो जो सैनिक है।

0: नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों में जाने का एकमात्र तरीका ये हेलीकॉप्टर ही है, क्योंकि रसुआ समेत कई इलाके पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गए हैं।
1: नुआकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है। जहाजों की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
0: इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, जिंदगियों को मलबे में सिमटते देखा। कुछ लोग किस्मत वाले भी थे जो किसी तरह से बच गए।
1: आप लोग किस इलाके में थे? कितने दिन से थे आप लोग वहाँ पे? तो वहाँ पर क्या स्थिति थी? खाना पीना था? कितने दिन से छुटे हुए थे आप लोग? कितने लोग थे आप लोग जो वहाँ पे थे? कितना जना था वहाँ पे? 3 जना थे।
0: रसुआ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए जो लोग किस्मत से बच भी गए हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
2: बाहर दिना है।
1: आप लोग वहीं पे से पानी?
2: हाँ, लैंडस्लाइड हुआ है।
1: तो आप लोग मतलब बचे कैसे वहाँ पे? जब आए तो कहाँ गए थे?
2: ऊपर से चढ़ा के
1: फोन कॉल लग रहा था, खाना पीना
2: तो ठीक है लेकिन फोन तो नहीं है।
0: रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को बेस कैंप में फर्स्ट एड दी जा रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास ही मेडिकल कैंप लगाया है, जहां पीने के पानी के साथ साथ जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।
1: इस आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए नेपाली सेना ने यहां पर एक मेडिकल कैंप तैयार किया है। एक चौथा फिर अस्पताल आप समझ लीजिए एयर बेस है, तो जहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ उनका इलाज किया जाता है। और उसके बाद कई बार जो गंभीर खतरे में है उन्हें तुरंत काठमांडू में लिफ्ट कर लिया जाता है। आप समझिए कि जिस तरह के लोग आई है, जो पानी के बहाव में थे, मलबे के बहाव में थे, किसी का दम टूट रहा था, उन सबको ला सकती बड़ी सी चुनौती है। और इसीलिए जितनी एजेंसियां हैं, जितने हाथ हैं, हर कोई मदद के लिए खड़ा है। इधर नेपाल की सेना ने जो ऑपरेशन अंजाम दिया, मेडिकल कैंप में उसका ख्याल रखा जा रहा है, इलाज पहुंचाया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है।
0: आशुतोष मिश्रा, नुआकोट बेस कैंप, नेपाल। आज तक
3: रूस ने इस महीने यूक्रेन की राजधानी कीव को इतने जख्म दिए हैं कि उन्हें भरने में कई साल लग जाएंगे। पिछले 3 दिन से रूस लगातार मिसाइल और ड्रोन से बम बरसा रहा है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। रिहायशी इलाकों में कई इमारतों में इन हमलों के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने में बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को सबक सिखाने की चेतावनी दी है।
4: कीव में रूसी हमले ने मचाया कोहराम। एयर स्ट्राइक में 37 लोगों की गई जान। आग की लपटों में घिरे दफ्तर दुकान। कीव एक बार फिर दहल रहा है। कीव एक बार फिर रूसी हमलों का शिकार बना है। यूक्रेन की राजधानी की ये तस्वीरें तबाही की सारी कहानी बयां कर रही हैं। रूसी बमबारी ने कीव और आसपास के कई इलाकों पर इतने बम बरसाए हैं कि 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लगातार तीसरी रात भर रूस के ड्रोन बम बरसाते रहे, एक के बाद एक धमाके होते रहे। रिहायशी इलाकों की कई इमारतों में आग लग गई और लोग फंस गए। सारी रात बचाव अभियान चलाया गया और आग बुझाने की कोशिश की जाती रही। धू धू कर जलता ये वेयर हाउस तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। धमाके के साथ ही इसमें आग लग गई और काले धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कई घंटे लग गए। रूसी हमलों ने कीव रीजन में ही नहीं, ओडेसा में भी भारी तबाही मचाई है, जहां एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए।
5: Станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальною операцією. Мої співчуття усім рідним та близьким. Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитись.

0: एसईओ समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की नई उड़ान पर जोर। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज। एससीएसटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने करवाया केस। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के जेपी एनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का मुद्दा उठाया, कहा इन लोगों ने खाया पैसा। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप की हत्या के मामले में खुलासा। ड्राइवर ने ही दो दोस्तों के साथ मिलकर मारी गोली। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। और नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा। फिर उफान पर त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बात उत्तर प्रदेश में मची सियासत की करते हैं। यूपी की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर जंग तेज हो गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर जेपी एनआईसी से लेकर एक्सप्रेसवेज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो पलटवार कर रही है और अखिलेश सरकार के दौर के खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है।
1: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी जेपीएनआईसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जेपीएनआईसी को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
2: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। जेपी एनआईसी बीजेपी ने जेपी बेच दिया।
1: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी एनआईसी के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़। इसके बावजूद काम अधूरा रहा। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
3: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
1: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं बीजेपी का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
2: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है जिसको लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
3: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ सड़क बिजली पानी कानून व्यवस्था रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं। और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया और इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चर्चा उनके मुसलमानों पर दिए गए बयान की हो रही है। अब उनके बयान पर सियासत भी जबरदस्त है।
4: अमेरिका के न्यूयॉर्क में मानवता को लेकर कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे। मोहन भागवत ने यूं तो धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में रह रहे मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। पहले वो बयान सुनिए।
5: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
4: मोहन भागवत ने उधर न्यूयॉर्क में बयान दिए और यहाँ हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई। मोहन भागवत के बयान को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हाथों हाथ लिया।
6: हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ, अजीज रिश्तेदार भाई नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है।
7: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहनाया जाए।
4: मोहन भागवत के बयान ने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया। विपक्ष भागवत के बहाने बीजेपी को घेरने लगी।
8: अपने जो उनके निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी उनके आचरण की समीक्षा करके उनको उनके बारे में निर्णय ले ले। मोहन आदरणीय भागवत जी,
9: केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री कौन सी जुबान बोलते हैं? मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, तीन चार को तो तुरंत आप फौरी तौर पे गिन सकते हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान के सर जमी पे एक बात और अमेरिका की धरती पे सुविधानुसार दूसरी बात, ये विरोधाभास देश को लील लेगा।
4: मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत सुलगी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच में विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच ये बयानबाजी तेज हुई है।
4: सवर्ण छात्रों ने जिस रोज से आरक्षण में बदलाव के लिए आवाज उठाई उसी रोज से आरक्षण को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी। इसी सियासत के जोर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दे दिया और इसी बयान ने एनडीए में बवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान नाराज हो गए।
10: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहां कहा गया कि आर्थिक आधार पे। तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं तो ये छोड़ दें, आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें, वो आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। मांझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या मांझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें।
4: चिराग पासवान सीधे सीधे जीतन राम मांझी का इस्तीफा मांगने लगे तो जीतन राम मांझी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। अब मांझी ने भी चिराग का इस्तीफा मांग लिया है।
11: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।
4: मतलब आरक्षण पर एनडीए के नेताओं ने आपस में ही विवाद कर लिया है। इन बयानों के बीच में संतोष सुमन का बयान दोबारा आया है।
12: मैंने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों को चाहे किसी को भी, तो समाज में कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ तक अभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुँचा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको संवेदना रखनी चाहिए और ऐसी नीति और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको भी आरक्षण का लाभ हो सके।
4: अब आरक्षण पर कोहराम मचा हुआ है। एनडीए के भीतर ही नेता एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज जयपुर की, जहां पर नीट पीजी की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ है और छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान बार बार लाइट कटी, कंप्यूटर बंद हुए जिससे उनकी परीक्षा प्रभावित हुई। छात्रों के हंगामे के बाद इस सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है।
4: ये छात्रों का आक्रोश है, ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, ये शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों की नारेबाजी है। तस्वीरें जयपुर के सीतापुर में एक सेंटर की है जहां नीट पीजी की परीक्षा होनी थी। वैसे तो देश भर के 1000 से ज्यादा सेंटर्स पर आज नीट पीजी की परीक्षा हुई, मगर जयपुर के सीतापुर में ये परीक्षा नहीं हो सकी। आरोप है कि बिजली न होने से परीक्षा में देरी हुई। बाद में लगातार पावर कट हुआ तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द हुई तो छात्र और उनके परिजनों की आंखों में आंसू आ गए।
13: पाँच साल इसने MBBS की तैयारी करी है, PG की तैयारी में लगा हुआ है, कितना पढ़ना पड़ता है, ये दोबारा पेपर देगा, इसका ट्रॉमा हम नहीं झेल सकते। 3 साल PG की उसमें लगेगा, वहाँ पे भी ट्रॉमा है। इनको एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। आज पेपर इजी आया था, इन लोगों का अगर एग्जाम होता है तो प्लीज आप इनको एडिशनल बेनिफिट।
14: उसमें न AC है, 3.5 घंटे तक कोई एग्जाम देगा, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता। मैं पूरे पसीने में हो गया था स्टार्टिंग से।
15: अगर 9:15 के आसपास 36 क्वेश्चंस अगर बट चुके हैं तो ये पेपर लीक है। क्या पता किसी और सेंटर पे कोई इन 36 क्वेश्चन को देख चुका हो। 36 क्वेश्चन जानते हैं आप कितने होते हैं, सेम नंबर पे 1000 रैंक में चेंज आ जाती है। क्लस्टरिंग इतनी गंदी होती है, सेम क्वेश्चन, सेम पेपर पे, सेम क्वेश्चन पे। तो अगर
16: ना लाइट गई ना कुछ गया, सिर्फ कंप्यूटर बंद हो गया ऑटोमेटिक, ऐसे कैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और ये सिस्टम में ग्लीच नहीं है, ये पेपर लीक है, नीचे हैकिंग चल रही थी, कोई भाई पैसे देके पास हो चुका है।
4: छात्राओं का गुस्सा फूटा और छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे।
17: जयपुर में नीट PG एग्जाम के बीच बिजली गुल हुई और उसके बाद अभ्यर्थी थे जो कि एग्जाम छोड़कर बाहर आ गए और अब परीक्षा सेंटर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जो अभ्यर्थी है वो नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर ये बीच एग्जाम छोड़कर यहाँ पर आ गए, जिसके बाद यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर के बाहर यहाँ पर हंगामा बरपा। ये देखिए अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, आक्रोश से इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, कब हुई ये बिजली गुल हुई?
18: सर ये जब हम एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे के लिए बिजली गुल हो गई, इनके सारे सिस्टम बंद हो गए। उसके बाद में डेढ़ घंटे में कम से कम 5 से 7 बार है सिस्टम बंद हुआ है और हर बार कम से कम 5-10 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं और बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, खुलेआम चीटिंग हो रही है।
4: छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 5 सितंबर को होगी। विशाल शर्मा, जयपुर, आज तक।
0: पंजाब के संगरूर में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ DC दफ्तर पहुंच गए हैं। दोनों ही मुख्य रास्तों को घेर कर लंबे धरने की तैयारी पूरी कर ली है।
19: ये
4: यूएस ट्रेड डील के विरोध में फिर से उतर आए हैं पंजाब के किसान। संगरूर में डीसी ऑफिस के बाहर किसानों ने तंबू गाड़ दिया है। किसानों के पास राशन, चारपाई, चूल्हे, पंखे और एसी तक मौजूद हैं। ट्रॉलियों को ही रहने खाने का ठिकाना बना लिया गया है। किसानों ने धरना स्थल को ही अपना पूरा आशियाना बना लिया है। ट्रॉलियों के भीतर चारपाइयां बिछ चुकी हैं, राशन का पूरा बंदोबस्त है और चूल्हे भी चढ़ा दिए गए हैं। लंबे समय तक डटे रहने के इरादे से जरूरत का हर सामान पहले ही जुटा लिया गया है। वहीं भीषण गर्मी से राहत के लिए ट्रॉलियों में पंखे लगाए गए हैं। इस पूरे इंतजाम से किसानों का इरादा साफ नजर आता है। वे अपनी मांगों पर लंबे समय तक प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इस धरने की मुख्य वजह प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील है, जिससे किसान अपनी आमदनी पर बड़ा खतरा मान रहे हैं। इसके अलावा किसान मजदूरों की पूरी कर्ज माफी, फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और नई कृषि नीति लागू करने की मांग भी जोर शोर से उठा रहे हैं। यह पूरा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की अगुवाई में खोला गया है। संगठन ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस बात नहीं बनती तब तक ये धरना जारी रहेगा। कमलजीत संधू के साथ कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: अब बात करेंगे चित्रकूट में आए सैलाबी संकट की, जहां पर मंदाकिनी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर भारी आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट डूब गए हैं, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, लोग संकट में घिरे हैं और लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बीच में पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।
19: आसमान देखिए मौसम कैसा है।
20: पानी में तैरता हुआ शहर देखा है कभी? अब देख लीजिए, जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही है। शहर में सैलाब आया है, दुकान मकान सब पानी में डूबे हुए। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी।
21: चित्रकूट जनपद में मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे कल मंदाकिनी नदी लगभग 9 मीटर के ऊपर बह रही थी, जिससे रामघाट का जो एरिया था पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। जिन सड़कों पर कभी वाहन चलते थे वहां नाव चलने लगी थी। मंदाकिनी नदी के बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि मध्य प्रदेश प्रशासन को यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना पड़ा है और SDRF टीम जो यूपी प्रशासन था, SDRF टीम और PAC टीम को लगा करके जो लोग अपने घरों में फंसे थे उनको रेस्क्यू करके बचाया गया है।
20: बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब है कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ इस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है।
19: अभी आप आसमान देखिए मौसम कैसा है। ऊपर बोर्ड पे अगर खाना है तो दे दो, जो बचे हैं उनको खाना दे दो, निकालो इनको भाई, आप लोग बचा सकते हो उनको उतारो।
20: दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है।
22: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अति शीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और इन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए।
20: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
23: इस हम खड़े हैं रामघाट पे, जहां मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें यहां पर, सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं, लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं। जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से लगभग आधा दर्जन से लोगों का गाँव का संपर्क टूट गया है।
20: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
1: और पानी का जो जलस्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें पूरी प्रकार से। जहाँ पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
20: संकट बड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है। कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके।
1: आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है या कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं, सभी व्यवस्थाएं की गई है।
20: अब इन तस्वीरों को देखिए, ये नेशनल हाईवे 35 पर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर बना पुल था जिसे मंदाकिनी की लहरें अपने साथ बहा ले गई।
23: ऐसे हम खड़े हैं उसी मंदाकिनी रोड के पुल पर जहां आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह मंदाकिनी नदी का मेन पुल है जो NH 35 पे यह पुल बनाया गया है जो शहर को जोड़ता है। उसी रास्ते से प्रयागराज के लिए जाया जाता है, लेकिन कल मंदाकिनी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पुल के ऊपर से यहाँ पानी बह रहा था, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी के पुल का अप्रोच रोड है वह उसका रोड का लगभग 20 मीटर नीचे धस गया है, जिसकी वजह से ये अप्रोच रोड का जो एक कोना है वह हट गया। यहाँ पर पुल को बनाने के लिए जो कर्मी है यहाँ पर लगे हुए हैं।
20: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और उन तक मदद पहुंचाई। दिन रात लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है क्योंकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसी ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। अखिलेश कुमार सोनकर, चित्रकूट आज तक।
0: अब आज नेपाल में मचे हाहाकार के नेपाल में तबाही के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जिन इलाकों में ये तबाही सबसे ज्यादा हुई है वहां पर पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं, संपर्क के साधन ठप हैं और दुर्गम पहाड़ों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है। नुआकोट एयरबेस से लगातार उड़ाने भरी जा रही हैं कहीं लोगों को निकालने के लिए, कहीं राहत पहुंचाने के लिए। देखिए इन पहाड़ों में जिंदगी बचाने की जंग आखिर कैसे लड़ी जा रही है।
20: नेपाल में आपदाग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है इसको ऐसे समझिए कि नुआकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता है, कुछ लोगों को उतारता है और फिर जरूरी सामान लेकर उन दुर्गम पहाड़ों की ओर उड़ जाता है जहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
2: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोग बचाया जा रहा है।
20: अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो नुआकोट एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के इंजन कभी बंद नहीं होते, रेस्क्यू टीमें लगातार उड़ान भर रही हैं। नेपाली सेना के साथ साथ सिविल हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में लगा दिए गए हैं।
2: लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर काफी तेजी से चल रहे हैं, एक के बाद एक उड़ाने हैं हेलीकॉप्टर, या तो जो सैनिक हैं या फिर जवान रेस्क्यूअर हैं उन्हें एयर ड्रॉप कर रहे हैं या फिर उसके साथ साथ खाना पीना प्रभावित इलाकों में उड़ाने की कोशिश की जा रही है।
20: नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों में जाने का एकमात्र तरीका ये हेलीकॉप्टर ही है क्योंकि रसुआ समेत कई इलाके पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गए हैं।
2: नुआकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है। जहाजों की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुँचाने की कोशिश की जा रही है।
20: इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, जिंदगियों को मलबे में सिमटते देखा। कुछ लोग किस्मत वाले भी थे जो किसी तरह से बच गए।
2: आप लोग किस इलाके में थे? कितने दिन से थे आप लोग वहाँ पे? बात है तो वहाँ पर क्या स्थिति थी? खाना पीना था? कितने दिन से छुटे हुए थे आप लोग? कितने लोग थे आप लोग जो वहाँ पे थे? कितना जना था वहाँ पे? तीन जना थे।
20: रसुआ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए जो लोग किस्मत से बच भी गए हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
3: बाहर जिला है,
2: आप लोग वहीं पे से
3: पानी? हाँ, हुआ है।
2: तो आप लोग मतलब बचे कैसे वहाँ पे? जब आए तो कहाँ गए थे?
3: ऊपर से चढ़ा गए,
2: फोन कॉल लग रहा था, खाना पीना,
3: खाना पाना तो ठीक है लेकिन फोन तो नहीं है।
20: रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को बेस कैंप में फर्स्ट एड दी जा रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास ही मेडिकल कैंप लगाया है, जहां पीने के पानी के साथ साथ जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।
2: इस आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए नेपाली सेना ने यहां पर एक मेडिकल कैंप तैयार किया है। एक चौथा फिर अस्पताल आप समझ लीजिए एयर बेस है, तो जहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ उनका इलाज किया जाता है। और उसके बाद कई बार जो गंभीर खतरे में है उन्हें तुरंत काठमांडू में लिफ्ट कर लिया जाता है। आप समझिए कि जिस तरह के लोगों की स्थितियां आई हैं, जो पानी के बहाव में थे, मलबे के बहाव में थे, किसी का दम टूट रहा था, उन सबको ला करके बड़ी चुनौती है। और इसीलिए जितनी एजेंसियां हैं, जितने हाथ हैं, हर कोई मदद के लिए खड़ा है। एक तरफ नेपाल की सेना है, उसको अपने अंजाम मेडिकल कैंप में उनका ख्याल रखा जा रहा है, इलाज पहुँचाया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है।
20: आशुतोष मिश्रा, नुआकोट बेस कैंप, नेपाल। आज तक
0: रूस ने इस महीने यूक्रेन की राजधानी कीव को इतने जख्म दिए हैं कि उन्हें भरने में कई साल लग जाएंगे। पिछले 3 दिन से रूस लगातार मिसाइल और ड्रोन से बम बरसा रहा है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। रिहायशी इलाकों में कई इमारतों में इन हमलों के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने में बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को सबक सिखाने की चेतावनी दी है।
20: कीव में रूसी हमले ने मचाया कोहराम। एयर स्ट्राइक में 37 लोगों की गई जान। आग की लपटों में घिरे दफ्तर दुकान। कीव एक बार फिर दहल रहा है। कीव एक बार फिर रूसी हमलों का शिकार बना है। यूक्रेन की राजधानी की ये तस्वीरें तबाही की सारी कहानी बयां कर रही हैं। रूसी बमबारी ने कीव और आसपास के कई इलाकों पर इतने बम बरसाए हैं कि 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लगातार तीसरी रात भर रूस के ड्रोन बम बरसाते रहे, एक के बाद एक धमाके होते रहे। रिहायशी इलाकों की कई इमारतों में आग लग गई और लोग फंस गए। सारी रात बचाव अभियान चलाया गया और आग बुझाने की कोशिश की जाती रही। धू धू कर जलता ये वेयर हाउस तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। धमाके के साथ ही इसमें आग लग गई और काले धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कई घंटे लग गए। रूसी हमलों ने कीव रीजन में ही नहीं ओडेसा में भी भारी तबाही मचाई है, जहां एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए।
5: станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальною операцією. Мої співчуття усім рідним та близьким. Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр Міністри внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям.
6: रूसी मिसाइलें और ड्रोन लगातार अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन एंटी मिसाइल सिस्टम न होने से यूक्रेन इन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: एसईओ समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की नई उड़ान पर जोर। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज। एससी एसटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने करवाया केस। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई योगी के जेपी एनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का मुद्दा उठाया। कहा इन लोगों ने खाया पैसा। लखनऊ में हिंदुवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप की हत्या के मामले में खुलासा। ड्राइवर ने ही दो दोस्तों के साथ मिलकर मारी गोली। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। और नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा। फिर उफान पर त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब आज उत्तर प्रदेश में मची सियासत की करते हैं। यूपी की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर जंग तेज हो गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर जेपी एनआईसी से लेकर एक्सप्रेसवेज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो पलटवार कर रही है और अखिलेश सरकार के दौर के खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है।
1: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी जेपीएनआईसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जेपीएनआईसी को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
2: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। जेपीएनआईसी बीजेपी ने जेपी बेच दिया।
1: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपीएनआईसी के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़। इसके बावजूद काम अधूरा रहा। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
3: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
1: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं बीजेपी का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
2: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है जिसको लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
3: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ सड़क बिजली पानी कानून व्यवस्था रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया और इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चर्चा उनके मुसलमानों पर दिए गए बयान की हो रही है। अब उनके बयान पर सियासत भी जबरदस्त है।
4: अमेरिका के न्यूयॉर्क में मानवता को लेकर कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे। मोहन भागवत ने यूं तो धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में रह रहे मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। पहले वो बयान सुनिए।
5: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
4: मोहन भागवत ने उधर न्यूयॉर्क में बयान दिए और यहाँ हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई। मोहन भागवत के बयान को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हाथों हाथ लिया।
6: हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ, अजीज रिश्तेदार, भाई, नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है।
7: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहनाया जाए।
4: मोहन भागवत के बयान ने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया। विपक्ष भागवत के बहाने बीजेपी को घेरने लगी।
8: अपने जो उनके निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी उनके आचरण की समीक्षा करके उनको उनके बारे में निर्णय ले ले। मोहन आदरणीय भागवत जी,
9: केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री कौन सी जुबान बोलते हैं? मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, तीन चार को तो तुरंत आप फौरी तौर पे गिन सकते हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान के सरजमी पे एक बात और अमेरिका की धरती पे सुविधानुसार दूसरी बात, ये विरोधाभास देश को ले लेगा।
4: मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत सुलगी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच में विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच ये बयानबाजी तेज हुई है।
4: सवर्ण छात्रों ने जिस रोज से आरक्षण में बदलाव के लिए आवाज उठाई उसी रोज से आरक्षण को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी। इसी सियासत के जोर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दे दिया और इसी बयान ने एनडीए में बवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान नाराज हो गए।
10: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहां कहा गया कि आर्थिक आधार पे? तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से? जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का, मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें वो आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। मांझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या मांझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें।
4: चिराग पासवान सीधे सीधे जीतन राम मांझी का इस्तीफा मांगने लगे तो जीतन राम मांझी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। अब मांझी ने भी चिराग का इस्तीफा मांग लिया है।
11: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।
4: मतलब आरक्षण पर एनडीए के नेताओं ने आपस में ही विवाद कर लिया है। इन बयानों के बीच में संतोष सुमन का बयान दोबारा आया है।
12: मैंने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों को, चाहे किसी को भी, तो समाज में कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहां तक अभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको संवेदना रखनी चाहिए और ऐसी नीति और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको भी आरक्षण का लाभ हो सके।
4: अब आरक्षण पर कोहराम मचा हुआ है। एनडीए के भीतर ही नेता एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज जयपुर की, जहां पर नीट पीजी की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ है और छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान बार बार लाइट कटी, कंप्यूटर बंद हुए जिससे उनकी परीक्षा प्रभावित हुई। छात्रों के हंगामे के बाद इस सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है।
4: ये छात्रों का आक्रोश है, ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, ये शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों की नारेबाजी है। तस्वीरें जयपुर के सीतापुर में एक सेंटर की है जहां नीट पीजी की परीक्षा होनी थी। वैसे तो देश भर के 1000 से ज्यादा सेंटर्स पर आज नीट पीजी की परीक्षा हुई, मगर जयपुर के सीतापुर में ये परीक्षा नहीं हो सकी। आरोप है कि बिजली न होने से परीक्षा में देरी हुई। बाद में लगातार पावर कट हुआ तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द हुई तो छात्र और उनके परिजनों की आंखों में आंसू आ गए।
13: MBBS की तैयारी करी है, पीजी की तैयारी में लगा हुआ है, कितना पढ़ना पड़ता है, इस दोबारा पेपर देगा, इसका ट्रॉमा हम नहीं झेल सकते। 3 साल पीजी की उस पे लगेगा, वहाँ पे भी ट्रॉमा है। इनको एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। आज पेपर इजी आया था, इन लोगों का अगर एग्जाम होता है तो प्लीज आप इनको एडिशनल बेनिफिट।
14: उसमें न AC है, 3.5 घंटे तक कोई एग्जाम देगा, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता। मैं पूरे पसीने में हो गया था स्टार्टिंग से।
15: अगर 9:15 के आसपास 36 क्वेश्चंस अगर बट चुके हैं तो ये पेपर लीक है। क्या पता किसी और सेंटर पे कोई इन 36 क्वेश्चन को देख चुका हो। 36 क्वेश्चन जानते हैं आप कितने होते हैं? सेम नंबर पे 1000 रैंक में चेंज आ जाती है। क्लस्टरिंग इतनी गंदी होती है, सेम क्वेश्चन पे। तो अगर
16: ना लाइट गई ना कुछ गया, सिर्फ कंप्यूटर बंद हो गया ऑटोमेटिक। ऐसे कैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा? और ये सिस्टम में ग्लीच नहीं है, ये पेपर लीक है। नीचे हैकिंग चल रही थी, कोई भाई पैसे दे के पास हो चुका है।
4: छात्राओं का गुस्सा फूटा और छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे।
17: जयपुर में नीट पीजी एग्जाम के बीच बिजली गुल हुई और उसके बाद अभ्यर्थी थे जो कि एग्जाम छोड़कर बाहर आ गए और अब परीक्षा सेंटर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जो अभ्यर्थी है वो नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर ये बीच एग्जाम छोड़कर यहाँ पर आ गए, जिसके बाद यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर के बाहर यहाँ पर हंगामा बरपा। ये देखिए अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, आक्रोश से इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, कब ये बिजली गुल हुई?
18: सर ये जब हम एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे के लिए बिजली गुल हो गई, इनके सारे सिस्टम बंद हो गए। उसके बाद में डेढ़ घंटे में कम से कम 5 से 7 बार है सिस्टम बंद हुआ है और हर बार कम से कम 5-10 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं और बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, खुलेआम चीटिंग हो रही है।
4: छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 5 सितंबर को होगी। विशाल शर्मा, जयपुर, आज तक।
0: पंजाब के संगरूर में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ डीसी दफ्तर पहुंच गए हैं। दोनों ही मुख्य रास्तों को घेर कर लंबे धरने की तैयारी पूरी कर ली है।
4: भारत यूएस ट्रेड डील के विरोध में फिर से उतर आए हैं पंजाब के किसान। संगरूर में डीसी ऑफिस के बाहर किसानों ने तंबू गाड़ दिया है। किसानों के पास राशन, चारपाई, चूल्हे, पंखे और एसी तक मौजूद हैं। ट्रॉलियों को ही रहने खाने का ठिकाना बना लिया गया है। किसानों ने धरना स्थल को ही अपना पूरा आशियाना बना लिया है। ट्रॉलियों के भीतर चारपाइयां बिछ चुकी हैं, राशन का पूरा बंदोबस्त है और चूल्हे भी चढ़ा दिए गए हैं। लंबे समय तक डटे रहने के इरादे से जरूरत का हर सामान पहले ही जुटा लिया गया है। वहीं भीषण गर्मी से राहत के लिए ट्रॉलियों में पंखे लगाए गए हैं। इस पूरे इंतजाम से किसानों का इरादा साफ नजर आता है। वे अपनी मांगों पर लंबे समय तक प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इस धरने की मुख्य वजह प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील है, जिससे किसान अपनी आमदनी पर बड़ा खतरा मान रहे हैं। इसके अलावा किसान मजदूरों की पूरी कर्ज माफी, फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और नई कृषि नीति लागू करने की मांग भी जोर शोर से उठा रहे हैं। ये पूरा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की अगुवाई में खोला गया है। संगठन ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस बात नहीं बनती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। कमलजीत संधु के साथ कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: अब बात करेंगे चित्रकूट में आए सैलाबी संकट की, जहां पर मंदाकिनी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर भारी आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट डूब गए हैं, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, लोग संकट में घिरे हैं और लोगों की मदद के लिए लगातार इसके ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बीच में पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।
19: आसमान देखिए मौसम कैसा है।
20: ये इधर कुछ दो आदमी लाल जाने में होंगे।
21: पानी में तैरता हुआ शहर देखा है कभी? अब देख लीजिए, जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही है। शहर में सैलाब आया है, दुकान मकान सब पानी में डूबे हुए। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी।
22: चित्रकूट जनपद में मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे कल मंदाकिनी नदी लगभग 9 मीटर के ऊपर बह रही थी, जिससे रामघाट का जो एरिया था पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। जिन सड़कों पर कभी वाहन चलते थे वहां नाव चलने लगी थी। मंदाकिनी नदी के बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि मध्य प्रदेश प्रशासन को यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना पड़ा है और SDTRF टीम, जो यूपी प्रशासन था, SDRF टीम और PAC टीम को लगा करके जो लोग अपने घरों में फंसे थे उनको रेस्क्यू करके बचाया गया है।
21: बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए, लोग फंसे हुए, बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब है कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ इस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है।
19: अभी आप आसमान देखिए मौसम कैसा है। बोर्ड पे अगर खाना है तो दे दो, जो बचे हैं उनको खाना दे दो, निकालो इनको भाई, आप लोग बचा सकते हो उनको उतारो।
21: दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है।
23: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अतिशीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और इन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए।
21: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
24: हम खड़े हैं रामघाट पे, जहाँ मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है, वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें, यहां पर सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं, लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं। जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से लगभग आधा दर्जन से लोगों का गाँव का संपर्क टूट गया है।
21: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
1: और पानी का जो जल स्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें। पूरी प्रकार से जहाँ पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट्स, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
21: संकट बड़ा है। सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है। कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।
1: आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है, कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है, तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं। सभी व्यवस्थाएं की गई है।
21: अब इन तस्वीरों को देखिए। ये नेशनल हाईवे 35 पर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर बना पुल था जिसे मंदाकिनी की लहरें अपने साथ बहा ले गई।
24: खड़े हैं उसी मंदाकिनी रोड के पुल पर जहां इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह मंदाकिनी नदी का मेन पुल है जो NH 35 पे यह पुल बनाया गया है जो शहर को जोड़ता है। उसी रास्ते से प्रयागराज के लिए जाया जाता है। लेकिन कल मंदाकिनी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पुल के ऊपर से यहां पानी बह रहा था, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी के पुल का अप्रोच रोड है वह उसका रोड का लगभग 20 मीटर नीचे धस गया है, जिसकी वजह से ये अप्रोच रोड का जो एक कोना है वह हट गया। यहाँ पर पुल को बनाने के लिए जो कर्मी है यहाँ पर लगे हुए हैं।
21: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और उन तक मदद पहुंचाई। दिन रात लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है क्योंकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसी ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। अखिलेश कुमार सोनकर, चित्रकूट आज तक।

0: है क्योंकि सड़कें टूट चुके हैं, संपर्क के साधन ठप हैं और दुर्गम पहाड़ों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है। नुवाकोट एयरबेस से लगातार उड़ाने भरी जा रहे हैं, कहीं लोगों को निकालने के लिए, कहीं राहत पहुंचाने के लिए। देखिए इन पहाड़ों में जिंदगी बचाने की जंग आखिर कैसे लड़ी जा रही है।
1: नेपाल में आपदाग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है, इसको ऐसे समझिए कि नुवाकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता है, कुछ लोगों को उतारता है और फिर जरूरी सामान लेकर उन दुर्गम पहाड़ों की ओर उड़ जाता है जहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
2: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोगों को बचाया जा रहा है।
1: अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो नुवाकोट एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के इंजन कभी बंद नहीं होते। रेस्क्यू टीमें लगातार उड़ान भर रही हैं। नेपाली सेना के साथ साथ सिविल हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में लगा दिए गए हैं।
2: लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर काफी तेजी से चल रहे हैं। एक के बाद एक उड़ाने हैं, हेलीकॉप्टर या तो जो सैनिक हैं या फिर जवान रेस्क्यूअर हैं उन्हें एयर ड्रॉप कर रहे हैं या फिर उसके साथ साथ खाना पीना जो है प्रभावित इलाकों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
1: नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों में जाने का एकमात्र तरीका ये हेलीकॉप्टर ही है क्योंकि रसुआ समेत कई इलाके पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गए हैं।
2: नुवाकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है। जहाजों की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
1: इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, जिंदगियों को मलबे में सिमटते देखा। कुछ लोग किस्मत वाले भी थे जो किसी तरह से बच गए।
2: आप लोग किस इलाके में थे? कितने दिन से थे आप लोग वहाँ पे? बात तो वहाँ पर क्या स्थिति थी? खाना पीना था? कितने दिन से फंसे हुए थे आप लोग? कितने लोग थे आप लोग जो वहाँ पे थे?
1: रसुआ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है, वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए जो लोग किस्मत से बच भी गए हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
3: आओ, बाहर दिना है।
2: आप लोग वहीं पे थे?
3: आप
2: लोग मतलब बचे कैसे वहाँ पे? जब आए तो कहाँ गए थे?
3: ऊपर से तरह
1: रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को बेस कैंप में फर्स्ट एड दी जा रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास ही मेडिकल कैंप लगाया है जहां पीने के पानी के साथ साथ जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।
2: इस आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए नेपाली सेना ने यहां पर एक मेडिकल कैंप तैयार किया है। एक चौथा फिर अस्पताल आप समझ लीजिए एयर बेस बेस है तो जहां पर लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है उसके बाद यहां उनका इलाज किया जाता है और उसके बाद कई बार जो गंभीर खतरे में है उन्हें तुरंत काठमांडू में लिफ्ट कर लिया जाता है। आप समझिए कि जिस तरह के लोग आई है जो पानी के बहाव में थे, मलबे के बहाव में थे, किसी का दम टूट रहा था, उन सबको लाकर बड़ी चुनौती है और इसीलिए जितनी एजेंसियां हैं जितने हाथ हैं हर कोई मदद के लिए खड़ा है। इधर नेपाल की सेना जाने को ऑपरेशन अंजाम दिए
1: आशुतोष मिश्रा, नुवाकोट बेस कैंप, नेपाल, आज तक।
0: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: वार्ता में रिश्तों की नई उड़ान पर जोर। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में FIR दर्ज। SC/ST एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने करवाया केस। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के JP NIC पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का मुद्दा उठाया, कहा इन लोगों ने खाया पैसा। लखनऊ में हिंदुवादी नेता धीरेंद्र प्रताप की हत्या के मामले में खुलासा, ड्राइवर ने ही दो दोस्तों के साथ मिलकर मारी गोली। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। और नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा, फिर उफान पर त्रिशूली नदी, तेज धार में बहा पुल, तबाही में मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब बात उत्तर प्रदेश में मची सियासत की करते हैं। यूपी की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर जंग तेज हो गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर JP NIC से लेकर एक्सप्रेसवेज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। दूसरी तरफ BJP है जो पलटवार कर रही है और अखिलेश सरकार के दौर के खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है।
1: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी JP NIC। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर JP NIC को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
2: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। JP NIC BJP ने JP बेच दिया।
1: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ JP NIC के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। CM योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया, उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़, इसके बावजूद काम अधूरा रहा। CM योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
3: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
1: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं BJP का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
2: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था, राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है, जिसको लेकर CM योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
3: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं, और BJP के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता कार्यक्रम को RSS प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया और इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी मुसलमानों पर दिए गए बयान की हो रही है। अब उनके बयान पर सियासत भी जबरदस्त है।
4: अमेरिका के न्यूयॉर्क में मानवता को लेकर कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे। मोहन भागवत ने यूं तो धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में रह रहे मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। पहले वो बयान सुनिए।
5: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
4: मोहन भागवत ने उधर न्यूयॉर्क में बयान दिए और यहाँ हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई। मोहन भागवत के बयान को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हाथों हाथ लिया।
6: हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ। अजीज रिश्तेदार, भाई, नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है।
7: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहनाया जाए।
4: मोहन भागवत के बयान ने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया। विपक्ष भागवत के बहाने बीजेपी को घेरने लगी।
8: अपने जो उनके निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी उनके आचरण की समीक्षा करके उनको उनके बारे में निर्णय ले ले। मोहन आदरणीय भागवत जी,
9: केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री कौन सी जुबान बोलते हैं? मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, तीन चार को तो तुरंत आप फौरी तौर पे गिन सकते हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान के सरजमी पे एक बात और अमेरिका की धरती पे सुविधानुसार दूसरी बात, ये विरोधाभास देश को लील लेगा।
4: मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत सुलगी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच में विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच ये बयानबाजी तेज हुई है।
4: सवर्ण छात्रों ने जिस रोज से आरक्षण में बदलाव के लिए आवाज उठाई उसी रोज से आरक्षण को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी। इसी सियासत के जोर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दे दिया और इसी बयान ने एनडीए में बवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान नाराज हो गए।
10: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहां कहा गया कि आर्थिक आधार पे। तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं तो ये छोड़ दें, आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें, वो आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। मांझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या मांझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें।
4: चिराग पासवान सीधे सीधे जीतन राम मांझी का इस्तीफा मांगने लगे तो जीतन राम मांझी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। अब मांझी ने भी चिराग का इस्तीफा मांग लिया है।
11: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।
4: मतलब आरक्षण पर एनडीए के नेताओं ने आपस में ही विवाद कर लिया है। इन बयानों के बीच में संतोष सुमन का बयान दोबारा आया है।
12: मैंने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों को, चाहे किसी को भी, तो समाज में कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहां तक अभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको संवेदना रखनी चाहिए और ऐसी नीति और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको भी आरक्षण का लाभ हो सके।
4: अब आरक्षण पर कोहराम मचा हुआ है। एनडीए के भीतर ही नेता एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज जयपुर की, जहां पर नीट पीजी की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ है और छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान बार बार लाइट कटी, कंप्यूटर बंद हुए जिससे उनकी परीक्षा प्रभावित हुई। छात्रों के हंगामे के बाद इस सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है।
4: ये छात्रों का आक्रोश है, ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, ये शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों की नारेबाजी है। तस्वीरें जयपुर के सीतापुर में एक सेंटर की है जहां नीट पीजी की परीक्षा होनी थी। वैसे तो देश भर के 1000 से ज्यादा सेंटर्स पर आज नीट पीजी की परीक्षा हुई, मगर जयपुर के सीतापुर में ये परीक्षा नहीं हो सकी। आरोप है कि बिजली न होने से परीक्षा में देरी हुई। बाद में लगातार पावर कट हुआ तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द हुई तो छात्र और उनके परिजनों की आंखों में आंसू आ गए।
13: पाँच साल MBBS की तैयारी करी है, पीजी की तैयारी में लगा हुआ है, कितना पढ़ना पड़ता है, दोबारा पेपर देगा, इसका ट्रोबल हम नहीं झेल सकते। 3 साल पीजी की उसमें लगेगा, वहाँ पे भी ट्रोबल। इनको एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। आज पेपर इजी आया था, इन लोगों का अगर एग्जाम होता है तो प्लीज आप इनको एडिशनल बेनिफिट।
14: उसमें ना AC है, 3.5 घंटे तक कोई एग्जाम देगा, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता। मैं पूरे पसीने में हो गया था स्टार्टिंग से।
15: अगर 9:15 के आसपास 36 क्वेश्चंस अगर बट चुके हैं तो ये पेपर लीक है। क्या पता किसी और सेंटर पे कोई इन 36 क्वेश्चन को देख चुका हो। 36 क्वेश्चन जानते हैं आप कितने होते हैं, सेम नंबर पे 1000 रैंक में चेंज आ जाती है। क्लस्टरिंग इतनी गंदी होती है, सेम क्वेश्चन पे। तो अगर
16: ना लाइट गई ना कुछ गया, सिर्फ कंप्यूटर बंद हो गया ऑटोमेटिक, ऐसे कैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और ये सिस्टम में ग्लीच नहीं है, ये पेपर लीक है, नीचे हैकिंग चल रही थी, कोई भाई पैसे देके पास हो चुका है।
4: छात्राओं का गुस्सा फूटा और छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे।
17: जयपुर में नीट पीजी एग्जाम के बीच बिजली गुल हुई और उसके बाद अभ्यर्थी थे जो कि एग्जाम छोड़कर बाहर आ गए और अब परीक्षा सेंटर के बाहर ये प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें देखिए, जो अभ्यर्थी है वो नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर ये बीच एग्जाम छोड़कर यहां पर आ गए, जिसके बाद यहां पर ये एग्जाम सेंटर के बाहर यहां पर हंगामा बरपा। ये देखिए अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, आक्रोश से इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, कब हुई ये बिजली गुल हुई?
18: सर ये जब हम एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे के लिए बिजली गुल हो गई, इनके सारे सिस्टम बंद हो गए। उसके बाद में डेढ़ घंटे में कम से कम 5 से 7 बार सिस्टम बंद हुआ है और हर बार कम से कम 5-10 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं और बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, खुलेआम चीटिंग हो रही है।
4: छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 5 सितंबर को होगी। विशाल शर्मा, जयपुर, आज तक।
0: पंजाब के संगरूर में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ DC दफ्तर पहुंच गए हैं। दोनों ही मुख्य रास्तों को घेरकर लंबे धरने की तैयारी पूरी कर ली है।
19: ये
4: भारत यूएस ट्रेड डील के विरोध में फिर से उतर आए हैं पंजाब के किसान। संगरूर में डीसी ऑफिस के बाहर किसानों ने तंबू गाड़ दिया है। किसानों के पास राशन, चारपाई, चूल्हे, पंखे और एसी तक मौजूद हैं। ट्रॉलियों को ही रहने खाने का ठिकाना बना लिया गया है। किसानों ने धरना स्थल को ही अपना पूरा आशियाना बना लिया है। ट्रॉलियों के भीतर चारपाइयां बिछ चुकी हैं, राशन का पूरा बंदोबस्त है और चूल्हे भी चढ़ा दिए गए हैं। लंबे समय तक डटे रहने के इरादे से जरूरत का हर सामान पहले ही जुटा लिया गया है। वहीं भीषण गर्मी से राहत के लिए ट्रॉलियों में पंखे लगाए गए हैं। इस पूरे इंतजाम से किसानों का इरादा साफ नजर आता है। वे अपनी मांगों पर लंबे समय तक प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इस धरने की मुख्य वजह प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील है, जिससे किसान अपनी आमदनी पर बड़ा खतरा मान रहे हैं। इसके अलावा किसान मजदूरों की पूरी कर्ज माफी, फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और नई कृषि नीति लागू करने की मांग भी जोर शोर से उठा रहे हैं। ये पूरा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की अगुवाई में खोला गया है। संगठन ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस बात नहीं बनती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। कमलजीत संधू के साथ कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: अब बात करेंगे चित्रकूट में आए सैलाबी संकट की, जहां पर मंदाकिनी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर भारी आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट डूब गए हैं, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, लोग संकट में घिरे हैं और लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बीच में पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।
19: आसमान देखिए मौसम कैसा है।
20: पानी में तैरता हुआ शहर देखा है कभी? अब देख लीजिए, जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही है। शहर में सैलाब आया है, दुकान मकान सब पानी में डूबे हुए। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी।
21: चित्रकूट जनपद में मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे कल मंदाकिनी नदी लगभग 9 मीटर के ऊपर बह रही थी, जिससे रामघाट का जो एरिया था पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। जिन सड़कों पर कभी वाहन चलते थे वहां नाव चलने लगी थी। मंदाकिनी नदी के बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि मध्य प्रदेश प्रशासन को यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना पड़ा है और SDRF टीम जो यूपी प्रशासन था, SDRF टीम और PAC टीम को लगा करके जो लोग अपने घरों में फंसे थे उनको रेस्क्यू करके बचाया गया है।
20: बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए, लोग फंसे हुए हैं, बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब है कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ इस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है।
19: अभी आप आसमान देखिए मौसम कैसा है। ऊपर बोर्ड पे अगर खाना है तो दे दो, जो बचे हैं उनको खाना दे दो, निकालो इनको भाई, आप लोग बचा सकते हो उनको उतारो।
20: दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है।
22: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अति शीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। उन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए।
20: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
23: हम खड़े हैं रामघाट पे, जहां मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है, वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें, यहां पर सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं। लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं। जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से लगभग आधा दर्जन से लोगों का गाँव का संपर्क टूट गया है।
20: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
1: और पानी का जो जल स्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें पूरी प्रकार से। जहाँ पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
20: संकट बड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है। कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके।
1: आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है या कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं। सभी व्यवस्थाएं की गई है।
20: अब इन तस्वीरों को देखिए, ये नेशनल हाईवे 35 पर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर बना पुल था जिसे मंदाकिनी की लहरें अपने साथ बहा ले गई।
2: ऐसे हम खड़े हैं उसी मंदाकिनी रोड के पुल पर जहाँ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह मंदाकिनी नदी का मेन पुल है जो NH 35 पे यह पुल बनाया गया है जो शहर को जोड़ता है। उसी रास्ते से प्रयागराज के लिए जाया जाता है। लेकिन कल मंदाकिनी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पुल के ऊपर से यहाँ पानी बह रहा था, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी के पुल का अप्रोच रोड है वह उसका रोड का लगभग 20 मीटर नीचे धस गया है, जिसकी वजह से ये अप्रोच रोड का जो एक कोना है वह हट गया है। यहाँ पर पुल को बनाने के लिए जो कर्मी है यहाँ पर लगे हुए हैं।
20: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और उन तक मदद पहुंचाई। दिन रात लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है क्योंकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसी ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। अखिलेश कुमार सोनकर, चित्रकूट आज तक।
0: अब आज नेपाल में मचे हाहाकार के नेपाल में तबाही के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जिन इलाकों में यह तबाही सबसे ज्यादा हुई है वहां पर पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं, संपर्क के साधन ठप हैं और दुर्गम पहाड़ों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है। नुवाकोट एयरबेस से लगातार उड़ाने भरी जा रही है कहीं लोगों को निकालने के लिए, कहीं राहत पहुंचाने के लिए। देखिए इन पहाड़ों में जिंदगी बचाने की जंग आखिर कैसे लड़ी जा रही है।
20: नेपाल में आपदाग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है इसको ऐसे समझिए कि नुवाकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता है, कुछ लोगों को उतारता है और फिर जरूरी सामान लेकर उन दुर्गम पहाड़ों की ओर उड़ जाता है जहाँ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
3: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोग बचाया जा रहा है।
20: अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो नुवाकोट एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के इंजन कभी बंद नहीं होते, रेस्क्यू टीमें लगातार उड़ान भर रही हैं। नेपाली सेना के साथ साथ सिविल हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में लगा दिए गए हैं।
3: लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर काफी तेजी से चल रहे हैं, एक के बाद एक उड़ाने हैं और हेलीकॉप्टर या तो जो सैनिक हैं या फिर जवान रेस्क्यूअर हैं उन्हें एयर ड्रॉप कर रहे हैं या फिर उसके साथ साथ थोड़ा सा खाना पीना प्रभावित इलाकों में कोशिश की जा रही है।
20: नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों में जाने का एकमात्र तरीका ये हेलीकॉप्टर ही है। क्योंकि रसुआ समेत कई इलाके पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गए हैं।
3: नुआकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है। जहाजों की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
20: इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, जिंदगियों को मलबे में सिमटते देखा। कुछ लोग किस्मत वाले भी थे जो किसी तरह से बच गए।
3: आप लोग किस इलाके में थे? कितने दिन से थे आप लोग वहाँ पे? तो वहाँ पर क्या स्थिति थी? खाना पीना था? कितने दिन से फंसे हुए थे आप लोग? कितने लोग थे आप लोग जो वहाँ पे थे? कितना जना था वहाँ पे? तीन जना थे।
20: रसुआ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए जो लोग किस्मत से बच भी गए हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
5: बाहर गिरा है।
3: आप लोग वहीं पे से पानी?
5: हाँ, लैंड स्लाइड हुआ है।
3: तो आप लोग मतलब बचे कैसे वहाँ पे? जब आए तो कहाँ गए थे?
5: ऊपर से चढ़ा गए,
3: फोन कॉल लग रहा था, खाना पीना
5: तो ठीक है लेकिन फोन तो नहीं है।
20: रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को बेस कैंप में फर्स्ट एड दी जा रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास ही मेडिकल कैंप लगाया है, जहां पीने के पानी के साथ साथ जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।
3: इस आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए नेपाली सेना ने यहां पर एक मेडिकल कैंप तैयार किया है। एक चौथा फिर अस्पताल आप समझ लीजिए एयर बेस है, तो जहां पर लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है, उसके बाद यहां इसका इलाज किया जाता है। और उसके बाद कई बार जो गंभीर खतरे में है उन्हें तुरंत काठमांडू में लिफ्ट कर लिया जाता है। आप समझिए कि जिस तरह के लोग आई है, जो पानी के बहाव में, मलबे के बहाव में है, किसी का दम टूट रहा था, उन सबको ला सकती बड़ी चुनौती है। और इसीलिए जितनी एजेंसियां हैं, जितने हाथ हैं, हर कोई मदद के लिए खड़ा है। करने वाले किसी ना जाने उसको अपने जीवन जान मेडिकल कैंप में उनका ख्याल रखा जा रहा है, इलाज पहुंचाया जा रहा है।
20: आशुतोष मिश्रा, नुआकोट बेस कैंप, नेपाल। आज तक
0: रूस ने इस महीने यूक्रेन की राजधानी कीव को इतने जख्म दिए हैं कि उन्हें भरने में कई साल लग जाएंगे। पिछले 3 दिन से रूस लगातार मिसाइल और ड्रोन से बम बरसा रहा है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। रिहायशी इलाकों में कई इमारतों में इन हमलों के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने में बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को सबक सिखाने की चेतावनी दी है।
20: कीव में रूसी हमले ने मचाया कोहराम। एयर स्ट्राइक में 37 लोगों की गई जान। आग की लपटों में घिरे दफ्तर दुकान। कीव एक बार फिर दहल रहा है। कीव एक बार फिर रूसी हमलों का शिकार बना है। यूक्रेन की राजधानी की ये तस्वीरें तबाही की सारी कहानी बयां कर रही हैं। रूसी बमबारी ने कीव और आसपास के कई इलाकों पर इतने बम बरसाए हैं कि 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लगातार तीसरी रात भर रूस के ड्रोन बम बरसाते रहे, एक के बाद एक धमाके होते रहे। रिहायशी इलाकों की कई इमारतों में आग लग गई और लोग फंस गए। सारी रात बचाव अभियान चलाया गया और आग बुझाने की कोशिश की जाती रही। धू धू कर जलता ये वेयर हाउस तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। धमाके के साथ ही इसमें आग लग गई और काले धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कई घंटे लग गए। रूसी हमलों ने कीव रीजन में ही नहीं ओडेसा में भी भारी तबाही मचाई है, जहां एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए।
6: І станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальною операцією. Мої співчуття усім рідним та близьким. Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям.
7: रूसी मिसाइलें और ड्रोन लगातार अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन एंटी मिसाइल सिस्टम न होने से यूक्रेन इन्हें रोकने में नाकाम